तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है प्रेम छवि हो मन दर्पण में। इस वार्ता के लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुत करता है भवानी कॉल।

मन दर्पण वार्ता सुनिए। प्रेम छवि हो मन दर्पण में। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और वाचिका भवानी कौल। साथियों, उस समय कोई दूर बैठा यह दोहा गा रहा था। दोहा संत कबीर का था। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीजी आत्मा हरी भरी बनराई। सच है, जब व्यक्ति मन में उसके मन दर्पण में प्रेम छवि का विस्तार होता है, उसकी मन आत्मा पर प्रेम का वर्षण होने लगता है, तब उसकी आत्मा वनराई हरी भरी हो जाती है, हर ओर प्रसन्नता व्याप जाती है। उस महा आनंद की तुलना किसी अन्य सुख से नहीं की जा सकती। याद रखें, एक संत वाणी ने कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यानी प्रेम सर्वोच्च भाव है। इस संदर्भ में एक विशेष प्रसंग याद हो आता है। स्वामी रामतीर्थ अपने युग के एक प्रसिद्ध संत हो गए हैं। वे स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे। उस युग में उनकी ख्याति भी उतनी ही थी जितनी कि उस युग के अन्य संत पुरुषों की। वे महान चिंतक थे। उनके विचारों का आकाश भी विस्तृत था। उनमें कहीं कोई संकीर्णता नहीं थी। वह प्रसंग उन्हीं का है। एक समय स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर थे। फिर वहां से एक जहाज में बैठ अमेरिका की यात्रा पर चल दिए। जापान से अमेरिका की वह यात्रा कोई सामान्य नहीं बल्कि काफी लंबी थी। जब वह यात्री जहाज जिसमें कि स्वामी रामतीर्थ यात्रा कर रहे थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह के तट पर जा लगा, तब उस जहाज के सारे यात्री वहां उस बंदरगाह पर उतरने की तैयारी करने लगे। लेकिन स्वामी जी निश्चिंत भाव से उस जहाज की देख पर टहलते रहे। तब स्वामी जी की उस निश्चिंतता को देख एक अमेरिकी यात्री ने, जो उसी जहाज से यात्रा कर रहा था, उस जहाज से उतरने की तैयारी कर रहा था, उसने डेक पर निश्चिंत भाव से टहलते स्वामी जी को देखा तो पूछ लिया, महाशय, क्या आपको यहां उतरना नहीं है? बताएं, सैन फ्रांसिस्को में उतरना है तो जाना कहां है? इस पर स्वामी जी का उत्तर था, हां, मुझे सैन फ्रांसिस्को में ही उतरना है, इसी नगर जाना है। इस पर उस अमेरिकी यात्री का प्रश्न था, अगर आपको यहीं उतरना है तो आपका सामान कहां है? आप अपना वह सामान लाते

नहीं है। उस यात्री ने उनसे यही कुछ आग्रह किया। इस पर स्वामी राम ने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय मित्र, इस समय मेरे शरीर पर जो कुछ है उसके अतिरिक्त मेरे पास अन्य कुछ भी नहीं है। इस पर उस अमेरिकी यात्री ने फिर जिज्ञासावश स्वामी जी से पूछा, आपका रुपया पैसा कोई धनराशि भी तो होगी, वह कहाँ है? इस प्रश्न के संदर्भ में स्वामी रामतीर्थ ने बिना हिचक स्पष्ट शब्दों में कहा, मित्र, मैं अपने पास कोई रुपया पैसा कोई धनराशि नहीं रखता। स्वामी जी का यह स्पष्ट उत्तर सुन वह अमेरिकी यात्री एकदम आश्चर्यचकित था। इस पर उसने बिना हिचक उनसे पूछ ही लिया, तो बताएं महाशय कि आपका यह जीवन, आपकी यह जीवन यात्रा कैसे चलती है? इस पर स्वामी जी हंसते हुए बोले, मैं सबसे प्रेम करके ही जीवित रहता हूँ। जब प्यासा होता हूँ तो कोई पानी मिल जाता है, भूखा होता हूँ तो कोई रोटी लिए तैयार रहता है। स्वामी जी की यह बात सुन उस अमेरिकी नागरिक ने फिर प्रश्न किया, तो कृपया बताएं, क्या अमेरिका में आपके ऐसे मित्र हैं? इस पर स्वामी रामतीर्थ ने उस अमेरिकी नागरिक के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, हैं, क्यों नहीं, मैं केवल एक ही अमेरिकी मित्र को जानता हूँ और वह मित्र हो तुम। और वह अमेरिकी नागरिक स्वामी जी की सुंदर भावना भरी बात सुनकर और उनका सहज और आत्मिक स्पर्श पाकर जैसे आनंदित हो उठा और कहते हैं वह उनका अनन्य मित्र बन गया था। तो मित्रों, स्वामी रामतीर्थ मानवता के प्रति इसी तरह के प्रेम का संदेश जन जन बांटते रहे। वे अक्सर कहा करते थे, मैं यह जानता हूँ, प्रेम ही सुंदरता है। जो अपने अंतर मन में इस बात को, इस सिद्धांत को स्वीकृति देता है, वह जहाँ मनुष्य जाति का हितैषी तो होता ही है, वह प्रभु प्रेम और उनकी कृपा का भागीदार भी बन जाता है। साथियों, हम स्मरण करें, पवित्र बाइबिल में भी इसी प्रेम का संदेश है। समग्र मानवता के लिए वह संदेश है जिसमें कहा गया है, प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झूठलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ को ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। और साथ ही यह भी कहा गया है, भविष्यवाणियां जारी रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। मित्रों, तभी तो कहा गया है, प्रेम शाश्वत है, अमर है। आज इस वर्तमान युग में हर व्यक्ति के मन में प्रेम की पवित्र ज्योति जागृत हो, हर मन दर्पण में प्रेम छवि विस्तार पाए, ताकि विश्व मानवता कई कई व्यथाओं से मुक्ति पाए। ऐसा होने पर इस धरती पर शांति होगी, सुख होगा, सही समृद्धि विस्तार पाएगी, दुख नहीं होंगे, बिलकती त्रस्त मानवता नहीं होगी। एक समय इसी संदर्भ में मित्री ने कहा था, हम देख रहे हैं वर्तमान समाज एक तरह से उत्सवी समाज बनता जा रहा है। हर जगह समय समय पर उत्सवों का आयोजन होता रहता है, लेकिन वे उत्सव, वे आयोजन वैसा सुख, वैसा आनंद नहीं देते जो कभी देते थे। तब समाज के अंतर में प्रेम की धाराएं प्रवाहित होती रहती थीं, लेकिन आज कहीं भी वैसी प्रेम धाराएं नहीं हैं, बस दिखावा भर है। कहीं आपसी अंतर प्रेम नहीं है। प्रेम भाव में ही तो उत्साह और उमंग की सृष्टि होती है। इसीलिए आज के उत्सव निर्जू से होते जा रहे हैं। मित्रों, अब अधिक जरूरी है फिर प्रेम का विस्तार हो, हर मन इसे ग्रहण करे, उसे स्वीकारे। कभी किसी कवि ने कहा था, अंजूरी भर प्रेम दे दो बहुत है, हम इसे करके तो देखें। उचित थी मित्री की वह बात, उचित था उनका कथन, उनका तर्क। फिर उन्होंने यह भी कहा था,
जितने भी महान संत हुए, मनीषी हुए, मानवता के पोषक हुए, चाहे वे भारत की धरती पर हुए हों या अन्य किसी देश भूमि पर, उन सब ने प्राणी मात्र से, यही नहीं उन्होंने प्रकृति से, प्रेम पौधों से, जीवधारी प्राणियों, पशु पक्षियों से, जड़ चेतन सभी से प्रेम करने का संदेश दिया है। हाँ, हम भूले नहीं कि यूं आज भी प्रेम विस्तार के पावन संदेश कहे, सुने तथा प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन हम इसके लिए जिस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह सब कुछ उतना विस्तार, उतना प्रसार नहीं पा रहा है जिसकी हमें प्रतीक्षा है। मित्रों, अब हमें इसकी प्रतीक्षा नहीं, अब इस दिशा में सही रूप से प्रयास और प्रयाण करना है। हर संभव कोशिश की जाए कि हर मन दर्पण में प्रेम की छवि विस्तार पाती चली जाए। जी हाँ, आज का यह समय यही कुछ कह रहा है, आवाज दे रहा है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था प्रेम छवि हो मन दर्पण में। इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारे समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है रंग बिरंगी आतिशबाजी। इस वार्ता की लेखिका है स्वर्गीय इंदु संतोष जी और प्रस्तुत करता है संतोष जोशी।

पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता रंग बिरंगी आतिशबाजी, लेखिका इंदु संतोष, प्रस्तुतकर्ता संतोष जोशी। दीपावली हो या नया साल, शादी हो या पार्टी, हर त्योहार और हर खुशी के मौके पर आप सभी ने आतिशबाजी का लुत्फ उठाया होगा। गांव हो या शहर, देश हो या विदेश, हर जगह इस दुनिया में आतिशबाजी का रिवाज है। और हां, ये आतिशबाजी सिर्फ खुशी के मौके पर ही हो, मनोरंजन तक ही हो, ये सीमित नहीं है। आपातकाल में भी ये आतिशबाजी हमारी मदद कर सकती है, न केवल मदद बल्कि एक अहम भूमिका निभा सकती है। हम आपको बताएं, 14 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक नामक समुद्री जहाज जब बर्फ के विशाल हिमखंड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब दूर तक संकेत भेजने के लिए उस सुनसान और काली सर्द रात में क्या किया जा सकता था? जी हां, डूबते हुए जहाज से आतिशबाजी का प्रयोग किया गया था। प्रश्न ये उठता है कि आतिशबाजी आखिर है क्या? आतिशबाजी मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जो पिछली शताब्दियों से, राजा महाराजाओं के जमाने से, बच्चे बूढ़े और जवान, स्त्री हो या पुरुष, हर वर्ग के लोगों को अपने प्राणों की आहुति देकर लुभा रही है। जी हां, आतिशबाजी जलकर अपना जीवन तो समाप्त ही कर लेती है। आसमान में रॉकेट, फुलझड़ियां, अनार के फवारे और चक्री का घूमना, नाचना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को तो लुभाता है। विभिन्न रसायनों के मिश्रण को जलाने पर आवाज, धुआं और चिंगारियों से बनी आकृतियों को ही आतिशबाजी कहते हैं। आतिशबाजी यह शब्द उर्दू भाषा का है, जिसमें आतिश का मतलब आग होता है और बाजी का अर्थ है कला, यानी आग की कला। मतलब विभिन्न भाषाओं में आतिशबाजी के भिन्न भिन्न नाम हैं। उर्दू भाषा का नाम है, इसे बनाने वाले आतिशबाज कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फायरवर्क कहते हैं और इसे बनाने वाले को फायर वर्कर कहते हैं। हिंदी में हवाई गिरी कहते हैं और बनाने वाले को हवाई गिर कहते हैं। शाब्दक में इसे कहते हैं आग के खिलौने और बनाने वालों को कहते हैं आग के खिलौने का व्यापारी। आतिशबाजी के इतिहास में अगर हम जाएं तो हम पाते हैं कि 3000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था और बाद में ये अरब, यूरोप, यूनान और भारत में पहुंची। इस समय भारत में सबसे ज्यादा आतिशबाजी दक्षिण भारत के शिवाकाशी नामक छोटे से शहर में होती है, बनाई भी वहीं जाती है सबसे ज्यादा। जिसे अगर हम आतिशबाजी का शहर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आतिशबाजी में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है उसे बारूद कहते हैं, जिसमें मुख्य शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, लकड़ी का कोयला ये सब होता है। प्रदूषण रूपी अंधकार इससे गहन होता है। धार्मिक पर्वों से संबंधित आस्था हमारे अंदर एक नए आत्मविश्वास का संचार कर जिंदगी के सफर को बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ाने में सहायक होती है। लेकिन जब हमारी आस्था जिंदगी के सफर में अवरोध पैदा करे तो उसकी प्रासंगिकता एवं अस्तित्व पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारी आस्था जहां एक ओर किसी तर्क को स्वीकार नहीं करती, वहीं दूसरी ओर परंपरा के बंधनों से भी मुक्त नहीं होना चाहती। यही कारण है कि कभी कभी इस आस्था की वजह से हमारे अस्तित्व पर संकट के बादल
मंडराने लगते हैं। पिछले दिनों जब केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जल प्रदूषण रोकने के लिए गणेश एवं दुर्गा जी की मूर्तियों को नदियों में विसर्जित न करने के निर्देश दिए थे, तो कुछ कट्टरपंथियों द्वारा उसे भारतीय जनमानस की आस्था पर हमला बताया गया था। लेकिन ये समाज ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति की रक्षा न करके हम स्वयं अपनी आस्था पर हमला कर रहे हैं। प्रकृति की रक्षा के बाद हमारे शास्त्रों में यही बात दोहराई गई, ईश्वर प्रकृति के कण कण में विराजमान है। दीपावली दीपों का त्योहार है। इस प्रकाश उत्सव पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि दीपावली पर हम जीवन में सच्चे अर्थों में प्रकाश लेकर आएं। दरअसल जब हम दीपों के साथ साथ अपनी इच्छा शक्ति के प्रकाश से प्रदूषण रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कृत संकल्प नहीं होंगे, तब तक हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम दीपावली जैसे पावन पर्व पर, ऐसे त्योहारों पर, पटाखों के धूम धड़ाकों के बीच उस प्रदूषण रूपी अंधकार की आहट नहीं सुन पाते। दरअसल प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ न जाने कितने धन की भी हानि होती है। तेजी से हमारे जीवन को अपने शिकंजे में कसने के लिए यह परंपरा चली आ रही है। दीपावली पर आतिशबाजी से वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दौरान वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। पटाखों की बहुत तेज आवाजों से कानों के पर्दों पर असर होता है। ये सर्वविदित है कि हमारे कान एक खास जोर की ध्वनि ही सुन सकते हैं, उससे अधिक नहीं, और ये पटाखों की ध्वनि उस ध्वनि से कहीं बहुत अधिक ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जहरीले रसायन, फ्लोराइड मेटल आदि की बढ़ोतरी भी वातावरण को प्रदूषित करती है। इस तरह त्योहारों पर यह प्रदूषण समस्त मानव जाति एवं पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं और प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। वे प्राचीन इमारतें जो सफेद संगमरमर की बनी होती हैं, उस पर तो खास इस प्रदूषण का असर होता ही है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य को आंख, गले के रोग और चर्म रोग तथा श्वसन तंत्र के रोग घेर लेते हैं। सबसे अधिक परेशानी दमा, ब्रोंकाइटिस और दिल के मरीजों को होती है। इस दौरान जहां एक ओर दमे और ब्रोंकाइटिस के मरीजों की सांस उखड़ने लगती है, वहीं दूसरी ओर ये दिल के मरीजों पर भी प्रभाव डालती है। दिल के मरीजों का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि परंपरा के बंधनों से मुक्त होकर आतिशबाजी को बंद करने के लिए कदम उठाएं। ये कदम उठाते हुए हमें याद रखना होगा कि पटाखे उद्योग में लगे मजदूरों का अहित न हो। इन मजदूरों की रोजी रोटी के लिए सरकार को भी इन्हें किसी दूसरे उद्योग में समायोजित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था रंग बिरंगी आतिशबाजी। इस वार्ता की लेखिका थी स्वर्गीय इंदु संतोष जी और प्रस्तुतकर्ता थे संतोष जोशी। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ग्लोरिया गांगले को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम पर्यावरण।

श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के तहत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है प्रदूषण का तर्कसंगत समाधान हो। श्रोताओं, चेतन भगत एक मशहूर उपन्यासकार लिखते हैं, एक घर था जिसकी छत से पानी रिसता था। किसी ने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। हालात खराब होते गए, परिवार के सदस्यों को तकलीफ होती। एक दिन घर का एक छोटा बच्चा एक योजना लेकर आया। श्रोताओं, वह अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सेट से गोंद और कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले आया। उसने कहा, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का दिल भर आया। बालक के चेहरे के वे प्यारे भाव, आंखों में उत्साह की चमक और यह तथ्य कि घर में वही ऐसा था जो समस्या को लेकर कुछ करना चाहता था, उसे प्रशंसा का हकदार बनाता था। श्रोताओं, हर किसी ने उससे कहा, शाबाश इतनी अच्छी सोच और स्मार्ट आइडिया के लिए। प्रत्येक व्यक्ति ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसके गाल खींचे। हालांकि जरूरत इस बात की थी कि कोई उसे बताए कि बेटे, तुम्हारे विचार तो अद्भुत हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह प्लान काम नहीं देगा। हालांकि ऐसा कौन है जो रूखे अंकल की भूमिका निभाकर यह कड़वी बात उसे बताए। श्रोताओं, इस उदाहरण में रिश्ती छत और घर दिल्ली में प्रदूषण के रूपक हैं। गोंद और कार्डबोर्ड का समाधान सम विषम नंबर प्लेटों की दिल्ली सरकार की योजना है। श्रोताओं, और वह प्यारा सा बच्चा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी में इतने सारे प्यारे और तत्पर लोग हैं कि आपको हर किसी के गाल खींचने में हफ्तों लग जाएंगे। श्रोताओं, उक्त उदाहरण सिर्फ वास्तविक मुद्दों को उजागर करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या ही नहीं है, समस्या है और बहुत भयावह है। हालांकि कभी कभी प्रस्तावित समाधान वैसा नहीं होता जो काम दे। श्रोताओं, इसके पहले कि हम घोषणा करने के लिए दौड़ पड़े, हमें चीजों को तार्किक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढंग से देखने की जरूरत है। श्रोताओं, शुरू से देखें तो अब भी यह स्पष्ट नहीं कि राजधानी में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। कारखाने, पड़ोसी राज्यों में फसलों को जलाया जाना, बिजली घर, चूल्हों में कोयले या लकड़ी का जलाया जाना, पुराने ऑटो रिक्शा और जर्जर पुराने वाहनों में से कौन दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। श्रोताओं, संयोग की बात है कि सम विषम योजना के दायरे में इनमें से कोई स्रोत नहीं आता। दिल्ली के प्रदूषण को निजी वाहन कितना बढ़ा रहे हैं, इसकी स्पष्ट धारणा के बिना इनमें से आधे वाहनों को हर वक्त बेकार पड़े रहने देना तो काला कानून ही कहलाएगा। यह कोई अच्छी सोच नहीं है। श्रोताओं, फिर यदि हमें इस योजना पर आगे बढ़ना भी हो तो हमारे पास इतना यातायात पुलिस बल नहीं कि नियम के पालन पर नजर रखी जाए। श्रोताओं, योजना के समर्थकों को विश्वास होगा कि लोग अच्छे हैं और इसका खुद पालन करेंगे, लेकिन यदि हम अच्छे होते तो भारत की सारी योजनाएं अच्छा काम दिखाती और हम विकसित देशों में नहीं आते। श्रोताओं, फिर नियम को दरकिनार करने के जायस नंबर प्लेट के लिए एक और कार खरीद लें। हो सकता है यह पुरानी सेकेंड हैंड और ज्यादा प्रदूषण वाली हो, या नाजायज तरीके जैसे फर्जी इमरजेंसी सर्टिफिकेट, पुलिस को रिश्वत, नंबर प्लेट बदलना या जेखिम लेकर देखना। श्रोताओं, तरीके अनेक हैं। योजनाओं को लेकर शुरुआती उत्साह और मीडिया का फोकस खत्म होने के बाद दिल्ली वाले अपनी कार सड़क पर लाने के लिए कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। श्रोताओं, जो लोग नियमों का पालन करेंगे वे पहले से ही बोझ के तले दबी जा रही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर और बोझ बढ़ा देंगे। ऑटो या तो मिलेंगे ही नहीं या जरूरत से ज्यादा वसूली में लग जाएंगे। श्रोताओं, पहले ही खचाखच भरी मेट्रो ट्रेनों की हालत और खराब हो जाएगी। दिल्ली के पास कोई पेरिस व सिंगापुर जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो है नहीं। चाहे अस्थायी रूप से ही सही, ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ कुछ क्षेत्रों में इसका भयंकर नकारात्मक साइड इफेक्ट होगा।
कई ड्राइवरों के पास काम ही नहीं होगा। माल ढुलाई ठीक से ना होने के कारण महंगाई बढ़ेगी। निजी वाहनों में स्कूल जाने वाले बच्चे और सम विषम की समय सीमा के आर पार को काम करने वालों को बहुत परेशानी भुगतनी होगी। इस रेडीमेड समाधान को अपनाने का सबसे बुरा असर तो यह होगा कि इससे यह झूठा एहसास निर्मित होगा कि हमने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ किया है, जबकि वास्तविक समाधान की अनदेखी होगी। श्रोताओं, मैक्सिको और बोगोटो जैसे जिन देशों में यह योजना अजमाई गई है वहां यह नाकाम रही है। बीजिंग का उदाहरण प्रायः दिया जाता है, लेकिन वहां इस उपाय ने थोड़ा ही असर दिखाया है और यह एक खास आयोजन के लिए अस्थायी तौर पर उठाया गया कदम था। फिर चीन कोई लोकतंत्र तो है नहीं और यह योजना किसी एकाधिकारवादी देश के ही अनुकूल है। लोकतांत्रिक भारत में हमें लोगों की आजादी चुराने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। वे याद दिलाते हैं कि बीजिंग में उन लोगों पर टैंक दौड़ा दिए थे जिन्होंने उस तरह का आंदोलन चलाने की कोशिश की जिस तरह के आंदोलन से आपका जन्म हुआ। इसलिए दोनों शहरों की तुलना करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। श्रोताओं, समाधान मौजूद तो है। दीर्घकालीन समाधान तो यह है कि दिल्ली जैसे विश्व स्तरीय शहर और बनाए जाएं, ताकि सुपर मेट्रो शहरों पर पड़ रहे दबाव कम हो सके। सुपर मेट्रो को बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत है। अल्पावधि में कुछ दफ्तरों के लिए काम के अलग अलग घंटे तय कर सकते हैं। इससे सड़कों पर दबाव कम होगा और यातायात तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रैफिक जाम में फंसी कार तेजी से अपनी यात्रा पूरी करती कार की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। श्रोताओं, हम नई कारों की खरीद पर टैक्स बढ़ा सकते हैं या उनकी संख्या को सीमित कर सकते हैं। श्रोताओं, हमें राजधानी की हर कार पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी ट्रैकिंग टैग लगाने की जरूरत है, ताकि हम व्यस्तता वाले समय में अतिरिक्त शुल्क वसूली जैसे सड़क के अधिकतम उपयोग के उपायों को लागू कर सके। श्रोताओं, टैक्सी शेयरिंग ऐप को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अभी तो उबेर और ओला ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, क्योंकि सड़कों पर कारों की संख्या घटाने की दिशा में वे बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। श्रोताओं, आपको यह तो श्रेय है कि उसने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कुछ करने की कोशिश की है। श्रोताओं, दिल्ली साफ सुथरी हवा की हकदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक समझदारी भरे समाधान खोजने होंगे। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से rva मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का, आप सभी का, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा

0: के साथ शिक्षा देते थे।
1: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम पर्यावरण।

श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के तहत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है प्रदूषण का तर्कसंगत समाधान हो। श्रोताओं, चेतन भगत एक मशहूर उपन्यासकार लिखते हैं, एक घर था जिसकी छत से पानी रिसता था। किसी ने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। हालात खराब होते गए, परिवार के सदस्यों को तकलीफ होती। एक दिन घर का एक छोटा बच्चा एक योजना लेकर आया। श्रोताओं, वह अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सेट से गोंद और कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले आया। उसने कहा, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का दिल भर आया। बालक के चेहरे के वे प्यारे भाव, आंखों में उत्साह की चमक और यह तथ्य कि घर में वही ऐसा था जो समस्या को लेकर कुछ करना चाहता था, उसे प्रशंसा का हकदार बनाता था। श्रोताओं, हर किसी ने उससे कहा, शाबाश इतनी अच्छी सोच और स्मार्ट आइडिया के लिए। प्रत्येक व्यक्ति ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसके गाल खींचे। हालांकि जरूरत इस बात की थी कि कोई उसे बताए कि बेटे, तुम्हारे विचार तो अद्भुत हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह प्लान काम नहीं देगा। हालांकि ऐसा कौन है जो रूखे अंकल की भूमिका निभाकर यह कड़वी बात उसे बताए। श्रोताओं, इस उदाहरण में रिश्ती छत और घर दिल्ली में प्रदूषण के रूपक हैं। गोंद और कार्डबोर्ड का समाधान सम विषम नंबर प्लेटों की दिल्ली सरकार की योजना है। श्रोताओं, और वह प्यारा सा बच्चा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी में इतने सारे प्यारे और तत्पर लोग हैं कि आपको हर किसी के गाल खींचने में हफ्तों लग जाएंगे। श्रोताओं, उक्त उदाहरण सिर्फ वास्तविक मुद्दों को उजागर करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या ही नहीं है, समस्या है और बहुत भयावह है। हालांकि कभी कभी प्रस्तावित समाधान वैसा नहीं होता जो काम दे। श्रोताओं, इसके पहले कि हम घोषणा करने के लिए दौड़ पड़े, हमें चीजों को तार्किक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढंग से देखने की जरूरत है। श्रोताओं, शुरू से देखें तो अब भी यह स्पष्ट नहीं कि राजधानी में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। कारखाने, पड़ोसी राज्यों में फसलों को जलाया जाना, बिजली घर, चूल्हों में कोयले या लकड़ी का जलाया जाना, पुराने ऑटो रिक्शा और जर्जर पुराने वाहनों में से कौन दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। श्रोताओं, संयोग की बात है कि सम विषम योजना के दायरे में इनमें से कोई स्रोत नहीं आता। दिल्ली के प्रदूषण को निजी वाहन कितना बढ़ा रहे हैं, इसकी स्पष्ट धारणा के बिना इनमें से आधे वाहनों को हर वक्त बेकार पड़े रहने देना तो काला कानून ही कहलाएगा। यह कोई अच्छी सोच नहीं है। श्रोताओं, फिर यदि हमें इस योजना पर आगे बढ़ना भी हो तो हमारे पास इतना यातायात पुलिस बल नहीं कि नियम के पालन पर नजर रखी जाए। श्रोताओं, योजना के समर्थकों को विश्वास होगा कि लोग अच्छे हैं और इसका खुद पालन करेंगे, लेकिन यदि हम अच्छे होते तो भारत की सारी योजनाएं अच्छा काम दिखाती और हम विकसित देशों में नहीं आते। श्रोताओं, फिर नियम को दरकिनार करने के जायस नंबर प्लेट के लिए एक और कार खरीद लें। हो सकता है यह पुरानी सेकेंड हैंड और ज्यादा प्रदूषण वाली हो, या नाजायज तरीके जैसे फर्जी इमरजेंसी सर्टिफिकेट, पुलिस को रिश्वत, नंबर प्लेट बदलना या जोखिम लेकर देखना। श्रोताओं, तरीके अनेक हैं। योजनाओं को लेकर शुरुआती उत्साह और मीडिया का फोकस खत्म होने के बाद दिल्ली वाले अपनी कार सड़क पर लाने के लिए कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। श्रोताओं, जो लोग नियमों का पालन करेंगे वे पहले से ही बोझ के तले दबी जा रही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर और बोझ बढ़ा देंगे। ऑटो या तो मिलेंगे ही नहीं या जरूरत से ज्यादा वसूली में लग जाएंगे। श्रोताओं, पहले ही खचाखच भरी मेट्रो ट्रेनों की हालत और खराब हो जाएगी। दिल्ली के पास कोई पेरिस व सिंगापुर जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो है नहीं। चाहे अस्थायी रूप से ही सही, ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ कुछ क्षेत्रों में इसका भयंकर नकारात्मक साइड इफेक्ट होगा।
कई ड्राइवरों के पास काम ही नहीं होगा। माल ढुलाई ठीक से ना होने के कारण महंगाई बढ़ेगी। निजी वाहनों में स्कूल जाने वाले बच्चे और सम विषम की समय सीमा के आर पार को काम करने वालों को बहुत परेशानी भुगतनी होगी। इस रेडीमेड समाधान को अपनाने का सबसे बुरा असर तो यह होगा कि इससे यह झूठा एहसास निर्मित होगा कि हमने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ किया है, जबकि वास्तविक समाधान की अनदेखी होगी। श्रोताओं, मैक्सिको और बोगोटा जैसे जिन देशों में यह योजना अजमाई गई है वहां यह नाकाम रही है। बीजिंग का उदाहरण प्रायः दिया जाता है, लेकिन वहां इस उपाय ने थोड़ा ही असर दिखाया है और यह एक खास आयोजन के लिए अस्थायी तौर पर उठाया गया कदम था। फिर चीन कोई लोकतंत्र तो है नहीं और यह योजना किसी एक आधिकारवादी देश के ही अनुकूल है। लोकतांत्रिक भारत में हमें लोगों की आजादी चुराने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। वे याद दिलाते हैं कि बीजिंग में उन लोगों पर टैंक दौड़ा दिए थे जिन्होंने उस तरह का आंदोलन चलाने की कोशिश की जिस तरह के आंदोलन से आपका जन्म हुआ। इसलिए दोनों शहरों की तुलना करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। श्रोताओं, समाधान मौजूद तो है। दीर्घकालीन समाधान तो यह है कि दिल्ली जैसे विश्व स्तरीय शहर और बनाए जाएं, ताकि सुपर मेट्रो शहरों पर पड़ रहे दबाव कम हो सके। सुपर मेट्रो को बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत है। अल्पावधि में कुछ दफ्तरों के लिए काम के अलग अलग घंटे तय कर सकते हैं। इससे सड़कों पर दबाव कम होगा और यातायात तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रैफिक जाम में फंसी कार तेजी से अपनी यात्रा पूरी करती कार की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। श्रोताओं, हम नई कारों की खरीद पर टैक्स बढ़ा सकते हैं या उनकी संख्या को सीमित कर सकते हैं। श्रोताओं, हमें राजधानी की हर कार पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी ट्रैकिंग टैग लगाने की जरूरत है, ताकि हम व्यस्तता वाले समय में अतिरिक्त शुल्क वसूली जैसे सड़क के अधिकतम उपयोग के उपायों को लागू कर सके। श्रोताओं, टैक्सी शेयरिंग ऐप को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अभी तो उबेर और ओला ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, क्योंकि सड़कों पर कारों की संख्या घटाने की दिशा में वे बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। श्रोताओं, आपको यह तो श्रेय है कि उसने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कुछ करने की कोशिश की है। श्रोताओं, दिल्ली साफ सुथरी हवा की हकदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक समझदारी भरे समाधान खोजने होंगे। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरिटास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rvahindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rvahindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rvahindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rvahindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है RV ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो RVA मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए RVA हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का, आप सभी का, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

तहे दिल से धन्यवाद ग्लोरिया जी और सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सभा शुरू करने से पहले मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। खुशियों की महक से है बनती जिंदगी, सपनों की कलम से है कि लिखनी जिंदगी। कहना है तुझसे बस इतना जिंदगी, हर मोड़ पर तू संभलना जिंदगी। जीत आसानी से मिले तो क्या जिंदगी, कभी कभी दुख भी सहना जिंदगी। पर आखिर में तो है हंसना जिंदगी, कांटों के बीच है रहना जिंदगी। पर गुलाबों की तरह है महकना जिंदगी, आखिर में है ये कहना जिंदगी कि हर वक्त यूं जियो जिंदगी कि अगले पल फिर मिले या ना मिले जिंदगी। यह कविता हमें मध्य प्रदेश के देवास जिले से दीपेश रॉबर्ट ने भेजी है। इस कविता के लिए दीपेश जी, आरवीए की टीम आपका दिल से आभार प्रकट करती है। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो आइए साथियों, हम भी आलस न करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला कार्यक्रम है वह है कृषि जगत से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: बिहार में खेती का भविष्य आपको कैसा दिखता है मुखिया जी? क्या कृषि के माध्यम से बिहार में एक और हरित क्रांति की आशा की जा सकती है?
1: बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है
0: जी।
1: अगर कृषि के क्षेत्र में उचित ध्यान दिया जाएगा तो निश्चय ही क्रांति की आशा की जा सकती है। ये सब कुछ सरकार की कृषि नीति के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन बात यह है कि जब तक सरकार इस दिशा में सक्रिय नहीं होगी तब तक कुछ किया नहीं जा सकता।
0: एक बात ये बताइए कि किसान आप किसे कहेंगे, क्या उसका मापदंड आपकी नजर में क्या है?
1: देखिए भाई, किसान से मेरा मतलब खेती करके अपनी आजीविका चलाने वाला व्यक्ति है, न कि जमीन का मालिक जो कोई और काम करता हो। हाल ही में मुझे एक पब्लिक स्कूल में जाने का मौका मिला
0: जी।
1: वहां हमें एक भी छात्र नहीं मिला जो किसान का बेटा हो या फिर भविष्य में किसान बनना चाहता हो। ये स्थिति कृषि के वर्तमान और भविष्य दोनों को ही प्रतिबिंबित करता है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा माना जाए मुखिया जी कि बिहार की कृषि बदल रही है या फिर इसके प्रति लोगों का सोच जो है वो नकारात्मक होता जा रहा है, कैसे इसको आप देखते हैं?
1: देखिए, मैंने अपने जीवन में दो ही चीजों को ऐसा देखा है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो है बिहार की कृषि और यहाँ के किसान।
0: अच्छा अच्छा।
1: इनकी दशा आज भी वैसी है जैसे 50 साल पहले थी। सरकार ने कई योजनाएं चलाई और कई प्रोत्साहन दिए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। एक सच्चाई ये भी है कि किसान को छोड़कर कृषि से जुड़ा अन्य व्यक्ति, चाहे वो बीज बेचने वाला हो या उपज खरीदने वाला, सभी खुश हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा ही आकलन हमारा भी रहा है। तो मुखिया जी, बिहार की कृषि और किसान अगर दोनों का दशा देखते हैं तो आप किस तरह की आशाएं आपको नजर आती हैं?
1: बिहार की कृषि और किसान दोनों को ही इस सरकार से बहुत आशाएं हैं
0: जी,
1: और वे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृषि के क्षेत्र में कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। यहां के लगभग 90% किसान भूमिहीन और छोटे या फिर सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं
0: जी। जी,
1: वे जमीन बटाई पर लेकर खेती करते हैं और उनकी हालत सबसे खराब होती है
0: जी।
1: इसकी विडंबना देखिए कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान इनकी फसल को होता है और सरकारी मुआवजा
0: जी, जी,
1: जमीन के मालिक उठा लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं ये जानना चाहूंगा मुखिया जी कि अब क्या ऐसा माना जाए कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनका कृषि से मोह भंग हो रहा है, उनको कोई रुचि नहीं रह गई है, वे कृषि कार्य से जुड़ना नहीं चाहते हैं?
1: लगता ऐसा ही है कि आज के युवा का कृषि से मोह भंग हो गया है और इस क्षेत्र में बौद्धिक मानव शक्ति का तेजी से पलायन हो रहा है। आम धारणा बन गई है कि दिमाग वालों के लिए खेती नहीं है।
0: आखिर इसके पीछे ये कारण क्या है मुखिया जी?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, कृषि के अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ किसान को छोड़कर हर क्षेत्र के लोगों के लिए पक्की मासिक और वार्षिक आय तय है
0: जी। जी,
1: बिहार में सिंचाई की सुविधा और साधनों का अभाव है। अगर यहां सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त होती तथा इस साल हर साल आने वाले अकाल को टाला जा सकता। बिहार में किसानों के लिए एक भी संस्थान नहीं है। बिहार किसान आयोग सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन किसानों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सारी ये अव्यवस्था के बाद भी किसान कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ये बात भी कम नहीं है मुखिया जी।
1: देखिए, मैं मानता हूं कि सभी समस्याओं के बावजूद यहां के मेहनतकश किसान फसल उपजा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं
0: जी।
1: उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। कृषकों के लिए सरकार की ओर से हर साल पैकेज और अनुदान की घोषणा की जाती है, पर वितरण प्रणाली और पद्धति के खराब होने के कारण किसानों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। खाद्य सुरक्षा भी यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
0: इस बाबत नई सरकार से ये क्या उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई?
1: देखिए, नई सरकार से प्रदेश के भूमिहीन, छोटे, सीमांत और बड़े सभी किसानों की एक ऐसी कृषि नीति, कृषि मैप, कृषि योजना की उम्मीद है जिसमें कृषि एक मोहक कार्य बन जाए।
0: अच्छा अच्छा,
1: अगर सरकार कुछ बातों पर गंभीरता से ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर लोगों की आशाएं पूरी हो सकती हैं।
0: आप बोल रहे हैं कि सरकार इन बातों पर गंभीरता से ध्यान देगी, तो किन बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, इसमें पहला है भूमि सुधार।
0: जी,
1: बिहार की कृषि व्यवस्था संस्थागत सुधार के लिए कराह रही है।
0: जी जी,
1: ये क्षेत्र भी कृषक फ्रेंडली नीतियों की मांग कर रहा है। इसमें सबसे प्रमुख है भूमि सुधार। बटाईदारी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें फसल उगाने वाला व्यक्ति किसान माना जाए, न कि जमीन का मालिक किसान कहलाए।
0: जी,
1: एक बार किसान बटाईदारों को किसान के रूप में मान्यता देती है तो कृषि अपने आप फलीभूत होने लगेगी।
0: तो क्या यह माना जाए मुखिया जी कि सरकार के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है?
1: जी हाँ, सरकार की पहली चुनौती यही होगी कि बटाईदारी बिल पास करती है या नहीं। सरकार को एक ऐसी नीति भी बनानी चाहिए जिसमें किसानों में सुरक्षा का अनुभव हो, मसलन उनकी मासिक और वार्षिक आय पक्की की जाए। इससे किसानों में नए प्रयोग करके और उसमें रिस्क उठाने की शक्ति आ जाएगी।
0: अगर ऐसा हो जाए, मान लिया जाए कि अगर ऐसा होता है तो बिहार देश में एक और मामले में प्रथम हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही एक ऐसे संस्थान का विकास करना होगा जो किसानों को समर्पित हो, किसानों के लिए हो और किसानों के द्वारा संचालित हो।
0: जी जी,
1: इसमें यह होगा कि किसानों के हितों को सरकार के समक्ष बेहतर और प्रभावी तरीके से रखा जा सकता है।
0: एकदम सही कह रहे हैं मुखिया जी, अगर इसी सोच के तहत काम किया जाए तो निश्चय ही किसानों की दशा और दिशा बेहतर हो सकेगी। सरकार से किसानों की काफी उम्मीदें हैं, किसानों की बेहतरी के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, मेरा बिल्कुल साफ तौर पर यह मानना है कि बिना भूमि सुधार के बिना किसानों की दशा नहीं सुधर सकती।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि किसान तभी होता है जब उसके पास खेती योग्य भूमि हो।
0: जी,
1: और हमारे यहाँ के हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोगों के पास खेती योग्य भूमि ही नहीं है।
0: जी,
1: आज के दौर में वैसे भी खेती करना जोखिम का काम माना जाता है, लागत बढ़ जाती है लेकिन उसके अनुपात में उनको फसलों का उचित दाम नहीं मिलता।
0: एक बात यह भी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक सही समय पर उचित रूप में नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए किस तरह के पहल करने की जरूरत है?
1: इस बात को मैं भी मानता हूं वीरेंद्र भाई कि सरकार की अधिकांश योजनाओं से लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लाभ पाने की पद्धति को और सरल बनाने की जरूरत है। सरकार को अपनी डिलीवरी मैकेनिज्म को संस्थागत और प्रक्रियागत दोनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में काम करना होगा।
0: जी,
1: डिलीवरी मैकेनिज्म को किसान के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना होगा, तभी जाकर इस समस्या का हल निकल सकता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, हमारे देश के किसान भाई में ऐसे भी साक्षरता का औसत देखें तो बहुत कम है। ऐसे में मैकेनिज्म में बदलाव करना ही होगा, तभी जाकर के हम लाभ की राशि उन तक सही समय में और उचित मात्रा में जो तय की जाती है उस मात्रा में उन तक पहुंचा सकेंगे। इस जानकारी के लिए मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर कृषि से संबंधित आपसे बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी,
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीलिंग एक्ट लागू हुए वर्षों बीत गए, लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। श्याम भाई,
2: हाँ।
0: हमारे यहाँ बड़ी विडम्बना की स्थिति है कि आज भी हमारे यहाँ भूमि सुधार कानून सही ढंग से, कारगर ढंग से लागू नहीं है, जिसके प्रभाव से हमारे यहाँ करीब करोड़ों लोग त्रस्त हैं, बेचैन हैं।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वीरेंद्र भाई। हमारे यहाँ जो खेती करना चाहते हैं उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, और जिनके पास जमीन है वो खेती करना नहीं बल्कि करवाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अपने पूरे रकबे में वो खेती कर पाने की स्थिति में भी नहीं है, उनके बच्चे खेती में कोई रुचि भी नहीं लेते हैं, और जो मेहनत कश तबका है वो खेती योग्य जमीन के अभाव में बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में वे खेती करें तो कैसे।
0: यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सीलिंग एक्ट के अभाव में आज जो देश के हालात हैं उसको आप कैसे देखते हैं कपूर साहब।
1: देखिए वीरेंद्र जी, आजादी के 65 साल बाद भी देश में 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेती करना चाहते हैं पर उनके पास अपना खेत नहीं है, यहाँ तक कि अपना घर भी नहीं है। वे जहाँ रहते हैं वहाँ से उजड़ना उनकी नियति बन गई है।
0: सबसे दुखद बात तो यह है श्याम जी कि ये अधिकांश विवाद और समस्याओं की जड़ में जमीन ही है।
1: जी
0: कुछ समय पहले की ही घटना को ले लीजिए, बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने 40 महादलित परिवारों के घरों को उजाड़ दिया था।
1: जी
0: और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, यहाँ तक कि कई दिन बीत जाने के बाद भी FIR तक नहीं हुआ।
2: इसी परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरी घटना का जिक्र करें तो कुछ दिन पहले पूर्णिया में ट्रक पर सवार होकर कुछ दबंग आए और महादलितों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया।
0: जी जी,
2: जिसमें 3 महादलित मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। इसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं न कहीं जमीन का मामला ही था।
1: जी आप सही कह रहे हैं, दोनों घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। इसी नीति को बदलने के लिए राजगोपाल PV ने व्यवस्था को संवेदनशील बनने पर विवश किया। 50,000 सत्याग्रही सरकार के साथ करार के बाद आगरा से लौट गए।
0: तो क्या उनके सत्याग्रह का मकसद पूरा हो गया? भूमि की जो मांग उन्होंने उठाई थी उस पर कार्रवाई करने का भरोसा या दिलासा उन्हें मिल गया था श्याम जी?
2: इस मुद्दे पर उनका कहना था कि आंदोलन तथा सत्याग्रह सतत प्रक्रिया है।
0: अच्छा अच्छा,
2: सत्य मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। पर उस समय के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जो करार किया था उससे भूमि गारंटी कानून मिलने की उम्मीद थी। वहां लैंड रिफॉर्म के लिए राज्य सरकारों से कहने की बात भी की गई थी। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर ऐसा पूरक कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी जिससे भूमिहीनों और बेघरों को जमीन मिल सके।
0: नए भूमि सुधार कानून की सख्त जरूरत किन राज्यों में है? क्या कुछ राज्य पहले से बेहतर नहीं कर रहे हैं? हालांकि ये सीलिंग एक्ट कानून तो हमारे यहाँ कपूर साहब वर्षों से मौजूद है।
1: जी, देश के ज्यादातर इलाकों में अभी तक लैंड रिफॉर्म नहीं हो सका।
0: जी
1: पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो लाखों एकड़ जमीन राज्य सरकारों के कब्जे में है, जिन्हें जरूरत के हिसाब से तो उद्योगों को दिया जा रहा है पर भूमिहीन बेघर लोगों को नहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की जरूरत है। पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इस दिशा में अच्छी पहल कर रखी है। जम्मू कश्मीर में तो भूमि सुधार किया जा चुका है।
0: राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के लिए जो मसौदा केंद्र सरकार को सौंपा गया था श्याम भाई
1: जी,
0: हाँ, अगर सरकार ने उसे मानने से इंकार कर दिया तो फिर क्या कुछ किया जा सकता है?
2: सरकार ऐसा नहीं कर सकती। कानून की दिशा बदलने में ब्यूरोक्रेसी की दिलचस्पी रहती है। लोगों की कोशिश है कि सरकार में बैठे लोग पहले सच्चाई से तो अवगत हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अब लोग मकसद से नहीं भटकेंगे। और ये बात सही है कि गरीबों के लिए कानून बनना चाहिए, अगर कुछ कमियां रहीं तो दूर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो फिर नया आंदोलन शुरू किया जाएगा।
0: जब राजगोपाल टीवी से पूछा गया था कपूर साहब कि केंद्र सरकार आपके संगठन का इस्तेमाल नक्सल और माओवादी संगठनों से निपटने के लिए करना चाहती है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था?
1: उनका साफ कहना था कि हम लोग गांधीवादी विचार के लोग हैं
0: जी,
1: हिंसा के हमेशा विरुद्ध हैं, चाहे वो सरकार व उसकी एजेंसियों की ओर से की जा रही हिंसा हो या प्रतिक्रियावादी संगठनों की ओर से लोगों को जमीन पर कब्जे न देना, उनका हक छीनकर सड़क पर मरने के लिए धकेल देना भी हिंसा है। इसके विरुद्ध हम सड़क पर उतरे हैं। पूरी दुनिया ने देखा सरकार संवेदनशील हुई है और रास्ता निकला। हम हर तरह के हिंसा के विरुद्ध हैं।
0: जमीन की लड़ाई में सारी दुनिया एक है, उस समय यह एक नारा प्रचलित हुआ था, तो इस नारे को आप कैसे देखते हैं श्याम जी?
2: देखिए, दुनिया का अर्थ व्यापक है।
0: अच्छा,
2: जय जगत यानी सारे विश्व की समस्याओं के विरुद्ध सत्याग्रह की भावना।
0: अच्छा,
2: जल जंगल और जमीन की समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, अफ्रीका के देशों ब्राजील समेत सैकड़ों देश इस समस्या से प्रभावित हैं। इथोपिया जैसे भूखमरी के शिकार देश में भारत की कंपनियां सफेद मूसली उगाकर अरब देशों के बीच बेच रही हैं।
0: अच्छा,
2: वहां लोगों की जमीन मिले तो वे मूसली की जगह अनाज उगाएंगे।
0: इस प्रश्न पर राजगोपाल जी का क्या कहना था कि भूमिहीनों को मकान और खेती के लिए कितनी भूमि पर्याप्त मानते थे वे?
1: इस मसले पर उनका साफ कहना था कि हमने 10 डिसमिल जमीन मांगी है, एक एकड़ का दसवां हिस्सा
0: जी।
1: पहले हमारी राज्य सरकारें भूमिहीनों को 15 डिसमिल जमीन देती थी, इसे धीरे धीरे घटाकर 2-3 डिसमिल कर दिया गया। अब 3 डिसमिल जमीन में घर कहां बनाएंगे, बकरी कहां बांधेंगे, गाय बैल कहां रखेंगे? मकान के लिए 10 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए, खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन मिले, जिसे भूमिहीन परिवारों का पोषण हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूं श्याम जी, कि हमारे देश में उतनी जमीन है क्या?
2: देखिए, सच तो ये है कि हमारे देश में खेती के लिए जमीन इतनी है कि अगर सरकार ठीक से बांटे तो भूमिहीनों को जमीन देने के बाद भी करोड़ों एकड़ जमीन बची रहेगी।
0: भूमि सुधार कानून में मुख्य रूप से किन चीजों की मांग की गई है कपूर साहब?
1: वीरेंद्र जी, सबसे पहली बात है कि भूमि का सही वितरण हो
0: जी,
1: भूमि का रिकॉर्ड सही और राष्ट्रीय स्तर पर हो। भूमि को सरकारों ने उत्पाद बना दिया है, किसान आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कुछ राज्यों में एक एक व्यक्ति के पास 100-100 एकड़ जमीन है और किसी के पास या लाखों लोगों के पास एक डिसमिल भी नहीं है। खेती की जमीन अलग हो, जंगल के लिए जमीन अलग हो और उद्योगों के लिए अलग जमीन तय की जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पर सरकारी जमीन तो सार्वजनिक संपत्ति है,
2: हाँ।
0: उसे सरकार मुफ्त में भला क्यों देगी, ये भी एक प्रश्न उठता है।
2: देखिए, गरीबों को जमीन न देने के लिए कई तरह के दबाव हैं। मुफ्त में जमीन का सवाल भी उसी से जुड़ा है
0: जी।
2: पर देश आजाद होने के बाद गरीबों को क्या मिला? 22 करोड़ लोग भूमिहीन और आवासहीन हैं। वे रहने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। क्या देश में पूंछ हिलाकर जीने वालों का समाज तैयार किया जा रहा है? सरकार यही चाहती है पर लोग नहीं चाहते। पंजाब के किसानों ने सरकार से कहा था कि 1 एकड़ जमीन दो और अपने बीपीएल कार्ड पेंशन कार्ड सब वापस ले लो।
0: बिल्कुल, उन लोगों का जो जवाब था बिल्कुल जायज है। एक चीज ये बताइए कपूर साहब कि जब उनसे पूछा गया कि आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं, जब सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था जमीन के लिए, तो सरकार तो ग्वालियर में ही समझौते को तैयार थी, तो फिर उन्होंने क्या कहा?
1: उनका कहना था कि गांधी जी ने लोक सेवक बनने का संदेश दिया था
0: जी,
1: जिसे राजनेताओं और नौकरशाहों ने भुला दिया है। उनका साफ कहना था कि उनको लड़ने का शौक नहीं है, जवाबदेही तय करने के लिए सड़क पर उतरना मजबूरी है। सरकार की नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 142 जिलों में नक्सल की समस्या है, गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है, देश इमरजेंसी वार्ड में पड़ा है और आप सड़क पर उतरने को जुर्म बता रहे हैं।
0: बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, जमीन से ही जुड़ा एक मसला है भूमि अधिग्रहण को लेकर के, जिसके लिए विधेयक का मसौदा भी स्वीकृत किया जा चुका है श्यामय, यह संसद में पारित भी हो गया है। तो उसके परिणाम को भी अगर हम लोग देखते हैं तो खास करके आप बताइए कि उसके परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है।
2: अधिकार प्राप्त मंत्रियों के एक समूह ने जमीन अधिग्रहण के लिए जिस विधेयक का मसौदा स्वीकृत किया है
0: जी,
2: जो संसद में पास भी हो गया है, वो कहीं से भी जायज नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
2: उससे भूमि अधिग्रहण में कुछ आसानी हो जाएगी। सिंगूर, नंदीग्राम और अन्य कई जगहों पर उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो उग्र आंदोलन हुए, उनका एक नतीजा ये निकला कि अधिग्रहण लगभग ठहर गया था, जो अब खुलकर सामने आएगा।
0: जो राज्य औद्योगिकरण के दौर से गुजर रहे हैं, वहां पर भूमि अधिग्रहण की स्थिति कैसी है कपूर साहब?
1: जिन राज्यों में पहले से काफी औद्योगिकरण हो चुका है
0: जी,
1: वहां तो फिर भी स्थिति ठीक है, पर जो राज्य पहले से औद्योगिक रूप से पिछड़े थे और राज्य सरकारें उद्योग लगाना चाहती है, वहां स्थिति बहुत खराब है। मसलन पश्चिम बंगाल में सिंगूर, नंदीग्राम आंदोलनों के बाद कोई बड़ा निवेश नहीं आया है।
0: ऐसा क्यों श्याम जी, जानकारों का इस मुद्दे पर क्या विचार है, वे क्या कहते हैं?
2: देखिए, देशी विदेशी निवेशक और अर्थशास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि देश में नए निवेश के कम होने की एक वजह ये भी है कि उद्योगों को जमीन मिलने में दिक्कत हो रही है।
0: अच्छा,
2: तमाम राज्यों ने अपने अपने स्तर से जमीन अधिग्रहण को लेकर कानून बनाए हैं, पर इस मामले में उलझन अभी भी वैसी ही बनी हुई है।
0: क्या इससे पहले भी जमीन अधिग्रहण के लिए संसद में विधेयक लाया गया था कपूर साहब?
1: ये प्रस्तावित विधेयक उस विधेयक का संशोधित रूप है जो 3 साल पहले संसद में पेश हुआ था और जिसे संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। उस समय संसदीय समिति की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रस्तावित विधेयक से संतुष्ट थी, क्योंकि उनकी समिति की सिफारिशों को बहुत हद तक मान लिया गया था।
0: एक बात यह है श्याम भाई कि ये खेती योग्य भूमि जो है वो बिल्कुल सिमटती जा रही है। देश आने वाले खाद्यान्न संकट को नजरअंदाज कर रहा है बिल्कुल। अभी भूमि का समान वितरण नहीं हुआ और ऊपर से पूंजीपतियों के लिए खेती योग्य जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए नित्य नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। किसानों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। बहुत सारे कानून अभी भी धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, वो लगातार ऐसा देखा जा रहा है। आप दोनों के साथ इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में अभी हम लोग चलते हैं। इस जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है हेनरी बेसेमेर और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे उनका नाम है हेनरी बेसिमेर। साथियों कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्व की जहां पर हवाई अड्डा, बहुमंजिला इमारतें, मोटर कारें, रेल, जहाज, पुल या फुटबॉल स्टेडियम जैसा कुछ भी नहीं है, या फिर कम से कम वो सब कुछ वैसा नहीं है जो हम वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं। हो सकता है कि ये कल्पना कुछ लोगों को स्वर्गिक आभास दे, लेकिन इसका अर्थ ये है कि ये संसार शल्य क्रिया के उपकरण और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों के बगैर ही अपना अस्तित्व रखता। इसके अलावा साथियों इस फहरिस्त में शामिल न होने वाले कुछ तत्व होते कंप्यूटर्स, रसोई के उपकरण, रेफ्रिजरेटर, कटलरी, कैंची, मर्तबान, बगीचे के औजार, स्प्रिंग, कलाई घड़िया और हृदय में लगने वाला पेसमेकर। साथियों ये तो वाकई बड़ी सामान्य सी लगने वाली कुछ चीजें हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है स्टील या इस्पात। साथियों भले ही ये स्टील या इस्पात कंक्रीट, कांच, ईंट या पेंट के आवरण में हो, लेकिन यही स्टील या इस्पात हमारे आधारभूत जीवन की रीढ़ है और हमारा जीवन काफी हद तक इसके द्वारा नियंत्रित होता है। आज जब हम फोर्थ रेलवे ब्रिज, विश्व के प्रथम स्टील ब्रिज या फिर सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट से मिलने वाली सुविधाओं की कल्पना करते हैं, तब शायद हमें ये याद नहीं रहता कि इसके महान आविष्कारक और व्यवसायी यदि क्रीमियन युद्ध के दौरान सिर्फ अपने बीमारी के बिस्तर तक सीमित रह जाते तो आज हम उसी ढलवा लोहे के पुराने विश्व में जीते और इन चौराहों को, लंबी दूरी के रास्तों को बहुत धीमी गति में पार किया करते। साथियों स्टील के आविष्कारक हेनरी बेसिमेर, जी हाँ, उनके बारे में आज हम जानेंगे, उनके जीवन के बारे में और खासकर उस परिस्थिति के बारे में जब स्टील के आविष्कार का विचार उनके दिमाग में आया था। साथियों वो समय हम सभी को याद है जब जीवन पुराने ढर्रे पर चला करता था, कुछ चीजें जिनकी सीमाएं थी और उन सीमाओं के पार जाना हम सभी के लिए, शायद हमारी सोच के लिए भी नामुमकिन था। लेकिन सिर्फ 42 साल की उम्र में सैकड़ों पेटेंट्स के साथ अंग्रेज हेनरी बेसिमेर एक सफल अनुसंधानकर्ता थे। कितने ही सारी खोज और अनुसंधानों के साथ उन्होंने अपने जीवन को एक नई सोच और जीवन को एक नई दिशा पाने के लिए एक नई सोच को विकसित करने का शायद उनमें एक ऐसा मादा रहा जिसके चलते एक सामान्य घर या फिर प्रयोगशाला नहीं, उनके लिए अनुसंधान की एक सबसे सही जगह थी युद्ध का मैदान। जी हाँ साथियों, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जान पर बनाई हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जिम्मेदारियां ही इतनी हो कि मनुष्य सामान्य जीवन ही जीने के बारे में कल्पना न कर सके,

जैसा कि आपको अभी बताया, जब हेनरी बेसिमेर अपनी बीमारी के दिनों में युद्ध के मैदान में दुश्मनों से घिरे हुए बिस्तर पर बैठे हुए अपना समय गुजार रहे थे, उस समय भी अपने स्वास्थ्य के स्थान पर इस अनुसंधानकर्ता का दिमाग चल रहा था बंदूकों के निर्माण में सुधार करने को लेकर। दरअसल साथियों, ब्रिटेन की ढलवा लोहे की बंदूकें, उनकी गोलियां बहुत धीमी गति से छूटती थी और इसके पीछे प्रमुख कारण था इसमें मजबूती का अभाव। ये फेंकने के जरूरी दबाव के आगे टिकने में असमर्थ थी। साथियों, लोहे के साथ एक और दूसरी परेशानी थी जिसे हेनरी बेसिमर बहुत अच्छे से जानते थे, और ये परेशानी थी आवश्यकता से अधिक मात्रा में कार्बन की, जो लोहे को इतना भंगुर बना देता था कि वो सही तरीके से बंदूकों को बनाने में काम नहीं कर सके। ये सुनिश्चित था कि इसका एकमात्र विकल्प था स्टील। साथियों, इसकी मजबूती और लोच बेजोड़ थी और इसका जीवन 2000 वर्षों तक का, लेकिन परेशानी थी इसकी निर्माण लागत, निर्माण में लगने वाला समय और बार बार बदली जाने वाली किस्म। बेसिमर के आकलन के अनुसार इसका एकमात्र विकल्प था अधिक परिमाण में उत्पादन, जो कि सही गुणवत्ता की गारंटी देने में सक्षम था, और यही ब्रिटेन की हथियार संबंधी समस्या का समाधान बन सकता था। इसी सोच को सामने लाकर हेनरी बेसिमर ने अपने बीमारी के बिस्तर को छोड़ा। अपनी वर्कशॉप में जाकर आपने निरंतर प्रयोग करने प्रारंभ किए और इसके आगे जो बना इतिहास बन गया। साथियों, एक ऐसा इतिहास जिसके कुछ एक शब्दों के अलावा सब कुछ हम अपनी स्कूल की अध्ययन कक्षाओं में भूल आते हैं, या फिर उदाहरण ले तो घूमने वाली घिर्री या फिर स्टीफनसन का रॉकेट, जो दूर से आती घंटी की आवाज के समान है। हेनरी बेसिमर ने औद्योगिक क्रांति के शब्दकोश में जो दो महत्वपूर्ण शब्द जोड़े, वे थे बेसिमर परिवर्तक। साथियों, बेसिमर ने खोज की थी कि यदि आप एक नाशपाती के आकार की कड़ाही में या फिर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के एक ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किए गए ढलवा लौह अयस्क में ठंडी हवा का प्रवेश कराएंगे, तब ये अधिकांश अशुद्धियों को दूर करेगा। कार्बन के स्तर को स्वीकार्य स्तर तक कम करते हुए इसकी कठोरता में वृद्धि होती है, और इसी स्थिति में आविष्कार होता है विश्व की सबसे मजबूत धातु का, जिसे हम कहते हैं आधुनिक स्टील। साथियों, इसमें अपेक्षित लोच और तन्यता के लिए अनेक अन्य तत्वों को मिलाया जा सकता है। अपने परिवर्तक ब्लास्ट फर्नेस की मदद से बेसिमर केवल एक घंटे में विश्वसनीय और उच्च स्तरीय गुणवत्ता के स्टील की 30 टन मात्रा का उत्पादन कर सकते थे। सन 1859 में उन्होंने शेफील्ड में एक फैक्ट्री खोली और बंदूक और स्टील की रेल का उत्पादन प्रारंभ किया। साथियों, केवल अनुसंधान करना ही नहीं, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी कहा, अपनी सोच को केवल एक आकार देना ही नहीं बल्कि व्यावसायिक रूप से उसे सिद्ध करना, ये चीज हेनरी बेसिमर ने कर दिखाई, और इसी के चलते वे विश्व के प्रथम स्टील लखपति बने। साथियों, उस समय ब्रिटिश इतिहास के रूढ़िवादी मान्यताओं वाले स्थानीय व्यापारी बेसिमर के आधुनिक स्टील को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डनफर्म लाइन स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब लड़का, जो अमेरिका में जा बसा था और पेंसिल्वेनिया में अपना नाम जमाने का लक्ष्य रखता था, उसी दौरान वो शेफील्ड में आया और उसने यहां आकर जब हेनरी बेसिमर को देखा, उनके काम को देखा और विश्व के इस प्रथम स्टील लखपति की क्रियाविधि को देखा, तब उसने पाया कि यह वाकई ऐसी सामग्री थी जो दुनिया के नक्शे को बदल पाने में सक्षम थी। साथियों, उस लड़के का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। उसने वापस पीट्सबर्ग आकर कार्नेगी स्टील कंपनी की नींव रखी, जिसने आगे चलकर अमेरिका स्टील कंपनी के रूप में अपना आकार लिया और बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हुए रेल की पटरियां, इमारतें, पुल और जहाज उत्पादित किए, जिसके चलते अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान बना पाया और स्वयं कार्नेगी बना विश्व का सबसे

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हेनरी बेसेमर, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आप सभी ने हमारे आर्य कलाकार की बातें सुनी और मैं समझता हूँ कि आप सभी को इनकी बातें अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है दर्द का एहसास। नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं माइकल हॉजेस। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: लीजिए प्रस्तुत है नाटक दर्द का एहसास। लेखक और निर्देशक हैं माइकल हॉजेस।
1: कहाँ चल दिए चौहान साहब?
2: क्या अमिता, तुम भी जब भी कहीं जाता हूँ तुम टोक जरूर देती हो।
1: ये लो, आप भी पढ़े लिखे होकर इन दकियानों से बातों को मानते हैं?
2: क्यों, पढ़े लिखों की अपनी समझ नहीं होती क्या? ये तो अपनी अपनी समझ की बात है भाई।
1: तभी तो कह रही हूँ कि पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों जैसे ही समझ रखने से क्या फायदा, सारी पढ़ाई लिखाई गई ना पानी में।
2: पानी में तो सारी जिंदगी ही चली गई है तुमसे शादी करके।
1: क्या क्या कहा आपने?
2: मैंने क्या कहा, मैंने तो यही कहा कि तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी पानी में जाने से बच गई और क्या।
1: ये बात सही कही आपने, वरना तो गए थे आप आज।
2: तुम भी क्या बात करती हो अमिता, अभी कौन सा काम का बचा हूँ मैं?
1: कुछ तो काम के हैं अभी आप।
2: जैसे?
1: जैसे नौकरी पर जाना, नौकरी करना और वापस आना, बाजार हाट कर लेना
2: और
1: बस यूं बैठकर बातें कर लेना और क्या।
2: तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी सिर्फ बैठकर औरतों की तरह बातें बना लेता हूँ?
1: और आपको क्या लगता है, औरतें सिर्फ बातें ही बनाती हैं और कोई काम नहीं करती?
2: बिल्कुल,
1: मतलब बातें बनाने के सिवा उन्हें और कोई काम नहीं रहता।
2: मुझे बिल्कुल यही लगता है।
1: और घर का ये जो सारा काम हो जाता है, ये क्या अपने आप हो जाता है या फिर कोई भली आत्मा आकर कर जाती है?
2: और हमारे ऑफिस का काम, हाट बाजार का काम भी तो अपने आप ही हो जाता है? या फिर तुम जिस भली आत्मा की बात कर रही हो उस भली आत्मा के रिश्तेदार ही आकर कर देते हैं?
1: वाह क्या कहने आपके।
2: अच्छा मुझे एक बात तो बताओ तुम, मैं अच्छा भला किसी से मिलने के लिए निकल रहा था तो तुम्हें टोकने की क्या जरूरत थी?
1: अरे अरे आप तो नाराज होने लगे, आखिर आप ये टोक वगैरह मानते ही क्यों हैं?
2: क्योंकि मैं टोक को आजमा चुका हूँ।
1: कमाल है चौहान साहब, दकियानुसी और अंधविश्वासी तो हम औरतें होती हैं।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन लगता है आपने उन औरतों को भी मात कर दी है।
2: तुम्हें जो समझना है तुम समझती रहो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि मुझ जाते इंसान को तुमने क्यों रोका है? अभी तक तो मैं अपने मिलने वाले के यहाँ पहुँच भी गया होता।
1: आपको किसी से मिलने ही जाना है ना, तो मिल लेना, अभी तो दिन भर पड़ा है।
2: मतलब मैं तुम्हारी इच्छा से चलूंगा और मेरे सारे प्रोग्राम तुम सेट करोगी, एक संडे ही तो मिलता है छुट्टी का और तुम उसका भी सत्यानाश किए दे रही हो।
1: जरा मैं भी तो सुनूं कि आज आपके कौन कौन से प्रोग्राम हैं।
2: क्यों, तुम्हें बताना जरूरी है?
1: जाहिर है, पति पत्नी के बीच में कोई दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए।
2: ना तो मेरा कोई खास प्रोग्राम है और ना ही उसे तुमसे छिपाने का मेरा कोई इरादा है।
1: ऐसा तो नहीं कि मुझे झोल देकर आप मेरी किसी सौतन से मिलने जा रहे हैं?
2: तुम भी क्या बेकार की बात करती हो अमिता, अपना बेटा सुशांत शादी लायक हो गया है और बेटी करुणा भी सेकंड ईयर पढ़ रही है, अभी इस उम्र में मैं तुम्हारी सौतन रखता फिरूंगा? जवानी में नहीं रखा, अब इस उम्र में क्या रखूंगा?
1: अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्या आप मजाक भी नहीं समझते और मजाक को गंभीरता से ले रहे हैं?
2: गंभीरता से कही गई बात को गंभीरता से ही लेगा ना कोई भी, वैसे भी गंभीर बात पर मजाक करना भी नहीं चाहिए।
1: वो क्यों?
2: क्योंकि इससे गंभीरता और मजाक का अंतर खत्म हो जाता है।
1: कैसे?
2: क्योंकि गंभीरता पर मजाक से गंभीरता खत्म हो जाती है और मजाक पर गंभीरता से मजाक खत्म हो जाता है।
1: आपके साथ यही प्रॉब्लम है, आपका कब कैसा मूड होगा किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता।
2: अरे जब खुद मुझे ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा?
1: हाँ ये तो है।
2: तुम्हारी बेकार की बातों ने मेरा कितना समय खराब कर दिया है, अब तो मुझे तुलसी नगर जाने के लिए बस भी नहीं मिलेगी।
1: तो दूसरी किसी बस से चले जाना।
2: दूसरी बस अब आधे घंटे बाद ही मिलेगी।
1: तो ऑटो करके चले जाओ।
2: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि जहाँ मैं 15 रुपए में पहुँच सकता हूँ वहाँ मैं 50-60 रुपए खर्च करके पहुँचूँ?
1: काम जरूरी था।
2: तुम्हें पता है कि बिना मतलब और बिना काम के मैं एक रुपया भी खर्च नहीं करता।
1: बाप रे कितने महान कंजूस हैं आप।
2: कंजूसों के पास ही पैसा होता है और आजकल आदमी की नहीं पैसे की पूछ होती है, पैसे की।
1: अच्छा अब समझ में आया कि आप पैसे के पीछे इतना क्यों भागते हैं।
2: तो अब यह भी बताती चलो कि क्यों भागता हूँ।
1: बता दूँ?
2: हाँ हाँ बता दो।
1: तो सुनो चौहान साहब, आप पैसे के पीछे इसलिए भागते हैं कि पैसा आपके पास भी रहे और पैसे की आड़ में लोग आपको भी पूछ ले, नहीं?
2: चलो ऐसा ही समझ लो, तो इसमें क्या बुराई है?
1: बुराई यही है कि आप पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि पैसा उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है।
2: अच्छा तो क्या तुम बता सकती हो कि हमारे लिए कितना पैसा जरूरी है, कितने सौ कितने हजार?
1: ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि कितने पैसे, कितने सौ और कितने हजार काफी है? घर की जरूरतें कभी एक सी होती नहीं है, जरूरतें तो घटती बढ़ती रहती हैं।
2: यही, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि घर की जरूरतें घटती बढ़ती रहती हैं। जरूरत घटे तो ठीक, काम चल जाता है, लेकिन अगर बढ़े तो बजट बिगड़ जाता है, और अगर मेहमान आ जाए या दुख बीमारी आ जाए तो बजट तो बिगड़ता ही है। तो किसके सामने जाकर हाथ फैलाओगी तब तुम?
1: देखो, मेरा तो अब भी यही मानना है कि पैसा उतना ही होना चाहिए या हमें उतने की ही आशा करनी चाहिए जितने में जीवन आराम से गुजर जाए।
2: और जो मेहमान या दुख बीमारी आ जाए तो?
1: अरे, क्या आपको पता नहीं कि ये दोनों ही बार बार नहीं, कभी कभी ही आते हैं।
2: चलो मान लिया कि कभी कभी ही आते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए पैसा तो चाहिए ही ना।
1: बिल्कुल चाहिए, और यह पैसा हम आपकी और सुशांत की महीने की तनख्वाह में से बचत तो करते ही हैं। मकान तो हमने पहले से ही बना लिया है, फिर अब क्या है?
2: अब बेटे का ब्याह करना है, बेटी अभी पढ़ रही है, साल भर बाद उसकी भी शादी करनी है, कैसे होगा सब ये?
1: अगर आप बेकार की हाय तौबा नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा से सब हो जाएगा।
2: चलो ये भी मान लिया कि बच्चों की शादी भी हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं?
1: जरूर होना चाहिए, और हमारे पास सुशांत और करुणा है, फिर भी आपको अपना बुढ़ापा बिताने का डर सता रहा है?
2: ये दोनों तो हैं, मान लिया। करुणा तो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, अब बचा सुशांत, तो कल किसने देखा है कि वह हमारा भी रहता है या नहीं, या पूरी तरह से अपनी बीवी का हो जाता?
1: विश्वास भी तो कोई चीज होती है या नहीं? फिर हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में भी तो जमा करते हैं, दोनों की शादी के बाद हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ तो बच जाएगा, और नहीं तो करुणा की शादी के बाद हम उसके कमरे वाले हिस्से को किराए पर दे देंगे।
2: बात तो तुम्हारी ठीक है।
1: बस तो अब आप सुशांत के लिए लड़की देखना शुरू कर दो।
2: तुम भी क्या बात करती हो, जब तुम कहोगी तभी मैं सुशांत के लिए लड़की देखूंगा। मैं अभी और कहाँ जा रहा था?
1: कहाँ?
2: तुलसी नगर, सुशांत के लिए लड़की देखने और कहाँ?
1: तो आपने तो मुझे बताया ही नहीं।
2: अरे तो सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है कि नहीं?
1: ये सरप्राइज के चोचले आप अपने पास ही रखो।
2: तुम भी क्या औरत हो, अपना तो अपना, दूसरों का जीवन भी नीरस बना रखा।
1: अपना जीवन रसदार बाद में बनाते रहना, पहले ये बताओ कि लड़की किसकी, कैसी और कहाँ की है।
2: तुलसी नगर में ज्ञान सिंह रहता है ना, वही बता रहा है कोई लड़की।
1: लड़की किसकी है?
2: कोई ठाकुर निरंजन सिंह करके है, लड़की पढ़ी लिखी सुशील और बैंक में काम करती है।
1: बैंक में?
2: हाँ बैंक में। मुझे तो अभी से दोनों की जोड़ी अच्छी समझ में आ रही है, और फिर लड़की बैंक में काम करती है तो दहेज भी अच्छा ही मिलेगा।
1: उनके घर के हालत कैसे हैं?
2: वही जरा कुछ गड़बड़ लगते हैं। ज्ञान बता रहा था कि लड़की के बाप के सिर पर दो बड़ी बेटियों की शादी का कर्ज था, जो बैंक में नौकरी करने के बाद यही लड़की चुका रही है। अभी साल भर पहले ही उनका सारा कर्जा उस लड़की ने ही चुकाया है।
1: फिर तो ऐसी समझदार और मेहनती लड़की को हमें इस घर की बहू जरूर बनाना चाहिए।
2: तुम्हें समझदारी की पड़ी है और मुझे दहेज में नकदी की पड़ी है।
1: आप ये दहेज वगैरह छोड़ो और कल ही लड़की के घर चलने की तैयारी करो।
2: ठीक है, सुशांत को लेकर कल ही चलता है।

0: कुछ भी कहो, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई।
1: और मुझे पूरा भरोसा है कि निरंजन सिंह अपनी बेटी की शादी में भरपूर दहेज के साथ भरपूर नकदी भी देगा।
0: आप भी कैसी बातें करते हैं, आपने सुना नहीं क्या, उनके सिर्फ 3 ही बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं। दोनों बड़ी बेटियों की शादी का बोझ तो सबसे छोटी इस स्नेहा ने ही उतारा है, और स्नेहा की शादी का कर्ज कौन उतारेगा, ये सोचा है आपने?
1: अब अगर हमारी होने वाली बहू का कोई भाई नहीं है और निरंजन का कोई बेटा नहीं है तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है अमिता?
0: सचमुच आपके पैसे और दहेज की भूख न जाने क्या रंग दिखाएगी।
1: और स्नेहा की शादी का कर्ज ये लोग कैसे उतारेंगे या दहेज और नकदी का इंतजाम कैसे करेंगे, ये सोचना हमारा नहीं निरंजन सिंह का काम है भाई।
0: देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको उन लोगों की सारी हालत का पता नहीं है, आपने खुद अपनी आंखों से उनकी हालत देखी है और अपने कानों से सुनी भी है, फिर भी आप दहेज के कांटों से अपना दामन छुड़ा नहीं पा रहे।
1: तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, मैं तो दहेज और नकदी लिए बिना पीछे नहीं हटूंगा।
0: आप क्यों किसी परेशान व्यक्ति को और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं?
1: मैं कोई किसी तरह की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पास एक अच्छी और बेहतर चीज है और मैं उस चीज की कीमत मांग रहा हूँ। जो उस बेहतर चीज की कीमत दे दे वह चीज उसकी।
0: मतलब आप अपने बेटी को बेच रहे हैं, उसकी कीमत लगा रहे हैं?
1: तुम ऐसा सोच सकती हो अमिता?
0: मैं कहती हूँ देखो मान जाओ। अच्छा ये बताओ, अगर निरंजन सिंह भाई साहब की जगह आप होते तो?
1: होता तब ना, अभी हूँ तो नहीं, और मैं निरंजन की जगह पर होता तो तब की तब देखी जाती।
0: मैं समझ गई, आपको तो भगवान भी धरती पर उतरकर नहीं समझा सकता, लेकिन ध्यान रखना इस दुनिया में जैसे को तैसा कहावत भी पूरी होती है।
1: कहा ना, तब की तब देखी जाएगी।
2: साल भर बाद चौहान के ही घर में।
0: अभी साल भर पहले ही हम सुशांत की शादी करके निपटे हैं, और अब ये करुणा की शादी सिर पर आ गई।
1: अरे सीधी सादी शादी सर पर भी होती तो हम निपट लेते, लेकिन उस लड़के के माँ बाप को देखो, दोनों ही 20 लाख कैश मांग रहे हैं दहेज के साथ साथ।
0: सुशांत की शादी में आपको अपने दहेज और नकदी की जिद याद है, और आप अपनी जिद पूरी करके ही माने थे। बेचारे निरंजन भाई ने कैसे कैसे दहेज करके नकदी जुटाई थी।
1: अरे वो जुटा सकते थे तो उन्होंने जुटा लिए थे, मैं तो बिक भी जाऊं तो 20 लाख नकद कहां से लाऊंगा। उधर सुशांत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं।
0: अब अपने पर बीती तो पता चला होगा कि दूसरों के दर्द का एहसास क्या होता है।
1: अब तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही ताने दे रही हो। अरे तुम मेरी बीवी हो या दुश्मन?
0: जरा मुझे ये तो बताओ कि क्या आपने मेरा साथ दिया था जब मैं आपको दहेज नकदी ना लेने के लिए कह रही थी?
1: ये कोई समय है पुरानी बातों के पत्थर मारने का? तुम तो परायों की तरह बात कर रही हो।
0: जब आदमी अपने कर्मों से बनाए गए संकट की स्थिति में होता है ना, तभी उस पर अतीत की घटनाओं के पत्थर मारे जाते।
1: मुझे तो लगता है अब ये शादी कैंसिल ही करना पड़ेगी।
0: मगर करुणा तो जिद पर अड़ी है कि अब वो शादी उसी सुमित से करेगी, वरना नहीं।
1: न जाने बेटी का बाप बनना इतना महंगा क्यों पड़ता है।
0: इसीलिए ताकि जैसे को तैसा कहावत पूरी हो सके।
1: तुम कुछ भी कहो अमिता, कल सुमित के माँ बाप डेट फिक्स करने आ रहे हैं, मैं तो साफ इनकार कर दूंगा कि ये सब मेरे बस का नहीं है।
0: आपकी मर्जी।

0: आइए पवार जी, आइए आइए आइए। सरिता जी
1: नमस्ते। भाई साहब आइए, बैठिए सरिता जी।
2: भाई बैठ तो जाएंगे, ये लो बैठ गए, मगर आप लोग चाय पानी के चक्कर में मत पड़ना।
3: जी हाँ, क्योंकि हम लोग फटाफट काम की बातें करेंगे और फटाफट निकलेंगे।
0: पवार साहब, आपके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
2: जी कहिए।
0: मैं ये रिश्ता करने के काबिल नहीं हूँ। मैं आपकी मांग नकद 20 लाख देने की स्थिति में नहीं हूँ।
3: और आप क्या कहती हैं अमिता जी?
1: मैं क्या कहूँ सरिता जी, बस यूँ समझ लीजिए कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
3: क्यों?
1: सबको अपने अपने किए का फल यही मिल जाता है।
2: आप ठीक कहती हैं अमिता जी, लेकिन इसका क्या करें? जो हमने सुना है कि करुणा बेटी तो सुमित से ही शादी करने की मांग पर अड़ी है, वरना वो कोई गलत कदम भी उठा सकती है, उसका क्या करेंगे आप?
0: अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी इज्जत आपके हाथ है पवार जी। आप चाहे तो मान दीजिए और आप चाहे तो ठोकर दीजिए।
3: इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, ये तो आपको स्नेहा बेटी के पापा के दर्द का एहसास कराना चाहते थे।
0: क्या बात कर रहे हैं आप?
2: जी हाँ चौहान साहब, जब मुझे पता चला था कि आपने स्नेहा बेटी के पापा से दहेज और नकदी लेकर उन्हें खूब परेशान किया था, तो हमने सोचा कि थोड़ा परेशान आपको भी किया जाए
3: और बेटी के मजबूर बाप के दर्द का एहसास आपको भी हो।
2: बस इसीलिए हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया और वो प्लान से आप गुजर रहे हैं।
1: क्या इसका मतलब आप लोग अभी भी बिना किसी दहेज और नकदी के करुणा और सुमित के शादी के लिए राजी हैं?
3: बिल्कुल राजी हैं। हमने चौहान भाई साहब को एक बेटी के बाप होने का एहसास करा दिया है, यही बहुत है।
0: मैं किस मुंह से आप लोगों का धन्यवाद करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे भी अब दहेज और नकदी लेने का अपराध बोध हो गया है।
1: मगर ये सारी बातें आपको बताई किसने और आपने ये प्लान बनाया क्यों?
3: ये तो आपको करुणा से ही पूछना चाहिए था।
0: क्यों? करुणा से ही क्यों?
3: क्योंकि करुणा और सुमित दोनों कॉलेज में एक ही साथ पढ़े हैं और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए सुमित के कहने पर ही तो हम पहली बार करुणा का हाथ मांगने आए थे।
2: दरअसल करुणा को पवार साहब द्वारा स्नेहा के पापा से लिया गया दहेज और नकदी लेना पसंद नहीं था, इसलिए आपको स्नेहा के पापा की तकलीफ और दर्द का एहसास कराने के लिए उसने सुमित से हमसे ये नाटक करने के लिए कहा था।
3: हाँ।
2: और बस नाटक पूरा हो गया।
0: लेकिन पवार साहब, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
2: वो कैसे?
0: स्नेहा के पापा से ली गई सारी नकदी मैं कल ही बैंक से निकाल कर उन्हें लौटा दूंगा, ताकि वे अपना कर्जा चुका सकें और शांति का जीवन जिए।
1: ये बात की ना आपने? चलो फिर अब जल्दी से करुणा और सुमित जी की शादी के लिए डेट फिक्स करो।
0: तो फिर 20 मार्च कैसी रहेगी?
2: 20 मार्च?
1: हाँ, उस दिन करुणा का जन्मदिन भी है।
3: यह तो और भी बढ़िया बात है, तो 20 मार्च पक्का।
2: लाइए अमिता जी, अब आप चाय नाश्ता पानी और मिठाई लाइए और मुंह मीठा कराइए।
1: हाँ, अभी लाइए।

अभी आपने सुना नाटक दर्द का एहसास। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे श्री दिनेश सोलंकी, अमृता मोतीवाले, डॉक्टर भावना प्रधान और श्री माइकल हॉजिस।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था दर्द का एहसास और इसके लेखक एवं निर्देशक थे माइकल हॉजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस 8 से 9 की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत।

तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ हैं श्री छोटे लाल भारती जी। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: आज हमारे बीच श्री छोटेलाल भारती आए हैं और इनसे बातचीत करते हुए हमें इनके जीवन की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं से हम पूछते हैं इनकी अपनी इस जीवन यात्रा के बारे में। भारती जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप सबसे पहले अपने बारे में अपना परिचय खुद ही दें हमारे सुनने वालों को।
1: मैं मूल रूप से देवास जिले की कन्नौज तहसील का एक गांव है छोटा सा भंडारिया। मैं मूल रूप से वहां का निवासी हूं और अल्प आयु में ही पिता का देहांत होने के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा कन्नौज में हुई, जहां पर मेरे मामा जी और अनुसूचित जाति का हॉस्टल है, वहां पर रहकर मेरी शिक्षा दीक्षा हॉस्टल से हुई। मैं अनुसूचित जाति में बलाई जाति का हूं।
0: हाँ।
1: जो कि मूलतः मालवा, उज्जैन, साजापुर,
0: हाँ।
1: इंदौर,
0: हाँ।
1: जिले में अधिक की संख्या में पाई जाती।
0: हाँ, और इस जाति का काम क्या होता है?
1: इस जाति का मूल रूप से काम, मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ इसके इतिहास के बारे में।
0: हाँ।
1: फिर भी इतना जरूर जानता हूँ कि इस जाति का काम खेती करना और मजदूरी करना है।
0: तो कन्नौज के छात्रावास में रहते हुए आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी?
1: जी।
0: कहाँ तक पढ़े आप कन्नौज में?
1: मैं कन्नौज में 10वीं तक पढ़ा। इसके बाद में 10वीं फेल होने के बाद में, हॉस्टल से फेल होने के बाद निकाल दिया जाता है, और फिर मैंने प्राइवेट परीक्षा दी दूसरे साल, वहां से पास किया। पास करने के बाद में मैं सतवास चला आया, जहां से मैंने 11वीं पास की बायोलॉजी विषय से।
0: बायोलॉजी से?
1: जी।
0: अच्छा।
1: और बायोलॉजी के पश्चात फिर मैं 18 मई 1993 को पीएमटी की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स करने के लिए इंदौर में आ गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कई उलझनों और पैसों की तकलीफें, इस सब के कारण मैं इसमें असफल हुआ।
0: अच्छा अच्छा।
1: और पीएमटी में और डॉक्टर बनने का सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान मुझे संघर्ष करना था, उसको मैंने जारी रखा और 12वीं में फेल हो गया। इसके बाद में थोड़ी शर्म भी लगी, तो मैंने घर जाना उचित नहीं समझा और इंदौर में हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर पीडी शर्मा जी ने मुझे कहा कि 2-4 दिन तक ये हमारी एक बिल्डिंग है, उसका चौकीदार चला गया है कहीं, तुम इसकी चौकीदारी कर लो और इसके बाद मैं तुम्हारी कोई व्यवस्था करता हूं। तो मुझे तो काम चाहिए था और काम कोई सा भी हो, मैंने ये सीखा भी था कि मैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैंने उस काम को स्वीकार किया। वहीं से मुझे श्री देवकृष्ण जी सांखला का सहयोग भी भरपूर मिला, जिन्होंने मुझे उस समय की परिषद में मुझे नगर निगम में मास्टर कर्मी के रूप में लगाया। तो मुझे काफी आत्मबल मिला और इसके कारण मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और इसके बाद में फिर एग्रीकल्चर विषय से मैंने 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 8 समूह से बीए किया। बीए के बाद मेरा विश्वास और बढ़ता गया और आदरणीय वेंकटाचार्य स्वामी उस समय समिति के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुझे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई पढ़ने के लिए और इसके बाद मुझे एमएसडब्ल्यू कराया।
0: एमएसडब्ल्यू?
1: हाँ।
0: मास्टर डिग्री?
1: मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क।
0: अच्छा।
1: लेकिन समिति के साथ काम करते करते सांखला जी ने मुझे काम करने की पूरी छूट दी, उनके साथ में रखा और स्वामी जी ने मुझे पूरी आजादी के साथ में काम करने का मौका दिया। इस दौरान मैं देवास के एकलव्य एक संस्था है जो शिक्षा में नवाचार और मनोरंजन के क्षेत्र में काम करती है। मैं जब सतवास में था उस संस्था से जुड़ा हुआ था और उसकी खूब एक्टिविटी की, कागज के खिलौने बनाना, विज्ञान की जो कचरे से विज्ञान या बेस्ट मटेरियल से विज्ञान कैसे तैयार किया जाता है, खेल और पजल्स, बहुत सारी एक्टिविटी उस समय चकमक क्लब में हमने सीखी थी। तो उसी को लेकर मुझे जो भी समय मिला अपनी नौकरियों के दौरान, जो समय मिला उस समय में मैंने अन्नाभाऊ छाटे नगर में पन्नी बिनने वाले बच्चों के बीच में काम शुरू किया।
0: पन्नी बिनने वाले प्लास्टिक की जो कचरा थैलियां जो सुबह सुबह बच्चे बिनते हैं।
1: जी हाँ, तो पन्नी बिनने वाले बच्चों के साथ में काम शुरू किया।
0: क्या काम शुरू किया?
1: यही मनोरंजन शिक्षा और सस्ती शिक्षा, क्योंकि अगर शिक्षा महंगी शिक्षा के तो अभाव में वो बच्चे अनपढ़ थे ही। मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, तो मैंने उनके साथ पहले तो अपने संबंध स्थापित किए, उनके साथ बैठा, गाने गाए, खेल खिलाए। इसके बाद उन्हें विश्वास हुआ तो शिक्षा की बात करने लगे, फिर शिक्षा की बात शुरू हुई। तो वो बच्चे सुबह अपनी माँ के साथ निकल जाते थे, 4 बजे करीब वो बच्चे आते थे और 4 बजे हमने पहले उनसे खेल खिलाना शुरू किया, फिर गाने, फिर उनको पढ़ाई के बारे में सस्ती शिक्षा और मनोरंजक शिक्षा उसके बारे में, और शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ाया। इसके बाद मैं एक टीचर भी रखा, उसने भी उन्हें पढ़ाया।
0: लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ?
1: इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उन बच्चों ने, करीब आधे से ज्यादा बच्चों ने पन्नी बीनने का काम छोड़ दिया।
0: उनका घर वालों ने विरोध भी किया होगा?
1: हाँ, घर वालों ने बहुत विरोध किया, लेकिन समझाने पर वो लोग मान भी गए। और जब हमने वहां की एक समिति बनाई महिलाओं की, उस महिलाओं की समिति ने ये स्वीकार किया कि हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और उस दौरान हमारे पास 140 बच्चे के करीब थे, जिसमें से 124 बच्चे ने निपानिया गांव के स्कूल में एडमिशन लिया।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसके बाद हमने हमारा ये क्रम जारी रखा। स्कूल का नाम भी जुगाड़ स्कूल रखा था।
0: जुगाड़ स्कूल?
1: हाँ। और जुगाड़ स्कूल इसलिए उसका नाम रखा था कि वो जुगाड़ से ही बनाया गया था। उसमें किसी ने 2 बल्ली दी, किसी ने बांस की व्यवस्था दी, किसी ने 2 चद्दर दिए, 2 चद्दर किसी और ने दिए, ऐसे करके वो पूरा स्कूल है। किसी ने ईंट दिया, किसी ने रेती दी, और किसी ने उसमें जो ये सब नहीं दे पाता उसने अपने श्रम किया। इसलिए हमें उस स्कूल का नाम जुगाड़ स्कूल रखना ज्यादा उचित लगा।

साथियों, आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ थे श्री छोटेलाल भारती जी और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आस्था उपमन्यु, और इस कार्यक्रम का शीर्षक है सही दिशा चाहते हैं युवा, जिसके लेखक हैं कृष्णकांत दुबे, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता सही दिशा चाहते हैं युवा। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। हाँ, अब इस देश के युवा सही दिशा चाहते हैं, ऐसी दिशा जो उज्जवल हो। वे चाहते हैं कि वे अपने दीपक आप बने, स्वयं प्रकाशित हों। क्यों हुआ ऐसा कि वे अपनी प्रभा भूलते जा रहे हैं? आए कि ये विचार गोष्ठी इसी के लिए आमंत्रित है। इस गोष्ठी में नगर के कुछ श्रेष्ठ विचारक, शिक्षाविद एवं चिंतक तथा कुछ युवा प्रतिनिधि भी इसमें विचार रखेंगे। हाँ, उस दिवस एक समाज सेवी संस्था ने एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। वक्ता अपने अपने आसनों पर विराजमान हो चुके थे। सभागार में हर वर्ग के लोग मौजूद थे, लेकिन अधिक संख्या युवाओं की थी। एक खास संख्या में युवतियां भी थीं। जब प्रस्तावक ने ये कहा कि आज का युवा कई बातों के प्रति अपनी सहमति देता है, वो कई बातों को अस्वीकार करता है, वो चाहता है कि सही दिशा उसके सामने हो, विद्वान इसी पर अपने विचार देंगे। जिनका नाम पुकारा गया वे विद्वान उठे। न वे युवा थे न वृद्ध, वे प्रौढ़ थे। लगता था कि वे जो विचार देंगे निश्चित ही वह मध्यम मार्गी होगा। उन्होंने वहां जो विचार दिए उनका सार यही था कि आज की युवा पीढ़ी के पास कई मान्यताओं के प्रति अस्वीकार्यता है, पुराने मूल्यों के प्रति उनमें सीधी अनास्था है। इस अनास्था ने उन्हें दिशाहीनता दी है। वर्तमान भटकन का आरंभ उसी से हुआ है जहां दिशाहीनता है। तब सही पथ कहां मिलेगा? सत्य का सूर्य अगर बादलों की सघन परत से ढका हो तब सब कुछ कैसे सही होगा? अगर वर्तमान युवा पीढ़ी चाहती है कि उसे सही दिशा मिले तो उसे उन पगडंडियों की खोज करना होगी जिन पर चलकर प्राचीन समाज ने विकास की अपनी मंजिलें तय की। खोजिए तो उन्हें, वे मिल जाएंगी। वे ग्रंथों में हैं, लोगों की स्मृतियों में हैं, कहीं वे उपदेशक वाणियों में भी बिखरी हैं। एक अन्य विद्वान आए। लोग जानते थे कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। खासकर वे विदेशी चिंतकों को हर बात में उद्धृत करते हैं और उन्होंने कहा कि एक सुप्रसिद्ध पाश्चात्य चिंतक डॉ. केनेथ कैनिस्टन ने युवा समस्या पर एक ग्रंथ की रचना की है। उनके विचार में वर्तमान औद्योगिक सभ्यता ने पश्चिम में एक प्रति संस्कृति की रचना की है। वो वर्तमान समाज के मूल्यों के प्रति उस विसहमति, अवज्ञा और विरोध में से जन्मी है जो अत्यंत आधुनिक युवा पीढ़ी की चिंतन और आचरण का नियामक सूत्र है। आगे उन्होंने कहा, आज यही सब कुछ हमारी इस देश धरती पर भी पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। अगर इन सब की दिशा नहीं बदली गई तो नैतिकता संबंधी आदर्शवादता और दार्शनिकता युवाओं के मस्तिष्क तक ही सीमित रह जाएगी। वे अपनी परंपरा युक्त नैतिकता को व्यवहारिक रूप देने में असमर्थ रह जाएंगे। तब उनके भीतर एक विलक्षण परिवर्तन गुजरना शुरू होगा। एक और वे अपनी असमर्थताओं पर हीन भावना और आत्मग्लानी से भरकर अपनी विफलताओं का सारा दोष समाज और पुरानी पीढ़ी पर डालकर कहेंगे कि उन्होंने हमें अनुकूल परिस्थितियां नहीं दी। आगे उन्होंने कहा कि बस समझ लीजिए, निराशा, असमर्थता, पलायन और उदासीनता का दौर यहीं से शुरू होता है। इस कारण वे जीवन संघर्ष में अपनी प्रौढ़ भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाएंगे। युवा वर्ग आज इन बातों पर गहराई से विचार करे। इन्हीं समस्याओं के बीच उन्हें अपनी सही दिशा का संधान करना है। फिर एक वक्ता ने अपने दार्शनिक अंदाज में युवाओं को संबोधित किया कि वर्तमान युवा वर्ग को विश्वास की दिशा चाहिए और वो उसे मिले युवा यही प्रयत्न करे। जहां अन्याय हो वहां उसका वो शांतिपूर्ण प्रतिरोध करे। युवा वर्ग स्वयं अपने में सही मनन चिंतन जागृत करे। संकीर्ण सोच आप में कहीं नहीं हो। विस्तार पाती धूर्तताओं के बीच अपना सही मार्ग पालें, यही अपने में बड़ी उपलब्धि होगी।
ऐसे ही कुछ वक्ताओं ने उन युवाओं के बीच अपने विचार प्रवाहित किए, कहीं तालियां भी बजी, कहीं बीच में नकारात्मक ध्वनियां भी उठी। फिर विचार व्यक्त करने के लिए एक युवा प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया। उन युवा श्रोताओं के बीच से उठकर एक युवती आई और वो माइक के सामने आ खड़ी हुई। उसे देख सभागार में बैठे कई लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। कुछ चेहरे बता रहे थे कि उस युवती का मंच पर आना उन्हें उद्वेलित कर रहा है, लेकिन उस समूह में बैठे युवक युवतियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। वो युवती जिस विश्वास के साथ मंच पर आई, उसे लग रहा था कि वो जो विचार यहां प्रस्तुत करेगी उनमें निश्चित ही सार होगा। उसे देख ये भी लग रहा था कि वो किसी सामान्य परिवार की ही है, उसकी वेशभूषा भी सामान्य थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक विश्वास दिखाई दे रहा था, साथ ही उसमें ओजस्विता भी थी। सबसे पहले उसने सब उपस्थितों के प्रति अपना प्रणाम निवेदित किया और बड़े ही विनम्र भाव से बोलना शुरू किया। उसने कहा, अभी तक इस मंच से जो कुछ भी कहा गया वो निश्चित ही तथ्यपूर्ण था, हमारे लिए मार्गदर्शक था, लेकिन मैं आप विद्वजनों से पूछना चाहती हूं कि जिन आदर्शों के उदाहरण हमें बताए और सिखाए जाते हैं, क्या वे आदर्श कहीं आज समाज में हैं? उन आदर्शों का अस्तित्व कहीं मिलेगा भी? आज वे कहीं नहीं हैं। ये भी सही है कि समाज में उन आदर्शों का कहीं कोई अस्तित्व हो। उसने फिर कहा कि क्षमा करें, उपदेश बहुत दिए जाते हैं, पर मैं पूछती हूं कि उन पर कितना अमल किया जाता है। शायद उपदेशक भी उनका पालन करने में चूकते हैं। आज समाज में एक खास बात दिखाई देती है कि लोग अपने कथन में, अपने शब्दों में आदर्शवादिता जरूर लाएंगे। वे जानते हैं कि लोगों को उससे लुभाया जा सकता है, लेकिन कितने हैं जो आदर्शों की सही दिशा में चलते हैं? आज एक प्रवृत्ति विशेष रूप से समाज में दिखाई देने लगी है। उस युवती ने फिर कहा कि आज हर बार यही कहा जाता है, देश का युवा वर्ग ये करे, वो करे, स्थापित आदर्शों का पालन करे, उसी पर देश विकास की जिम्मेदारी है, स्वीकार है। युवा वर्ग को ये स्वीकार है कि देश का, समाज का विकास उस पर निर्भर है, उसके कंधे मजबूत हैं, उसमें आगे बढ़ने की आकांक्षा भी होती है, लेकिन जो अन्य है उनकी इस दिशा में कोई जिम्मेदारी नहीं। आज समाज में, खासकर हमारे भारतीय समाज में, जो घट रहा है उसे देख देश का युवा वर्ग क्षुब्ध है। उसने कहा कि मैं अपने संपूर्ण विश्वास से कह सकती हूं, भारत का हर सचेतन युवा समाज को सुंदर और सुव्यवस्थित देखना चाहता है। वो चाहता है कि सबको उन्नति का समान अवसर मिले, सब शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। इस आजाद भारत में मिलीजुली संस्कृति है, वो विकास पाए, पर इन आदर्शों को कहां सफल होने दिया जा रहा है? जो लोग एकता की बात करते हैं वे ही समाज में विभेद की सृष्टि करते हैं, जो समाज में गरीबी उन्मूलन की बातें करते हैं, आर्थिक समानता की बातें करते हैं, वे ही समाज में गरीबी के बीज बोने के लिए जिम्मेदार हैं। हम सब देख रहे हैं, समाज में हर कहीं झूठ की मीनारें खड़ी की जा रही हैं, हर जगह आंकड़ों का असत्य बोया जा रहा है। आज समाज में असत्य की, हिंसा की, शोषण की आंधी चलाई जा रही है, उसमें सब कुछ उड़ा जा रहा है। याद रखें, ये सब कुछ इस धरती पर युवा वर्ग की रचना नहीं है, लेकिन ये उनकी रचना है जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ को सामने रख अपने लिए लाभ अर्जित किए हैं और हर मानवीय मूल्यों को तिलांजलि दी है। आज के हर समाचार पत्र इस तरह की घटनाओं की प्रतिदिन साक्ष्य दे रहे हैं और सामाजिक नैतिकता तिरोहित हो रही है। बोलते समय उस युवती के चेहरे पर हल्का सा आक्रोश उभर आया था। उसने तब यही कहा कि मैं एक सत्यनिष्ठ विद्वान की कही वो बात कहना चाहूंगी कि आज हमारा चरित्र नष्ट हो गया है, इसीलिए अच्छी अच्छी योजनाओं के बावजूद हमारा राष्ट्र जिस तरह उसे विकास करना चाहिए नहीं कर पा रहा है। स्वार्थ की धुन हमारे पारिवारिक, सामाजिक
और राष्ट्रीय जीवन को खोखला बनाए दे रही है। कहीं नहीं है नैतिक मूल्य, क्यों एक बात लगातार भुलाई जा रही है। आज अधिकतर संचार माध्यम जिस तरह की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं उसे कोई क्यों नहीं देखता। इन दिनों समाचार पत्रों के पत्रिकाओं में फिल्मी अभिनेत्रियों के मॉडलों के चित्र जिस तरह से छपते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे। आज जिस तरह की फिल्में निर्माण की जा रही हैं, जिस तरह टीवी चैनलों पर जो धारावाहिक प्रसारित किए जा रहे हैं उनमें जिस तरह की अनैतिकता को दर्शाया जा रहा है, क्यों नहीं उनका विरोध किया जाता है। ये कहना अधिक सही होगा कि उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी प्रशंसा की जा रही है। हम देश में जिस प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं उसे किस तरह विनष्ट किया जा रहा है इसे सब देख रहे हैं। ऐसा सब क्यों होने दिया जा रहा है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता, बढ़ते सामाजिक अपराध, विस्तारपाती शोषण की चिकनी धाराएं जिन पर सब कुछ फिसला जा रहा है, क्यों इन्हें रोका नहीं जाता, बल्कि कुछ विशेष तत्व इन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर हम आंख खोल कर देखें तो हमें स्पष्ट लगेगा कि सामाजिक अच्छाइयों को समाप्त करने के नित नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देश की एक बड़ी आबादी जो शांति से जीवन व्यतीत करना चाहती है आज वो बुरी तरह त्रस्त है। देश का एक बड़ा युवा वर्ग भी इस संतरास के बीच से गुजर रहा है। मत भूलो कि इस देश का प्रतिभाशाली युवा वर्ग शोषण और संतरास भोगने को विवश है। उस दिशा में किसी का भी ध्यान नहीं है। उन्हें चमक दिखाई जा रही है लेकिन पीछे गहरा अंधकार है। हाँ, जो सद्भावी लोग सच्चे मन से समाज को सही दिशा देना चाहते हैं उन्हें हर तरह अनुत्साहित किया जाता है, और जो अपने में अंधेरा छिपाए बैठे हैं वे युवा वर्ग को प्रकाश देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों है ये विरोधाभास? इस देश के युवा वर्ग को अपने लिए, अपने सही आदर्शों की स्थापना के लिए स्वयं सचेत होना होगा, धोखेबाज और गलत दिशा देने वालों से मुक्ति पानी होगी। हमें अपना दीपक आप बनना होगा, तभी तो हम प्रकाश बांट सकेंगे और हर अंधकारमयी राहों को प्रकाशित करने की

या युवाओं के मन में जो सोच चल रही है एक सही दिशा को पाने की, वो सोच उनके मुताबिक शायद सही हो सकती है, लेकिन वास्तव में संसार में उस दिशा को पाने के लिए उन्हें अभी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास उनका सारा समाज स्वार्थ से भरा पड़ा है। सामाजिक बुराइयां अच्छाइयों पर हावी हो रही है। धोखेबाज लोगों और गलत दिशा निर्देश देने वालों की भरमार पड़ी है। आज के युवा अगर सही दिशा चाहते हैं और उस युवती की बात माने, तो आज के युवाओं को इन तमाम अनैतिकताओं से परे उठकर अपने बारे में सोचना होगा। अगर वो सही दिशा चाहते हैं, इन तमाम अनैतिकताओं से परे उठकर अपने बारे में सोचना होगा। उन्हें अगर सही दिशा चाहिए तो उन्हें स्वयं को प्रकाशित करना होगा। उनका स्वयं का प्रकाश ही उनके अंधकारमय जीवन को, उनकी गुमी हुई दिशाओं को एक सही निर्देश प्रदान कर सकेगा और अंधकारमय जीवन को एक उज्ज्वलता भी देगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिसका शीर्षक था सही दिशा चाहते हैं युवा। लेखक कृष्णकांत दुबे और इसे प्रस्तुत कर रही थी आस्था उपमन्यु और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

0: तो अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप हमें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप हमें अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, बवरगांव पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा, और इसका शीर्षक है चित्रकला का वर्तमान, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के हमारे युग संचार कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है चित्रकला का वर्तमान। साथियों, संचार का विस्तार केवल विज्ञान, तकनीकी आविष्कार और इस युग के नूतन उपकरणों से तो हो ही रहा है, लेकिन संचार प्रकृति के हर उपहार और जितनी भी हमारी ललित कलाएं हैं उनके माध्यम से भी उसी तरह, उसी रूप और उसी गति से होता चला आया है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। अब ललित कलाओं में मुख्य रूप से संगीत कला, नृत्य कला, शिल्प कला और चित्रकला का विशिष्ट महत्व हमेशा से रहा है। तो आज के हमारे आलेख में हम चित्रकला के द्वारा संचार की आवाजाही पर बात करेंगे कि किस तरह इस कला से संचार का विस्तार हो रहा है। चित्रकला, जिसे हम पेंटिंग भी कहते हैं, ये कला हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करती है। जो कुछ भी हमारी आंखें कैनवस पर किसी भी कला को देखती है, तो वे आंखें हमें अनेक तरह के विचारों में ले जाती हैं और किसी न किसी रूप में हमें जीवन की निरंतरता का एहसास भी कराती हैं कि जीवन कभी रुकता नहीं, उसकी धारा निरंतर लगातार प्रवाहित होती रहती है। शताब्दियों से ये कला हमें प्रभावित करती चली आई है और देखने वाली अनगिनत आंखें इस कला को संचारित करती हैं, एक दूसरे से वार्तालाप में, मीडिया के द्वारा, और इस तरह ये कला लोकप्रियता प्राप्त करती है। अब हम आज के युग की अगर बात करें, आज के समय की बात करें, तो हमारी भारतीय कलाएं विदेशों में बेहद पसंद की जा रही हैं तथा भारतीय चित्रकारों को विदेशी गैलरियों से लेकर नीलाम घरों तक में बहुत सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है और लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार हमारे भारतीय संगीत के कलाकारों की विदेशों में काफी ज्यादा मांग है, उसी प्रकार भारतीय चित्रकारों के पेंटिंग्स की ऑनलाइन नीलामी की बिक्री ही भारी रकम और लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। और ऐसा केवल प्रसिद्ध और वरिष्ठ चित्रकारों की पेंटिंग्स को लेकर के हो रहा है ऐसा भी नहीं है, बल्कि युवा चित्रकार, उभरते हुए चित्रकार, इनके चित्रों को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। कलाओं के बहुआयामी आदान प्रदान को संचार ही लोकप्रिय बनाता है, ये तो एक प्रामाणिक सत्य है। संचार माध्यम सूचनाओं के द्वारा ये कार्य करते रहते हैं। साथियों, इस सदी के पहले भारतीय कलाकारों के लिए यूरोप का बाजार ही उपलब्ध था और यहां भी कुछ ही कलाकार, बहुत कम कलाकार अपनी कला को यूरोप के मार्केट में पहुंचा पाते थे। क्यों? क्योंकि मूल रूप से यूरोप के बाजारों में पेशेवर कलाकारों की ही मांग रहती थी। प्रोफेशनल पेंटर्स या जो समय के पॉपुलर लोकप्रिय चित्रकार होते थे उनकी ही पेंटिंग्स रखी जाती थी, मांगी जाती थी। और अपनी पेंटिंग्स के लिए आर्ट गैलरियां मिलने में नए चित्रकारों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी और बिचौलिए जो होते हैं उनकी सौदेबाजी भी परेशान करती थी। यानी चित्रकारों को अपनी पेंटिंग्स के प्रदर्शन के लिए महीनों तक तैयारियां करनी पड़ती थी। लेकिन समय ने करवट ली और देखते ही देखते अभी लगभग 3 सालों में भारतीय चित्रकला को आश्चर्यजनक रूप से प्रोमो मिलने लगा है। प्रदर्शनी और आर्ट गैलरी में इनको देखकर इनकी मांग बढ़ने लगी और वो भी तेजी से बढ़ने लगी, खास करके जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के अलावा दुबई और चीन में भी। और यहां ऐसा भी नहीं कि केवल नामी वरिष्ठ भारतीय चित्रकारों की, जैसे कि हुसैन साहब हैं, रजा साहब हैं, इनके ही चित्रों की मांग रहती हो जैसा कि पहले होता था। अब इनके अलावा अन्य वरिष्ठ चित्रकार जैसे जोगेन चौधरी, इला मैनन और युवा चित्रकारों में सुधीर पटवर्धन, जगन्नाथ पांडा, सोमेन दास, इन सब के चित्रों की भी लोकप्रियता और मांग बढ़ी है और खूब बढ़ी है। एक और बात, पहले भारतीय चित्रकला की मांग ज्यादातर अनिवासी भारतीयों में रहती थी और विदेशी केवल 1 या 2% चित्र ही खरीदते थे, तो आज इस हालत में भी काफी बदलाव आया है। अगर 70% चित्र अनिवासी भारतीयों में बिकते हैं तो विदेशी भी 30% चित्र खरीदने लगे। चित्रकला खरीदने वालों की पसंद उनकी अपनी निजी होती है। जैसे यूरोपीय देशों में जहां इस कला का अपना विशिष्ट महत्व रहा है, वहां और खास तौर पर फ्रांस में तो घर घर में इस कला का और विशेष रूप से क्लासिकल काम बेहद पसंद किया जाता है, तो उधर अमेरिका में शास्त्रीय के अलावा एब्स्ट्रैक्ट चित्रों की भी मांग रहती है। एब्स्ट्रैक्ट चित्रकला, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्लासिकल से बिल्कुल अलग होती है। उसमें जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो प्रतीकों के रूप में होती है, जबकि शास्त्रीय कला में हर कृति अपने मूल स्वरूप या चेहरे में चित्रित होती है, प्रतीकों में नहीं। अब विदेशों के अलावा भारत में, खासकर कोलकाता और मुंबई की आर्ट गैलरियों में एब्स्ट्रैक्ट चित्रों के काफी शो आयोजित किए गए, जिसमें नामी चित्रकारों के चित्र 50 लाख, कम नामी के 20 लाख और बिल्कुल नवोदितों के चित्र, जो नए नए चित्रकार थे, उनके चित्र 1 से 2 लाख रुपए में बिके। ये एक प्रसन्नता देने वाली खबर है। और ताजा जानकारी के अनुसार चित्रकला में भी निवेश करने वाले आगे आ रहे हैं। कुछ कंपनियां आर्ट फंड यानी कला धन लॉन्च कर चुकी हैं, जिसमें कई निदेशकों ने पैसे लगाए हैं। हालत तो ये हो गई है कि कलाकार कंपनियों से अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 5 या 10 सालों तक का कर रहे हैं, जिसके तहत पेंटिंग कैनवस पर भी नहीं आई है, लेकिन उसके पहले ही वो बिक जाती है। बैंक भी इधर पेंटिंग्स की एवज में कर्जा देने की पेशकश कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोता मित्रों, देखा आपने, बाजारीकरण के इस युग में हर वस्तु बिक रही है और संचार भी इनको खूब बढ़ावा देने में द्रुत गति से अपना रोल निभा रहा है। विज्ञापन, मीडिया का प्रचार प्रसार, इन सबको आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है, ताकि जन जन तक इसकी जानकारी पहुंच सके। भविष्य में ये सारी गतिविधियां, चाहे कला से जुड़ी हों या अन्य उत्पादों से, विस्तार ही पाने वाली हैं, क्योंकि आज और कल केवल आर्थिक विकास पर ही बल दिया जाएगा। ध्यान यही रखा जाए कि इस विकास में केवल कुछ लोगों का ही फायदा हो और आम जन लाभान्वित नहीं हो।
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा, और इसका शीर्षक था चित्रकला का वर्तमान, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। तो आइए साथियों, सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को, अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मंदर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नए संत पिता के सामने कई चुनौतियां, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हरमन मंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है नए संतिता के सामने कई चुनौतियां। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। इस वार्ता में मैं केविन रेफर्टी की बातें मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। वे कहते हैं अपना पहला प्रवचन देने से पहले नए संतिता फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में 1,00,000 लोगों के साथ प्रार्थना का नेतृत्व किया। अनुयायियों को आशीर्वाद देने से पहले उन्होंने उनसे कहा कि वे उनके लिए प्रार्थना करें और परमात्मा से उनके लिए आशीष की कामना करें। यह अच्छी शुरुआत थी। संत पिता को निश्चित रूप से लोगों की प्रार्थनाओं की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे लोगों की बातें सुनेंगे, उनसे सीधे संवाद करेंगे बजाय सिद्धांतवादी फरमान जारी करने के, जैसा कि उनके पूर्ववर्ती और अधिकांश कार्डिनल तथा धर्माध्यक्ष करते रहे हैं। फ्रांसिस रोम के धर्माध्यक्ष जिन्हें जॉर्ज मारियो बर्गोल्जियो के नाम से जाना जाता है, ब्यूनस आयर्स के महाधर्माध्यक्ष लैटिन अमेरिका और विकासशील देशों से पहले संत पिता चुने जाने के बाद लोगों के सामने आए तो ऐसा लग रहा था मानो वे अचंभित हो। 8 साल पहले बेनेडिक्ट सोलवे की तरह उन्होंने जीत की खुशी में अपने हाथ नहीं लहराए, केवल गुड इवनिंग कहा। उन्होंने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी की याद में अपने लिए फ्रांसिस नाम चुना। फ्रांसिस ऑफ असीसी ने सारा जीवन बिताने के लिए सारी भौतिकवादी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। हालांकि उनके चुनाव में फ्रांसिस जेवियर की झलक भी दिखती है जिन्हें एशिया में ईसाई धर्म लाने का श्रेय हासिल है। संत फ्रांसिस पहले यीशु समाजी हैं जो संत पिता चुने गए हैं। यीशु समाजी पुरोहितों को 12 साल का खरा बौद्धिक और धार्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्य पुरोहितों के प्रशिक्षण की अवधि इससे आधी होती है। एक अच्छा संकेत यह भी है ब्यूनस आयर्स के महाधर्माध्यक्ष रहते हुए फ्रांसिस धर्माध्यक्ष के लिए बने भव्य महल में नहीं रहते थे और न ही सोफर वाली कार में चलते थे। वे एक सामान्य अपार्टमेंट में रहते थे और बस या मेट्रो में सफर करते थे। क्या संत पिता फ्रांसिस जॉन 13वें बनना चाहेंगे जिन्होंने संत पिता रहते हुए दूसरी वाटिकन काउंसिल बुलाकर कैथोलिक चर्च के दरवाजे नए विचारों के लिए खोल दिए थे? कैथोलिक विचारधारा कई तरह की समस्याओं से घिरी हुई है। करीब 1.2 अरब कैथोलिक आबादी के लिए भी चर्च का कोई खास महत्व नहीं है। संत पिता और धर्माध्यक्षों की बातों का उनके रोजाना के अनुभवों से कोई ताल्लुक नहीं है और वे तेजी से उनसे दूर होते जा रहे हैं। कैथोलिक धर्माध्यक्ष सेक्स के मामलों में उच्च स्तरीय नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। वे पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों के अलावा सेक्स के खिलाफ हैं और गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल से भी मना करते हैं। इसके अलावा गर्भपात तलाक और समलैंगिक विवाह के भी पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन जब पुरोहितों पर जघन्य अपराधों और बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगते हैं तो पूरी दुनिया में धर्माध्यक्ष उनका बचाव करते नजर आते हैं। वेटिकन में भी एक के बाद एक घोटालों के चलते चर्च की भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं। नौकरशाही में एक दूसरे की टांग खिंचाई और आंतरिक मतभेद होते ही हैं। लेकिन ये घोटाले इससे कहीं बढ़कर हैं। बच्चों के शोषण के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में वेटिकन बैंक की भूमिका को लेकर भी वेटिकन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बेनेडिक्ट सोलवे का कैरियर चर्च के सत्ता शीर्ष के करीब ही आगे बढ़ा था। इसके बावजूद वे सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाने में असफल रहे। ऐसे में किसी दूरदराज के इंसान से, जैसा कि संत पिता फ्रांसिस अपने आप को बताते हैं, के लिए ऐसा करने की उम्मीद करना मुश्किल है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि नए संत पिता और उन्हें चुनने वाले अधिकतर कार्डिनल की नियुक्ति बेनेडिक्ट या उनके पूर्ववर्ती पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा की गई थी। ये दोनों कैथोलिक विचारधारा के पालन को लेकर संकुचित नजरिया रखते थे। संत पिता फ्रांसिस को यह फैसला लेना होगा कि चर्च की संकुचित विचारधारा के पालन पर जोर देंगे या फिर चर्च की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलने का जोखिम उठाएंगे।
संकुचित विचारधारा पर जोर देने से चर्च से दूर होने वाले लोगों की तादाद और बढ़ेगी। हालांकि बेनेडिक्ट प्रतिबद्ध अनुयायियों के साथ चर्च की सीमित भूमिका को स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन उनकी यह नीति कारगर साबित नहीं होती रही। चर्च में मौजूदा दौर के नेता, जिनमें न्यूयॉर्क के कार्डिनल टिमोथी डॉलन भी शामिल है, परंपराओं के महत्व, नियम कायदों, पुरुषों की श्रेष्ठता और पदानुक्रम पर जोर देते रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये परंपराएं मध्यकाल में संत पिता की राजशाही के दौर की है। इतिहासकार लॉर्ड एक्टन की मशहूर उक्ति, सत्ता भ्रष्ट बनाती है और असीमित सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट बनाती है, पुनर्जागरण काल में संत पिताओं की ओर ही इशारा करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि चर्च के मौजूदा दौर के अधिकतर राजकुमारों की जीवन शैली ईसा मसीह की जीवन शैली के ठीक विपरीत है। कमजोर और असफल होने के बावजूद ईसा मसीह ने संत पेत्रुस को इसलिए चुना था क्योंकि वह कोशिश करने से नहीं चूकते थे। इन सब में संत पिता फ्रांसिस कहां फिट बैठते हैं? वे चर्च की बदहाली से अच्छी तरह वाकिफ है। चर्च का भविष्य लैटिन अमेरिका में होने वाले दावों के बावजूद इसके सदस्यों की संख्या घट रही है। फ्रांसिस के विचार बेनेडिक्ट से अलग है। महाधर्माध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कहा था, हमें अपनी दुनिया में खोए और आध्यात्मिक रूप से बीमार चर्च से परहेज करना चाहिए। इसके बजाय मैं ऐसा चर्च ज्यादा पसंद करूंगा जो खुद जख्मी होने के बावजूद लोगों के दिलों के करीब हो। सेक्स से संबंधित मुद्दों पर वे परंपरावादी हैं और समलैंगिक विवाह तथा गर्भपात के सख्त विरोधी हैं, लेकिन वे समस्याओं से भरी दुनिया में लोगों की परेशानियों को समझते हैं। यीशु समाजी सदस्य रहते हुए बर्गोल्जियो को अर्जेंटीना के पूर्व सैनिक शासकों से निकटता के चलते आलोचना झेलनी पड़ी थी। हालांकि हाल के दिनों में अर्जेंटीना में बढ़ती असमानता और समलैंगिक विवाह को वैधानिक दर्जा दिए जाने के मुद्दों पर वे सरकार का विरोध करने से नहीं चुके हैं। अब उनके सामने ये चुनौती है कि चर्च की संकुचित विचारधारा के पालन पर जोर देंगे या फिर चर्च की स्वीकारिता को बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलने का जोखिम उठाएंगे। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नए संत पिता के सामने कई चुनौतियां, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हरमन मंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नौकरी पेशा नारी, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण वार्ता सुनिए। नौकरी पेशा नारी। साथियों, बदलती दुनिया और बदलते परिवेश में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल रहा है। नारियां भी कुछ कम नहीं बदली हैं। उनके स्वभाव में काफी बदलाव आया है। उनके रहन सहन, सोच विचार, पहनावा ओढ़ावा आदि सब में बहुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब घर के अंदर की नारियां घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की तमन्ना रखती हैं। घर की कुशल गृहिणियां जो घर के अंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना और पकवान बनाकर सबका दिल जीत लेती थीं, लेकिन अब वे अपने सुस्वादु खाना खजाना को नौकरी का रूप देना चाहती हैं। अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना सबको खिलाकर पैसा कमाना चाहती हैं। घर का खाना बाहर खिलाकर उसे व्यापार व्यवसाय का रूप देकर वे अधिक से अधिक रुपया कमाने में यकीन रखती हैं। वैसे देखा जाए साथियों, तो नौकरी करने के अनेक फायदे हैं। यदि नौकरी और घर परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने में नारी निपुण हो जाए तो नौकरी करने में उसे आनंद आएगा और सही मायने में वह नौकरी का मनोरंजन करेगी। नौकरी एक ऐसा टॉनिक का काम करती है जिससे बहुत सारी मन की परेशानियां, व्यथाएं, तनाव आदि दूर हो जाते हैं। घर से यदि बाहर निकलती हैं, नौकरी करती हैं, वहां कई लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, कई जन से आपकी दोस्ती हो जाती है। आप अपना सुख दुख अपने साथी दोस्तों से बांटती हैं, घर परिवार की समस्या को लेकर आपस में चर्चा होती है और आपको मुफ्त में सलाह मिल जाती है। इसी बहाने आपको समस्या का समाधान भी मिल जाता है। घर परिवार पति बच्चों की अनेक परेशानियां होती हैं, ये सब भी कोई कम तंग नहीं करते, पर घर से बाहर निकलकर काफी हद तक तनाव दूर हो जाते हैं। आपस में बातचीत कर इन विभिन्न तनावों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए नौकरी करने के अनेक फायदे हैं। नौकरी पेशा महिलाएं ज्यादा तनाव मुक्त रहती हैं बजाय घर की गृहिणी के। घर की गृहिणियां परिवार की छोटी छोटी समस्याओं से हमेशा जूझती रहती हैं, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती हैं, और कभी कभी तो घर के अंदर की समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि वह अवसाद तक से घिर जाती है। साथियों, कई ऐसी महिलाएं हैं जो पारिवारिक परेशानी से इतनी तंग आ जाती हैं कि उनके पास कोई उपाय नहीं होता, वे मानसिक तनावों की शिकार हो जाती हैं। पारिवारिक समस्याओं के मामले में नौकरी पेशा महिलाएं सुखी रहती हैं, क्योंकि इन महिलाओं का सामाजिक परिवेश बढ़ जाता है। सामाजिक दायरा बढ़ने से मिलना जुलना होता है और इससे मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। इसके अलावा साथियों, गृहस्थ महिला पूरे समय एक ही रूटीन में जीती है, इसके काम करने का ढर्रा बिल्कुल एक जैसा होता है। वही सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े सबकी देखभाल करना, यही सब चलता रहता है। काम में कोई नवीनता नहीं होती। इससे भी कभी कभी महिलाएं ऊब सी जाती हैं। साथियों, इसके अलावा घर में रहने वाली महिलाएं घर के वही सदस्यों के साथ रोज रोज रहती हैं, नए लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो पाता है, ये भी ऊब का कारण बन जाता है। वह खींच भी जाती है और उसका घर से बाहर निकलना भी बहुत कम हो पाता है। जब वह तनाव में होती है, उसकी समस्या को सुलझाने वाला कोई नहीं होता। घर की गृहिणियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सास बहू के साथ, ननंद के साथ झगड़ों में उलझी रहती है। पति भी पारिवारिक मामलों में चुप रहने में ही भलाई समझते हैं। पत्नी को लगता है इस घर में उसका अपना कोई नहीं है। कहते हैं खाली मन शैतान का घर। सास बहू के झगड़े में उलझी महिला के साथ भी यही होता है। इसके अलावा नौकरी पेशा महिला के पास इन सब फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं होता। वह दफ्तर से इतनी थकी हारी आती है कि उसके पास
झगड़े लड़ाई के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। दफ्तर से आकर अपने कामों को निपटाने में लग जाती है। इसके उल्टे घर की महिलाएं सास ननंद को पछाड़ने की तरकीबें सोचती हैं। कहां कब क्या जवाब देना है, कब पछाड़ना है, इसके उपाय ढूंढती रहती हैं। उसका दिमाग इन्हीं कामों में चलता है। सास ननंद अथवा परिवार के झगड़ों में ही वह अपना दिमाग और शरीर खपाती है। ऐसी नारियों की महत्वपूर्ण ऊर्जा यूं ही चली जाती है। बेकार की बातें, बेकार के कामों में उनका मन चलता रहता है। इससे यही होता है कि धीरे धीरे महिला की सकारात्मक सोच नकारात्मक गतिविधियों में बदल जाती है। साथियों, नौकरी करने वाली महिला हमेशा आगे बढ़ने का ख्याल रखती है, इसलिए कदम दर कदम वह तरक्की करती जाती है। फिर नौकरी पेशा महिला का सामाजिक रुतबा भी होता है। समाज में उसका अपना एक स्थान होता है। ऊंचे पद से जुड़े लोग उससे संबंध रखते हैं, उसे सामाजिक गतिविधियों, उत्सवों आदि में सादर आमंत्रित करते हैं। अतः उस नारी का मान सम्मान भी बढ़ जाता है। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह उसका रुतबा होता है। आर्थिक मामले में नौकरी पेशा महिलाएं स्वतंत्र होती हैं। उसे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। वह खुद इतनी सक्षम होती है आर्थिक मामलों में, इसलिए पति के अलावा सास ससुर भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते। वह किसी से पैसे लेती नहीं, बल्कि समय समय पर सबको रुपये पैसे देने का काम भी करती है। कमाने वाली महिला के भीतर गजब का आत्मविश्वास भी होता है। आत्मविश्वास मजबूत होने से विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए भी वह मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहती है। वह इतनी सक्षम होती है साथियों कि कोई उसे डिगा नहीं सकता। आज की नौकरी पेशा नारी मजबूत एवं दृढ़ इरादों वाली होती है। कठिनाई में वह खुद को स्थिर रखती है। घर के मुखिया की बीमारी के दौरान या अकाल मृत्यु तक में बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने एवं उनके भरण पोषण में पूरी तरह से सजग होती है और सक्षम होती है। पुरुषों वाली जिम्मेदारी निभाने में भी वह सक्षम होती है। किसी के आगे हाथ फैलाना या गिड़गिड़ाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तो साथियों, कई कई बुरे वक्त में नौकरी पेशा या आत्मनिर्भर महिला अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बिल्कुल तैयार एवं सुरक्षित होती है। नौकरी पेशा महिला का जीवन सुरक्षित होता है। वह घटना दुर्घटना में घबराती नहीं है, इसलिए आर्थिक रूप से सक्षम महिला सभी स्थितियों से जूझ सकती है। तो साथियों, रोजगार पाना उसका अधिकार भी है, रोजगार करना और कर्तव्य भी है। फिर सोच लीजिए आपको क्या करना है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नौकरी पेशा नारी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। सहेलियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी आर्य कलाकार के द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी होगी और आप इन सभी बातों का लाभ भी लेंगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। आइए मित्रों, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन में प्रकाश भरती है आस्था। इस वार्ता के लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुत करता है अपर्णा सिंह।

मन दर्पण इसके अंतर्गत प्रस्तुत है मन में प्रकाश भरती है आस्था। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। मित्रों, दुबे जी लिखते हैं, बात कुछ वर्ष पूर्व की है। तब एक पत्रिका में मैंने प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता और चिंतक रविशंकर महाराज का एक संस्मरण पढ़ा था, जिसका शीर्षक ही था लड़की का उत्तर। 15 वर्ष की एक बालिका से मैंने पूछा, क्या पढ़ती हो? उसका उत्तर था, चीखली हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ से कितने मील होगा? 6 मील। रोज पैदल आती जाती हो? उत्तर था, जी हाँ। पूछा, थकती नहीं हो? नहीं। डर नहीं लगता? उस बालिका ने कहा, नहीं।

कृषि वैज्ञानिक होने के नाते प्रकृति तथा पेड़ पौधों से उनकी सीधी निकटता है। यही नहीं, वे प्रकृति के सत्य को निरंतर पहचानने की कोशिश करते हैं। एक समय उन्होंने मुझसे कहा था, विज्ञान मुझे प्रभु की समीपता देता है। यह इसलिए कि इस प्रकृति का निर्माता वह प्रभु ही तो है। ये सब उसी की ही तो रचना है। मैं उसी की रची सृष्टि में उसी को देखता हूँ, उसी सत्य की खोज करता हूँ। आगे फिर उन्होंने कहा था, हाँ, मेरा बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता नहीं थे, माँ के आंचल की छाया ने मुझे बड़ा किया। उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया कि प्रभु आस्था में ही जीवन है। माँ ने मुझे कहा था, याद रखो, प्रभु ही पिता हैं, प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हैं, और याद रखो बेटा कि प्रभु जिसके साथ है वो हमेशा भयविहीन होकर अपना जीवन जीता है। सामान्यतः उसे कहीं कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। अगर वे आती भी हैं, तो लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। अगर तुम प्रभु के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखोगे तो स्वयं तुम में आत्मबल पैदा होगा। साथ ही यह भी याद रखो, इसके लिए तुम्हें किसी अनावश्यक साधन की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के मन में यह आस्था उत्पन्न हो जाती है कि प्रभु उसके साथ ही हैं, सखा हैं, सहायक हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो वे जीवन के हर क्षण में उसके साथ ही रहेंगे। सोचो, प्रभु जिसके साथ भला है, उसे किसका भय और किसका डर हो सकता है? माँ ने मुझे यह भी कहा था, ऐसा आस्थावान व्यक्ति अपने आप में अभय हो जाता है। अपनी एक अन्य चर्चा के दौरान मुझे माताजी ने यह भी कहा था, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ बेटा, कभी प्रभु आस्था के विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, आस्था समुद्र लांग जाती है, यानी उस व्यक्ति मन में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वह समुद्र को भी लांग जाए। इसके बाद मुझे उन मित्र ने कहा था, और मेरे भाई, मैंने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी पाया, जो पद, जो पदवियां, जो अलंकरण प्राप्त किए, जो सुख पाया, जन जन की जो मैत्री, अपने साथियों का प्यार, हजारों हजार किसान भाइयों का जो स्नेह आदर पाया, उसके पीछे यही सब कुछ तो है। पर इन सबके बीच मैंने जो आत्मिक शांति, आत्मिक सुख पाया, वह सब कुछ मुझे उस प्रभु आस्था ने ही दिया, और वे सब कुछ अद्भुत थे, अपूर्व थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद वे मित्र मुझे अपने उस खेत, उस प्लॉट पर ले गए जहां वे अपना विशेष अनुसंधान कार्य कर रहे थे। वहां खड़े होकर उन्होंने मुझसे कहा, यहां इन सबके बीच रहते, काम करते, मेरे मन में प्रभु आस्था का और अधिक विस्तार होता जाता है। पहले मैं अपने मन में सोचा करता था, प्रभु मेरे साथ हैं, पर अब देखता हूँ, प्रभु समस्त वनस्पति जगत, प्राणी जगत, यानी सभी के ही तो साथ हैं। इस माटी के कण कण के साथ हैं, हर जगह व्याप्त हैं, वह इस पूरी सृष्टि के साथ हैं। जब मैं अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खेत में उगे पौधों के पास जाता हूँ, तो पाता हूँ एक विराट शक्ति है जो पौधों पौधों को निरंतर वृद्धि देती है। यही नहीं, उनका संरक्षण करती है। जो कुछ पौधों को अपने जीवन के लिए चाहिए, उसी के जरिए उन्हें वह सब कुछ तो मिलता है। जब ये पौधे हवा में लहराते हैं, तो मैं उनमें प्रभु की दी हुई निर्भयता ही तो पाता हूँ। विज्ञान की दृष्टि ने भी मुझे लगातार प्रभु आस्था दी है। ये आस्था आज भी मेरे साथ है, और अगर मैं यह कहूँ कि वह मेरे मन दर्पण में निरंतर उज्जवल और उज्जवल होती गई है, तो गलत नहीं होगा। मेरी अपनी तो यह स्पष्ट धारणा है और मान्यता है कि विज्ञान और प्रभु आस्था में कहीं न कहीं कोई विरोध या अलगाव है ही नहीं, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि जैसे जैसे हम इस जगत को, उसके व्यवहार को, उसके अंदर के सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, हमें उस अनंत शक्ति की उपस्थिति का निरंतर आभास

होने लगता है और ऐसा आभास मुझ में प्रभु के प्रति और अधिक आस्था जागृत करता है। इसी आस्था ने ही मुझे अपने अनुसंधान में, अपनी खोज में कई कई बार आकस्मिक सफलताएं भी दी हैं और मैं प्रकृति के उस सत्य के पास बहुत जल्द पहुंचा हूं। मैं इसका संपूर्ण श्रेय प्रभु आस्था को ही देता हूं। वे फिर बोले, बंधु, यह आस्था मेरे अंतर्मन को प्रेम से भरपूर बना देती है। कभी मैंने एक संत वचन पढ़ा था और उसे मैंने अपने मन में पूरी तरह अंकित करने का प्रयत्न किया। उस महत्व वचन में कहा गया था, भक्ति प्रेम का आस्वादन है और अंतिम निष्ठा भी है। यह जगत जिस परमात्मा के प्रकाश से आसीन है, उसे असत कैसे माना जाए? वस्तु की प्रभा वस्तु को मिलती है, प्रभा की शोभा भी वस्तु को प्राप्त हो जाती है। जगत परमात्मा से अभिन्न है और जीव भी परमात्मा से अभिन्न है। मित्र, यह वचन, यह वाक्य भक्ति प्रेम आस्था के साथ विज्ञान के एक सिद्धांत का ही तो प्रतिपादन करता है। जब हमारी दृष्टि भिन्नता का भाव त्याग देती है, हम सदैव प्रभु से एकात्म अनुभव करने लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा, हमारा अंतर्मन सचमुच एक दर्पण है। वह जितना सुंदर, जितना स्वच्छ होगा, हमारा मन उतना ही प्रकाशित होगा। इसलिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, जिसका भाव है, हे प्रकाशमान प्रभु, हे दिव्य ज्योति भगवान, आप ही हमारे सत्य मार्ग के ज्ञाता तथा प्रदर्शक हैं। आप हमें उस सद्मार्ग का प्रदर्शन करें, जिसके द्वारा हम सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त कर सकें। आप हमारे सारे दुर्गुणों और कुटिलताओं को तथा अपूर्णताओं को हमसे दूर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन में प्रकाश भरती है आस्था। इस वार्ता के लेखक थे श्री कृष्ण कांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी अपर्णा सिंह। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक है पर्यावरण का संतुलन बैठाते पशु पक्षी। इस वार्ता के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता है माइकल हजेस।

प्रस्तुत है वार्ता पर्यावरण का संतुलन बैठाते पशु पक्षी। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस। श्रोता साथियों, इस संसार में ईश्वर ने मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की रचना भी प्राणियों के अंतर्गत की है। इसलिए संसार में रहते हुए यह सभी प्राणी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन मानव और पशु पक्षियों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मानव पर्यावरण को प्रदूषित करता है और पशु पक्षी पर्यावरण को संभालते हैं। पर्यावरण का यह संतुलन वह पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। मानव और पशु पक्षियों के इस पृथ्वी पर रहने और क्रिया करने के अपने अलग अलग ढंग हैं। उनके जीवन यापन के अपने तौर तरीके हैं। इनके अपने अपने तौर तरीके इसलिए हैं क्योंकि मानव ने अपने जीवन जीने के ढंग में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नई नई शैली ईजाद की है। अपने जीवन को सुविधानुसार जीने के लिए उसने नए नए आविष्कार किए हैं और रोज ही कर रहा है, जबकि पशु पक्षी आज भी अपने जीवन को नैसर्गिक और प्रकृति के अनुसार ही जी रहे हैं। जहां मानव ने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति में दखल दिया है, वहीं पशु पक्षियों ने नैसर्गिक जीवन को जीते हुए प्रकृति का और पर्यावरण का संतुलन निरंतर बनाए रखा है, क्योंकि वे प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक जीवन जीते हैं। उन्होंने प्रकृति में कभी भी किसी भी प्रकार का दखल कभी नहीं दिया है। शायद इसका कारण मानव का प्राणियों में श्रेष्ठ होना और बुद्धिमान होना भी है। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज अपनी उसी बुद्धि के कारण मानव पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला इस पृथ्वी पर एकमात्र प्राणी है। उसकी अति तीव्र बुद्धि ही आज उसके लिए मुसीबत का कारण बन गई है। इसलिए आज का मानव अपने द्वारा आविष्कारक वस्तुओं का उपयोग अपनी सुविधा और आराम के लिए तो जमा कर रहा है, लेकिन उसके प्रति किसी भी प्रकार की सावधानी बरतने को नजरअंदाज कर रहा है, जिसका परिणाम अब खुलकर सामने आने लगा है और परिणाम है पर्यावरण प्रदूषण। श्रोता साथियों, आइए अब जरा एक नजर पशु पक्षियों के द्वारा पर्यावरण संतुलन पर डाल लें। प्रकृति में अनेक प्रकार के पशु पक्षी इस पृथ्वी पर विचरते हैं। इन सभी पशु पक्षियों की अपनी दिनचर्या है, अपना जीवन जीने का तरीका है और अपना अपना भोजन निर्धारित है। यह सब उसी प्रकार से जीते हैं ईश्वर ने इन्हें जिस योग्य बनाया है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास, कोई आविष्कार ये नहीं करते। इसलिए यह अपने प्राकृतिक जीवन को ही जीते रहते हैं और प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। कुछ पशु मांसाहारी हैं तो कुछ पशु शाकाहारी हैं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही तरह के पशु अपने अपने भोजन के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाए रहते हैं। उदाहरण के लिए हम मांसाहारियों में प्रमुख शेर, बाघ और तेंदुए जैसे पशुओं की यदि बात करें तो सबसे अधिक पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में यही मांसाहारी पशु अपनी महत्ती भूमिका निभाते हैं। अधिकतर यह पशु ऐसे पशुओं का शिकार करते हैं जो शाकाहारी पशु होते हैं, क्योंकि शाकाहारी पशुओं की संख्या इन बड़े और विशाल मांसाहारियों की अपेक्षा कहीं अधिक है। शाकाहारी पशु जंगलों में झुंड के झुंड चरते हैं और वे घास के साथ साथ अन्य पेड़ पौधों का भी अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि शेर, बाघ और तेंदुए इनका शिकार अपने भोजन के लिए न करें तो जंगल की जंगल इन शाकाहारियों के द्वारा साफ किए जा सकते हैं। इसलिए मांसाहारी जब अपने भोजन के लिए इनका शिकार करते हैं तो इनकी संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ती है, बल्कि शाकाहारियों की संख्या का संतुलन बना ही रहता है और यही संतुलन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि जंगल के चरागाह और पेड़ पौधों से ही पर्यावरण सबसे अधिक सुरक्षित रहता है। वरना शहरों में तो अब सीमेंट और कंक्रीट के जंगल ही उगाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल शहरों में ही सीमेंट और कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, बल्कि अब तो जंगलों के पास और कहीं कहीं पर जंगलों में भी शहर उगने लगे हैं। इसका परिणाम है जानवरों की संख्या में तेजी से कमी आना। यदि किसी भी प्रकार के मांसाहारी जंगल में घायल, मृत अथवा सड़ रहे जानवर आदि का भक्षण करते हैं,
या गिद्ध अथवा चील या गरुड़ आदि पक्षी उसको खाते हैं तो यह सब मिलकर जंगल की सफाई ही करते हैं। यदि ये सभी मांसाहारी जिनमें भेड़िये, सियार, लक्कड़भग्गे, सांप, अजगर आदि छोटे और बड़े जानवरों को या फिर उनके लिए किए गए शिकार को न खाएं, तो किसी भी जंगल की गंदगी और वहां बिगड़ते पर्यावरण को आसानी से सोचा और समझा जा सकता है। श्रोता साथियों, यदि हम शहर की साफ सफाई की बात करें तो वहां पर स्ट्रीट डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते वही भूमिका निभाते हैं जो जंगल में अन्य मांसाहारी जानवर निभाते हैं। ये आवारा कुत्ते कचरे में से सड़ा गला मांस, झूठन की हड्डियां और अन्य फेंकी गई खाद्य सामग्री को खाकर साफ सफाई करते हैं। कभी कभी ये गंदगी भी फैलाते हैं, लेकिन अधिकतर तो यह आवारा कुत्ते साफ सफाई ही करते हैं। उसी तरह से चील और कौवे तथा अन्य चिड़ियाएं या पक्षी जैसे कि कबूतर और ओलगी यानी कि फाख्ताएं भी घर के आसपास फेंकी हुई चीजों में अपना भोजन तलाश कर साफ सफाई का काम ही करती हैं। आइए एक बार फिर जंगल की ओर चलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शेर, बाघ आदि जानवर शाकाहारियों का शिकार करके उनकी संख्या और पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं, लेकिन शेरों की संख्या का नियंत्रण भी मानव ने अपने शिकार की भूख, खाल और दवाइयों में हड्डियों के उपयोग के नाम पर गड़बड़ा दिया है। मध्य प्रदेश में तो शेरों और बाघों का यह हाल है कि हाल ही में केंद्र कर्मियों के द्वारा बाघों की गई गिनती के बाद मध्य प्रदेश को टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर जो विशेष दर्जा दिया गया था वह अब वापस ले लिया गया है, क्योंकि यहां पर बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। यही नहीं, शेर, बाघ और अन्य लुप्त होती प्रजातियों वाले जानवरों की भी यही दशा है। श्रोता साथियों, हालांकि पर्यावरण का संतुलन बैठाते हुए पशु पक्षियों की बात या शीर्षक पर एक सरसरी नजर डाली जाए तो इस बात और इस विषय में कोई गंभीरता या कोई तथ्य नजर नहीं आता है, लेकिन यदि इसी विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार और मनन किया जाए तो सारे तथ्य नजर आने लगते हैं और नजर आने लगती है पशु और पक्षियों की पर्यावरण में महत्ती और आवश्यक भूमिका। शाकाहारी पशु और अन्य पक्षी जब अपने भोजन ग्रहण करने के बाद किसी पौधे के बीजों को अपने मल के साथ बाहर निकालते हैं तो उनमें से ही कई बीज यहां वहां उग कर किसी पौधे, झाड़ी या फिर वृक्ष का रूप ले लेते हैं। इस तरह से शाकाहारी जीव यानी कि पशु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी पौधारोपण या बीजारोपण में अतुलनीय सहायता करते हैं। इस तरह से जंगल में जहां जंगलों के फैलने, बढ़ने और पनपने में सहायता मिलती है, वहीं शहरों में भी व्यक्ति से अधिक यही पशु और पक्षी बीजारोपण कर देते हैं। श्रोता साथियों, इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, उसे शुद्ध रखना चाहते हैं, तो बीजारोपण और पौधारोपण के साथ साथ हमें पशु और पक्षियों को भी बचाना और संभालना चाहिए। उन्हें केवल जानवर या पक्षी कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और न ही उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में शायद वे किसी व्यक्ति से भी कहीं अधिक कार्य करते हैं। इस तरह से श्रोता साथियों, हमें पर्यावरण के संतुलन में पशु, पक्षी और अन्य जानवरों की महत्ती भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जहां तक हो सके हमें पशु, पक्षी और इन सबकी देखभाल करना चाहिए ताकि ये हमें उसके बदले में पर्यावरण को संरक्षित कर सकें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था पर्यावरण का संतुलन बिठाते पशु पक्षी। इस वार्ता के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

साथियों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत SSPS। दोस्तों, अभी की सभा 10 से 11 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य, बाल विकास, बाल जगत और भक्ति गीत। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: ईश्वर ने अपने पुत्र के मानव रूप में जन्म लेने का संकेत उन विधर्मियों को भी दिया जो उसमें विश्वास नहीं करते थे। ये राजा भी विधर्मी थे, मगर उनमें उत्सुकता थी कि वे यहूदियों के राजा को देखें। इसी कारण वे ये सोचकर महल में राजा हेरोद के पास गए कि इस राजा ने यही जन्म लिया होगा। ईश्वर ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये राजा सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, वरन संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए इस धरती पर आया है। इन ज्योतिषियों ने एक तारा देखा, अद्भुत, चमकदार, और किसी विशेष घटना का उससे अनुमान लगाया। उधर चरवाहों ने अपने आसपास ईश्वर की महिमा देखी, अर्थात कहना न होगा, ईश्वर हर एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के अनुसार अपनी ओर बुलाते हैं। वहां इसी निर्दयी राजा हेरोद ने यहूदी याजकों और शास्त्रियों की एक सभा बुलाई।
1: हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहूदियों के राजा मसीह कहाँ जन्म लेंगे।
2: महाराज, मसीह यहूदिया के बैतलहम में जन्म लेंगे, क्योंकि नबी ने इसके विषय में लिखा है, बैतलहम यहूदा की भूमि, तू यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इसराइल का चरवाह बनेगा।
1: बैतलहम, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। राजाओं, ये यहूदी राजा बैतलहम में जन्म लेंगे। जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत कर सकूं। यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा।
0: ये तीन राजा मंजूषी थे। वे उस तारे के रुकते ही इस गौशाला में इस अद्भुत पवित्र परिवार को देख चकित रह गए। जमीन पर सर झुकाकर उन्होंने इस पवित्र बालक को प्रणाम किया और अपनी प्रार्थनाएं उसे चढ़ाई। ईश्वर से इन राजाओं ने अपनी आत्माओं, अपने विचारों व अपने कार्यों पर शासन करने की विनती की। इतना ही नहीं, अपने देशवासियों तथा संपूर्ण विश्व के निवासियों में शांति व दयालुता का वास हो, ये प्रार्थना भी की।
3: ईश्वर का तारा देखा। हम जानते थे कि ये राजा सभी राजाओं पर राज करेगा, इसलिए हम उन्हें दंडवत करने आए तथा अपने उपहार साथ लाए हैं। ये है हमारी ओर से सोना, लोबान और गंधरस। स्वीकार करें प्रभु।
4: प्रभु ईश्वर, आपकी दयालुता से प्रसन्न हैं। आपको इन सब उपहारों के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपकी विनती जरूर सुनेंगे।
0: ईश पुत्र बालक ईसा को देख ये तीनों मंजूषियों ने घर की राह पकड़ी। उनके चेहरे ईश महिमा की ज्योति से चमक रहे थे। उन्हें ईश्वर की महिमा समझ में आ गई थी कि ईश्वर का वास धन संपत्ति व आडंबर में नहीं, वरन दयालुता, नम्रता और धार्मिकता में है। रास्ते में वे इसी पवित्र परिवार की चर्चा करते रहे, मगर रात होने पर उन्होंने मार्ग में ही विश्राम करने के लिए अपने ऊंट रोक दिए। तभी स्वप्न में,
5: मंजूषियों, इसी वक्त उठो और यरूशलेम जाने के बजाय सीधे पूर्व की ओर अपने देश चले जाओ।
0: स्वर्गदूत द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मंजूशी यरूशलेम नहीं गए, वरन दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। यहाँ मरियम ने मंजूशियों द्वारा लाई गई भेंट सामग्री यूसुफ से विचार विमर्श कर पुरोहित, मंदिर और निर्धनों में बांट दी। बालक के जन्म के 40 दिन बाद मूसा की संहिता के अनुसार जब बालक को मंदिर में चढ़ाने तथा माता की शुद्धिकरण का दिन आया तो वे यरूशलेम चल दिए, जहां उन्होंने मंदिर में सोना, लोबान व गंधरस चढ़ाया। वही मंदिर में सिमियोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष रहता था। वो पवित्र आत्मा द्वारा ये सूचना पा चुका था कि बगैर प्रभु मसीह को देखे बिना वो मरेगा नहीं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो मरियम के हाथ में बालक को देख खुश हो गया।
6: प्रभु, प्रभु, अब आप अपने वचन के अनुसार इस दास को शांति के साथ विदा करें, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे आपने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और आपकी प्रजा इज़राइल का गौरव। सुनो, आप इस बालक की माता है ना? देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी।
0: ईश्वरी कृपा तथा सिमियोन नाम के इस वृद्ध पुरोहित द्वारा ये कहे जाने पर कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी, मरियम को ये पता चल गया कि उसका बेटा दुख उठाएगा जो मरियम के लिए असह्य होगा। उसी मंदिर में अन्ना नामक एक नबी स्त्री रहती थी जो आसेर वंशीय फैनुएल की बेटी थी। वो बहुत बूढ़ी हो चली थी। 7 बरस विवाहित रहने के बाद वो विधवा हो चली थी। दिन रात ईश्वर की उपासना में व्यस्त रहने वाली अन्ना भी सिमियोन के समान बालक प्रभु की प्रशंसा करने लगी। उधर शुद्धिकरण के बाद मरियम और यूसुफ यरूशलेम में ही ठहरकर प्रभु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है फादर चार्ल्स वास मुंबई की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी फादर चार्ल्स वास मुंबई की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम का विषय है कामकाजी महिलाएं और उपवास। जी हाँ साथियों, बहुत जल्दी नवरात्र शुरू होने वाले हैं और हम ऐसे समय में देखेंगे कि ढेर सारी कामकाजी महिलाएं हमारे आसपास फलाहार करती हुई, अपने घर का काम भी संभालती हुई, अपनी नौकरी को भी संभालती हुई, अपने बच्चों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर भी ढेर सारे अपने जितने काम है वो सारे करती हुई लगी रहती हैं, धर्म में भी, अपने कर्म में भी, और इस तरीके से एक महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को वो सार्थक करती रहती हैं। लेकिन साथियों, सोचने की बात यह है कि यदि महिला कामकाजी है, यदि घर की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुत सारी है, काम की भी जिम्मेदारी यदि उसके पास में पहले जैसी नहीं, बहुत जिम्मेदारी महिला उठा रही है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि वो उपवास करें तो अपने खान पान का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि कहा जाता है कि एक कामकाजी महिला या फिर घर में एक अकेली महिला का होना यानी वो घर का पावर हाउस होना। जी हाँ, महिला घर का पावर हाउस होती है और यदि उस पावर हाउस में जरा भी गड़बड़ हो यानी उसका स्वास्थ्य जरा भी गड़बड़ाए तो पूरे घर के प्रत्येक सदस्य की दिनचर्या बदल जाती है। और वैसे भी महानगरीय महिलाओं की तेजी से बदलती जीवन शैली ने व्रत उपवास का स्वरूप भी तो बदल डाला है और कामकाजी महिलाओं ने अपने वर्किंग शेड्यूल के हिसाब से आस्था का दीपक जलाए रखकर अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, यहाँ तक कि वे अपने फास्ट को यानी अपने उपवास को भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खोल देती हैं। इसके साथ में ही यदि उस दौरान वीकेंड हो तो उनके घर के सदस्य भी उनको उनके उपवास को एंजॉय करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यस्त कामकाजी महिला से इस बारे में पूछें तो आपको ये सुनने को मिल सकता है कि हमारी जॉब कोई 10 से 5 वाली नहीं है। आज प्रत्येक महिला को उसके काम में रोजाना नए टारगेट्स मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस डीलिंग्स होती हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उनके छोटे बच्चे होते हैं, घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कई बार हमें ये लगता है कि ये महिलाएं नवरात्र के दिनों में 9 दिनों के व्रत कैसे कर पाती होंगी, या फिर वो यदि हफ्ते में एक व्रत भी करती हैं तो वो उनके लिए संभव कैसे हो पाता। रोजाना के भोजन को बनाना और वो सब कुछ समय पर सबको देकर अपने काम पर जाना, वापस आकर वही कवायद करते रहना, यही इतनी बड़ी चीज हो जाती है, इतनी मेहनत से भरा उनका दिन हो जाता है कि ऐसे में उपवास का फलाहार वो भी स्वयं के लिए अलग से बनाना, वो पौष्टिक भी होना चाहिए और उसमें सारी चीजों की पूर्ति होना चाहिए, धर्म शास्त्र के अनुसार भी वो पूरा पूरा सही होना चाहिए, तो ये वो कैसे कर सकती होंगी। लेकिन आज की स्मार्ट महिलाओं को हम देखें तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि फास्ट रखना या उपवास रखना कठिन नहीं है, ये तो उनकी ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति आस्था होती है। और वाकई यदि इन महिलाओं से आप पूछें तो उन्हें ये कहना होता है उनका कि हम जितनी मेहनत करते हैं धर्म के लिए या फिर स्वयं के विचार को लेकर, अपने एक विश्वास को लेकर, तब उसे पूरा करके अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करना और इन सारी चीजों के साथ में स्वयं को फिट बनाए रखना, स्वयं की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना, इसे पूरा करने का अपना ही एक सुख होता है। दूसरी ये चीज होती है कि भारतीय मानसिकता में यदि हम देखें तो इससे ससुराल वाले भी खुश रहते हैं कि उनकी बहू बड़ी धार्मिक है, और रही बात भूखे रहने की तो उसमें कोई मुश्किल नहीं आती है। दरअसल अगर महिला घर से बाहर निकली है तो बड़े छोटे रेस्तरां व्रत रखने वालों की सुविधा के अनुसार खाने पीने की बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं, और खासकर यदि मामला लंबे उपवास जैसे नवरात्र के 9 दिनों के उपवास का होता है, जिसमें अमूमन आपके आसपास की बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष आस्थावश उपवास रखते हैं, तब उस विशेष समय में लगभग सभी रेस्तरां इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आपको कहीं फ्रूट चाट मिल सकता है, कहीं कुट्टू की पकौड़ी मिल सकती है, कहीं पर साबूदाना वड़ा मिल सकता है, तो या फिर कहीं पर आपको खीर मिल सकती है या सिंघाड़े के आटे का हलवा। इसके अलावा मूंगफली, चौलाई और मखाने के नमकीन भी तैयार नमकीन बाजार में मिलते हैं। इतना ही नहीं, सिंघाड़े के आटे की भुजिया भी मिलती है जो कि आलू की भुजिया का स्वाद भी भुला देती है। साथियों, दूसरी ओर कुछ बुद्धिजीवियों का कहना होता है कि ये जो व्रत करने वाले व्यक्ति होते हैं ये व्रत के खाने के ही शौकीन होते हैं और इसीलिए व्रत करते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो ठीक ही है, यदि व्रत के दौरान ही हमें इतना अच्छा खाने को मिले तो ऐसे खाने का मुंह छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। साथियों, यदि हम ये सोचें कि कुछ महिलाएं ये भी होती हैं जो केवल एक फल दिन भर में लेती हैं या फिर केवल 2 लौंग खाकर अपना उपवास रखती हैं, और उनमें उतना सामर्थ्य भी होता है कि वो
इस प्रकार के उपवास कर पाए। दिन भर में यदि ऐसा उपवास वे करती भी हैं तो उनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, और शायद यही वो चीज होती है जिसके चलते उनके मन में धर्म और आस्था बनी रहती है। लेकिन यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, यदि हम प्रायोगिक वर्तमान युग की बात करें, तो साथियों वर्तमान में ढेर सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी सोच इसके बिल्कुल विपरीत होती है। उनका सोचना ये होता है कि हम शरीर को इतना कष्ट क्यों दें। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि यदि हम ऐसे कठिन व्रत करेंगे या फिर ऐसी ही पूजा करेंगे तो ही भगवान खुश होंगे। दरअसल साथियों संदेह इस बात में नहीं है कि जहां लाइफस्टाइल बदली है यानी कि जीवन शैली बदली है, वहां बहुत कुछ बदला है। दरअसल ईश्वर के प्रति आमजन की आस्था पहले से अधिक बढ़ी है, और इसका मुख्य कारण ये भी है कि अब व्रत और उपवास के साथ पूजा की विधियां पहले से ज्यादा आसान हुई है। और यही कारण है साथियों कि आजकल की महिला अपने धर्म को बहुत अच्छे से जानती हैं और अपने कर्म को भी। यही तो कारण है कि अपनी एनर्जी को बनाए रखने के बहुत सारे तरीके भी वो जानती है, और इसी के चलते आज एक समय में इतनी सारी जिम्मेदारियां वो हंसते हुए निभाती भी है। अब यदि हम बात करें कि इन व्रत और उपवास के समय में क्या चीजें ध्यान देने योग्य होती हैं, खासतौर से कामकाजी महिलाओं के लिए, इसलिए बेहतर है कि आप साफ और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करें और अपनी सुविधा और मान्य तरीकों से पूजा करें। ईश्वर अपने भक्त को दुखी देखकर सुखी नहीं होते। व्रत का मकसद मन में आस्था और विश्वास के जरिए सकारात्मक ऊर्जा को लाना होता है। अब इस बात के दूसरे पहलू पर बात करें। बहुत सी महिलाएं केवल ये सोचकर उपवास रखती हैं कि इस बहाने से वे अपनी डाइट पर नियंत्रण रख पाएंगी और सही मायनों में डाइटिंग कर पाएंगी, लेकिन साथियों 9 दिनों के बाद होता बिल्कुल उल्टा है। वे वजन कम करने की बजाय गेन कर लेती हैं, और उसकी वजह है बाजार में उपलब्ध ढेर सारे व्यंजन और व्रत की वे तमाम चीजें जो घी और तेल से भरपूर कैलोरी मिनटों में बढ़ाती हैं। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो आपको अपना लक्ष्य सही रखना चाहिए कि आप उपवास किस लक्ष्य को लेकर कर रही हैं। मुद्दा धर्म और आस्था है या डाइटिंग? जितना हो सके पानी पीना और तरल पदार्थ लेना चाहिए। दरअसल भोजन करते समय आपको कैलोरी इंटेक पर कम और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। होता यही है कि हम फलाहार कर रहे हैं इस वाक्य के नाम पर ढेर सारा घी, खूब सारा आलू, ढेर सारी कैलोरी, बहुत सारा वसा और इसी से मिलती जुलती ढेर सारी चीजें अपने भोजन में ये कहकर हम शामिल कर लेते हैं कि हम तो फलाहार कर रहे हैं और अन्न तो हम ले नहीं रहे। कई बार सभी के मन में इस प्रकार की एक गलत अवधारणा होती है कि यदि हम अन्न का सेवन नहीं कर रहे हैं तब हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, और कई बार हमें व्यवहारगत तरीके से देखा जाए तो ये चीज सही भी लगती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब तक मनुष्य अन्न नहीं खाता तब तक उसे भोजन करने का पूरा आनंद नहीं मिलता। और ऐसे ही कामों के चलते आप हमेशा यदि फलाहार करते रहें और ये मानते रहें कि आपके वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आपकी भूल रहती है। इसके साथ ही साथियों यदि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो दही, दूध, पनीर और फलों का सेवन करना लंबे उपवास में बहुत मदद करता है। साथियों उपवास के दौरान एक बात खास ख्याल रखने की होती है कि यदि आपको पहले से कोई बीमारी है, मान लीजिए यदि आपको मधुमेह है या फिर आपको रक्तचाप है, तब ऐसे में उपवास के समय आपको भोजन में बदलाव लाने और स्वयं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे एसिडिटी ज्यादा हो। दिन भर भूखे रहने के बाद यदि शाम को व्रत खोलते हैं उस समय बहुत हैवी खाना नहीं खाएं। कोशिश ये करें कि दिन भर भूखे ना ही रहें। हर 2 या 3 घंटे के अंतराल से या तो फल लें या दूध से बना कोई पेय लें। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन व्रत के दिनों में फायदा नहीं करता, इससे आपको नुकसान ही होता है। कई बार हमें चाय या कॉफी पीने की लत होती है, और ऐसे में यदि आप उपवास का खाना खा रहे हैं इसका मतलब है आप रोजाना का भोजन नहीं कर रहे हैं, तब खाली पेट बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीना आने वाले समय में आपको एसिडिटी को स्थायी रूप से आपके शरीर में रहने का आमंत्रण देना है, ऐसा समझें। साथियों रोगियों और वरिष्ठ जनों और बच्चों को जितना हो सके उतना उपवास से बचना ही चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की डाइटिंग के लिए व्रत रख रही हैं या फिर वजन कम करना
आपके व्रत का प्रमुख उद्देश्य है और थोड़ा सा धर्म का लाभ भी आपको कमा लेना है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने उपवास शुरू करने से 2 या 3 दिन पहले किसी अच्छी डाइटिशियन से मिले, एक पोषण आहार विशेषज्ञ से मिले, उन्हें अपना लक्ष्य अच्छे से साफ तरीके से बता दें, अपना शेड्यूल बनाए और उसे फॉलो करें। यदि उपवास का आधार धर्म है तो व्रत की पार्टियां करके और सेलिब्रेशन बनाकर उसे नष्ट ना करें। साथियों, आज का समय यदि धर्म और आपका कर्म इन दोनों के अच्छे संतुलन का है, तब हमें धर्म की आस्था और उसकी नींव को हिलने नहीं देना है और कर्तव्यों का निर्वहन तो करना ही है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है फादर चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी फादर चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

एक नगर में गंगादीन नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, परंतु वह बहुत कंजूस था। वह अपने पत्नी व बच्चों को न तो भरपेट खाने को देता और न ही ढंग के कपड़े पहनने को देता था। इस कारण उसके परिवार के लोग अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश थे। नगर में उसकी कंजूसी की मिसालें दी जाती थी। एक दिन गंगादीन टहल रहा था। टहलते टहलते वह एक भोजन की दुकान के सामने से गुजरा तो उसे उस दुकान में बन रहे पकौड़ों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। पकौड़ों की सुगंध से उसके मुंह से लार टपकने लगा। उसने सोचा, यदि मैं दुकान पर जाकर पकौड़े खाए तो हो सकता है कि मुझे कोई दोस्त मिल जाए, तब मुझे उसके साथ पकौड़े बांटकर खाने पड़ेंगे। फिर गंगादीन ने सोचा, ऐसा करता हूँ, मैं पकौड़े घर ले जाता हूँ, लेकिन यदि घर ले जाऊंगा तो घर में पत्नी व बच्चों के साथ पकौड़े बांटने पड़ेंगे। फिर वह कुछ सोचकर सीधे अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे पकौड़े

दौलत गरीबों को दान करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी जो भी सामान चाहिए वे मेरे घर से आकर ले लें। मैं इस सेवा कार्य के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। गंगा जी के मुँह से ये बातें सुनकर राजा हैरान रह गए, क्योंकि वे गंगा जी की कंजूसी की प्रवृत्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने गंगा जी को तुरंत इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी। राजा से आज्ञा लेने के बाद गंगा जी का हमशकल सीधे गंगा जी के घर गया और उसकी पत्नी से बोला, अलमारी में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और बाजार से अपने बच्चों व अपने लिए कपड़े खरीद लो। गंगा जी की पत्नी ने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं ली और गहने व कपड़े खरीदने के लिए चली गई। उधर गंगा जी के घर पर नगर के अन्य लोग सामान लेने के लिए भी आने लगे थे, परंतु गंगा जी इस सबसे बेखबर पेड़ के नीचे बैठकर चाव से पकौड़े खा रहा था। पकौड़े खा लेने के बाद वो अपने घर पहुंचा, तो उसने लोगों को अपने घर से सामान ले जाते हुए देखा। यह देखकर वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे चोर, मेरा सामान कहाँ लिए जा रहे हो? अरे कोई तो इन्हें रोको। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी गंगा जी की नजर अपने हमशक्ल पर पड़ी। उसे अपनी पत्नी एवं बच्चों को भी अच्छे कपड़े एवं गहनों से सुसज्जित देखा तो चकित रह गया। उसके समझ में कुछ नहीं आया। वह न्याय पाने के लिए सीधे राज दरबार में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। जल्द ही गंगा जी का हमशकल और गंगा जी की पत्नी भी राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने गंगा जी की पत्नी से कहा, असली गंगा जी को पहचानने को कहा, परंतु वह नहीं पहचान पाई। तब गंगा जी ने परेशान होकर अपने हमशकल से कहा, कृपा करके तुम ही बता दो कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। गंगा जी का हमशकल बोला, मैं तुम्हारा स्वर्गवासी पिता हूँ, इसलिए एकदम हूबहू तुम्हारी तरह दिखता हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से जोड़ जोड़ कर धन दौलत इकट्ठा की ताकि तुम लोग आराम से रह सको, परंतु तुमने तो कंजूसी की हद कर दी। सारी धन दौलत पर कुंडली मारकर बैठ गए, यहाँ तक कि मेरी बहू और पोते पोतियों को भी ढंग का खाना और ढंग के कपड़े भी नहीं दिए। तुम्हारी इस हरकत से मुझे बड़ा दुख हुआ। यह कहकर वह गायब हो गया। गंगा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण किया कि आज से वह कंजूसी छोड़ देगा और अपने पत्नी या बच्चों का अच्छी तरह ध्यान रखेगा।

साथियों, अभी आपने सुना बाल जगत। साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब सुनते हैं एक बाल गीत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्राचीन काल में एक गांव में एक सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि अपने नौकरों को काम करने के बाद मजदूरी तक नहीं देता था। इसीलिए उसके यहाँ कोई भी नौकर काम करने को तैयार नहीं होता था। उसके खेतों पर काम करने वाले मजदूरों ने भी उसका खेत जोतने से मना कर दिया। इस तरह उसके खेत बंजर पड़े थे और सिंचाई के लिए काम आने वाले पोखर और कुएं भी सूख गए। खेती और व्यापार ठप हो जाने से सेठ दिनों दिन गरीब होता गया। इतना सब हो जाने पर भी उसका व्यवहार जस का तस रहा। वह भी बहुत ही घटिया और जिद्दी इंसान था। उसे भूखों मरना गवारा था, पर अपनी तिजोरी खोलना नहीं। एक दिन गांव में एक बहुत ही नामी गिरामी महात्मा जी आए। सेठ ने सुना कि महात्मा जी के पास अपार सिद्धियां हैं और वह हर समस्या का हल निकाल देते हैं। साहस करके सेठ महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मन, मैं आजकल बड़ी मुसीबत से घिरा हूँ। मेरे खेत बंजर पड़े हैं और खलियानों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। नदी तालाब और कुएं सूख गए हैं। मेरे यहाँ कोई भी नौकर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। महात्मन, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे इस घोर संकट से बचाइए। महात्मा बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम 3 महीनों तक यदि सुबह शाम इस मंत्र का जाप करोगे तो 4वें महीने के पहले दिन तुम्हारे सम्मुख एक ब्रह्म राक्षस प्रकट होगा। वह एक दास की तरह तुम्हारी सेवा करेगा। तुम जो भी आदेश दोगे उसे पूरा करेगा, क्योंकि वह अकेला ही 100 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। खुश होकर सेठ महात्मा के चरणों में गिर गया और उनसे मंत्र और जाप की सारी विधि बताने के लिए कहा। महात्मा जी ने उसे मंत्र देकर और भली बात भी समझा बुझाकर विदा किया। सेठ ने 3 महीनों तक लगातार मंत्र का जाप किया और महात्मा जी के कहे अनुसार 4वें महीने में ब्रह्म राक्षस उसके सम्मुख प्रकट हुआ। सेठ के समक्ष प्रकट होते ही वह बोला, भगवान, आपने मुझे क्यों याद किया है? आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? सेठ अपने सामने ब्रह्म राक्षस को देखकर पहले तो डर गया, फिर वह साहस जुटाकर बोला, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए तुम्हें मेरे भी आदेशों को मानना होगा। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है भगवान, मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। किंतु आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? सेठ ने पूछा। ब्रह्म राक्षस बोला, मेरी शर्त है कि आपको मुझे हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना होगा, वरना मैं आपको और आपके परिवार को मार दूंगा। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे इतना अच्छा नौकर मिला है जो हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है। इसके बाद सेठ ने ब्रह्म राक्षस को एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए कहा, इस कुएं को 2 किलोमीटर लंबा और खोदो। जो आज्ञा भगवान, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। सेवक ने नम्रता से कहा और काम शुरू कर दिया। सेठ ने सोचा कि ब्रह्म राक्षस को इतना बड़ा कुआं खोदने में कई महीने लग जाएंगे, पर उसने घर जाकर खाना ही खाया था कि ब्रह्म राक्षस काम खत्म करके वहाँ पहुँच गया। सेठ हैरान होकर पत्नी से बोला, यदि यह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो हम इसे कब तक काम दे पाएंगे? इस तरह तो एक दिन खाली होकर यह हम सबको मार डालेगा। पत्नी सेठ को दिलासा देते हुए बोली, स्वामी, आप चिंता न करें, आप जब तक उसे काम दे सकते हैं दें, उसके बाद में मैं उसे ऐसा काम दूंगी जिसमें वह लंबे समय तक लगा रहेगा। सेठ ने उसे कई काम करने को दिए, पर उन कामों को उसने मिनटों में निपटा दिया। फिर ब्रह्म राक्षस ने गरज कर कहा, कोई और काम बचा है तो बताएं। वह सोच रहा था कि अब मालिक के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह शर्त के मुताबिक उनको मारकर खा लेगा। सेठ बोला, मेरी पत्नी का एक काम तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस काम को पूरा करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे।
इसके बाद सेठ की पत्नी ने अपने सिर से एक बाल तोड़कर ब्रह्म राक्षस को देते हुए कहा, इस बाल को सीधा करके मुझे दो। ब्रह्म राक्षस ने बाल लेकर उसे सीधा करने का बहुत प्रयास किया, पर वह उसे सीधा नहीं कर पाया। तब ब्रह्म राक्षस ने सोचा, सुनार सोने के तार को आग में गर्म करके सीधा करता है, क्यों न मैं भी उसी उपाय को अपना कर देखूं? यह सोचकर उसने जैसे ही आग के सामने बाल को किया, बाल जल गया। ब्रह्म राक्षस डर गया कि उसका मालिक काम पूरा न होने पर उसे दंडित करेगा, इसलिए वह वहाँ से कहीं दूर भाग गया।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब सुनते हैं हम एक और भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब मैं अगली सभा का निर्देशन के लिए आमंत्रित करती हूं विवेक पीटर रॉबर्ट को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: एक बात ये बताइए कि क्या कृषि में भी निवेश की संभावना को जागृत करने की जरूरत है?
1: वीरेंद्र भाई, कृषि में भारी निवेश, खास करके तकनीक, सिंचाई, भंडारण, प्रसंस्करण में करने की जरूरत है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सरकार के पास इसके लिए योजनाएं तो हैं, लेकिन राशि का व्यय नहीं हो पा रहा है।
0: इसके पीछे मुख्य कारण क्या है मुखिया जी?
1: इसका कारण है किसानों के पास इन पूंजी के ग्रहण को लाभ उठाने के लिए कमी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: यानी
0: पूंजी की कमी है।
1: हाँ, पूंजी की कमी है और वे उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।
0: जी,
1: होना ये चाहिए कि सरकार इन तकनीक, सिंचाई, भंडारण की व्यवस्था, प्रसंस्करण में निवेश स्वयं करे और फिर उसके परिचालन के लिए लंबे लीज पर कृषि समूहों या संस्थाओं को प्रदान कर दिया जाए।
0: इस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
1: इससे किसानों के पास नई तकनीक भी आएगी, कृषि उपज में अप्रत्याशित वृद्धि भी होगी और साथ में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी ग्रामीण स्तर पर होगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कृषि के क्षेत्र में एक प्रणाली अपनाने की बात कही जा रही थी, वो
1: एकल खिड़की। हाँ
0: जी जी, एकल खिड़की प्रणाली, वो क्या है मुखिया जी?
1: तो अगर कृषि के क्षेत्र में भी एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत की जाती है तो किसानों को अपने अलग अलग काम के लिए अलग अलग अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें इससे छुटकारा मिलेगा।
0: जी जी,
1: इससे किसानों को कई तरह की समस्याओं का निवारण हो सकेगा और समय के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा।
0: अब देखना यह है कि यह बिहार सरकार खास करके इस दिशा में क्या कुछ कर पाती है। बिहार की काया, हृदय और आत्मा कही जाने वाली कृषि में संस्थागत नीतिगत डिलीवरी प्रणाली में परिवर्तन लाकर एक नया स्वर्णिम भविष्य दिखने की दृढ़ इच्छा रखती है हमारी सरकार या नहीं? यह एक ऐसा कदम होगा जिससे कृषि और किसान प्रतिष्ठित होंगे और साथ ही साथ उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी हो पाएगा।
1: लेकिन एक बात यह भी है वीरेंद्र जी कि हमारे देश की सरकारें दो चीजों को स्वीकार करने से परहेज करती हैं।
0: जी जी,
1: इनमें एक है कृषि संकट और दूसरा है इसी संकट से उपजा खाद्य संकट।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बाकी औद्योगिक या वित्तीय संकट से लेकर व्यावसायिक मंदी तक सरकारें थोड़ा नानुकुर करने के बाद सब इसलिए स्वीकार कर लेती हैं कि इन सब का बोझ वे मेहनत कश जनता पर लाद सकती है और सरकारी खजाने से पूंजीपतियों को भरपाई कर सकती है। इन संकटों का असर छटनी, बेरोजगारी बढ़ने, वेतनमान या वेतन में कटौती जैसी चीजों में अभिव्यक्त होती है और जनता से कमर कसकर इस संकट से पार पाने में कुर्बानी देने की गुहार लगाई जाती है। लेकिन कृषि संकट का मामला बिल्कुल अलग है। अव्वल तो इसकी चरम अभिव्यक्ति बड़ी भयानक है। जहां कृषि संकट की चरम अभिव्यक्ति बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या में होती है तो दूसरी तरफ खाद्य संकट अभिव्यक्त होता है भूख से होने वाली मौतों में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, लेकिन सरकार इन दोनों बातों को मानने से इनकार कर देती है और दूसरा बहाना ढूंढ देती है। ये बात भी तो सही है ना मुखिया जी?
1: आपका कहना सही है, सरकार दोनों किस्म की घटनाओं के असली कारणों को मानने से साफ इनकार कर देती है और इसे ढकने के लिए गृह कलह, नशाखोरी और आपसी रंजिश से लेकर अखाद्य सेवन और रोग भोग तक सारे बहाने बना लिए जाते हैं। दरअसल कृषि संकट को ईमानदारी से हल करने की कोशिश की जाए तो सरकार को अपनी नीतियों को भी उलटना होगा जो देशी विदेशी पूंजीपतियों को मंजूर नहीं है। इसलिए सरकार ने समस्या से पार पाने के लिए विश्व बैंक, IMF, WTO द्वारा सुझाए नुस्खों की शरण ले रखी है और ये कृषि अर्थतंत्र को आदि से लेकर अंत तक सारी प्रक्रियाओं को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने पर आमादा है।
0: जनवरी 2010 में प्रकाशित एक लेख में पी साईनाथ ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया था मुखिया जी कि 1997 से लेकर के 2008 तक की अवधि में संपूर्ण भारत में करीब 2,00,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अकेले 2008 में हुई अगर आत्महत्याओं का जिक्र करें तो उसकी तादाद शायद 16,196 थी।
1: परिघटना की विडम्बना यह है कि आत्महत्या की घटनाएं ऐसे राज्यों में तो अधिक हुई हैं जहां कृषि अपेक्षाकृत अधिक विकसित है
0: जी।
1: जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और केरल में। लेकिन सिर्फ वही नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे सर्वाधिक विकसित औद्योगिक राज्यों में भी आत्महत्याएं ज्यादा हुई हैं।
0: हमारे देश में सिर्फ 40% खेती लायक भूमि को ही सिंचाई की सुविधा हासिल है, या यूं कहें कि सिंचाई की सुविधा का लाभ उन्हें प्राप्त है। तो क्या ऐसे में उन्नत कृषि की कल्पना की जा सकती है?
1: एकदम ठीक कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय कृषि की सेहत कमोवेश इंद्र देवता की कृपा पर निर्भर करती है। इस साल के सामान्य मॉनसून और कृषि क्षेत्र में विस्तार को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी। कृषि मंत्रालय ने अपने शुरुआती आकलन में ही कहा था कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल खरीफ की फसल 10.4% अधिक होगी। जाहिर है पिछले साल हुई अच्छी बारिश ने भू जल स्तर को फिर से चार्ज कर दिया है और इससे रबी की अच्छी फसल को लेकर आशाएं बढ़ गई हैं।
0: तो क्या सकल घरेलू उत्पाद GDP की भी बढ़ने की संभावना है?
1: पिछले साल के कमजोर आधार को देखते हुए हमें आशा है कि इस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कहीं अधिक होगा।
0: लेकिन अगर इस वर्ष मानसून तो समान रही, मान लिया जाए ऐसा, तो इसका असर कृषि क्षेत्र पर कैसे पड़ेगा मुखिया जी?
1: इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने के बावजूद चिंता की एक बड़ी वजह है उसका देश के विभिन्न इलाकों में असामान्य रूप से कृपालु होना।
0: जी जी।
1: क्योंकि देश में बारिश सभी जगह सामान्य नहीं होती, कहीं अधिक होती है तो कहीं बहुत कम होती है।
0: पिछले वर्ष तो बिहार की स्थिति तो सामान्य से भी काफी कम रही थी अगर बारिश की बात की जाए।
1: हाँ, सिर्फ बिहार में ही नहीं, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा मानसून के असामान्य व्यवहार के भयंकर कोपभाजक बने। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल करीब 7.3% अधिक क्षेत्र में खरीफ की खेती की गई है।
0: जी जी।
1: गौर करने वाली बात है कि इस वर्ष दलहन की खेती में जहां 22% की वृद्धि हुई है, वहीं गन्ने की रोपाई के क्षेत्र में भी 15.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
0: इसका क्या कारण है मुखिया जी, इन फसलों की खेती में वृद्धि हुई है, क्या कुछ खास वजह?
1: जाहिर है, दालों और चीनी के दाम में पिछले साल जबरदस्त उछाल देखा गया था।
0: अच्छा।
1: शायद यही कारण रहा होगा। बहरहाल, कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण मौसम के असामान्य व्यवहार के बावजूद इस वर्ष के कृषि पैदावार पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।
0: हमारे देश में कृषि जो है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हो गई है।
1: हाँ,
0: यह कृषि के लिए कोई आदर्श सूचक नहीं है मुखिया जी?
1: हमारे देश में अच्छी पैदावार मानसून के बेहतर प्रदर्शन पर निर्भर है।
0: जी,
1: आप जानते ही हैं, कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है।
0: जी जी।
1: ये यानी कि कभी दांव किधर लग जाए, लेकिन उसके व्यवहार में इन दिनों जो असमानता देखी गई है उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी लाजिमी है। पिछले कुछ वर्षों से मानसून के विफल होने की रफ्तार जहां तेज हुई है, वहीं इस बारे में अनुमान लगाने में चूक की गति भी बढ़ गई है।
0: बिल्कुल मुखिया जी सही कह रहे हैं कि मौसम का जो मिजाज है वो बदलते जा रहा है, खासकर हाँ। के आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे उस पर कहना बहुत मुश्किल है। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे चर्चा करेंगे मौसम के बारे में और कृषि के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं मुखिया जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: पिछले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्याम जी जमीन अधिग्रहण से संबंधित कानून के बारे में।
2: हाँ,
0: जमीन अधिग्रहण से संबंधित अगर दो प्रमुख मुद्दों पर बात करना चाहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात सामने निकल करके आती है?
2: देखिए, क्योंकि ये मुद्दा दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है।
0: जी,
2: फारबिसगंज की घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई कि कई दूसरी घटनाएं उबल रही हैं। सरकार चाहती है उद्योग लगाने के लिए, लेकिन जमीन पर आएगा कहां से?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसके लिए न तो सरकार के पास कोई ठोस नीति है और न ही सही दिशा में पहल करने की कोशिश की जाती है।
0: जी,
2: साधारणतः आम किसान प्रभावित होते हैं और उन्हें अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ता है।
1: आप सही कह रहे हैं श्याम जी। देखिए, जमीन अधिग्रहण के मामले में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला ये कि निजी उद्योगों के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण न करे और कंपनियां खुद ही किसानों से जमीन खरीदे। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि स्थानीय संस्थाएं यानी पंचायत वगैरह को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। संसदीय समिति की सिफारिश थी कि कंपनियां अगर 80% जमीन के लिए भूमि मालिकों की मंजूरी ले लेती है तो तभी 20% जमीन बेचने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
0: लेकिन श्याम भाई, सुनने में आ रहा है कि सरकार ने इस सीमा में भी संशोधन किया है, अब उसका नया मापदंड क्या है?
2: सरकार ने ये सीमा 80% से घटाकर 66% कर दी है।
0: अच्छा,
2: ये भी प्रस्तावित था कि जो अधिग्रहण अभी पूरा नहीं हुआ है वो भी इसके दायरे में आ जाएगा। अब सरकार ने एक निश्चित अवधि तय कर दी है। सरकार इस विधेयक पर एक राय बनाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि उसने सभी पार्टियों को विधेयक बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की भी कोशिश की थी।
0: जी जी,
2: पर राजनीतिक माहौल जैसा है उसमें संसद में कितनी सहमति बना पाना बहुत मुश्किल काम है किसी भी मुद्दे पर।
0: जी जी बिल्कुल। आपका क्या मानना है कपूर साहब, अब तो यह विधेयक कानून बन गया है तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेगा?
1: वीरेंद्र जी, इस विधेयक के कानून बन जाने से तो जमीन अधिग्रहण में मौजूद अनिश्चितता काफी कम हो गई है, लेकिन उद्योगों के लिए जमीन पाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है।
0: जी,
1: एक तो जमीन के कारोबार को जमीन माफिया से छुड़ाने के लिए कुछ करना होगा जो जमीन के हर सौदे को मुफ्त पैसा बनाने का माध्यम मानता है।
0: भूमि खरीद पर सरकारी नियंत्रण हट जाने से
1: जी
0: तो इन लोगों को और काफी बोलबाला हो जाएगा। बिल्कुल, इस बारे में आप क्या कहते हैं?
2: भूमि खरीद की प्रक्रिया से सरकार के हट जाने के बाद इस तरह के तत्वों को ज्यादा अवसर मिल सकता है।
0: जी बिल्कुल,
2: और वे किसानों व उद्योग दोनों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनता को भी ये समझाने और साबित करने की जरूरत है कि औद्योगिकरण से उन्हें लाभ ही होगा।
0: ऐसा तो हर कोई दावा करता है कि उद्योगों से स्थानीय जनता को लाभ होगा, लेकिन जब प्रतिफल सामने आता है, जब नतीजा सामने आता है तो स्थानीय जनता के जिम्मे कुछ भी हाथ नहीं आता है कपूर साहब, सिवाय उनको पछताने के।
1: सही बात कह रहे हैं, ये बात एकदम सही है कि औद्योगिकरण से ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं और ज्यादा विकास होता है, लेकिन इस विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी होगी ये सुनिश्चित करना सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है।
0: जी,
1: ये बात औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों के लोगों को ज्यादा मालूम है और वे इसे अच्छी तरह से समझते भी हैं कि कैसे वे इसका लाभांश और हक हासिल कर सकते हैं।
0: क्या इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण करना और राज्यों की उपेक्षा ज्यादा आसान हो गया है श्याम भाई?
2: हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा वीरेंद्र भाई। इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन हासिल करना पश्चिम बंगाल या बिहार के मुकाबले आसान है। औद्योगिक संस्कृति का विकास तभी ठीक से होगा जब उसमें सबके विकास का आश्वासन हो।
0: शुरुआती दौर में जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ग्वालियर पहुंचे थे, जब जमीन का आंदोलन शुरू हुआ था, तो खास करके भूमिहीनों, आदिवासियों और गरीब लोगों में एक उम्मीद सी जगी थी। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा या क्या कुछ उम्मीद जगी थी उन लोगों को?
1: देखिए वीरेंद्र जी, गांधी जयंती के दिन जब भूमिहीनों, आदिवासियों और छोटे किसानों के सम्मेलन के लिए पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ग्वालियर पहुंचे थे तो बहुत से लोगों खासकर आंदोलनकारियों को उम्मीद थी कि वो भूमि सुधार नीति या इससे संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा अवश्य करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं।
3: अच्छा अच्छा।
1: पर अब 50,000 आंदोलनकारियों की ग्वालियर से दिल्ली की पद यात्रा से बने माहौल में जो समझौता हुआ था वो उम्मीद जगाता था। ये ध्यान रखना होगा कि कहीं समझौता कागजों पर ही न रह जाए, पिछले अनुभव भी यही कहते हैं।
0: एक सवाल यह भी उठता है श्याम जी कि इस तरह भूमिहीनों से भूमि देने के झूठे वादे कब तक किए जाते रहेंगे, कब तक उन्हें झांसे में रखा जाएगा, ये पता नहीं चलता है।
2: देखिए वीरेंद्र भाई, बात बहुत साफ है कि देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां भूमिहीनों को भूमि देने के वायदे तो मिले पर जमीन नहीं मिली।
0: जी जी।
2: अब जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाका है बांदा
0: जी,
2: तो बांदा जिले के सीआर पाखा गांव में लगभग एक दर्जन दलित परिवार ऐसे हैं जो पिछले 30 वर्षों से आवंटित भूमि को जोतने का प्रयास कर रहे हैं पर उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है।
0: जी जी।
2: लेखपाल और तहसीलदार के चक्कर लगाते लगाते उम्र बीत गई पर उन्होंने पट्टे पर कब्जा नहीं दिलवाया।
0: तो क्या उनकी भूमि पर दबंगों का कब्जा है?
1: जी हाँ, उनकी भूमि पर गांव के दबंगों का कब्जा है। एक दलित किसान हिम्मत कर अपनी खेत जोतने चला गया तो दबंगों के हाथों पीट कर लौटा।
0: श्याम भाई, ये तो सिर्फ एक गांव का उदाहरण है, ऐसे तो हमारे देश में हजारों गांव होंगे।
2: हाँ।
0: जहां गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को जमीन के लिए रोज प्रताड़ित होना पड़ता है।
2: बिल्कुल, कहना सही है आपका वीरेंद्र भाई। ऐसे न जाने कितने गांव हैं जबकि जरूरत यह थी कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत इन सभी परिवारों को कब्जा तो मिलता ही, साथ ही लघु सिंचाई, मेड़बंदी जैसी सहायता भी मिल जाती।
0: जी।
2: ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर करीब 10 से 20 करोड़ भूमिहीन व सीमांत किसान परिवारों की कृषि व आवास भूमि का हक मिलना बाकी है।
0: हमारे यहाँ भूमिहीन किसानों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ खास वजह है कपूर साहब?
1: इसके अलावा कई ऐसे किसान भी हैं जिन पर भूमिहीन बनने का संकट मंडरा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: इसे रोकने की नीति बननी भी जरूरी है। उपजाऊ कृषि भूमि से किसानों को वंचित होने की आशंका को कम से कम करना चाहिए। सही नीतियों से कई तरह के विस्थापन रोके जा सकते हैं।
0: इस मामले में आदिवासी बहुल इलाकों की हालत पर अगर गौर किया जाए तो लगता है कि वो बद से बदतर होती जा रही है। राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के नाम पर उन्हें विस्थापित करने की प्रक्रिया तेज होती जा रही है,
2: जबकि जरूरत यह है कि राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों से वनवासियों को हटाने के स्थान पर उन्हें वन्य जीव संरक्षण के कार्य से जोड़ा जा सके।
0: जी जी जी।
2: यदि ये समुदाय वन और वन्य जीव की रक्षा में आजीविका प्राप्त करें तो विस्थापन भी रुकेगा और पर्यावरण की बेहतर रक्षा भी हो सकेगी।
0: तो ऐसी परिस्थितियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है कपूर साहब?
1: देखिए वीरेंद्र जी, वन अधिकार कानून के अनुचित क्रियान्वयन के कारण भी अनेक वनवासियों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि ये कानून मूल रूप से आदिवासियों से हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया था।
0: जी।
1: भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था करने के साथ जो पहले से विस्थापित लोग दर दर भटक रहे हैं उनसे न्याय करना भी जरूरी है।
0: बहुत सारे किसान कर्ज के कारण भी भूमिहीन होने पर मजबूर हैं। उनके लिए किस तरह का कदम उठाने की जरूरत महसूस करते हैं श्याम भाई?
2: देखिए, कर्जग्रस्त होने के कारण जिन किसानों की भूमि छिन रही है उनकी खेती किसानी बचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे किसानों के भूमिहीन बनने का सिलसिला रुक सके। ऐसा काम अपने आप ही हो जाना चाहिए था बिना भूमिहीनों के दिल्ली कूच के ही।
0: एक बात ये बताइए कपूर साहब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट में किस बात का जिक्र किया गया है?
1: ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 दशक से हमारा देश 9 उदारवादी आर्थिक सुधारों के जिस रास्ते पर चल रहा है उससे एक देश में ही 2 अलग अलग देश बन गए हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन दोनों के बीच यानी अमीरों के इंडिया और गरीबों के भारत के बीच की खाई बढ़ती जा रही है
0: जी।
1: रिपोर्ट बेशक यह स्वीकार करती है कि विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो 1990 के दशक के मध्य से लेकर 2007 और 8 के बीच अल्प पोषितों की संख्या में बढ़ोतरी ही दर्ज हुई है। जाहिर है ये साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के कुपरिणामों को ही दिखाता है।
0: ताजा तरीन एक पुस्तक आई है इंडिया बनाम भारत, जिसमें विनय सिंगर साहब ने उसको लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: उसमें ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का काफी कुछ जिक्र आया है और काफी कुछ डाटा भी है जिसको मैं नहीं रख पाऊंगा अभी। एक बात ये बताइए श्याम भाई कि भारत की लगभग 2/3 आबादी जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर है, इसलिए जमीन अधिग्रहण का मामला कुछ ज्यादा ही संगीन हो जाता है, आप क्या मानते हैं?
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज अगर हर राज्य में बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहित किए जाने से किसान और मजदूर आंदोलित हैं। कई इलाकों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के इतने उग्र और हिंसक आंदोलन हुए हैं कि पुलिस को लाठियां या गोलियां बरसानी पड़ी हैं।
1: सही आप कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के सुंगूर और नंदीग्राम का भूमि अधिग्रहण विवाद आज भी लोगों को याद है। नंदीग्राम के इंडोनेशिया के सलेम समूह के रासायनिक संयंत्र के लिए जब 10,000 एकड़ भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का राज्य सरकार ने प्रयास किया तो स्थानीय ग्रामीणों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा
0: जी।
1: सरकार ने नंदीग्राम में लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी। पुलिस ने जन आरोष को दबाने के लिए गोलीबारी भी की जिसमें 14 ग्रामीण मारे गए और लगभग 70 जख्मी हो गए।
0: कपूर साहब और श्याम जी, जमीन अधिग्रहण का कानून काफी जटिल नहीं है और उससे पूंजीपतियों को ही फायदा होने वाला है, उद्योगों को ही फायदा होने वाला है। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, अभी हम लोग चलते हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: जी। आपको भी धन्यवाद।
2: नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है विलक्षण व्यक्तित्व राहुल सांकृत्यायन। इस वार्ता के संलग्नकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस।

व्यक्ति विशिष्ट के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता विलक्षण व्यक्तित्व राहुल सांकृत्यायन। इसके संकलनकर्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के ग्राम पंधा में 9 अप्रैल 1993 को महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। उनका नामकरण केदारनाथ पांडेय के रूप में किया गया था, लेकिन अपनी युवावस्था में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर अपना नाम उन्होंने राहुल रख लिया तथा अपने संस्कृति गोत्र के कारण सांकृत्यायन लिखने लगे थे। उनके विलक्षण व्यक्तित्व का आभास केवल इसी बात से हो जाता है कि वे 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। भारत के अलावा श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत और चीन आदि देशों में भी उनका आना जाना और संपर्क रहा है। अपने जीवन काल में उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकों की रचना की। उनका अंतर स्वयं में एक विश्वकोश था। हिंदी के साहित्य भंडार को उन्होंने कितना समृद्ध किया है, इस बात का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित कई साहित्य अब तक अप्रकाशित हैं तथा उनके द्वारा की गई खोजों का अब तक पूर्ण रूप से मूल्यांकन भी नहीं हो पाया है। उनके द्वारा रचित विषयों को देखा जाए तो उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, यात्रा वर्णन, कोश, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, कोई भी विषय उनसे छूटा नहीं है। सभी विषयों पर उन्होंने समान रूप से अपनी कलम चलाई है। कोई भी विषय उनसे छूटा नहीं है। उन्होंने समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। उनके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथों में उन्होंने संस्कृत और तिब्बती भाषा में प्रयोग किए। कथा साहित्य में उनके द्वारा लिखे दो उपन्यास सिंह सेनापति और जय योद्धे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उनके द्वारा रचित कहानी संग्रहों में सतमी के बच्चे और वोल्गा से गंगा तक कहानी संग्रह बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उनके द्वारा संपादित किया गया राष्ट्रभाषा कोश एक ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने मार्क्स, स्टालिन, माओत्सेतुंग जैसी महान हस्तियों से लेकर क्रांतिकारी सरदार पृथ्वी सिंह, चंद्र सिंह गढ़वाली के अलावा असहयोग आंदोलन के अन्य साथियों की जीवनियां भी लिखी। इसके साथ साथ वैज्ञानिक, भौतिकवाद, दर्शन, दिग्दर्शन और बौद्ध दर्शन जैसी विद्वतापूर्ण पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक बेजोड़ है। उनकी यात्रा संबंधित पुस्तकें तो असाधारण रूप से रोमांचक हैं, जो पाठक को उद्वेलित कर रोमांचित करती हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास आदि उनकी पुस्तकें बेहद चर्चित हैं। यदि राजनीति के क्षेत्र में बात की जाए तो भागो नहीं बदलो और साम्यवाद क्या है जैसी पुस्तकें बहुत चर्चित हुई हैं। विज्ञान के साथ साथ उन्होंने साहित्य का इतिहास भी लिखा है। मध्य एशिया के मध्यम से उन्होंने ऋग्वैदिक आर्यों से लेकर भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक तक के भारत से सभी का परिचय कराया। तिब्बती भाषा और व्याकरण तथा संस्कृत बालोपयोगी जैसी पुस्तकों के नाम भी गिनाए जाए तो उनकी पुस्तकों की संख्या का कोई अंत नहीं है। श्रोता साथियों, राहुल जी ने श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, मध्य एशिया आदि स्थानों का भ्रमण किया। वे रूस में अनेक वर्षों तक भारतीय दर्शन के प्राध्यापक भी रहे। वे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, अंग्रेजी, तिब्बती, रूसी और चीनी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान भी थे। बौद्ध धर्म के तो वे प्रकांड विद्वान एवं व्याख्याकार थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का पाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है, जिनमें नाजिम निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटिक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राहुल जी में घूमने की प्रवृत्ति बचपन से ही रही है। तिब्बत, नेपाल, भूटान और सिक्किम से लेकर रूस और चीन की उन्होंने 5 बार यात्रा की। विश्व में इन जैसा पर्यटक और घुमक्कड़ साहित्य मनीषी संसार भर में नहीं हुआ है। उनका सारा जीवन ही एक यात्री की तरह से यायावर रहा है।
इनके नाना इन्हें शिकार तथा यात्रा की कहानियां सुनाया करते थे। इसका प्रभाव उनके जीवन पर इतना पड़ा कि वे आगे चलकर घुमक्कड़ ही बन गए। कहा जाता है कि उनके गृह त्याग के लिए उनका अति बाल्यकाल में किया गया उनका बाल विवाह भी एक कारण रहा है। अपने बाल विवाह की पत्नी को राहुल जी कभी भी स्वीकार नहीं कर सके। इस बात का एहसास उन्हें सदा पीड़ा देता रहा। यह भी कहा जाता है कि बाल्यकाल की पत्नी को त्यागने के पश्चात उन्होंने उनकी भरसक सहायता की। कुछ समय के पश्चात जब राहुल जी उनके क्षेत्र में गए तो उनकी दुर्दशा देखकर उनके पास ठहर नहीं सके। वहां से बाहर आकर उन्होंने कहा, मेरे ही कारण इस नारी की ऐसी दुर्दशा हुई है। इसके लिए वे स्वयं को जीवन भर कभी क्षमा नहीं कर सके। राहुल जी ने अपने जीवन में इसके बाद दो विवाह और किए। उनकी दूसरी पत्नी का नाम लीला था, जो एक रूसी महिला थी। राहुल जी की तीसरी पत्नी कमला जी रही हैं, जिनसे उन्हें दो संतानें प्राप्त हुईं। सन 1911 में बालक केदार के रूप में वे गृह त्याग कर छपरा पहुंचे और अगले ही वर्ष मठ में उन्हें महंत का उत्तराधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इनका सन्यासी नाम दामोदर दास रखा गया। कुछ समय पश्चात ही उनके पिताजी और परिवारजन इन्हें वापस अपने घर ले गए। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पुनः छपरा पहुंचे। वहां इन्हें जिला कांग्रेस का सचिव बनाया गया। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में राहुल जी बार बार जेल भी गए। छपरा में ही इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। बाद में वे राजनीतिक क्षेत्र को भी अलविदा कहकर अपने घुमंतु और लेखक के जीवन में आ गए। इन्होंने अपने जीवन में कई क्षेत्रों के रंग देखे और उनके अनुभवों से गुजरे हैं। जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें तिब्बत जाने की अनुमति नहीं दी तो वे चुपके से भेष बदलकर तिब्बत जा पहुंचे और दुर्गम रास्तों पर चलकर ज्ञान की खोज करने लगे। अन्य ऋषियों की तरह हिमालय ने भी राहुल जी को बहुत आकर्षित किया। लंबे समय तक मसूरी, दार्जिलिंग आदि में रहने के अलावा राहुल जी विशाल हिमालय की व्यापक यात्रा कर चुके थे। हिमालय यात्रा के विषय में राहुल जी के प्रकाशित ग्रंथ हैं गढ़वाल, कुमायूं, किन्नर देश और नेपाल। इनके अतिरिक्त हिमालय के बारे में राहुल जी के कई ग्रंथ अब भी अप्रकाशित हैं। इनके आत्मकथा ग्रंथ हैं बचपन की स्मृतियां, अतीत से वर्तमान, मेरे असहयोग के साथी और जिनका मैं कृतज्ञ हूं। विज्ञान के जिन उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना राहुल जी ने की है उनमें प्रमुख है विश्व की रूपरेखा, मानव समाज, वैज्ञानिक भौतिकवाद और दर्शन दिग्दर्शन। राहुल जी ने निम्न शब्दकोशों की भी रचना की, शासन शब्दकोश, जीव रसायन शब्दकोश और प्रत्यक्ष शरीर शब्दकोश। राहुल जी की कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं बुद्धचर्या, बौद्ध संस्कृति, घुमक्कड़ शास्त्र, हिंदी काव्यधारा, अपभ्रंश काव्यधारा, संस्कृत काव्यधारा, पाली काव्यधारा, प्राकृत काव्यधारा,

व्यक्तित्व राहुल सांकृतियायन, इस वार्ता के संलग्न करता एवं प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है एक मोड़ जिंदगी का। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं श्री कृष्णकांत दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

मैं शीरा अपने चाचा जी के कृषि फार्म पर बैठी हूँ। सुहानी सुबह में ही मैं यहाँ चली आई थी। वर्षा के दिन है लेकिन आकाश में बादल अधिक नहीं है। सूरज की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों को कई कई आभाई दे रही है। हवा में थोड़ी ठंडक है। मैं दूर से आते पक्षियों का कलरव सुन रही हूँ।

यहां सब कुछ भला भला सा लग रहा है मुझे, पर मैं सोच नहीं पा रही हूं। माँ ने अचानक मुझे यहाँ चाचा जी के गांव क्यों भेज दिया? पर याद आ रहा है, माँ ने यही तो कहा था कि तुम BSC AG कर चुकी हो, कुछ दिनों गांव जाओ, अपने चाचा जी की खेती बाड़ी को देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि खेती किताबों में नहीं बल्कि खेतों में होती है। मैंने यहाँ कुछ दिन रहते यही तो किया और यही पाया भी। यहाँ खेत है, हरियाली है, यहाँ सुंदर छोटा सा फार्म हाउस है, खेत पर पानी से भरपूर दो कुएं हैं, सामने खेत के बीच एक सुंदर सी टेकरी है जहाँ सागौन और पलाश के पेड़ हैं। वैसे हमारे कृषि कॉलेज में कई परीक्षण प्लॉट थे, कई खेत थे, हरियाली थी, लेकिन यहाँ जो कुछ है वहाँ नहीं था। मैं यहाँ इसी सब को देख रही हूँ।

हेलो जी। हाँ चाचा जी, मैं शीला बोल रही हूँ। हाँ, फार्म हाउस के बरामदे में बैठी हूँ। हाँ, खेत में टेकरी के पास कुछ श्रमिक काम कर रहे हैं। जी हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहा? चाची जा रही है खेत पर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कौन? सुरेश? अच्छा, तो वे अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है।

लेकिन जो कुछ मैं सोच रही हूं वो हो भी सकता है या नहीं भी। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मैं शहर में रही एक अध्यापिका माँ की पढ़ी लिखी बेटी हूँ। मैं जानती हूँ अपनी हैसियत, मुझ में क्षमता है हर बात का सामना करने की। देखती हूँ आगे क्या होता है।

0: शीला जी नमस्कार।
1: जी कौन?
0: ये मैं सुरेश।
1: नमस्कार सुरेश जी। हाँ, चाचा जी ने मोबाइल पर आपका जिक्र किया था, पर आपके साथ चाची जी भी आने वाली थी ना, वे कहाँ रह गई?
0: जी हाँ, वे मेरे साथ ही आई हैं, लेकिन वे वहाँ टेकरी के समीप जहाँ खेत पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, वे वहाँ उनका काम देखने रुक गई हैं। वे यहाँ कुछ समय बाद ही आ पाएंगी। उन्होंने मुझसे यही कहा है, मैं वहाँ जाऊँ जहाँ आप हैं, और मैं यहाँ आ गया, यही उन्हीं का आदेश था।
1: ठीक है, ये उनका आदेश था तो बैठिए उस कुर्सी पर।
0: जी हाँ, मैं बैठता हूँ। मैं बता दूँ, आपके चाचा जी मेरे फूफा हैं और चाची जी बुआ, यानी फूफी, मैं उनका भतीजा।
1: चाचा जी ने मोबाइल पर आपके बारे में बताया था मुझे।
0: चलिए यह भी ठीक रहा, लेकिन जब आपके विषय में मुझे बताया गया कि आपने कृषि विषय लेकर बीएससी किया है, सुनकर अच्छा लगा। देखिए ना, अजीब संयोग है, मैंने अजयपुर कृषि विश्वविद्यालय से एमएससी एजी किया है और अब गांव खेत पर रहकर वनस्पति शास्त्र में कुछ अनुसंधान करते हुए पीएचडी करने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: जानकर मुझे भी खुशी हुई सुरेश जी, लेकिन आपने कहीं नौकरी करने की बजाय घर गांव रहना क्यों पसंद किया? मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ।
0: शीला जी, मेरी अपनी कुछ विशेष और अलग मान्यताएं हैं। नौकरी करने वाले या कृषि ज्ञान बांटने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मेरे अपने गांव के किसान खेती की सही उन्नति के लिए किसके पास जाएंगे, इसीलिए मैंने निश्चय किया है। मैं अपने गांव के अपने ही कृषि फार्म पर काम करूंगा, जिसे पहले पिताजी ने संभाला, बाद में मेरी पढ़ाई के दौरान जिसे माँ संभालती रही। उसी पवित्र धरोहर पर मैं पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगा, कुछ नए रिसर्च, कुछ नए अनुसंधान करूंगा। और शीला जी, मैंने यही कुछ किया है। मैंने रासायनिक खेती के बजाय जैविक खेती करने के लिए कुछ विशेष काम किए हैं, अनुसंधान किया है, और मैंने भरपूर सफलता पाई है। गांव में एक उदाहरण की तरह मैंने इस काम को शुरू किया है, अब उसने विस्तार पा लिया है।
1: मुझे भी खुशी हुई सुरेश जी कि आपने शुभ दिशा में काम करना शुरू किया। हमारे कॉलेज में भी इस दिशा में कुछ काम, कुछ अनुसंधान हुए हैं, लेकिन मुझ जैसे कई लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होता है, और मेरा अपना भी कुछ मानना है कि रसायनों पर आधारित वैज्ञानिक खेती जितनी कृषि उपज देती है, उतनी जैविक खेती भला कहाँ दे पाती है? इसमें हम कितने सत्य के नजदीक है?
0: मैं प्रशंसा करता हूँ शीला जी आपके प्रश्न की। हाँ, मैं सिर्फ इतना जरूर जानता हूँ, मेरे अपने गांव के अधिकांश किसान भाई मुझे देख जैविक खेती पर काम कर रहे हैं, मैं उनकी सहायता करता हूँ। गांव चले तो देखेंगे, वहाँ वे किसान भाई अपने खेतों से अच्छी उपज ले रहे हैं, साथ ही हमारी गांव धरती कुछ कुछ प्रदूषण मुक्त भी हो रही है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी, हमारे गांव के जो किसान भाई इस विधि से खेती कर रहे हैं, लोग उनकी कृषि जींस के अच्छे दाम दे रहे हैं, क्योंकि वे जींस एकदम शुद्ध, एकदम साफ सुथरी, एकदम हानि रहित होती हैं।
1: ये तो सचमुच बहुत भली बात है सुरेश जी।
0: आप जानती ही होंगी शीला जी, उन खेतों में जहरीले और कीटनाशक रसायनों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए कीट विनाश में प्रकृति का, कुछ विशेष कीट, कुछ खास पक्षियों का भी योग बढ़ गया है। जब वातावरण में विष की हल्की सी भी परत नहीं है, किसान भाइयों ने मधुमक्खी पालन भी शुरू किया। और शीला जी, आप तो जानती ही होंगी, मधुमक्खियां फसल के परागीकरण में सहायता करती हैं और शहद भी देती हैं। किसान भाइयों ने इसका लाभ भी उठाया है, इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिली है। और अचरज न हो तो एक बात बता दूं, इस कारण हमारा गांव शहद गांव के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है।
1: ये जानकर मुझे भी भला लग रहा है। सही भी तो है, जहाँ शहद होगा वहाँ मिठासी तो होगी।
0: और मुझे भी यह जानकर खुशी हुई कि इस वातावरण में आपने भी हमारे गांव की मिठास को स्वीकृति दी।
1: जो सच है सो है, और सच को स्वीकृति मिलनी ही चाहिए।
0: शीला जी, मैं अपने में संकोच सा महसूस कर रहा हूँ।
1: किस बात का संकोच?
0: आपसे मिला और ज्ञान की बातें बघारना शुरू कर दिया, और वह भी कृषि के बारे में।
1: आप चिंता ना करें, मैं भी कृषि स्नातक हूँ और इन बातों को गहराई से जानती हूँ।
0: मेरे लिए भी इससे अच्छी बात और क्या होगी, मैंने उस व्यक्तित्व के सामने यह बात कही जिसे उस विषय की जानकारी है।
1: पर सुरेश जी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस दिशा में माँ ने ही मुझे प्रेरित किया था कि मैं एक कृषि विशेषज्ञ बनूं, और मैंने खुशी खुशी ये विषय ले लिया, और अब तो मैं इस विषय में बेहद रुचि लेने लगी हूँ।
0: मेरी भी यही मान्यता बन रही है, जबकि भारतीय युवतियां हर क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। उन्हें तो इस कृषि प्रधान देश के कृषि क्षेत्र में भी निश्चित रूप से रुचि लेनी चाहिए।
1: तो सुरेश जी, मैंने भी कुछ यही सोचकर इस विषय को चुना और इसी दिशा में काम कर रही हूँ।
0: और आगे क्या कुछ करने की इच्छा है आपकी?
1: सोचती हूँ कि MSc तो कर ही लूँ एग्रीकल्चर में, फिर नौकरी तो करना ही है।
0: आप नौकरी को भला इतना जरूरी क्यों मान रही हैं? यह सब कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
1: अब मैं आपसे क्या कहूँ, हर इंसान की अपनी कुछ विवशताएं होती है और वैसी ही कुछ विवशताएं मेरे साथ भी है।
0: अगर आप अन्यथा न समझे तो कहिए मुझसे, वे भला कौन सी विवशताएं हैं आपकी?
1: नहीं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपनी माँ की एक अकेली बेटी हूँ और अब एक रिटायर्ड अध्यापिका है। मेरा अधिकांश बचपन पितृविहीन रहा और हम बस दोनों ही हैं। मैं माँ को कहाँ अकेली छोड़ू, वैसे इस गांव में यह हमारा ही परिवार है। माँ प्रारंभ से ही पिताजी के साथ शहर ही रही। चाचा जी ने कहा भी था, पर माँ ने मेरी पढ़ाई की वजह से शहर छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती थी। और फिर ये भी है कि मैंने अभी तक के जीवन को उन्हीं की स्नेह छाया में बिताया है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से किसी भी हालत में पृथक नहीं होना चाहती।
0: खैर शीला जी, आप स्वयं में बौद्धिक हैं, समझदार हैं, आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती हैं। मैं सिर्फ इस संदर्भ में इतना ही कहूंगा, मैं भी अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ, उसी ने मुझे पाला पोसा। हाँ, पिता कोई 20 हेक्टेयर जमीन छोड़ गए थे, उसमें आधी सिंचित थी, अब वह पूरी सिंचित है और मैं उसी में खेती कर रहा हूँ। मुझे अपनी खेती और अपना गांव प्रिय है।
1: इससे भली बात क्या होगी, मेरी कामना है कि आपका ये गांव और कृषि प्रेम हमेशा कायम रहे।
0: चलिए, इसी बहाने आपसे परिचय हुआ, कुछ चर्चा हुई, अच्छा लगा मुझे।
1: और मैं भी यहाँ देर से अकेली बैठी थी। अच्छा होगा अब हम यहाँ से चले, जहाँ चाचा जी है उनसे भी पते आएंगे।
0: बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा शीला जी कि हम उन्हें वहाँ से लेते हुए घर चलें? मेरे पास कार है, गांव पहुँचने में समय नहीं लगेगा।
1: तो चलिए।

0: अरे घर के लोग हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए?
1: इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है सुरेश जी, मैं इस रहस्य को जान चुकी हूँ। हम इस वर्तमान युग में जी रहे हैं जिसमें कई नई परंपराएं उभरी है और ये सब उसी परिदृश्य के भीतर है।
0: जी हाँ शीला जी, इसे मैं भी जानता हूँ।
1: मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूँ, माँ और चाचा जी की आपस में चर्चा हो चुकी है, माँ ने मुझे भी सब कुछ बता दिया है और मैंने भी अपने मंतव्य स्पष्ट कर दिए हैं।
0: जी हाँ, मुझे भी यह मालूम था, मैंने भी अपनी राय इस घर के लोगों को बता दी है।
1: मैंने आपके विषय में जो कुछ जाना मुझे भला लगा। याद रखे, अगर मैं माँ को साथ लिए शहर त्याग दूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं माँ को वहाँ अकेली नहीं छोड़ सकती। बस हम दोनों एक दूसरे की सहारा हैं।
0: आपने भी यह जान लिया कि मेरे परिवार में मैं हूँ, माँ है, वे इतनी ममतामयी हैं, इतने उदार विचारों की हैं कि गांव की महिलाएं उन्हें देवी के रूप में मानती हैं।
1: ठीक यही कुछ मेरी अपनी माँ में भी है। आप जब उनसे मिलेंगे ना तो बिल्कुल यही कुछ महसूस करेंगे।
0: देखिए ना शीला जी, कैसा संयोग है, दोनों में माँ है, एक के पास बेटा है और एक के पास बेटी। अगर दोनों का बेटा बेटी मिल जाए तो सोचिए कितनी खुश होंगी दोनों।
1: और फिर दोनों ही इस कृषि प्रधान देश में कृषि की जानकार विशेषज्ञ।
0: जी हाँ शीला जी, मैं इसे आपकी स्वीकृति मान लूँ क्या?
1: हाँ, मैंने माँ से बात कर ली है।

0: शीला जैसी पत्नी पाकर मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। गांव को दो कृषि वैज्ञानिक मिले, मैंने और समृद्धि पाई, और मुझे मिला है दो माओं का स्नेह और शीला का असीम प्यार।
1: मेरा सौभाग्य था, सुरेश से आकस्मिक मुलाकात हुई खेतों की हरियाली के बीच, और आज मेरा जीवन सचमुच हरा भरा है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, दो माओं की स्नेह छाया मुझ पर है, और वो स्नेह छाया मुझे हर क्षण आनंद देती है। सुरेश का असीम प्यार मेरे जीवन की पूर्णता है। संपूर्ण गांव कृषि वैज्ञानिक के नाते हमें स्नेह देता है। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि जीवन के इस मोड़ ने मुझे संपूर्ण सार्थकता दी। प्रभु का असीम आभार, उनका वंदन।

अभी आपने नाटक सुना एक मोड़ जिंदगी का। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे पूजा केलकर और विजय पंडित।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था एक मोड़ जिंदगी का, और इसके लेखक एवं निर्देशक थे श्री कृष्णकांत दुबे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस 12 से 1 की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ हैं श्री छोटेलाल भारती जी।

0: तो वहाँ जो बच्चे सीखे पढ़े वो उनके कुछ काम आया आगे जा करके?
1: हाँ बिल्कुल काम आया। वो बच्चे आज भी मिलते हैं तो कहते हैं कि सर हम मैं पांचवी में हूँ, कोई कहता मैं सातवीं में हूँ, और कोई कहता कि मैंने ये गैरेज पे जाना शुरू कर दिया सर। तो ऐसी स्थिति में है आज वो बच्चे।
0: तो आपको अच्छा लगता है ये सुन के?
1: ये तो बहुत खुशी होती है जीवन की सबसे बड़ी। हमने तो सोचा कि पीएमटी नहीं भी हुई तो ये हमें खुशी देती है।
0: नहीं, वो देना भी चाहिए क्योंकि ये एक इतना महत्वपूर्ण कार्य आपने किया, इतना शुभ कार्य किया। क्योंकि आज हमारे देश में ये जो निरक्षरता है, जो शिक्षा का अभाव है, उसके कारण जो गरीबी का माहौल है, उसे दूर करने में आपने अपना समय दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इससे हमारे ऐसे ही साथियों को कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसके बाद फिर आपके जीवन में क्या हुआ, मतलब अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप अभी?
1: इसके बाद वहां से हम आके वो स्कूल उन बच्चों वहां के जो स्थायी समिति को सौंप के, और हमने फिर मूसाखेड़ी के भील पलटन जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर बच्चों का एक्टिविटी सेंटर खोला। और वहां के बच्चे भी आज कुछ बच्चे तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कुछ बच्चे बी फार्मा डी फार्मा कर रहे हैं। और वो पढ़ना तो उनका जारी था, स्कूल में एडमिशन तो था ही, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया शिक्षा के प्रति, उनको सही उद्देश्य और सही जागरूकता उनको दी। तो आज वो बच्चे अच्छे मुकाम पर है। वहां पर कबीर की भजन मंडली शुरू करी। मूलतः मेरी संस्था का नाम भी कबीर जन विकास समूह है और कबीर की विचारधारा से काफी प्रभावित हूँ। और वही है कि जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर।
0: कुछ गा करके सुनाइए ना हमारे सुनने वालों को।
1: देखिए, एक तो गला अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी समय मिलता है कि कबीर की कुछ वाणियों को गुनगुना लेते हैं।
0: हाँ जरूर, कबीर तो संपूर्ण कवि माने जाते हैं हमारे साहित्य में।
1: कुछ पदों को गुनगुना लेते हैं, लेकिन गुनगुनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि उनकी हर एक एक पद में जो संदेश है, उस संदेश को अपने जीवन में धारण करना। तो मुझे ज्यादा पद याद भी नहीं है, ज्यादा गाता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ पद है वो मेरे जीवन में है। जैसे मैं प्रेम की दोषाखी सुनाता हूँ।

0: ये इसको बोल के बताइए, क्योंकि प्रेम परस्पर सद्भाव, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, यही सब धर्मों का संदेश है और कबीर ने इसको साक्षात इस संसार को दिया है। तो इसको जरा बोल के बताइए कि लोटे और डोर का जो संबंध है वही प्रेम और मनुष्य का संबंध है।
1: वैसे कबीर ने सच्चे धर्म की परिभाषा यूं की है कि सच्चा धर्म वही है जिस तरह से मनुष्य के अंदर पांच तत्व का मनुष्य बना है, उसी तरह से धर्म भी पांच तत्व है और वो पांच तत्वों के धर्म में है प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा, करुणा।
0: प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा और करुणा,
1: इन पांच तत्वों को लेकर धर्म बना है और उसमें सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि प्रेम जो चीज है, प्रेम ही सबसे बड़ा तत्व है,
0: सर्वोच्च तत्व है,
1: सर्वोच्च तत्व है।
0: अच्छा भारती जी, आप कुछ अपने फिलहाल के अपने आपका अपना स्वयं का परिवार है?
1: हाँ, मेरा परिवार है।
0: हाँ।
1: और जिस तरह से मेरे जीवन में, मेरे जीवन की जो कड़ियां बनी है उसमें मेरी पत्नी कस्तूरा ग्राम में पढ़ी।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, कस्तूरा ग्राम में उसने नर्सिंग कोर्स किया और मैं कस्तूरा ग्राम जाता आता रहा और वहीं से मुझे समझ में आया कि मैं ये मेरी जीवन यात्रा में ये मेरी सहभागी बनेगी और मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति बनेगी। और इसलिए मैंने उससे प्रेम विवाह किया और ऐसी जगह पे किया कि जहां पर गांधी जी का एक विचार था कि मैं उस विवाह में जाऊंगा, उनका एक संकल्प था कि मैं ऐसे कोई विवाह में नहीं जाऊंगा जो अंतरजातीय विवाह नहीं होगा। तो मैंने हिंदी साहित्य समिति में अपना प्रेम विवाह किया और जहां पर गांधी जी की जो प्रेरणा थी, और मेरा अंतरजातीय विवाह है, मेरी पत्नी ब्राह्मण समाज की है और कबीर पद्धति से किया।
0: कबीर पद्धति से,
1: जिसमें कोई खर्च नहीं, जिसमें ज्यादा जो पाखंड जिस तरह से शादी में होता है उस तरह का पाखंड नहीं। शादी का मतलब होता शादी, तो मेरी बिल्कुल शादी थी। मेरी पत्नी ने सूत की माला बना के लाई थी कस्तूरा ग्राम में, चरखा चला के उस माला से हमने शादी की।
0: वाह, क्या बात है। और भी परिवार में कोई है, बच्चे हैं आपके?
1: हाँ, मेरी एक बेटी है।
0: अच्छा। उसको भी आप डॉक्टर बनाना चाहेंगे क्या?
1: बिल्कुल, मेरी तमन्ना तो है कि मैं जो काम नहीं, और मेरी तमन्ना थी कि मैं मेडिकल लाइन में, इसलिए मैंने पत्नी को भी इसीलिए चुना कि हम लोग किसी की तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं।
0: और अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब आगे आप समाज सेवा के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या क्या विचार हैं आपके मन में?
1: आगे समाज सेवा के लिए बच्चों का एक्टिविटी सेंटर, जहां से बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, बच्चों को अपने जो अंदर कुशलता है, उंगलियों की कुशलता, आंखों की कुशलता, बोलने की क्षमता, इनके विकास के लिए केंद्र खोलूंगा।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और सार्थक जानकारी दी, जिससे निश्चय ही हमारे सुनने वालों को प्रेरणा मिलेगी, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ थे श्री छोटेलाल भारती जी और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। तो आइए साथियों सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कृष्णकांत दुबे। और ये बात करेंगे कि देश में युवा साथियों की स्थिति क्या है, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: हमारे सभी श्रोता साथियों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। हम प्रस्तुत हैं युवा विकास कार्यक्रम लेकर के, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं हमारे सत प्रकाशन संस्थान के ही वरिष्ठ लेखक कृष्णकांत जी दुबे। तो एक बार फिर हम दोनों मिलकर के इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आज हमारे देश में हमारे युवा साथियों की स्थिति क्या है। दुबे जी, मैं सबसे पहले तो एक खास बात जो इन दिनों में बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो ये है कि हमारे युवा जो हैं
1: जी,
0: वो विदेशों में आगे पढ़ाई के लिए, शिक्षण के लिए जाते हैं
1: जी।
0: अब इसमें ऐसा है कि अगर वे प्रतिभावान हैं तो वे जरूर ही लाभान्वित होंगे, कुछ कर सकेंगे, अपने लिए भी अपने देश के लिए भी कुछ नया कर सकेंगे
1: जी,
0: अच्छी नौकरी पा सकेंगे और उनका लाभ ही होगा। लेकिन ये एक बात भी देखने में आ रही है कि कुछ जो संपन्न थोड़े से परिवार हैं या जो संपन्न नहीं भी हैं, वो कैसे भी जुगाड़ करके 8-10 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और फिर अपने लड़के या लड़की को विदेश भेज देते हैं आगे पढ़ने के लिए, भले ही वे उतने प्रतिभावान ना रहे हों अपने पिछले विद्यार्थी जीवन में, लेकिन स्थिति यह है कि वे सफल होंगे या नहीं आगे जाके जीवन में, उनको सब कुछ मिलेगा ये तो भविष्य बता देगा। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि परिवारजन ये देखा देखी करके या खुद को कुछ खास साबित करने के लिए दूसरे लोगों के सामने ऐसा भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है, देखने में भी आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: ओझा जी, मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहना चाहूंगा। एक जमाने में भी भारत की प्रतिभाएं विदेशों में गई हैं, पढ़ने के लिए भी गई हैं, और कुछ देश की सेवा करने की भावना को लेकर के वहां से ज्ञान अर्जित करके लौटे हैं। हां, जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके पास वो समझ रहे थे कि हमारे देश में उनकी जो प्रतिभा है वो पूरी तरह विकसित नहीं होगी, लेकिन जो बहुत ही ज्ञानवान थे और उन्हें यह एहसास था कि हमारे देश में हम वो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जिनसे हम कुछ अचीव कर सकें, हम उससे कुछ दे सकें, देश को दे सकें, समाज को दे सकें। अब आप जानते हैं कि सर सीवी रमन बहुत बड़े वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने भारत में रहकर के ही सारे अनुसंधान किए। ये भावना पहली होनी चाहिए कि हमारी जो प्रतिभा है या हमारी जो बातें हैं
0: वो अपने ही देश में विकास
1: विकास करे और उसका लाभ हमारे समाज को मिल सके, हमारे देश को मिल सके। ये भावना जब तक नहीं होगी, केवल इसलिए कि हमारे बच्चे वहां जाकर के विदेशों में गए हैं और वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, केवल इस आकांक्षा को लेकर के अगर कोई काम किया जाता है तो उससे देश का नुकसान है, लाभ कहीं नहीं है। ओझा जी, मैं इस बात को मानता हूं। और एक बात ये भी है कि केवल लोगों की प्रशंसा अर्जित करने के लिए अगर आप ये काम कर रहे हैं कि लोग कहें कि हमारे इनके बेटे बेटी जो है वो अमेरिका में है या ब्रिटेन में है या जर्मनी में है या जापान में है या चीन में है, रूस में है, कहीं भी है, तो इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। आप ये देखिए कि अगर वो बालक भारत में रहकर के वो ज्ञान अर्जित कर सकता है और अपने देश को लाभ पहुंचा सकता है तो आपको उसे यहीं रखना चाहिए ताकि देश उसका तत्काल लाभ उठा सके। मेरी तो ये अपनी मान्यता है ओझा जी।
0: नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने ये बात इस सिलसिले में भी उठाई थी कि हमारे ही परिचित एक खुद जो डॉक्टर थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, उनके बड़े लड़के को मेडिकल कॉलेज में यहां भर्ती कराया और यहां वो कुछ पढ़ने में उसकी रुचि थी नहीं तो यहां फेल हो गया वो
1: जी।
0: अब पिता चूंकि डॉक्टर थे, संपन्नता भी थी, डॉक्टरी अच्छी चलती थी
1: जी,
0: तो उन्होंने अपने बेटे को किसी भी तरह इंतजाम करके रूस भेज दिया
1: जी।
0: और अब ये सुनने में आया है कि भाई वो रूस में मेडिकल की 2 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। सवाल ये नहीं है, वो डॉक्टर भी बन जाएंगे, सवाल ये है कि अगर वो डॉक्टर बन भी गए और इस विषय में उनकी अगर कोई रुचि नहीं है तो हो सकता है वो इलाज करने से ज्यादा कुछ ऐसी बातें करें जो आर्थिकता से जुड़ी हुई हो।
1: जी
0: क्या सोचते हैं?
1: हाँ, इस तरह की बातें हो सकती हैं, इसे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा ओझा जी, कि हर देश की अपनी स्थिति होती है, हर देश का एक मौसम होता है। अब जैसे मैं आपसे बताऊं, जैसे आपने रूस की बात कही है, रूस की अपने
0: मापदंड है,
1: मापदंड हैं, अपने तरीके से पढ़ाने की और शिक्षा देने की व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या भारत में रह करके अगर आप प्राप्त कर सकते हो तो आप करिए, लेकिन अगर आप वहां भी असफल हो जाते हैं तो एक तरीके से मैंने जीवन की असफलता भी है और साथ ही वहां का जो ज्ञान है वो यहां किसी तरह से आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसी तरह से उसको प्रसार नहीं कर सकते,
0: क्योंकि वहां ऐसा है कि गंभीर से गंभीर अगर बीमारी है तो कुछ ऐसी जीवन रक्षक औषधियां या दवाइयां तुरंत उपलब्ध हो जाती है, जबकि भारत में ये स्थिति नहीं है।
1: वही तो कह रहा हूं मैं,
0: बहुत बहुत ही संपन्न बड़ा भारी कोई चिकित्सालय हो वहां ये सुविधा अवश्य मिल सकती है, उसमें भी समय लगता है, लेकिन वहां तो ये सुविधा तत्काल उपलब्ध है दूसरे देशों में। अगर आप वहां पढ़ने जाते हैं तो खैर आपने वहां का सारा ज्ञान तो ले लिया, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमारे देश में क्या स्थिति है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना हम हमारे देश में ही रह करके अपने विषय में थोड़ी सी रुचि पैदा करें और अपने देश की स्थितियों के हिसाब से अपने कार्य का संचालन करें।
1: बिल्कुल सही बात है, तभी जाकर के जनता को लाभ होगा। अच्छा, यही नहीं, कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के कई माता पिता और वो स्वयं युवा विभ्रांत हो जाते हैं और एक दूसरी दिशा ग्रहण कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम विदेशों में जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कई ऐसे परिवारों को भी मैंने देखा है जिनके बच्चे विदेशों में जाते हैं, वहां से भले थोड़ा बहुत कमा के ले आए, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा अर्जन कर पाते हो ऐसा मुझे नहीं लगा ओझा जी। अब मुझे ये लगा कि शायद ये वही हैं जो कल तक यहां पर थे, तो क्या परिवर्तन हुआ उसका और उस परिवर्तन का माने क्या हुआ? मैं तो ऐसा मानता हूं।
0: और देखिए, ये अभी वर्तमान में जो अभी इन दिनों में खास करके जो ये अचानक से आर्थिक वैश्विक मंदी का संकट खड़ा हो गया है, उसके तहत आपने भी शायद समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, अपने योग्य कर्मचारी मतलब, और उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में,
1: हजारों में है। बिल्कुल,
0: तो अब ऐसी स्थिति में युवा क्या करेगा? एक नौकरी करने वाला नौजवान है, प्रतिभावान भी है, नौकरी भी ठीक कर रहा है, लेकिन ये जो एक बाजारी मंदी जो शुरू हो गई है, ये जो भाव चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, ऐसी स्थितियां हर जन को प्रभावित करती है, महंगाई बढ़ती है। गरीब तबके की तो बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन ये जो अपन मध्यम वर्ग की भी अगर बात करें, अति निम्न मध्यम वर्ग की भी बात करें, तो हर एक इससे प्रभावित है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में मेरी अपनी मान्यता ये है कि भाई युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से उनकी एक लगी लगाई नौकरी छूट जाती, क्योंकि आज अब सरकारी नौकरियों का दौर रहा नहीं,
1: बिल्कुल,
0: कि आप आराम से 33 बरस काटो नौकरी के, मनमानी करो और फिर रिटायर हो और फिर पेंशन लो, ऐसा तो है नहीं। अब तो सरकारी नौकरियां भी एडहॉक यानी अस्थायी तौर पर दी जा रही, कि भाई पहले साल भर के लिए रखा फिर 2 साल के, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये है कि एक बहुआयामी प्रयास होने चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने
0: कि वो एक ही क्षेत्र से बंध कर नहीं रहे,
1: जी हाँ,
0: बहुआयामी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, ताकि एक से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो दूसरे विषय की ओर जाएं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आज आपके और हमारे समय का तो माहौल है नहीं
1: बिल्कुल,
0: कि भाई मास्टरी कर लो, क्लर्की कर लो, उसमें बड़ा सुख था, बड़ा आनंद था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो इतनी सारे रोजगार के विकल्प हैं कि आप भ्रमित हो जाते हैं कि इधर जाएं कि इधर जाएं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? मैंने भ्रम नहीं होना चाहिए।
1: नहीं, कहने का मतलब यही है कि जैसे आपने कहा कि बहुआयामी होना चाहिए, ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर इस आयाम को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, और युवा को खास करके इस जमाने के युवा को देखना चाहिए कि वे ज्ञान को किस तरीके से अर्जित कर रहे हैं, कितने विभिन्न क्षेत्रों में वो अपने ज्ञान को जिसे कहना चाहिए कि विभाजित कर रहे हैं और फिर उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो भावना जब उनमें जागृत होगी और एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम एक काम में अगर नहीं वो कर पाए हैं तो हम दूसरे किसी काम में जा सकते हैं, हमें वो प्रतिभा होनी चाहिए। तो एक जमाने के अंदर ये कहा जाता था कि आप एक विषय में मास्टरी कर लेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब जमाना जो है वो ये कह रहा है कि आप विभिन्न विषयों में अपनी मास्टरी हासिल करें, और जिस विषय में आपकी विशेष रुचि है उसमें भले चले जाएं, और उसमें भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो किसी दूसरे विषय में जा सकते हैं। क्योंकि आज जैसा आपने कहा कि आप बहुत विस्तार हो चुका है हर चीज का, इतने क्षेत्र बढ़ गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है।
0: आज आप देखिए कि जो हमारा फिल्म उद्योग है
1: जी, हाँ,
0: उसमें जो फिल्म में जो पैसा लगाता है वो तो निर्माता है
1: जी, हाँ,
0: लेकिन जो निर्देशक होता है फिल्म
1: जी,
0: हाँ, का
1: बिल्कुल,
0: वो निर्देशन ही नहीं कर रहा है आज, वो गाना भी गा रहा है
1: जी, हाँ,
0: उस फिल्म में अभिनय भी कर रहा है
1: बिल्कुल,
0: उस फिल्म की एडिटिंग में रात-रात बैठ भी रहा है
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुआयामी प्रतिभा आज आपको और आज खास करके हमारे युवा को विकसित करनी ही होगी। अब मैं आता हूं उस तबके की ओर जो कि निर्धन है, हमारा श्रमिक तबका है,
1: जो
0: हमारे ग्रामीण अंचलों का तबका है, वहां की स्थिति क्या है आपके हिसाब से? आपने तो कई युवाओं का साक्षात्कार भी लिया है, ग्रामीण युवकों का, तो आप बताइए।
1: मैं कई गांवों में घूमा हूं ओझा जी, और वहां के युवकों की स्थिति भी से परिचित हूं। अभी भी मैं अपने गांव जाता हूं, उसके आसपास के गांव में जाता हूं, वहां की स्थिति देखता हूं, तो वहां के युवकों में एक खास तरह की निराशा है ओझा जी, क्योंकि वहां रोजगार की वो स्थितियां नहीं हैं। वैसे आप जानते हैं कि शासन ने कई योजनाएं बनाई हैं ग्रामीण युवकों के लिए, उनके रोजगार के लिए, लेकिन जो अमला तंत्र है भारत का वो क्या कर रहा है इसे सभी जानते हैं।
0: हाँ, और मतलब वो केवल ऐसा नहीं है कि वो बस वो कागजी घोषणाएं बन के रह जाएं और जरूरतमंद तक वो चीज पहुंचे ही नहीं
1: जी,
0: जो सहायता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि भाई प्रशासनिक दर्रे की तरफ से तो अगर मदद करने का या रोजगार देने का या धन देने का कोई ऐलान हुआ है, कोई घोषणा हुई है, तो उसके साथ कुछ समाज सेवी संस्थाओं को
1: हाँ,
0: भी पीछे लगना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो जैसा कि अभी आपने कहा कि वो अमला जो है तंत्र जो है उसमें और प्रशासन के बीच में उलझ के कहीं रह जाएगा और बेरोजगारी बैठा रहेगा, उसको खाने की रोटी भी नहीं मिलेगी।
1: लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि जो गांव की पंचायतें हैं उनके जो ईमानदार सरपंच हैं या पंच हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भी इसके अलावा गांव के जो बहुत अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, अगर वे इस दिशा में ध्यान दें तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाके में जो युवा जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, देश का विकास भी होगा, ग्राम का विकास भी होगा। लेकिन अफसोस कभी कभी ये होता है वहां जाकर के जब हम देखते हैं तो लगता है कि क्या है ये सब, बहुत अफसोस होता है, अंदर से दिल दुखने लगता है, क्योंकि विकास की जो धाराएं हैं वे अगर अवरुद्ध हो जाएंगी और युवा बेरोजगार रहेंगे तो सोचिए कि फिर होगा क्या।
0: तो दुबे जी, मैं समझता हूं कि हमारा ये वार्तालाप आज के हमारे युवा विकास कार्यक्रम में हमारे खास करके युवा साथियों को कुछ रुचिकर लगा होगा।
1: जी।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा, और इनके साथ स्टूडियो में मौजूद थे श्री कृष्ण कांत दुबे, और ये बात कर रहे थे कि देश में युवा साथियों की स्थिति क्या है, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

0: दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार जिसका शीर्षक है हर युग के अपने संचार साधन और इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: युग संचार के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है वार्ता हर युग के अपने अपने संचार साधन। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। मित्रों युग बदलते हैं, समय परिवर्तन होता है। हर युग अपने साथ कुछ नई विधाएं लेकर आता है और वे भी युग परिवर्तन के साथ जुड़ते जाते हैं। विगत 25-30 वर्षों के बीच विश्व ने बहुत कुछ नया पाया और बहुत कुछ नया दिया है। इस समय अवधि में विज्ञान ने जिस गति से विकास पाया वो सचमुच अद्भुत है, लेकिन विज्ञान ने जिस क्षेत्र में सर्वाधिक तरक्की की और सर्वाधिक विकास पाया वो क्षेत्र संचार का ही क्षेत्र रहा है। उसने अपने में कई कई ऊंचाइयां छुई, कई नए शिखर छुए और कई आयाम रचे। भला इसे कौन भूलेगा कि इस वर्तमान संचार क्रांति ने विश्व को एक आंगन सा बना देने की भूमिका रची, वो सचमुच अपने में अद्भुत है। इस संदर्भ में किसी ने सच ही कहा है कि वर्तमान संचार क्रांति ने इस धरती पर वसुधैव कुटुंबकम को जिस रूप में साकार किया आज हर कंठ उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसके गीत गा रहा है। हाँ ये भी सच है कि पहले संचार माध्यम उतने विकसित नहीं थे जितने कि आज हैं। वे अपने जमाने अपने युग के अनुसार काम करते थे, लेकिन वे वर्तमान में हैं, आज हैं। भूले नहीं कि उसके पीछे भी उन प्राचीन विधाओं का भी कुछ मानों में योगदान रहा है। उन्होंने ही प्रेरित किया नई खोज के लिए, इसे भी नहीं भूला जा सकता। हमारे पूर्वजों ने, पूर्व पुरुषों ने अपने युग के मुताबिक अपने अपने कुछ संचार माध्यम निर्मित कर लिए थे, ये उनके अपने युग की आवश्यकता भी थी। मित्रों आइए आज इसी पर थोड़ा विचार किया जाए। शायद आपको ये जानकर निश्चित ही आश्चर्य होगा कि जब मनुष्य जाति के पास भाषा भी नहीं थी तब भी संचार माध्यम थे जो मात्र आवाज और ध्वनियों के माध्यम पर आधारित थे। लगता है संभवतः मनुष्यों ने पशु पक्षियों से ही उसे सीखा था। पशु पक्षियों में एक दूसरे को पुकारने की प्रकृति, खतरे के समय एक दूसरे को ध्वनियों के माध्यम से चेतावनी देने का भय और प्रसन्नता की भिन्न भिन्न ध्वनियां, साथ ही इसके अपने भावों की अभिव्यक्ति, ये सब कुछ मनुष्य जाति ने उन्हीं से पाया था। प्रभु ने मनुष्य को ज्ञान की रश्मियां तो दी ही थी, उसने उसे विकसित अवश्य किया था। हाँ एक बात ये भी कि ध्वनियों के माध्यम से दूर तक अपनी बात पहुंचाना थी, संचार का ही एक रूप माना जा सकता है। आज भी दूर दराज के गांवों में इस विधि का मजे से उपयोग किया जाता है। जो बातें, जो संचार माध्यम मनुष्य ने पशु पक्षियों से सीखे उन्हीं को माध्यम बना सदियों सदियों उन्होंने अपनी संचार सेवाएं बनाए रखी। साथियों पुराने जमाने में संचार माध्यम के रूप में कबूतरों का, प्रशिक्षित हंसों और बाज पक्षियों का उपयोग किया जाता था। इसके ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मिलते हैं और इसी तरह पशुओं में प्रशिक्षित कुत्तों, वानरों और लोमड़ियों तक का उपयोग किया जाता रहा है। वनवासी अंचलों में आज भी ढोल नगाड़ों, मादक थाली, टिकारी, मुंह से निकाली गई विविध ध्वनियां भी संचार माध्यमों के रूप में प्रयुक्त की जाती रही हैं। शीघ्रगामी और सुव्यवस्थित डाक व्यवस्था के लिए सदियों सदियों से घोड़ों, ऊंटों, पर्वतीय अंचलों में याक आदि पशुओं का प्रयोग किया जाता रहा है। नदी तटों, समुद्री क्षेत्रों में नावों, जहाजों का

0: इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथियों, कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में संचार माध्यम के रूप में पुराने जमाने में अश्वारोहियों का विशेष प्रयोग किया जाता था। पुराने जमाने में राजपुरुषों को इसलिए भी घोड़ों पर, अपनी अश्वसेना पर, अश्वारोहियों पर, उनकी गति स्फूर्ति, उनकी द्रुतगामिता पर गर्व रहा है। वे अश्वक्षुर मुद्रांकित भूमि यानी कि घोड़ों के खुर यानी टापों की मुद्रा से अंकित भूमि के अधिपति हुआ करते थे, क्योंकि तब दिन रात उनकी राज्य भूमि पर वे अश्व दौड़ा करते थे, भले वे सेना के अश्व हों या सामान्य अश्व हों या वे डाक सेवी अश्व हों। उनकी टापों से वो भूभाग दिन रात गूंजा करता था। वे अपनी तेज गति से प्रतिदिन कई कई किलोमीटर धरती नाप लिया करते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान और महान लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिमत रहा है कि उस प्राचीन युग में भारत में घोड़ों की दो प्रसिद्ध जातियां थीं। एक थी शाली और दूसरी थी होत्र। दक्षिणापथ में शाली जाति के घोड़े जितने उपयोगी सिद्ध हुए, उतने ही उत्तरापथ के मैदानों में नहीं। उत्तरापथ में होत्र जाति के घोड़े अधिक उपयोगी सिद्ध हुए। उत्तरापथ में युद्ध के समय होत्र जाति के घोड़े काम में लिए जाते थे और शाली जाति के घोड़े दूर दूर तक समाचार पहुंचाने के काम आते थे। गुप्त सम्राटों के युग में संचार व्यवस्था के लिए इन घोड़ों की उपयोगिता पर पूरा पूरा भरोसा किया जाता था। आचार्य द्विवेदी ने एक स्थान पर ये भी लिखा है कि कुषाण और शक नरपतियों ने रेगिस्तानी भूमि में संवाद संचार व्यवस्था के लिए ऊंटों का प्रयोग किया था। वे वहां घोड़ों से अधिक तेजी से संवाद ढोते थे और मरुभूमि की यात्रा में थकते नहीं थे। गुप्त सम्राटों ने भी मरुभूमि अंचलों के लिए कम्मेलकों यानी ऊंटों की अनिकिनी यानी संवाद वाहिनी तैयार की थी। बाद के युग में भी सांडनी सवार यानी विशेष रूप से तैयार किए गए ऊंट संदेश वाहक के रूप में काम करते रहे। साथियों, इन प्राचीन वर्णनों से ज्ञात होता है कि उस युग में अश्वारोही और सांदनी सवार संवाद संचार व्यवस्था में अपनी विशेष भूमिकाएं निभाते थे। राज्य की संवाद संचार व्यवस्था में तो वे मुख्य आधार थे ही, लेकिन उस जमाने की जो व्यापारिक पीढ़ियां थीं, उनके संवाद, उनकी हुंडियां आदि वे ही लाया ले जाया करते थे। उस जमाने के राजपथों पर इसके लिए सरायों की व्यवस्था की जाती थी। तब ये निर्धारित था कि कितना रास्ता तय करने के बाद घोड़ा, ऊंट या गाड़ियां आदि बदली जाएंगी। संवाद वाहकों के भोजन और आराम की सुचारू व्यवस्था हो, इसकी भी व्यवस्था की जाती थी। आज भी कई जगह उन सरायों के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। ये व्यवस्था प्राचीन युग की थी। साथियों, भारत में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में इस संदर्भ में कुछ विशेष परिवर्तन कर डाक बंगलों की प्रणाली को विकसित किया था। आज राजमार्गों पर जगह जगह हमें व्यवस्थित डाक बंगले नजर आते हैं। उनके माध्यम से उस जमाने में संवाद संचार व्यवस्था को सुचारू रूप देना ही विशेष उद्देश्य रहा था। तब वहां अश्वारोही ही नहीं बल्कि घोड़ा गाड़ियों की भी व्यवस्था रहा करती थी। इसके उल्लेख न केवल इतिहास के पन्नों में बल्कि उस युग में रची कहानियों और उपन्यासों तक में मिलते हैं। अब इन डाक बंगलों का रूप, उनकी कार्य व्यवस्था, सब कुछ बदल गई है। जब एक नया युग इस धरती पर अवतरित हुआ, जब इस धरती पर डाकघर, तार घरों की स्थापना हुई, रेल, बस और आगे चलकर हवाई सेवाएं शुरू हुई, तो संचार संवाद प्रेषण में भी गति आई। साथियों, लोगों को संवाद आदि तथा चिट्ठी पत्रियां जल्द मिलने लगी और गीत गाए जाने लगे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तब टेलीग्राम, टेलीफोन व्यवस्था ने विस्तार पाया, तो जैसे हवा ही बदल गई। और तब गर्व से कहा जाने लगा कि भारत की डाक तार व्यवस्था, उसका महक क्या, विश्व में सबसे विशाल है। फिर भी उस युग में ये कुछ भी था कि दूर दराज के गांवों में चिट्ठी पत्री भेजने का काम डाक ले जाने वाले हरकारे संपन्न किया करते थे। तब हमने भी देखा था ये हरकारे भाला लगी लाठी में डाक का थैला लटकाए हुए कुछ तेज कदम दौड़ते हुए एक से दूसरी जगह डाक ले जाया करते थे और आज भी कई जगह ये व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। आज भी कुछ अंचलों में डाक लाते ले जाते ऊंट सवार या अश्वारोही या दोपहिया वाहन, रेल, बसें ये भूमिका संपन्न करते नजर आएंगे। अब युग बदला, जमाना बदला, आज संवाद संचार के अधिकांश माध्यम भी बदलते जा रहे हैं। अब करीब करीब अधिकांश हाथों में मोबाइल है, दोनों ओर ऊंट बोलते हैं, कान सुन लेते हैं, चिट्ठी पत्री करे कौन, इंटरनेट है और भी बहुत कुछ है। आज स्थिति ये है कि हर 15-20 रोज में मोबाइल अपने एक नए रूप दर्शन में हमारे सामने आ जाता है। साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसका शीर्षक था हर युग के अपने अपने संचार साधन, जिसके लेखक थे श्री कृष्णकांत दुबे और इसके प्रस्तुतकर्ता थी आस्था उपमन्यु और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं हमें भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, बवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर क्षण हर पल आपके साथ।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। कहिए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है सर्वधर्म संभाव का संदेश। प्रस्तुत करता है फादर हरमन मंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है सर्वधर्म संभाव का संदेश। मित्रों, आज भारत जहां खड़ा है वह इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी प्रांत का हो या किसी भी मजहब से संबंध रखता हो या किसी भी भाषा को बोलता हो, वह अपनी भरपूर मेहनत से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। भारत एक मिश्रित आबादी का देश है जहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, विभिन्न जातियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग और विभिन्न पहनावा और खानपान वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहां की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी सीमाओं के पार से अलग अलग समय में बड़े बड़े साम्राज्य, कबीले, धार्मिक गुरु अपनी अपनी सभ्यताओं, जनसंख्या और अकीमों के साथ यहां आकर और फिर यहीं के हो लिए और इस तरह से यहां की सभ्यता एक मिश्रित सभ्यता बनी, जैसे कि एक बगीचे में तरह तरह के फूल अपनी खुशबू महकाते हैं। मित्रों, संभाव में ही धर्म है और विषमता में हमेशा अधर्म होता है। मानव कभी खेत में पैदा नहीं होता है, वह तो मानव की आत्मा में पैदा होता है। हमें यह विश्व बंधुता व मानव से आपस में प्यार करना सिखाता है। धर्म हमें कभी लड़ना, भिड़ना, झगड़ना, आपस में किसी प्रकार के हिंसा करना नहीं सिखाता है। मानव हर समय माला जाप, मंदिरों में घंटे बजाकर व नारे लगाकर अपने को धार्मिक दिखाता है। सही मायने में वह धर्म नहीं है। आज धर्म को संप्रदायों में बांट दिया गया है। भगवान के नाम पर लड़ना, मजहब के नाम पर लड़ना इंसान की प्रवृत्ति बन गई है। धर्म के नाम पर हमारे विचारों में भेद तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनों के अंदर भेद नहीं होना चाहिए। धर्म हमारे घरों के अंदर क्लेश नहीं सिखाता, हमें भाई भाई को अलग होना नहीं सिखाता। आज हम भगवान को ही बांट रहे हैं। यह मेरा भगवान है, यह तेरा भगवान है, ऐसी बातें हमें रोज सुनने को मिलती है। मित्रों, अहमदनगर जिले का शिरडी गांव अरसा पहले केवल पोस्टल पहचान रखता था, वही गांव आज साई बाबा की शिरडी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। बाबा की शिरडी में भक्तों का मेला हमेशा लगा रहता है। यहां आने वालों की तादाद प्रतिदिन 30 से 35 हजार के करीब होती है, वहीं गुरुवार एवं रविवार को यह संख्या दुगुनी हो जाती है। इसी तरह रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयादशमी के अवसर पर यहां 2 से 3 लाख लोग दर्शन को आते हैं। वहीं साल भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक भक्त यहां हाजिरी लगा जाते हैं। लगभग 150 साल पहले एक युवा फकीर शिरडी की एक खंडरनुमा मस्जिद में डेरा डालकर 4 घरों की भिक्षा से गुजर बसर करने लगा। लोगों ने उसे साई बाबा के नाम से पुकारा। उसके द्वारा दी जाने वाली जड़ी बूटियों और अंगारे से लोग भले चंगे होने लगे। इससे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और साई बाबा का यश आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में फैल गया। साई बाबा ने अपनी जिंदगी में समाज को 2 अहम संदेश दिए। पहला संदेश है सबका मालिक एक, और दूसरा श्रद्धा और सबूरी। साई बाबा के इर्द गिर्द के तमाम चमत्कारों से परे केवल उनके संदेशों पर ही गौर करें तो पाएंगे कि बाबा के कार्य और संदेश जन कल्याणकारी साबित हुए हैं। इन संदेशों में केवल कथनी से ही नहीं बल्कि सीधे कार्य व व्यवहार से सारे समाज को अपना कायल बनाया। फकीर के वेश में मस्जिद में रहने वाले साई की बोली भी उर्दू मिश्रित थी। मित्रों, वे हमेशा अल्लाह मालिक सबका भला करेगा कहते थे, लेकिन जिस मस्जिद में उनका निवास था उसे वह द्वारका माई कहकर पुकारते थे। साई बाबा का आचार धर्म हिंदू पद्धति का था, बावजूद इसके बाबा ने अपनी जाति व धर्म की तह कभी किसी को लगने नहीं दी। हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही बाबा को अपना माना। उन्होंने सर्वधर्म संभाव
और सह अस्तित्व का मार्ग पूरी दुनिया के सामने रखा। सबका मालिक एक, यह संदेश उनके व्यवहार का ही प्रतीक कहा जा सकता है। बाबा के भक्तों में सभी जाति, धर्म एवं पंथ के लोग शामिल हैं। हिंदू बाबा के चरणों में हाथ फूल चढ़ाते और समाधि पर धूप रखकर अभिषेक करते हैं, वही मुस्लिम बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाते हैं। कुल मिलाकर शिरडी सर्वधर्म संभाव के धार्मिक सह अस्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ आने वाले भक्त इन सबके परे केवल मन में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास के चलते खींचे चले आते हैं। उनके मन में आध्यात्मिक शांति की चाह के साथ सुख की कामना नजर आती है। इंसान अपनी श्रद्धा को हमेशा निजी सुख दुख से जोड़कर देखता आया है। मित्रों, आज के बदलते आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमण के दौर में अपने इर्द गिर्द की अस्थिरता, अनिश्चितता के बीच भक्त कभी कभी कुछ हकबकाहट में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा की महिंदोर थामे शिरडी चला आता है। वे मानते हैं कि वहां उनके तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। साईं बाबा द्वारा बताए श्रद्धा और सबूरी शब्दों का इस्तेमाल कई भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी करते हैं। जैसे किसी को कोई नया काम हाथ में लेना हो तो वह श्रद्धा, सबूरी, हाँ या नहीं जैसी चार चिट्ठियां तैयार कर साईं बाबा के सम्मुख रखता है और श्रद्धापूर्वक उनमें से एक चिट्ठी खोलता है। यदि उसमें हाँ है तो बाबा का आशीर्वाद मान लेता है, और यदि जवाब नहीं में मिलता है तो बाबा का इनकार मानकर नए काम का इरादा छोड़ देता है। यदि चिट्ठी का जवाब श्रद्धा है तो बाबा में श्रद्धा रखकर काम आगे शुरू किया जाता है, लेकिन यदि जवाब सबूरी हो तो थोड़ा संयम रखे, ऐसा अर्थ निकाला जाता है। बाबा का आशीर्वाद पाने वाले ऐसे कई भक्त शिरडी में मिल जाएंगे। गत ढाई तीन दशकों में साईं बाबा के प्रति लोगों की आस्था में निरंतर इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि साईं बाबा के उत्सव में शामिल होने अमीर, गरीब और सभी जाति धर्म के भक्त बड़ी तादाद में आते हैं। मित्रों, जैसे संतरा बाहर से एक दिखाई देता है, अंदर से अलग अलग होता है, उसी प्रकार हमें भी बनना है। हमें कैंची की तरह नहीं, जो हमेशा काटने का काम करती है, सुई की तरह बनना है, जो हमेशा दूर हुए को मिलाती है। धर्मगुरु हमारे अंदर से अंधकार को दूर करते हैं। विनोबा जी ने कहा था कि अगर इंसान अपने धर्म में दृढ़ हो, वह दूसरों के धर्म में सम्मान की भावना हो और अधर्म से घृणा करता हो, वह सही मायने में धार्मिक है। कोई भी धर्म हमें किसी का दिल तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाता है। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था सर्वधर्म संभाव का संदेश। प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन मंडोर SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है परिवार से बिछड़ते हुए और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

बहनों नमस्कार। आज के नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में हम जो विषय लेने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परिवार से बिछड़ते हुए। परिवार से बिछड़ते हुए, लेकिन इसका अर्थ आप अपने विवाह के समय होने वाली विदाई से बिल्कुल न लगाइए। बहनों, दरअसल किसी भी स्त्री का मन विदाई की बात सुनते ही कोमल हो उठता है, है ना? अपने बीते हुए दिन और खुशियों से भरे पल अनायास ही उसे याद आने लगते हैं। लेकिन बहनों, आज हम बात करेंगे उस पारिवारिक बिछोह की जिसमें अपने संयुक्त परिवार के साथ एक अच्छा खासा समय बिता लेने के बाद आपको अपने काम के सिलसिले में घर से दूर जाकर फिर से अपना नीड बसाना पड़ता है। कई बार बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में भी अपना परिवार छोड़ना पड़ता है। और वाकई ऐसे में अचानक से असहाय हो जाने की सोच मन में आने लगती है, और ये स्वाभाविक तो है। आज भले ही हम देखें कि सभी स्थानों पर एकल परिवार अपना स्थान लेते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग संयुक्त परिवारों में रह रहे हैं उन्हें मिलने वाली सहूलियतें, उन्हें मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उन्हें देखते हुए वे स्वयं अपनी ओर से कभी भी एकल परिवार के रूप में बस जाना नहीं चाहते। और क्यों न हो, आखिर चलिए देखें कि यदि आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो आपको कितनी सारी सहूलियतें मिलती हैं। सबसे पहली बात तो आप अकेली नहीं पड़ती। अब आप ही सोचिए, आपके इस बढ़ते संसार में आपने किसी न किसी उपलब्धि को हासिल किया, अब उस उपलब्धि के ऊपर आपका अपना आशीष देने वाला हाथ ही घर में ना हो तो उस उपलब्धि का क्या किया जाए। उसी तरीके से बहनों, घर में नन्हे बच्चों का आगमन, संसार में बढ़ने वाली जिम्मेदारियां और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके चलते आपको शिद्दत से ये महसूस होता है कि अकेलापन संसार के लिए काफी नहीं है। आपको चाहिए संयुक्त परिवार का वरदहस्त, आपको चाहिए घर में रिश्ते नातेदारों की चहल पहल, आपके हर एक कदम पर, आपकी हर एक बात पर क्रिया प्रतिक्रिया देने वाले आपके आसपास के परिवारजन। और ये सारी चहल पहल होते हुए संयुक्त परिवार की कोई स्त्री भला अकेली कैसे रह सकती है? उसे खुशी का कोई मौका हो या फिर दुख की कोई बात, बांटने वाले साथी तो हमेशा ही मिलते हैं। और इसके आगे बच्चों के संस्कारों का कोई भी चिंता, किसी भी प्रकार की खराब बात आपके मन में आ ही नहीं सकती। अब आप ही सोचिए ना, घर में जब बुजुर्ग पीढ़ी मौजूद हो, उन्हें तो अपने मूलधन से ब्याज गहरा है, है ना? आपके बच्चों ने खाना खाया हो या नहीं खाया हो, वे समय पर दवाई ले रहे हैं या नहीं, समय पर सोए हैं या नहीं, उन्होंने पूजा पाठ संबंधी कुछ नियम कानून सीखे हैं या नहीं, पारिवारिक परंपराओं से उनका नाता जुड़ रहा है या नहीं, इन सारी चीजों को लेकर आपको सोचने की या फिर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बच्चों के दादा दादी जितने प्यार से बच्चों की देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उतने प्यार से तो मेरे ख्याल से माता पिता भी नहीं रख सकते। ऐसे में आप निश्चिंत हो जाती हैं कि आपके बच्चे बहुत सही संगत में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो आपको संयुक्त परिवार में रहते हुए बहुत अच्छे से वर्तमान समय में जिसकी बहुत जरूरत है, वो सुविधा आपको मिलती है, वो है बच्चों को छोड़कर अपना काम कर पाना। बहनों सोचिए ना, शहरों में जिस तरीके से एकल परिवार बढ़ रहे हैं और फिर नारी का स्वावलंबी होना, आजकल स्त्रियां भी धड़ल्ले से नौकरी करती हैं और फिर नौकरी के बीच में वो समय आता है जब वो मां बनती हैं। ऐसे में उस नन्ही सी जान को किसी के पास छोड़कर जाने का मन भी नहीं होता और तरीके से संवारे गए अपने करियर पर विराम देने का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता। और इस बीच इसी उहापोह में स्त्री के 5-6 वे वर्ष गुजर जाते हैं जिसमें उसने अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लिया होता, लेकिन हमारी संयुक्त परिवार की स्त्री, जी नहीं, ऐसी कोई तकलीफ उसके पास नहीं है। वो बड़े जतन से अपने नाती पोतों को बहुत अच्छे से संभालते हैं और संस्कार भी देते हैं। इसके आगे किसी भी संकट में बड़ों का हाथ आपके सिर पर होता है, चाहे आपके साथ कैसी भी दुर्घटना घट जाए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं। आप मार्गदर्शन के लिए मांग सकते हैं अपने बड़े बूढ़ों से मार्गदर्शन के साथ साथ उनके आशीष। उनके पास होंगे अनुभवों के खजाने जिसमें से आपको मिलेंगे मार्गदर्शन के ऐसे मोती जिससे आप संवार सकते हैं अपनी जिंदगी को। और साथ ही बहनों, यदि आप रहती हैं संयुक्त परिवार में
तो ये बहुत अच्छे से आपके सामाजिक ओहदे को भी बढ़ाता है। चाहे आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में कितने भी प्रतिशत आगे हो या फिर नहीं हो, लेकिन संयुक्त परिवार की बहू को आज भी समाज में उच्च स्तर पर देखा जाता है। यदि आपको भी किसी न किसी कारण से अपने बसे बसाए संयुक्त परिवार से अलग होकर अपना घर बसाना ही पड़ रहा है, तो आपको अपने आप को असहाय नहीं मानना है। आखिर जिस परिवार के साथ आपने इतने अपनेपन से समय बिताया है, वो ही तो इस घड़ी में आपका साथ भी देगा। बहनों, इस समय जब आप अपने संयुक्त परिवार के साथ एक लंबा अरसा गुजार चुकी हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ आपका किसी न किसी प्रकार का नाता जुड़ चुका है, ऐसे में किसी प्राथमिक कारण के चलते आपको यदि अपना नीड फिर से बनाना पड़ता है, तब आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो सभी को ये एहसास दिलाएं कि उनसे दूर जाकर आपको भी कष्ट हो रहा है, लेकिन प्राथमिकताओं के चलते ऐसा करना पड़ रहा है। आपको प्रत्येक सदस्य को यह एहसास दिलाना चाहिए कि इतने दिनों परिवार के साथ रहकर आपने भी उनसे बहुत कुछ अर्जित किया है और दूर होते हुए आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं तो हैं। इसके आगे आपको अपने सामान की पैकिंग, उनसे जमाना, नए स्थान पर घर देखना, बच्चों की देखभाल आदि के लिए घर के सदस्यों की मदद जरूर जरूर लेनी चाहिए। आपको अपने किसी भी व्यवहार से ऐसा उन्हें महसूस न होने देना चाहिए कि वे आपके लिए अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। आप स्वावलंबी तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन यदि इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को, इन छोटे छोटे कामों को अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डालेंगे ना, तो उन्हें भी आपसे जुड़ाव महसूस होगा। और बहनों, अपने साथ प्रारंभिक कुछ दिनों के लिए घर की किसी महिला सदस्य को जरूर साथ चलने को कहें, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे आपके साथ चलकर अपनापन महसूस करेंगी। बहनों, नए स्थान पर जाने के बाद समय समय पर फोन करना, प्रत्यक्ष आना जाना और पत्र लिखकर आपको जीवंत संपर्क बनाए रखना होगा। अपने नए घर के पड़ोसियों, मिलने जुलने वालों से अपने संयुक्त परिवार की चर्चा जरूर करें। ऐसे में नई जगह पर जब आपके पुराने संयुक्त परिवार के सदस्य आएंगे ना, तो अपने आसपास उन्हें जानने वालों की भीड़ देखकर उन्हें भी एक जुड़ाव महसूस होगा। नई जगह पर जाने का आपका फैसला चाहे किसी भी प्राथमिकता के चलते लिया गया हो, लेकिन किसी भी तरीके से परिवार के सदस्यों को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझकर स्वतंत्र रहने की सुविधा के चलते ये कदम उठाया है। बड़ी मुश्किल से अपनों का साथ मिलता है, इसे तोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन जीवन पर्यंत जोड़े रखना बहुत मुश्किल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना नया नीड जरूर बनाएं, लेकिन अपने मुख्य घोंसले से रिश्ता जरूर बनाए रखें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था परिवार से बिछड़ते हुए, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मुक्त हो अहंकार से मन। इस वार्ता के लेखक श्री कृष्णकांत दुबे एवं प्रस्तुत करता है दिव्या देवस्या।

मन दर्पण के अंतर्गत प्रस्तुत है मुक्त हो अहंकार से मन। लेखक है कृष्णकांत दुबे, प्रस्तुतकर्ता दिव्या देवस्या। एक पुरानी सुक्ति है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार कई दुर्गुणों को जन्म देता है। अहंकारी का मन हमेशा कुलुष भरा रहता है। अहंकारी किसी का दुख दूर नहीं करता, बल्कि वह दूसरों के कष्टों में वृद्धि करता है। उसकी वजह से कई मन आहत होते हैं। इसीलिए अहंकार से मुक्ति पाओ, स्वयं सुखी बनो, दूसरों को भी सुखी बनाओ। मित्रों, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और उसे आचरण में भी उतारना चाहिए। निरअहंकारी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने में वे गुण जागृत करो जो अहंकार से मुक्ति दे, विनम्रता दे। विनम्रता से ही मनुष्य में शिष्टता का महत गुण विस्तार पाता है। शिष्टता अपने में एक भला गुण ही है। इस संदर्भ में स्मरण आता है, कभी महान चिंतक और लेखक वोल्टेयर ने कहा था, दूसरों का उपकार करना हमारे लिए सदैव संभव नहीं है, लेकिन हम उनसे हमेशा शिष्टता पूर्वक जरूर पेश आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा चिंतन करें तो आप पाएंगे आज समाज से शिष्टाचार कम सा होता जा रहा है। खासकर आज की नई पीढ़ी पर कुछ अजीब सा अशिष्ट रंग व्यापता जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि पुरानी पीढ़ी में भी यह दोष नहीं था, लेकिन उतना नहीं जितना कि आज है। कुछ को देखा तो लगा कि वे अशिष्ट होने को आज की आवश्यकता मानते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो अशिष्टता की सीमा को भी अतिक्रमित कर जाते हैं, उसे भी लांघ जाते हैं। उनमें अधिकांश वे हैं जो नवधनाढ्यों के नेताओं के, समाज में दबदबा रखने वालों के पुत्र पोत्र हैं। अगर गौर से देखा जाए तो उनके द्वारा क्या कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें ऊपरी संरक्षण प्राप्त होता है। उनमें अशिष्टता रोपी जाती है, क्योंकि वो इसी में अपना हित पाते हैं। अगर आप आज वृद्धजनों से जाकर पूछें कि नई पीढ़ी के लोग आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उनका यही उत्तर होगा, उनमें अशिष्टता बढ़ती जा रही है। वे अपने से बड़ों का आदर करना तक भूल गए हैं। यही नहीं, कई तो शिष्ट भाषा तक का प्रयोग नहीं करते। अब आपको कई जगह ऐसा ही कुछ मिलेगा, दिखाई देगा। अगर आप बाजार में हैं, तो वहां भी आप यही कुछ दृश्य देखेंगे। यह मेरा ही अपना एक अनुभव है। एक सांझ मैं यूं ही बाजार से गुजर रहा था। मुझे कोई खरीदारी नहीं करनी थी। उस समय मैंने एक दृश्य देखा और चकित रह गया। वे रिटायर्ड प्रोफेसर थे, माने हुए विद्वान और लेखक। वे सांझ जब भी घूमने जाते, लौटते सब्जी बाजार जाते, वहां ताजी सब्जियां खरीदते, तब कहीं घर लौटते। यह उनका अपना नियम था। वे सदैव सादी वेशभूषा में ही रहते थे। उस दिन उन्हें सब्जी तथा कुछ अन्य फलों के साथ सेब फल भी खरीदना था। एक फल वाले की दुकान पर जाकर उन्होंने सेब फल के विषय में पूछा। वह उस बाजार में फल की एक बड़ी और जगमग दुकान थी। उन्हें देख उस युवा दुकानदार ने कहा, बाबा आपकी है

के जवाब में उसने उसी अहंकार में भरकर मुझसे कहा, ऐसे कई लोग रोज मेरी दुकान पर आते हैं, मैं किस किस का लिहाज करूं, परवाह करूं। उसकी इस जवाब से मैं भी समझ गया था। फलों के मनमाने दाम लगाकर इस दुकानदार ने निश्चित कुछ धन कमा लिया होगा। उसी धन की गर्मी ने उसे अहंकारी और अशिष्ट बना दिया है। अब आप इसे क्या कहेंगे, मानसिक विकृति के अलावा? किसी भी समाज के लिए अशिष्टता और अहंकार जहां विकास में बाधक होता है, वहीं वह उसके सीधे पतन का कारण भी बनता है। आज भारतीय समाज के एक विशेष वर्ग में यही कुछ देखा जा रहा है। अब दौलत, वैभव, बहुमंजिली इमारतों, बंगलों और महलों में रहने वाले जिनके पास भ्रष्टाचार का धन सिमट कर आ रहा है, उनमें अधिकांश को हम इसी श्रेणी में पाते हैं। उनमें अहंकार तो दिखता ही है, साथ ही शिष्टता की कमी भी सीधी सीधी नजर आती है। ये सब देश के विकास का चित्र प्रस्तुत नहीं करते। याद रखें, किसी देश के सही विकास का चित्र इस आधार पर अंकित होता है कि उस देश के लोग कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है और लोगों के साथ उनका व्यवहार किस तरह का है। वे लोग आपस में किस तरह से व्यवहार करते हैं, समाज में एकता तथा भाईचारा भी है या नहीं, इन्हीं सब से किसी समाज, किसी देश की पहचान होती है। हमेशा ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही समाज का उदाहरण दिया जाता है। स्मरण आता है उस महान व्यक्तित्व का जिन्होंने शिष्टता, मानवता तथा अहंकार मुक्ति का विश्व में मानव कीर्तिमान स्थापित किया था। सब जानते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को। उन्हें विश्व में इतिहास पुरुष की संज्ञा प्राप्त है। शिष्ट व्यवहार के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं उनके। अपनी उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के साथ अपने सरल स्वभाव और शिष्टता के तो वे जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। इस संदर्भ में उनका यही कहना था, मैं नहीं चाहता कि कोई अन्य शिष्टता में मुझसे बाजी ले जाए। राष्ट्रपति लिंकन का एक ऐसा ही प्रेरणादायी प्रसंग है जो अपने आप में अद्भुत है। तब लिंकन अपना पहला राजनीतिक भाषण दे रहे थे। मंच पर उस युग के कई महान नेता विराजमान थे। जैसे ही लिंकन ने अपने भाषण का प्रारंभ किया, एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति मंच के निकट पहुंचकर उनसे बोला, सुनाओ एप, क्या हाल है? वह व्यक्ति लिंकन का पुराना परिचित था और उन्हीं से मिलने वहां आया था। उसका नाम था जिमी पेंटियर। लिंकन ने भाषण रोका, उन्होंने झुककर पेंटियर से हाथ मिलाया और बोले, ओह चाचा जिमी, कब आए? फिर जिमी का हाथ पकड़कर उसे मंच पर चढ़ाया और अपनी खाली कुर्सी पर बिठा दिया। उसके बाद लिंकन फिर भाषण देने लगे। उसी बीच फिर पेंटियर ने लिंकन से पूछा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? लिंकन ने फिर भाषण रोककर पूरी आत्मीयता से कहा, सब राजी खुशी हैं। यह लिंकन की मानवीयता, शिष्टता तथा अहंकार मुक्ति थी। मित्रों, आज आवश्यकता है हमें ऐसे ही भाव विचारों को जागृत करना होगा। जहां शिष्टता हो, सभ्यतापूर्ण व्यवहार हो, आपस में स्नेह भाव हो तथा अहंकार से पूरी तरह मुक्ति हो, सभी को अपने मन दर्पण को यही उज्ज्वलता देनी होगी ताकि समाज में व्याप्त विकृतियां समाप्त हों। इसी से हिंसा, आतंक, द्वेष, भेदभाव से समाज मुक्ति पा सकेगा। हमारे समाज को आगे बढ़ाने और हमारी नई पीढ़ी में सभ्यता, शिष्टता का संचार आज हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है। स्वयं से बदलाव की शुरुआत करें तथा एक शिष्ट समाज के निर्माण में अपना योगदान करें। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, सच्ची तो है। अगर प्रत्येक अपनी जिम्मेदारी को समझे और स्वयं में शिष्टता का बीज रोपकर उसकी छाया अपने समाज को दे, तो आने वाली नस्ल भी उसी का प्रमाण देगी और समाज उज्जवल होगा। मन अहंकार से मुक्त हो, जीवन सुंदर हो। बस इसी कामना के साथ नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मुक्त हो अहंकार से मन। इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी दिव्या देवास्य। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक संसाधन और जीवन। इस वार्ता के लेखक और प्रस्तुतकर्ता है माइकल हॉजेस।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता प्राकृतिक संसाधन और जीवन। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस। श्रोता साथियों, मानव द्वारा नित नए आविष्कार अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने और सुविधा के लिए किए गए हैं। इन आविष्कारों से मानव जीवन सहज और सुलभ तो हुआ है, लेकिन इससे प्रकृति में मानव हस्तक्षेप भी बढ़ा है, जिससे सीधा प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पर। प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के कारण ही प्रदूषण बढ़ा है और जिसने जलवायु परिवर्तन में भी अपना योगदान दिया है। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मानव द्वारा प्रकृति में दखल देने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना और गैर टिकाऊ ढंग से उपयोग हुआ है, और यही उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का कारण भी बना हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का विनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बड़ी बेरहमी और लापरवाही से कर रहे हैं। श्रोता साथियों, पर्यावरण प्रदूषण से केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उन सभी लोगों को भी भारी नुकसान पहुंचता है जो अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, घने जंगलों के आसपास बसे गांवों में रहने वाले अधिकतर लोग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर ही अपनी आजीविका कमाते हैं। वे पहाड़ों और जंगलों में उगने वाली जड़ी बूटियों को खोजकर उनका संग्रह करके बिचौलियों के माध्यम से कंपनी और कारखानों तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस काम के लिए उन्हें सुबह से शाम तक पहाड़ों, जंगलों, नालों और नदी के तट पर भटकना पड़ता है, यानी कि इस काम में अत्यधिक श्रम और समय लगता है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि इनका श्रम और समय लगने के बाद भी कभी कभी इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है, पर्यावरण का प्रदूषण जारी है। जी हां श्रोता साथियों, पर्यावरण के असंतुलन का प्रभाव उन पेड़ पौधों पर भी पड़ता है जिनसे यह गरीब ग्रामवासी जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं। इसी पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत से पौधे लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है, जब आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी जड़ी बूटी के बारे में यह कहते हुए सुनते हैं कि फलां जड़ी या बूटी पहले मिल जाया करती थी, अब तो देखने में ही नहीं आती है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अब वह जड़ी बूटी लुप्त हो चुकी है। यह विचार करने वाली बात है कि जो गरीब और जानकार लोग इस जड़ी बूटी के काम से जुड़े हुए हैं, यदि पेड़ पौधे इसी गति से साफ होते रहे, इसी गति से नष्ट होते रहे, तो फिर इन लोगों की आजीविका का क्या होगा? आयुर्वेदिक वैद्य और औषधि विक्रेताओं का क्या होगा? जो लोग जड़ी बूटी की दवाओं का सेवन करते हैं, उन रोगियों का क्या होगा? बाजार में आजकल हर्बल का जमाना फिर लौट आया है। लोग हर्बल के उत्पादनों की मांग करने लगे हैं। वे उस वस्तु को अपने लिए भरोसेमंद और फायदेमंद मानने लगे हैं जो हर्बल उत्पादक हैं। जो प्राकृतिक संसाधनों से बनी औषधियां या क्रीम अथवा हेयर डाई हैं, लोग प्राकृतिक संसाधन की वस्तुओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि ये वस्तुएं अगर फायदा नहीं करती तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करती हैं। लेकिन हाल ही में विभिन्न विशेषज्ञों अथवा आयुर्वेद के डॉक्टर की जानकारी के बिना उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने मन से या किसी की देखा देखी करके औषधि लेने वाले को यह पता नहीं होता कि किस बीमारी के लिए उसे कौन सी और कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दवा लेनी है। यदि वह बिना पूरी जानकारी के ऐसा करेगा तो लाभ के बजाय उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। क्या आजकल के एलोपैथी के इस जमाने में भी अधिकतर लोग हर्बल प्रोडक्ट की मांग करते हैं? यही कारण है कि आजकल हर सौंदर्य प्रसाधन निर्माता और
देशी दवा निर्माता अपनी वस्तु के विज्ञापन में सबसे पहले जो चीज लिखते हैं वह है हर्बल प्रोडक्ट। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज प्राकृतिक संसाधन के स्रोत पेड़ पौधे और फूलों में कमी आई है। कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं और कई विनाश के कगार पर खड़ी हैं। इसलिए कई निर्माता रसायनों का प्रयोग करके हर्बल के नाम पर रासायनिक पदार्थ बेच रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोगों को लाभ के स्थान पर हानि उठाना पड़ रही है और वे हर्बल के नाम पर ठगे भी जा रहे हैं, क्योंकि जब वास्तविक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध ही नहीं होंगे तो निर्माता उसे लाएंगे कहां से, और यदि उपलब्ध भी हुए तो उनकी ऊंची कीमत के कारण निर्माता उनके स्थान पर नकली वस्तु से ही काम चलाएगा। हर्बल के स्थान पर फिर वह रासायनिक उत्पाद ही बेचता है। बाजार में हर्बल उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आजकल कुछ कंपनियों ने अपने खेत और जमीन पर जड़ी बूटियों के नाम पर कुछ प्राकृतिक संसाधनों की खेती करना भी शुरू कर दिया है। वे अपनी जमीन पर उन जड़ी बूटियों की खेती करने लगे हैं जो विभिन्न तरह की दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बनाने में काम आती हैं। लेकिन उनके उत्पादों को लेकर दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या उनके द्वारा उत्पादित संसाधन उनके उत्पादनों के लिए पर्याप्त होते हैं? दूसरा कि क्या पहाड़ों और जंगलों से दूर की शहरी हवाओं में उनके संसाधन उतने ही समर्थ होते हैं जितने कि पहाड़ों और जंगलों के प्राकृतिक संसाधन होते हैं? श्रोता साथियों, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने आने वाले कल और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और उन्हें बचाए रखने के लिए उनका लापरवाही से न तो स्वयं दुरुपयोग करें और न ही किसी अन्य को दुरुपयोग करने दें। श्रोता साथियों, दोनों ही प्रश्न के उत्तर नहीं में होंगे, क्योंकि पहले उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उनके द्वारा यानी हर्बल निर्माताओं द्वारा कुछ जमीन के क्षेत्रों में कुछ एकड़ या कुछ बीघा तक ही वे खेती करते होंगे, जबकि उनका उत्पादन उससे कहीं अधिक होता है। इसलिए उनके द्वारा की जाने वाली खेती को किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं माना और कहा जा सकता है। दूसरी बात, उनके द्वारा उत्पादित संसाधनों में वह बात नहीं होती जो पहाड़ों और जंगलों में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में होती है। भले ही खेती करने वाले कितना भी खाद और पानी क्यों न दे दें, लेकिन क्या वे पहाड़ों की मिट्टी, जंगलों की मिट्टी और वहां का वातावरण और आबोहवा ला पाते हैं? जिन मिट्टी और वातावरण तथा आबोहवा में प्राकृतिक संसाधन पनपते और बढ़ते हैं, इनके अंतर को ठीक गांव के निवासी और शहर के निवासी में अंतर की तरह समझा जा सकता है। जैसे गांव का निवासी शुद्ध मिट्टी और आबोहवा में पला बड़ा शक्तिशाली होता है, वहीं शहर की आबोहवा में पला बड़ा एक सामान्य व्यक्ति कमजोर किस्म का इंसान होता है। श्रोता साथियों, आइए अब जरा कुछ बातें अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दुरुपयोग की भी कर ली जाए। प्राकृतिक संसाधन के रूप में हवा, पानी और मिट्टी को प्राथमिकता के साथ रखा जा सकता है, क्योंकि तीनों ही संसाधन हमारे प्राणों को जीवन देने वाले जीवनदायी प्राकृतिक संसाधन हैं।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था प्राकृतिक संसाधन और जीवन। इस वार्ता के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो विरिता एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

साथियों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत SSPS। दोस्तों, अभी की सभा 10 से 11 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य, बाल विकास, बाल जगत और भक्ति गीत। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: आओ भैया।
1: आओ बहन, यहाँ ठहरो।
2: तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। ईश्वर तुम्हारा भला करे।
1: आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। धीरज रखो बहन, ईश्वर से दुआ करो, प्रसव ठीक तरह से हो जाएगा। ओह, कितना सुंदर बच्चा है।
2: प्रणाम स्वामी। मेरे ईश्वर और मेरे बेटे, तुम्हारा स्वागत है।
0: कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है। ईश्वर के पुत्र का रूप कितना शांत और कितना सौम्य है। वास्तव में ये शांति का राजकुमार है। मरियम, मरियम, तुमने तो संपूर्ण नारी जाति को धन्य बना दिया। तुम धन्य हो, धन्य हो मरियम।
2: धन्य तो आप ही हैं यूसुफ। आपने ईश्वर की कृपा से मुझे हर पल सहारा दिया। देखो देखो, हमारे मिले जुले प्रयास से ही हमारे बेटे ने जन्म लिया, जो वास्तव में तो सृष्टिकर्ता ईश्वर का ही पुत्र है।
3: निर्धनों के लिए इस भौतिक जगत में कोई जगह नहीं। मरियम ने अपने बेटे को न सिर्फ निर्धनता वरन पशुओं के निवास स्थान में जन्म दिया। उसे रेशम के झूले में नहीं, घास फूस पर कपड़ा डाल लिटाया गया। यही है निर्धनों का संघर्ष, जीवन का संघर्ष। इसी स्थिति में ईश्वर का पुत्र जन्मा। मरियम, यूसुफ और ईसा किसी सुनहरे सुखद व संपन्न विश्व के नहीं, वरन हमारे कठोर और खोखले विश्व का एक हिस्सा थे, जिन्हें वो सब कुछ झेलना पड़ा जो एक निर्धन परिवार को झेलना पड़ता है। उसी पवित्र रात जब कुछ चरवाहे ठंड में सिकुड़ते अपने पशुओं के लिए पहरा दे रहे थे, तो प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर ईश्वर का प्रकाश चमक उठा था।
4: ये इतनी तेज रोशनी।
5: हाँ हाँ, इतना उजाला, इतनी तेज रोशनी कि आंखें ही चौंधिया उठी। ये सब क्या हो रहा है?
3: डरिए नहीं, देखिए मैं प्रभु का दूत हूँ, आपको बड़े आनंद का समाचार सुनाने आया हूँ। आज दाऊद के नगर बेथलहम में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप उस बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा पाएंगे। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति।
4: मुक्तिदाता, और वो भी नन्ना सा बालक, पर वो चन्नी में क्यों जन्मा?
6: चलो हम बेथलहम चलकर देखें, लगता है वो कोई अनोखा बालक है।
5: मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं ये बात सच भी है या नहीं। अरे वो उन्हें प्रभु कह रहे थे, तो क्या प्रभु राजा के महल में नहीं जन्म लेंगे? रहने दो, पता नहीं क्या बात है।
6: इसमें डरने जैसी क्या बात है, उन्होंने कहा है कि डरिए नहीं। चलो चलो, हम अपने मुक्तिदाता को देखने चलते हैं।
4: चलो हम चलते हैं।
3: प्रभु का दूत इन चरवाहों पर प्रकट हुआ जो गरीब थे, आरामदायक शहरों से दूर रहते थे, अमीरों द्वारा नीची नजरों से देखे जाने वाले निर्धन चरवाहे, मगर ईश्वर की दृष्टि में इतने अमीर कि ईश्वर का संदेश पहले उन्हीं को मिला। ईसा के जन्म के साथ ईश्वर ने अपनी शक्ति व प्यार दोनों प्रकट किया था। प्राचीन समय में ईश्वर की महिमा निर्गमन के शक्तिशाली नेता मूसा पर प्रकट हुई थी, जिसने लोगों को उनकी यात्रा के समय मार्ग दिखाया था। आगे चलकर इस महिमा ने सुलेमान के मंदिर को अपनी शक्ति से भर दिया था, मगर किसे आशा थी कि ईश्वर की महिमा गडेरियों की निर्धन दुनिया पर प्रकट होगी। प्रभु के दूत सभी लोगों तक ये संदेश ले गए, और वो भी सर्वप्रथम उपेक्षितों व निसहाय निर्धनों के पास। चरनी में लेटा बालक शक्ति नहीं, नम्रता का संकेत है। वो भयभीत करने वाला नहीं, वरन आमंत्रण देने वाला है। उसका जीवन धन संपत्ति या शक्ति पर नहीं, मगर स्वयं पिता ईश्वर पर निर्भर है। ये बालक किसी पर अधिकार करने नहीं, मगर भ्रातृत्व, मेल मिलाप और मानवता की ओर आने का खुला निमंत्रण देने आया है। प्रभु के जन्म का संदेश पूर्वी देशों के 3 राजाओं को भी मिला। जब उन 3 राजाओं ने यरूशलेम जाते वक्त एक अद्भुत तारा देखा, तब
7: अरे वो देखो, ये तो अद्भुत तारा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया।
4: मुझे तो इस तारे में एक कुमारी और सूली लिए एक बालक नजर आ रहा है।
6: और तो और, हमारे ही साथ साथ ये तारा भी चल रहा है।
4: वास्तव में ये तो चमत्कार ही है।
3: राजा का जन्म तो राजमहल में ही होना चाहिए, किसी पशुशाला में राजकुमार का जन्म थोड़े ही हो सकता है। यही सोचते हुए वे 3 राजा अपने अपने उपहार सहित इज़राइली राजा हेरोद के महल पहुंचे।
4: महाराज की जय हो। महाराज, कुछ राजा आपसे मिलना चाहते हैं।
8: राजा? और मुझसे भला क्या काम हो सकता है उन्हें? खैर, उन्हें भीतर आने दिया जाए।
6: महाराज को पूर्व से आए राजाओं का नमस्कार।
8: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कहिए, क्या समाचार है?
6: महाराज, हम यहूदियों के नवजात राजा से कहाँ मिल सकते हैं?
8: यहूदियों के नवजात राजा? क्या बक रहे हो तुम? किसने कहा तुमसे ये सब? और तुम्हें कैसे पता चला कि यहूदियों के नवजात राजा जन्म ले चुके हैं?
6: महाराज, हमने उनका तारा उदित होते देखा। हम तो उन्हें दंडवत करने आए हैं।
8: तारा उदित होते देखा? सिपाही हो, राजा हेरोद का हुक्म है कि महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की एक सभा बुलाई जाए। हाँ, और आप ठीक है, हम इस बात का अभी पता लगाते हैं।

इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे दिलीप बोस, पीटर, जॉर्ज माइकल, संतोष कुमार, इंदु संतोष और स्वाति बूटे।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है फादर चार्ल्स वास मुंबई की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी फादर चार्ल्स वास मुंबई की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे जीवन शैली परिवर्तन इस विषय को लेकर। साथियों स्वास्थ्य और जीवन शैली वाकई इन दोनों का काफी गहरा साथ है। यदि हम जीवन शैली को लेकर बात करें तो पिछले कुछ समय में काफी लंबा समय हम लोगों ने देखा है कि जीवन शैली एक नकारात्मक स्वरूप में हमारे सामने आती जा रही है। हम सभी यही कोशिश करते हैं कि हमें सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले, हम सभी को मेहनत कम से कम करनी पड़े और हमारा ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम शारीरिक मेहनत से हो सके। जी हाँ, दरअसल प्रत्येक मनुष्य की ये वृत्ति होती है कि उसे कम से कम मेहनत करनी पड़े और वो उस कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा काम कर ले और ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यों की पूर्ति भी कर ले। लेकिन वृत्ति यही कहती है कि मेहनत कम हो, और शायद इसी मेहनत को कम करने की प्रयत्नों के चलते हम एक ऐसी जीवन शैली के आदि हो चले हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। तो साथियों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नुस्खों की भी, कुछ ऐसी आदतों की भी, और जीवन शैली में हम किस प्रकार से कुछ परिवर्तनों को ला सकते हैं जिसके चलते हम स्वास्थ्य को बनाए रख सकें, या फिर आने वाले समय में यदि कुछ प्रकार की बीमारियां हमें हो सकने की आशंका है हमारी आदतों के चलते तो उससे भी हम बच सकें। तो विशेष तरीके से किसी बीमारी पर केंद्रित आज का हमारा कार्यक्रम नहीं है, न ही किसी अवस्था को लेकर है, बल्कि हमारे जीने के तरीके को लेकर है कि उसे हम कैसे बेहतर बनाएं, हम किस प्रकार से स्वयं को योजनाबद्ध करें जिससे हम एक स्वस्थ जीवन शैली को जी सकें और सही और स्वस्थ जीवन को हम पा सकें। यदि हम भोजन की बात करें सबसे पहले तो भोजन में आलू, चावल, तेल, घी, शक्कर और नमक, इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना ही भोजन संतुलित माना जाएगा। ये बात बिल्कुल अलग है कि यही चीजें कई बार हमारे लिए स्वाद का पैमाना बन जाती हैं। आलू हो गया, चावल है, ज्यादा तेल, ज्यादा घी, ज्यादा शक्कर और ज्यादा नमक, कई बार हमें ये एक सही स्वाद की अनुभूति करवाते हैं और इसी से हमें अपना भोजन पूरा लगता है, संपूर्ण लगता है। लेकिन खासकर 40 वर्ष की आयु के बाद विशेष रूप से इन चीजों पर यदि नियंत्रण करें तो ये हमें एक सही स्वास्थ्य दे सकते हैं। रोजाना आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम यदि हम घूम सकें, हल्का व्यायाम कर सकें, संभव हो तो बगीचे में घूमें और लंबी लंबी सांस लेकर उसे रोके और धीरे धीरे छोड़े, जिसे आजकल हम प्राणायाम कहते हैं, और ये आपको बहुत आसानी से किसी भी पत्र पत्रिका में या फिर टेलीविजन के कार्यक्रमों में विविध प्रकार के प्राणायाम आप सीख सकते हैं। जितना हो सके हम यदि पैदल चलें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे शरीर के रक्त संचरण के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। साथियों जब भी पैदल चलने का अवसर मिले उसे जरूर भुनाएं। यदि घर के पास ही कहीं जाना है तो आप पैदल जरूर जाएं। यदि आपको आपकी कोई सहेली घर पर आकर बैठी है और बातें करना चाहती है तो आप उसे ये प्रस्ताव दें कि चलो हम थोड़ी देर पैदल जाकर घूम आते हैं, कोई काम कराते हैं, हमारी बातचीत भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। साथियों इस प्रकार से यदि हम स्वयं को ही स्वस्थ होने के प्रति प्रतिबद्ध कर लें तो वाकई हम स्वस्थ रह भी सकते हैं। इसके साथ ही यदि हमें हृदय रोग से बचना है तो हंसने का कोई अवसर हमें नहीं गंवाना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप खूब हंसते हैं तब आपके हृदय की मांसपेशियों की बहुत अच्छे से व्यायाम हो जाता है और आपका हृदय स्वस्थ रहता है। इसके साथ में ही एक और अध्ययन बताता है कि जो लोग नियमित साइकिल चलाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या फिर घर पर रखी हुई एक्सरसाइज साइकिल, उन्हें हृदय रोग कम होते हैं या हृदयाघात बिल्कुल नहीं होता। इसके साथ ही यदि कसरत की बात करें, और हम बात कर रहे हैं इन गर्मियों में, तो तैराकी एक बहुत अच्छी कसरत है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। साथियों नमक की मात्रा वाकई हमें कम करनी चाहिए जिसके ऊपर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद में हम में से कुछ व्यक्ति शक्कर की मात्रा जरूर कम कर देते हैं या घी या तेल की मात्रा कम कर देते हैं, लेकिन यदि नमक के ऊपर भी हम ध्यान दें तो ये भी उतना ही असर करता है जितना कि शक्कर और नमक। यदि हम शरीर को हर उम्र में, बढ़ती हुई उम्र में भी स्वस्थ और फुर्तीला बनाना चाहते हैं तो भोजन में जई या फिर ओटमील, इसका समावेश जरूर करना चाहिए, और इसके साथ ही केवल गेहूं की रोटी ही खाने के स्थान पर जई के साथ बेसन, मक्का और बाजरा
इसका समावेश भी उतने ही सही प्रकार से करना चाहिए जितना महत्व आप गेहूं को देते हैं। इसके साथ ही साथियों, यदि संतुलित मात्रा में लिया जाए तो शक्कर और उतनी ही संतुलित मात्रा में गुड़, ये भी लाभप्रद होते हैं। यदि हम रोजाना की जरूरत की बात करें तो व्यक्ति को रोजाना 200 से 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, और जितना संभव हो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों से उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी भोजन में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। हम ये भी देख सकते हैं कि मनुष्य के हृदय के सच्चे दोस्त होते हैं काजू बादाम और सूखे मेवे, और यदि हमें हृदय का दुश्मन बनना है तो उसमें जहर का काम कर सकती है तंबाकू। इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है साथियों, आप सभी समझदार हैं। साथियों, काजू और बादाम में जो वसा होते हैं उसके कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बादाम में 30% कैल्शियम होता है और सोयाबीन में मछली से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथियों, इन दिनों हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति में उसकी उम्र, उसकी ऊंचाई, उससे कुछ ज्यादा ही चर्बी होती है, यानी व्यक्ति मोटा होता है। वाकई मोटापा मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। लगभग सभी बीमारियों की जड़ मोटापा ही होता है। इसके कारण आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयाघात, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑर्थराइटिस, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। फास्ट फूड खाना, तली हुई चीजें खाना, बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखना, बहुत ज्यादा मांसाहारी भोजन करना और सुबह देर से उठना, ये कुछ कारण हैं जिनके चलते शर्तियां मोटापा बढ़ता ही है। और कभी कभी इस प्रकार का आचरण न करने के बावजूद व्यक्ति में यदि मोटापा है तो हम कह सकते हैं कि ये वंशानुगत होता है। इस प्रकार की सभी चीजों को यदि त्याग दिया जाए तो मोटापे से हम बच सकते हैं। यदि आप रात को 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठे तो आपको पर्याप्त नींद भी मिलेगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सूर्य के दर्शन करें। यदि आप किसी बहुमंजिला इमारत में रहते हैं तो जितना हो सके लिफ्ट का प्रयोग ना करें। यदि हम महिलाओं की बात करें तो वे नृत्य को अपना सकती हैं, रस्सी कूद सकती हैं। यदि व्यायाम करना है तो जॉगिंग करें या सुबह शाम अपनी सहेलियों के साथ मिलकर टेनिस या बैडमिंटन खेलें। इसके साथ एक और प्रकार प्रचलन में है इन दिनों, जिसे हम योगाभ्यास भी कह सकते हैं। हमने प्राणायाम की बात अभी इस कार्यक्रम के प्रारंभ में की ही थी। प्राणायाम के साथ ही कुछ और आसन भी कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम होता है, कपालभाति प्राणायाम होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, मधुमेह और हृदयाघात जैसी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विविध प्रकार के आसन यदि आप करें, जैसे पश्चिमोत्तानासन है या फिर शशांकासन है, भोजन के बाद यदि थोड़ी देर के लिए आप वज्रासन में बैठ सकें तो आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही होता है। इसके साथ ही साथियों, यदि सूर्योदय के समय आप जल्दी उठकर सूर्य के दर्शन करें, हरी हरी घास पर, दूब पर आप यदि चलें, तो इसका सीधा असर आपकी आंखों की ज्योति पर पड़ता है। साथियों, इन दिनों जो एक प्रकार चल रहा है चिकित्सा के भी क्षेत्र में, वो वाकई बड़ा अजीब हम कह सकते हैं, या फिर जो खटकने वाला है वो ये है कि जितनी भी बीमारियों के विशेषज्ञ हमें दिखते हैं, वे मरीज को किसी प्रकार का परहेज नहीं बताते और न ही वे मरीज से किसी भी प्रकार के परहेज को पूछते हैं। उनके द्वारा सिर्फ बीमारी का निदान करके और महंगी महंगी दवाइयों को लिखना, विविध प्रकार की जांच करना, इसे ही चिकित्सा का प्रकार समझ लिया जाता है। जबकि यदि रोग को प्रारंभिक अवस्था में ही हम पहचान ले, उसके लिए कुछ विविध प्रकार के भोजन संबंधी या आचार विचार व्यवहार संबंधी परहेज करने के लिए मरीज को कहा जाए, तब ये कहा जा सकता है कि वो बीमारी होने से पहले ही आपसे दूर चली जाएगी। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान देने के लायक ये बात है कि परहेज के ऊपर ध्यान कम दिया जाता है और चिकित्सा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। साथियों, यदि हम खान पान की आदतें बदलें और जीवन शैली में परिवर्तन करें तो वाकई 75% बीमारियां ठीक हो सकती हैं, या फिर आपका शरीर इतना प्रतिरोधक हो सकता है किसी भी रोग को लेकर कि आपको वे बीमारियां हो ही ना। वाकई जैसे नमक का उपयोग कम करना, मधुमेह में मीठा कम करना, नियमित व्यायाम करना, वसा कम हो ऐसा भोजन करना, जल्दी सोना और जल्दी उठना, प्रसन्न रहना और हरी घास पर सुबह सुबह घूमना, ये जीवन शैली में लाए जा सकने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं साथियों,
जिनसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, आने वाले समय में भी आपका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही समय पर भोजन करना, दो आहारों के बीच में कम से कम 4 घंटे का समय रखना, भूख से कम भोजन करना और ढेर सारा पानी पीना, इससे आपके किडनी रोग होने की आशंका बिल्कुल कम हो सकती है। इसके साथ ही साथियों, यदि हम वर्तमान जीवन शैली को देखें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें घेरे रहते हैं, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप और इसके साथ ही कंप्यूटर्स और आईफोन, आईपॉड, इस प्रकार की चीजें न केवल युवा बल्कि हमारे प्रौढ़ हो चुके साथियों तक भी, उनको सभी को घेरे रहती है। इन सभी से निकलने वाले रेडिएशन या विकिरण, इसका प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार से पड़ता ही है। तो जीवन शैली में परिवर्तन यानी सिर्फ समय पर खाना, संतुलित भोजन, व्यायाम करना ये ही नहीं होता, वरन आपको अपने लिए एक स्वस्थ जीवन शैली की सोच विकसित करना भी जरूरी होता है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है फादर चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी फादर चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्यारे बाल मित्रों, आपके भाई ईशान खापरडे का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है विचित्र चोरी। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। राजा कृष्णदेव राय के निजी बाग में बढ़िया किस्म के बैंगन के कुछ पौधे थे। एक बार राजा ने दरबारियों को दावत दी जिसमें बैंगन की सब्जी भी परोसी गई। तेनाली राम को बैंगन बड़े स्वादिष्ट लगे। घर आकर उसने अपनी पत्नी से उन बैंगनों की बड़ी प्रशंसा की। पत्नी ने तेनाली राम से कहा, इतने स्वादिष्ट बैंगन कम से कम एक बार तो मुझे भी खिलाओ। राजा अपने बाग के पौधों के बारे में बड़े सावधान रहते हैं। उनके बाग में चोरी करने वालों का सिर काट लिया जाता है। ना बाबा ना, मैं बैंगन की चोरी करके नहीं ला सकता, तेनालीराम ने कहा। देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, कम से कम एक बार तो मेरी इच्छा पूरी कर दो, पत्नी बोली। तेनालीराम को अपनी पत्नी

कुछ ऐसा सोचो कि वह बैंगन खा भी ले और चोरी भी साबित ना हो। तेनालीराम की पत्नी बोली, बहुत अच्छा। तेनालीराम ने कहा, उसने एक बाल्टी में पानी भरा और खुली छत पर जहाँ बच्चा सोया हुआ था खूब सारा पानी उस पर छिड़क दिया। फिर उसे उठाकर कहा, वर्षा हो रही है, चलो अंदर चलो। अंदर ले जाकर उसने बच्चे के कपड़े बदलवाए, उसके बाद उसे बैंगन की तरकारी खाने को दी। फिर यह कहकर कि वर्षा हो रही है, उसे अंदर ही सुला दिया। अगले दिन राजा को बैंगनों की चोरी का पता चल गया। नगर में इस बात को लेकर बड़ा शोर मचा। राजा ने चोर पकड़ने वाले का काफी बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री अप्पाजी को तेनालीराम पर शक था। उसने राजा को अपना विचार बताया, मैं जानता हूँ कि वह बहुत चतुर है, वह किसी न किसी बहाने बच निकलेगा। उसके बेटे को बुलवाओ, अभी सच्चाई पता चल जाएगी। राजा ने कहा। तेनालीराम के बेटे को बुलवाया गया। उससे पूछा गया, कल रात को तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बैंगन की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट थी, बच्चे ने कहा। प्रधानमंत्री अप्पा जी ने तेनालीराम से कहा, अब तो तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तेनालीराम ने कहा, ये तो कल रात बहुत ही जल्दी सो गया था, यो ही उठपटांग बातें कर रहा है, अवश्य इसे सपना देखा होगा। मैं अभी सारी बात साफ किए देता हूँ, इससे पूछिए कि कल रात मौसम कैसा था। अप्पा जी ने बच्चे से पूछा, कल रात कैसा मौसम था, आकाश साफ था या बारिश हुई थी? कल रात तो बड़ी मूसलाधार वर्षा हुई थी प्रधानमंत्री जी, मेरे सारे कपड़े भींग गए थे, बच्चे ने कहा। रात को एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा था। अप्पा जी ने सोचा, यह बच्चा यूं ही कल्पनाएं कर रहा है, जैसे वर्षा की कल्पना की है वैसे ही बैंगन की सब्जी की बात भी सोच ही ली होगी। तब अप्पा जी ने तेनालीराम से अपने शक के लिए क्षमा मांग ली।

साथियों, अभी आपने सुना बाल जगत। साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब सुनते हैं एक बाल गीत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्राचीन काल में एक गांव में एक सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि अपने नौकरों को काम करने के बाद मजदूरी तक नहीं देता था। इसीलिए उसके यहाँ कोई भी नौकर काम करने को तैयार नहीं होता था। उसके खेतों पर काम करने वाले मजदूरों ने भी उसका खेत जोतने से मना कर दिया। इस तरह उसके खेत बंजर पड़े थे और सिंचाई के लिए काम आने वाले पोखर और कुएं भी सूख गए। खेती और व्यापार ठप हो जाने से सेठ दिनों दिन गरीब होता गया। इतना सब हो जाने पर भी उसका व्यवहार जस का तस रहा। वह भी बहुत ही घटिया और जिद्दी इंसान था। उसे भूखों मरना गवारा था, पर अपनी तिजोरी खोलना नहीं। एक दिन गांव में एक बहुत ही नामी गिरामी महात्मा जी आए। सेठ ने सुना कि महात्मा जी के पास अपार सिद्धियां हैं और वह हर समस्या का हल निकाल देते हैं। साहस करके सेठ महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मन, मैं आजकल बड़ी मुसीबत से घिरा हूँ। मेरे खेत बंजर पड़े हैं और खलियानों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। नदी तालाब और कुएं सूख गए हैं। मेरे यहाँ कोई भी नौकर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। महात्मन, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, कृपा करके मुझे इस घोर संकट से बचाइए। महात्मा बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम 3 महीनों तक यदि सुबह शाम इस मंत्र का जाप करोगे तो 4वें महीने के पहले दिन तुम्हारे सम्मुख एक ब्रह्म राक्षस प्रकट होगा। वह एक दास की तरह तुम्हारी सेवा करेगा। तुम जो भी आदेश दोगे उसे पूरा करेगा, क्योंकि वह अकेला ही 100 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। खुश होकर सेठ महात्मा के चरणों में गिर गया और उनसे मंत्र और जाप की सारी विधि बताने के लिए कहा। महात्मा जी ने उसे मंत्र देकर और भली बात भी समझा बुझाकर विदा किया। सेठ ने 3 महीनों तक लगातार मंत्र का जाप किया और महात्मा जी के कहे अनुसार 4वें महीने में ब्रह्म राक्षस उसके सम्मुख प्रकट हुआ। सेठ के समक्ष प्रकट होते ही वह बोला, भगवान, आपने मुझे क्यों याद किया है? आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? सेठ अपने सामने ब्रह्म राक्षस को देखकर पहले तो डर गया, फिर वह साहस जुटाकर बोला, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए तुम्हें मेरे भी आदेशों को मानना होगा। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है भगवान, मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। किंतु आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? सेठ ने पूछा। ब्रह्म राक्षस बोला, मेरी शर्त है कि आपको मुझे हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना होगा, वरना मैं आपको और आपके परिवार को मार दूंगा। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे इतना अच्छा नौकर मिला है जो हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है। इसके बाद सेठ ने ब्रह्म राक्षस को एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए कहा, इस कुएं को 2 किलोमीटर लंबा और खोदो। जो आज्ञा भगवान, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। सेवक ने नम्रता से कहा और काम शुरू कर दिया। सेठ ने सोचा कि ब्रह्म राक्षस को इतना बड़ा कुआं खोदने में कई महीने लग जाएंगे, पर उसने घर जाकर खाना ही खाया था कि ब्रह्म राक्षस काम खत्म करके वहाँ पहुँच गया। सेठ हैरान होकर पत्नी से बोला, यदि यह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो हम इसे कब तक काम दे पाएंगे? इस तरह तो एक दिन खाली होकर यह हम सबको मार डालेगा। पत्नी सेठ को दिलासा देते हुए बोली, स्वामी, आप चिंता न करें, आप जब तक उसे काम दे सकते हैं दें, उसके बाद में मैं उसे ऐसा काम दूंगी जिसमें वह लंबे समय तक लगा रहेगा। सेठ ने उसे कई काम करने को दिए, पर उन कामों को उसने मिनटों में निपटा दिया। फिर ब्रह्म राक्षस ने गरज कर कहा, कोई और काम बचा है तो बताएं। वह सोच रहा था कि अब मालिक के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह शर्त के मुताबिक उनको मारकर खा लेगा। सेठ बोला,
मेरी पत्नी का एक काम तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस काम को पूरा करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। इसके बाद सेठ की पत्नी ने अपने सिर से एक बाल तोड़कर ब्रह्म राक्षस को देते हुए कहा, इस बाल को सीधा करके मुझे दो। ब्रह्म राक्षस ने बाल लेकर उसे सीधा करने का बहुत प्रयास किया, पर वह उसे सीधा नहीं कर पाया। तब ब्रह्म राक्षस ने सोचा, सुनार सोने के तार को आग में गर्म करके सीधा करता है, क्यों न मैं भी उसी उपाय को अपना कर देखूं? यह सोचकर उसने जैसे ही आग के सामने बाल को किया, बाल जल गया। ब्रह्म राक्षस डर गया कि उसका मालिक काम पूरा न होने पर उसे दंडित करेगा, इसलिए वह वहाँ से कहीं दूर भाग गया।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब सुनते हैं हम एक और भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब मैं अगली सभा का निर्देशन के लिए आमंत्रित करती हूँ विवेक पीटर रॉबर्ट को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है कवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुखिया जी, सुना है कि राज्य को हरा भरा बनाने के लिए हरियाली मिशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कई किस्म के पौधे लगाने की योजना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना है कि ये राज्य सरकार की ओर से यह पहल की गई है एक योजना के तहत, जिसको हरियाली मिशन योजना के नाम से जानते हैं। हरियाली मिशन में पौधों की विभिन्न प्रजातियों पर खास ध्यान होगा। यह योजना पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से बनाई गई है। हरियाली मिशन के तहत पौधों की वैरायटी का भी खास ख्याल रखा जाएगा, या यूं कहें कि खास ध्यान रखा जा रहा है अभी से ही।
0: तो इसके लिए भूमि का चुनाव भी कर लिया गया है क्या मुखिया जी? किस तरह की भूमि में इस योजना को अंजाम दिया जाएगा, यह तय किया गया है कि नहीं?
1: 5 वर्षों में अवकृष्ट वन भूमि और वनों से बाहर की भूमि पर करीब 21 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी प्रजातियों के पौधों को शामिल करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है।
0: किस तरह के वृक्षों को लगाने का प्रावधान बनाया गया है इस योजना के तहत?
1: लकड़ी और व्यावसायिक उपयोग वाले पौधों के अलावा जो पौधे लगाए जाएंगे उनमें फलदार वृक्ष भी होंगे, सौंदर्य प्रसाधन को बनाने वाले पौधे होंगे, औषधीय दवा दारू के पौधे होंगे। इस तरह के ये तमाम पौधों को इस योजना के तहत महत्व दिया गया है और इसके तहत इन तमाम महत्व के पौधों को भी शामिल किया गया है।
0: तो क्या मुखिया जी, अलग अलग महत्व के प्रजातियों का भी वर्गीकरण किया जाएगा?
1: जी हाँ, ऐसा लगता है कि अलग अलग महत्व के प्रजातियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पौधों की बांटी गई इस श्रेणी के आधार पर ही पौधरोपण किया जाएगा और निजी पौधशालाओं को भी विकसित किया जाएगा। मसलन शहर के सड़कों के किनारे या अन्य खास स्थानों पर सौंदर्य प्रधान प्रजाति वाले पौधे लगाए जाएंगे।
0: इस योजना के तहत किस तरह के पौधों को काफी प्रमुखता के तौर पर शामिल किए जाने की योजना है?
1: इस योजना के तहत, जिसे कृषि वानिकी योजना भी कहा गया है, इसमें पॉपुलर जैसे व्यावसायिक पौधों को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है।
0: तो फिर इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरह के पौधों का चयन किया गया है?
1: ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पौधों को लगाने की योजना है। इसके अलावा क्षेत्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए या विशेषताओं के हिसाब से भी प्रजातियों का चयन किया जाएगा। अगर बात करें कि जल जमाव वाले क्षेत्रों की, तो जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए भी कुछ खास प्रजातियों के पौधों का चयन किया गया है।
0: पॉपुलर पौधों में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती है जिससे सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है?
1: पॉपुलर पौधों को विशेष व्यावसायिक महत्व वाला माना गया है। इसे छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों के करीब 9.5 करोड़ पौधों को लगाने की योजना है।
0: इस विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों को विकसित करने के लिए सरकार की किस तरह से पहलकदमी की गई है?
1: सरकार की तरफ से जो पहलकदमी की गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन विभिन्न प्रजातियों वाले पौधों को विकसित करने के लिए निजी पौधशालाओं को स्थापित किया गया है या स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न प्रजातियों में श्रेणीवार पौधशालाएं स्थापित किए जाएंगे ताकि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों की आपूर्ति कम नहीं पड़े।
0: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सूबे में सोसाइटी करेगी कृषि बाजारों का संचालन।
1: जिले में खुलने वाले निजी बाजारों के संचालन के लिए सरकार सोसाइटी बनाएगी, ऐसा मुझे भी सुनने में आया है। बाजारों के प्रोजेक्ट पास करने के लिए उनके विकास और संचालन तक की जिम्मेवारी अब इसी सोसाइटी के हाथ में होगी। साथ ही साथ यह किसानों को प्रशिक्षित भी करेगी ताकि राज्य सरकार ने भंग कृषि बाजार का विकल्प ढूंढ लिया है, इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
0: हमारे यहाँ पहले तो बाजार समितियाँ थीं, क्या उसे भी भंग कर दिया गया मुखिया जी?
1: राज्य में 95 बाजार समितियों को वर्ष 2006 से ही सरकार ने भंग कर दिया था। कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत दिलाने के लिए हर जिले में बाजार खोलने का फैसला भी पहले हो चुका है, लेकिन इसके संचालन की जिम्मेवारी अभी तक तय नहीं हो सकी थी।
0: तो क्या अब सरकार ने जिम्मेदारी तय कर दी है या अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है?
1: अब सरकार की नई पहल से यह समस्या दूर होने वाली है। विभाग में प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सोसाइटी अस्तित्व में आ जाएगी, फिर बाजार खोलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी।
0: बाजार खोलने का जो काम है, क्या वह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा? इस बाबत सरकार के पास क्या मसौदा है?
1: सरकार ने पहले चरण में 11 जिलों में कृषि उत्पादों का आधुनिक बाजार खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूरी अधिक होने पर गांव में भी इन बाजारों की छोटी इकाइयां खोलने की योजना है।
0: क्या इस बाजार को खोलने के लिए सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स भी देना पड़ेगा?
1: किसी भी बाजार के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुविधाओं का उपयोग करने के लिए या सुविधाओं का उपयोग करने पर सिर्फ उसका किराया देना पड़ेगा। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, भोजपुर, रोहतास जिले में मार्केट हब बनेंगे। सभी बाजारों को एग्री बिजनेस सेंटर के नाम से विकसित करने का प्लान है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इन सेंटरों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जमीन की व्यवस्था निजी पार्टनर को करनी होगी।
0: इस पूरी प्रक्रिया को जो पैसे खर्च होंगे उसका अनुमान क्या है और वह राशि कहाँ से आएगी?
1: इस पर कुल 374.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें अधिकतम 35% की मदद सरकार करेगी। टेंडर उन्हीं प्लॉट किया जाएगा जो सरकार से कम सहयोग मांगेंगे। इन बाजारों की सुविधाएं इलाके की मुख्य फसलों के अनुसार होगी। हालांकि पैक हाउस, बेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, छटनी और ग्रेडिंग जैसी जरूरी सुविधाएं सभी बाजारों में होगी। मार्केट हबों के निकट के किसानों को अपने उत्पादों को लेकर सीधे बाजार पहुंचना होगा या वे बाजार पहुंच जाएंगे, लेकिन दूर के किसानों के लिए उनके गांवों के आसपास ही संग्रहण केंद्र बनाने की योजना इस हरियाली मिशन के तहत है। आशा है कि हमारे किसान भाई इस योजना का भरपूर फायदा उठाएंगे और साथ ही साथ सरकार भी इस ओर ज्यादा ध्यान देगी। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो खेती की स्थिति से संबंधित हम कुछ और विशेष बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद मुखिया जी।

अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और रितेश जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी धन्यवाद।
0: कपूर साहब, आपको शायद याद होगा कि पिछले कानूनी परिचर्चा में हम बात कर रहे थे खास करके स्त्रियों के मानवाधिकारों की जो हत्या हो रही है
1: जी,
0: और किस तरह से पारिवारिक के प्रति सत्ता ढीली हो जाती है तो सामाजिक के प्रति सत्ता हावी हो जाती है, इसका चर्चा आप काफी विस्तार पूर्वक कर रहे थे और इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपसे चाहिए।
1: जी बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण दर उदाहरण बताकर समझाता चलूंगा। देखिए वीरेंद्र जी, असल में मामला यहाँ ये है कि मिसाल के तौर पर एक गांव के मुखिया की लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी।
0: अच्छा।
1: शादी असफल रही, तलाक की नौबत आई, परिवार ने अपनी बेटी को नौकरी संपत्ति का अधिकार अपने लिए स्वयं जीवन साथी चुनने का अधिकार दे दिया था और तलाक की स्थिति आई तो न केवल उसे हर तरह का सहयोग और संरक्षण दिया बल्कि उसे दूसरी शादी तक के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के समाज ने लड़की की मर्जी से शादी तक को उसके पिता के प्रभाव के कारण दबे स्वर में स्वीकार किया, लेकिन तलाक की स्थिति आते ही उसने न केवल खुला विरोध किया बल्कि अन्य परिवारों की लड़कियों को उससे मिसाल देकर अपनी मर्जी से शादी या रोजगार के अधिकार के मामले में हतोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये घटना पूर्णिया जिले के एक अपेक्षाकृत शिक्षित सुसंस्कृत गांव की है। जाहिर है सामाजिक पितृसत्ता ऐसे मामलों में पारिवारिक पितृसत्ता से ज्यादा कठोर भूमिका अदा करती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब,
2: तब तो ऐसा लगता है कपूर साहब कि जब सामाजिक पितृसत्ता इतना भयावह है तो राज्य पितृसत्ता की त्रासदी और भी गंभीर होगी।
1: जी हाँ, राज्य पितृसत्ता सामाजिक पितृसत्ता से भी ज्यादा त्रासद माहौल देती है। जब स्त्री के अधिकार का प्रश्न आता है तो राजसत्ता अपने आप में दमन शोषण का सबसे बड़ा संस्थागत रूप है। उसके औजार चाहे नौकरशाही हो, चाहे प्रशासन का विभिन्न स्तर, पुलिस हो या न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले राजनीतिक हो या नीति निर्देशक, बुनियादी बात यह है कि राजसत्ता आखिर प्रतिनिधित्व तो उसी समाज के उन्हीं मूल्यों का करती है जिन पर समाज की संरचना टिकी रहती है।
0: जी जी,
1: शासक वर्ग और शासित जन के राजनीतिक अर्थशास्त्री भाषा छोड़ दें और सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक नजरिए से चीजों को देखें तो ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है कि किसी कटोरी देवी को इस व्यवस्था में न्याय मिलने में 14 साल का यंत्रणा वास क्यों भुगतना पड़ता है और किसी भौरी देवी को कोई न्यायालय न्याय देना तो दूर, उन्हें ज्यादा अपराधी क्यों प्रमाणित कर देने से नहीं चुकता।
0: बिल्कुल, जो तस्वीर की ओर आप इशारा कर रहे हैं कपूर साहब, वो काफी भयावह है।
1: जी,
0: आप जो भयावह तस्वीर हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं वो सचमुच मानवाधिकार हनन का एक नंगा सच है।
1: बिल्कुल,
0: इसे कोई झुठला नहीं सकता। आज भी पुलिस बर्बरता और जन प्रतिनिधियों द्वारा स्त्रियों के साथ बलात्कार की घटनाएं क्यों होती है और राजनीतिक पावर ऐसी घटनाओं को सफलतापूर्वक दबा देने में कैसे सक्षम होता है, ये बात तो शायद अब किसी से छिपी नहीं है। आखिर कैसे स्त्रियों के मानवाधिकार की रक्षा की जाए, यह प्रश्न जो है वो आज के दौर में एक विकराल प्रश्न है और इस पर मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ।
1: देखिए वीरेंद्र जी, स्त्रियों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए संघर्षशील ताकतों को कदम कदम पर राज्य सत्ता की राज्य पितृसत्ता से भी टकराना होगा। ये टकराव किसी आदिवासी दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार से लेकर किसी कोयल कारों परियोजनाओं में हजारों की संख्या में विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास तक के क्षितिज को समेटना है। स्त्रियों के दहेज रहित विवाह से लेकर रोजगार के अधिकार और विकास के मौके से पर्यावरण बचाव आंदोलन तक पसर जाता है। मानवाधिकार का यह संघर्ष किसी नवविवाहिता की दहेज हत्या से लेकर सामूहिक बलात्कार की शिकार कोई औरत जिसकी सामाजिक पारिवारिक राज्य पितृसत्ता संरक्षण के बजाय व्यवस्था से निष्कासन का माहौल देती है
0: जी,
1: तक अपने मानव होने के अधिकार से वंचित नजर आती है तो इसके लिए संघर्ष जरूरी हो जाता है।
2: ऐसे में अगर देखा जाए कपूर साहब, तो स्त्रियों के मानवाधिकार घर से समाज, समाज से राज्य, राज्य से राष्ट्र तक के हर कहीं चुनौती झेलते नजर आते हैं। पितृसत्ता का मतलब आखिर क्या समझा जाए समाज में? पुरुषों की सत्ता, चाहे पिता के रूप में हो या पुरुष के रूप में।
1: देखिए रितेश जी, बिल्कुल इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, लेकिन ये आसान सी व्याख्या का मौजूदा रूप सिर्फ जेंडर सुप्रीमेसी नहीं है।
2: जी जी,
1: जब हम पितृसत्ता कहते हैं तो उसका अर्थ एक के पक्ष में जाता है और दूसरे के खिलाफ, इसलिए हमारी सामाजिक संरचना पावर को जीरो सेम गेम के रूप में देखती है। जब स्त्रियां अपने अधिकारों की बात करती हैं तो पुरुष के मुकाबले स्त्री के अधिकारों की जब बात होगी तो वो ये अधिकार का दावा एक व्यक्ति के मुकाबले दूसरे व्यक्ति का होता है, न कि पुरुष के मुकाबले स्त्री का।
0: लेकिन एक बात यह भी है कपूर साहब कि हमारे समाज में ऐसे परिवारों की भी कमी नहीं है जहां औरतें घर की वास्तविक शासक होती हैं और मर्द की हैसियत महज एक जेब की सी रह जाती है। दूसरी बात है कि ऐसे पारिवारिक प्रारूप कम ही देखने को मिलते हैं और जो होते हैं वहां भी डिफेक्टो शासन भले ही स्त्रियों का चले, डिजोन स्टेटस पुरुषों को ही प्राप्त होता है। समाज के स्तर पर यही बात लागू होती है, जब स्त्रियों के अधिकारों के खिलाफ पुरुषों को भी साथ साथ अक्सर स्त्रियों को भी स्वर मिलाते पाया जाता है।
1: जी हाँ,
0: यह बात तथ्य से अलग हटकर कह रहे होंगे शायद कपूर साहब, आपको समझ में?
1: आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी,
0: सामाजिक व्यवस्था स्त्रियों को पुरुषों के सुर में ही बोलना सिखाती है।
1: एकदम सही बात है, सत्ता जब जब जहाँ स्त्रियों के हाथ में होती है वहाँ उन्हें पितृसत्ता के कट्टर प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करने या करते पाया गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कहना चाह रहा था।
1: स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मिसाल सामने है, जिन्होंने बागपत कांड के बाद माया त्यागी से मुलाकात के लिए बड़ी मुश्किल से समय निकाला था और चंद मिनटों की मुलाकात में सिर्फ ये पूछा था उसे किसने मिलने भेजा था, उनका मतलब विपक्षी राजनीतिक दलों से था, और उसको कितना आर्थिक घाटा हुआ, तथा अंत में ये नसीहत दी गई कि माहौल जब ठीक नहीं है तो इतने जेवर पहनकर घर से निकलने की क्या जरूरत थी। एक महिला प्रधानमंत्री का एक बलात्कार पीड़ित महिला से ऐसे सवाल साफ बताते हैं कि स्त्री परक संवेदनशीलता शासक वर्ग में नहीं होती, चाहे वह पुरुष हो या महिला।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसी संदर्भ में एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कपूर साहब, कि हमारे देश में प्रोफेसर धर्म कुमार जैसी प्रख्यात महिला अर्थशास्त्रियों का भी अभाव नहीं है, जो आधुनिक तकनीकी औजार अस्थिनियो सिंथेसिस पर हुए नारीवादी आंदोलन के संदर्भ में यह बयान जारी करने से भी नहीं चुकती कि स्त्री शिशुओं की हत्या से समाज के स्त्री पुरुष अनुपात में फर्क होगा, जिसका अर्थ होगा महिलाओं की समाज में कम आपूर्ति और पुरुषों की मांग में सापेक्षिक कमी। जब महिलाएं कम होंगी तो बाजार के नियम के अनुसार उनकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उनके जीवन दशा में सुधार होगा।
1: बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी या धर्म कुमार जैसी स्त्रियां पितृसत्तात्मकता का प्रतिनिधित्व करती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब,
1: और जब पिता की सत्ता का अर्थ एक जेंडर विशेष की सत्ता नहीं रह जाता, पितृसत्ता तब भी अपनी उपस्थिति दर्शाती है जब जन आंदोलनों में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी को मौके की जरूरत मानकर स्वीकारा जाता है, लेकिन शांति कायम होते ही उन्हें घर के भीतर धकेलकर ये कहा जाता है कि मर्दों की बातों में दखल न दे। सीपीआई के नेतृत्व में हुए तिलांगना आंदोलन और मध्य बिहार के क्रांतिकारी नक्सलवादी आंदोलन तक स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी का इतिहास तक लिखने की जरूरत नहीं की जाती। सीपीआई एमएल लिबरेशन तक महिला कामरेडों की भूमिका की तो चर्चा करता है, लेकिन जब दस्तावेज लिखता है तो महिला को केंद्र में रखकर एक अलग महिला पक्षी दस्तावेज तैयार नहीं कर पाता।
0: बिल्कुल कपूर साहब, ये काफी हास्यास्पद बात है जो प्रतिसत्तात्मक के पहलू से जुड़ा हुआ है और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। चिपको आंदोलन का भी तो वही हाल है कपूर साहब
1: जी,
0: चिपको आंदोलन की वास्तविक नायिकाएं कहीं पृष्ठभूमि में नहीं रह जाती, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण देते हैं श्री सुंदर लाल बहुगुणा और देते रहे थे, जिनको इस योग बनाने का दायित्व वहन किया उनकी पत्नी बिमला बहुगुणा ने। मिसालें ज्यादा उत्तेजित करें लेकिन ये तथ्य है और उनकी अवहेलना करना उसी प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था को पुष्ट करना हो। जिसको कमजोर किए बगैर स्त्री को उसके अधिकार मानव होने के अधिकार नहीं मिल सकते, तो पितृसत्ता के पोषक सिर्फ पुरुष नहीं है और नारीवादी सोच सिर्फ स्त्रियों की बपौती नहीं, जो स्त्री को एक मनुष्य समझने उसके अनुरूप आचरण करने की परिपक्व समझदारी का परिचय दे, जो स्त्री के कुदरती सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सर्वपक्षी अधिकारों के प्रति जागरूक हो या लड़े, वो स्त्री हो या पुरुष, परिवार हो या कोई अन्य संस्था, समाज हो या राज्य हो या फिर राष्ट्र हो, वही सही नारीवादी है। आज नारीवाद का अर्थ यही है शायद, जो मैं समझता
1: हूं। आपका कहना वीरेंद्र जी सही है, बिल्कुल सही है। सोच के इस बिंदु पर पहुंचकर सवाल ये भी पैदा होता है कि पितृसत्तात्मकता की परंपरागत परिभाषा की आज बदलने की जरूरत तो नहीं है।
2: चूंकि नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्याय व्यवस्था और पुलिस की राज्य सत्ता मुख्य रूप से सक्रिय जिम्मेदारी देती है कि इसलिए पुलिसिया अत्याचार या न्यायिक अन्यायों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा है। उस सिलसिले में स्त्रियों के खिलाफ पुलिस और कानून के व्यवहार की चर्चा जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है रितेश जी। मैं आपको बता दूं कि राज्य सत्ता ने सामाजिक कानूनों के अंतर और सामाजिक कानूनों के आधार पर जो भी कानून बनाया है उनकी त्रासदी ये है कि या तो ये कानून पितृसत्तात्मकता को ही मजबूत करते हैं या नहीं तो जो गिने चुने प्रगतिशील कहे जाने वाले कानून है उनका स्वरूप ऐसा है कि उनका इस्तेमाल स्त्रियों के पक्ष में इस व्यवस्था के तहत हो ही नहीं पाता। पहली श्रेणी के कानूनों की एक मिसाल संपत्ति का अधिकार हो सकता है तो दूसरी तलाक के मामलों में बच्चों पर मां का सीमित अधिकार हो सकता है। तलाक से संबंधित कानून 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे की परवरिश का हक मां को देता है और 5 वर्ष से 14 वर्ष तक उम्र तक के पिता को, उसके बाद बच्चे की मर्जी को।
0: कपूर साहब इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे लेकिन अगले कार्यक्रम में, अभी हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे तो बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है गौतम बुद्ध और उनकी जीवन यात्रा, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

व्यक्ति विशिष्ट वार्ता सुनिए, गौतम बुद्ध और उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, गौतम बुद्ध महान पुरुषों में गिने जाते हैं। वे एक ज्ञानी एवं हितैषी पुरुष थे। उनके बचपन का नाम गौतम या सिद्धार्थ था। उन्हें बुद्ध का नाम तब दिया गया जब वे 35 वर्ष पार कर चुके थे। वे कपिल वस्तु के योद्धा शाक्य वंश से ताल्लुक रखते थे। वैसे तो दोस्तों, युवा सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम भी कहा जाता था, के बचपन का उल्लेख बुद्ध के मर्म स्पर्शी उद्धरण में मिलता है। बात उस वक्त की है जब वे सन्यासी के रूप में घोर तपस्या कर रहे थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और मां का नाम था माया। कहा जाता है दोस्तों, गौतम के शैशव काल में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में गौतम का लालन पालन गौतमी नाम की एक स्त्री ने किया था। गौतम का जन्म शाक्य वंश में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, भगवान बुद्ध जब 29 वर्ष के थे, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, एक बड़ा बदलाव आया। एक दिन अचानक वे राजपाट भोग विलास की वस्तु त्याग कर घर से निकल पड़े। वे घुमक्कड़ सन्यासी बन गए। उनके मन में यह विचार कैसे आया, उसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है, शानो शौकत में डूबे गौतम को बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, बर बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे भोग विलास में इतने लिप्त थे कि बाहरी दुनिया के बारे में उन्हें तनिक भी जानकारी न थी। दोस्तों, एक दिन अपने रथ में जाते हुए बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, यह कैसा आदमी है जिसका शरीर झुका हुआ है और कांप रहा है? इसके बाल सफेद हैं, दांत टूटे हुए हैं और वह छड़ी के सहारे चल रहा है। सारथी ने बताया कि बुढ़ापे में हर आदमी ऐसा ही हो जाता है। कुछ दिन बाद गौतम ने अपने रथ से एक बीमार आदमी को देखा। गौतम बुद्ध रोग से पीड़ित व्यक्ति को देख द्रवित हो उठे। उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन गौतम बुद्ध का रथ एक शव यात्रा से होकर गुजरा। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि हर आदमी एक न एक दिन मर जाता है। अब उन्हें पूरी तरह से पता चल चुका था कि मनुष्य का जीवन दुख तकलीफों से भरा पड़ा है। तभी एक दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो पीताम्बरी वस्त्र धारण किया हुआ था। उसका सिर मुंडा हुआ था और मुखाकृति शांत थी। उस सन्यासी को देखते ही बुद्ध ने तय कर लिया कि मुझे भी इसी सन्यासी की तरह बनना है, क्योंकि जीवन में सुख नहीं है। परेशानी, पीड़ा, दुख के अलावा गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं है। क्या सन्यासी दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर है? फिर क्या था, गौतम बुद्ध ने अपना सिर मुंडवा लिया और भगवा वस्त्र धारण कर लिया। बुद्ध का यह रूप देखकर उनके माता पिता की आंखें नम हो गईं, पर कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बुद्ध निर्णय ले चुके थे। दोस्तों, गृहस्थ से यायावरी का जीवन बुद्ध को रास आने लगा। भारत के पूर्व और उत्तर में वे जगह जगह घूमते रहे। एक घुमंतु सन्यासी के रूप में बुद्ध सन्यासी एवं उपदेशक की तरह कौशल और उसकी राजधानी श्रीवस्ती गए, जो उनके जीवन के अंतिम चरण में उनका मुख्यालय बन गया था। भारत के कई कई हिस्सों में बुद्ध को सुना और देखा गया। पूरे एशिया में गौतम बुद्ध घूम घूमकर उपदेश देते रहे। ऐसा कहा जाता है कि यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस बुद्ध से कुछ बड़े थे। ये भी कहा जाता है कि इटली में रोम साम्राज्य की स्थापना बुद्ध से 200 साल पहले हो चुकी थी। यूरोप में इत्रुस्कन का प्रभाव फैल रहा था और इधर भारत में बुद्ध की प्रसिद्धि कौशल और मगध में बढ़ रही थी। दोस्तों, बुद्ध का बुद्धत्व धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। उन्होंने मानव सभ्यता पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ने के बाद बुद्ध ने अपना पहला सफर तय किया। वे सिद्धार्थ से
गौतम के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। 35 की उम्र तक गौतम सन्यासी की तरह भटकते रहे, एक ऐसी पीड़ा का संसार ढूंढते रहे जिससे जीवन पीड़ा समाप्त हो जाए, मानव की पीड़ा समाप्त हो जाए। यह गौतम के जीवन का दूसरा चरण था। अपने जीवन के तीसरे चरण तक गौतम 35 से 80 वर्ष तक लोगों को घूम घूमकर उपदेश देते रहे। दोस्तों, गौतम स्वयं ही बताते हैं कि घर छोड़ने के बाद वे पहले अनेक सन्यासियों की शरण में गए। इसके बाद इन सन्यासियों ने उन्हें ध्यान, योग, ज्ञान, विद्या के बारे में बताया, जीवन की पवित्रता की शिक्षा दी, पर गौतम की जिज्ञासा को वे सन्यासीगण पूरी नहीं कर पाए। उनके मन की उलझनों, सवालों को पूरी तरह से सुलझाने में असमर्थ रहे। गौतम के प्रश्नों, खासकर दुख पीड़ा से संबंधित सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इसलिए गौतम उन्हें छोड़कर मगध में आम लोगों के बीच भटकने लगे। उन्हें एक सुंदर उपवन मिला जहां निर्मल जल वाली नदी बह रही थी। बुद्ध ने यहीं ध्यान शुरू किया, वो भी बिना गुरु या सन्यासी के। इसका विवरण द नोबल सर्च नामक ग्रंथ में मिलता है। इस दौरान साथियों, बिना खाना पानी के ध्यान से उनका शरीर अशक्त एवं कमजोर पड़ गया। तब उन्हें पता चला कि अशक्त कमजोर शरीर लेकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है, ज्ञान की चरम स्थिति तक पहुंच पाना लगभग मुश्किल है। तब शारीरिक शक्ति वापस पाने के लिए उन्होंने फिर से ध्यान शुरू किया, वो भी कुछ खा पीकर। एक रात अंतिम पहर को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जिनकी उन्हें तलाश थी। उन्हीं के शब्दों में, मुझमें वह प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। गौतम को यह अनुभव, यह ज्ञान गया के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए प्राप्त हुआ। यह वृक्ष निरांजना नदी के किनारे था। इसके बाद तो उन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध और ज्ञान संपन्न कहा जाने लगा। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध शंका में पड़ गए कि यह सत्य केवल बुद्धिमानों के लिए है, आम स्त्री पुरुष की समझ से यह परे है। फिर उन्होंने विचार किया कि ऐसा नहीं है कि आम लोग सत्य को जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते, परंतु सत्य के बारे में किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। इसके बाद बुद्ध की करुणा और संवेदना ने

आत्म विमुक्ति के लिए तैयार होता है। इसके पश्चात आचार संहिता एवं आदर्श सिद्धांत आए। सम्यक वाणी में यह व्यवस्था दी गई कि व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए, भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पीठ पीछे निंदा एवं अनर्गल प्रलाप से दूर रहना चाहिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध और उनकी जीवन यात्रा, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारे समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है हमने जैसा बोया। इस नाटक की लेखिका एवं निर्देशिका है अंतरा करवड़े। ताइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: क्यों सल्लो आपा?
1: अरे क्यों सुबह सुबह तकलीफें बढ़ाने पर तुली हो? जानती नहीं कि आज इंस्पेक्शन होने वाला है? कोई नेताजी आएंगे वृद्धाश्रम में, इतनी देर तक सोई रहोगी तो वार्डन अभी आकर चिल्लाएगी सब पर। फिर कोसती रहना अपनी नन्ही सी जान को और खैरात में मिली इस जिंदगी को।
2: अरे क्यों उस बेचारी पर चिल्लाती हो? सोने लो ना उसे, देर रात तक पढ़ती रही है वो।
0: अब इस उम्र में खाक पढ़ना है इन्हें। छोटी थी तब मास्टर जी के कदम घर में पड़ते ही इन्हें पेट दर्द होने लगता था, और अब बड़ी आई है पढ़ने का दिखावा करने। कुछ नहीं, ये अपनी औलाद के पहले पहल लिखे खत पढ़ा करती है और खुद को तसल्ली देती रहती है।
2: अरे तो और क्या करेगी बिचारी, यहाँ हम भी इससे क्या अलग करते हैं बोलो तो। किसी ने नाती पोतों के नन्ने मुन्ने मुखड़े कमरे में लगा रखे हैं, तो किसी ने इकलौते बेटे का। अरे यहाँ किसी की कहानी किसी से ज्यादा अलग कहाँ है नसरीन?
0: विद्या बहन, मैंने कब कहा कि अपनी औलाद की याद में टेस हुए ना बहाए? लेकिन इस वार्डन को तो यहाँ का काम करने दो, बेचारी दिन रात काम करती है अपना परिवार चलाने के लिए, उसे क्यों जानबूझकर परेशान करती है ये? मैं जरा कुछ कहूंगी तो कहने लगेगी कि वार्डन तेरी सगी बहन लगती है क्या?
2: अरे अब ये सल्लो आपा की तो छोड़, कल विनीता के घर से भी चिट्ठी आई है।
0: अच्छा,
2: उसके बहू के पास खुशखबरी है।
0: अरे वाह,
2: बड़ा मीठा सा खत था उसके बेटे का।
0: वैसे इस खत की मिठास को समझने की कोशिश किया करो बड़ी बहन।
2: बेटे ने

0: अपने घर नन्हे बच्चे की आहट की बात माँ को खत में लिखकर बताई है। इसमें क्या खत और क्या खत की मिठास। तुम्हें तो अच्छे भले दाल चावल में मिट्टी मिलाने की आदत पड़ी है नसरीन, संभालो जरा।
1: हाँ, मिट्टी मिला मेरे दुश्मन। विद्या बहन, जरा एक बात तो बताइए कि विनीता दीदी के घर पर कौन कौन है?
0: इकलौता बेटा है बस, बहू है, 3 साल पहले आई हुई।
1: और वही बहू अब माँ बनने वाली है। विद्या बहन, विनीता दीदी की बहू भी नौकरी करती है, उसकी माँ विदेश में रहती है। अब 9 महीने बाद बहू की जच्चगी करवाने उनकी अम्मा जी तो आने रही विदेश से। ऐसे में मुफ्त की नौकरानी कौन? तो हमारी विनीता दीदी। बेटा आएगा और कहेगा, माँ तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हारी याद आती है। ऐसी खोटी खरी सुनाएगा और हमारी विनीता दीदी पल्लू से आंखें पोंछती हुई पहुंच जाएगी बेटी के घर।
0: लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है भला? अरे नहीं जाएगी तो यहाँ भला कौन बैठा है उसका?
1: अरे तो हमारा यहाँ कौन बैठा है विद्या दीदी? यहाँ पर किसी का भी आना अपनी मर्जी से हुआ है भला? वृद्धाश्रम है ये वृद्धाश्रम। हर एक की अपनी कहानी है, साथ मिलकर नई पीढ़ी को कोसने का स्कूल है ये, बस समझिए आप।
0: पता नहीं नसरीन, मुझे ही क्या खाक पता था कि मेरा ऐसा हाल होगा। मेरा बेटा समझदारी का बहाना बनाकर यहाँ रख गया। अब खूब इच्छा होने के बावजूद मुंह नहीं खोल सकती।
1: सुबह सुबह वो सारी तकलीफें याद ना करो विद्या बहन। वो देखो त्रिपाठी दादा कैसे चक्कर लगा रहे हैं।
0: अरे हाँ,
1: कितना करते थे। मैंने कभी जिंदगी में पैदल चलने की जरूरत नहीं समझी। हाँ। और अब देखो,
0: और एक दिल का दौरा क्या पड़ा, आ गए पांव जमीन पर। लेकिन बेचारे, उन्हें कितना लगा था ना नसरीन कि दोनों बेटे देखने तो आएंगे, बस इलाज का खर्चा बांट लेने की बात सामने आ गई। अरे लेकिन मैं कहती हूँ, एक बेटा आ ही जाता तो कितना अच्छा होता।
1: आपकी भी ना सपने देखने की आदत गई नहीं विद्या दीदी। मेरी मानो तो एक दफ्तर खोल लो यहाँ पर, मुफ्त का सलाह केंद्र। किसके लड़के ने कब आना चाहिए, जायदाद में से कितना हिस्सा मिलना चाहिए और वगैरह वगैरह।
0: तुझसे तो जरा कुछ कहो तो कहाँ की कहाँ जा पहुँचती है। ये नहीं बताओगी तुम्हारे 4 बेटों के क्या हाल हैं?
1: अब आपको सब मालूम है विद्या दीदी। है ये नसरीन तो जिंदगी भर अल्लाह से दुआ मांगती रही कि औलादे पढ़ लिख जाए, अपने दम पर कुछ बन जाए। बस एक दुआ नहीं मांग पाई थी कि इन पढ़ी लिखी कामयाब औलादों के घर में इस बदनसीब माँ को भी एक कोना नसीब हो जाए।
0: सरफराज और उसकी बहू तो आया करते थे पिछले दिनों तक।
1: अब सरफराज कहूँ कि इदरीस, जुबैर हो या जफर, सभी की एक ही कहानी है। कुछ दिनों को आते हैं तब मेरी ईद हो जाती है। अल्लाह का दिया सब कुछ है दीदी, नए कपड़े बन जाते हैं, दवाइयों के बिल चुका दिए जाते हैं। लेकिन सच कहूँ विद्या दीदी, सब कुछ सही होता तो मुझे इस मुकाम की तस्वीर देखनी ही क्यों पड़ती भला?
0: बात तो सही है नसरीन तेरी, हम सभी के बीच कोई खुशनसीब है तो वो हमारी वार्डन। देखा तूने, पूरे 65 की है, एक अकेली बहू है घर में, कैसे बेटी जैसी रखती है उसे।
1: और दीदी बहू भी तो बिल्कुल हीरा है हीरा, सास को माँ से भी बढ़कर रखती है। अरे पिछले दिनों याद है बहू की माँ आई थी? अरे यानी हमारी वार्डन की समधन।
0: हाँ हाँ याद है, तो फिर हुआ क्या?
1: अरे हुआ कुछ नहीं, वो बहू की माँ उसके कान भरने लगी और उसे समझाने लगी कि तेरी सास है, तब तक जायदाद का बंटवारा करवा ले, जो कुछ भी है ज्यादा से ज्यादा अपने नाम करवा ले।
0: हाय राम, ये बहू की माँ कह रही थी?
1: और नहीं तो क्या, वो तो भला हो उस गुणी बहू का जिसने न माँ की बात पर कान धरे न ही उसका अपमान किया। काश ऐसा मैं खुद कर पाती तो आज यहाँ किसी और की कहानी तो न सुनाना पड़ती।
0: क्यों बार बार किसी और के बहाने अपने जख्मों को कुरेदती हो नसरीन? दिखाती हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से, लेकिन तुम्हारी डायरी किसी से छुपी तो नहीं है ना? यहाँ हर किसी की कहानी में पात्र बस अलग है, लेकिन सबका यहाँ आ जाना ही सब कुछ कह देता है।
1: विद्या दीदी, क्या करूं मैं अपनी इस जुबान का। कितनी बार सोचा कि बस अपने आप में ही रहा करूं, लेकिन यहां आकर जो इन बुजुर्गों की बेवकूफियां देखती हूं तो मन बस में नहीं रहता।
0: अब अपने मन को मना ले नसरीन। जानती है ना, आज विनीता का जन्मदिन है। सुबह से नहा धोकर गजरा लगाकर तैयार बैठी है। अरे बेचारे ठाकुर जी को भी इतनी ठंड में सुबह 8 बजे नहला दिया है उसने।
1: जानती हूँ दीदी, फिर सुबह के खाने तक उनका मन बड़ा खुश खुश रहेगा। फिर जब शाम के 6 बजेंगे वे बच्चों जैसी हो जाएंगी। 8 बजे तक दरवाजे को ही अपनी आंखें बनाए हुए उसकी हर आहट पर कान धरे रखेगी। और आखिरकार कोई नहीं आने वाला उन्हें न उन्हें लेने और न ही उन्हें जन्मदिन की बधाई देने।
0: हाँ नसरीन, फिर 9 बजे रात को उसका पुराना गठिया दर्द देना शुरू करेगा।
1: झूठ मूठ में ही ना?
0: हाँ रे, हम सब जानती नहीं क्या, जब भी यहाँ किसी के पीठ कमर या घुटनों में दर्द होता है 70% झूठा होता है। सब उसी बहाने अपने पुराने दिनों को याद कर करके रोना चाहते हैं।
1: लेकिन दीदी, ये सब हमारे ही साथ क्यों होना था?
0: सब उस ऊपर वाले की मर्जी है रे।
1: उस दिन वार्डन की बहू आकर बात कर रही
0: थी। चल बहुत हुई तेरी वार्डन की और उसकी बहू की बातें। वो विनीता हमें बुला रही है, लड्डू मंगवाए हैं उसने कल ही चौकीदार भैया से कहकर।
1: शुगर की बीमारी तो है उन्हें, फिर लड्डू।
0: अरे अब जन्मदिन पर टोकना नहीं उसे, समझी? वैसे भी मीठा खाने से टोकने पर उसका क्या जवाब होता है ये तो तुझे मालूम है ना?
1: तो उनका जवाब हम सभी के मन से मिलता भी तो है, अब परहेज करके लंबी उम्र जी के करना क्या है, है ना?
0: कम से कम अभी तो विनीता का जन्मदिन मनाना है। वो पिछले हफ्ते लाई हुई गुलाबी महेश्वरी ठीक से रखी है ना? अरे इस बार तो विनीता के पास दोहरी खुशी मनाने का बहाना है।
1: अच्छा है, उसकी बहू को भी लड़का ही होना चाहिए। उसने भी बड़ा होकर अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, तब जाकर समझ में आएगा इन औलादों को।
0: अरे अब चल भी, वो वार्डन आ रही है देख।
1: अरे हाँ देखो तो, उसके साथ में उसकी बहू की छोटी बहन भी है।
0: सुना है, सुंदर सी लड़की को अपनी वार्डन अपने छोटे बेटे के लिए घर में लाना चाह रही है, इसीलिए तो देखना कितने चाव से सारा वृद्धाश्रम दिखा रही है।
1: चलो दीदी, इन लोगों को आपसी प्यार देखकर तो मुझे आपस रोना आने लगता है। ऐसे हम सबके परिवार क्यों न हुए दीदी।
0: अब तुझे मैं क्या कहकर दिलासा दूं?

0: तो विनीता दीदी, हमने सुना है आप दादी बनने वाली हैं। जन्मदिन के दिन बड़ा खूबसूरत तोहफा दिया है आपके लाडले ने।
1: कहे का तोहफा रे, कितने अरमानों से घर में बहू लाई थी। कितनी चाहती कि उसे बेटी की तरह रखूं, लेकिन समय ही नहीं मिला कभी। अपना काम करते हुए मैं उससे कभी मन ही नहीं मिला पाई। आज यदि उसके पास मेरे लिए समय नहीं है तो कौन आश्चर्य की बात है।
0: अरे विनीता दीदी, हमने तो आपको बस बधाई दी थी। ये आपकी राम कहानी तो हम सभी कितनी ही बार आपके मुंह से सुन चुके हैं।
1: अरे नसरीन, क्यों दिल दुखाती हो उसका? आज जन्मदिन है हमारी विनीता का।
0: अरे तो जन्मदिन है तो कहाँ छिपा कर रखे हैं लड्डू? वो तो खिलाती नहीं, बस सीधे अपने दुखड़े पर आ जाती है।
1: लेकिन लड्डू खाने से पहले मेरा गिफ्ट तो लाओ। पिछले हफ्ते दोनों चुपचाप कहीं गई तो थी।
0: अरे विद्या दीदी, देखो तो इनकी नजर, सब कुछ याद रहता है और गिफ्ट तो ऐसे मांग रही है जैसे इंसेंटिव।
1: अरे ये तो इसका हक है। ला जल्दी से वो पैकेट निकाल।
0: जन्मदिन मुबारक हो।
2: अरे कितनी खूबसूरत है गुलाबी माहेश्वरी साड़ी, मुझे कितने दिनों से चाहती है इसकी।
0: बस अब ज्यादा तारीफें मत करो, सीधे से वो लड्डू का डिब्बा निकालो।
2: ये नसरीन को जरा धीरज नहीं है। ये लो। हाँ ये लो।
0: देखा विद्या दीदी, पूरा लड्डू मुंह में है। ऐसे में विनीता दीदी का फोटो खींच लूंगी और शनिवार को आने वाले डॉक्टर को दिखाऊंगी ना, तो मजा आ जाएगा।
2: हाय राम, कैसी खुराफाती है ये।
1: वाकई हम कितने दिनों के बाद ऐसा मजाक हंसी ठिठोली कर रहे हैं, नहीं तो सारे सारे दिन ऐसे ही सूखे से बीत जाते हैं। जीवन में कोई हलचल ही नहीं होती।
2: तुम्हारी बात सही है विद्या, ज्यादा से ज्यादा हम बैठकर अपनी नई पीढ़ी को कोस भर लेते हैं, लेकिन आज तो ऐसे लगता है जैसे हम स्वयं ही कटघरे में खड़े हैं।
0: क्या हो गया विनीता दीदी, कोई कड़वी बात कह दी क्या किसी ने?
2: अरे कड़वी बात कोई क्या कहेगा, वो बेटे का खत आया है ना।
0: तो उसकी बात का इतना क्या बुरा मान लेना?
2: बुरा मानने की बात ही है नसरीन, बेटे ने वही सब कुछ लिखा है जो कभी मैंने उसे समझाया था।
1: क्या मतलब?
2: मैंने अपने जीवन में कितनी ही सफलताएं देखी, ऊंचे पद की नौकरी की, खूब पैसा बनाया, लेकिन रिश्ते नहीं बना पाई। जब बेटा हुआ उसे संभालने के लिए आया रख दी, वो 8 साल का हुआ तब उसे हॉस्टल में रख दिया। तब मैं उसे पत्र लिखा करती थी, उसमें यही होता था कि बेटा मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकती, आशा है तुम मुझे समझ पाओगे। और कल उसका पत्र आया, उसमें भी उसने यही लिखा है, मेरी ट्रेनिंग है मुंबई में, इसलिए इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं नहीं आ सकूंगा, आशा है तुम समझ पाओगे। ये सब कुछ मेरा ही तो बोया हुआ है, अब और क्या कहूं, किसे दोष दूं?
1: सच ही तो है, यदि तुमने उसे तब हॉस्टल में डाल दिया जब उसे माँ चाहिए, तब उसने तुम्हें तब वृद्धाश्रम में डाल दिया जब तुम्हें उसकी जरूरत है। ये सब कुछ बच्चे अपने माता पिता से ही तो सीखते हैं। मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज चाह कर भी बेटे के पास नहीं रह सकती।
0: बात तो आपकी सही है विनीता दीदी, सब कुछ बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं। अब विद्या दीदी के घर में भी तो ऐसा ही हुआ है।
1: हाँ नसरीन, तुमने बिल्कुल सच कहा, मैंने अपनी माँ के कहने पर घर में गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों उनकी बात मान ली मैंने।
0: सच दीदी, मेरी खुद की भी कहानी बस कुछ ऐसी ही है। जन्म लेने से पहले 3 बेटियों को मार दिया मैंने, क्योंकि जब बेटी आने को हुई तो मुझे लगा कि दहेज का इंतजाम करना होगा और आखिरकार पाल पोस कर किसी और ही के घर तो देना होगा, और ये सोचकर मैंने 4 बेटे पैदा कर लिए। 4 बेटे और शोहर, घर तो जैसे अखाड़ा बन गया था। एक भी बेटी घर में होती तो शायद इनके मन में दया और प्रेम पनपता, लेकिन सब के सब स्वार्थी हो गए, मुझे अलग कर दिया, या फिर कहो कि मुझे अल्लाह ने इन 3 कलियों को कुचल देने की बस सजा भर दी है। दीदी,
1: हम सभी यहाँ पर अपने बुए बीजों की ही तो फसल काट रहे हैं। बार बार नई पीढ़ी को कोसने की बजाय हम ये भी तो देखें कि हमारी अपनी गलतियां कितनी हैं। सचमुच हमें घर से बाहर निकालने वाले बेटे, उनकी नसों में हमारा ही खून है और सोच में हमारे ही संस्कार।
0: यदि किसी को भी अपने बुढ़ापे को सही बनाना है तो नई पीढ़ी की बजाय पहले खुद को गौर से देखें।
1: सचमुच सभी को अपने कर्मों के फल तो भोग

अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था हमने जैसा बोया। इस नाटक की लेखिका एवं निर्देशिका थी अंतरा करवड़े। साथियों, आप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति गुजुर को। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस 4 से 5 की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित और उनके साथ हैं डॉक्टर गणेश करवड़िया और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: एक मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं रुपया बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा चलता है और पैसा दूसरों को भी नचाता है। लेकिन ये पैसा सिर्फ आपकी जेब तक नहीं सीमित होता, इसी पैसे के सहारे देश, समाज, परिवार और पूरी दुनिया चलती है। इन दिनों आर्थिक मंदी से जुड़ी हुई कई खबरें आपको हो सकता है परेशान किए हुए हों। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर गणेश कावड़िया जी से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जैसे मरीज अगर बीमार होता है तो डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं, ऐसे ही आज हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बीमार है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इन दिनों ये जो हम आर्थिक मंदी की खबरें सुन रहे हैं, असल में ये आर्थिक मंदी क्या है?
1: बाजारवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और आर्थिक तेजी दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी भी कोई अर्थव्यवस्था पूर्णतः तेजी की अवस्था में नहीं रह सकती और कभी भी कोई मंदी की अवस्था में नहीं रहती है। बाजारवाद में बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, कीन्स आए हैं बाद में, और उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद की एक सीमा है और जब आप विकास तेजी से कर रहे हो तो आपको पीक से एक बार गिरना पड़ेगा। और ऐसे कई उदाहरण हैं विश्व में, 1929 और 30 की विश्वव्यापी मंदी जिसमें कई लोग बेरोजगार हो गए थे, उसके बाद 71-72 में हमने मंदी देखी, फिर 91-92 में देखी, और ये मंदी शायद इन सब मंदियों से बहुत अलग प्रकार की है और बहुत गहरी है। तो मंदी और तेजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने और बाकी दूसरे समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि हम सरकार की इतनी भूमिका इसके अंदर ला लें कि हमेशा अर्थव्यवस्था इस तेजी और मंदी के जो जाल है उससे बच सके।
0: जी,
1: तब प्रश्न ये आता है कि मंदी होती क्या है?
0: हाँ जी,
1: मंदी को वैसे तो हम सरकार या अर्थशास्त्र की निगाह में सीधे रूप से डिफाइन करते हैं कि किसी भी दो क्वार्टर में अगर उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाए, यानी उत्पादन बढ़ने की बजाय उत्पादन गिरने लग जाए, राष्ट्रीय उत्पादन कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति को मंदी की स्थिति कहते हैं। तो आपका उत्पादन जैसे पहले 3% के बढ़ रहा था या 5% वार्षिक की दर से बढ़ रहा था, बढ़ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जो ही उत्पादन की दर गिरावट हो जाए, -2.3 हो जाए, यानी उत्पादन बढ़ने के बजाय उत्पादन के स्तर से भी और कम हो जाए, ऐसी स्थिति को मंदी कहते हैं। तो उत्पादन कम हो गया, तो अगर उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार कम होगा तो छटनी होने लगेगी, छटनी होने लगेगी तो लोगों के पास इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो बाजार में पैसे का प्रचलन नहीं आएगा, खर्चा नहीं आएगा, लोगों के माल नहीं बिकेंगे, और छटनी आएगी और एक ऐसा चक्र चल जाएगा कि उस चक्र को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब ये जो परिस्थितियां आती है तो ऐसा क्या करें? तो ये पूंजीवाद का लक्षण है, छुपा हुआ नहीं है। 76 में जब एडम स्मिथ ने किताब लिखी या उसके बाद जो क्लासिकल के अर्थशास्त्री आए, सबने कहा है कि ये पूंजीवाद के अंदर निहित गुण है। अवगुण को हो, निहित गुण हो तो कैसे रोकें? तो कीन्स ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार हस्तक्षेप करके इस प्रकार के जो मंदी या तेजी के अप्स एंड डाउन्स आती है उसको रोक सकती है। तो सरकार को कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए? दो तरीके हैं कि हम बाजार में खर्चे करते रहें।
0: जी,
1: कौन खर्चा करे? या तो फर्म, प्राइवेट सेक्टर खर्चा करे या
0: सरकारी क्षेत्र।
1: तो जब वृद्धि होती है, तेजी आती है, तब तो सरकार को कोई ज्यादा चिंता नहीं रहती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर खर्चा करता रहता है। लेकिन जब मंदी आती है तो प्राइवेट सेक्टर डर जाता है कि मेरे मुनाफे नहीं होंगे, मेरा माल नहीं बिकेगा। तो ऐसे में सरकार की ड्यूटी है कि वो खर्चा करे। कैसे खर्चा करे? सड़कें बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रेल लाइन बनाए, और एक एक्सपेंडिचर का फ्लो इकोनॉमी में करे तो लोगों को इनकम मिलेगी
0: और काम भी मिलेगा,
1: काम मिलेगा, आय मिलेगी, बाजार में जाएंगे, वस्तुएं बिकेगी, उद्योग चल निकलेंगे, उद्योगपति को प्रॉफिट होगा और फिर
0: धीरे धीरे चक्र जो है वो सामान्य हो जाएगा।
1: तो क्या चाहिए? पूंजीवाद के साथ साथ किसकी आवश्यकता है? सरकारी हस्तक्षेप।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। एक सवाल और थोड़ा सा मेरे समेत कई लोगों को परेशान करता है कि हम लोग कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है इसकी जड़ कहीं ना कहीं अमेरिका से है, यानी कि अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई उसका असर अब भारत पर भी पड़ रहा है और समूचे विश्व बाजार पर पड़ रहा है। तो यहाँ मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि अगर अमेरिका में मंदी आती है तो किस तरह से वो मंदी पूरे विश्व को या भारत जैसे देशों को प्रभावित करती है।
1: एक तो सबसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बाकी अर्थव्यवस्थाओं से बहुत बड़ी है।
0: जी।
1: इतनी बड़ी है कि अगर उसके अंदर 10 या 20% हलचल होती है तो पूरे विश्व में हलचल आ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: हमारी पर कैपिटा इनकम की तुलना में अमेरिका की पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है।
0: जी।
1: तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ होगा तो अमेरिका में असर नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका में कुछ छोटी सी भी घटना हुई तो उसका असर हमारे यहाँ आएगा।
0: बिल्कुल।
1: कारण क्या है कि हम ग्लोबलाइज हो गए हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गई हमारी, और हमारी इनकम का लगभग आज 18-20% एक्सपोर्ट इनकम है, यानी हम अपनी वस्तुओं का निर्यात करते हैं।
0: जी।
1: किसको निर्यात करते हैं? बाकी डेवलप्ड कंट्रीज को, अमेरिका को भी जाता है, यूरोप को भी जाता है। अगर इन देशों ने हमारा माल खरीदना कम कर दिया तो हमारे एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे? नुकसान होगा।
0: बिल्कुल।
1: वो अपना सामान नहीं बेच पाएंगे, और नहीं बेच पाए इसका मतलब उनके माध्यम से हमारे यहाँ क्या आ जाएगी? मंदी आ जाएगी।
0: जी।
1: दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका अपनी पूंजी को बाहर के देशों में बहुत लगाता है।
0: हाँ हाँ।
1: है ना, बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसने अमेरिका में मतलब अमेरिका के लोगों ने भारत में पैसा लगा रखा है, चीन में पैसा लगा रखा है, जापान में पैसा लगाने रखा है, और जब वो संकट में आते हैं तो इस पैसे को क्या करते हैं? वापस निकालने की कोशिश करते
0: जी,
1: हैं।
0: मतलब जो उन्होंने निवेश किया था उसको वापस लेना चाहते हैं।
1: जो वापस लेने लगेंगे इसका मतलब हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? पूंजी का संकट आ जाएगा।
0: जी।
1: और उस पूंजी के संकट में हमारा शेयर मार्केट धराधर नीचे आने लगेगा, बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं आएगी, डॉलर बाहर जाने लगेंगे, और जब डॉलर बाहर जाने लगेंगे तो हमें भय रहेगा कि अगर ये खजाना खाली हो गया तो जो सन 1991 में हमने सोने को गिरवी रखा कहीं वो स्थिति वापस नहीं आ जाए, पेट्रोल कैसे खरीदेंगे। तो ऐसी कई सारी चिंता से पूरा सेंटिमेंट कमजोर हो जाता है, और सेंटिमेंट कमजोर हो जाता है तो सरकार छोटे मोटे हस्तक्षेप करती है तो भी उसका कोई असर नहीं आता है, क्योंकि आर्थिक जो चिंतन है ये एक सेंटिमेंटल है।
0: अब यहाँ मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, एक आम आदमी जिसके पास किसी कंपनी के शेयर नहीं है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा बचत नहीं है, जो बसों में रेलों में सफर करता है, खेतों में काम करता है, वो आदमी इस आर्थिक मंदी से किस हद तक प्रभावित होता है?
1: देखिए, ऐसे लोगों को आर्थिक मंदी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो दैनिक डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या रूरल एरियाज में हैं, कृषि में काम कर रहे हैं, उनको आर्थिक मंदी से कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आर्थिक मंदी में किसको अंतर आया कि जिन लोगों के पास शेयर थे तो उन शेयर की पूंजी कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, जिनके पास बहुत मकान थे तो मकान की पूंजी कम हो गई, तो उन पर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन असर क्यों आएगा कि अगर बाजार में तरलता या लिक्विडिटी का फ्लो नहीं है, डिमांड नहीं है, और धीरे धीरे उद्योगों में अगर छटनी होने लगी तो ये लोग भी इस डर से काम करेंगे, यार हमारे साथ भी ये हो जाएगा, तो ये एक चिंता है, उस चिंता के कारण असर आएगा, अदरवाइज उन पे कोई असर नहीं।
0: मतलब एक आम आदमी थोड़ा सा इस मंदी के असर से सुरक्षित है।
1: हाँ, बिल्कुल, बहुत सुरक्षित है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी घटना अमेरिका में हो गई, यूरोप जापान में जितना प्रभाव आया हमारे यहाँ प्रभाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि हमारे यहाँ 40% जनसंख्या तो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको बाजार एक्सेस क्या होता है यही पता नहीं है, जिनके पास कुछ साधन ही नहीं है, और जिनको रोज काम करना है, रोज भोजन करना है, उनके लिए तो कोई अर्थ नहीं रखता है।
0: बिल्कुल। सर, यहाँ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां एमएनसी कंपनियों से चलती थी, जैसे कॉल सेंटर में जॉब करने वाले लोग हुए, या हाल ही में हमने एक एयरलाइन कंपनी का उदाहरण देखा जहां छटनी हो गई, और भी छटनी का एक दौर थोड़ा सा अभी देखने में आ रहा है। तो छटनी के चलते, आर्थिक मंदी की वजह से हुई छटनी के चलते जिन लोगों की नौकरियां हाथ से चली जाएंगी, उनके पास कौन कौन से विकल्प बचेंगे? क्योंकि आदमी बिना काम किए नहीं रह सकता ना, तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप कौन से विकल्प उन्हें सुझाना चाहेंगे?
1: ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आर्थिक तेजी आ रही थी, विकास हो रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था 9% की दर से बढ़ रही थी, तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां नहीं थी उन्होंने अपना खूब विस्तार किया।
0: जी।
1: ये सोचा था कि 10 के बाद 12 हो जाएगी, 12 के बाद 15 हो जाएगा, और आज जो लड़का हमें मिल रहा है ये कल लड़का नहीं मिलेगा। तो सब लोगों ने जितनी अपनी आवश्यकता थी, जितना काम था, उससे ज्यादा लोगों को नौकरी
0: दे दी,
1: ये सोचते हुए कि कल ये लड़के हमें नहीं मिलेंगे, अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लड़कों को ले लो। अगर आज इन लोगों को नौकरी से निकालते हैं तो दो असर होता है कि जिनको, जो टॉप कंपनियों से निकले हैं, वे स्किल्ड पर्सन अब किसको मिल जाएंगे? जो नीचे की छोटी कंपनियां हैं जिनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं, तो जो एक ऊंची तनख्वाह पे जिनको निकाल दिया वो दूसरी तरफ जाएंगे। और अब आप देखिए कि एक तरफ जो मल्टीनेशनल बैंक है उनको अलग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने कहा कि मैं 10,000 लोगों को नौकरी दे रहा हूं, जो नेशनलाइज बैंक है उन्होंने कहा। तो उनके सामने ये मौका है कि अच्छा जो ट्रेंड व्यक्ति हैं उनको आज कैप्चर कर लें और उनको पकड़ लें, जिससे इनका विकास हो जाएगा। तो एक तरफ जो नुकसान हो रहा है वो दूसरी तरफ से
0: भर जाएगा।
1: अल्टीमेटली अगर एक बाजार में वेज डिस्टोर्शन आ गया कि कुछ कंपनियों में बहुत ऊंची तनख्वाह है और दूसरे में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आना चाहिए, आना पड़ेगा, नहीं तो ये असंतुलन ज्यादा नहीं तो टिकेगा नहीं। तो ये मौका है कि जो हमारे यहाँ डिस्टोर्शन आ गई थी, विकृतियां आ गई थी, ये इस मंदी के कारण ये विकृतियां एडजस्ट हो जाएगी और अर्थव्यवस्था अपने धरातल बिंदु पर या अपने सम बिंदु पर वापस आ जाएगी।
0: सर, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे हमेशा से ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारा सबसे ज्यादा व्यापार जो है वो कृषि उत्पादों से चलता है। लेकिन क्या वजह है कि आज जब हम अगर 100 बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या करियर बनाना चाहता है, किस जगह पर भविष्य बनाना चाहता है, तो 100 में से शायद 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं कृषि क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। इसके पीछे क्या वजह?
1: देखिए, मतलब भारत कृषि प्रधान था, आज उसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहना बहुत तर्कसंगत नहीं है
0: जी।
1: अगर हम जीडीपी में कृषि का हिस्सा देखें तो लगभग 20% है। हमारी 80% इनकम कहाँ से आती है? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से
0: जी।
1: तो 20% के आधार पर आज भी इसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहना ठीक नहीं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि एक तरफ तो 20% इनकम है, लेकिन आज भी लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो अगर हम वर्कफोर्स के आधार पर देखें तो आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। तो इसका मतलब 20% इनकम के लिए कितने प्रतिशत लोग संघर्ष कर रहे हैं?
0: 60%।
1: ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि 20% इनकम तो 60% लोगों की झोली में बांटी जा रही है और बाकी जो 80% इनकम है उस पर 40% लोग इंजॉय कर रहे हैं या उसका उपभोग कर रहे हैं। ये जो अंतर है, ये अंतर भारत के लिए सबसे चिंता के कारण है। होना क्या चाहिए था कि जो जो हमने विकास किया और कृषि का हिस्सा कम हुआ, उस कृषि में रोजगार की जो संभावना थी वो भी कम करते और इस बचे हुए रोजगार को कहाँ डाइवर्ट करते? उद्योगों में, सेवा क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो उद्योगों को और सेवा को जो स्किल चाहिए थी, वो स्किल एजुकेशन के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो कृषि में तो सरप्लस हो गया और उद्योग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। वो बेरोजगार है और वो बेरोजगारी न तो मंदी से प्रभावित हो रही है, न तेजी से प्रभावित हो रही है, उसकी झोली में आज भी रोटी नहीं है। ये भारत सरकार की भी चिंता है और बाकी जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनकी भी चिंता है।
0: सर, आप अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है अर्थशास्त्र पर, तो मैं आप ही से चाहूंगी कि आप एक समाधान तो सुझाएं कि इस खाई को पाटा कैसे जाए।
1: देखिए, इस खाई को बांटने के लिए है कि हम अपना एक मॉडल डेवलप करें। भारत कई संस्कृतियों का देश है, भारत की सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूत आर्थिक तथ्य है। हम बाजारवाद को खुला इनवाइट नहीं कर सकते हैं, बाजारवाद पर कंप्लीट निर्भर नहीं रह सकते हैं। बाजारवाद के साथ साथ हम सरकारी हस्तक्षेप इतना स्ट्रांग रखें, इतने अच्छे रेगुलेटर्स रखें कि बाजार को नियंत्रित रखें
0: जी।
1: और बाजार और सरकार दोनों का केंद्र बिंदु उपभोक्ता हो, परिवार हो। हमें उद्योगों के लिए उत्पादन नहीं करना है, सरकार के लिए उत्पादन नहीं करना है, बाजार के लिए क्रियाएं नहीं करना है। किसके लिए क्रियाएं करनी है?
0: परिवार, उपभोक्ता के लिए, हमारे परिवार के लिए।
1: और जिस दिन ये सोच आ जाएगी
0: जी,
1: उस दिन भारत अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। इतने सब संकट के बावजूद भी भारत का उपभोक्ता इतना परेशान नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारत का उपभोक्ता आज भी सोचता है कम खाओ गम खाओ सबसे बड़ा त्याग है, कि जिसके अंदर बचत करने की क्षमता है, जो अपनी चद्दर को देखकर पांव पसारता है, उस अर्थव्यवस्था को, उस उपभोक्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। भारत ने इतने युद्ध देखे, इतनी अर्थव्यवस्थाओं के संकट देखे, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को धराशायी होते देखा, लेकिन उन सब संकट से भारत और मजबूत होकर निकला है, कमजोर नहीं हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से भारत की सांस्कृतिक विरासत के अनुसार अगर हम आर्थिक मॉडल और आर्थिक विकास करेंगे तो भारत एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में।
0: बहुत खूब कहा सर आपने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शब्द आपने कहे कि इतने युद्ध, इतनी तमाम विसंगतियां देखने के बाद हम हमेशा मजबूत होकर उभरते हैं, तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम दोबारा उसी मजबूती के साथ उभरेंगे। यहाँ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। मैंने एक बहुत बड़े किसी विशेषज्ञ की टिप्पणी पढ़ी थी कि वेल्थ जो है, पैसा और समृद्धि जो है, वो किसी से छीनी नहीं जा सकती, वो किसी से लूटी नहीं जा सकती, इसे क्रिएट किया जाता है, इसे बनाया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये जो क्रिएटिंग वेल्थ वाला कंसेप्ट है, इसे थोड़ा सा हमारे युवा श्रोताओं के लिए समझाएं।
1: देखिए, वेल्थ और क्रिएटिंग, जो टेक्नोलॉजी के समय में ज्ञान हमारा है, ज्ञान सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है
0: जी।
1: और ज्ञान अगर वेल्थ क्रिएटर है तो ज्ञान को कौन छीन सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो चारों तरफ बांट सकते हैं, उसका गुणा कर सकते हैं। कभी किसी ने सोचा था, हम जब भी पुराने समय में पूछते कि कौन बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो टाटा बिरला और ये नाम लिए जाते थे। लेकिन तकनीकी ज्ञान ने कितनी नई नई क्रोप पैदा कर दी। आज एक लड़का सीधा MBA करके निकलता है या BTEC करके निकलता है और 18 लाख 20 लाख की सैलरी लेता है, तो इसका मतलब संपत्ति तो ज्ञान से अर्जित हो रही है। और इसलिए डट कर एजुकेशन, जितना पढ़ सकें, जितना सीख सकें, जहां से सीख सकें उसको सीखें और उस सीखे हुए को जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से समृद्धि आपकी चारों ओर दिखेगी।
0: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित और उनके साथ थे डॉक्टर गणेश करवड़िया और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय श्री स्वतंत्र कुमार ओझा और इसका शीर्षक है पांडुलिपियों का इतिहास और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। आज के युग संचार कार्यक्रम का विषय है पांडुलिपियों का इतिहास। श्रोताओं, पांडुलिपियों को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट्स कहते हैं, तो आज इसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप सबको देने जा रहे हैं। जब भी हमारे मन मस्तिष्क में कोई अच्छी बात या कहें कि ख्याल आता है तो हम सोचते हैं कि इसे मूर्त स्वरूप दे दें। लेखक भी यही करते हैं, अच्छी बात को शब्दों में पिरोकर एक रचना का निर्माण करते हैं। अब जिस पर ये लिखा जाता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। ये नाम प्राचीन युग का है। पांडुलिपि का अर्थ है लिपियों, बोलियों या भाषाओं को लिखकर उन्हें सहेज कर संभाल कर रखना, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन्हीं के द्वारा हमारी पुरातन संस्कृति और परंपरा का ज्ञान हमें मिलता है, और इस प्रकार पांडुलिपियां अतीत, वर्तमान और भविष्य के संचार के झरोखे के रूप में सुरक्षित रहती हैं। लिपियों का जन्म और संरक्षण उन्हें लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही हुआ। शताब्दियों पहले चित्रलिपि के द्वारा उस समय की घटनाओं से संबंधित चित्र जमीन, पत्थरों और दीवारों पर अंकित किए गए। जैसे खाना खाते हुए, शिकार करते हुए या आपस में लड़ते हुए योद्धाओं के चित्र बने, जो सभी प्राचीन विश्वभर की सभ्यताओं में हमें देखने को मिलते हैं। इन सब के पश्चात लिखित रूप में लिपि बनकर पांडुलिपियों का चलन शुरू हुआ। छापा खाना यानी कि प्रेस के आविष्कार और विकास से भी बहुत पहले घटनाओं को हाथ से ही लिखा जाता था। इसी तरह कागज के जन्म और चलन से पहले चर्मपत्र, ताड़पत्र, पपीरस, ताम्रपत्र और रेशम पर लिखा जाता था। हमारे बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथ शास्त्र इन्हीं पर लिखे गए और वे आज भी सुरक्षित हैं। अरब में ऊंट की हड्डी के कलम से लिखा जाता था, जबकि भारत और यूनान में हाथी दांत से लिखा जाता था। 2500 साल पहले मिस्र में पपीरस पर लिखना शुरू हुआ। कहा जा सकता है कि इस तरह पांडुलिपि लेखन का इतिहास 5000 साल प्राचीन है। धार्मिक ग्रंथ भी प्राचीनतम पांडुलिपियां ही हैं, और मान्यता है कि तोरा नामक पांडुलिपि विश्व की सबसे पुरानी प्राप्त पांडुलिपि है, जो ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तोरा एक धर्म ग्रंथ है जो हजरत मूसा को दिया गया था। इसे पत्थर की पट्टिका पर लिखा गया था। इसी श्रृंखला में ऋग्वेद भारत का पहला ग्रंथ माना गया है, जिसमें धार्मिक और मनुष्यों के अनुभवों पर आधारित प्रारंभिक चिंतन का उल्लेख है। इसके बाद मौर्य काल में अन्य विषयों पर पांडुलिपियां लिखी गईं, और ये क्रम गुप्त काल तक चला। भारत में ही कुरान का एक अपूर्ण भाग 7वीं सदी में चर्म पत्र पर लिखा पाया गया। इस अमूल्य धरोहर को इस्लाम के चौथे खलीफा ने लिखा, जो बाद में 16वीं सदी में कागज पर लिखा गया था। तो साथियों, अतीत के झरोखे में झांकने पर हमें संचार की इस प्रमुख शैली के दर्शन हो सकते हैं। अमूमन 7वीं से 19वीं सदी की अनेक पांडुलिपियां चर्मपत्र, ताम्रपत्र और भोजपत्र पर लिखी गई हैं, जिनमें दर्शन शास्त्र, साहित्य और विज्ञान के बारे में हैरतअंगेज, आश्चर्यजनक जानकारियां हमें मिलती हैं, और ज्ञान की जानकारी संचार से ही तो फैलती है ना। 12वीं सदी में
आदि बांग्ला भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित ताड़पत्र की पांडुलिपि का भी विशेष महत्व माना गया। और फिर बाद में तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कागज का जब आविष्कार हुआ तो कागज के आविष्कार ने इस क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। कागज बनाने की कला और तकनीक तेजी से, बड़ी तेजी से पूरे संसार में फैलने लगी। इस दौर में कागज खुरासानी, मेसोपोटामियाई और खुरदरे किस्म के होते थे, लेकिन कागज के आगमन ने चारों ओर एक नयापन शुरू किया। लेकिन इससे ताड़पत्र पर लिखने की परंपरा वो समाप्त नहीं हुई है, वो तो आज भी जीवित है, आज भी ताड़पत्र पर लिखने की परंपरा है। तो अगर अतीत की ओर फिर से एक बार झांकें तो संसार के अधिकतर भागों में केवल धार्मिक ग्रंथों की अधिक एवं अन्य विषयक पांडुलिपियां ही अब सुरक्षित बची हैं। इनके धार्मिक महत्व के कारण ही इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जबकि अन्य अनेक लंबे समय की जलवायु में बदलाव के कारण नष्ट हो गई हैं। जैन धर्म के कल्प सूत्र 15वीं शताब्दी में लिखे गए, इनमें महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों के उपदेश हैं। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि देवनागरी है। कागज पर लिखी गई इन पांडुलिपियों पर स्वर्ण से मीनाकारी की गई है। तो साथियों, अतीत के झरोखे के पट दर पट खोलते हुए अब हम मध्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं। इस काल की श्रेष्ठ पांडुलिपियां फारसी भाषा में लिखी गई हैं। इनमें बाबरनामा, सिकंदरनामा, अकबरनामा आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। कुछ पांडुलिपियां जो अरबी में लिखी गई हैं, उनमें अधिकतर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। कपड़े और कागज पर इन्हें लिखकर और कई रंगों से सजाकर इनके पन्नों पर स्वर्ण परत चढ़ाई गई है। हैरत होती है अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों द्वारा किए गए ऐसे अनेकानेक महत्वपूर्ण कामों को देख सुनकर। अगर भारत की बात करें तो हमारे यहां तो संस्कृत की प्राचीनतम परंपरा है, संस्कृति प्राचीनतम भाषा है, इसलिए इसकी सैकड़ों दुर्लभ और अति महत्वपूर्ण पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। प्रामाणिक संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद भी हुआ है। इनमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये अनेक इस तरह के प्रमुख हमारे धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं। अब थोड़ा आगे जाएं तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का ग्रंथ भी एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि है, जो गत्ते नुमा कागज पर लिखी गई है। तो श्रोता मित्रों, आज हमने अतीत के इस झरोके से प्राचीनतम समय की लिखी पांडुलिपियों की जानकारी प्राप्त की। वास्तव में युग संचार के इस अतीत ने हमें बताया कि आज के समय की अनेकानेक सुविधाएं पहले नहीं थीं, लेकिन फिर भी जिन पदार्थों पर विश्व की श्रेष्ठतम रचनाएं रची गईं, वो कार्य कितना अधिक कठिन रहा होगा, इसकी कल्पना करें। और वो काम हुआ और आज भी उपलब्ध है, सुरक्षित है। अब वैसे आज तो हमारे पास कंप्यूटर है, सीडी है, जिस पर पूरी एक किताब डाउनलोड करके अल्प से अल्प समय में छपवाई जा सकती है। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि संचार क्रांति ने महीनों सालों का काम मिनटों और घंटों में पूरा करके दिखा दिया है। तो ये परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन हर बार कुछ न कुछ नया लेकर के आता है। आज तो पांडुलिपियों की एक विशाल धारा तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है वो सुरक्षित है, उसे भी हमें संभालना है।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय श्री स्वतंत्र कुमार ओझा, और इसका शीर्षक था पांडुलिपियों का इतिहास, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है

0: था उपमन्यु और इसका शीर्षक है जीवन का रियलिटी शो और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: नमस्कार युवा साथियों, आज के युवा और विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंतरा करवड़े
2: और मैं हूं आस्था उपमन्यु।
1: साथियों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो थोड़ा सा अजीब है। उसका शीर्षक है जीवन का रियलिटी शो। जी हां साथियों, जीवन और रियलिटी शो जो कि आजकल विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं, इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। आस्था, यदि हम हमारे युवा साथियों की बात करें तो इन दिनों ये देखने में आता है कि वे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं या फिर प्रसिद्धि की चाह रखना चाहते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगी?
2: बिल्कुल अंतरा जी, हाँ मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि एक तरह से युवाओं का स्वप्न बन गया है रातों रात प्रसिद्धि पाना। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, आज के समय में युवा मेहनत पे विश्वास, यूं कहा जाए कि शायद उठता जा रहा है युवाओं का मेहनत से विश्वास।
1: बिल्कुल, मेहनत पर से और संघर्ष पर से भी। यदि हम देखें हमारे आसपास तो जो रियलिटी चैनल्स में दिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा रातों रात एक सितारा बन जाता है, उसे प्रसिद्धि भी मिल जाती है, उसे बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है। और पहले के जमाने में ये हुआ करता था आस्था कि हमारे जो युवा थे उनके सामने जीवंत आदर्श थे, कुछ ऐसे आदर्श थे जो अपनी मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर और अपने नवीन विचारों के बल पर एक बहुत अच्छे आदर्श साबित हुए, जिन्हें देखकर हम युवा साथी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा पाते थे, ऊर्जा पाते थे।
2: बिल्कुल, यहां पर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी अंतरा जी कि पहले के समय में जो युवा थे वो उनके लिए अगर कोई प्रेरणा स्रोत होता था तो वो उसको उसका अनुसरण करते थे
1: जी।
2: लेकिन आज के समय में ऐसे प्रेरणा स्रोत ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है, मौजूद आज भी है, लेकिन युवा जो है वो शायद उस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या वो उस चीज को अपनी प्रेरणा के रूप में अपना नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है?
1: जी बिल्कुल, कहा जाता है ना कि शॉर्टकट सभी को लुभाता है।
2: बिल्कुल,
1: तो जो शॉर्टकट इन दिनों सफलता का साथियों हम सभी को देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी खुद की पहले से न कोई पहचान थी, न किसी प्रकार की नींव थी, न किसी प्रकार की तैयारी थी, रातों रात अचानक उठता है, किसी टीवी चैनल का एक सितारा बन जाता है, उसे करोड़ों रुपए के इनाम उस पर न्यौछावर कर दिए जाते हैं और एक तरीके से उसका भविष्य बन जाता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे गायन का हो, चाहे नृत्य का हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी बड़े इनाम को जीतकर अचानक करोड़पति बन जाते हैं। और ऐसे में अवसाद आना स्वाभाविक है उन युवाओं के मन में जो एक एक कक्षा कर आगे बढ़े हैं, एक एक दिन नौकरी करके मेहनत कर रहे हैं और बचत करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: वो बात बिल्कुल सही है। और एक चीज ये भी है अंतरा जी कि किसी एक का आगे बढ़ जाना, उसके साथ उस वक्त जो लोग प्रतियोगिता में शामिल होते हैं उन लोगों को भी अवसाद में डाल देता है।
1: बिल्कुल, अब तक पहले ये हुआ करता था। दरअसल मैं ये बार बार पहले और बाद में की बातें कह करके अपने आप को गुजरे जमाने का और युवा पीढ़ी को आने वाले जमाने का नहीं कहना चाहती, लेकिन एक बहुत बारीक फर्क हो गया है इन दिनों। यदि हम पीढ़ियों की भी बात करें तो हर पीढ़ी 3-4 साल में बदल जाती है।
2: बिल्कुल,
1: तो पीढ़ियों का अंतर भी बहुत कम हो गया है। और जो बात मैं कहना चाह रही थी वो कुछ इस तरीके की थी कि पहले के जमाने में भी इस तरीके की तुलनाएं होती थी। यदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम MBA करने वाले कुछ समूह के लोग हैं तो उनमें से कुछ समूह के लोग ऐसे हुआ करते थे जिनका खुद का बिजनेस एम्पायर होता था। उन्हें ये चिंता कभी नहीं सताती थी कि उन्हें अपना कोर्स पूरा करने के बाद प्लेसमेंट में किस तरीके की नौकरी मिलेगी, वे साक्षात्कार में सफल होंगे या नहीं, उन्हें सबसे पहला सैलरी क्या मिलेगा क्या नहीं। बिल्कुल नहीं, उन्हें सिर्फ MBA की डिग्री करनी है, उसके बाद में उनके पिताजी की या फिर उनकी खानदानी कंपनी में उनके लिए एक बहुत अच्छा ऊंचा और बहुत अच्छा पद रहता था। तो ये अवसर तो पहले के युवाओं में भी आया कि उनके कुछ साथी बहुत ऊंचे आ जाएंगे।
2: ये बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन ये भी था कि पहले के समय में शायद युवा उस चीज से बहुत जल्दी उबर जाते थे, अवसाद आता था। लेकिन आज के समय में वो चीज जो प्रतियोगिता आज के समय में हम कहते हैं कि बढ़ गई है, तो उसने इस अवसाद को इतना गहरा रूप दे दिया है जी कि MBA के बाद प्लेसमेंट, मतलब एक तरह से युवा MBA करते ही इसलिए है कि बस फटाफट उनका प्लेसमेंट हो जाए।
1: जी बिल्कुल, और इसमें एक चीज मुझे जो लगती है कि यदि हम किसी बात की जड़ में जाएं तो कुछ एक नवीन विचार हमें जरूर मिलता है। तो यदि हम हमारे माता पिता की जो पीढ़ी है उनको देखें तो वो अक्सर 3-4-5 भाई बहन हुआ किए, लेकिन इस समय जो युवा पीढ़ी है वो एक या दो ज्यादा से ज्यादा तीन भाई बहन हैं और ऐसे में होता यह है कि चार या पांच भाई बहनों के बीच पला हुआ

0: कोई भी इंसान पूरी तरीके से बहुत सही तरीके से अपने सपनों को नहीं जी पाता। कुछ न कुछ अभाव उसके मन में जरूर रहते हैं और वो हमेशा ये चाहता है कि बचपन में उसने जो अभाव देखे, जो पीड़ाएं झेली, उन सारी तकलीफों को वो अपने बच्चों को तो कभी नहीं लगने देगा। ऐसे में बच्चों की जो परवरिश की जाती है वो इतने अच्छे तरीके से की जाती है, उन्हें अभावों से बिल्कुल दूर रखा जाता है। ऐसे में यदि हमारे आज के युवा सोचते भी हैं कि उन्हें अभावों से भरी जिंदगी का तो सपना ही नहीं, कल्पना ही नहीं उन्हें चाहिए, सब कुछ उनके हिसाब से, तो इसमें कई हद तक परवरिश भी जिम्मेदार है।
1: परवरिश जिम्मेदार है। और इसके आगे अगर हम बात करें तो आप जो एक अंतर बता रही हैं पुरानी पीढ़ी का और आज की पीढ़ी का, उसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर आया है वो सोच का लगता है मुझे, जिसमें पहले ये था कि लोग काफी मतलब दूर तक का सोच के और फिर किसी चीज को आगे बढ़ाते थे या उसमें लग जाते थे, लेकिन आज के समय में सिर्फ अपना सोचा और फिर अपने भविष्य का सोचा और बस फटाफट कुछ न कुछ चाहिए हाथ में।
0: बिल्कुल सही कहा था आपने। और जो सोच का अंतर आपने कहा है उसमें एक उदाहरण मुझे भी समझ में आता है, वो ये है कि पहले ये कहा जाता था कि फला व्यक्ति खाक से पलक तक पहुंचा है, उसने स्वयं पहले ये कहा जाता था, बहुत कम से पैसों में शुरुआत की है, या फिर वो पहले साइकिल पर था, आज वो देखिए चमचमाती गाड़ियों में है, यानी उसने कितना संघर्ष किया है, ये चीज एक सकारात्मक तरीके से ली जाती थी।
1: लेकिन पल पल उसने सीढ़ियां चढ़ी और फिर
0: आज वो शिखर तक पहुंच गया। लेकिन आजकल बिल्कुल उल्टा है, किस व्यक्ति ने किसे कितनी ज्यादा टोपियां पहनाई, कौन व्यक्ति कितना जल्दी कितने तरीके से, और गलत काम हो चाहे सही काम हो, उसने कितना जल्दी पैसा बना लिया, वो कितना जल्दी सफल हो गया, फिर उसके तरीके बेमानी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को स्मार्ट कहा जाता है। तो ये जो परिभाषाएं बदल रही हैं, हमारे पैमाने बदल रहे हैं, ये भी कई बार हमें चिंता देते हैं।
1: बिल्कुल। और आज के समय में जो सोच बदली है वो बिल्कुल तुरंत फुरंत वाली सोच हो गई है, जिसे हम इंस्टेंट सोच कह सकते हैं। आप युवाओं को ही देख लीजिए, बिल्कुल जल्दी से डिग्री चाहिए और डिग्री मिलते ही जॉब, बस जॉब चाहिए अभी।
0: बिल्कुल। और जॉब के बाद में उनके सपने बिल्कुल वही हो जाते हैं। मुझे तो ये कहना पसंद है हमारे युवा साथियों, क्योंकि युवा जो आपकी ओर जब हम देखते हैं साथियों, तो अब हमें ये आशा होती है कि हम नए सपनों की ओर देख रहे हैं, हम नई ऊर्जा की ओर देख रहे हैं, हम नई सोच की ओर देख रहे हैं। लेकिन जब हम आपको भी वही सब कुछ करते देखते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं या आपसे पहले की पीढ़ी ने किया, तो ये मन में आता है कि इनके मन में नए सपने क्यों नहीं है, इनके मन में नई उड़ाने क्यों नहीं है। क्या आप जब आप छठी या सातवीं कक्षा में होते हैं तभी से व्यक्ति का जीवन को जीने का पैमाना तय हो जाता है, वो अपने आप को सांचे में ढाल लेता है कि ये मेरा जीवन है, मुझे डिग्री लेनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे हर महीना इतना कमाना है, इस उम्र तक जाने तक मुझे कार ले लेनी है, उस उम्र तक जाने तक घर बना लेना है, उस उम्र तक जाने तक इतना इन्वेस्टमेंट कर लेना है कि आने वाला जिंदगी में यदि मेरे पास नौकरी ना भी रहे तो पैसे की कमी ना रहे, कि यहां पर उसे मोक्ष मिल जाता है।
1: यहां पर यह भी कहना चाहूंगी अंतरा जी, हमारे श्रोता साथियों से, सभी युवा साथियों से खासकर, कि पुरानी जो पीढ़ियां हैं उनकी सोच को आप एक बार अपने आप में आत्मसात कर रहे हो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आज के समय के हिसाब से खुद को बदलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय के हिसाब से युवाओं का खुद का बढ़ना और आगे चलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे नौकरी लगने के बाद जो होता है युवाओं के साथ, खासकर कि जिस तरह उन्होंने अभी तक डिग्री और प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल हड़बड़ी की है, उसी तरह उनका अब धीरे धीरे जॉब में वही चीज दिखाई देने लग जाती है धीरे, आज के समय में खास हम बात करें तो। इसके आगे खास जो है, हम शायद ये कह सकते हैं क्या हमारे युवा साथियों के लिए, कि उनमें धैर्य की कमी है, आपको क्या लगता है?
0: बिल्कुल, धैर्य की कमी है ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, परिस्थितियों का आकलन करने की क्षमता जरूर प्रभावित हुई है कि किस परिस्थिति में उन्हें रुकना है और किस परिस्थिति में बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया देनी है। और मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है आस्था की, जो एक सोच बन गई है हमारे युवा साथियों की कि पैसा ही सब कुछ है, हम पैसे के लिए जीते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और ये कहा जाता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, पैसों से संबंध नहीं खरीदे जा सकते, तो अक्सर युवा साथी ये कहते हैं कि ये तो बड़े पुराने रटे रटाए से डायलॉग हैं। तो साथियों, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हुआ किए, उनके पिताजी सेना में लद्दाख में पदस्थ रहे और उनके पास काम ये हुआ करता था कि सेना का पूरा खजाना उनके पास होता था। उस व्यक्ति की आप भी थी ये थी साथियों, कि पूरी तरीके से पहाड़ियों पर जो बर्फ जमी हुई होती है, शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान में वो व्यक्ति अपने हाथ में ढेर सारा पैसा लेकर बर्फ के बीच बैठा रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि इस पैसे से मैं क्या करूं, उस समय उस व्यक्ति को पैसों की नहीं, उस समय यदि उसके पास में एक कोई व्यक्ति प्रेम से आकर बैठकर उससे दो मिनट भी बातें कर लेता तो उसके ऊपर वो सारा पैसा न्यौछावर करने को तैयार था। अब आप बताइए, ऐसे समय में, ऐसी विकट परिस्थिति में उन पैसों की क्या कीमत हुई? कीमत तो उसी चीज की हुई जो किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर रखने से होती है।
1: बहुत ही खूब बात कही आपने अंतरा जी, और यहां हमारे युवा साथियों को भी ये समझना चाहिए क्योंकि आज के समय में उनकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। आज के समय में वो ये मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, जैसा आपने कहा कि रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते पैसे से, लेकिन फिर भी वो आज के समय में पैसे को अपनी पहली कहना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण वो पैसे को ही मानते हैं, सबसे पहले नंबर पर उनके लिए पैसा आता है,
0: प्राथमिकता पैसे को ही,
1: बिल्कुल प्राथमिकता वाली जो बात आ जाती है। आज के समय में शायद युवा पीढ़ी में ये फर्क आ गया है सोच में कि उनकी प्राथमिकताएं बदल गई है।
0: जी, प्राथमिकताएं बदली हैं। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं आगे बस इतना आपसे पूछना चाहूंगी, मैं यहां कुछ कहना तो नहीं चाहूंगी, सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पीढ़ियों का अंतर आ गया है
0: जी
1: हर 3-4 साल में, या जो मार्केट में जो कुछ भी बदलाव आया है, क्या आपको लगता है इसने युवाओं की सोच को या उनके लक्ष्य को प्रभावित किया है?
0: देखिए, मुझे लगता है कि परिस्थितियां चाहे जो भी कुछ हो, व्यक्ति में अपनी सोच हमेशा से एक सही तरीके से विकसित करने की क्षमता उसे अपने आप में मिली होती है। हम देखते हैं चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक उदाहरण हम एक बहुत प्रसिद्ध किताब में पढ़ते हैं, एक शराबी पिता की 2 संतानें थी, उसमें से एक शराबी निकली और एक ने कभी शराब को छुआ नहीं। जिसने बहुत शराब पी उसका कहने का, उसके पास कारण देने के लिए ये था कि मेरे पिता को मैंने जिंदगी भर शराब पीते हुए ही देखा, तो मैं शराब क्यों न पीऊं। जबकि दूसरा व्यक्ति जो बहुत सफल बना, उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, उसका उत्तर देने का ये तरीका था कि मैंने अपने पिता को देखा है कि किस तरीके से शराब पीकर उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तो ऐसे में मैंने ये सीखा कि मैं शराब को कभी हाथ न लगाऊं।
1: इसी तरह जो युवाओं की सोच सकारात्मक, उसे जो भी आप सामने देख रहे हो, जो उदाहरण आप देख रहे हो, उसको युवा सकारात्मक लेते हैं या नकारात्मक लेते हैं, ये उनकी अपनी सोच पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी आप अपने तरीके से बनाते हैं। जिंदगी को बनाने के लिए प्रत्येक के लिए कोई साँचा तय नहीं है। यदि 10 व्यक्ति भी MBA करके निकले हैं तो प्रत्येक की क्षमता अलग रखेंगी।
1: बिल्कुल,
0: प्रत्येक व्यक्ति को आप प्रत्येक स्थान पर फिट नहीं कर सकते, और इस चीज को हमें सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में यदि क्षमता अलग है तो उस केवल अलग क्षमता को ही हम क्यों न देखें। हम ये क्यों देखें कि इसमें बाकी क्षमताएं नहीं है, नहीं, इसमें एक क्षमता बाकी क्षमताओं से अधिक है तो हम उसे संवारें।
1: वो यहां पर मैं वही बात दोहराना चाहूंगी अंतरा जी कि वो जो प्रतियोगिता के दौर वाली बात हमने करी थी हमारे युवा साथियों से, बस हम ये कह सकते हैं कि इसकी जड़ में वही कारण है, जो प्रतियोगिता आ गई है उसमें युवा, आज के युवा अपनी क्षमताओं को भूलकर बस होड़ में लग गए हैं, जो भेड़ चाल कहते हैं हम, भेड़ चाल में लगे हुए हैं और बस एक होड़ सी हो गई है उनमें कि नहीं, उसमें है वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भले ही उनकी फिर वहां पर परिस्थितियां, चाहे आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल हो या नहीं हो, पारिवारिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये सारी चीजों का जो फर्क होता है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल, और ऐसा मैंने 2-3 उदाहरणों में ये भी देखा जो कि मैं अपने युवा साथियों के साथ यहां पर बांटना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते समय जब उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं जो शायद माता पिता ने भी कभी ना देखी हो, उस समय उन्हें बच्चों को अपने द्वारा भोगे गए अभावों को इतना अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बताया जाता है कि बच्चों के मन में गरीबी, अभाव और संघर्ष ये एक प्रकार से खलनायक बन जाते हैं। वे गरीबी से भागना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि धनवान होना सुखद है, धनवान होना सुलभ है। वे गरीबी से या अभावों से इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि गरीबी या अभाव से उन्हें नफरत है।
1: बिल्कुल, वो उन्हें अभिशाप की तरह लगने लगता है।
0: तो ये जो सोच होती है ये इस कारण आती है क्योंकि माता पिता द्वारा बार बार बच्चों को बताया जाता है कि हमने तो इतने अभावों में जिंदगी गुजारी है, वो अभाव हम आपके लिए नहीं देना चाहते, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और क्या आपको लगता है कि जैसा कि हमने शुरू में बात की थी हमारे युवा साथियों से रियलिटी शो को लेकर,
0: जी,
1: आपको लगता है कि ये जो रियलिटी शो आज के समय में बताए जा रहे हैं कि बस साम दाम दंड भेद सब लगा के बस जीतना है और बढ़ना है,
0: जी,
1: आपको लगता है कि युवाओं के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठते हैं?
0: युवा, आज के जो हमारे कार्यक्रम का विषय हमने रखा है आज तक जीवन का रियलिटी शो, इसी चीज से हमने प्रेरित होकर रखा है कि जिस प्रकार से रियलिटी शो में चीजें दिखाई जाती हैं उस प्रकार से यदि कोई करे तो उसे 4 दिन की चांदनी जरूर मिलेगी लेकिन आगे अंधेरी रात ही मिलेगी। क्योंकि यदि हम ये देखें कि रियलिटी शो के जितने भी हीरोज हुए, जितने भी हीरोइंस हुए, उनको आप कितने दिन तक याद रख पाए,
1: वो बात बिल्कुल सही है आपकी। और एक बात यहां मैं युवाओं से ये भी कहना चाहूंगी कि इन रियलिटी शोज को देखकर हमारे युवा ये तो मान के बैठ जाते हैं कि किसी भी रास्ते को अपनाकर हमें सफलता पानी ही है, लेकिन उसके बाद में उन्हें वो सीख नसीब नहीं हो पाती एक तरह से।
0: तो ऐसा कार्यक्रम के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी हमारे युवा साथियों से कि सफलता को पाना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है सफलता को बनाकर रखना।
2: दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंतरा करवड़े और आस्था उपमन्यु, और इसका शीर्षक था जीवन का रियलिटी शो, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर के। साथियों आइए सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों इसी के साथ साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को, अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है देश का धर्म निरपेक्ष चरित्र। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं फादर हरमन मंडोल्ड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार, हिमकर श्याम अपने लेख कहां गया देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र में लिखते हैं, देश की एकता और अखंडता के सामने आज जितनी बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है उतनी इससे पहले कभी नहीं थी। सत्ता की राजनीति ने एकता के सूत्रों को न सिर्फ कमजोर किया है बल्कि उसे अपने फायदे के लिए तहस नहस भी किया है। सहिष्णुता का झीना आवरण उतारता और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना बिखरता दिखाई दे रहा है। देश में अलगाववाद का नया दौर शुरू हो गया है और भविष्य में इसके और तीव्र होने की आशंका है। राष्ट्रीयता का मसला इतना महत्वपूर्ण है कि उसे नकारा नहीं जा सकता। विघटनकारी शक्तियों से हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता दोनों को खतरा है। ऐसी ताकतों को नियंत्रित रख पाने में हमारा तंत्र पूरी तरह से विफल रहा है। असम और म्यांमार में हिंसा की प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ हुआ, जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में उग्र प्रदर्शन किए गए, वह राष्ट्रीय एकता और देश के सांप्रदायिक चरित्र पर सवालिया निशान लगाते हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति इत्यादि के आधार पर बनी अस्मिताओं से हमारा अस्तित्व बनता है। इन अस्मिताओं ने हमेशा ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं रहता और विभिन्न समूहों के हित परस्पर विरोधी भी हो जाते हैं। कभी धर्म, कभी क्षेत्र, कभी भाषा और कभी संस्कृति के नाम पर अलगाववादी शक्तियां सर उठाती रही हैं। सरकार की नीति हमेशा से इन तत्वों को पुचकारने की रही है। मित्रों, सरकार को अपने वोट बैंक की अधिक चिंता है और अन्य राजनीतिक पार्टियां अल्पकालिक फायदों पर ज्यादा नजर रखती हैं। प्रायः हर राजनीतिक दल अपने वोट के नजरिए से चीजों को तोलता और देखता है। धार्मिक संवेदनाओं का खुले इस्तेमाल अपना वोट बैंक बचाने और बनाने के लिए किया जाता रहा है, वह चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या अयोध्या का, गुजरात के दंगे का हो या असम की ताजा तरीन घटना, सब राजनीति के इसी सोच के प्रतिफल हैं। असम में वोटों के खातिर सरकार ने लाखों घुसपैठियों को न सिर्फ रहने की जगह दी, उन्हें भारत का नागरिक होने का हक भी प्रदान किया। इसका परिणाम यह हुआ कि असम सांप्रदायिक हिंसा की भेंट चढ़ा, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए और न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। असम की आग देखते देखते पूरे देश में फैल गई। पूर्वोत्तर के लोगों को जिस तरह उत्तर और दक्षिण भारत के शहरों से भागना पड़ा है और उसमें देश के सांप्रदायिक तत्वों और पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों द्वारा संचालित वेबसाइटों, फेसबुक और ट्विटर ने जैसी भूमिका निभाई है, वह चिंता का विषय है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश में पाकिस्तानी झंडे लहराने और शहीद स्मारक को तोड़ने वाले लोगों को मनमानी छूट नहीं मिलनी चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय पाना और जीवन को दोबारा पटरी पर लाना बेहद कठिन होता है। सांप्रदायिक हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज में वैमनस्यता जन्म लेती है। राजनीति के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ भी हिंसा की जमीन तैयार करता है। धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और उनसे सहानुभूति रखने वालों के अपने अपने हित और औचित्य होते हैं। सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपने तर्क गढ़ता है। अपने को सहिष्णु और उदार मानना और दूसरे को कट्टर और शंका की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हिंदू और मुसलमान ये दो ऐसे समुदाय हैं जिसने ये हमेशा ही संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है। इनके बीच वैमनस्य की ऐसी आग है जो बुझती नहीं है, कुछ समय के लिए ठंडी होती है और जरा सी हवा मिलने पर फिर भड़क उठती है। देश के अल्पसंख्यकों में सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन भी आते हैं, लेकिन उनके प्रति शक और संघर्ष की वह भावना नहीं दिखती है जो दोनों समुदायों का आपस में है। मुट्ठी भर लोग धार्मिक जुनून भड़काकर लोगों के दिमाग में हमेशा ही जहर भरते रहते हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता है विष व मन से नहीं चुकते, वह हमारे आपसी पूर्वाग्रहों और अविश्वासों का फायदा उठाते रहे हैं। इन पूर्वाग्रहों और अविश्वासों के कारण ही
अमन चैन का माहौल कभी कायम नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने इस आपसी फूट का खूब फायदा उठाया। स्वतंत्रता के बाद देश ने एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाने का सपना देखा था, हालांकि धर्मनिरपेक्षता को कहीं अक्षरशः परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर उसके मायने यह होते हैं कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव होगा और सभी नागरिकों को, फिर उनकी धार्मिक आस्था जो भी हो, समान अवसर और व्यवहार प्राप्त होंगे। विडम्बना यह है कि धर्मनिरपेक्षता को कभी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया और देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर निरंतर खतरे के बादल मंडराते रहे। इस शब्द को लेकर हमेशा ही राजनीति होती रही है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहे तुष्टिकरण के कारण समुदायों के बीच अंतर उभर कर सामने आ गए। इससे सांप्रदायिक भेदभाव गहरे हुए और गंगा जमुनी संस्कृति की जड़ें हिल गई। समुदाय विशेष के प्रति हद से ज्यादा उदारता धर्मनिरपेक्षता के हित में नहीं है। अल्पसंख्यक के नाम कोई समुदाय इतनी अधिक विशेषाधिकार पाता है कि बहुसंख्यक समुदाय को इससे खतरा महसूस होने लगता है। तुष्टिकरण की नीति के कारण बहुसंख्यक समाज में अक्सर यह संदेश जाता है कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए उनके हितों की तिलांजलि दी जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना न्यायिक और मानवीय संदेश देने वाला निर्णय नहीं कहा जा सकता है। मित्रों, धर्म और क्षेत्र के नाम पर मुखर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्रों व समुदायों के बीच शांति स्थापित करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। सबको यह समझना चाहिए कि देश में रहने वाले सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके बाद ही कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई है। आम धारणा है कि मुसलमान सिर्फ अपने धर्म की परवाह करते हैं और अपने देश की नहीं। एक साजिश के तहत मुस्लिम समाज को कट्टरपन, दकिया नुसीपन और पृथकतावादी मानसिकता के रास्ते पर धकेला जा रहा है। वह भ्रष्टाचार, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता, समाज सुधार आदि सब प्रश्नों से मुंह मोड़ कर केवल मुसलमान होने के नाते सोचता और निर्णय लेता है। इस संकुचित और पृथकतावादी मानसिकता के कारण कई तरह की शंकाएं पैदा होती हैं। आखिर क्या वजह है कि जमियाते उलेमा हिंद तथा दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थाओं द्वारा वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी करना पड़ता है? जहां कोई अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के साथ एकाकार होने से इनकार करता है, वहां स्थानीय सांप्रदायिक संघर्ष उठ खड़े होते हैं। मुसलमानों की तीव्र अति संवेदनशीलता, छोटे बड़े मसलों पर उनका आक्रामक और उग्र रवैया उन्हें दूसरों से अलग थलग करता है। अल्पसंख्यक समुदाय को असुरक्षा का भाव एक दूसरे के नजदीक लाता है और एकजुट समुदाय की तरह चलने के लिए प्रेरित करता है। हाल के वर्षों में भारत कट्टरपंथी हमलों का सबसे आसान निशाना बनकर उभरा है। इस्लामी कट्टरपंथी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए समुदाय के गुमराह युवकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे युवकों को भी इस्लामी कट्टरता में अपना भविष्य नजर आ रहा है। मुसलमान अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जितना मुखर होते हैं, हिंदुओं में उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही उग्र होती है। हिंदुत्व के उमड़ते ज्वार में बहते जा रहे हैं और वे अब मुसलमानों से कोई तालमेल बिठाना नहीं चाहते। हिंदुओं में भारतीय और हिंदू को एक दूसरे को पर्याय मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अधिकांश हिंदू मानस अपने को भारतीय मानता है। उन्हें भी यह समझना होगा कि देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हिंदुओं के अलावा यह देश मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सबका है। वहीं अल्पसंख्यक समुदायों को भी बेमानी बातों में उलझने के बजाय अपने व्यवहार से यह बताने की कोशिश करनी चाहिए कि अपने देश के प्रति उनका प्रेम उतना ही गहन है जितना अपने धर्म के प्रति। खुद को अलग रखने की प्रवृत्ति उनकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण बन गया है। बहुसंख्यक मुस्लिम तबका अपनी बिरादरी के उन कट्टरपंथियों की विध्वंसक कार्रवाइयों पर उतना ही चिंतित है जितना समाज का दूसरा समुदाय। एक खास वर्ग के कारण पूरा समुदाय बदनाम हो रहा है। हर मुसलमान को यह एहसास कराना कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है गलत है। समुदाय के कुछ लोगों की हरकतों के कारण सभी मुसलमानों को एक चश्मे से देखना उचित नहीं है। अब हमें संघर्ष का रास्ता छोड़कर समन्वय का रास्ता अपनाना चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे की संवेदनाओं और भावनाओं का सम्मान करना होगा। ऐसे व्यवहारिक उपाय ढूंढने होंगे जिससे पूर्वाग्रह छूट सके, गलतफहमियां दूर हो सके और दोनों समुदाय
एक दूसरे के करीब आए। मित्रों, हमारी राष्ट्रीय चेतना उत्तरोत्तर शिथिल हो रही है और जाति, क्षेत्र, भाषा व संप्रदाय की संकीर्ण चेतनाएं प्रबल हो रही है। क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता के उभार के कारण लोग अपने ही देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अलगाववादी और कट्टरवादी शक्तियों को शक्ति से नहीं कुचला गया तो वह आधारशिला ही ढह जाएगी, जिस पर एक उदार, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील समाज बनाने का सपना देखा गया था। कट्टरवाद किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक। कट्टरवाद से केवल नुकसान ही होता है। कट्टरवादी मानसिकता के कारण इंसान ऐसा रास्ता चुन लेता है जिसकी इजाजत न तो मानवता देती है न ही विश्व का कोई धर्म देता है। कट्टरपंथ वही संभव होता है जहां लोकतंत्र नहीं होता। किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास के लिए परस्पर सौहार्द का होना नितांत आवश्यक है। पूरे देश और सभी क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास, भाषा और धर्म के मामले में सत्य अर्थों में सहिष्णुता तथा जातिवाद को समाप्त करने की सुदृढ़ चेष्टा यदि रही तो भारत सशक्त और संगठित देश के रूप में फिर से उठ खड़ा होगा। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था देश का धर्म निरपेक्ष चरित्र, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है संपर्क का दायरा बढ़ाइए, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता संपर्क का दायरा बढ़ाइए। बहनों, आज के जमाने में किसी भी व्यक्तित्व के विषय में बार बार ये कहा जाता है कि उसका पीआर बड़ा स्ट्रांग है, उससे संपर्क बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अनायास ही प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनका साथ हमें अच्छा लगने लगता है? कई बार ऐसा भी लगता है कि यदि हम उनके साथ रहेंगे तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जरा गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में ये सिर्फ इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का ही कमाल नहीं होता, कमाल होता है तो इनके संपर्कों में। जी हाँ, आपकी समस्या को चुटकियों में हल कर देने वाली आपकी सहेली घर बैठे ही बिजली का बिल भरवाती है, बिगड़ा हुआ टेलीफोन सुधरवाती है और गर्मी के दिनों में टैंकर भी उसे बड़ी आसानी से मिल जाता है, है ना? ऐसे में काम आता है उसका वो संपर्कों का जाल जो उसने अपने काम और मृदु संभाषण से बुना है। बहनों, हम में से कई बहनें ऐसी होती हैं जो अपनी कुछ एक सहेलियों के बीच ही अच्छा महसूस करती हैं। उन्हें नई सहेलियां बनाना या फिर नए लोगों के बीच घुलना मिलना बिल्कुल नहीं सुहाता। ऐसे में उनका जीवन एक लीक पर चलने लगता है। किसी से कोई काम करवाना हो या फिर किसी परेशानी का हल चाहिए होता है, तब या तो वे अपने पति पर निर्भर होती हैं या फिर अपने मायके पर। क्या कहा कि आपके साथ भी ऐसा ही है? तो बहनों, ये आज का कार्यक्रम तो आप ही के लिए खास बना हुआ है, ये समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि संपर्क अच्छे होने वाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है, तो आप भी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढकर उनसे दोस्ती कीजिए जिनके संपर्कों का दायरा काफी फैला हुआ हो। तब ये देखें कि ऐसे व्यक्ति आपके आसपास कौन से हैं, उनकी पहचान आप किस तरीके से करेंगे। बहनों, सबसे पहले तो ये देखें कि जब भी आपको कोई परेशानी आती है तब उसे सुलझाने के लिए सबसे पहला नाम परिवारजनों के अलावा किसका आता है? वो व्यक्ति कौन होता है जो आपको सारी परेशानियों से उबारने के लिए तैयार बैठा रहता है और आपका भी उसके ऊपर विश्वास होता है? अब तक आपको किसके साथ अपने रहने से बहुत आश्वस्त प्रकार का विचार मन में आता है? यदि आप ये सोचते हैं कि यदि ये फला व्यक्ति हमारे साथ हो तो फिर किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उसे पार जरूर पा लेंगे, ऐसा कौन व्यक्ति है? आप अपने बच्चों को किसके जैसा बनने, बोलने और व्यवहार करने के विषय में बताती हैं? मैंने हम सभी के घर में, समाज में, आसपास कहीं न कहीं कोई ऐसे आदर्श व्यक्तित्व जरूर होते हैं जो हमें आदर्श लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनके व्यक्तित्व, उनके विचार और उनके व्यवहार करने का तरीका हमारे बच्चों के आगे आने वाले भविष्य में भी झलके। इसलिए हम आते जाते बच्चों को आदतों के विषय में, पढ़ाई के विषय में या भविष्य के बारे में सोचने के विषय में जब भी डांटते हैं या समझाते हैं तब कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के उदाहरण जरूर देते हैं। तो ये गौर करें कि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति कौन हैं? वो कौन होते हैं जिन्हें जब आप कोई खबर देने जाते हैं तब वो उनके पास पहले से मौजूद होती हैं? बहनों, ये तो आपके आसपास की कोई सहेली जरूर होती है जिनके पास आप कोई भी खबर देने जाएं उनके पास वो पहले से मौजूद होती है। मुझे तो ये पता था, ऐसा कहने वाली सहेली कौन है? दूसरा, आपके समूह में या परिचितों में ऐसा कौन है जिसके निर्णय सभी आसानी से मान लेते हैं? ये कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं बहनों जो यदि किसी एक व्यक्तित्व में हो या इनमें से कुछ विशेषताएं भी किसी व्यक्तित्व में हो तो ये मान लीजिए इस व्यक्ति के संपर्क का दायरा बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति की संभाषण कला बहुत अच्छी है, किसी भी विकट परिस्थिति में निर्णय लेने की इस व्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी है और बहुत बेहतर होगा यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ स्वयं भी संपर्क बनाएं और सीखें कि कैसे इन गुणों का विकास किया जाता है। बहनों, ये सभी प्रश्नों के उत्तर में जो एक व्यक्तित्व सामने आता है तब ये समझ लीजिए कि इस व्यक्ति से हमें संपर्क बढ़ाना है। अब ये देखें कि संपर्क बनाकर अपना काम निकाला जा सके उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। जी नहीं, आपको किसी भी प्रकार का कपट नहीं करना है, लेकिन कई बार ये होता है कि हम कुछ चीजों के विषय में विचार ही नहीं कर पाते लेकिन वे वास्तव में होती हैं। अब आप यदि ये चाहती हैं कि सामने वाले व्यक्ति से आपकी अच्छी दोस्ती हो और वो आपके समय पर काम आ सके तो सबसे पहली बात यह है कि आपको स्वयं को भी उस व्यक्ति के लिए समय पर काम आना होगा। कई बार हम देखते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के
अपनी ही जेब से पैसा खर्च करते हुए कोई दोस्त किसी की मदद करता है। हमें अचरज होता है कि ऐसी मदद से क्या हासिल होगा, लेकिन किसी की मृत्यु पर सांत्वना या सफलता पर किसी का खुश होना, बहनों, ये हमारे बनाए हुए रिश्तों पर ही निर्भर होता है। इस प्रकार की बातें कभी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। इस प्रकार की बातें तभी मिलती हैं जब आप स्वयं अपने प्रयासों से अपने रिश्तों को बनाए रखें। सच्चे संपर्क एक से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, लेकिन इसमें आपको कहाँ तक जाना है और आप कितना और किसके साथ अपने स्वभाव के अनुरूप निभा कर सकती हैं, ये सीमा आपको स्वयं ही तय करना है। संपर्क सिर्फ दोस्ती में नहीं, आपका व्यापार है तो आपके ग्राहक भी आपके संपर्क हो सकते हैं। कहा जाता है कि संपर्कों में माहिर व्यक्ति को अपने नौकरों की छुट्टियों के क्रियाकलापों की भी जानकारी होती है। इसलिए यदि संपर्क आपको बनाने हैं तो किस प्रकार से बनाने हैं, उनसे क्या लाभ होना है, कई बार बिना लाभ के भी सिर्फ रिश्तों को बनाने के लिए भी आपको संपर्क बनाने चाहिए। और बहनों, सिर्फ एक रास्ता तोड़ने के लिए संपर्क नहीं बनाने हैं, उसके स्थान पर उन्हें अपने जीने का तरीका बनाएं। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो आपको जीवन की संध्या में समझ में आएगा वो है कि बुढ़ापे में संपर्क जीना आसान बना देते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों किसी के भी पास समय नहीं है, ऐसे में आप अपने मित्रों की संख्या से लगाकर संबंधियों के जाल तक में रुचि लेकर अपने महत्व को एक बार बढ़ाइए। और कुछ बातों को यदि ध्यान में आप रखेंगे ना, तब अपनी बोरियत को भी दूर कर पाएंगे और सारी सुविधाएं आपको भी मिलने लगेंगी। और ऐसा होने पर वो होगा जो आप हमेशा चाहती हैं। जी हाँ, लोग आपसे संपर्क बनाना चाहेंगे और ये होगी आपके व्यक्तित्व की सही जीत। बहनों, बहुत जल्दी अपने आप को बदलिए यदि आप संपर्क बनाने में माहिर नहीं हैं। संपर्क बनाना यानी किसी से काम निकालने के लिए संपर्क बनाना नहीं है। आपको इस दुनिया में इस समय क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये सोचना है। आपको ये देखना है कि आने वाले समय में आपका भविष्य किस प्रकार का होगा। क्या आप एकाकीपन से जूझ सकती हैं? यदि नहीं तो संपर्क आपको चाहिए। संपर्कों का दायरा स्वार्थवश बढ़ाने के स्थान पर सबसे पहले तो संपर्क क्या होते हैं ये सीखिए। यदि सामने वाले व्यक्ति को आपकी जरूरत है, एक बार उसके काम आकर देखिए, फिर देखिए उसके चेहरे पर जो मैत्रीपूर्ण मुस्कान होगी वो आपका जीना वाकई आसान कर देगी। तो बहनों, संपर्क एक ऐसी संपत्ति है जो संसार में किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को एक बहुत अच्छा, सही और सफल जीवन दे सकती है। तो आने वाले समय में आपको ये देखना है कि संपर्क आपके जीवन के सूत्र में हो और आपके जीवन के सूत्र एक सफलता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था संपर्क का दायरा बढ़ाइए, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य सर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है प्रेम छवि हो मन दर्पण में। इस वार्ता के लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं भवानी कौल।

मन दर्पण वार्ता सुनिए। प्रेम छवि हो मन दर्पण में। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और वाचिका भवानी कौल। साथियों, उस समय कोई दूर बैठा यह दोहा गा रहा था। दोहा संत कबीर का था। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीजी आत्मा हरी भरी बन राई। सच है, जब व्यक्ति मन में, उसके मन दर्पण में प्रेम छवि का विस्तार होता है, उसकी मन आत्मा पर प्रेम का वर्षण होने लगता है, तब उसकी आत्मा वनराई हरी भरी हो जाती है, हर ओर प्रसन्नता व्याप जाती है। उस महाआनंद की तुलना किसी अन्य सुख से नहीं की जा सकती। याद रखें, एक संत वाणी ने कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यानी प्रेम सर्वोच्च भाव है। इस संदर्भ में एक विशेष प्रसंग याद हो आता है। स्वामी रामतीर्थ अपने युग के एक प्रसिद्ध संत हो गए हैं। वे स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे। उस युग में उनकी ख्याति भी उतनी ही थी जितनी कि उस युग के अन्य संत पुरुषों की। वे महान चिंतक थे। उनके विचारों का आकाश भी विस्तृत था। उनमें कहीं कोई संकीर्णता नहीं थी। वह प्रसंग उन्हीं का है। एक समय स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर थे, फिर वहां से एक जहाज में बैठ अमेरिका की यात्रा पर चल दिए। जापान से अमेरिका की वह यात्रा कोई सामान्य नहीं बल्कि काफी लंबी थी। जब वह यात्री जहाज जिसमें कि स्वामी रामतीर्थ यात्रा कर रहे थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह के तट पर जा लगा, तब उस जहाज के सारे यात्री वहां उस बंदरगाह पर उतरने की तैयारी करने लगे। लेकिन स्वामी जी निश्चिंत भाव से उस जहाज की देख पर टहलते रहे। तब स्वामी जी की उस निश्चिंतता को देख एक अमेरिकी यात्री ने, जो उसी जहाज से यात्रा कर रहा था, उस जहाज से उतरने की तैयारी कर रहा था, उसने देख पर निश्चिंत भाव से टहलते स्वामी जी को देखा तो पूछ लिया, महाशय, क्या आपको यहां उतरना नहीं है? बताएं, सैन फ्रांसिस्को में उतरना है तो जाना कहां है? इस पर स्वामी जी का उत्तर था, हां, मुझे सैन फ्रांसिस्को में ही उतरना है, इसी नगर जाना है। इस पर उस अमेरिकी यात्री का प्रश्न था, अगर आपको यहीं उतरना है तो आपका सामान कहां है? आप अपना वह सामान लाते क्यों नहीं है? उस यात्री ने उनसे यही कुछ आग्रह किया। इस पर स्वामी राम ने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय मित्र, इस समय मेरे शरीर पर जो कुछ है उसके अतिरिक्त मेरे पास अन्य कुछ भी नहीं है। इस पर उस अमेरिकी यात्री ने फिर जिज्ञासावश स्वामी जी से पूछा, आपका रुपया पैसा कोई धनराशि भी तो होगी, वह कहां है? इस प्रश्न के संदर्भ में स्वामी रामतीर्थ ने बिना हिचक स्पष्ट शब्दों में कहा, मित्र, मैं अपने पास कोई रुपया पैसा कोई धनराशि नहीं रखता। स्वामी जी का यह स्पष्ट उत्तर सुन वह अमेरिकी यात्री एकदम आश्चर्यचकित था। इस पर उसने बिना हिचक उनसे पूछ ही लिया, तो बताएं महाशय कि आपका यह जीवन, आपकी यह जीवन यात्रा कैसे चलती है? इस पर स्वामी जी हंसते हुए बोले, मैं सबसे प्रेम करके ही जीवित रहता हूं। जब प्यासा होता हूं तो कोई पानी मिल जाता है, भूखा होता हूं तो कोई रोटी लिए तैयार रहता है। स्वामी जी की यह बात सुन उस अमेरिकी नागरिक ने फिर प्रश्न किया, तो कृपया बताएं, क्या अमेरिका में आपके ऐसे मित्र हैं? इस पर स्वामी रामतीर्थ ने उस अमेरिकी नागरिक के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, हैं, क्यों नहीं, मैं केवल एक ही अमेरिकी मित्र को जानता हूं और वह मित्र हो तुम। और वह अमेरिकी नागरिक स्वामी जी की सुंदर भावना भरी बात सुनकर और उनका सहज और आत्मिक स्पर्श पाकर जैसे आनंदित हो उठा और कहते हैं वह उनका अनन्य मित्र बन गया था। तो मित्रों, स्वामी रामतीर्थ मानवता के प्रति इसी तरह के प्रेम का संदेश जन जन बांटते रहे। वे अक्सर कहा करते थे, मैं यह जानता हूं, प्रेम ही सुंदरता है।
जो अपने अंतर मन में इस बात को, इस सिद्धांत को स्वीकृति देता है, वह जहां मनुष्य जाति का हितैषी तो होता ही है, वह प्रभु प्रेम और उनकी कृपा का भागीदार भी बन जाता है। साथियों, हम स्मरण करें, पवित्र बाइबिल में भी इसी प्रेम का संदेश है। समग्र मानवता के लिए वह संदेश है जिसमें कहा गया है, प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झूठलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ को ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। और साथ ही यह भी कहा गया है, भविष्यवाणियां जारी रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। मित्रों, तभी तो कहा गया है, प्रेम शाश्वत है, अमर है। आज इस वर्तमान युग में हर व्यक्ति के मन में प्रेम की पवित्र ज्योति जागृत हो, हर मन दर्पण में प्रेम छवि विस्तार पाए, ताकि विश्व मानवता कई कई व्यथाओं से मुक्ति पाए। ऐसा होने पर इस धरती पर शांति होगी,

में ही तो उत्साह और उमंग की सृष्टि होती है। इसीलिए आज के उत्सव निर्जीव से होते जा रहे हैं। मित्रों, अब अधिक जरूरी है फिर प्रेम का विस्तार हो, हर मन इसे ग्रहण करे, उसे स्वीकारे। कभी किसी कवि ने कहा था, अंजूरी भर प्रेम दे दो बहुत है, हम इसे करके तो देखें। उचित थी मित्री की वह बात, उचित था उनका कथन, उनका तर्क। फिर उन्होंने यह भी कहा था, जितने भी महान संत हुए, मनीषी हुए, मानवता के पोषक हुए, चाहे वे भारत की धरती पर हुए हों या अन्य किसी देश भूमि पर, उन सब ने प्राणी मात्र से, यही नहीं उन्होंने प्रकृति से, प्रेम पौधों से, जीवधारी प्राणियों, पशु पक्षियों से, जड़ चेतन सभी से प्रेम करने का संदेश दिया है। हाँ, हम भूले नहीं कि यूं आज भी प्रेम विस्तार के पावन संदेश कहे, सुने तथा प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन हम इसके लिए जिस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह सब कुछ उतना विस्तार, उतना प्रसार नहीं पा रहा है जिसकी हमें प्रतीक्षा है। मित्रों, अब हमें इसकी प्रतीक्षा नहीं, अब इस दिशा में सही रूप से प्रयास और प्रयाण करना है। हर संभव कोशिश की जाए कि हर मन दर्पण में प्रेम की छवि विस्तार पाती चली जाए। जी हाँ, आज का यह समय यही कुछ कह रहा है, आवाज दे रहा है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था प्रेम छवि हो मन दर्पण में। इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारे समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है रंग बिरंगी आतिशबाजी। इस वार्ता की लेखिका है स्वर्गीय इंदु संतोष जी और प्रस्तुत करता है संतोष जोशी।

पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता रंग बिरंगी आतिशबाजी, लेखिका इंदु संतोष, प्रस्तुतकर्ता संतोष जोशी। दीपावली हो या नया साल, शादी हो या पार्टी, हर त्योहार और हर खुशी के मौके पर आप सभी ने आतिशबाजी का लुत्फ उठाया होगा। गांव हो या शहर, देश हो या विदेश, हर जगह इस दुनिया में आतिशबाजी का रिवाज है। और हां, ये आतिशबाजी सिर्फ खुशी के मौके पर ही हो, मनोरंजन तक ही हो, ये सीमित नहीं है। आपातकाल में भी ये आतिशबाजी हमारी मदद कर सकती है, न केवल मदद बल्कि एक अहम भूमिका निभा सकती है। हम आपको बताएं, 14 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक नामक समुद्री जहाज जब बर्फ के विशाल हिमखंड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब दूर तक संकेत भेजने के लिए उस सुनसान और काली सर्द रात में क्या किया जा सकता था? जी हां, डूबते हुए जहाज से आतिशबाजी का प्रयोग किया गया था। प्रश्न ये उठता है कि आतिशबाजी आखिर है क्या? आतिशबाजी मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जो पिछली शताब्दियों से, राजा महाराजाओं के जमाने से, बच्चे बूढ़े और जवान, स्त्री हो या पुरुष, हर वर्ग के लोगों को अपने प्राणों की आहुति देकर लुभा रही है। जी हां, आतिशबाजी जलकर अपना जीवन तो समाप्त ही कर लेती है। आसमान में रॉकेट, फुलझड़ियां, अनार के फवारे और चक्री का घूमना, नाचना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को तो लुभाता है। विभिन्न रसायनों के मिश्रण को जलाने पर आवाज, धुआं और चिंगारियों से बनी आकृतियों को ही आतिशबाजी कहते हैं। आतिशबाजी यह शब्द उर्दू भाषा का है, जिसमें आतिश का मतलब आग होता है और बाजी का अर्थ है कला, यानी आग की कला। मतलब विभिन्न भाषाओं में आतिशबाजी के भिन्न भिन्न नाम हैं। उर्दू भाषा का नाम है, इसे बनाने वाले आतिशबाज कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फायरवर्क कहते हैं और इसे बनाने वाले को फायर वर्कर कहते हैं। हिंदी में हवाई गिरी कहते हैं और बनाने वाले को हवाई गिर कहते हैं। शाब्दक में इसे कहते हैं आग के खिलौने और बनाने वालों को कहते हैं आग के खिलौने का व्यापारी। आतिशबाजी के इतिहास में अगर हम जाएं तो हम पाते हैं कि 3000 BC यानी कि ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था और बाद में ये अरब, यूरोप, यूनान और भारत में पहुंची। इस समय भारत में सबसे ज्यादा आतिशबाजी दक्षिण भारत के शिवाकाशी नामक छोटे से शहर में होती है, बनाई भी वहीं जाती है सबसे ज्यादा। जिसे अगर हम आतिशबाजी का शहर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आतिशबाजी में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है उसे बारूद कहते हैं, जिसमें मुख्य शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, लकड़ी का कोयला, ये सब होता है। प्रदूषण रूपी अंधकार इससे गहन होता है। धार्मिक पर्वों से संबंधित आस्था हमारे अंदर एक नए आत्मविश्वास का संचार कर जिंदगी के सफर को बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ाने में सहायक होती है। लेकिन जब हमारी आस्था जिंदगी के सफर में अवरोध पैदा करे तो उसकी प्रासंगिकता एवं अस्तित्व पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारी आस्था जहां एक ओर किसी तर्क को स्वीकार नहीं करती, वहीं दूसरी ओर परंपरा के बंधनों से भी मुक्त नहीं होना चाहती। यही कारण है कि कभी कभी इस आस्था की वजह से हमारे अस्तित्व पर
संकट के बादल मंडराने लगते हैं। पिछले दिनों जब केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जल प्रदूषण रोकने के लिए गणेश एवं दुर्गा जी की मूर्तियों को नदियों में विसर्जित न करने के निर्देश दिए थे, तो कुछ कट्टरपंथियों द्वारा उसे भारतीय जनमानस की आस्था पर हमला बताया गया था। लेकिन ये समाज ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति की रक्षा न करके हम स्वयं अपनी आस्था पर हमला कर रहे हैं। प्रकृति की रक्षा के बाद हमारे शास्त्रों में यही बात दोहराई गई, ईश्वर प्रकृति के कण कण में विराजमान है। दीपावली दीपों का त्योहार है। इस प्रकाश उत्सव पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि दीपावली पर हम जीवन में सच्चे अर्थों में प्रकाश लेकर आएं। दरअसल जब हम दीपों के साथ साथ अपनी इच्छा शक्ति के प्रकाश से प्रदूषण रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कृत संकल्प नहीं होंगे, तब तक हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम दीपावली जैसे पावन पर्व पर, ऐसे त्योहारों पर, पटाखों के धूम धड़ाकों के बीच उस प्रदूषण रूपी अंधकार की आहट नहीं सुन पाते। दरअसल प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ न जाने कितने धन की भी हानि होती है। तेजी से हमारे जीवन को अपने शिकंजे में कसने के लिए यह परंपरा चली आ रही है। दीपावली पर आतिशबाजी से वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दौरान वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। पटाखों की बहुत तेज आवाजों से कानों के पर्दों पर असर होता है। ये सर्वविदित है कि हमारे कान एक खास जोर की ध्वनि ही सुन सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और ये पटाखों की ध्वनि उस ध्वनि से कहीं बहुत अधिक ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जहरीले रसायन, फ्लोराइड मेटल आदि की बढ़ोतरी भी वातावरण को प्रदूषित करती है। इस तरह त्योहारों पर ये प्रदूषण समस्त मानव जाति एवं पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं और प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। वे प्राचीन इमारतें जो सफेद संगमरमर की बनी होती हैं, उस पर तो खास इस प्रदूषण का असर होता ही है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य को आंख, गले के रोग और चर्म रोग तथा श्वसन तंत्र के रोग घेर लेते हैं। सबसे अधिक परेशानी दमा, ब्रोंकाइटिस और दिल के मरीजों को होती है। इस दौरान जहां एक ओर दमे और ब्रोंकाइटिस के मरीजों की सांस उखड़ने लगती है, वहीं दूसरी ओर ये दिल के मरीजों पर भी प्रभाव डालती है। दिल के मरीजों का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि परंपरा के बंधनों से मुक्त होकर आतिशबाजी को बंद करने के लिए कदम उठाएं। ये कदम उठाते हुए हमें याद रखना होगा कि पटाखे उद्योग में लगे मजदूरों का अहित न हो। इन मजदूरों की रोजी रोटी के लिए सरकार को भी इन्हें किसी दूसरे उद्योग में समायोजित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था रंग बिरंगी आतिशबाजी। इस वार्ता की लेखिका थी स्वर्गीय इंदु संतोष जी और प्रस्तुतकर्ता थे संतोष जोशी। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ग्लोरिया गांगले को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम पर्यावरण।

श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के तहत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है प्रदूषण का तर्कसंगत समाधान हो। श्रोताओं, चेतन भगत एक मशहूर उपन्यासकार लिखते हैं, एक घर था जिसकी छत से पानी रिसता था। किसी ने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। हालात खराब होते गए, परिवार के सदस्यों को तकलीफ होती। एक दिन घर का एक छोटा बच्चा एक योजना लेकर आया। श्रोताओं, वह अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सेट से गोंद और कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले आया। उसने कहा, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का दिल भर आया। बालक के चेहरे के वे प्यारे भाव, आंखों में उत्साह की चमक और यह तथ्य कि घर में वही ऐसा था जो समस्या को लेकर कुछ करना चाहता था, उसे प्रशंसा का हकदार बनाता था। श्रोताओं, हर किसी ने उससे कहा, शाबाश इतनी अच्छी सोच और स्मार्ट आइडिया के लिए। प्रत्येक व्यक्ति ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसके गाल खींचे। हालांकि जरूरत इस बात की थी कि कोई उसे बताए कि बेटे, तुम्हारे विचार तो अद्भुत हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह प्लान काम नहीं देगा। हालांकि ऐसा कौन है जो रूखे अंकल की भूमिका निभाकर यह कड़वी बात उसे बताए। श्रोताओं, इस उदाहरण में रिश्ती छत और घर दिल्ली में प्रदूषण के रूपक हैं। गोंद और कार्डबोर्ड का समाधान सम विषम नंबर प्लेटों की दिल्ली सरकार की योजना है। श्रोताओं, और वह प्यारा सा बच्चा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी में इतने सारे प्यारे और तत्पर लोग हैं कि आपको हर किसी के गाल खींचने में हफ्तों लग जाएंगे। श्रोताओं, उक्त उदाहरण सिर्फ वास्तविक मुद्दों को उजागर करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या ही नहीं है, समस्या है और बहुत भयावह है। हालांकि कभी कभी प्रस्तावित समाधान वैसा नहीं होता जो काम दे। श्रोताओं, इसके पहले कि हम घोषणा करने के लिए दौड़ पड़े, हमें चीजों को तार्किक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढंग से देखने की जरूरत है। श्रोताओं, शुरू से देखें तो अब भी यह स्पष्ट नहीं कि राजधानी में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। कारखाने, पड़ोसी राज्यों में फसलों को जलाया जाना, बिजली घर, चूल्हों में कोयले या लकड़ी का जलाया जाना, पुराने ऑटो रिक्शा और जर्जर पुराने वाहनों में से कौन दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। श्रोताओं, संयोग की बात है कि सम विषम योजना के दायरे में इनमें से कोई स्रोत नहीं आता। दिल्ली के प्रदूषण को निजी वाहन कितना बढ़ा रहे हैं, इसकी स्पष्ट धारणा के बिना इनमें से आधे वाहनों को हर वक्त बेकार पड़े रहने देना तो काला कानून ही कहलाएगा। यह कोई अच्छी सोच नहीं है। श्रोताओं, फिर यदि हमें इस योजना पर आगे बढ़ना भी हो तो हमारे पास इतना यातायात पुलिस बल नहीं कि नियम के पालन पर नजर रखी जाए। श्रोताओं, योजना के समर्थकों को विश्वास होगा कि लोग अच्छे हैं और इसका खुद पालन करेंगे, लेकिन यदि हम अच्छे होते तो भारत की सारी योजनाएं अच्छा काम दिखाती और हम विकसित देशों में नहीं आते। श्रोताओं, फिर नियम को दरकिनार करने के जायस नंबर प्लेट के लिए एक और कार खरीद लें। हो सकता है यह पुरानी सेकेंड हैंड और ज्यादा प्रदूषण वाली हो, या नाजायज तरीके जैसे फर्जी इमरजेंसी सर्टिफिकेट, पुलिस को रिश्वत, नंबर प्लेट बदलना या जोखिम लेकर देखना। श्रोताओं, तरीके अनेक हैं। योजनाओं को लेकर शुरुआती उत्साह और मीडिया का फोकस खत्म होने के बाद दिल्ली वाले अपनी कार सड़क पर लाने के लिए कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। श्रोताओं, जो लोग नियमों का पालन करेंगे वे पहले से ही बोझ के तले दबी जा रही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर और बोझ बढ़ा देंगे। ऑटो या तो मिलेंगे ही नहीं या जरूरत से ज्यादा वसूली में लग जाएंगे। श्रोताओं, पहले ही खचाखच भरी मेट्रो ट्रेनों की हालत और खराब हो जाएगी। दिल्ली के पास कोई पेरिस व सिंगापुर जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो है नहीं। चाहे अस्थायी रूप से ही सही, ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ कुछ क्षेत्रों में इसका भयंकर नकारात्मक साइड इफेक्ट होगा।
कई ड्राइवरों के पास काम ही नहीं होगा। माल ढुलाई ठीक से ना होने के कारण महंगाई बढ़ेगी। निजी वाहनों में स्कूल जाने वाले बच्चे और सम विषम की समय सीमा के आर पार को काम करने वालों को बहुत परेशानी भुगतनी होगी। इस रेडीमेड समाधान को अपनाने का सबसे बुरा असर तो यह होगा कि इससे यह झूठा एहसास निर्मित होगा कि हमने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ किया है, जबकि वास्तविक समाधान की अनदेखी होगी। श्रोताओं, मैक्सिको और बोगोटा जैसे जिन देशों में यह योजना अजमाई गई है वहां यह नाकाम रही है। बीजिंग का उदाहरण प्रायः दिया जाता है, लेकिन वहां इस उपाय ने थोड़ा ही असर दिखाया है और यह एक खास आयोजन के लिए अस्थायी तौर पर उठाया गया कदम था। फिर चीन कोई लोकतंत्र तो है नहीं और यह योजना किसी एकाधिकारवादी देश के ही अनुकूल है। लोकतांत्रिक भारत में हमें लोगों की आजादी चुराने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। वे याद दिलाते हैं कि बीजिंग में उन लोगों पर टैंक दौड़ा दिए थे जिन्होंने उस तरह का आंदोलन चलाने की कोशिश की जिस तरह के आंदोलन से आपका जन्म हुआ। इसलिए दोनों शहरों की तुलना करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। श्रोताओं, समाधान मौजूद तो है। दीर्घकालीन समाधान तो यह है कि दिल्ली जैसे विश्व स्तरीय शहर और बनाए जाएं, ताकि सुपर मेट्रो शहरों पर पड़ रहे दबाव कम हो सके। सुपर मेट्रो को बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत है। अल्पावधि में कुछ दफ्तरों के लिए काम के अलग अलग घंटे तय कर सकते हैं। इससे सड़कों पर दबाव कम होगा और यातायात तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रैफिक जाम में फंसी कार तेजी से अपनी यात्रा पूरी करती कार की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। श्रोताओं, हम नई कारों की खरीद पर टैक्स बढ़ा सकते हैं या उनकी संख्या को सीमित कर सकते हैं। श्रोताओं, हमें राजधानी की हर कार पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी ट्रैकिंग टैग लगाने की जरूरत है, ताकि हम व्यस्तता वाले समय में अतिरिक्त शुल्क वसूली जैसे सड़क के अधिकतम उपयोग के उपायों को लागू कर सके। श्रोताओं, टैक्सी शेयरिंग ऐप को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अभी तो उबेर और ओला ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, क्योंकि सड़कों पर कारों की संख्या घटाने की दिशा में वे बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। श्रोताओं, आपको यह तो श्रेय है कि उसने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कुछ करने की कोशिश की है। श्रोताओं, दिल्ली साफ सुथरी हवा की हकदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक समझदारी भरे समाधान खोजने होंगे। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से rva मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का, आप सभी का, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

0: रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
1: जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे।
0: साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम पर्यावरण।

श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के तहत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है प्रदूषण का तर्कसंगत समाधान हो। श्रोताओं, चेतन भगत एक मशहूर उपन्यासकार लिखते हैं, एक घर था जिसकी छत से पानी रिसता था। किसी ने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। हालात खराब होते गए, परिवार के सदस्यों को तकलीफ होती। एक दिन घर का एक छोटा बच्चा एक योजना लेकर आया। श्रोताओं, वह अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सेट से गोंद और कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले आया। उसने कहा, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का दिल भर आया। बालक के चेहरे के वे प्यारे भाव, आंखों में उत्साह की चमक और यह तथ्य कि घर में वही ऐसा था जो समस्या को लेकर कुछ करना चाहता था, उसे प्रशंसा का हकदार बनाता था। श्रोताओं, हर किसी ने उससे कहा, शाबाश इतनी अच्छी सोच और स्मार्ट आइडिया के लिए। प्रत्येक व्यक्ति ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसके गाल खींचे। हालांकि जरूरत इस बात की थी कि कोई उसे बताए कि बेटे, तुम्हारे विचार तो अद्भुत हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह प्लान काम नहीं देगा। हालांकि ऐसा कौन है जो रूखे अंग

प्रस्तावित समाधान वैसा नहीं होता जो काम दे। श्रोताओं, इसके पहले कि हम घोषणा करने के लिए दौड़ पड़े, हमें चीजों को तार्किक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढंग से देखने की जरूरत है। श्रोताओं, शुरू से देखें तो अब भी यह स्पष्ट नहीं कि राजधानी में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। कारखाने, पड़ोसी राज्यों में फसलों को जलाया जाना, बिजली घर, चूल्हों में कोयले या लकड़ी का जलाया जाना, पुराने ऑटो रिक्शा और जर्जर पुराने वाहनों में से कौन दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। श्रोताओं, संयोग की बात है कि सम विषम योजना के दायरे में इनमें से कोई स्रोत नहीं आता। दिल्ली के प्रदूषण को निजी वाहन कितना बढ़ा रहे हैं, इसकी स्पष्ट धारणा के बिना इनमें से आधे वाहनों को हर वक्त बेकार पड़े रहने देना तो काला कानून ही कहलाएगा। यह कोई अच्छी सोच नहीं है। श्रोताओं, फिर यदि हमें इस योजना पर आगे बढ़ना भी हो तो हमारे पास इतना यातायात पुलिस बल नहीं कि नियम के पालन पर नजर रखी जाए। श्रोताओं, योजना के समर्थकों को विश्वास होगा कि लोग अच्छे हैं और इसका खुद पालन करेंगे, लेकिन यदि हम अच्छे होते तो भारत की सारी योजनाएं अच्छा काम दिखाती और हम विकसित देशों में नहीं आते। श्रोताओं, फिर नियम को दरकिनार करने के जायस नंबर प्लेट के लिए एक और कार खरीद लें। हो सकता है यह पुरानी सेकेंड हैंड और ज्यादा प्रदूषण वाली हो, या नाजायज तरीके जैसे फर्जी इमरजेंसी सर्टिफिकेट, पुलिस को रिश्वत, नंबर प्लेट बदलना या जोखिम लेकर देखना। श्रोताओं, तरीके अनेक हैं। योजनाओं को लेकर शुरुआती उत्साह और मीडिया का फोकस खत्म होने के बाद दिल्ली वाले अपनी कार सड़क पर लाने के लिए कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। श्रोताओं, जो लोग नियमों का पालन करेंगे वे पहले से ही बोझ के तले दबी जा रही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर और बोझ बढ़ा देंगे। ऑटो या तो मिलेंगे ही नहीं या जरूरत से ज्यादा वसूली में लग जाएंगे। श्रोताओं, पहले ही खचाखच भरी मेट्रो ट्रेनों की हालत और खराब हो जाएगी। दिल्ली के पास कोई पेरिस व सिंगापुर जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो है नहीं। चाहे अस्थायी रूप से ही सही, ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ कुछ क्षेत्रों में इसका भयंकर नकारात्मक साइड इफेक्ट होगा। कई ड्राइवरों के पास काम ही नहीं होगा। माल ढुलाई ठीक से ना होने के कारण महंगाई बढ़ेगी। निजी वाहनों में स्कूल जाने वाले बच्चे और सम विषम की समय सीमा के आर पार को काम करने वालों को बहुत परेशानी भुगतनी होगी। इस रेडीमेड समाधान को अपनाने का सबसे बुरा असर तो यह होगा कि इससे यह झूठा एहसास निर्मित होगा कि हमने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ किया है, जबकि वास्तविक समाधान की अनदेखी होगी। श्रोताओं, मैक्सिको और बोगोटो जैसे जिन देशों में यह योजना अजमाई गई है वहां यह नाकाम रही है। बीजिंग का उदाहरण प्रायः दिया जाता है, लेकिन वहां इस उपाय ने थोड़ा ही असर दिखाया है और यह एक खास आयोजन के लिए अस्थायी तौर पर उठाया गया कदम था। फिर चीन कोई लोकतंत्र तो है नहीं और यह योजना किसी एकाधिकारवादी देश के ही अनुकूल है। लोकतांत्रिक भारत में हमें लोगों की आजादी चुराने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। वे याद दिलाते हैं कि बीजिंग में उन लोगों पर टैंक दौड़ा दिए थे जिन्होंने उस तरह का आंदोलन चलाने की कोशिश की जिस तरह के आंदोलन से आपका जन्म हुआ। इसलिए दोनों शहरों की तुलना करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। श्रोताओं, समाधान मौजूद तो है। दीर्घकालीन समाधान तो यह है कि दिल्ली जैसे विश्व स्तरीय शहर और बनाए जाएं, ताकि सुपर मेट्रो शहरों पर पड़ रहे दबाव कम हो सके। सुपर मेट्रो को बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत है। अल्पावधि में कुछ दफ्तरों के लिए काम के अलग अलग घंटे तय कर सकते हैं। इससे सड़कों पर दबाव कम होगा और यातायात तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रैफिक जाम में फंसी कार तेजी से अपनी यात्रा पूरी करती कार की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। श्रोताओं, हम नई कारों की खरीद पर टैक्स बढ़ा सकते हैं या उनकी संख्या को सीमित कर सकते हैं।
श्रोताओं,

हमें राजधानी की हर कार पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी ट्रैकिंग टैग लगाने की जरूरत है, ताकि हम व्यस्तता वाले समय में अतिरिक्त शुल्क वसूली जैसे सड़क के अधिकतम उपयोग के उपायों को लागू कर सके। श्रोताओं, टैक्सी शेयरिंग ऐप को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अभी तो उबेर और ओला ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, क्योंकि सड़कों पर कारों की संख्या घटाने की दिशा में वे बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। श्रोताओं, आपको यह तो श्रेय है कि उसने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कुछ करने की कोशिश की है। श्रोताओं, दिल्ली साफ सुथरी हवा की हकदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक समझदारी भरे समाधान खोजने होंगे। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।

साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।

साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का, आप सभी का, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।

तहे दिल से धन्यवाद ग्लोरिया जी, और सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सभा शुरू करने से पहले मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। खुशियों की महक से है बनती जिंदगी, सपनों की कलम से है कि लिखनी जिंदगी। कहना है तुझसे बस इतना जिंदगी, हर मोड़ पर तू संभलना जिंदगी। जीत आसानी से मिले तो क्या जिंदगी, कभी कभी दुख भी सहना जिंदगी। पर आखिर में तो है हंसना जिंदगी, कांटों के बीच है रहना जिंदगी। पर गुलाबों की तरह है महकना जिंदगी, आखिर में है ये कहना जिंदगी कि हर वक्त यूं जियो जिंदगी कि अगले पल फिर मिले या ना मिले जिंदगी। यह कविता हमें मध्य प्रदेश के देवास जिले से दीपेश रॉबर्ट ने भेजी है। इस कविता के लिए दीपेश जी, आरवी की टीम आपका दिल से आभार प्रकट करती है। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो आइए साथियों, हम भी आलस न करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला कार्यक्रम है वह है कृषि जगत से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: बिहार में खेती का भविष्य आपको कैसा दिखता है मुखिया जी? क्या कृषि के माध्यम से बिहार में एक और हरित क्रांति की आशा की जा सकती है?
1: बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है
0: जी।
1: अगर कृषि के क्षेत्र में उचित ध्यान दिया जाएगा तो निश्चय ही क्रांति की आशा की जा सकती है। ये सब कुछ सरकार की कृषि नीति के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन बात यह है कि जब तक सरकार इस दिशा में सक्रिय नहीं होगी तब तक कुछ किया नहीं जा सकता।
0: एक बात ये बताइए कि किसान आप किसे कहेंगे, क्या उसका मापदंड आपकी नजर में क्या है?
1: देखिए भाई, किसान से मेरा मतलब खेती करके अपनी आजीविका चलाने वाला व्यक्ति है, न कि जमीन का मालिक जो कोई और काम करता हो। हाल ही में मुझे एक पब्लिक स्कूल में जाने का मौका मिला
0: जी।
1: वहां हमें एक भी छात्र नहीं मिला जो किसान का बेटा हो या फिर भविष्य में किसान बनना चाहता हो। ये स्थिति कृषि के वर्तमान और भविष्य दोनों को ही प्रतिबिंबित करता है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा माना जाए मुखिया जी कि बिहार की कृषि बदल रही है या फिर इसके प्रति लोगों का सोच जो है वो नकारात्मक होता जा रहा है, कैसे इसको आप देखते हैं?
1: देखिए, मैंने अपने जीवन में दो ही चीजों को ऐसा देखा है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो है बिहार की कृषि और यहाँ के किसान।
0: अच्छा अच्छा।
1: इनकी दशा आज भी वैसी है जैसे 50 साल पहले थी। सरकार ने कई योजनाएं चलाई और कई प्रोत्साहन दिए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। एक सच्चाई ये भी है कि किसान को छोड़कर कृषि से जुड़ा अन्य व्यक्ति, चाहे वो बीज बेचने वाला हो या उपज खरीदने वाला, सभी खुश हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा ही आकलन हमारा भी रहा है। तो मुखिया जी, बिहार की कृषि और किसान अगर दोनों का दशा देखते हैं तो आप किस तरह की आशाएं आपको नजर आती हैं?
1: बिहार की कृषि और किसान दोनों को ही इस सरकार से बहुत आशाएं हैं
0: जी,
1: और वे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृषि के क्षेत्र में कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। यहां के लगभग 90% किसान भूमिहीन और छोटे या फिर सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं
0: जी। जी,
1: वे जमीन बटाई पर लेकर खेती करते हैं और उनकी हालत सबसे खराब होती है
0: जी।
1: इसकी विडंबना देखिए कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान इनकी फसल को होता है और सरकारी मुआवजा
0: जी, जी,
1: जमीन के मालिक उठा लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं ये जानना चाहूंगा मुखिया जी कि अब क्या ऐसा माना जाए कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनका कृषि से मोह भंग हो रहा है, उनको कोई रुचि नहीं रह गई है, वे कृषि कार्य से जुड़ना नहीं चाहते हैं?
1: लगता ऐसा ही है कि आज के युवा का कृषि से मोह भंग हो गया है और इस क्षेत्र में बौद्धिक मानव शक्ति का तेजी से पलायन हो रहा है। आम धारणा बन गई है कि दिमाग वालों के लिए खेती नहीं है।
0: आखिर इसके पीछे कारण क्या है मुखिया जी?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, कृषि के अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ किसान को छोड़कर हर क्षेत्र के लोगों के लिए पक्की मासिक और वार्षिक आय तय है
0: जी। जी,
1: बिहार में सिंचाई की सुविधा और साधनों का अभाव है। अगर यहां सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त होती तथा इस साल हर साल आने वाले अकाल को टाला जा सकता। बिहार में किसानों के लिए एक भी संस्थान नहीं है। बिहार किसान आयोग सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन किसानों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सारी अव्यवस्था के बाद भी किसान कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ये बात भी कम नहीं है मुखिया जी।
1: देखिए, मैं मानता हूं कि सभी समस्याओं के बावजूद यहां के मेहनतकश किसान फसल उपजा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं
0: जी।
1: उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। कृषकों के लिए सरकार की ओर से हर साल पैकेज और अनुदान की घोषणा की जाती है, पर वितरण प्रणाली और पद्धति के खराब होने के कारण किसानों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। खाद्य सुरक्षा भी यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
0: इस बाबत नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई?
1: देखिए, नई सरकार से प्रदेश के भूमिहीन, छोटे, सीमांत और बड़े सभी किसानों की एक ऐसी कृषि नीति, कृषि मैप, कृषि योजना की उम्मीद है जिसमें कृषि एक मोहक कार्य बन जाए।
0: अच्छा अच्छा,
1: अगर सरकार कुछ बातों पर गंभीरता से ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर लोगों की आशाएं पूरी हो सकती हैं।
0: आप बोल रहे हैं कि सरकार इन बातों पर गंभीरता से ध्यान देगी, तो किन बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, इसमें पहला है भूमि सुधार।
0: जी,
1: बिहार की कृषि व्यवस्था संस्थागत सुधार के लिए कराह रही है।
0: जी जी,
1: ये क्षेत्र भी कृषक फ्रेंडली नीतियों की मांग कर रहा है। इसमें सबसे प्रमुख है भूमि सुधार। बटाईदारी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें फसल उगाने वाला व्यक्ति किसान माना जाए, न कि जमीन का मालिक किसान कहलाए।
0: जी,
1: एक बार किसान बटाईदारों को किसान के रूप में मान्यता देती है तो कृषि अपने आप फलीभूत होने लगेगी।
0: तो क्या यह माना जाए मुखिया जी कि सरकार के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है?
1: जी हाँ, सरकार की पहली चुनौती यही होगी कि बटाईदारी बिल पास करती है या नहीं। सरकार को एक ऐसी नीति भी बनानी चाहिए जिसमें किसानों में सुरक्षा का अनुभव हो, मसलन उनकी मासिक और वार्षिक आय पक्की की जाए। इससे किसानों में नए प्रयोग करके और उसमें रिस्क उठाने की शक्ति आ जाएगी।
0: अगर ऐसा हो जाए, मान लिया जाए कि अगर ऐसा होता है तो बिहार देश में एक और मामले में प्रथम हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही एक ऐसे संस्थान का विकास करना होगा जो किसानों को समर्पित हो, किसानों के लिए हो और किसानों के द्वारा संचालित हो।
0: जी जी,
1: इसमें ये होगा कि किसानों के हितों को सरकार के समक्ष बेहतर और प्रभावी तरीके से रखा जा सकता है।
0: एकदम सही कह रहे हैं मुखिया जी, अगर इसी सोच के तहत काम किया जाए तो निश्चय ही किसानों की दशा और दिशा बेहतर हो सकेगी। सरकार से किसानों की काफी उम्मीदें हैं, किसानों की बेहतरी के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, मेरा बिल्कुल साफ तौर पर यह मानना है कि बिना भूमि सुधार के बिना किसानों की दशा नहीं सुधर सकती।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि किसान तभी होता है जब उसके पास खेती योग्य भूमि हो।
0: जी।
1: और हमारे यहाँ के हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोगों के पास खेती योग्य भूमि ही नहीं है।
0: जी।
1: आज के दौर में वैसे भी खेती करना जोखिम का काम माना जाता है, लागत बढ़ जाती है, लेकिन उसके अनुपात में उनको फसलों का उचित दाम नहीं मिलता।
0: एक बात यह भी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक सही समय पर उचित रूप में नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए किस तरह के पहल करने की जरूरत है?
1: इस बात को मैं भी मानता हूं वीरेंद्र भाई कि सरकार की अधिकांश योजनाओं से लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लाभ पाने की पद्धति को और सरल बनाने की जरूरत है। सरकार को अपनी डिलीवरी मैकेनिज्म को संस्थागत और प्रक्रियागत दोनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में काम करना होगा।
0: जी,
1: डिलीवरी मैकेनिज्म को किसान के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना होगा, तभी जाकर इस समस्या का हल निकल सकता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, हमारे देश के किसान भाई में ऐसे भी साक्षरता का औसत देखें तो बहुत कम है। ऐसे में मैकेनिज्म में बदलाव करना ही होगा, तभी जाकर के हम लाभ की राशि उन तक सही समय में और उचित मात्रा में जो तय की जाती है उस मात्रा में उन तक पहुंचा सकेंगे। इस जानकारी के लिए मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर कृषि से संबंधित आपसे बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी,
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीलिंग एक्ट लागू हुए वर्षों बीत गए, लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। श्याम भाई,
2: हाँ।
0: हमारे यहाँ बड़ी विडम्बना की स्थिति है कि आज भी हमारे यहाँ भूमि सुधार कानून सही ढंग से, कारगर ढंग से लागू नहीं है, जिसके प्रभाव से हमारे यहाँ करीब करोड़ों लोग त्रस्त हैं, बेचैन हैं।
2: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बीरेंद्र भाई। हमारे यहाँ जो खेती करना चाहते हैं उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, और जिनके पास जमीन है वो खेती करना नहीं बल्कि करवाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अपने पूरे रकबे में वो खेती कर पाने की स्थिति में भी नहीं है, उनके बच्चे खेती में कोई रुचि भी नहीं लेते हैं, और जो मेहनत कश तबका है वो खेती योग्य जमीन के अभाव में बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में वे खेती करें तो कैसे?
0: यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सीलिंग एक्ट के अभाव में आज जो देश के हालात हैं उसको आप कैसे देखते हैं कपूर साहब?
1: देखिए वीरेंद्र जी, आजादी के 65 साल बाद भी देश में 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेती करना चाहते हैं, पर उनके पास अपना खेत नहीं है, यहाँ तक कि अपना घर भी नहीं है। वे जहाँ रहते हैं वहाँ से उजड़ना उनकी नियति बन गई है।
0: सबसे दुखद बात तो यह है श्याम जी कि ये अधिकांश विवाद और समस्याओं की जड़ में जमीन ही है।
1: जी,
0: कुछ समय पहले की ही घटना को ले लीजिए। बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने 40 महादलित परिवारों के घरों को उजाड़ दिया था।
1: जी,
0: और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, यहाँ तक कि कई दिन बीत जाने के बाद भी FIR जब तक नहीं हुआ।
2: इसी परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरी घटना का जिक्र करें तो कुछ दिन पहले पूर्णिया में ट्रक पर सवार होकर कुछ दबंग आए और महादलितों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया।
0: जी जी,
2: जिसमें 3 महादलित मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। इसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं न कहीं जमीन का मामला ही था।
1: जी, आप सही कह रहे हैं, दोनों घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। इसी नीति को बदलने के लिए राजगोपाल PV ने व्यवस्था को संवेदनशील बनने पर विवश किया। 50,000 सत्याग्रही सरकार के साथ करार के बाद आगरा से लौट गए।
0: तो क्या उनके सत्याग्रह का मकसद पूरा हो गया? भूमि की जो मांग उन्होंने उठाई थी उस पर कार्रवाई करने का भरोसा या दिलासा उन्हें मिल गया था श्याम जी?
2: इस मुद्दे पर उनका कहना था कि आंदोलन तथा सत्याग्रह सतत प्रक्रिया है।
0: अच्छा अच्छा,
2: सत्य मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। पर उस समय के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जो करार किया था उससे भूमि गारंटी कानून मिलने की उम्मीद थी। वहां लैंड रिफॉर्म के लिए राज्य सरकारों से कहने की बात भी की गई थी। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर ऐसा पूरक कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी जिससे भूमिहीनों और बेघरों को जमीन मिल सके।
0: नए भूमि सुधार कानून की सख्त जरूरत किन राज्यों में है? क्या कुछ राज्य पहले से बेहतर नहीं कर रहे हैं? हालांकि ये सीलिंग एक्ट कानून तो हमारे यहाँ कपूर साहब वर्षों से मौजूद है।
1: जी, देश के ज्यादातर इलाकों में अभी तक लैंड रिफॉर्म नहीं हो सका।
0: जी,
1: पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो लाखों एकड़ जमीन राज्य सरकारों के कब्जे में है, जिन्हें जरूरत के हिसाब से तो उद्योगों को दिया जा रहा है पर भूमिहीन बेघर लोगों को नहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की जरूरत है। पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इस दिशा में अच्छी पहल कर रखी है। जम्मू कश्मीर में तो भूमि सुधार किया जा चुका है।
0: राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के लिए जो मसौदा केंद्र सरकार को सौंपा गया था श्याम भाई
1: जी,
0: हाँ, अगर सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या कुछ किया जा सकता है?
2: सरकार ऐसा नहीं कर सकती। कानून की दिशा बदलने में ब्यूरोक्रेसी की दिलचस्पी रहती है। लोगों की कोशिश है कि सरकार में बैठे लोग पहले सच्चाई से तो अवगत हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अब लोग मकसद से नहीं भटकेंगे, और ये बात सही है कि गरीबों के लिए कानून बनना चाहिए। अगर कुछ कमियां रहीं तो दूर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो फिर नया आंदोलन शुरू किया जाए।
0: जब राजगोपाल टीवी से पूछा गया था कपूर साहब कि केंद्र सरकार आपके संगठन का इस्तेमाल नक्सल और माओवादी संगठनों से निपटने के लिए करना चाहती है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था?
1: उनका साफ कहना था कि हम लोग गांधीवादी विचार के लोग हैं
0: जी,
1: हिंसा के हमेशा विरुद्ध हैं, चाहे वो सरकार व उसकी एजेंसियों की ओर से की जा रही हिंसा हो या प्रतिक्रियावादी संगठनों की ओर से। लोगों को जमीन पर कब्जे न देना, उनका हक छीनकर सड़क पर मरने के लिए धकेल देना भी हिंसा है। इसके विरुद्ध हम सड़क पर उतरे हैं। पूरी दुनिया ने देखा सरकार संवेदनशील हुई है और रास्ता निकला। हम हर तरह के हिंसा के विरुद्ध हैं।
0: जमीन की लड़ाई में सारी दुनिया एक है, उस समय यह एक नारा प्रचलित हुआ था, तो इस नारे को आप कैसे देखते हैं श्याम जी?
2: देखिए, दुनिया का अर्थ व्यापक है।
0: अच्छा,
2: जय जगत यानी सारे विश्व की समस्याओं के विरुद्ध सत्याग्रह की भावना।
0: अच्छा,
2: जल जंगल और जमीन की समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, अफ्रीका के देशों, ब्राजील समेत सैकड़ों देश इस समस्या से प्रभावित हैं। इथोपिया जैसे भूखमरी के शिकार देश में भारत की कंपनियां सफेद मूसली उगाकर अरब देशों के बीच बेच रही हैं।
0: अच्छा,
2: वहां लोगों की जमीन मिले तो वे मूसली की जगह अनाज उगाएंगे।
0: इस प्रश्न पर राजगोपाल जी का क्या कहना था कि भूमिहीनों को मकान और खेती के लिए कितनी भूमि पर्याप्त मानते थे वे?
1: इस मसले पर उनका साफ कहना था कि हमने 10 डिसमिल जमीन मांगी है, एक एकड़ का दसवां हिस्सा
0: जी।
1: पहले हमारी राज्य सरकारें भूमिहीनों को 15 डिसमिल जमीन देती थी, इसे धीरे धीरे घटाकर 2-3 डिसमिल कर दिया गया। अब 3 डिसमिल जमीन में घर कहां बनाएंगे, बकरी कहां बांधेंगे, गाय बैल कहां रखेंगे? मकान के लिए 10 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए, खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन मिले जिसे भूमिहीन परिवारों का पोषण हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूं श्याम जी, कि हमारे देश में उतनी जमीन है क्या?
2: देखिए, सच तो ये है कि हमारे देश में खेती के लिए जमीन इतनी है कि अगर सरकार ठीक से बांटे तो भूमिहीनों को जमीन देने के बाद भी करोड़ों एकड़ जमीन बची रहेगी।
0: भूमि सुधार कानून में मुख्य रूप से किन चीजों की मांग की गई है कपूर साहब?
1: वीरेंद्र जी, सबसे पहली बात है कि भूमि का सही वितरण हो
0: जी,
1: भूमि का रिकॉर्ड सही और राष्ट्रीय स्तर पर हो। भूमि को सरकारों ने उत्पाद बना दिया है, किसान आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कुछ राज्यों में एक एक व्यक्ति के पास 100-100 एकड़ जमीन है और किसी के पास या लाखों लोगों के पास 1 डिसमिल भी नहीं है। खेती की जमीन अलग हो, जंगल के लिए जमीन अलग हो और उद्योगों के लिए अलग जमीन तय की जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पर सरकारी जमीन तो सार्वजनिक संपत्ति है,
2: हाँ।
0: उसे सरकार मुफ्त में भला क्यों देगी, ये भी एक प्रश्न उठता है।
2: देखिए, गरीबों को जमीन न देने के लिए कई तरह के दबाव हैं। मुफ्त में जमीन का सवाल भी उसी से जुड़ा है
0: जी।
2: पर देश आजाद होने के बाद गरीबों को क्या मिला? 22 करोड़ लोग भूमिहीन और आवासहीन हैं। वे रहने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। क्या देश में पूंछ हिलाकर जीने वालों का समाज तैयार किया जा रहा है? सरकार यही चाहती है पर लोग नहीं चाहते। पंजाब के किसानों ने सरकार से कहा था कि 1 एकड़ जमीन दो और अपने बीपीएल कार्ड, पेंशन कार्ड सब वापस ले लो।
0: बिल्कुल, उन लोगों का जो जवाब था बिल्कुल जायज है। एक चीज ये बताइए कपूर साहब कि जब उनसे पूछा गया कि आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं, जब सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था जमीन के लिए, तो सरकार तो ग्वालियर में ही समझौते को तैयार थी, तो फिर उन्होंने क्या कहा?
1: उनका कहना था कि गांधी जी ने लोक सेवक बनने का संदेश दिया था
0: जी,
1: जिसे राजनेताओं और नौकरशाहों ने भुला दिया है। उनका साफ कहना था कि उनको लड़ने का शौक नहीं है, जवाबदेही तय करने के लिए सड़क पर उतरना मजबूरी है। सरकार की नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 142 जिलों में नक्सल की समस्या है, गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है, देश इमरजेंसी वार्ड में पड़ा है और आप सड़क पर उतरने को जुर्म बता रहे हैं।
0: बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, जमीन से ही जुड़ा एक मसला है भूमि अधिग्रहण को लेकर के, जिसके लिए विधेयक का मसौदा भी स्वीकृत किया जा चुका है। श्याम भाई, यह संसद में पारित भी हो गया है, तो उसके परिणाम को भी अगर हम लोग देखते हैं तो खास करके आप बताइए कि उसके परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है।
2: अधिकार प्राप्त मंत्रियों के एक समूह ने जमीन अधिग्रहण के लिए जिस विधेयक का मसौदा स्वीकृत किया है
0: जी,
2: जो संसद में पास भी हो गया है, वो कहीं से भी जायज नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
2: उससे भूमि अधिग्रहण में कुछ आसानी हो जाएगी। सिंगूर, नंदीग्राम और अन्य कई जगहों पर उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो उग्र आंदोलन हुए, उनका एक नतीजा ये निकला कि अधिग्रहण लगभग ठहर गया था, जो अब खुलकर सामने आएगा।
0: जो राज्य औद्योगिकरण के दौर से गुजर रहे हैं, वहां पर भूमि अधिग्रहण की स्थिति कैसी है कपूर साहब?
1: जिन राज्यों में पहले से काफी औद्योगिकरण हो चुका है
0: जी,
1: वहां तो फिर भी स्थिति ठीक है, पर जो राज्य पहले से औद्योगिक रूप से पिछड़े थे और राज्य सरकारें उद्योग लगाना चाहती है, वहां स्थिति बहुत खराब है। मसलन पश्चिम बंगाल में सिंगूर, नंदीग्राम आंदोलनों के बाद कोई बड़ा निवेश नहीं आया है।
0: ऐसा क्यों श्याम जी, जानकारों का इस मुद्दे पर क्या विचार है, वे क्या कहते हैं?
2: देखिए, देशी विदेशी निवेशक और अर्थशास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि देश में नए निवेश के कम होने की एक वजह ये भी है कि उद्योगों को जमीन मिलने में दिक्कत हो रही है।
0: अच्छा,
2: तमाम राज्यों ने अपने अपने स्तर से जमीन अधिग्रहण को लेकर कानून बनाए हैं, पर इस मामले में उलझन अभी भी वैसी ही बनी हुई है।
0: क्या इससे पहले भी जमीन अधिग्रहण के लिए संसद में विधेयक लाया गया था कपूर साहब?
1: ये प्रस्तावित विधेयक उस विधेयक का संशोधित रूप है जो 3 साल पहले संसद में पेश हुआ था और जिसे संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। उस समय संसदीय समिति की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रस्तावित विधेयक से संतुष्ट थीं, क्योंकि उनकी समिति की सिफारिशों को बहुत हद तक मान लिया गया था।
0: एक बात यह है श्याम भाई कि ये खेती योग्य भूमि जो है वो बिल्कुल सिमटती जा रही है। देश आने वाले खाद्यान्न संकट को नजरअंदाज कर रहा है बिल्कुल। अभी भूमि का समान वितरण नहीं हुआ और ऊपर से पूंजीपतियों के लिए खेती योग्य जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए नित्य नए कानून बनाए जा रहे हैं। किसानों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। बहुत सारे कानून अभी भी धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, वो लगातार ऐसा देखा जा रहा है। आप दोनों के साथ इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में अभी हम लोग चलते हैं। इस जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है हेनरी बेसेमेर और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे उनका नाम है हेनरी बेसिमेर। साथियों कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्व की जहां पर हवाई अड्डा, बहुमंजिला इमारतें, मोटर कारें, रेल, जहाज, पुल या फुटबॉल स्टेडियम जैसा कुछ भी नहीं है, या फिर कम से कम वो सब कुछ वैसा नहीं है जो हम वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं। हो सकता है कि ये कल्पना कुछ लोगों को स्वर्गिक आभास दे, लेकिन इसका अर्थ ये है कि ये संसार शल्य क्रिया के उपकरण और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों के बगैर ही अपना अस्तित्व रखता। इसके अलावा साथियों इस फहरिस्त में शामिल न होने वाले कुछ तत्व होते कंप्यूटर्स, रसोई के उपकरण, रेफ्रिजरेटर, कटलरी, कैंची, मर्तबान, बगीचे के औजार, स्प्रिंग, कलाई घड़िया और हृदय में लगने वाला पेसमेकर। साथियों ये तो वाकई बड़ी सामान्य सी लगने वाली कुछ चीजें हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है स्टील या इस्पात। साथियों भले ही ये स्टील या इस्पात कंक्रीट, कांच, ईंट या पेंट के आवरण में हो, लेकिन यही स्टील या इस्पात हमारे आधारभूत जीवन की रीढ़ है और हमारा जीवन काफी हद तक इसके द्वारा नियंत्रित होता है। आज जब हम फोर्थ रेलवे ब्रिज, विश्व के प्रथम स्टील ब्रिज या फिर सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट से मिलने वाली सुविधाओं की कल्पना करते हैं, तब शायद हमें ये याद नहीं रहता कि इसके महान आविष्कारक और व्यवसायी यदि क्रीमियन युद्ध के दौरान सिर्फ अपने बीमारी के बिस्तर तक सीमित रह जाते तो आज हम उसी ढलवा लोहे के पुराने विश्व में जीते और इन चौराहों को, लंबी दूरी के रास्तों को बहुत धीमी गति में पार किया करते। तो साथियों स्टील के आविष्कारक हेनरी बेसिमेर, जी हाँ उनके बारे में आज हम जानेंगे, उनके जीवन के बारे में और खासकर उस परिस्थिति के बारे में जब स्टील के आविष्कार का विचार उनके दिमाग में आया था। साथियों वो समय हम सभी को याद है जब जीवन पुराने ढर्रे पर चला करता था, कुछ चीजें जिनकी सीमाएं थी और उन सीमाओं के पार जाना हम सभी के लिए, शायद हमारी सोच के लिए भी नामुमकिन था। लेकिन सिर्फ 42 साल की उम्र में सैकड़ों पेटेंट्स के साथ अंग्रेज हेनरी बेसिमेर एक सफल अनुसंधानकर्ता थे। कितने ही सारी खोज और अनुसंधानों के साथ उन्होंने अपने जीवन को एक नई सोच और जीवन को एक नई दिशा पाने के लिए एक नई सोच को विकसित करने का शायद उनमें एक ऐसा मादा रहा जिसके चलते एक सामान्य घर या फिर प्रयोगशाला नहीं, उनके लिए अनुसंधान की एक सबसे सही जगह थी युद्ध का मैदान। जी हाँ साथियों, एक ऐसा स्थान जहां पर जान पर बनाई हो, एक ऐसा स्थान जहां पर जिम्मेदारियां ही इतनी हो कि मनुष्य सामान्य जीवन ही जीने के बारे में कल्पना न कर सके, ऐसी स्थिति में स्वयं को, अपने जीवन को सुधारने और नए नए आविष्कारों को करने के लिए सिर्फ सोचने ही नहीं देना, उस विषय में काम भी करना और आगे चलकर उस अनुसंधान का सिर्फ पेटेंट लेकर नहीं बैठना, वरन उसे सही सिद्ध करने के लिए स्वयं उसके निर्माण और व्यवसाय में उतरना और एक सफल व्यक्तित्व होकर दिखाना, ये सभी गुण हेनरी बेसिमेर में उपलब्ध थे। साथियों ये वही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे जिन्होंने पेंसिल में लेड के इस्तेमाल का आविष्कार किया था। हेनरी बेसिमेर ने ही नक्काशी के काम की मोहरों का भी इजाद किया था। लेकिन साथियों जैसा कि आपको अभी बताया, जब हेनरी बेसिमेर अपनी बीमारी के दिनों में युद्ध के मैदान में दुश्मनों से घिरे हुए बिस्तर पर बैठे हुए अपना समय गुजार रहे थे, उस समय भी अपने स्वास्थ्य के स्थान पर इस अनुसंधानकर्ता का दिमाग चल रहा था बंदूकों के निर्माण में सुधार करने को लेकर। दरअसल साथियों ब्रिटेन की ढलवा लोहे की बंदूकें, उनकी गोलियां बहुत धीमी गति से छूटती थी और इसके पीछे प्रमुख कारण था इसमें मजबूती का अभाव। ये फेंकने के जरूरी दबाव के आगे टिकने में असमर्थ थी।
साथियों, लोहे के साथ एक और दूसरी परेशानी थी जिसे हेनरी बेसेमर बहुत अच्छे से जानते थे, और ये परेशानी थी आवश्यकता से अधिक मात्रा में कार्बन की, जो लोहे को इतना भंगुर बना देता था कि वो सही तरीके से बंदूकों को बनाने में काम नहीं कर सके। ये सुनिश्चित था कि इसका एकमात्र विकल्प था स्टील। साथियों, इसकी मजबूती और लोच बेजोड़ थी और इसका जीवन 2000 वर्षों तक का, लेकिन परेशानी थी इसकी निर्माण लागत, निर्माण में लगने वाला समय और बार बार बदली जाने वाली किस्म। बेसेमर के आकलन के अनुसार इसका एकमात्र विकल्प था अधिक परिमाण में उत्पादन, जो कि सही गुणवत्ता की गारंटी देने में सक्षम था, और यही ब्रिटेन की हथियार संबंधी समस्या का समाधान बन सकता था। इसी सोच को सामने लाकर हेनरी बेसेमर ने अपने बीमारी के बिस्तर को छोड़ा। अपनी वर्कशॉप में जाकर आपने निरंतर प्रयोग करने प्रारंभ किए और इसके आगे जो बना इतिहास बन गया। साथियों, एक ऐसा इतिहास जिसके कुछ एक शब्दों के अलावा सब कुछ हम अपनी स्कूल की अध्ययन कक्षाओं में भूल आते हैं। या फिर उदाहरण ले तो घूमने वाली घिर्री, या फिर स्टीफनसन का रॉकेट जो दूर से आती घंटी की आवाज के समान है। हेनरी बेसेमर ने औद्योगिक क्रांति के शब्दकोश में जो दो महत्वपूर्ण शब्द जोड़े वे थे बेसेमर परिवर्तक। साथियों, बेसेमर ने खोज की थी कि यदि आप एक नाशपाती के आकार की कड़ाही में या फिर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के एक ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किए गए ढलवा लौह अयस्क में ठंडी हवा का प्रवेश कराएंगे, तब ये अधिकांश अशुद्धियों को दूर करेगा। कार्बन के स्तर को स्वीकार्य स्तर तक कम करते हुए इसकी कठोरता में वृद्धि होती है, और इसी स्थिति में आविष्कार होता है विश्व की सबसे मजबूत धातु का, जिसे हम कहते हैं आधुनिक स्टील। साथियों, इसमें अपेक्षित लोच और तन्यता के लिए अनेक अन्य तत्वों को मिलाया जा सकता है। अपने परिवर्तक ब्लास्ट फर्नेस की मदद से बेसेमर केवल एक घंटे में विश्वसनीय और उच्च स्तरीय गुणवत्ता के स्टील की 30 टन मात्रा का उत्पादन कर सकते थे। सन 1859 में उन्होंने शेफील्ड में एक फैक्ट्री खोली और बंदूक और स्टील की रेल का उत्पादन प्रारंभ किया। साथियों, केवल अनुसंधान करना ही नहीं, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी कहा, अपनी सोच को केवल एक आकार देना ही नहीं बल्कि व्यावसायिक रूप से उसे सिद्ध करना, ये चीज हेनरी बेसेमर ने कर दिखाई, और इसी के चलते वे विश्व के प्रथम स्टील लखपति बने। साथियों, उस समय ब्रिटिश इतिहास के रूढ़िवादी मान्यताओं वाले स्थानीय व्यापारी बेसेमर के आधुनिक स्टील को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डनफर्म लाइन स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब लड़का जो अमेरिका में जा बसा था और पेंसिल्वेनिया में अपना नाम जमाने का लक्ष्य रखता था, उसी दौरान वो शेफील्ड में आया और उसने यहां आकर जब हेनरी बेसेमर को देखा, उनके काम को देखा और विश्व के इस प्रथम स्टील लखपति की क्रियाविधि को देखा, तब उसने पाया कि ये वाकई ऐसी सामग्री थी जो दुनिया के नक्शे को बदल पाने में सक्षम थी। साथियों, उस लड़के का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। उसने वापस पीट्सबर्ग आकर कार्नेगी स्टील कंपनी की नींव रखी, जिसने आगे चलकर अमेरिका स्टील कंपनी के रूप में अपना आकार लिया और बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हुए रेल की पटरियां, इमारतें, पुल और जहाज उत्पादित किए, जिसके चलते अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान बना पाया और स्वयं कार्नेगी बना विश्व का सबसे समृद्ध व्यक्ति।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हेनरी बेसेमर, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आप सभी ने हमारे आर्य कलाकार की बातें सुनी और मैं समझता हूँ कि आप सभी को इनकी बातें अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है दर्द का एहसास। नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं माइकल हॉजेस। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: दीजिए प्रस्तुत है नाटक दर्द का एहसास। लेखक और निर्देशक हैं माइकल हॉजेस।
1: कहाँ चल दिए चौहान साहब?
2: क्या अमिता, तुम भी जब भी कहीं जाता हूँ तुम टोक जरूर देती हो।
1: ये लो, आप भी पढ़े लिखे होकर इन दकियानों से बातों को मानते हैं?
2: क्यों, पढ़े लिखों की अपनी समझ नहीं होती क्या? ये तो अपनी अपनी समझ की बात है भाई।
1: तभी तो कह रही हूँ कि पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों जैसे ही समझ रखने से क्या फायदा, सारी पढ़ाई लिखाई गई ना पानी में।
2: पानी में तो सारी जिंदगी ही चली गई है तुमसे शादी करके।
1: क्या क्या कहा आपने?
2: अब मैंने क्या कहा, मैंने तो यही कहा कि तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी पानी में जाने से बच गई और क्या।
1: ये बात सही कही आपने, वरना तो गए थे आप आज।
2: तुम भी क्या बात करती हो अमिता, अभी कौन सा काम का बचा हूँ मैं?
1: कुछ तो काम के हैं अभी आप।
2: जैसे?
1: जैसे नौकरी पर जाना, नौकरी करना और वापस आना, बाजार हाट कर लेना
2: और
1: बस यूं बैठकर बातें कर लेना और क्या।
2: तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी सिर्फ बैठकर औरतों की तरह बातें बना लेता हूँ?
1: और आपको क्या लगता है, औरतें सिर्फ बातें ही बनाती हैं और कोई काम नहीं करती?
2: बिल्कुल,
1: मतलब बातें बनाने के सिवा उन्हें और कोई काम नहीं रहता।
2: मुझे बिल्कुल यही लगता है।
1: और घर का ये जो सारा काम हो जाता है, ये क्या अपने आप हो जाता है या फिर कोई भली आत्मा आकर कर जाती है?
2: और हमारे ऑफिस का काम, हाट बाजार का काम भी तो अपने आप ही हो जाता है? या फिर तुम जिस भली आत्मा की बात कर रही हो उस भली आत्मा के रिश्तेदार ही आकर कर देते हैं?
1: वाह क्या कहने आपके।
2: अच्छा मुझे एक बात तो बताओ तुम, मैं अच्छा भला किसी से मिलने के लिए निकल रहा था तो तुम्हें टोकने की क्या जरूरत थी?
1: अरे अरे आप तो नाराज होने लगे, आखिर आप ये टोक वगैरह मानते ही क्यों हैं?
2: क्योंकि मैं टोक को आजमा चुका हूँ।
1: कमाल है चौहान साहब, दकियानुसी और अंधविश्वासी तो हम औरतें होती हैं।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन लगता है आपने उन औरतों को भी मात कर दी है।
2: तुम्हें जो समझना है तुम समझती रहो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि मुझ जाते इंसान को तुमने क्यों रोका है? अभी तक तो मैं अपने मिलने वाले के यहाँ पहुँच भी गया होता।

0: अब इस उम्र में क्या रखूंगा।
1: अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्या आप मजाक भी नहीं समझते और मजाक को गंभीरता से ले रहे हैं।
0: गंभीरता से कही गई बात को गंभीरता से ही लेगा ना कोई भी। वैसे भी गंभीर बात पर मजाक करना भी नहीं चाहिए।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि इससे गंभीरता और मजाक का अंतर खत्म हो जाता है।
1: कैसे?
0: क्योंकि गंभीरता पर मजाक से गंभीरता खत्म हो जाती है और मजाक पर गंभीरता से मजाक खत्म हो जाता है।
1: आपके साथ यही प्रॉब्लम है। आपका कब कैसा मूड होगा किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता।
0: अरे जब खुद मुझे ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा।
1: हाँ ये तो है।
0: तुम्हारी इन बेकार की बातों ने मेरा कितना समय खराब कर दिया है। अब तो मुझे तुलसी नगर जाने के लिए बस भी नहीं मिलेगी।
1: तो दूसरी किसी बस से चले जाना।
0: दूसरी बस अब आधे घंटे बाद ही मिलेगी।
1: तो ऑटो करके चले जाओ।
0: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि जहाँ मैं 15 रुपए में पहुँच सकता हूँ वहाँ मैं 50-60 रुपए खर्च करके पहुँचूँ।
1: काम जरूरी था।
0: तुम्हें पता है कि बिना मतलब और बिना काम के मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करता।
1: बाप रे कितने महान कंजूस हैं आप।
0: कंजूसों के पास ही पैसा होता है और आजकल आदमी की नहीं पैसे की पूछ होती है, पैसे की।
1: अच्छा अब समझ में आया कि आप पैसे के पीछे इतना क्यों भागते हैं।
0: तो अब यह भी बताती चलो कि क्यों भागता हूँ।
1: बता दूँ?
0: हाँ हाँ बता दो।
1: तो सुनो चौहान साहब, आप पैसे के पीछे इसलिए भागते हैं कि पैसा आपके पास भी रहे और पैसे की आड़ में लोग आपको भी पूछ ले, नहीं?
0: चलो ऐसा ही समझ लो, तो इसमें क्या बुराई है?
1: बुराई यही है कि आप पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि पैसा उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है।
0: अच्छा तो क्या तुम बता सकती हो कि हमारे लिए कितना पैसा जरूरी है, कितने सौ कितने हजार?
1: ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि कितने पैसे, कितने सौ और कितने हजार काफी है। घर की जरूरतें कभी एक सी होती नहीं है, जरूरतें तो घटती बढ़ती रहती हैं।
0: यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि घर की जरूरतें घटती बढ़ती रहती हैं। जरूरत घटे तो ठीक काम चल जाता है, लेकिन अगर बढ़े तो बजट बिगड़ जाता है, और अगर मेहमान आ जाए या दुख बीमारी आ जाए तो बजट तो बिगड़ता ही है। तो किसके सामने जाकर हाथ फैलाओगी तब तुम?
1: देखो मेरा तो अब भी यही मानना है कि पैसा उतना ही होना चाहिए या हमें उतने की ही आशा करनी चाहिए जितने में जीवन आराम से गुजर जाए।
0: और जो मेहमान या दुख बीमारी आ जाए तो?
1: अरे क्या आपको पता नहीं कि ये दोनों ही बार बार नहीं कभी कभी ही आते हैं।
0: चलो मान लिया कि कभी कभी ही आते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए पैसा तो चाहिए ही ना।
1: बिल्कुल चाहिए, और यह पैसा हम आपकी और सुशांत की महीने की तनख्वाह में से बचत तो करते ही हैं। मकान तो हमने पहले से ही बना लिया है, फिर अब क्या है?
0: अब बेटे का ब्याह करना है, बेटी अभी पढ़ रही है, साल भर बाद उसकी भी शादी करनी है, कैसे होगा सब ये?
1: अगर आप बेकार की हाय तौबा नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा से सब हो जाएगा।
0: चलो ये भी मान लिया कि बच्चों की शादी भी हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं?
1: जरूर होना चाहिए, और हमारे पास सुशांत और करुणा है, फिर भी आपको अपना बुढ़ापा बिताने का डर सता रहा है।
0: ये दोनों तो हैं मान लिया, करुणा तो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, अब बचा सुशांत, तो कल किसने देखा है कि वह हमारा भी रहता है या नहीं, या पूरी तरह से अपनी बीवी का हो जाता?
1: विश्वास भी तो कोई चीज होती है या नहीं? फिर हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में भी तो जमा करते हैं, दोनों की शादी के बाद हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ तो बच जाएगा, और नहीं तो करुणा की शादी के बाद हम उसके कमरे वाले हिस्से को किराए पर दे देंगे।
0: बात तो तुम्हारी ठीक है।
1: बस तो अब आप सुशांत के लिए लड़की देखना शुरू कर दो।
0: तुम भी क्या बात करती हो, जब तुम कहोगी तभी मैं सुशांत के लिए लड़की देखूंगा। मैं अभी और कहाँ जा रहा था?
1: कहाँ?
0: तुलसी नगर, सुशांत के लिए लड़की देखने और कहाँ?
1: तो आपने तो मुझे बताया ही नहीं।
0: अरे तो सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है कि नहीं?
1: ये सरप्राइज के चोचले आप अपने पास ही रखो।
0: तुम भी क्या औरत हो, अपना तो अपना, दूसरों का जीवन भी नीरस बना रखा।
1: अपना जीवन रसदार बाद में बनाते रहना, पहले ये बताओ कि लड़की किसकी कैसी और कहाँ की है।
0: तुलसी नगर में ज्ञान सिंह रहता है ना, वही बता रहा है कोई लड़की।
1: लड़की किसकी है?
0: कोई ठाकुर निरंजन सिंह करके है, लड़की पढ़ी लिखी सुशील और बैंक में काम करती है।
1: बैंक में?
0: हाँ बैंक में। मुझे तो अभी से दोनों की जोड़ी अच्छी समझ में आ रही है, और फिर लड़की बैंक में काम करती है तो दहेज भी अच्छा ही मिलेगा।
1: उनके घर के हालत कैसे हैं?
0: वही जरा कुछ गड़बड़ लगते हैं। ज्ञान बता रहा था कि लड़की के बाप के सिर पर 2 बड़ी बेटियों की शादी का कर्ज था, जो बैंक में नौकरी करने के बाद यही लड़की चुका रही है। अभी साल भर पहले ही उनका सारा कर्जा उस लड़की ने ही चुकाया।
1: फिर तो ऐसी समझदार और मेहनती लड़की को हमें

0: घर की बहू जरूर बनाना चाहिए।
1: तुम्हें समझदारी की पड़ी है और मुझे दहेज में नकदी की पड़ी है।
0: आप ये दहेज वगैरह छोड़ो और कल ही लड़की के घर चलने की तैयारी करो।
1: ठीक है, सुशांत को लेकर कल ही चलता है।

0: कुछ भी कहो, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई।
1: और मुझे पूरा भरोसा है कि निरंजन सिंह अपनी बेटी की शादी में भरपूर दहेज के साथ भरपूर नकदी भी देगा।
0: आप भी कैसी बातें करते हैं, आपने सुना नहीं क्या, उनके सिर्फ 3 ही बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं। दोनों बड़ी बेटियों की शादी का बोझ तो सबसे छोटी इस स्नेहा ने ही उतारा है, और स्नेहा की शादी का कर्ज कौन उतारेगा, ये सोचा है आपने?
1: अब अगर हमारी होने वाली बहू का कोई भाई नहीं है और निरंजन का कोई बेटा नहीं है तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है अमिता?
0: सचमुच आपके पैसे और दहेज की भूख न जाने क्या रंग दिखाई।
1: और स्नेहा की शादी का कर्ज ये लोग कैसे उतारेंगे या दहेज और नकदी का इंतजाम कैसे करेंगे, ये सोचना हमारा नहीं निरंजन सिंह का काम है भाई।
0: देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको उन लोगों की सारी हालत का पता नहीं है, आपने खुद अपनी आंखों से उनकी हालत देखी है और अपने कानों से सुनी भी है, फिर भी आप दहेज के कांटों से अपना दामन छुड़ा नहीं पा रहे।
1: तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, मैं तो दहेज और नकदी लिए बिना पीछे नहीं हटूंगा।
0: आप क्यों किसी परेशान व्यक्ति को और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं?
1: मैं कोई किसी तरह की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पास एक अच्छी और बेहतर चीज है और मैं उस चीज की कीमत मांग रहा हूँ। जो उस बेहतर चीज की कीमत दे दे वह चीज उसकी।
0: मतलब आप अपने बेटे को बेच रहे हैं, उसकी कीमत लगा रहे हैं?
1: तुम ऐसा सोच सकती हो अमिता?
0: मैं कहती हूँ देखो मान जाओ। अच्छा ये बताओ, अगर निरंजन सिंह भाई साहब की जगह आप होते तो?
1: होता तब ना, अभी हूँ तो नहीं, और मैं निरंजन की जगह पर होता तो तब की तब देखी जाती।
0: मैं समझ गई, आपको तो भगवान भी धरती पर उतरकर नहीं समझा सकता, लेकिन ध्यान रखना इस दुनिया में जैसे को तैसा कहावत भी पूरी होती है।
1: कहा ना, तब की तब देखी जाएगी।
2: साल भर बाद चौहान के ही घर में।
0: अभी साल भर पहले ही हम सुशांत की शादी करके निपटे हैं, और अब ये करुणा की शादी सिर पर आ गई।
1: अरे सीधी सादी शादी सर पर भी होती तो हम निपट लेते, लेकिन उस लड़के के माँ बाप को देखो, दोनों ही 20 लाख कैश मांग रहे हैं दहेज के साथ साथ।
0: सुशांत की शादी में आपको अपने दहेज और नकदी की जिद याद है, और आप अपनी जिद पूरी करके ही माने थे। बेचारे निरंजन भाई ने कैसे कैसे दहेज करके नकदी जुटाई थी।
1: अरे वो जुटा सकते थे तो उन्होंने जुटा लिए थे, मैं तो बिक भी जाऊं तो 20 लाख नकद कहां से लाऊंगा। उधर सुशांत ने भी हाथ खड़े कर दिए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं।
0: अब अपने पर बीती तो पता चला होगा कि दूसरों के दर्द का एहसास क्या होता है।
1: अब तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही ताने दे रही हो। अरे तुम मेरी बीवी हो या दुश्मन?
0: जरा मुझे ये तो बताओ कि क्या आपने मेरा साथ दिया था जब मैं आपको दहेज नकदी न लेने के लिए कह रही थी?
1: ये कोई समय है पुरानी बातों के पत्थर मारने का? तुम तो परायों की तरह बात कर रही हो।
0: जब आदमी अपने कर्मों से बनाए गए संकट की स्थिति में होता है ना, तभी उस पर अतीत की घटनाओं के पत्थर मारे जाते।
1: मुझे तो लगता है अब ये शादी कैंसिल ही करना पड़ेगी।
0: मगर करुणा तो जिद पर अड़ी है कि अब वो शादी उसी सुमित से करेगी, वरना नहीं।
1: न जाने बेटी का बाप बनना इतना महंगा क्यों पड़ता है।
0: इसीलिए ताकि जैसे को तैसा कहावत पूरी हो सके।
1: तुम कुछ भी कहो अमिता, कल सुमित के माँ बाप डेट फिक्स करने आ रहे हैं, मैं तो साफ इनकार कर दूंगा कि ये सब मेरे बस का नहीं है।
0: आपकी मर्जी।

0: आइए पवार जी, आइए आइए आइए। सरिता जी
1: नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए सरिता जी।
2: भाई बैठ तो जाएंगे, ये लो बैठ गए, मगर आप लोग चाय पानी के चक्कर में मत पड़ना।
3: जी हाँ, क्योंकि हम लोग फटाफट काम की बातें करेंगे और फटाफट निकलेंगे।
0: पवार साहब, आपके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
2: जी कहिए।
0: मैं ये रिश्ता करने के काबिल नहीं हूँ। मैं आपकी मांग नकद 20 लाख देने की स्थिति में नहीं हूँ।
3: और आप क्या कहती हैं अमिता जी?
1: मैं क्या कहूँ सरिता जी, बस यूँ समझ लीजिए कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
3: क्यों?
1: सबको अपने अपने किए का फल यही मिल जाता है।
2: आप ठीक कहती हैं अमिता जी, लेकिन इसका क्या करें, जो हमने सुना है कि करुणा बेटी तो सुमित से ही शादी करने की मांग पर अड़ी है, वरना वो कोई गलत कदम भी उठा सकती है, उसका क्या करेंगे आप?
0: अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी इज्जत आपके हाथ है पवार जी, आप चाहे तो मान दीजिए और आप चाहे तो ठोकर दीजिए।
3: इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, ये तो आपको स्नेहा बेटी के पापा के दर्द का एहसास कराना चाहते थे।
0: क्या बात कर रहे हैं आप?
2: जी हाँ चौहान साहब, जब मुझे पता चला था कि आपने स्नेहा बेटी के पापा से दहेज और नकदी लेकर उन्हें खूब परेशान किया था, तो हमने सोचा कि थोड़ा परेशान आपको भी किया जाए
3: और बेटी के मजबूर बाप के दर्द का एहसास आपको भी हो।
2: बस इसीलिए हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया और वो प्लान से आप गुजर रहे हैं।
1: क्या इसका मतलब आप लोग अभी भी बिना किसी दहेज और नकदी के करुणा और सुमित के शादी के लिए राजी हैं?
3: बिल्कुल राजी हैं। हमने चौहान भाई साहब को एक बेटी के बाप होने का एहसास करा दिया है, यही बहुत है।
0: मैं किस मुंह से आप लोगों का धन्यवाद करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे भी अब दहेज और नकदी लेने का अपराध बोध हो गया है।
1: मगर ये सारी बातें आपको बताई किसने और आपने ये प्लान बनाया क्यों?
3: ये तो आपको करुणा से ही पूछना चाहिए था।
0: क्यों, करुणा से ही क्यों?
3: क्योंकि करुणा और सुमित दोनों कॉलेज में एक ही साथ पढ़े हैं और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए सुमित के कहने पर ही तो हम पहली बार करुणा का हाथ मांगने आए थे।
2: दरअसल करुणा को पवार साहब द्वारा स्नेहा के पापा से लिया गया दहेज और नकदी लेना पसंद नहीं था, इसलिए आपको स्नेहा के पापा की तकलीफ और दर्द का एहसास कराने के लिए उसने सुमित से हमसे ये नाटक करने के लिए कहा था।
3: हाँ।
2: और बस नाटक पूरा हो गया।
0: लेकिन पवार साहब, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
2: वो कैसे?
0: स्नेहा के पापा से ली गई सारी नकदी मैं कल ही बैंक से निकालकर उन्हें लौटा दूंगा, ताकि वे अपना कर्जा चुका सकें और शांति का जीवन जिए।
1: ये बात की ना आपने, चलो फिर अब जल्दी से करुणा और सुमित जी की शादी के लिए डेट फिक्स करो।
0: तो फिर 20 मार्च कैसी रहेगी?
2: 20 मार्च?
1: हाँ, उस दिन करुणा का जन्मदिन भी है।
3: यह तो और भी बढ़िया बात है, तो 20 मार्च पक्का।
2: लाइए अमिता जी, अब आप चाय नाश्ता पानी और मिठाई लाइए और मुंह मीठा कराइए।
1: हाँ, अभी लाइए।

अभी आपने सुना नाटक दर्द का एहसास। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे श्री दिनेश सोलंकी, अमृता मोतीवाले, डॉक्टर भावना प्रधान और श्री माइकल हॉजिस।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था दर्द का एहसास और इसके लेखक एवं निर्देशक थे माइकल हॉजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को क्लौरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस 8 से 9 की सभा में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत।

तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ हैं श्री छोटे लाल भारती जी। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: आज हमारे बीच श्री छोटेलाल भारती आए हैं और इनसे बातचीत करते हुए हमें इनके जीवन की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं से हम पूछते हैं इनकी अपनी इस जीवन यात्रा के बारे में। भारती जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप सबसे पहले अपने बारे में अपना परिचय खुद ही दें हमारे सुनने वालों को।
1: मैं मूल रूप से देवास जिले की कन्नौज तहसील का एक गांव है छोटा सा भंडारिया। मैं मूल रूप से वहां का निवासी हूं और अल्प आयु में ही पिता का देहांत होने के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा कन्नौज में हुई, जहां पर मेरे मामा जी और अनुसूचित जाति का हॉस्टल है, वहां पर रहकर मेरी शिक्षा दीक्षा हॉस्टल से हुई। मैं अनुसूचित जाति में बलाई जाति का हूं।
0: हाँ।
1: जो कि मूलतः मालवा, उज्जैन, साजापुर,
0: हाँ।
1: इंदौर,
0: हाँ।
1: जिले में अधिक की संख्या में पाई जाती
0: है। हाँ। और इस जाति का काम क्या होता है?
1: इस जाति का मूल रूप से काम, मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं इसके इतिहास के बारे में।
0: हाँ।
1: फिर भी इतना जरूर जानता हूं कि इस जाति का काम खेती करना और मजदूरी करना है।
0: तो कन्नौज के छात्रावास में रहते हुए आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी?
1: जी।
0: कहाँ तक पढ़े आप कन्नौज में?
1: मैं कन्नौज में 10वीं तक पढ़ा। इसके बाद में 10वीं फेल होने के बाद में, हॉस्टल से फेल होने के बाद निकाल दिया जाता है, और फिर मैंने प्राइवेट परीक्षा दी दूसरे साल, वहां से पास किया। पास करने के बाद मैं सतवास चला आया, जहां से मैंने 11वीं पास की बायोलॉजी विषय से।
0: बायोलॉजी से?
1: जी।
0: अच्छा।
1: और बायोलॉजी के पश्चात फिर मैं 18 मई 1993 को पीएमटी की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स करने के लिए इंदौर में आ गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कई उलझनों और पैसों की तकलीफें, इस सब के कारण मैं इसमें असफल हुआ।
0: अच्छा अच्छा।
1: और पीएमटी में और डॉक्टर बनने का सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान मुझे संघर्ष करना था, उसको मैंने जारी रखा और 12वीं में फेल हो गया। इसके बाद में थोड़ी शर्म भी लगी, तो मैंने घर जाना उचित नहीं समझा और इंदौर में हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर पीडी शर्मा जी ने मुझे कहा कि 2-4 दिन तक की ये हमारी एक बिल्डिंग है, उसका चौकीदार चला गया है कहीं, तुम इसकी चौकीदारी कर लो और इसके बाद मैं तुम्हारी कोई व्यवस्था करता हूं। तो मुझे तो काम चाहिए था और काम कोई सा भी हो, मैंने ये सीखा भी था कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो मैंने उस काम को स्वीकार किया। वहीं से मुझे श्री देवकृष्ण जी सांखला का सहयोग भी भरपूर मिला, जिन्होंने मुझे उस समय की परिषद में मुझे नगर निगम में मस्टर कर्मी के रूप में लगाया, तो मुझे काफी आत्मबल मिला और इसके कारण मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। और इसके बाद में फिर एग्रीकल्चर विषय से मैंने 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 8 समूह से बीए किया। बीए के बाद मेरा विश्वास और बढ़ता गया और आदरणीय वेंकटाचार्य स्वामी उस समय समिति के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुझे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई पढ़ने के लिए। और इसके बाद मुझे एमएसडब्ल्यू कराया।
0: एमएसडब्ल्यू?
1: हाँ।
0: मास्टर डिग्री?
1: मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क।
0: अच्छा।
1: लेकिन समिति के साथ काम करते करते सांखला जी ने मुझे काम करने की पूरी छूट दी, उनके साथ में रखा और स्वामी जी ने मुझे पूरी आजादी के साथ में काम करने का मौका दिया। इस दौरान मैं देवास के एकलव्य एक संस्था है जो शिक्षा में नवाचार और मनोरंजन के क्षेत्र में काम करती है। मैं जब सतवास में था उस संस्था से जुड़ा हुआ था और उसकी खूब एक्टिविटी की, कागज के खिलौने बनाना, विज्ञान की जो कचरे से विज्ञान या बेस्ट मटेरियल से विज्ञान कैसे तैयार किया जाता है, खेल और पजल्स, बहुत सारी एक्टिविटी उस समय चकमक क्लब में हमने सीखी थी। तो उसी को लेकर मुझे जो भी समय मिला अपनी नौकरियों के दौरान, जो समय मिला उस समय में मैंने अन्ना भाऊ छाटे नगर में पन्नी बिनने वाले बच्चों के बीच में काम शुरू किया।
0: पन्नी बिनने वाले प्लास्टिक की जो कचरा थैलियां जो सुबह सुबह बच्चे बिनते हैं।
1: जी हाँ, तो पन्नी बिनने वाले बच्चों के साथ में काम शुरू किया।
0: क्या काम शुरू किया?
1: यही मनोरंजन शिक्षा और सस्ती शिक्षा, क्योंकि अगर शिक्षा महंगी शिक्षा के तो अभाव में वो बच्चे अनपढ़ थे ही। मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, तो मैंने उनके साथ पहले तो अपने संबंध स्थापित किए, उनके साथ बैठा, गाने गाए, खेल खिलाए। इसके बाद उन्हें विश्वास हुआ तो शिक्षा की बात करने लगे, फिर शिक्षा की बात शुरू हुई। तो वो बच्चे सुबह अपनी माँ के साथ निकल जाते थे, 4 बजे करीब वो बच्चे आते थे और 4 बजे हमने पहले उनसे खेल खिलाना शुरू किया, फिर गाने, फिर उनको पढ़ाई के बारे में, सस्ती शिक्षा और मनोरंजक शिक्षा उसके बारे में, और शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ाया। इसके बाद मैं एक टीचर भी रखा, उसने भी उन्हें पढ़ाया।
0: लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ?
1: इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उन बच्चों ने, करीब आधे से ज्यादा बच्चों ने पन्नी बीनने का काम छोड़ दिया।
0: उनका घर वालों ने विरोध भी किया होगा?
1: हाँ, घर वालों ने बहुत विरोध किया, लेकिन समझाने पर वो लोग मान भी गए। और जब हमने वहां की एक समिति बनाई महिलाओं की, उस महिलाओं की समिति ने ये स्वीकार किया कि हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और उस दौरान हमारे पास 140 बच्चे के करीब थे, जिसमें से 124 बच्चे ने निपानिया गांव के स्कूल में एडमिशन लिया।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसके बाद हमने हमारा ये क्रम जारी रखा। स्कूल का नाम भी जुगाड़ स्कूल रखा था।
0: जुगाड़ स्कूल?
1: हाँ। और जुगाड़ स्कूल इसलिए उसका नाम रखा था कि वो जुगाड़ से ही बनाया गया था। उसमें किसी ने 2 बल्ली दी, किसी ने बांस की व्यवस्था दी, किसी ने 2 चद्दर दिए, 2 चद्दर किसी और ने दिए, ऐसे करके वो पूरा स्कूल है। किसी ने ईंट दिया, किसी ने रेती दी, और किसी ने उसमें जो ये सब नहीं दे पाता उसने अपने श्रम किया। इसलिए हमें उस स्कूल का नाम जुगाड़ स्कूल रखना ज्यादा उचित लगा।

साथियों, आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा और इनके साथ थे श्री छोटेलाल भारती जी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आस्था उपमन्यु और इस कार्यक्रम का शीर्षक है सही दिशा चाहते हैं युवा, जिसके लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता सही दिशा चाहते हैं युवा। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं आस्था उपमन्यु। हाँ, अब इस देश के युवा सही दिशा चाहते हैं, ऐसी दिशा जो उज्जवल हो। वे चाहते हैं कि वे अपने दीपक आप बने, स्वयं प्रकाशित हो। क्यों हुआ ऐसा कि वे अपनी प्रभा भूलते जा रहे हैं? आए कि ये विचार गोष्ठी इसी के लिए आमंत्रित है। इस गोष्ठी में नगर के कुछ श्रेष्ठ विचारक, शिक्षाविद एवं चिंतक तथा कुछ युवा प्रतिनिधि भी इसमें विचार रखेंगे। हाँ, उस दिवस एक समाज सेवी संस्था ने एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। वक्ता अपने अपने आसनों पर विराजमान हो चुके थे। सभागार में हर वर्ग के लोग मौजूद थे, लेकिन अधिक संख्या युवाओं की थी। एक खास संख्या में युवतियां भी थीं। जब प्रस्तावक ने ये कहा कि आज का युवा कई बातों के प्रति अपनी सहमति देता है, वो कई बातों को अस्वीकार करता है, वो चाहता है कि सही दिशा उसके सामने हो, विद्वान इसी पर अपने विचार देंगे। जिनका नाम पुकारा गया वे विद्वान उठे, न वे युवा थे न वृद्ध, वे प्रौढ़ थे। लगता था कि वे जो विचार देंगे निश्चित ही वह मध्यम मार्गी होगा। उन्होंने वहां जो विचार दिए उनका सार यही था कि आज की युवा पीढ़ी के पास कई मान्यताओं के प्रति अस्वीकार्यता है, पुराने मूल्यों के प्रति उनमें सीधी अनास्था है। इस अनास्था ने उन्हें दिशाहीनता दी है। वर्तमान भटकन का आरंभ उसी से हुआ है जहां दिशाहीनता है। तब सही पथ कहां मिलेगा? सत्य का सूर्य अगर बादलों की सघन परत से ढका हो तब सब कुछ कैसे सही होगा? अगर वर्तमान युवा पीढ़ी चाहती है कि उसे सही दिशा मिले तो उसे उन पगडंडियों की खोज करना होगी जिन पर चलकर प्राचीन समाज ने विकास की अपनी मंजिलें तय की। खोजिए तो उन्हें, वे मिल जाएंगी। वे ग्रंथों में हैं, लोगों की स्मृतियों में हैं, कहीं वे उपदेशक वाणियों में भी बिखरी हैं। एक अन्य विद्वान आए, लोग जानते थे कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। खासकर वे विदेशी चिंतकों को हर बात में उद्धृत करते हैं और उन्होंने कहा कि एक सुप्रसिद्ध पाश्चात्य चिंतक डॉ. केनेथ कैनिस्टन ने युवा समस्या पर एक ग्रंथ की रचना की है। उनके विचार में वर्तमान औद्योगिक सभ्यता ने पश्चिम में एक प्रति संस्कृति की रचना की है। वो वर्तमान समाज के मूल्यों के प्रति उस विसहमति, अवज्ञा और विरोध में से जन्मी है जो अत्यंत आधुनिक युवा पीढ़ी के चिंतन और आचरण का नियामक सूत्र है। आगे उन्होंने कहा, आज यही सब कुछ हमारी इस देश धरती पर भी पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। अगर इन सब की दिशा नहीं बदली गई तो नैतिकता संबंधी आदर्शवादता और दार्शनिकता युवाओं के मस्तिष्क तक ही सीमित रह जाएगी। वे अपनी परंपरा युक्त नैतिकता को व्यवहारिक रूप देने में असमर्थ रह जाएंगे। तब उनके भीतर एक विलक्षण परिवर्तन गुजरना शुरू होगा। एक और वे अपनी असमर्थताओं पर हीन भावना और आत्मग्लानी से भरकर अपनी विफलताओं का सारा दोष समाज और पुरानी पीढ़ी पर डालकर कहेंगे कि उन्होंने हमें अनुकूल परिस्थितियां नहीं दी। आगे उन्होंने कहा कि बस समझ लीजिए, निराशा, असमर्थता, पलायन और उदासीनता का दौर यहीं से शुरू होता है। इस कारण वे जीवन संघर्ष में अपनी प्रौढ़ भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाएंगे। युवा वर्ग आज इन बातों पर गहराई से विचार करे। इन्हीं समस्याओं के बीच उन्हें अपनी सही दिशा का संधान करना है। फिर एक वक्ता ने अपने दार्शनिक अंदाज में युवाओं को संबोधित किया कि वर्तमान युवा वर्ग को विश्वास की दिशा चाहिए और वो उसे मिले, युवा यही प्रयत्न करे। जहां अन्याय हो वहां उसका वो शांतिपूर्ण प्रतिरोध करे। युवा वर्ग स्वयं अपने में सही मनन चिंतन जागृत करे। संकीर्ण सोच आप में कहीं नहीं हो। विस्तार पाती धूर्तताओं के बीच अपना सही मार्ग पालें, यही अपने में बड़ी उपलब्धि होगी।
ऐसे ही कुछ वक्ताओं ने उन युवाओं के बीच अपने विचार प्रवाहित किए। कहीं तालियां भी बजी, कहीं बीच में नकारात्मक ध्वनियां भी उठी। फिर विचार व्यक्त करने के लिए एक युवा प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया। उन युवा श्रोताओं के बीच से उठकर एक युवती आई और वो माइक के सामने आ खड़ी हुई। उसे देख सभागार में बैठे कई लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। कुछ चेहरे बता रहे थे कि उस युवती का मंच पर आना उन्हें उद्वेलित कर रहा है, लेकिन उस समूह में बैठे युवक युवतियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। वो युवती जिस विश्वास के साथ मंच पर आई, उसे लग रहा था कि वो जो विचार यहां प्रस्तुत करेगी उनमें निश्चित ही सार होगा। उसे देख ये भी लग रहा था कि वो किसी सामान्य परिवार की ही है। उसकी वेशभूषा भी सामान्य थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक विश्वास दिखाई दे रहा था, साथ ही उसमें ओजस्विता भी थी। सबसे पहले उसने सब उपस्थितों के प्रति अपना प्रणाम निवेदित किया और बड़े ही विनम्र भाव से बोलना शुरू किया। उसने कहा, अभी तक इस मंच से जो कुछ भी कहा गया वो निश्चित ही तथ्यपूर्ण था, हमारे लिए मार्गदर्शक था, लेकिन मैं आप विद्वजनों से पूछना चाहती हूं कि जिन आदर्शों के उदाहरण हमें बताए और सिखाए जाते हैं, क्या वे आदर्श कहीं आज समाज में हैं? उन आदर्शों का अस्तित्व कहीं मिलेगा भी? आज वे कहीं नहीं हैं। ये भी सही है कि समाज में उन आदर्शों का कहीं कोई अस्तित्व हो। उसने फिर कहा कि क्षमा करें, उपदेश बहुत दिए जाते हैं, पर मैं पूछती हूं कि उन पर कितना अमल किया जाता है। शायद उपदेशक भी उनका पालन करने में चूकते हैं। आज समाज में एक खास बात दिखाई देती है कि लोग अपने कथन में, अपने शब्दों में आदर्शवादिता जरूर लाएंगे। वे जानते हैं कि लोगों को उससे लुभाया जा सकता है, लेकिन कितने हैं जो आदर्शों की सही दिशा में चलते हैं? आज एक प्रवृत्ति विशेष रूप से समाज में दिखाई देने लगी है। उस युवती ने फिर कहा कि आज हर बार यही कहा जाता है, देश का युवा वर्ग ये करे, वो करे, स्थापित आदर्शों का पालन करे, उसी पर देश विकास की जिम्मेदारी है, स्वीकार है। युवा वर्ग को ये स्वीकार है कि देश का, समाज का विकास उस पर निर्भर है। उसके कंधे मजबूत हैं, उसमें आगे बढ़ने की आकांक्षा भी होती है, लेकिन जो अन्य हैं, उनकी इस दिशा में कोई जिम्मेदारी नहीं। आज समाज में, खासकर हमारे भारतीय समाज में, जो घट रहा है उसे देख देश का युवा वर्ग क्षुब्ध है। उसने कहा कि मैं अपने संपूर्ण विश्वास से कह सकती हूं, भारत का हर सचेतन युवा समाज को सुंदर और सुव्यवस्थित देखना चाहता है। वो चाहता है कि सबको उन्नति का समान अवसर मिले, सब शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। इस आजाद भारत में मिलीजुली संस्कृति है, वो विकास पाए, पर इन आदर्शों को कहां सफल होने दिया जा रहा है? जो लोग एकता की बात करते हैं वे ही समाज में विभेद की सृष्टि करते हैं। जो समाज में गरीबी उन्मूलन की बातें करते हैं, आर्थिक समानता की बातें करते हैं, वे ही समाज में गरीबी के बीज बोने के लिए जिम्मेदार हैं। हम सब देख रहे हैं, समाज में हर कहीं झूठ की मीनारें खड़ी की जा रही हैं, हर जगह आंकड़ों का असत्य बोया जा रहा है। आज समाज में असत्य की, हिंसा की, शोषण की आंधी चलाई जा रही है, उसमें सब कुछ उड़ा जा रहा है। याद रखें, ये सब कुछ इस धरती पर युवा वर्ग की रचना नहीं है, लेकिन ये उनकी रचना है जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ को सामने रख अपने लिए लाभ अर्जित किए हैं और हर मानवीय मूल्यों को तिलांजलि दी है। आज के हर समाचार पत्र इस तरह की घटनाओं की प्रतिदिन साक्ष्य दे रहे हैं और सामाजिक नैतिकता तिरोहित हो रही है। बोलते समय उस युवती के चेहरे पर हल्का सा आक्रोश उभर आया था। उसने तब यही कहा कि मैं एक सत्यनिष्ठ विद्वान की कही वो बात कहना चाहूंगी कि आज हमारा चरित्र नष्ट हो गया है, इसलिए अच्छी अच्छी योजनाओं के बावजूद हमारा राष्ट्र जिस तरह उसे विकास करना चाहिए नहीं कर पा रहा है। स्वार्थ की ये धुन हमारे पारिवारिक,
सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को खोखला बनाए दे रही है। कहीं नहीं है नैतिक मूल्य, क्यों एक बात लगातार भुलाई जा रही है। आज अधिकतर संचार माध्यम जिस तरह की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं उसे कोई क्यों नहीं देखता। इन दिनों समाचार पत्रों के पत्रिकाओं में फिल्मी अभिनेत्रियों के मॉडलों के चित्र जिस तरह से छपते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे। आज जिस तरह की फिल्में निर्माण की जा रही हैं, जिस तरह टीवी चैनलों पर जो धारावाहिक प्रसारित किए जा रहे हैं उनमें जिस तरह की अनैतिकता को दर्शाया जा रहा है, क्यों नहीं उनका विरोध किया जाता है। ये कहना अधिक सही होगा कि उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी प्रशंसा की जा रही है। हम देश में जिस प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं उसे किस तरह विनष्ट किया जा रहा है इसे सब देख रहे हैं। ऐसा सब क्यों होने दिया जा रहा है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता, बढ़ते सामाजिक अपराध, विस्तारवादी शोषण की चिकनी धाराएं जिन पर सब कुछ फिसला जा रहा है, क्यों इन्हें रोका नहीं जाता, बल्कि कुछ विशेष तत्व इन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर हम आंख खोल कर देखें तो हमें स्पष्ट लगेगा कि सामाजिक अच्छाइयों को समाप्त करने के नित नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देश की एक बड़ी आबादी जो शांति से जीवन व्यतीत करना चाहती है आज वो बुरी तरह त्रस्त है। देश का एक बड़ा युवा वर्ग भी इस संतरास के बीच से गुजर रहा है। मत भूलो कि इस देश का प्रतिभाशाली युवा वर्ग शोषण और संतरास भोगने को विवश है। उस दिशा में किसी का भी ध्यान नहीं है। उन्हें चमक दिखाई जा रही है लेकिन पीछे गहरा अंधकार है। हाँ, जो सद्भावी लोग सच्चे मन से समाज को सही दिशा देना चाहते हैं उन्हें हर तरह अनुत्साहित किया जाता है, और जो अपने में अंधेरा छिपाए बैठे हैं वे युवा वर्ग को प्रकाश देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों है ये विरोधाभास। इस देश के युवा वर्ग को अपने लिए, अपने सही आदर्शों की स्थापना के लिए स्वयं सचेत होना होगा, धोखेबाज और गलत दिशा देने वालों से मुक्ति पानी होगी। हमें अपना दीपक आप बनना होगा, तभी तो हम प्रकाश बांट सकेंगे और हर अंधकारमयी राहों को प्रकाशित करने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। और साथियों, अंत में उस युवती ने बस यही कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा आप सभी उस पर विचार करें और अंधेरी शक्तियों से मुक्ति पाएं। और सच कहा जाए तो उस युवती के विचारों ने वहां मौजूद प्रत्येक वक्ता को झंझोर कर रख दिया था, और उस युवती के वक्तव्य को सुनने के बाद वहां मौजूद प्रत्येक वक्ता को इस बात का शायद आभास हो चुका था, चाहे वो बुजुर्ग रहा हो या युवा प्रतिनिधि रहा हो, कोई भी। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है या युवाओं के मन में जो सोच चल रही है एक सही दिशा को पाने की, वो सोच उनके मुताबिक शायद सही हो सकती है, लेकिन वास्तव में संसार में उस दिशा को पाने के लिए उन्हें अभी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास उनका सारा समाज स्वार्थ से भरा पड़ा है। सामाजिक बुराइयां अच्छाइयों पर हावी हो रही है। धोखेबाज लोगों और गलत दिशा निर्देश देने वालों की भरमार पड़ी है। आज के युवा अगर सही दिशा चाहते हैं और उस युवती की बात माने तो आज के युवाओं को इन तमाम अनैतिकताओं से परे उठकर अपने बारे में सोचना होगा। अगर वो सही दिशा चाहते हैं, इन तमाम अनैतिकताओं से परे उठकर अपने बारे में सोचना होगा। उन्हें अगर सही दिशा चाहिए तो उन्हें स्वयं को प्रकाशित करना होगा। उनका स्वयं का प्रकाश ही उनके अंधकारमय जीवन को, उनकी गुमी हुई दिशाओं को एक सही निर्देश प्रदान कर सकेगा और अंधकारमय जीवन को एक उज्ज्वलता भी देगा।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिसका शीर्षक था सही दिशा चाहते हैं युवा। लेखक कृष्णकांत दुबे और इसे प्रस्तुत कर रही थी आस्था उपमन्यु और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

0: तो अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप हमें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप हमें अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, बवरगांव पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। और हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा, और इसका शीर्षक है चित्रकला का वर्तमान, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के हमारे युग संचार कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है चित्रकला का वर्तमान। साथियों, संचार का विस्तार केवल विज्ञान, तकनीकी आविष्कार और इस युग के नूतन उपकरणों से तो हो ही रहा है, लेकिन संचार प्रकृति के हर उपहार और जितनी भी हमारी ललित कलाएं हैं उनके माध्यम से भी

पेंटिंग भी कहते हैं, ये कला हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करती है। जो कुछ भी हमारी आंखें कैनवस पर किसी भी कला को देखती है, तो वे आंखें हमें अनेक तरह के विचारों में ले जाती हैं और किसी न किसी रूप में हमें जीवन की निरंतरता का एहसास भी कराती हैं कि जीवन कभी रुकता नहीं, उसकी धारा निरंतर लगातार प्रवाहित होती रहती है। शताब्दियों से ये कला हमें प्रभावित करती चली आई है और देखने वाली अनगिनत आंखें इस कला को संचारित करती हैं, एक दूसरे से वार्तालाप में, मीडिया के द्वारा, और इस तरह ये कला लोकप्रियता प्राप्त करती है। अब हम आज के युग की अगर बात करें, आज के समय की बात करें, तो हमारी भारतीय कलाएं विदेशों में बेहद पसंद की जा रही हैं तथा भारतीय चित्रकारों को विदेशी गैलरियों से लेकर नीलाम घरों तक में बहुत सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है और लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार हमारे भारतीय संगीत के कलाकारों की विदेशों में काफी ज्यादा मांग है, उसी प्रकार भारतीय चित्रकारों के पेंटिंग्स की ऑनलाइन नीलामी की बिक्री ही भारी रकम और लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। और ऐसा केवल प्रसिद्ध और वरिष्ठ चित्रकारों की पेंटिंग्स को लेकर के हो रहा है ऐसा भी नहीं है, बल्कि युवा चित्रकार, उभरते हुए चित्रकार, इनके चित्रों को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। कलाओं के बहुआयामी आदान प्रदान को संचार ही लोकप्रिय बनाता है, ये तो एक प्रामाणिक सत्य है। संचार माध्यम सूचनाओं के द्वारा ये कार्य करते रहते हैं। साथियों, इस सदी के पहले भारतीय कलाकारों के लिए यूरोप का बाजार ही उपलब्ध था और यहां भी कुछ ही कलाकार, बहुत कम कलाकार अपनी कला को यूरोप के मार्केट में पहुंचा पाते थे। क्यों? क्योंकि मूल रूप से यूरोप के बाजारों में पेशेवर कलाकारों की ही मांग रहती थी, प्रोफेशनल पेंटर्स या जो समय के पॉपुलर लोकप्रिय चित्रकार होते थे उनकी ही पेंटिंग्स रखी जाती थी, मांगी जाती थी। और अपनी पेंटिंग्स के लिए आर्ट गैलरियां मिलने में नए चित्रकारों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी और बिचौलिए जो होते हैं उनकी सौदेबाजी भी परेशान करती थी, यानी चित्रकारों को अपनी पेंटिंग्स के प्रदर्शन के लिए महीनों तक तैयारियां करनी पड़ती थी। लेकिन समय ने करवट ली और देखते ही देखते अभी लगभग 3 सालों में भारतीय चित्रकला को आश्चर्यजनक रूप से प्रोमो मिलने लगा है। प्रदर्शनी और आर्ट गैलरी में इनको देखकर इनकी मांग बढ़ने लगी और वो भी तेजी से बढ़ने लगी, खास करके जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के अलावा दुबई और चीन में भी। और यहां ऐसा भी नहीं कि केवल नामी वरिष्ठ भारतीय चित्रकारों की, जैसे कि हुसैन साहब हैं, रजा साहब हैं, इनके ही चित्रों की मांग रहती हो जैसा कि पहले होता था। अब इनके अलावा अन्य वरिष्ठ चित्रकार जैसे जोगेन चौधरी, इला मैनन और युवा चित्रकारों में सुधीर पटवर्धन, जगन्नाथ पांडा, सोमेन दास, इन सब के चित्रों की भी लोकप्रियता और मांग बढ़ी है और खूब बढ़ी है। एक और बात, पहले भारतीय चित्रकला की मांग ज्यादातर अनिवासी भारतीयों में रहती थी
और विदेशी केवल एक या दो प्रतिशत

0: चित्र ही खरीदते थे। तो आज इस हालत में भी काफी बदलाव आया है। अगर 70% चित्र अनिवासी भारतीयों में बिकते हैं तो विदेशी भी 30% चित्र खरीदने लगे। चित्रकला खरीदने वालों की पसंद उनकी अपनी निजी होती है। जैसे यूरोपीय देशों में जहां इस कला का अपना विशिष्ट महत्व रहा है, वहां और खास तौर पर फ्रांस में तो घर घर में इस कला का और विशेष रूप से क्लासिकल काम बेहद पसंद किया जाता है, तो उधर अमेरिका में शास्त्रीय के अलावा एब्स्ट्रैक्ट चित्रों की भी मांग रहती है। एब्स्ट्रैक्ट चित्रकला, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्लासिकल से बिल्कुल अलग होती है। उसमें जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो प्रतीकों के रूप में होती है, जबकि शास्त्रीय कला में हर कृति अपने मूल स्वरूप या चेहरे में चित्रित होती है, प्रतीकों में नहीं। अब विदेशों के अलावा भारत में खासकर कोलकाता और मुंबई की आर्ट गैलरियों में एब्स्ट्रैक्ट चित्रों के काफी शो आयोजित किए गए, जिसमें नामी चित्रकारों के चित्र 50 लाख, कम नामी के 20 लाख और बिल्कुल नवोदितों के चित्र, जो नए नए चित्रकार थे, उनके चित्र 1 से 2 लाख रुपए में बिके। ये एक प्रसन्नता देने वाली खबर है और ताजा जानकारी के अनुसार चित्रकला में भी निवेश करने वाले आगे आ रहे हैं। कुछ कंपनियां आर्ट फंड यानी कला धन लॉन्च कर चुकी हैं, जिसमें कई निदेशकों ने पैसे लगाए हैं। हालत तो ये हो गई है कि कलाकार कंपनियों से अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 5 या 10 सालों तक का कर रहे हैं, जिसके तहत पेंटिंग कैनवस पर भी नहीं आई है लेकिन उसके पहले ही वो बिक जाती है। बैंक भी इधर पेंटिंग्स की एवज में कर्जा देने की पेशकश कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोता मित्रों, देखा आपने, बाजारीकरण के इस युग में हर वस्तु बिक रही है और संचार भी इनको खूब बढ़ावा देने में द्रुत गति से अपना रोल निभा रहा है। विज्ञापन, मीडिया का प्रचार प्रसार, इन सबको आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है ताकि जन जन तक इसकी जानकारी पहुंच सके। भविष्य में ये सारी गतिविधियां, चाहे कला से जुड़ी हों या अन्य उत्पादों से, विस्तार ही पाने वाली हैं, क्योंकि आज और कल केवल आर्थिक विकास पर ही बल दिया जाएगा। ध्यान यही रखा जाए कि इस विकास में केवल कुछ लोगों का ही फायदा हो और आम जन लाभान्वित नहीं हो।
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा, और इसका शीर्षक था चित्रकला का वर्तमान, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। तो आइए साथियों, सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। साथियों इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को, अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नए संत पिता के सामने कई चुनौतियां, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हरमन मंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है नए संतिता के सामने कई चुनौतियां। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। इस वार्ता में मैं केविन रेफर्टी की बातें मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। वे कहते हैं अपना पहला प्रवचन देने से पहले नए संतिता फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में 1,00,000 लोगों के साथ प्रार्थना का नेतृत्व किया। अनुयायियों को आशीर्वाद देने से पहले उन्होंने उनसे कहा कि वे उनके लिए प्रार्थना करें और परमात्मा से उनके लिए आशीष की कामना करें। यह अच्छी शुरुआत थी। संत पिता को निश्चित रूप से लोगों की प्रार्थनाओं की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे लोगों की बातें सुनेंगे, उनसे सीधे संवाद करेंगे बजाय सिद्धांतवादी फरमान जारी करने के, जैसा कि उनके पूर्ववर्ती और अधिकांश कार्डिनल तथा धर्माध्यक्ष करते रहे हैं। फ्रांसिस रोम के धर्माध्यक्ष जिन्हें जॉर्ज मारियो बर्गोल्जियो के नाम से जाना जाता है, ब्यूनस आयर्स के महाधर्माध्यक्ष लैटिन अमेरिका और विकासशील देशों से पहले संत पिता चुने जाने के बाद लोगों के सामने आए तो ऐसा लग रहा था मानो वे अचंभित हो। 8 साल पहले बेनेडिक्ट सोलवे की तरह उन्होंने जीत की खुशी में अपने हाथ नहीं लहराए, केवल गुड इवनिंग कहा। उन्होंने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी की याद में अपने लिए फ्रांसिस नाम चुना। फ्रांसिस ऑफ असीसी ने सारा जीवन बिताने के लिए सारी भौतिकवादी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। हालांकि उनके चुनाव में फ्रांसिस जेवियर की झलक भी दिखती है जिन्हें एशिया में ईसाई धर्म लाने का श्रेय हासिल है। संत फ्रांसिस पहले यीशु समाजी हैं जो संत पिता चुने गए हैं। यीशु समाजी पुरोहितों को 12 साल का खरा बौद्धिक और धार्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्य पुरोहितों के प्रशिक्षण की अवधि इससे आधी होती है। एक अच्छा संकेत यह भी है ब्यूनस आयर्स के महाधर्माध्यक्ष रहते हुए फ्रांसिस धर्माध्यक्ष के लिए बने भव्य महल में नहीं रहते थे और न ही सोफर वाली कार में चलते थे। वे एक सामान्य अपार्टमेंट में रहते थे और बस या मेट्रो में सफर करते थे। क्या संत पिता फ्रांसिस जॉन 13वें बनना चाहेंगे जिन्होंने संत पिता रहते हुए दूसरी वाटिकन काउंसिल बुलाकर कैथोलिक चर्च के दरवाजे नए विचारों के लिए खोल दिए थे? कैथोलिक विचारधारा कई तरह की समस्याओं से घिरी हुई है। करीब 1.2 अरब कैथोलिक आबादी के लिए भी चर्च का कोई खास महत्व नहीं है। संत पिता और धर्माध्यक्षों की बातों का उनके रोजाना के अनुभवों से कोई ताल्लुक नहीं है और वे तेजी से उनसे दूर होते जा रहे हैं। कैथोलिक धर्माध्यक्ष सेक्स के मामलों में उच्च स्तरीय नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। वे पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों के अलावा सेक्स के खिलाफ हैं और गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल से भी मना करते हैं। इसके अलावा गर्भपात, तलाक और समलैंगिक विवाह के भी पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन जब पुरोहितों पर जघन्य अपराधों और बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगते हैं तो पूरी दुनिया में धर्माध्यक्ष उनका बचाव करते नजर आते हैं। वेटिकन में भी एक के बाद एक घोटालों के चलते चर्च की भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं। नौकरशाही में एक दूसरे की टांग खिंचाई और आंतरिक मतभेद होते ही हैं। लेकिन ये घोटाले इससे कहीं बढ़कर हैं। बच्चों के शोषण के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में वेटिकन बैंक की भूमिका को लेकर भी वेटिकन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बेनेडिक्ट सोलवे का कैरियर चर्च के सत्ता शीर्ष के करीब ही आगे बढ़ा था। इसके बावजूद वे सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाने में असफल रहे। ऐसे में किसी दूरदराज के इंसान से, जैसा कि संत पिता फ्रांसिस अपने आप को बताते हैं, के लिए ऐसा करने की उम्मीद करना मुश्किल है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि नए संत पिता और उन्हें चुनने वाले अधिकतर कार्डिनल की नियुक्ति बेनेडिक्ट या उनके पूर्ववर्ती पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा की गई थी। ये दोनों कैथोलिक विचारधारा के पालन को लेकर संकुचित नजरिया रखते थे। संत पिता फ्रांसिस को यह फैसला लेना होगा कि चर्च की संकुचित विचारधारा के पालन पर जोर देंगे या फिर चर्च की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलने का जोखिम उठाएंगे।
संकुचित विचारधारा पर जोर देने से चर्च से दूर होने वाले लोगों की तादाद और बढ़ेगी। हालांकि बेनेडिक्ट प्रतिबद्ध अनुयायियों के साथ चर्च की सीमित भूमिका को स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन उनकी यह नीति कारगर साबित नहीं होती रही। चर्च में मौजूदा दौर के नेता, जिनमें न्यूयॉर्क के कार्डिनल टिमोथी डॉलन भी शामिल है, परंपराओं के महत्व, नियम कायदों, पुरुषों की श्रेष्ठता और पदानुक्रम पर जोर देते रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये परंपराएं मध्यकाल में संत पिता की राजशाही के दौर की है। इतिहासकार लॉर्ड एक्टन की मशहूर उक्ति सत्ता भ्रष्ट बनाती है और असीमित सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट बनाती है, पुनः जागरण काल में संत पिताओं की ओर ही इशारा करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि चर्च के मौजूदा दौर के अधिकतर राजकुमारों की जीवन शैली ईसा मसीह की जीवन शैली के ठीक विपरीत है। कमजोर और असफल होने के बावजूद ईसा मसीह ने संत पेत्रुस को इसलिए चुना था क्योंकि वह कोशिश करने से नहीं चूकते थे। इन सब में संत पिता फ्रांसिस कहां फिट बैठते हैं? वे चर्च की बदहाली से अच्छी तरह वाकिफ है। चर्च का भविष्य लेटिन अमेरिका में होने वाले दावों के बावजूद इसके सदस्यों की संख्या घट रही है। फ्रांसिस के विचार बेनेडिक्ट से अलग हैं। महाधर्माध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कहा था, हमें अपनी दुनिया में खोए और आध्यात्मिक रूप से बीमार चर्च से परहेज करना चाहिए। इसके बजाय मैं ऐसा चर्च ज्यादा पसंद करूंगा जो खुद जख्मी होने के बावजूद लोगों के दिलों के करीब हो। सेक्स से संबंधित मुद्दों पर वे परंपरावादी हैं और समलैंगिक विवाह तथा गर्भपात के सख्त विरोधी हैं, लेकिन वे समस्याओं से भरी दुनिया में लोगों की परेशानियों को समझते हैं। यीशु समाजी सदस्य रहते हुए बर्गोल्जियो को अर्जेंटीना के पूर्व सैनिक शासकों से निकटता के चलते आलोचना झेलनी पड़ी थी। हालांकि हाल के दिनों में अर्जेंटीना में बढ़ती असमानता और समलैंगिक विवाह को वैधानिक दर्जा दिए जाने के मुद्दों पर वे सरकार का विरोध करने से नहीं चुके हैं। अब उनके सामने ये चुनौती है कि चर्च की संकुचित विचारधारा के पालन पर जोर देंगे या फिर चर्च की स्वीकारता को बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलने का जोखिम उठाएंगे। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नए संत पिता के सामने कई चुनौतियां, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हरमन मंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नौकरी पेशा नारी, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण वार्ता सुनिए। नौकरी पेशा नारी। साथियों, बदलती दुनिया और बदलते परिवेश में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल रहा है। नारियां भी कुछ कम नहीं बदली हैं। उनके स्वभाव में काफी बदलाव आया है। उनके रहन सहन, सोच विचार, पहनावा ओढ़ावा आदि सब में बहुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब घर के अंदर की नारियां घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की तमन्ना रखती हैं। घर की कुशल गृहिणियां जो घर के अंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना और पकवान बनाकर सबका दिल जीत लेती थीं, लेकिन अब वे अपने सुस्वादु खाना खजाना को नौकरी का रूप देना चाहती हैं। अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना सबको खिलाकर पैसा कमाना चाहती हैं। घर का खाना बाहर खिलाकर उसे व्यापार व्यवसाय का रूप देकर वे अधिक से अधिक रुपया कमाने में यकीन रखती हैं। वैसे देखा जाए साथियों, तो नौकरी करने के अनेक फायदे हैं। यदि नौकरी और घर परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने में नारी निपुण हो जाए तो नौकरी करने में उसे आनंद आएगा और सही मायने में वह नौकरी का मनोरंजन करेगी। नौकरी एक ऐसा टॉनिक का काम करती है जिससे बहुत सारी मन की परेशानियां, व्यथाएं, तनाव आदि दूर हो जाते हैं। घर से यदि बाहर निकलती हैं, नौकरी करती हैं, वहां कई लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, कई जन से आपकी दोस्ती हो जाती है। आप अपना सुख दुख अपने साथी दोस्तों से बांटती हैं, घर परिवार की समस्या को लेकर आपस में चर्चा होती है और आपको मुफ्त में सलाह मिल जाती है। इसी बहाने आपको समस्या का समाधान भी मिल जाता है। घर परिवार पति बच्चों की अनेक परेशानियां होती हैं, ये सब भी कोई कम तंग नहीं करते, पर घर से बाहर निकलकर काफी हद तक तनाव दूर हो जाते हैं। आपस में बातचीत कर इन विभिन्न तनावों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए नौकरी करने के अनेक फायदे हैं। नौकरी पेशा महिलाएं ज्यादा तनाव मुक्त रहती हैं बजाय घर की गृहिणी के। घर की गृहिणियां परिवार की छोटी छोटी समस्याओं से हमेशा जूझती रहती हैं, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती हैं, और कभी कभी तो घर के अंदर की समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि वह अवसाद तक से घिर जाती है। साथियों, कई ऐसी महिलाएं हैं जो पारिवारिक परेशानी से इतनी तंग आ जाती हैं कि उनके पास कोई उपाय नहीं होता, वे मानसिक तनावों की शिकार हो जाती हैं। पारिवारिक समस्याओं के मामले में नौकरी पेशा महिलाएं सुखी रहती हैं, क्योंकि इन महिलाओं का सामाजिक परिवेश बढ़ जाता है। सामाजिक दायरा बढ़ने से मिलना जुलना होता है और इससे मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। इसके अलावा साथियों, गृहस्थ महिला पूरे समय एक ही रूटीन में जीती है, इसके काम करने का ढर्रा बिल्कुल एक जैसा होता है। वही सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े सबकी देखभाल करना, यही सब चलता रहता है। काम में कोई नवीनता नहीं होती। इससे भी कभी कभी महिलाएं ऊब सी जाती हैं। साथियों, इसके अलावा घर में रहने वाली महिलाएं घर के वही सदस्यों के साथ रोज रोज रहती हैं, नए लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो पाता है, ये भी ऊब का कारण बन जाता है। वह खींच भी जाती है और उसका घर से बाहर निकलना भी बहुत कम हो पाता है। जब वह तनाव में होती है, उसकी समस्या को सुलझाने वाला कोई नहीं होता। घर की गृहिणियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सास बहू के साथ, ननंद के साथ झगड़ों में उलझी रहती है। पति भी पारिवारिक मामलों में चुप रहने में ही भलाई समझते हैं। पत्नी को लगता है इस घर में उसका अपना कोई नहीं है। कहते हैं खाली मन शैतान का घर। सास बहू के झगड़े में उलझी महिला के साथ भी यही होता है। इसके अलावा नौकरी पेशा महिला के पास इन सब फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं होता। वह दफ्तर से इतनी थकी हारी आती है कि उसके पास
झगड़े लड़ाई के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। दफ्तर से आकर अपने कामों को निपटाने में लग जाती है। इसके उल्टे घर की महिलाएं सास ननंद को पछाड़ने की तरकीबें सोचती हैं। कहां कब क्या जवाब देना है, कब पछाड़ना है, इसके उपाय ढूंढती रहती हैं। उसका दिमाग इन्हीं कामों में चलता है। सास ननंद अथवा परिवार के झगड़ों में ही वह अपना दिमाग और शरीर खपाती है। ऐसी नारियों की महत्वपूर्ण ऊर्जा यूं ही चली जाती है। बेकार की बातें, बेकार के कामों में उनका मन चलता रहता है। इससे यही होता है कि धीरे धीरे महिला की सकारात्मक सोच नकारात्मक गतिविधियों में बदल जाती है। साथियों, नौकरी करने वाली महिला हमेशा आगे बढ़ने का ख्याल रखती है, इसलिए कदम दर कदम वह तरक्की करती जाती है। फिर नौकरी पेशा महिला का सामाजिक रुतबा भी होता है। समाज में उसका अपना एक स्थान होता है। ऊंचे पद से जुड़े लोग उससे संबंध रखते हैं, उसे सामाजिक गतिविधियों, उत्सवों आदि में सादर आमंत्रित करते हैं। अतः उस नारी का मान सम्मान भी बढ़ जाता है। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह उसका रुतबा होता है। आर्थिक मामले में नौकरी पेशा महिलाएं स्वतंत्र होती हैं। उसे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। वह खुद इतनी सक्षम होती है आर्थिक मामलों में, इसलिए पति के अलावा सास ससुर भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते। वह किसी से पैसे लेती नहीं, बल्कि समय समय पर सबको रुपये पैसे देने का काम भी करती है। कमाने वाली महिला के भीतर गजब का आत्मविश्वास भी होता है। आत्मविश्वास मजबूत होने से विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए भी वह मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहती है। वह इतनी सक्षम होती है साथियों कि कोई उसे डिगा नहीं सकता। आज की नौकरी पेशा नारी मजबूत एवं दृढ़ इरादों वाली होती है। कठिनाई में वह खुद को स्थिर रखती है। घर के मुखिया की बीमारी के दौरान या अकाल मृत्यु तक में बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने एवं उनके भरण पोषण में पूरी तरह से सजग होती है और सक्षम होती है। पुरुषों वाली जिम्मेदारी निभाने में भी वह सक्षम होती है। किसी के आगे हाथ फैलाना या गिड़गिड़ाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तो साथियों, कई कई बुरे वक्त में नौकरी पेशा या आत्मनिर्भर महिला अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बिल्कुल तैयार एवं सुरक्षित होती है। नौकरी पेशा महिला का जीवन सुरक्षित होता है। वह घटना दुर्घटना में घबराती नहीं है, इसलिए आर्थिक रूप से सक्षम महिला सभी स्थितियों से जूझ सकती है। तो साथियों, रोजगार पाना उसका अधिकार भी है, रोजगार करना और कर्तव्य भी है। फिर सोच लीजिए आपको क्या करना है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नौकरी पेशा नारी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। सहेलियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी आर्य कलाकार के द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी होगी और आप इन सभी बातों का लाभ भी लेंगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। आइए मित्रों, अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन में प्रकाश भरती है आस्था। इस वार्ता के लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं अपर्णा सिंह।

मन दर्पण इसके अंतर्गत प्रस्तुत है मन में प्रकाश भरती है आस्था। इसके लेखक हैं श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। मित्रों, दुबे जी लिखते हैं, बात कुछ वर्ष पूर्व की है। तब एक पत्रिका में मैंने प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता और चिंतक रविशंकर महाराज का एक संस्मरण पढ़ा था, जिसका शीर्षक ही था लड़की का उत्तर। 15 वर्ष की एक बालिका से मैंने पूछा, क्या पढ़ती हो? उसका उत्तर था, चीखली हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ से कितने मील होगा? 6 मील। रोज पैदल आती जाती हो? उत्तर था, जी हाँ। पूछा, थकती नहीं हो? नहीं। डर नहीं लगता? उस बालिका ने कहा, नहीं। इस संवाद के बाद आगे रविशंकर महाराज ने लिखा, बालिका का उत्तर सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। वह पढ़ने के बाद क्या करेगी इसे तो ईश्वर जाने, परंतु उसने जो हिम्मत, आत्मबल, आंतरिक आस्था है, वे सब उसके जीवन में बड़े काम आएंगे। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मजबूत शरीर की अपेक्षा मन की दृढ़ता और आंतरिक आस्था विशेष आवश्यक है। इस संस्मरण को पढ़ने के बाद मुझे अपने उन मित्र की याद हो आई जो कृषि वैज्ञानिक हैं और अपने में ऐसे ही परिपूर्ण आस्थावादी हैं, और वह आस्था कहीं और कहीं की भी नहीं बल्कि प्रभु आस्था की है। कृषि वैज्ञानिक होने के नाते प्रकृति तथा पेड़ पौधों से उनकी सीधी निकटता है। यही नहीं, वे प्रकृति के सत्य को निरंतर पहचानने की कोशिश करते हैं। एक समय उन्होंने मुझसे कहा था, विज्ञान मुझे प्रभु की समीपता देता है। यह इसलिए कि इस प्रकृति का निर्माता वह प्रभु ही तो है, ये सब उसी की ही तो रचना है। मैं उसी की रची सृष्टि में उसी को देखता हूँ, उसी सत्य की खोज करता हूँ। आगे फिर उन्होंने कहा था, हाँ, मेरा बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता नहीं थे, माँ के आंचल की छाया ने मुझे बड़ा किया। उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया कि प्रभु आस्था में ही जीवन है। माँ ने मुझे कहा था, याद रखो, प्रभु ही पिता हैं, प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हैं, और याद रखो बेटा कि प्रभु जिसके साथ है वो हमेशा भयविहीन होकर अपना जीवन जीता है। सामान्यतः उसे कहीं कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। अगर वे आती भी हैं, तो लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। अगर तुम प्रभु के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखोगे तो स्वयं तुम में आत्मबल पैदा होगा। साथ ही यह भी याद रखो, इसके लिए तुम्हें किसी अनावश्यक साधन की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के मन में यह आस्था उत्पन्न हो जाती है कि प्रभु उसके साथ ही हैं, सखा हैं, सहायक हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो वे जीवन के हर क्षण में उसके साथ ही रहेंगे। सोचो, प्रभु जिसके साथ भला है, उसे किसका भय और किसका डर हो सकता है? माँ ने मुझे यह भी कहा था, ऐसा आस्थावान व्यक्ति अपने आप में अभय हो जाता है। अपनी एक अन्य चर्चा के दौरान मुझे माताजी ने यह भी कहा था, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ बेटा, कभी प्रभु आस्था के विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, आस्था समुद्र लांग जाती है, यानी उस व्यक्ति मन में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वह समुद्र को भी लांग जाए। इसके बाद मुझे उन मित्र ने कहा था, और मेरे भाई, मैंने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी पाया, जो पद, जो पदवियां, जो अलंकरण प्राप्त किए, जो सुख पाया, जन जन की जो मैत्री, अपने साथियों का प्यार, हजारों हजार किसान भाइयों का जो स्नेह आदर पाया, उसके पीछे यही सब कुछ तो है। पर इन सबके बीच मैंने जो आत्मिक शांति, आत्मिक सुख पाया, वह सब कुछ मुझे उस प्रभु आस्था ने ही दिया, और वे सब कुछ अद्भुत थे, अपूर्व थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद वे मित्र मुझे अपने उस खेत, उस प्लॉट पर ले गए जहां वे अपना विशेष अनुसंधान कार्य कर रहे थे।
वहां खड़े होकर उन्होंने मुझसे कहा, यहां इन सबके बीच रहते, काम करते, मेरे मन में प्रभु आस्था का और अधिक विस्तार होता जाता है। पहले मैं अपने मन में सोचा करता था, प्रभु मेरे साथ हैं, पर अब देखता हूं, प्रभु समस्त वनस्पति जगत, प्राणी जगत, यानी सभी के ही तो साथ हैं। इस माटी के कण कण के साथ हैं, हर जगह व्याप्त हैं, वह इस पूरी सृष्टि के साथ हैं। जब मैं अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खेत में उगे पौधों के पास जाता हूं, तो पाता हूं एक विराट शक्ति है जो पौधों पौधों को निरंतर वृद्धि देती है, यही नहीं उनका संरक्षण करती है। जो कुछ पौधों को अपने जीवन के लिए चाहिए, उसी के जरिए उन्हें वह सब कुछ तो मिलता है। जब ये पौधे हवा में लहराते हैं, तो मैं उनमें प्रभु की दी हुई निर्भयता ही तो पाता हूं। विज्ञान की दृष्टि ने भी मुझे लगातार प्रभु आस्था दी है, ये आस्था आज भी मेरे साथ है। और अगर मैं यह कहूं कि वह मेरे मन दर्पण में निरंतर उज्जवल और उज्जवल होती गई है, तो गलत नहीं होगा। मेरी अपनी तो यह स्पष्ट धारणा है और मान्यता है कि विज्ञान और प्रभु आस्था में कहीं न कहीं कोई विरोध या अलगाव है ही नहीं, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि जैसे जैसे हम इस जगत को, उसके व्यवहार को, उसके अंदर के सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, हमें उस अनंत शक्ति की उपस्थिति का निरंतर आभास होने लगता है। और ऐसा आभास मुझमें प्रभु के प्रति और अधिक आस्था जागृत करता है। इसी आस्था ने ही मुझे अपने अनुसंधान में, अपनी खोज में कई कई बार आकस्मिक सफलताएं भी दी हैं, और मैं प्रकृति के उस सत्य के पास बहुत जल्द पहुंचा हूं। मैं इसका संपूर्ण श्रेय प्रभु आस्था को ही देता हूं। वे फिर बोले, बंधु, यह आस्था मेरे अंतर्मन को प्रेम से भरपूर बना देती है। कभी मैंने एक संत वचन पढ़ा था और उसे मैंने अपने मन में पूरी तरह अंकित करने का प्रयत्न किया। उस महत्व वचन में कहा गया था, भक्ति प्रेम का आस्वादन है और अंतिम निष्ठा भी है। यह जगत जिस परमात्मा के प्रकाश से आसीन है, उसे असत कैसे माना जाए? वस्तु की प्रभा वस्तु को मिलती है, प्रभा की शोभा भी वस्तु को प्राप्त हो जाती है। जगत परमात्मा से अभिन्न है और जीव भी परमात्मा से अभिन्न है। मित्र, यह वचन, यह वाक्य भक्ति प्रेम आस्था के साथ विज्ञान के एक सिद्धांत का ही तो प्रतिपादन करता है। जब हमारी दृष्टि भिन्नता का भाव त्याग देती है, हम सदैव प्रभु से एकात्म अनुभव करने लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा, हमारा अंतर्मन सचमुच एक दर्पण है। वह जितना सुंदर, जितना स्वच्छ होगा, हमारा मन उतना ही प्रकाशित होगा। इसलिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, जिसका भाव है, हे प्रकाशमान प्रभु, हे दिव्य ज्योति भगवान, आप ही हमारे सत्य मार्ग के ज्ञाता तथा प्रदर्शक हैं। आप हमें उस सद्मार्ग का प्रदर्शन करें, जिसके द्वारा हम सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त कर सकें। आप हमारे सारे दुर्गुणों और कुटिलताओं को तथा अपूर्णताओं को हमसे दूर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन में प्रकाश भरती है आस्था। इस वार्ता के लेखक थे श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी अपर्णा सिंह। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इन जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक है पर्यावरण का संतुलन बैठाते पशु पक्षी। इस वार्ता के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हजेस।

प्रस्तुत है वार्ता पर्यावरण का संतुलन बैठाते पशु पक्षी। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस। श्रोता साथियों, इस संसार में ईश्वर ने मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की रचना भी प्राणियों के अंतर्गत की है। इसलिए संसार में रहते हुए यह सभी प्राणी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन मानव और पशु पक्षियों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मानव पर्यावरण को प्रदूषित करता है और पशु पक्षी पर्यावरण को संभालते हैं। पर्यावरण का यह संतुलन वह पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। मानव और पशु पक्षियों के इस पृथ्वी पर रहने और क्रिया करने के अपने अलग अलग ढंग हैं। उनके जीवन यापन के अपने तौर तरीके हैं। इनके अपने अपने तौर तरीके इसलिए हैं क्योंकि मानव ने अपने जीवन जीने के ढंग में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नई नई शैली ईजाद की है। अपने जीवन को सुविधानुसार जीने के लिए उसने नए नए आविष्कार किए हैं और रोज ही कर रहा है, जबकि पशु पक्षी आज भी अपने जीवन को नैसर्गिक और प्रकृति के अनुसार ही जी रहे हैं। जहां मानव ने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति में दखल दिया है, वहीं पशु पक्षियों ने नैसर्गिक जीवन को जीते हुए प्रकृति का और पर्यावरण का संतुलन निरंतर बनाए रखा है, क्योंकि वे प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक जीवन जीते हैं। उन्होंने प्रकृति में कभी भी किसी भी प्रकार

दखल कभी नहीं दिया है। शायद इसका कारण मानव का प्राणियों में श्रेष्ठ होना और बुद्धिमान होना भी है। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज अपनी उसी बुद्धि के कारण मानव पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला इस पृथ्वी पर एकमात्र प्राणी है। उसकी अति तीव्र बुद्धि ही आज उसके लिए मुसीबत का कारण बन गई है। इसलिए आज का मानव अपने द्वारा आविष्कारक वस्तुओं का उपयोग अपनी सुविधा और आराम के लिए तो जमा कर रहा है, लेकिन उसके प्रति किसी भी प्रकार की सावधानी बरतने को नजरअंदाज कर रहा है, जिसका परिणाम अब खुलकर सामने आने लगा है और परिणाम है पर्यावरण प्रदूषण। श्रोता साथियों, आइए अब जरा एक नजर पशु पक्षियों के द्वारा पर्यावरण संतुलन पर डाल लें। प्रकृति में अनेक प्रकार के पशु पक्षी इस पृथ्वी पर विचरते हैं। इन सभी पशु पक्षियों की अपनी दिनचर्या है, अपना जीवन जीने का तरीका है और अपना अपना भोजन निर्धारित है। यह सब उसी प्रकार से जीते हैं ईश्वर ने इन्हें जिस योग्य बनाया है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास, कोई आविष्कार ये नहीं करते। इसलिए यह अपने प्राकृतिक जीवन को ही जीते रहते हैं और प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। कुछ पशु मांसाहारी हैं तो कुछ पशु शाकाहारी हैं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही तरह के पशु अपने अपने भोजन के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाए रहते हैं। उदाहरण के लिए हम मांसाहारियों में प्रमुख शेर, बाघ और तेंदुए जैसे पशुओं की यदि बात करें तो सबसे अधिक पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में यही मांसाहारी पशु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकतर यह पशु ऐसे पशुओं का शिकार करते हैं जो शाकाहारी पशु होते हैं, क्योंकि शाकाहारी पशुओं की संख्या इन बड़े और विशाल मांसाहारियों की अपेक्षा कहीं अधिक है। शाकाहारी पशु जंगलों में झुंड के झुंड चरते हैं और वे घास के साथ साथ अन्य पेड़ पौधों का भी अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि शेर, बाघ और तेंदुए इनका शिकार अपने भोजन के लिए न करें तो जंगल की जंगल इन शाकाहारियों के द्वारा साफ किए जा सकते हैं। इसलिए मांसाहारी जब अपने भोजन के लिए इनका शिकार करते हैं तो इनकी संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ती है, बल्कि शाकाहारियों की संख्या का संतुलन बना ही रहता है और यही संतुलन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि जंगल के चरागाह और पेड़ पौधों से ही पर्यावरण सबसे अधिक सुरक्षित रहता है। वरना शहरों में तो अब सीमेंट और कंक्रीट के जंगल ही उगाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल शहरों में ही सीमेंट और कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, बल्कि अब तो जंगलों के पास और कहीं कहीं पर जंगलों में भी शहर उगने लगे हैं। इसका परिणाम है जानवरों की संख्या में तेजी से कमी आना। यदि किसी भी प्रकार के मांसाहारी जंगल में घायल, मृत अथवा सड़ रहे जानवर आदि का भक्षण करते हैं या गिद्ध अथवा चील या गरुड़ आदि पक्षी उसको खाते हैं तो यह सब मिलकर जंगल की सफाई ही करते हैं। यदि ये सभी मांसाहारी जिनमें भेड़िये, सियार, लक्कड़भग्गे, सांप, अजगर आदि छोटे और बड़े जानवरों को या फिर उनके लिए किए गए शिकार को न खाएं तो किसी भी जंगल की गंदगी और वहां बिगड़ते पर्यावरण को आसानी से सोचा और समझा जा सकता है। श्रोता साथियों, यदि हम शहर की साफ सफाई की बात करें तो वहां पर स्ट्रीट डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते वही भूमिका निभाते हैं जो जंगल में अन्य मांसाहारी जानवर निभाते हैं। ये आवारा कुत्ते कचरे में से सड़ा गला मांस, झूठन की हड्डियां और अन्य फेंकी गई खाद्य सामग्री को खाकर साफ सफाई करते हैं। कभी कभी ये गंदगी भी फैलाते हैं, लेकिन अधिकतर तो यह आवारा कुत्ते साफ सफाई ही करते हैं। उसी तरह से चील और कौवे तथा अन्य चिड़ियाएं या पक्षी जैसे कि कबूतर और ओलगी यानी कि फाख्ताएं भी घर के आसपास फेंकी हुई चीजों में अपना भोजन तलाश कर साफ सफाई का काम ही करती हैं। आइए एक बार फिर जंगल की ओर चलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शेर, बाघ आदि जानवर शाकाहारियों का शिकार करके उनकी संख्या और पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं,
लेकिन शेरों की संख्या का नियंत्रण भी मानव ने अपने शिकार की भूख, खाल और दवाइयों में हड्डियों के उपयोग के नाम पर गड़बड़ा दिया है। मध्य प्रदेश में तो शेरों और बाघों का यह हाल है कि हाल ही में केंद्र कर्मियों के द्वारा बाघों की गई गिनती के बाद मध्य प्रदेश को टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर जो विशेष दर्जा दिया गया था वह अब वापस ले लिया गया है, क्योंकि यहां पर बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। यही नहीं, शेर, बाघ और अन्य लुप्त होती प्रजातियों वाले जानवरों की भी यही दशा है। श्रोता साथियों, हालांकि पर्यावरण का संतुलन बैठाते हुए पशु पक्षियों की बात या शीर्षक पर एक सरसरी नजर डाली जाए तो इस बात और इस विषय में कोई गंभीरता या कोई तथ्य नजर नहीं आता है, लेकिन यदि इसी विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार और मनन किया जाए तो सारे तथ्य नजर आने लगते हैं और नजर आने लगती है पशु और पक्षियों की पर्यावरण में महत्ती और आवश्यक भूमिका। शाकाहारी पशु और अन्य पक्षी जब अपने भोजन ग्रहण करने के बाद किसी पौधे के बीजों को अपने मल के साथ बाहर निकालते हैं तो उनमें से ही कई बीज यहां वहां उग कर किसी पौधे, झाड़ी या फिर वृक्ष का रूप ले लेते हैं। इस तरह से शाकाहारी जीव यानी कि पशु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी पौधारोपण या बीजारोपण में अतुलनीय सहायता करते हैं। इस तरह से जंगल में जहां जंगलों के फैलने, बढ़ने और पनपने में सहायता मिलती है, वहीं शहरों में भी व्यक्ति से अधिक यही पशु और पक्षी बीजारोपण कर देते हैं। श्रोता साथियों, इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, उसे शुद्ध रखना चाहते हैं, तो बीजारोपण और पौधारोपण के साथ साथ हमें पशु और पक्षियों को भी बचाना और संभालना चाहिए। उन्हें केवल जानवर या पक्षी कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और न ही उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में शायद वे किसी व्यक्ति से भी कहीं अधिक कार्य करते हैं। इस तरह से श्रोता साथियों, हमें पर्यावरण के संतुलन में पशु, पक्षी और अन्य जानवरों की महत्ती भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जहां तक हो सके हमें पशु, पक्षी और इन सबकी देखभाल करना चाहिए, ताकि ये हमें उसके बदले में पर्यावरण को संरक्षित कर सकें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था पर्यावरण का संतुलन बिठाते पशु पक्षी। इस वार्ता के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

साथियों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत SSPS। दोस्तों, अभी की सभा 10 से 11 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य, बाल विकास, बाल जगत और भक्ति गीत। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: ईश्वर ने अपने पुत्र के मानव रूप में जन्म लेने का संकेत उन विधर्मियों को भी दिया जो उसमें विश्वास नहीं करते थे। ये राजा भी विधर्मी थे, मगर उनमें उत्सुकता थी कि वे यहूदियों के राजा को देखें। इसी कारण वे ये सोचकर महल में राजा हेरोद के पास गए कि इस राजा ने यही जन्म लिया होगा। ईश्वर ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये राजा सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, वरन संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए इस धरती पर आया है। इन ज्योतिषियों ने एक तारा देखा, अद्भुत, चमकदार, और किसी विशेष घटना का उससे अनुमान लगाया। उधर चरवाहों ने अपने आसपास ईश्वर की महिमा देखी, अर्थात कहना न होगा, ईश्वर हर एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के अनुसार अपनी ओर बुलाते हैं। वहां इसी निर्दयी राजा हेरोद ने यहूदी याजकों और शास्त्रियों की एक सभा बुलाई।
1: हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहूदियों के राजा मसीह कहाँ जन्म लेंगे।
2: महाराज, मसीह यहूदिया के बैतलहम में जन्म लेंगे, क्योंकि नबी ने इसके विषय में लिखा है, बैतलहम यहूदा की भूमि, तो यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इसराइल का चरवाह बनेगा।
1: बैतलहम, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। राजाओं, ये यहूदी राजा बैतलहम में जन्म लेंगे। जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत कर सकूं। यहूदियों का राजा यहूदियों का राजा
0: ये तीन राजा मंजूशी थे। वे उस तारे के रुकते ही इस गौशाला में इस अद्भुत पवित्र परिवार को देख चकित रह गए। जमीन पर सर झुकाकर उन्होंने इस पवित्र बालक को प्रणाम किया और अपनी प्रार्थनाएं उसे चढ़ाई। ईश्वर से इन राजाओं ने अपनी आत्माओं, अपने विचारों व अपने कार्यों पर शासन करने की विनती की। इतना ही नहीं, अपने देशवासियों तथा संपूर्ण विश्व के निवासियों में शांति व दयालुता का वास हो, ये प्रार्थना भी की।
3: ईश्वर का तारा देखा। हम जानते थे कि ये राजा सभी राजाओं पर राज करेगा, इसलिए हम उन्हें दंडवत करने आए तथा अपने उपहार साथ लाए हैं। ये है हमारी ओर से सोना, लोबान और गंधरस। स्वीकार करें प्रभु।
4: प्रभु ईश्वर आपकी दयालुता से प्रसन्न हैं। आपको इन सब उपहारों के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपकी विनती जरूर सुनेंगे।
0: ईश पुत्र बालक ईसा को देख ये तीनों मंजूशियों ने घर की राह पकड़ी। उनके चेहरे ईश महिमा की ज्योति से चमक रहे थे। उन्हें ईश्वर की महिमा समझ में आ गई थी कि ईश्वर का वास धन संपत्ति व आडंबर में नहीं, वरन दयालुता, नम्रता और धार्मिकता में है। रास्ते में वे इसी पवित्र परिवार की चर्चा करते रहे, मगर रात होने पर उन्होंने मार्ग में ही विश्राम करने के लिए अपने ऊंट रोक दिए। तभी स्वप्न में
5: मंजूशियों, इसी वक्त उठो और यरूशलेम जाने के बजाय सीधे पूर्व की ओर अपने देश चले जाओ।
0: स्वर्गदूत द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मंजूषी यरूशलेम नहीं गए, वरन दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। यहाँ मरियम ने मंजूषियों द्वारा लाई गई भेंट सामग्री यूसुफ से विचार विमर्श कर पुरोहित, मंदिर और निर्धनों में बांट दी। बालक के जन्म के 40 दिन बाद मूसा की संहिता के अनुसार जब बालक को मंदिर में चढ़ाने तथा माता की शुद्धिकरण का दिन आया तो वे यरूशलेम चल दिए, जहां उन्होंने मंदिर में सोना, लोबान व गंधरस चढ़ाया। वही मंदिर में सिमियोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष रहता था। वो पवित्र आत्मा द्वारा ये सूचना पा चुका था कि बगैर प्रभु मसीह को देखे बिना वो मरेगा नहीं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो मरियम के हाथ में बालक को देख खुश हो गया।
6: प्रभु, प्रभु, अब आप अपने वचन के अनुसार इस दास को शांति के साथ विदा करें, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे आपने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और आपकी प्रजा इज़राइल का गौरव। सुनो, आप इस बालक की माता हैं ना? देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी।
0: ईश्वरी कृपा तथा सिमियोन नाम के इस वृद्ध पुरोहित द्वारा ये कहे जाने पर कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी, मरियम को ये पता चल गया कि उसका बेटा दुख उठाएगा जो मरियम के लिए असह्य होगा। उसी मंदिर में अन्ना नामक एक नबी स्त्री रहती थी जो आसेर वंशीय फैनुएल की बेटी थी। वो बहुत बूढ़ी हो चली थी। 7 बरस विवाहित रहने के बाद वो विधवा हो चली थी। दिन रात ईश्वर की उपासना में व्यस्त रहने वाली अन्ना भी सिमियोन के समान बालक प्रभु की प्रशंसा करने लगी। उधर शुद्धिकरण के बाद मरियम और यूसुफ यरूशलेम में ही ठहरकर प्रभु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है फादर चार्ल्स वास मुंबई की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी फादर चार्ल्स वास मुंबई की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम का विषय है कामकाजी महिलाएं और उपवास। जी हाँ साथियों, बहुत जल्दी नवरात्र शुरू होने वाले हैं और हम ऐसे समय में देखेंगे कि ढेर सारी कामकाजी महिलाएं हमारे आसपास फलाहार करती हुई, अपने घर का काम भी संभालती हुई, अपनी नौकरी को भी संभालती हुई, अपने बच्चों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर भी ढेर सारे अपने जितने काम है वो सारे करती हुई लगी रहती हैं, धर्म में भी, अपने कर्म में भी, और इस तरीके से एक महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को वो सार्थक करती रहती हैं। लेकिन साथियों, सोचने की बात यह है कि यदि महिला कामकाजी है, यदि घर की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुत सारी है, काम की भी जिम्मेदारी यदि उसके पास में पहले जैसी नहीं, बहुत जिम्मेदारी महिला उठा रही है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि वो उपवास करें तो अपने खान पान का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि कहा जाता है कि एक कामकाजी महिला या फिर घर में एक अकेली महिला का होना यानी वो घर का पावर हाउस होना। जी हाँ, महिला घर का पावर हाउस होती है और यदि उस पावर हाउस में जरा भी गड़बड़ हो यानी उसका स्वास्थ्य जरा भी गड़बड़ाए तो पूरे घर के प्रत्येक सदस्य की दिनचर्या बदल जाती है। और वैसे भी महानगरीय महिलाओं की तेजी से बदलती जीवन शैली ने व्रत उपवास का स्वरूप भी तो बदल डाला है और कामकाजी महिलाओं ने अपने वर्किंग शेड्यूल के हिसाब से आस्था का दीपक जलाए रखकर अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, यहाँ तक कि वे अपने फास्ट को यानी अपने उपवास को भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खोल देती हैं। इसके साथ में ही यदि उस दौरान वीकेंड हो तो उनके घर के सदस्य भी उनको उनके उपवास को एंजॉय करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यस्त कामकाजी महिला से इस बारे में पूछें तो आपको ये सुनने को मिल सकता है कि हमारी जॉब कोई 10 से 5 वाली नहीं है। आज प्रत्येक महिला को उसके काम में रोजाना नए टारगेट्स मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस डीलिंग्स होती हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनके छोटे बच्चे होते हैं, घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कई बार हमें ये लगता है कि ये महिलाएं नवरात्र के दिनों में 9 दिनों के व्रत कैसे कर पाती होंगी, या फिर वो यदि हफ्ते में एक व्रत भी करती हैं तो वो उनके लिए संभव कैसे हो पाता। रोजाना के भोजन को बनाना और वो सब कुछ समय पर सबको देकर अपने काम पर जाना, वापस आकर वही कवायद करते रहना, यही इतनी बड़ी चीज हो जाती है, इतनी मेहनत से भरा उनका दिन हो जाता है कि ऐसे में उपवास का फलाहार वो भी स्वयं के लिए अलग से बनाना, वो पौष्टिक भी होना चाहिए और उसमें सारी चीजों की पूर्ति होना चाहिए, धर्म शास्त्र के अनुसार भी वो पूरा पूरा सही होना चाहिए, तो ये वो कैसे कर सकती होंगी। लेकिन आज की स्मार्ट महिलाओं को हम देखें तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि फास्ट रखना या उपवास रखना कठिन नहीं है। ये तो उनकी ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति आस्था होती है और वाकई यदि इन महिलाओं से आप पूछें तो उन्हें ये कहना होता है उनका कि हम जितनी मेहनत करते हैं धर्म के लिए या फिर स्वयं के विचार को लेकर, अपने एक विश्वास को लेकर, तब उसे पूरा करके अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करना और इन सारी चीजों के साथ में स्वयं को फिट बनाए रखना, स्वयं की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना, इसे पूरा करने का अपना ही एक सुख होता है। दूसरी ये चीज होती है कि भारतीय मानसिकता में यदि हम देखें तो इससे ससुराल वाले भी खुश रहते हैं कि उनकी बहू बड़ी धार्मिक है, और रही बात भूखे रहने की तो उसमें कोई मुश्किल नहीं आती है। दरअसल अगर महिला घर से बाहर निकली है तो बड़े छोटे रेस्तरां व्रत रखने वालों की सुविधा के अनुसार खाने पीने की बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं और खासकर यदि मामला लंबे उपवास जैसे नवरात्र के 9 दिनों के उपवास का होता है, जिसमें अमूमन आपके आसपास की बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष आस्थावश उपवास रखते हैं, तब उस विशेष समय में लगभग सभी रेस्तरां इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आपको कहीं फ्रूट चाट मिल सकता है, कहीं कुट्टू की पकौड़ी मिल सकती है, कहीं पर साबूदाना वड़ा मिल सकता है, तो या फिर कहीं पर आपको खीर मिल सकती है या सिंघाड़े के आटे का हलवा। इसके अलावा मूंगफली, चौलाई और मखाने के नमकीन भी, तैयार नमकीन बाजार में मिलते हैं। इतना ही नहीं, सिंघाड़े के आटे की भुजिया भी मिलती है जो कि आलू की भुजिया का स्वाद भी भुला देती है। साथियों, दूसरी ओर कुछ बुद्धिजीवियों का कहना होता है कि ये जो व्रत करने वाले व्यक्ति होते हैं ये व्रत के खाने के ही शौकीन होते हैं और इसीलिए व्रत करते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो ठीक ही है। यदि व्रत के दौरान ही हमें इतना अच्छा खाने को मिले तो ऐसे खाने का मुंह छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। साथियों, यदि हम ये सोचें कि कुछ महिलाएं ये भी होती हैं जो केवल एक फल दिन भर में लेती हैं या फिर केवल 2 लौंग खाकर अपना उपवास रखती हैं और उनमें उतना सामर्थ्य भी होता है कि वो
इस प्रकार के उपवास कर पाएं, दिन भर में यदि ऐसा उपवास वे करती भी हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। और शायद यही वो चीज होती है जिसके चलते उनके मन में धर्म और आस्था बनी रहती है। लेकिन यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, यदि हम प्रायोगिक वर्तमान युग की बात करें, तो साथियों वर्तमान में ढेर सारी ऐसी युवतियां हैं जिनकी सोच इसके बिल्कुल विपरीत होती है। उनका सोचना ये होता है कि हम शरीर को इतना कष्ट क्यों दें। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि यदि हम ऐसे कठिन व्रत करेंगे या फिर ऐसी ही पूजा करेंगे तो ही भगवान खुश होंगे। दरअसल साथियों संदेह इस बात में नहीं है कि जहां लाइफस्टाइल बदली है यानी कि जीवन शैली बदली है, वहां बहुत कुछ बदला है। दरअसल ईश्वर के प्रति आमजन की आस्था पहले से अधिक बढ़ी है और इसका मुख्य कारण ये भी है कि अब व्रत और उपवास के साथ पूजा की विधियां पहले से ज्यादा आसान हुई है। और यही कारण है साथियों कि आजकल की महिला अपने धर्म को बहुत अच्छे से जानती हैं और अपने कर्म को भी। यही तो कारण है कि अपनी एनर्जी को बनाए रखने के बहुत सारे तरीके भी वो जानती है और इसी के चलते आज एक समय में इतनी सारी जिम्मेदारियां वो हंसते हुए निभाती भी है। अब यदि हम बात करें कि इन व्रत और उपवास के समय में क्या चीजें ध्यान देने योग्य होती हैं, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के लिए, इसलिए बेहतर है कि आप साफ और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करें और अपनी सुविधा और मान्य तरीकों से पूजा करें। ईश्वर अपने भक्त को दुखी देखकर सुखी नहीं होते। व्रत का मकसद मन में आस्था और विश्वास के जरिए सकारात्मक ऊर्जा को लाना होता है। अब इस बात के दूसरे पहलू पर बात करें। बहुत सी महिलाएं केवल ये सोचकर उपवास रखती हैं कि इस बहाने से वे अपनी डाइट पर नियंत्रण रख पाएंगी और सही मायनों में डाइटिंग कर पाएंगी, लेकिन साथियों 9 दिनों के बाद होता बिल्कुल उल्टा है। वे वजन कम करने की बजाय गेन कर लेती हैं और उसकी वजह है बाजार में उपलब्ध ढेर सारे व्यंजन और व्रत की वे तमाम चीजें जो घी और तेल से भरपूर कैलोरी मिनटों में बढ़ाती है। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो आपको अपना लक्ष्य सही रखना चाहिए कि आप उपवास किस लक्ष्य को लेकर कर रही हैं। मुद्दा धर्म और आस्था है या डाइटिंग? जितना हो सके पानी पीना और तरल पदार्थ लेना चाहिए। दरअसल भोजन करते समय आपको कैलोरी इंटेक पर कम और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। होता यही है कि हम फलाहार कर रहे हैं, इस वाक्य के नाम पर ढेर सारा घी, खूब सारा आलू, ढेर सारी कैलोरी, बहुत सारा वसा और इसी से मिलती जुलती ढेर सारी चीजें अपने भोजन में ये कहकर हम शामिल कर लेते हैं कि हम तो फलाहार कर रहे हैं और अन्न तो हम ले नहीं रहे। कई बार सभी के मन में इस प्रकार की एक गलत अवधारणा होती है कि यदि हम अन्न का सेवन नहीं कर रहे हैं तब हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। और कई बार हमें व्यवहारगत तरीके से देखा जाए तो ये चीज सही भी लगती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब तक मनुष्य अन्न नहीं खाता तब तक उसे भोजन करने का पूरा आनंद नहीं मिलता। और ऐसे ही कामों के चलते आप हमेशा यदि फलाहार करते रहें और ये मानते रहें कि आपके वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आपकी भूल रहती है। इसके साथ ही साथियों यदि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो दही, दूध, पनीर और फलों का सेवन करना लंबे उपवास में बहुत मदद करता है। साथियों उपवास के दौरान एक बात खास ख्याल रखने की होती है कि यदि आपको पहले से कोई बीमारी है, मान लीजिए यदि आपको मधुमेह है या फिर आपको रक्तचाप है, तब ऐसे में उपवास के समय आपको भोजन में बदलाव लाने और स्वयं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे एसिडिटी ज्यादा हो। दिन भर भूखे रहने के बाद यदि शाम को व्रत खोलते हैं उस समय बहुत हैवी खाना नहीं खाएं। कोशिश ये करें कि दिन भर भूखे ना ही रहें। हर 2 या 3 घंटे के अंतराल से या तो फल लें या दूध से बना कोई पेय लें। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन व्रत के दिनों में फायदा नहीं करता, इससे आपको नुकसान ही होता है। कई बार हमें चाय या कॉफी पीने की लत होती है और ऐसे में यदि आप उपवास का खाना खा रहे हैं, इसका मतलब है आप रोजाना का भोजन नहीं कर रहे हैं, तब खाली पेट बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीना आने वाले समय में आपको एसिडिटी को स्थायी रूप से आपके शरीर में रहने का आमंत्रण देना है, ऐसा समझें। साथियों रोगियों और वरिष्ठ जनों और बच्चों को जितना हो सके उतना उपवास से बचना ही चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की डाइटिंग के लिए व्रत रख रही हैं या फिर वजन कम करना
आपके व्रत का प्रमुख उद्देश्य है और थोड़ा सा धर्म का लाभ भी आपको कमा लेना है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने उपवास शुरू करने से 2 या 3 दिन पहले किसी अच्छी डाइटिशियन से मिले, एक पोषण आहार विशेषज्ञ से मिले, उन्हें अपना लक्ष्य अच्छे से साफ तरीके से बता दें, अपना शेड्यूल बनाएं और उसे फॉलो करें। यदि उपवास का आधार धर्म है तो व्रत की पार्टियां करके और सेलिब्रेशन बनाकर उसे नष्ट ना करें। साथियों, आज का समय यदि धर्म और आपका कर्म इन दोनों के अच्छे संतुलन का है, तब हमें धर्म की आस्था और उसकी नींव को हिलने नहीं देना है और कर्तव्यों का निर्वहन तो करना ही है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है फादर चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी फादर चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

एक नगर में गंगादीन नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, परंतु वह बहुत कंजूस था। वह अपने पत्नी व बच्चों को न तो भरपेट खाने को देता और न ही ढंग के कपड़े पहनने को देता था। इस कारण उसके परिवार के लोग अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश थे। नगर में उसकी कंजूसी की मिसालें दी जाती थी। एक दिन गंगादीन टहल रहा था। टहलते टहलते वह एक भोजन की दुकान के सामने से गुजरा तो उसे उस दुकान में बन रहे पकौड़ों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। पकौड़ों की सुगंध से उसके मुंह से लार टपकने लगा। उसने सोचा, यदि मैं दुकान पर जाकर पकौड़े खाए तो हो सकता है कि मुझे कोई दोस्त मिल जाए, तब मुझे उसके साथ पकौड़े बांटकर खाने पड़ेंगे। फिर गंगादीन ने सोचा, ऐसा करता हूँ, मैं पकौड़े घर ले जाता हूँ, लेकिन यदि घर ले जाऊंगा तो घर में पत्नी व बच्चों के साथ पकौड़े बांटने पड़ेंगे। फिर वह कुछ सोचकर सीधे अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे पकौड़े लाने के लिए भेजते हुए कहा, सुनो, 2 रुपए के पकौड़े लाना और पकौड़े लेकर सीधे पास वाले खेत पर आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। हाँ, ध्यान रहे कि यह बात किसी को मालूम न होने पाए। अब तुम जाओ। नौकर को पकौड़े लाने के लिए भेजकर गंगादीन खेत पर चला गया और नौकर का इंतजार करने लग गया। नौकर पकौड़े लेकर आया। गंगादीन ने उससे पकौड़े लिए और पकौड़े खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक उसी समय गंगादीन का एक हमशक्ल राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं अपनी सारी धन दौलत गरीबों को दान करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी जो भी सामान चाहिए वे मेरे घर से आकर ले लें। मैं इस सेवा कार्य के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। गंगादीन के मुंह से ये बातें सुनकर राजा हैरान रह गए, क्योंकि वे गंगादीन की कंजूसी की प्रवृत्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने गंगादीन को तुरंत इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी। राजा से आज्ञा लेने के बाद गंगादीन का हमशक्ल सीधे गंगादीन के घर गया और उसकी पत्नी से बोला, अलमारी में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और बाजार से अपने बच्चों व अपने लिए कपड़े खरीद लो। गंगादीन की पत्नी ने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं ली और गहने व कपड़े खरीदने के लिए चली गई। उधर गंगादीन के घर पर नगर के अन्य लोग सामान लेने के लिए भी आने लगे थे, परंतु गंगादीन इस सब से बेखबर पेड़ के नीचे बैठकर चाव से पकौड़े खा रहा था। पकौड़े खा लेने के बाद वह अपने घर पहुंचा, तो उसने लोगों को अपने घर से सामान ले जाते हुए देखा। यह देखकर वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे चोर, मेरा सामान कहाँ लिए जा रहे हो? अरे कोई तो इन्हें रोको। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी गंगादीन की नजर अपने हमशक्ल पर पड़ी। उसे अपनी पत्नी एवं बच्चों को भी अच्छे कपड़े एवं गहनों से सुसज्जित देखा तो चकित रह गया। उसके समझ में कुछ नहीं आया। वह न्याय पाने के लिए सीधे राज दरबार में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। जल्द ही गंगादीन का हमशक्ल और गंगादीन की पत्नी भी राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने गंगादीन की पत्नी से कहा, असली गंगादीन को पहचानने को कहा, परंतु वह नहीं पहचान पाई। तब गंगादीन ने परेशान होकर अपने हमशक्ल से कहा, कृपा करके तुम ही बता दो कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। गंगादीन का हमशक्ल बोला, मैं तुम्हारा स्वर्गवासी पिता हूँ, इसलिए एकदम हूबहू तुम्हारी तरह दिखता हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से जोड़ जोड़ कर धन दौलत इकट्ठा की ताकि तुम लोग आराम से रह सको, परंतु तुमने तो कंजूसी की हद कर दी। सारी धन दौलत पर कुंडली मारकर बैठ गए, यहाँ तक कि मेरी बहू और पोते पोतियों को भी ढंग का खाना और ढंग के कपड़े भी नहीं दिए। तुम्हारी इस हरकत से मुझे बड़ा दुख हुआ। यह कहकर वह गायब हो गया। गंगादीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण किया कि आज से वह कंजूसी छोड़ देगा
और अपने पत्नी या बच्चों का अच्छी तरह ध्यान रखेगा।

साथियों, अभी आपने सुना बाल जगत। साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब सुनते हैं एक बाल गीत और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

इंसान था। उसे भूखो मरना गवारा था, पर अपनी तिजोरी खोलना नहीं। एक दिन गांव में एक बहुत ही नामी गिरामी महात्मा जी आए। सेठ ने सुना कि महात्मा जी के पास अपार सिद्धियां हैं और वह हर समस्या का हल निकाल देते हैं। साहस करके सेठ महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मन, मैं आजकल बड़ी मुसीबत से घिरा हूँ। मेरे खेत बंजर पड़े हैं और खलियानों में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। नदी तालाब और कुएं सूख गए हैं। मेरे यहाँ कोई भी नौकर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। महात्मन, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, कृपा करके मुझे इस घोर संकट से बचाइए। महात्मा बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम 3 महीनों तक यदि सुबह शाम इस मंत्र का जाप करोगे तो 4वें महीने के पहले दिन तुम्हारे सम्मुख एक ब्रह्म राक्षस प्रकट होगा। वह एक दास की तरह तुम्हारी सेवा करेगा। तुम जो भी आदेश दोगे उसे पूरा करेगा, क्योंकि वह अकेला ही 100 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है। खुश होकर सेठ महात्मा के चरणों में गिर गया और उनसे मंत्र और जाप की सारी विधि बताने के लिए कहा। महात्मा जी ने उसे मंत्र देकर और भली बात भी समझा बुझाकर विदा किया। सेठ ने 3 महीनों तक लगातार मंत्र का जाप किया और महात्मा जी के कहे अनुसार 4वें महीने में ब्रह्म राक्षस उसके सम्मुख प्रकट हुआ। सेठ के समक्ष प्रकट होते ही वह बोला, भगवान, आपने मुझे क्यों याद किया है? आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? सेठ अपने सामने ब्रह्म राक्षस को देखकर पहले तो डर गया, फिर वह साहस जुटाकर बोला, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए तुम्हें मेरे भी आदेशों को मानना होगा। ब्रह्म राक्षस बोला, ठीक है भगवान, मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। किंतु आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? सेठ ने पूछा। ब्रह्म राक्षस बोला, मेरी शर्त है कि आपको मुझे हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना होगा, वरना मैं आपको और आपके परिवार को मार दूंगा। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे इतना अच्छा नौकर मिला है जो हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है। इसके बाद सेठ ने ब्रह्म राक्षस को एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए कहा, इस कुएं को 2 किलोमीटर लंबा और खोदो। जो आज्ञा भगवान, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। सेवक ने नम्रता से कहा और काम शुरू कर दिया। सेठ ने सोचा कि ब्रह्म राक्षस को इतना बड़ा कुआं खोदने में कई महीने लग जाएंगे, पर उसने घर जाकर खाना ही खाया था कि ब्रह्म राक्षस काम खत्म करके वहाँ पहुँच गया। सेठ हैरान होकर पत्नी से बोला, यदि यह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो हम इसे कब तक काम दे पाएंगे? इस तरह तो एक दिन खाली होकर यह हम सबको मार डालेगा। पत्नी सेठ को दिलासा देते हुए बोली, स्वामी, आप चिंता न करें, आप जब तक उसे काम दे सकते हैं दें, उसके बाद में मैं उसे ऐसा काम दूंगी जिसमें वह लंबे समय तक लगा रहेगा। सेठ ने उसे कई काम करने को दिए, पर उन कामों को उसने मिनटों में निपटा दिया। फिर ब्रह्म राक्षस ने गरज कर कहा, कोई और काम बचा है तो बताएं। वह सोच रहा था कि अब मालिक के पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वह शर्त के मुताबिक उनको मारकर खा लेगा। सेठ बोला, मेरी पत्नी का एक काम तुम्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस काम को पूरा करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। इसके बाद सेठ की पत्नी ने अपने सिर से एक बाल तोड़कर ब्रह्म राक्षस को देते हुए कहा, इस बाल को सीधा करके मुझे दो। ब्रह्म राक्षस ने बाल लेकर उसे सीधा करने का बहुत प्रयास किया, पर वह उसे सीधा नहीं कर पाया। तब ब्रह्म राक्षस ने सोचा, सुनार सोने के तार को आग में गर्म करके सीधा करता है, क्यों न मैं भी उसी उपाय को अपना कर देखूं? यह सोचकर उसने जैसे ही आग के सामने बाल को किया, बाल जल गया। ब्रह्म राक्षस डर गया कि उसका मालिक काम पूरा न होने पर उसे दंडित करेगा, इसलिए वह वहाँ से कहीं दूर भाग गया।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब सुनते हैं हम एक और भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। प्यारे श्रोता साथियों, अब मैं अगली सभा का निर्देशन के लिए आमंत्रित करती हूं विवेक पीटर रॉबर्ट को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: एक बात ये बताइए कि क्या कृषि में भी निवेश की संभावना को जागृत करने की जरूरत है?
1: वीरेंद्र भाई, कृषि में भारी निवेश, खास करके तकनीक, सिंचाई, भंडारण, प्रसंस्करण में करने की जरूरत है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सरकार के पास इसके लिए योजनाएं तो हैं, लेकिन राशि का व्यय नहीं हो पा रहा है।
0: इसके पीछे मुख्य कारण क्या है मुखिया जी?
1: इसका कारण है किसानों के पास इन पूंजी के ग्रहण को लाभ उठाने के लिए कमी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: यानी
0: पूंजी की कमी है।
1: हाँ, पूंजी की कमी है और वे उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।
0: जी,
1: होना ये चाहिए कि सरकार इन तकनीक, सिंचाई, भंडारण की व्यवस्था, प्रसंस्करण में निवेश स्वयं करे और फिर उसके परिचालन के लिए लंबे लीज पर कृषि समूहों या संस्थाओं को प्रदान कर दिया जाए।
0: इस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
1: इससे किसानों के पास नई तकनीक भी आएगी, कृषि उपज में अप्रत्याशित वृद्धि भी होगी और साथ में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी ग्रामीण स्तर पर होगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कृषि के क्षेत्र में एक प्रणाली अपनाने की बात कही जा रही थी, वो
1: एकल खिड़की। हाँ
0: जी जी, एकल खिड़की प्रणाली, वो क्या है मुखिया जी?
1: तो अगर कृषि के क्षेत्र में भी एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत की जाती है तो किसानों को अपने अलग अलग काम के लिए अलग अलग अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें इससे छुटकारा मिलेगा।
0: जी जी,
1: इससे किसानों को कई तरह की समस्याओं का निवारण हो सकेगा और समय के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा।
0: अब देखना यह है कि यह बिहार सरकार खास करके इस दिशा में क्या कुछ कर पाती है। बिहार की काया, हृदय और आत्मा कही जाने वाली कृषि में संस्थागत नीतिगत डिलीवरी प्रणाली में परिवर्तन लाकर एक नया स्वर्णिम भविष्य लिखने की दृढ़ इच्छा शक्ति है रखती है हमारी सरकार या नहीं? यह एक ऐसा कदम होगा जिससे कृषि और किसान प्रतिष्ठित होंगे और साथ ही साथ उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी हो पाएगा।
1: लेकिन एक बात यह भी है वीरेंद्र जी कि हमारे देश की सरकारें दो चीजों को स्वीकार करने से परहेज करती हैं।
0: जी जी,
1: इनमें एक है कृषि संकट और दूसरा है इसी संकट से उपजा खाद्य संकट।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बाकी औद्योगिक या वित्तीय संकट से लेकर व्यावसायिक मंदी तक सरकारें थोड़ा नानुकुर करने के बाद सब इसलिए स्वीकार कर लेती हैं कि इन सब का बोझ वे मेहनत कर जनता पर लाद सकती है और सरकारी खजाने से पूंजीपतियों को भरपाई कर सकती है। इन संकटों का असर छटनी, बेरोजगारी बढ़ने, वेतनमान या वेतन में कटौती जैसी चीजों में अभिव्यक्त होती है और जनता से कमर कसकर इस संकट से पार पाने में कुर्बानी देने की गुहार लगाई जाती है। लेकिन कृषि संकट का मामला बिल्कुल अलग है। अव्वल तो इसकी चरम अभिव्यक्ति बड़ी भयानक है। जहां कृषि संकट की चरम अभिव्यक्ति बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या में होती है तो दूसरी तरफ खाद्य संकट अभिव्यक्त होता है भूख से होने वाली मौतों में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, लेकिन सरकार इन दोनों बातों को मानने से इंकार कर देती है और दूसरा बहाना ढूंढ देती है। ये बात भी तो सही है ना मुखिया जी?
1: आपका कहना सही है, सरकार दोनों किस्म की घटनाओं के असली कारणों को मानने से साफ इनकार कर देती है और इसे ढकने के लिए गृह कलह, नशाखोरी और आपसी रंजिश से लेकर अखाद्य सेवन और रोग भोग तक सारे बहाने बना लिए जाते हैं। दरअसल कृषि संकट को ईमानदारी से हल करने की कोशिश की जाए तो सरकार को अपनी नीतियों को भी उलटना होगा जो देशी विदेशी पूंजीपतियों को मंजूर नहीं है। इसलिए सरकार ने समस्या से पार पाने के लिए विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ द्वारा सुझाए नुस्खों की शरण ले रखी है और ये कृषि अर्थतंत्र को आदि से लेकर अंत तक सारी प्रक्रियाओं को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने पर आमादा है।
0: जनवरी 2010 में प्रकाशित एक लेख में पी साईनाथ ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया था मुखिया जी कि 1997 से लेकर के 2008 तक की अवधि में संपूर्ण भारत में करीब 2,00,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अकेले 2008 में हुई अगर आत्महत्याओं का जिक्र करें तो उसकी तादाद शायद 16,196 थी।
1: परिघटना की विडम्बना यह है कि आत्महत्या की घटनाएं ऐसे राज्यों में तो अधिक हुई हैं जहां कृषि अपेक्षाकृत अधिक विकसित है
0: जी।
1: जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और केरल में। लेकिन सिर्फ वही नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे सर्वाधिक विकसित औद्योगिक राज्यों में भी आत्महत्याएं ज्यादा हुई हैं।
0: हमारे देश में सिर्फ 40% खेती लायक भूमि को ही सिंचाई की सुविधा हासिल है, या यूं कहें कि सिंचाई की सुविधा का लाभ उन्हें प्राप्त है। तो क्या ऐसे में उन्नत कृषि की कल्पना की जा सकती है?
1: एकदम ठीक कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय कृषि की सेहत कमोवेश इंद्र देवता की कृपा पर निर्भर करती है। इस साल के सामान्य मॉनसून और कृषि क्षेत्र में विस्तार को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी। कृषि मंत्रालय ने अपने शुरुआती आकलन में ही कहा था कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल खरीफ की फसल 10.4% अधिक होगी। जाहिर है पिछले साल हुई अच्छी बारिश ने भू जल स्तर को फिर से चार्ज कर दिया है और इससे रबी की अच्छी फसल को लेकर आशाएं बढ़ गई हैं।
0: तो क्या सकल घरेलू उत्पाद GDP की भी बढ़ने की संभावना है?
1: पिछले साल के कमजोर आधार को देखते हुए हमें आशा है कि इस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कहीं अधिक होगा।
0: लेकिन अगर इस वर्ष मानसून तो समान रही, मान लिया जाए ऐसा, तो इसका असर कृषि क्षेत्र पर कैसे पड़ेगा मुखिया जी?
1: इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने के बावजूद चिंता की एक बड़ी वजह है उसका देश के विभिन्न इलाकों में असामान्य रूप से कृपालु होना।
0: जी जी।
1: क्योंकि देश में बारिश सभी जगह सामान्य नहीं होती, कहीं अधिक होती है तो कहीं बहुत कम होती है।
0: पिछले वर्ष तो बिहार की स्थिति तो सामान्य से भी काफी कम रही थी अगर बारिश की बात की जाए।
1: हाँ, सिर्फ बिहार में ही नहीं, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा मॉनसून के असामान्य व्यवहार के भयंकर खूब भाजक बने। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल करीब 7.3% अधिक क्षेत्र में खरीफ की खेती की गई है।
0: जी जी।
1: गौर करने वाली बात है कि इस वर्ष दलहन की खेती में जहां 22% की वृद्धि हुई है, वहीं गन्ने की रोपाई के क्षेत्र में भी 15.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
0: इसका क्या कारण है मुखिया जी, इन फसलों की खेती में वृद्धि हुई है, क्या कुछ खास वजह?
1: जाहिर है, दालों और चीनी के दाम में पिछले साल जबरदस्त उछाल देखा गया था।
0: अच्छा।
1: शायद यही कारण रहा होगा। बहरहाल, कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण मौसम के असामान्य व्यवहार के बावजूद इस वर्ष के कृषि पैदावार पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।
0: हमारे देश में कृषि जो है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हो गई है।
1: हाँ,
0: यह कृषि के लिए कोई आदर्श सूचक नहीं है मुखिया जी?
1: हमारे देश में अच्छी पैदावार मानसून के बेहतर प्रदर्शन पर निर्भर है।
0: जी,
1: आप जानते ही हैं, कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है।
0: जी जी।
1: ये यानी कि कभी दांव किधर लग जाए, लेकिन उसके व्यवहार में इन दिनों जो असमानता देखी गई है उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी लाजमी है। पिछले कुछ वर्षों से मानसून के विफल होने की रफ्तार जहां तेज हुई है, वहीं इस बारे में अनुमान लगाने में चूक की गति भी बढ़ गई है।
0: बिल्कुल मुखिया जी सही कह रहे हैं कि मौसम का जो मिजाज है वो बदलते जा रहा है, खासकर हाँ। के आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे उस पर कहना बहुत मुश्किल है। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे चर्चा करेंगे मौसम के बारे में और कृषि के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं मुखिया जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन बातों से लाभ हुआ होगा। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, आपका भी
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: पिछले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्याम जी, जमीन अधिग्रहण से संबंधित कानून के बारे में।
2: हाँ,
0: जमीन अधिग्रहण से संबंधित अगर दो प्रमुख मुद्दों पर बात करना चाहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात सामने निकल करके आती है?
2: देखिए, क्योंकि ये मुद्दा दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है।
0: जी,
2: फारबिसगंज की घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई कि कई दूसरी घटनाएं उबल रही हैं। सरकार चाहती है उद्योग लगाने के लिए, लेकिन जमीन पर आएगा कहां से?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: इसके लिए न तो सरकार के पास कोई ठोस नीति है और न ही सही दिशा में पहल करने की कोशिश की जाती है।
0: जी,
2: साधारणतः आम किसान प्रभावित होते हैं और उन्हें अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ता है।
1: आप सही कह रहे हैं श्याम जी। देखिए, जमीन अधिग्रहण के मामले में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला ये कि निजी उद्योगों के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण न करे और कंपनियां खुद ही किसानों से जमीन खरीदे। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि स्थानीय संस्थाएं यानी पंचायत वगैरह को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। संसदीय समिति की सिफारिश थी कि कंपनियां अगर 80% जमीन के लिए भूमि मालिकों की मंजूरी ले लेती है तो तभी 20% जमीन बेचने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
0: लेकिन श्याम भाई, सुनने में आ रहा है कि सरकार ने इस सीमा में भी संशोधन किया है, अब उसका नया मापदंड क्या है?
2: सरकार ने ये सीमा 80% से घटाकर 66% कर दी है।
0: अच्छा,
2: ये भी प्रस्तावित था कि जो अधिग्रहण अभी पूरा नहीं हुआ है वो भी इसके दायरे में आ जाएगा। अब सरकार ने एक निश्चित अवधि तय कर दी है। सरकार इस विधेयक पर एक राय बनाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि उसने सभी पार्टियों को विधेयक बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की भी कोशिश की थी।
0: जी जी।
2: पर राजनीतिक माहौल जैसा है उसमें संसद में कितनी सहमति बना पाना बहुत मुश्किल काम है किसी भी मुद्दे पर।
0: जी जी बिल्कुल। आपका क्या मानना है कपूर साहब, अब तो यह विधेयक कानून बन गया है तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेगा?
1: वीरेंद्र जी, इस विधेयक के कानून बन जाने से तो जमीन अधिग्रहण में मौजूद अनिश्चितता काफी कम हो गई है, लेकिन उद्योगों के लिए जमीन पाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है।
0: जी,
1: एक तो जमीन के कारोबार को जमीन माफिया से छुड़ाने के लिए कुछ करना होगा जो जमीन के हर सौदे को मुफ्त पैसा बनाने का माध्यम मानता है।
0: भूमि खरीद पर सरकारी नियंत्रण हट जाने से
1: जी
0: तो इन लोगों को और काफी बोलबाला हो जाएगा। बिल्कुल, इस बारे में आप क्या कहते हैं?
2: भूमि खरीद की प्रक्रिया से सरकार के हट जाने के बाद इस तरह के तत्वों को ज्यादा अवसर मिल सकता है।
0: जी बिल्कुल,
2: और वे किसानों व उद्योग दोनों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय जनता को भी ये समझाने और साबित करने की जरूरत है कि औद्योगिकरण से उन्हें लाभ ही होगा।
0: ऐसा तो हर कोई दावा करता है कि उद्योगों से स्थानीय जनता को लाभ होगा, लेकिन जब प्रतिफल सामने आता है, जब नतीजा सामने आता है तो स्थानीय जनता के जिम्मे कुछ भी हाथ नहीं आता है कपूर साहब, सिवाय उनको पछताने के।
1: सही बात कह रहे हैं, ये बात एकदम सही है कि औद्योगिकरण से ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं और ज्यादा विकास होता है, लेकिन इस विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी होगी ये सुनिश्चित करना सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है।
0: जी,
1: ये बात औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों के लोगों को ज्यादा मालूम है और वे इसे अच्छी तरह से समझते भी हैं कि कैसे वे इसका लाभांश और हक हासिल कर सकते हैं।
0: क्या इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण करना और राज्यों की उपेक्षा ज्यादा आसान हो गया है श्याम भाई?
2: हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा वीरेंद्र भाई। इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन हासिल करना पश्चिम बंगाल या बिहार के मुकाबले आसान है। औद्योगिक संस्कृति का विकास तभी ठीक से होगा जब उसमें सबके विकास का आश्वासन हो।
0: शुरुआती दौर में जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ग्वालियर पहुंचे थे, जब जमीन का आंदोलन शुरू हुआ था, तो खास करके भूमिहीनों, आदिवासियों और गरीब लोगों में एक उम्मीद सी जगी थी। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा या क्या कुछ उम्मीद जगी थी उन लोगों को?
1: देखिए वीरेंद्र जी, गांधी जयंती के दिन जब भूमिहीनों, आदिवासियों और छोटे किसानों के सम्मेलन के लिए पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ग्वालियर पहुंचे थे तो बहुत से लोगों खासकर आंदोलनकारियों को उम्मीद थी कि वो भूमि सुधार नीति या इससे संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा अवश्य करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं।
0: अच्छा अच्छा।
1: पर अब 50,000 आंदोलनकारियों की ग्वालियर से दिल्ली की पद यात्रा से बने माहौल में जो समझौता हुआ था वो उम्मीद जगाता था। ये ध्यान रखना होगा कि कहीं समझौता कागजों पर ही न रह जाए, पिछले अनुभव भी यही कहते हैं।
0: एक सवाल यह भी उठता है श्याम जी कि इस तरह भूमिहीनों से भूमि देने के झूठे वादे कब तक किए जाते रहेंगे, कब तक उन्हें झांसे में रखा जाएगा, ये पता नहीं चलता है।
2: देखिए वीरेंद्र भाई, बात बहुत साफ है कि देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां भूमिहीनों को भूमि देने के वायदे तो मिले पर जमीन नहीं मिली।
0: जी जी।
2: अब जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाका है बांदा,
0: जी
2: तो बांदा जिले के सीआर पाखा गांव में लगभग एक दर्जन दलित परिवार ऐसे हैं जो पिछले 30 वर्षों से आवंटित भूमि को जोतने का प्रयास कर रहे हैं पर उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है।
0: जी जी।
2: लेखपाल और तहसीलदार के चक्कर लगाते लगाते उम्र बीत गई पर उन्होंने पट्टे पर कब्जा नहीं दिलवाया।
0: तो क्या उनकी भूमि पर दबंगों का कब्जा है?
1: जी हाँ, उनकी भूमि पर गांव के दबंगों का कब्जा है। एक दलित किसान हिम्मत कर अपनी खेत जोतने चला गया तो दबंगों के हाथों पीट कर लौटा।
0: श्याम भाई, ये तो सिर्फ एक गांव का उदाहरण है, ऐसे तो हमारे देश में हजारों गांव होंगे।
2: हाँ।
0: जहां गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को जमीन के लिए रोज प्रताड़ित होना पड़ता है।
2: बिल्कुल, कहना सही है आपका वीरेंद्र भाई। ऐसे न जाने कितने गांव हैं जबकि जरूरत यह थी कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत इन सभी परिवारों को कब्जा तो मिलता ही, साथ ही लघु सिंचाई, मेड़बंदी जैसी सहायता भी मिल जाती।
0: जी।
2: ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर करीब 10 से 20 करोड़ भूमिहीन व सीमांत किसान परिवारों की कृषि व आवास भूमि का हक मिलना बाकी है।
0: हमारे यहाँ भूमिहीन किसानों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ खास वजह है कपूर साहब?
1: इसके अलावा कई ऐसे किसान भी हैं जिन पर भूमिहीन बनने का संकट मंडरा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: इसे रोकने की नीति बननी भी जरूरी है। उपजाऊ कृषि भूमि से किसानों को वंचित होने की आशंका को कम से कम करना चाहिए। सही नीतियों से कई तरह के विस्थापन रोके जा सकते हैं।
0: इस मामले में आदिवासी बहुल इलाकों की हालत पर अगर गौर किया जाए तो लगता है कि वो बद से बदतर होती जा रही है। राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के नाम पर उन्हें विस्थापित करने की प्रक्रिया तेज होती जा रही है,
2: जबकि जरूरत यह है कि राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों से वनवासियों को हटाने के स्थान पर उन्हें वन्य जीव संरक्षण के कार्य से जोड़ा जा सके।
0: जी जी जी।
2: यदि ये समुदाय वन और वन्य जीव की रक्षा में आजीविका प्राप्त करें तो विस्थापन भी रुकेगा और पर्यावरण की बेहतर रक्षा भी हो सकेगी।
0: तो ऐसी परिस्थितियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है कपूर साहब?
1: देखिए वीरेंद्र जी, वन अधिकार कानून के अनुचित क्रियान्वयन के कारण भी अनेक वनवासियों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि ये कानून मूल रूप से आदिवासियों से हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया था।
0: जी।
1: भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था करने के साथ जो पहले से विस्थापित लोग दर दर भटक रहे हैं उनसे न्याय करना भी जरूरी है।
0: बहुत सारे किसान कर्ज के कारण भी भूमिहीन होने पर मजबूर है, उनके लिए किस तरह का कदम उठाने की जरूरत महसूस करते हैं श्याम भाई?
2: देखिए, कर्जग्रस्त होने के कारण जिन किसानों की भूमि छिन रही है उनकी खेती किसानी बचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे किसानों के भूमिहीन बनने का सिलसिला रुक सके। ऐसा काम अपने आप ही हो जाना चाहिए था बिना भूमिहीनों के दिल्ली कूच के ही।
0: एक बात ये बताइए कपूर साहब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट में किस बात का जिक्र किया गया है?
1: ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 दशक से हमारा देश 9 उदारवादी आर्थिक सुधारों के जिस रास्ते पर चल रहा है उससे एक देश में ही 2 अलग अलग देश बन गए हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन दोनों के बीच यानी अमीरों के इंडिया और गरीबों के भारत के बीच की खाई बढ़ती जा रही है।
0: जी
1: रिपोर्ट बेशक यह स्वीकार करती है कि विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो 1990 के दशक के मध्य से लेकर 2007 और 8 के बीच अल्प पोषितों की संख्या में बढ़ोतरी ही दर्ज हुई है। जाहिर है ये साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के कुपरिणामों को ही दिखाता है।
0: ताजा तरीन एक पुस्तक आई है इंडिया बनाम भारत, जिसमें विनय सिंगर साहब ने उसको लिखा है।
1: बिल्कुल
0: उसमें ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का काफी कुछ जिक्र आया है और काफी कुछ डाटा भी है जिसको मैं नहीं रख पाऊंगा अभी। एक बात ये बताइए श्याम भाई कि भारत की लगभग 2/3 आबादी जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर है, इसलिए जमीन अधिग्रहण का मामला कुछ ज्यादा ही संगीन हो जाता है, आप क्या मानते हैं?
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज अगर हर राज्य में बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहित किए जाने से किसान और मजदूर आंदोलित हैं। कई इलाकों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के इतने उग्र और हिंसक आंदोलन हुए हैं कि पुलिस को लाठियां या गोलियां बरसानी पड़ी हैं।
1: सही आप कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के सुंगूर और नंदीग्राम का भूमि अधिग्रहण विवाद आज भी लोगों को याद है। नंदीग्राम के इंडोनेशिया के सलेम समूह के रासायनिक संयंत्र के लिए जब 10,000 एकड़ भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का राज्य सरकार ने प्रयास किया तो स्थानीय ग्रामीणों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
0: जी
1: सरकार ने नंदीग्राम में लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी। पुलिस ने जन आरोष को दबाने के लिए गोलीबारी भी की जिसमें 14 ग्रामीण मारे गए और लगभग 70 जख्मी हो गए।
0: कपूर साहब और श्याम जी, जमीन अधिग्रहण का कानून काफी जटिल नहीं है और उससे पूंजीपतियों को ही फायदा होने वाला है, उद्योगों को ही फायदा होने वाला है। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, अभी हम लोग चलते हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: जी। आपको भी धन्यवाद।
2: नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है विलक्षण व्यक्तित्व राहुल सांकृत्यायन। इस वार्ता के संलग्नकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजेस।

व्यक्ति विशिष्ट के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता विलक्षण व्यक्तित्व राहुल सांकृत्यायन। इसके संकलनकर्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के ग्राम पंधा में 9 अप्रैल 1993 को महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। उनका नामकरण केदारनाथ पांडेय के रूप में किया गया था, लेकिन अपनी युवावस्था में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर अपना नाम उन्होंने राहुल रख लिया तथा अपने संस्कृति गोत्र के कारण सांकृत्यायन लिखने लगे थे। उनके विलक्षण व्यक्तित्व का आभास केवल इसी बात से हो जाता है कि वे 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। भारत के अलावा श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत और चीन आदि देशों में भी उनका आना जाना और संपर्क रहा है। अपने जीवन काल में उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकों की रचना की। उनका अंतर स्वयं में एक विश्वकोश था। हिंदी के साहित्य भंडार को उन्होंने कितना समृद्ध किया है, इस बात का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित कई साहित्य अब तक अप्रकाशित हैं तथा उनके द्वारा की गई खोजों का अब तक पूर्ण रूप से मूल्यांकन भी नहीं हो पाया है। उनके द्वारा रचित विषयों को देखा जाए तो उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, यात्रा वर्णन, कोश, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, कोई भी विषय उनसे छूटा नहीं है। सभी विषयों पर उन्होंने समान रूप से अपनी कलम चलाई है। कोई भी विषय उनसे छूटा नहीं है। उन्होंने समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। उनके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथों में उन्होंने संस्कृत और तिब्बती भाषा में प्रयोग किए। कथा साहित्य में उनके द्वारा लिखे 2 उपन्यास सिंह सेनापति और जय योद्धे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उनके द्वारा रचित कहानी संग्रहों में सतमी के बच्चे और वोल्गा से गंगा तक कहानी संग्रह बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उनके द्वारा संपादित किया गया राष्ट्रभाषा कोश एक ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने मार्क्स, स्टालिन, माओत्सेतुंग जैसी महान हस्तियों से लेकर क्रांतिकारी सरदार पृथ्वी सिंह, चंद्र सिंह गढ़वाली के अलावा असहयोग आंदोलन के अन्य साथियों की जीवनियां भी लिखी। इसके साथ साथ वैज्ञानिक, भौतिकवाद, दर्शन, दिग्दर्शन और बौद्ध दर्शन जैसी विद्वतापूर्ण पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक बेजोड़ है। उनकी यात्रा संबंधित पुस्तकें तो असाधारण रूप से रोमांचक हैं, जो पाठक को उद्वेलित कर रोमांचित करती हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास आदि उनकी पुस्तकें बेहद चर्चित हैं। यदि राजनीति के क्षेत्र में बात की जाए तो भागो नहीं बदलो और साम्यवाद क्या है जैसी पुस्तकें बहुत चर्चित हुई हैं। विज्ञान के साथ साथ उन्होंने साहित्य का इतिहास भी लिखा है। मध्य एशिया के मध्यम से उन्होंने ऋग्वैदिक आर्यों से लेकर भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक तक के भारत से सभी का परिचय कराया। तिब्बती भाषा और व्याकरण तथा संस्कृत बालोपयोगी जैसी पुस्तकों के नाम भी गिनाए जाए तो उनकी पुस्तकों की संख्या का कोई अंत नहीं है। श्रोता साथियों, राहुल जी ने श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, मध्य एशिया आदि स्थानों का भ्रमण किया। वे रूस में अनेक वर्षों तक भारतीय दर्शन के प्राध्यापक भी रहे। वे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, अंग्रेजी, तिब्बती, रूसी और चीनी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान भी थे। बौद्ध धर्म के तो वे प्रकांड विद्वान एवं व्याख्याकार थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का पाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है, जिनमें नाजिम निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटिक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राहुल जी में घूमने की प्रवृत्ति बचपन से ही रही है। तिब्बत, नेपाल, भूटान और सिक्किम से लेकर रूस और चीन की उन्होंने 5 बार यात्रा की। विश्व में इन जैसा पर्यटक और घुमक्कड़ साहित्य मनीषी संसार भर में नहीं हुआ है। उनका सारा जीवन ही एक यात्री की तरह से यायावर रहा है।
इनके नाना इन्हें शिकार तथा यात्रा की कहानियां सुनाया करते थे। इसका प्रभाव उनके जीवन पर इतना पड़ा कि वे आगे चलकर घुमक्कड़ ही बन गए। कहा जाता है कि उनके गृह त्याग के लिए उनका अति बाल्यकाल में किया गया उनका बाल विवाह भी एक कारण रहा है। अपने बाल विवाह की पत्नी को राहुल जी कभी भी स्वीकार नहीं कर सके। इस बात का एहसास उन्हें सदा पीड़ा देता रहा। यह भी कहा जाता है कि बाल्यकाल की पत्नी को त्यागने के पश्चात उन्होंने उनकी भरसक सहायता की। कुछ समय के पश्चात जब राहुल जी उनके क्षेत्र में गए तो उनकी दुर्दशा देखकर उनके पास ठहर नहीं सके। वहां से बाहर आकर उन्होंने कहा, मेरे ही कारण इस नारी की ऐसी दुर्दशा हुई है। इसके लिए वे स्वयं को जीवन भर कभी क्षमा नहीं कर सके। राहुल जी ने अपने जीवन में इसके बाद दो विवाह और किए। उनकी दूसरी पत्नी का नाम लीला था, जो एक रूसी महिला थी। राहुल जी की तीसरी पत्नी कमला जी रही हैं, जिनसे उन्हें दो संतानें प्राप्त हुईं। सन 1911 में बालक केदार के रूप में वे गृह त्याग कर छपरा पहुंचे और अगले ही वर्ष मठ में उन्हें महंत का उत्तराधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इनका सन्यासी नाम दामोदर दास रखा गया। कुछ समय पश्चात ही उनके पिताजी और परिवारजन इन्हें वापस अपने घर ले गए। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पुन छपरा पहुंचे। वहां इन्हें जिला कांग्रेस का सचिव बनाया गया। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में राहुल जी बार बार जेल भी गए। छपरा में ही इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। बाद में वे राजनीतिक क्षेत्र को भी अलविदा कहकर अपने घुमंतु और लेखक के जीवन में आ गए। इन्होंने अपने जीवन में कई क्षेत्रों के रंग देखे और उनके अनुभवों से गुजरे हैं। जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें तिब्बत जाने की अनुमति नहीं दी तो वे चुपके से भेष बदलकर तिब्बत जा पहुंचे और दुर्गम रास्तों पर चलकर ज्ञान की खोज करने लगे। अन्य ऋषियों की तरह हिमालय ने भी राहुल जी को बहुत आकर्षित किया। लंबे समय तक मसूरी, दार्जिलिंग आदि में रहने के अलावा राहुल जी विशाल हिमालय की व्यापक यात्रा कर चुके थे। हिमालय यात्रा के विषय में राहुल जी के प्रकाशित ग्रंथ हैं गढ़वाल, कुमायूं, किन्नर देश और नेपाल। इनके अतिरिक्त हिमालय के बारे में राहुल जी के कई ग्रंथ अब भी अप्रकाशित हैं। इनके आत्मकथा ग्रंथ हैं बचपन की स्मृतियां, अतीत से वर्तमान, मेरे असहयोग के साथी और जिनका मैं कृतज्ञ हूं। विज्ञान के जिन उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना राहुल जी ने की है उनमें प्रमुख है विश्व की रूपरेखा, मानव समाज, वैज्ञानिक भौतिकवाद और दर्शन दिग्दर्शन। राहुल जी ने निम्न शब्दकोशों की भी रचना की, शासन शब्दकोश, जीव रसायन शब्दकोश और प्रत्यक्ष शरीर शब्दकोश। राहुल जी की कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं बुद्धचर्या, बौद्ध संस्कृति, घुमक्कड़ शास्त्र, हिंदी काव्यधारा, अपभ्रंश काव्यधारा, संस्कृत काव्यधारा, पाली काव्यधारा, प्राकृत काव्यधारा, दोहाकोश आदि। श्रोता साथियों, राहुल जी के जीवन की वास्तविक सिद्धि उनका सबसे बड़ा सुख था। 14 अप्रैल 1963 को उनका निधन हो गया, किंतु अपनी रचनाओं और कृतियों के कारण वे अमर हो गए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था विलक्षण व्यक्तित्व राहुल सांकृत्यायन। इस वार्ता के संलग्नकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है एक मोड़ जिंदगी का। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं श्री कृष्णकांत दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

मैं शीरा अपने चाचा जी के कृषि फार्म पर बैठी हूँ। सुहानी सुबह में ही मैं यहाँ चली आई थी। वर्षा के दिन है लेकिन आकाश में बादल अधिक नहीं है। सूरज की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों को कई कई आभाई दे रही है। हवा में थोड़ी ठंडक है। मैं दूर से आते पक्षियों का कलरव सुन रही हूँ।

यहां सब कुछ भला भला सा लग रहा है मुझे, पर मैं सोच नहीं पा रही हूँ। माँ ने अचानक मुझे यहाँ चाचा जी के गांव क्यों भेज दिया? पर याद आ रहा है, माँ ने यही तो कहा था कि तुम बीएससी एजी कर चुकी हो, कुछ दिनों गांव जाओ, अपने चाचा जी की खेती बाड़ी को देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि खेती किताबों में नहीं बल्कि खेतों में होती है। मैंने यहाँ कुछ दिन रहते यही तो किया और यही पाया भी।

यहाँ खेत है, हरियाली है, यहाँ सुंदर छोटा सा फार्म हाउस है, खेत पर पानी से भरपूर दो कुएं हैं, सामने खेत के बीच एक सुंदर सी टेकरी है जहाँ सागौन और पलाश के पेड़ हैं। वैसे हमारे कृषि कॉलेज में कई परीक्षण प्लॉट थे, कई खेत थे, हरियाली थी, लेकिन यहाँ जो कुछ है वहाँ नहीं था। मैं यहाँ इसी सब को देख रही हूँ।

हेलो जी। हाँ चाचा जी, मैं शीला बोल रही हूँ। हाँ, फार्म हाउस के बरामदे में बैठी हूँ। हाँ, खेत में टेकरी के पास कुछ श्रमिक काम कर रहे हैं। जी हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहा? चाची जी आ रही हैं खेत पर? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कौन? सुरेश? अच्छा, तो वे अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है।

हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि माँ ने मुझे अपने गांव से यहाँ चाचा जी के घर क्यों भेजा है। लेकिन जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो हो भी सकता है या नहीं भी। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मैं शहर में रही एक अध्यापिका माँ की पढ़ी लिखी बेटी हूँ। मैं जानती हूँ अपनी हैसियत। मुझ में क्षमता है हर बात का सामना करने की। देखती हूँ आगे क्या होता है।

0: शीला जी नमस्कार।
1: जी कौन?
0: ये मैं सुरेश।
1: नमस्कार सुरेश जी। हाँ, चाचा जी ने मोबाइल पर आपका जिक्र किया था, पर आपके साथ चाची जी भी आने वाली थी ना? वे कहाँ रह गई?
0: जी हाँ, वे मेरे साथ ही आई हैं, लेकिन वे वहाँ टेकरी के समीप जहाँ खेत पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, वे वहाँ उनका काम देखने रुक गई हैं। वे यहाँ कुछ समय बाद ही आ पाएंगी। उन्होंने मुझसे यही कहा है, मैं वहाँ जाऊँ जहाँ आप हैं, और मैं यहाँ आ गया। यही उन्हीं का आदेश था।
1: ठीक है, ये उनका आदेश था तो बैठिए उस कुर्सी पर।
0: जी हाँ, मैं बैठता हूँ। मैं बता दूँ, आपके चाचा जी मेरे फूफा हैं और चाची जी बुआ, यानी फूफी, मैं उनका भतीजा।
1: चाचा जी ने मोबाइल पर आपके बारे में बताया था मुझे।
0: चलिए, यह भी ठीक रहा, लेकिन जब आपके विषय में मुझे बताया गया कि आपने कृषि विषय लेकर बीएससी किया है, सुनकर अच्छा लगा। देखिए ना, अजीब संयोग है, मैंने अजयपुर कृषि विश्वविद्यालय से एमएससी एजी किया है और अब गांव खेत पर रहकर वनस्पति शास्त्र में कुछ अनुसंधान करते हुए पीएचडी करने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: जानकर मुझे भी खुशी हुई सुरेश जी, लेकिन आपने कहीं नौकरी करने की बजाय घर गांव रहना क्यों पसंद किया? मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ।
0: शीला जी, मेरी अपनी कुछ विशेष और अलग मान्यताएं हैं। नौकरी करने वाले या कृषि ज्ञान बांटने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मेरे अपने गांव के किसान खेती की सही उन्नति के लिए किसके पास जाएंगे, इसीलिए मैंने निश्चय किया है मैं अपने गांव के अपने ही कृषि फार्म पर काम करूंगा, जिसे पहले पिताजी ने संभाला, बाद में मेरी पढ़ाई के दौरान जिसे माँ संभालती रही। उसी पवित्र धरोहर पर मैं पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगा, कुछ नए रिसर्च, कुछ नए अनुसंधान करूंगा। और शीला जी, मैंने यही कुछ किया है। मैंने रासायनिक खेती के बजाय जैविक खेती करने के लिए कुछ विशेष काम किए हैं, अनुसंधान किया है, और मैंने भरपूर सफलता पाई है। गांव में एक उदाहरण की तरह मैंने इस काम को शुरू किया है, अब उसने विस्तार पा लिया है।
1: मुझे भी खुशी हुई सुरेश जी कि आपने शुभ दिशा में काम करना शुरू किया। हमारे कॉलेज में भी इस दिशा में कुछ काम, कुछ अनुसंधान हुए हैं, लेकिन मुझ जैसे कई लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होता है, और मेरा अपना भी कुछ मानना है कि रसायनों पर आधारित वैज्ञानिक खेती जितनी कृषि उपज देती है, उतनी जैविक खेती भला कहाँ दे पाती है? इसमें हम कितने सत्य के नजदीक है?
0: मैं प्रशंसा करता हूँ शीला जी आपके प्रश्न की। हाँ, मैं सिर्फ इतना जरूर जानता हूँ, मेरे अपने गांव के अधिकांश किसान भाई मुझे देख जैविक खेती पर काम कर रहे हैं, मैं उनकी सहायता करता हूँ। गांव चले तो देखेंगे, वहाँ वे किसान भाई अपने खेतों से अच्छी उपज ले रहे हैं,

0: किसान भाइयों ने इसका लाभ भी उठाया है, इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिली है। और अचरज न हो तो एक बात बता दूं, इस कारण हमारा गांव शहद गांव के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है।
1: ये जानकर मुझे भी भला लग रहा है। सही भी तो है, जहाँ शहद होगा वहाँ मिठासी तो होगी।
0: और मुझे भी यह जानकर खुशी हुई कि इस वातावरण में आपने भी हमारे गांव की मिठास को स्वीकृति दी।
1: जो सच है सो है, और सच को स्वीकृति मिलनी ही चाहिए।
0: शीला जी, मैं अपने में संकोच सा महसूस कर रहा हूँ।
1: किस बात का संकोच?
0: आपसे मिला और ज्ञान की बातें बघारना शुरू कर दिया, और वह भी कृषि के बारे में।
1: आप चिंता ना करें, मैं भी कृषि स्नातक हूँ और इन बातों को गहराई से जानती हूँ।
0: मेरे लिए भी इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने उस व्यक्तित्व के सामने यह बात कही जिसे उस विषय की जानकारी है।
1: पर सुरेश जी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस दिशा में माँ ने ही मुझे प्रेरित किया था कि मैं एक कृषि विशेषज्ञ बनूं, और मैंने खुशी खुशी ये विषय ले लिया और अब तो मैं इस विषय में बेहद रुचि लेने लगी हूँ।
0: मेरी भी यही मान्यता बन रही है। जबकि भारतीय युवतियाँ हर क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, उन्हें तो इस कृषि प्रधान देश के कृषि क्षेत्र में भी निश्चित रूप से रुचि लेनी चाहिए।
1: तो सुरेश जी, मैंने भी कुछ यही सोचकर इस विषय को चुना और इसी दिशा में काम कर रही हूँ।
0: और आगे क्या कुछ करने की इच्छा है आपकी?
1: सोचती हूँ कि MSc तो कर ही लूँ एग्रीकल्चर में, फिर नौकरी तो करना ही है।
0: आप नौकरी को भला इतना जरूरी क्यों मान रही हैं? यह सब कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
1: अब मैं आपसे क्या कहूँ, हर इंसान की अपनी कुछ विवशताएं होती है, और वैसी ही कुछ विवशताएं मेरे साथ भी है।
0: अगर आप अन्यथा न समझे तो कहिए मुझसे, वे भला कौन सी विवशताएं हैं आपकी?
1: नहीं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपनी माँ की एक अकेली बेटी हूँ और अब एक रिटायर्ड अध्यापिका है। मेरा अधिकांश बचपन पितृविहीन रहा और हम बस दोनों ही हैं। मैं माँ को कहाँ अकेली छोड़ू। वैसे इस गांव में ये हमारा ही परिवार है। माँ प्रारंभ से ही पिताजी के साथ शहर ही रही। चाचा जी ने कहा भी था, पर माँ ने मेरी पढ़ाई की वजह से शहर छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती थी। और फिर ये भी है कि मैंने अभी तक के जीवन को उन्हीं की स्नेह छाया में बिताया है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से किसी भी हालत में पृथक नहीं होना चाहती।
0: खैर शीला जी, आप स्वयं में बौद्धिक हैं, समझदार हैं, आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती हैं। मैं सिर्फ इस संदर्भ में इतना ही कहूंगा, मैं भी अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ, उसी ने मुझे पाला पोसा। हाँ, पिता कोई 20 हेक्टेयर जमीन छोड़ गए थे, उसमें आधी सिंचित थी, अब वह पूरी सिंचित है और मैं उसी में खेती कर रहा हूँ। मुझे अपनी खेती और अपना गांव प्रिय है।
1: इससे भली बात क्या होगी। मेरी कामना है कि आपका ये गांव और कृषि प्रेम हमेशा कायम रहे।
0: चलिए, इसी बहाने आपसे परिचय हुआ, कुछ चर्चा हुई, अच्छा लगा मुझे।
1: और मैं भी यहाँ देर से अकेली बैठी थी। अच्छा होगा अब हम यहाँ से चले, जहाँ चाचा जी है उनसे भी पते आएंगे।
0: बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा शीला जी कि हम उन्हें वहाँ से लेते हुए घर चलें? मेरे पास कार है, गांव पहुँचने में समय नहीं लगेगा।
1: तो चलिए।

0: अरे घर के लोग हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए?
1: इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है सुरेश जी, मैं इस रहस्य को जान चुकी हूँ। हम इस वर्तमान युग में जी रहे हैं जिसमें कई नई परंपराएं उभरी है और ये सब उसी परिदृश्य के भीतर है।
0: जी हाँ शीला जी, इसे मैं भी जानता हूँ।
1: मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूँ, माँ और चाचा जी की आपस में चर्चा हो चुकी है, माँ ने मुझे भी सब कुछ बता दिया है और मैंने भी अपने मंतव्य स्पष्ट कर दिए हैं।
0: जी हाँ, मुझे भी यह मालूम था, मैंने भी अपनी राय इस घर के लोगों को बता दी है।
1: मैंने आपके विषय में जो कुछ जाना मुझे भला लगा। याद रखे, अगर मैं माँ को साथ लिए शहर त्याग दूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं माँ

0: वहाँ अकेली नहीं छोड़ सकती, बस हम दोनों एक दूसरे की सहारा हैं।
1: आपने भी यह जान लिया कि मेरे परिवार में मैं हूँ, माँ है। वे इतनी ममतामयी हैं, इतने उदार विचारों की हैं कि गांव की महिलाएं उन्हें देवी के रूप में मानती हैं।
0: ठीक यही कुछ मेरी अपनी माँ में भी है। आप जब उनसे मिलेंगे ना तो बिल्कुल यही कुछ महसूस करेंगे।
1: देखिए ना शीला जी, कैसा संयोग है, दोनों में माँ है, एक के पास बेटा है और एक के पास बेटी। अगर दोनों का बेटा बेटी मिल जाए तो सोचिए कितनी खुश होंगी दोनों।
0: और फिर दोनों ही इस कृषि प्रधान देश में कृषि की जानकार विशेषज्ञ।
1: जी हाँ शीला जी, मैं इसे आपकी स्वीकृति मान लूँ क्या?
0: हाँ, मैंने माँ से बात कर ली है।

0: शीला जैसी पत्नी पाकर मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। गांव को दो कृषि वैज्ञानिक मिले, मैंने और समृद्धि पाई, और मुझे मिला है दो माओं का स्नेह और शीला का असीम प्यार।
1: मेरा सौभाग्य था, सुरेश से आकस्मिक मुलाकात हुई खेतों की हरियाली के बीच, और आज मेरा जीवन सचमुच हरा भरा है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, दो माओं की स्नेह छाया मुझ पर है, और वो स्नेह छाया मुझे हर क्षण आनंद देती है। सुरेश का असीम प्यार मेरे जीवन की पूर्णता है। संपूर्ण गांव कृषि वैज्ञानिक के नाते हमें स्नेह देता है। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि जीवन के इस मोड़ ने मुझे संपूर्ण सार्थकता दी। प्रभु का असीम आभार, उनका वंदन।

अभी आपने नाटक सुना एक मोड़ जिंदगी का। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे पूजा केलकर और विजय पंडित।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था एक मोड़ जिंदगी का, और इसके लेखक एवं निर्देशक थे श्री कृष्णकांत दुबे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा और उनके साथ है श्री टी के डोंगले एडवोकेट। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात स्वतंत्र कुमार ओझा के साथ।

0: रेडियो वेरिटास एशिया के हमारे सभी श्रोताओं को ओझा का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत आमंत्रित हैं श्री टी के डोंगले एडवोकेट, और इनसे हम चर्चा करके जानेंगे कि जीवन को किस रूप में इन्होंने जिया है, क्या क्या संघर्ष किए हैं और आज ये किस मुकाम पर हैं। डोंगले साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले ये बताइए कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और इंदौर कब से हैं आप?
1: मैं मूल रूप से धामनोद जिला धार का निवासी हूँ। मेरा जन्म 1936 में हुआ, उस समय धार राज्य था। मेरा परिवार, मेरे पिताजी सम्मानीय व्यक्ति थे उस कस्बे के। उस समय वहाँ पर केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी, वह मैंने पूरी की। उसके बाद मंडलेश्वर मुझे जाना पड़ा हाई स्कूल के लिए, वहां से हाई स्कूल पास किया और उसके बाद बड़वानी गया। बड़वानी से मैंने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद मैं इंदौर आया 1956 में। यहां मैंने होलकर कॉलेज में कॉमर्स विभाग में एडमिशन लिया और बी कॉम एम कॉम किया। उसी समय यहां गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज बन गया, तो कॉमर्स सेक्शन अलग होने से होलकर कॉलेज से हम यहां आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में आ गए और यहां से मैंने LLB किया। और उसी समय मेरी सर्विस लग गई प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में। तो उस समय प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में 50 कर्मचारी काम करते थे। विभाग की गतिविधियां बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन मैं सौभाग्य से उस अच्छे विभाग में चला गया। उस विभाग में सर्विस ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य यही था कि वहां मैं सेवा भाव से कार्य कर सकूंगा, साधारण लोगों को, कर्मचारियों को मैं कुछ लाभ दे सकूंगा। अन्य विभागों की गतिविधियां मेरे हिसाब से ठीक मुझे नहीं लगती थी। दूसरी बात यह थी कि ट्रांसफर होने की संभावना दूसरे विभागों में ज्यादा होती थी, इसलिए मैंने बड़े पद भी नहीं लिए और केवल इस विभाग को ही प्रीफर करके मैंने ये विभाग कर्मचारी भविष्य निधि विभाग ज्वाइन किया। 52 में इस विभाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये योजना बनाई और कर्मचारी भविष्य निधि कानून पास किया और नवम्बर 1952 से ये योजना पूरे भारत में लागू है। ये योजना केंद्र सरकार की थी और केंद्र सरकार ने इसका संचालन करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया हुआ था। 52 में केवल 6 इंडस्ट्रीज पर यह योजना लागू थी। उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और अभी वर्तमान में इसमें 200 से अधिक इंडस्ट्रीज या संस्थाएं आ गई हैं जो इसके अंतर्गत ली गई हैं। शुरू में इसमें कई शर्तें थी जिसमें बहुत से कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, लेकिन वर्तमान में इसको बहुत अच्छा कर दिया गया है, कई सुधार करते गए हैं और अब ये योजना जिस संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं उस पर सभी करीब करीब गतिविधियों पर ये योजना लागू हो गई है।
0: यानी सरकारी नौकरियों के अलावा जितने भी उद्योग के क्षेत्र हैं, निगम हैं, वहां सबको ये भविष्य निधि योजना का लाभ मिलता है।
1: ये योजना सरकारी विभाग की जो इंडस्ट्रीज हैं जो इसकी इस योजना के अंतर्गत ली गई हैं उन पर भी लागू होता है। इसके अलावा जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या और कई भी संस्थाएं हैं, वो उस केवल जो लिस्ट है इंस्टीट्यूशंस की उसमें अगर आती हैं तो ये योजना लागू हो जाती है। और मुख्य रूप से अब केवल एक ही शर्त रह गई है जिसको 20 कर्मचारी जहां भी काम करते हों उस पर ये योजना लागू हो जाती है। और एक बार योजना लागू होने के बाद ये हमेशा चलती रहती है जब तक वो संस्थान जीवित है, चाहे वो नाम परिवर्तन कर ले या मालिक परिवर्तन कर ले। अच्छा। फिर भी संस्था को इस योजना का अनुपालन करना ही होता है।
0: अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये एक कर्मचारी के लिए ये योजना कितनी सुविधाजनक है, क्या होता है इसमें मूल रूप से?
1: यह योजना सोशल स्कीम के अंतर्गत ली गई है, सोशल बेनिफिट्स के हिसाब से, और शुरू से ही ये कर्मचारियों के ही हित में ली गई है। इसका कर्मचारी को लाभ ये मिलता है कि उसको जो अपना स्वयं का अंशदान वो देता है, जो आजकल 10% हो चुका है, उतना ही कर्मचारी के मालिक को भी देना होता है और ये सारा पैसा उस कर्मचारी के खाते में जमा होता है। लेकिन बाद में इसको सिर्फ प्रोविडेंट फंड का अंशदान के अलावा पेंशन योजना भी लागू कर दी गई है। उस योजना में 1.16% कर्मचारी की योगदान में से जाता है और उतना ही मालिक को देना पड़ता है, मालिक के अंशदान से जाता है, तो उससे एक पेंशन योजना लागू हो गई है। उसके अंतर्गत जब कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या निकाला जाता है या उसकी मृत्यु होती है, उस हालत में उस योजना से पेंशन भी मिलती है। पेंशन का जो रकम होती है वो बहुत अधिक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बड़ा सहारा उस परिवार को मिल जाता है। कर्मचारी अगर अपनी नौकरी छोड़ दे और फिर बाद में कोई दूसरी संस्था ज्वाइन कर ले, तो वो अमाउंट ट्रांसफर भी हो जाता है और वो कंटिन्यूटी मिलती है सर्विस की, उसकी लगातार जो उसकी सर्विस है उसको पूरा गिना जाता है। इस तरह इसको लाभ मिलता है। तो मृत्यु की हालत में तो इंश्योरेंस भी मिलता है, पेंशन भी मिलती है और प्रोविडेंट फंड का अंशदान, दोनों भाग मिलते हैं, मालिक का और स्वयं कर्मचारी का।
0: तो श्रोताओं, आप सब ये बात सुन रहे होंगे कि ये योजना कितनी उपयोगी है आज के जीवन में। पहले जब से ये लागू हुई है तो इसमें आपको अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए आपको इसका हित ही होगा, आपको इसका लाभ ही मिलेगा, आपको भी, आपके परिवार को भी। तो डोंगले साहब, ये बताइए कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए वहाँ, कोई अनुभव आपका, कुछ किस तरह का आपका कामकाज होता था?
1: देखिए, मैं इस विभाग में केवल लिपिक के हैसियत में, उच्च श्रेणी लिपिक के हैसियत से भर्ती हुआ था और उसके बाद मेरे तीन तीन साल में प्रमोशन होते गए, कुछ डायरेक्ट प्रमोशन हुए, कुछ एग्जामिनेशन से प्रमोशन हुए। मैं 76 से अकाउंट्स ऑफिसर बना और अकाउंट्स ऑफिसर बनने के बाद में मेरे ट्रांसफर बॉम्बे हुए, बॉम्बे से नागपुर भी हुआ, मैं फिर पंजाब में चंडीगढ़ भी रहा, वहां से फिर मेरा ट्रांसफर इंदौर वापस हुआ, यहां से फिर मुझे आखिरी में जयपुर ट्रांसफर किया गया। उस समय मेरी सर्विस 25 साल की हो चुकी थी, तो मैंने स्वेच्छा से डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ले लिया।
0: क्योंकि इतने समय में आप इतनी जगह घूम करके आए, तो फिर कहीं न कहीं ये लगता है कि ये बार बार बार बार स्थान परिवर्तन होने से असुविधा भी होती है।
1: विशेष कारण ये था कि विभाग में मेरी छवि कुछ अलग थी और वो छवि थी निष्कलंक, इसलिए कई लोगों को मेरे कार्यशैली सुहाती नहीं थी और इसी कारण से मेरे ट्रांसफर होते रहते थे।
0: अच्छा अच्छा
1: जब मैं ट्रांसफर पर जाता था तो मैं ये सोचता था कि जो मेरा सिद्धांत है उस पर अगर मैं चलूंगा तो ये कठिनाइयां तो मुझे सहन करनी ही है। तो मैं, मेरे परिवार को कभी डिस्टर्ब मैंने किया नहीं, उनको हमेशा, बच्चों को इंदौर में रखा और मैं हर जगह अकेला जाता रहा, अपना कार्य करता रहा। कार्य में कई बार बाधाएं आती थी, कई दुष्ट लोगों के साथ भी काम करना पड़ा है जो स्वयं बेईमान थे, लेकिन मुझे बेईमानी नहीं करनी थी इसलिए मुझे परेशान किया जाता था। तो एक बार चंडीगढ़ में जब मैं था तो यहां मेरे बच्चे को गंभीर चोट आई और उस चोट के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे यहां से टेलीफोन मिलने पर मैं तुरंत यहां आने के लिए निकला। अब मैं वहां से अम्बाला आना होता था, अम्बाला से ट्रेन पकड़नी होती थी, तो वहां जो कमिश्नर थे वो उस समय ऑफिस में नहीं थे, तो मैं अपना एक लेटर छोड़ के वहां से चला आया। उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी कि बिना परमिशन कार्यालय छोड़ के चला गया। इस प्रकार मुझे बार बार परेशान किया जाता था। जब ये योजना जैसे ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की आई तो मैं डिपार्टमेंट का पहला कर्मचारी था जिसने इस योजना का लाभ लिया और तुरंत यहां से इस विभाग से विदाई ले ली। रिटायरमेंट के बाद मैंने कुछ समय तो प्रैक्टिस की, उसमें सभी संस्थाओं को लेटर भेजा अपनी ओर से कि किसी भी कर्मचारी को या कोई विधवा महिला हो उसको अगर विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा हो या अनावश्यक परेशान किया जा रहा हो तो मुझे संपर्क करें, मैं निशुल्क अपनी सेवाएं उनको दूंगा।
0: तो इसी कारण आप एडवोकेट भी बने और फिर आपने केसेस भी लड़े लोगों के।
1: इस प्रकार मैं कर्मचारियों के तो सेवा करता ही था, लेकिन अब चूंकि मैं सेवा से रिटायर हो चुका था तो मुझे अपने घर को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने प्रैक्टिस शुरू की और प्रैक्टिस में मैं कर्मचारियों के सिवा मालिकों की सेवा में भी रहता था। मालिकों को भी कई तरह से, गलत तरीके से परेशान किया जाता था विभाग द्वारा, तो उनकी मैं सहायता करता था और नॉमिनल फीस चार्ज करता था। वो डिपार्टमेंट में कमिश्नर जो होते हैं, हेड होते हैं विभाग के हर एक राज्य के, तो कमिश्नर को काफी पावर दिए हुए हैं, इसलिए उस पावर का सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग ज्यादा होता था। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए मालिक स्वयं तो कुछ कार्य कर नहीं सकता, तो वकील की जरूरत होती है, लेकिन वो मेरे साथ, उसमें भी मुझे ये लगा कि मैं लेन देन कर नहीं सकता, इसलिए मुझे वो काम भी ज्यादा समय तक करने की मेरी इच्छा रही नहीं, मैंने वो छोड़ दिया और अब मैं वर्तमान में डिपार्टमेंट के जो मेरे साथी हैं सेवानिवृत्त हुए हैं या उनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को पेंशन मिल रही है, उन लोगों का मैंने एक अपना संगठन 18 साल से बना रखा है, उसका मैं अध्यक्ष हूं और उनकी सेवा मैं करता हूं। विभाग के जितने भी कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको पूरा लाभ मिले ये मैं देखता हूं। इसके अलावा मैं समाज हमारा जो है, जिस समाज से मैं आता हूं, उस समाज के लिए मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया हुआ है। उस चैरिटेबल ट्रस्ट से जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में तकलीफ होती है, पैसा जिनके पास नहीं है और अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं, उनको मैं सहायता करता हूं और वो सहायता बिना किसी शर्त के होती है। केवल ये शर्त है कि वो इंदौर का निवासी हो, इंदौर में किसी कॉलेज में अध्ययन कर रहा हो और उसके जो पिछली परीक्षा दी है उसमें 60% से अधिक उसके मार्क्स आए हों, और उसको यदि आवश्यकता है तो हम समाज के उस ट्रस्ट से उन लोगों को मैं सहायता करता रहता हूं।
0: तो श्रोताओं, आपने डोंगले साहब के जीवन की ये गाथा सुनी, जहां तक उन्होंने कितना संघर्ष किया जीवन में, जगह जगह अपनी नौकरी के कारण अपने बच्चों को यहां छोड़कर घूमते रहे, परेशानियां उठाते रहे और अपने परिवार को इस योग्य बनाया कि वो समाज में उन्हीं की तरह, उनकी छवि की तरह ही कुछ करके दिखाए। और समाज सेवा के रूप में भी अभी आपने इनसे सुना ही है कि ये अपने समाज के सदस्य हैं और एक चैरिटी इन्होंने शुरू की है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे पढ़ें, बच्चे कुछ बन सकें। तो डोंगरे साहब, अब अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में?
1: मेरे परिवार में मेरी पत्नी शारदा डोंगले हैं, उसके बाद मेरी बड़ी बेटी है मीना गौर, उनका नाम है, वो सेवानिवृत्त उनके पति हो चुके हैं, वो इंदौर में ही यहाँ रहती हैं। और उसके बाद मेरे तीन बेटे हैं, बड़े राजेंद्र हैं, वो इंश्योरेंस के सर्वेयर हैं, दूसरे राजेश हैं, वो कुछ अच्छी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं, तीसरे सबसे छोटे मेरे बेटे का नाम संजय है, उनके सियागंज में होलसेल शुगर की दुकान है। इस तरह तीनों बच्चे अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, परिवार में सब कुछ भगवान की दया है, सब अच्छी तरह से रहते हैं। और
0: क्योंकि ये सब आपके परिश्रम का फल है, मैं तो यही समझा हूँ आपकी सारी बात सुन के। अब हम थोड़ा सा आज की स्थिति के बारे में बात करें कि आज जो तकनीकी रूप से, टेक्निकली जो प्रगति हमारे देश ने की, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक छलांग जैसी, जैसे हम एकदम से एक जंप लेते हैं, इस तरह से एक परिवर्तन आया है कि मॉल्स का, विज्ञापनों का, एड्स का, फिल्मों का, टेलीविजन सीरियल्स का, मोबाइल का, यानी ये इस तरह का एकदम से परिवर्तन आया है। तो निश्चित रूप से ये सब परिवर्तन समाज के हित के लिए है, लेकिन इसके साथ ये भी देखने में आ रहा है कि ये अपने साथ कुछ ऐसी विसंगतियां, कुछ ऐसी विषमताएं लेकर के आए हैं जो हमारे देश को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। अपराध, हिंसा, आतंक, आप क्या सोचते हैं?
1: जहां तक मेरे अपने विचार हैं, मैं समझता हूं कि पहले हम लोग संस्कृति और संस्कार पर ज्यादा विश्वास करते थे और उसी के आधार पर हमारा अपना जीवन शैली होती थी। आज जो परिवर्तन पिछले कुछ 10-15 सालों में तेजी से परिवर्तन आए हैं, उससे हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तो खड़े हो गए हैं, लेकिन बेसिक जो हमारी जमीन है जिस पर हम चलते हैं, उसका हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर काफी कुछ खो गया है, मानवीय मूल्यों में काफी गिरावट आई है, और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम मानवीय मूल्यों की शिक्षा को हर शिक्षा संस्थान में चलाएं और उसका लाभ बच्चों को मिले, उनमें अच्छे संस्कार आए और आगे की पीढ़ी हमारी उन अच्छे संस्कारों के साथ जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसको भी साथ ले, लेकिन उन संस्कारों को ना भूले, और तभी हमारा देश ज्यादा अच्छी तरह आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि हम जब तक अच्छे संस्कारों को अपनाएंगे नहीं, तो उनके साथ हम जो प्रगति है उसका मेल मिलाप करने की कोशिश भी करेंगे तो भी हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम गलत दिशा में जाने की संभावना हमारी ज्यादा होगी।
0: तो ये कौन करेगा? ये करना तो चाहिए, लेकिन इसको कौन करेगा?
1: मुख्य रूप से समाज में परिवर्तन के लिए हम हर बात के लिए शासन को दोष देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शासन को दोष देना उतना आवश्यक नहीं है जितना हम अपने आप को दोष दें।
0: बिल्कुल ठीक।
1: पहले हम अपने परिवार को सुधारें, स्वयं सुधरें और उस अच्छे परिवार से आशा करें कि वो अच्छे कार्य करें, हमारी मूल संस्कृति का ध्यान रखें और मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें।
0: अब अंत में डोंगले साहब आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं?
1: जहां तक जीवन का सवाल है, मैं विश्वास करता हूं कि परमात्मा ने जो कुछ मुझे दिया उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं और मैं समाज से, परिवार से, अपने बच्चों से यही अपेक्षा करता हूं कि वे अपने हिसाब से संस्कारों को, समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें और समाज का भला हो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना।
0: श्रोताओं, अभी आपने श्री टी के डोंगले एडवोकेट से उनकी जीवन गाथा और उनके बारे में जाना। तो डोंगले साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा और उनके साथ थे श्री टी के डोंगले एडवोकेट। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन www.hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आरवीए ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अंतरा करवड़े एवं आस्था उपमन्यु, और शीर्षक है युवा और तेज यातायात।

0: साथियों नमस्कार। युवा और विकास कार्यक्रम में आपके सामने मैं अंतरा करवड़े
1: और मैं आस्था उपमन्यु हाजिर हैं। आज हम लेकर आए हैं युवा और तेज यातायात।
0: बिल्कुल साथियों, मुझे लगता है आस्था, जब ये विषय हमारे साथियों ने सुना होगा तो उनके कानों में एक आवाज सुनाई दे रही होगी तेज रफ्तार से जाने वाली बाइक की, बदलने वाले गियर्स की और खूब तेज चलने वाली कार की, है ना साथियों?
1: बिल्कुल, साथ ही हॉर्न्स के जो शोर उसके
0: और मुझे लगता है कि मेरा ये साथी मुझसे आगे क्यों निकल गया, क्यों ना मैं उससे आगे जाऊं या फिर साथ में जो गर्लफ्रेंड बैठी है उसको शायद कोई शर्त लगाई होगी कि नहीं आज मैं इतने किलोमीटर इतने कम समय में आके ही बताऊंगा,
1: आके ही बताऊंगा,
0: गलती होती है।
1: बिल्कुल साथियों, आज बात कर रहे हैं रफ्तार की, एक ऐसी रफ्तार जो आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बनती जा रही है।
0: बिल्कुल साथियों, दरअसल जब मनुष्य युवा होता है उसके मन में ऊर्जा आती है और बहुत सारे सपने, बहुत सारी सोच और बहुत सारा जिसे कह सकते हैं पूरा क्षितिज नए अवसरों से भरा आपके सामने होता है। और यदि हम वैज्ञानिक बात करें, हम सपनों से उतर करके और जमीनी धरातल पर आ जाए तो होते हैं आप में हार्मोनल परिवर्तन। आपका कोई दोष नहीं है यदि आप चाहते हैं बहुत तेजी से बाइक चलाना, यदि आप चाहते हैं कि कॉलेज में सबसे स्टाइलिश बाइक आपकी हो, यदि आप चाहते हैं कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं और कार की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है तो फिर आपसे आगे तो कोई कार हो ही नहीं सकती।
1: ये बिल्कुल सही कहा अंतरा जी आपने कि आज के हमारे जो युवा साथी हैं उनकी सोच जो है वो उसमें भी रफ्तार आ चुकी है, कहना होगा। लेकिन या आज विशेषकर हम जो बात कहना चाहेंगे वो ये कि युवा साथियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो रफ्तार, जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे बाइक की हो चाहे कार की हो, वो रफ्तार उनके लिए कितनी सही है या उस रफ्तार का वास्तव में क्या स्तर होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। कहा जाता है ना साथियों, जिंदगी की रफ्तार उतनी ही रखें जितनी कि आप उसे किसी भी समय नियंत्रण लगा सकें, उसे ब्रेक कर सकें। तो साथियों, यही नियम मुझे लगता है कि हमारी बाइक या कार ड्राइविंग पर लागू होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही। और आपको नहीं लगता कि आजकल के युवाओं के जो शौक है या जो लत कहना चाहिए, आदतें कहना चाहिए, वो इस यातायात के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा, कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं कहना चाहिए पर एक अहम हिस्सा बनती जा रही है, मतलब उनके वो एक वजह बनती जा रही है इस तेज रफ्तार की।
0: साथियों, आपको एक बात बताएं, आपको बड़ा अच्छा लगता है जब आप बहुत तेजी से कहीं से गुजरते हैं, आपको देखकर कुछ लोग एकदम से आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कौन गुजर गया, और आपको बड़ा अच्छा लगता है उस समय। और जब आपसे ये पूछा जाता है कि इतनी तेज गति से गाड़ी चला करके आपको क्या मिला, आपके पास उत्तर होता है कि यदि हम युवावस्था में ये सब नहीं करेंगे तो क्या हम 60 साल के बूढ़े हो जाएंगे तब हम बाइक चलाएंगे।
1: ये बिल्कुल सही कहा। लेकिन वास्तव में जो जवाब है वो क्या हमारे युवा साथी वो जवाब दे सकते हैं कि इसके पीछे बुनियादी कारण है क्या, क्यों युवा इतने ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि गाड़ी तेज रफ्तार में हो?
0: मुझे ऐसा लगता है आस्था कि जब कोई भी पक्षी उड़ना सीखता है तब उसके पास अपने पंख होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो हवा को बहुत तेजी से काट कर और आगे बढ़ जाना चाहता है, उसे एक नई शक्ति मिलती है। और आप ही सोचिए, यदि उस शक्ति को हवा का तेज बहाव मिल जाए तो उसे कितना अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही हमारे युवा साथियों के साथ होता है कि जब उनके सपने बहुत तेजी से, मन जितनी तेजी से आगे बढ़ता है मुझे लगता है वो उसी रफ्तार से खुद भी आगे जाना चाहते हैं, और तकनीक ने उन्हें बाइक जैसी या फिर जिसे कहते हैं टर्बोचार्ज इंजन जैसी सुविधा दे दी है, तो क्यों ना वो अपने सपनों को पंख लगाएं, वो बहुत तेजी से आगे जाएं। लेकिन साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से आगे जाने से आपको जो भी कुछ हासिल होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है इस ऊर्जा को आप सकारात्मक दिशा में क्यों नहीं लगाते।
1: यहाँ आकर अंतरा जी आपने एक बहुत ही अहम बात हमारे युवा साथियों के लिए कही है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम में ऊर्जा है तो बेहतर होगा कि हम ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है साथियों कि हम अपने दोस्तों को देखते हैं, कोई एक बहुत ही धनाढ्य तबके का है, उसके पास उसके या कहना होगा उसके परिवार के पास इतना पैसा है कि उसे महंगी महंगी गाड़ियां मिल जाएं या दूसरे अन्य साधन मुहैया करवाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी उसी स्तर तक पहुंच जाएं। कई बार ऐसे में अंतरा जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे युवा साथी भटक भी जाते हैं, मात्र अपने साथियों को देख करके, जब वो देखते हैं कि उनके पास इतने अच्छे साधन है, उसे देखकर युवा साथी हमारे कई इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि चोरी जैसी वारदातें होना, मात्र इसलिए ताकि वो भी उनके स्तर तक पहुंच जाए, उनके शौक भी उनके इतने बड़े स्तर पर आ जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। इसे यदि हम मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें आस्था, तो इसे कहते हैं पीयर प्रेशर। हमारे आसपास के जो हमारे दोस्त हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डाला जाना, नशा भी कोई आदमी जनरली पीयर प्रेशर में ही करने लगता है, वो धूम्रपान भी इसी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि कोई घर में उसका पिता बताता होगा कि चलो बेटा आज से हम सिगरेट पिए, ऐसा कभी नहीं होता।
1: ठीक
0: होता यही है कि आप दोस्तों में बैठे हैं, क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम हमारे लिए, दोस्तों के लिए एक सिगरेट पी सको? आदमी शुरू कर देता है, फिर उस चंगुल में से छूट नहीं पाता। साथियों, यही बात होती है जब आप रफ्तार की बात करें, हम वापस अपने विषय पर लौटें, तो रफ्तार की अगर बात करें, हम उस ऊर्जा को अगर आप सही दिशा में लगाएं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको किसी जगह पर जल्दी पहुंचना है, आपको अगर किसी को रक्तदान करना है, तब आपकी ये रफ्तार बहुत काम आएगी। यदि आप वास्तविक तरीके से किसी मोटोक्रॉस मीट में भाग ले रहे हैं, तब ये रफ्तार बहुत अच्छे से काम आएगी। यदि आप किसी निर्जन स्थान पर अपने स्टंट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं, तब वाकई कमांडोज के हिसाब से आपकी ये रफ्तार, आपकी ये हिम्मत बहुत काम आएगी।
1: अंतरा जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो भी सकारात्मक रूप में इस रफ्तार को इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारे युवा साथी करें। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये भी उठती है कि आखिर इस रफ्तार के पीछे कारण क्या है, वास्तव में कारण क्या है। हम युवाओं से पूछने जाएंगे तो निश्चित रूप से जो आपने कहा कि बस हम अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन वास्तव में इसके पीछे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, अगर जो साथी पीयर प्रेशर की आपने बात कही वो तो है ही, उसके अलावा कई बार परिवार की तरफ से भी हमारे युवा साथियों को इतनी ज्यादा छूट मिल जाती है, चाहे अनाप शनाप पॉकेट मनी कह लीजिए आप उससे, या कोई और साधन, शायद जरूरत न हो उनकी, लेकिन सिर्फ उनकी इच्छा है, तो इच्छा, महज इच्छा पूर्ति के लिए परिवार में कोई भी साधन उन्हें मुहैया करवाया जाता।
0: और मुझे ऐसा लगता है आस्था, आपने जो बात कही उसी से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि परिवार द्वारा छूट देना, या फिर कई बार ये होता है साथियों, यदि हम नशाखोरी की भी बात करें, तो रफ्तार के कारण जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं आस्था, उसमें से मुझे लगता है लगभग 50-60% होती है शराब के नशे में।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब आप नहीं चाहते हैं कि आप इतनी रफ्तार पर जाएं कि जो रफ्तार आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए, आप चाहते हैं कि सामने से वाहन आ रहा है, आप ब्रेक लगाकर स्वयं को रोक लें, लेकिन स्थिति इतनी नियंत्रण से बाहर हो जाती है कि आप उससे टकराए बिना रह ही नहीं सकते।
1: और कुल मिलाकर हमारे युवा साथियों को मिलता क्या है, वो खुद का भी नुकसान करते हैं और बेवजह किसी और मासूम को भी उनकी इस हरकत का नुकसान पहुंचता है।
0: बिल्कुल पहुंचता है। और जिस तरीके से शराबखोरी इन दिनों बढ़ रही है साथियों, अब आप फिर कहेंगे कि हमें उपदेश नहीं चाहिए, तो साथियों ये उपदेश नहीं है। दरअसल मुझे तो ये लगता है कि आप चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, आप यदि खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं है।
1: ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक चीज और अंतरा जी यहां मैं जोड़ना चाहूंगी, जो हमने अभी जिक्र किया, बालक हो चाहे आप, आपको नहीं लगता कि आज के वक्त में इस रफ्तार के लिए 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं?
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जो हम मतलब युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं,
0: किशोर है।
1: हाँ, किशोर युवा जो है हमारे, उनकी उनमें इस बात को लेकर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, उनमें उत्साह भी बहुत है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि इन दिनों हम ये देखते हैं कि पहले के जमाने के जो व्यक्ति होते थे, वो जब खुद 12-13-14 साल के होते थे, तब उन्हें घर में टेलीविजन नजर आता था। वो जब करीब कॉलेज जाने को होते थे, तब उनके घर में कार आया करती थी। लेकिन आजकल तो बच्चा जन्म के साथ ही एसी कार में ही घर आता है, तो उसे संघर्ष मालूम ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में बिना संघर्ष के वो जैसे आसपास के लोगों को देखता है, वैसे वो बड़ा हो जाता है, और उसकी अपेक्षाएं भी ऐसी होती हैं जैसे वो उसका हक है। इसका अर्थ है कि यदि माता पिता ने उसे 12th में जाकर के, या फिर फर्स्ट ईयर में, या फिर आजकल तो 10th-11th से ही बाइक होती है लड़कों के पास, तो यदि उसे 10th में कोई बहुत अच्छी मोटर बाइक दिलवाई गई है, तो ये तो उसका हक है। वो कोई धन्यवाद नहीं देना चाहता अपने माता पिता को, वो तो सिर्फ ये कहना चाहता है कि हाँ, इस तरीके से मैं अपने दोस्तों के बराबर हो जाऊंगा। तो ये जो सोच है, ये सोच थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि आपका हक होना, माता पिता द्वारा आपको दिलाया जाना, आप स्वयं देखिए, आप स्वयं क्या है, क्या आप किसी के काम आ रहे हैं? आपका स्वयं का जीवन कितने सारे लोगों के योगदान का प्रतिफल है, आप उसे कब चुकाएंगे?
1: ये बिल्कुल सही कहा। और एक बात और भी है कि अगर माँ बाप आपके लिए कुछ करते हैं, तो सामान्यतः हमारे युवाओं की सोच इस तरह से हो जाती है कि ये तो उनका फर्ज है, लेकिन अगर उनका आपके लिए कोई फर्ज है, तो साथियों आपका भी अपने माता पिता के लिए उतना ही फर्ज बनता है। जरूरी नहीं है कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने आपकी मनपसंद बाइक दिलाई है या कार दिलाई है, तो आप महज उसका गलत इस्तेमाल करें। आपके लिए जरूरी है, हो सकता है परिवार वालों को साथ घुमाइए, अपने साथ लेके जाइए, सिर्फ गर्लफ्रेंड को बिठा के घूमने के लिए आपकी बाइक नहीं होती।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये है कि युवा साथियों आपके भी अपने सपने हैं, आपका भी अपना जीवन है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि जब अभी आपको ये चीजें शायद समझ में न आए, लेकिन आगे चलकर जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके माता पिता कितना सोचते हैं आपके बारे में। जरूरी नहीं है कि आप अपने माता पिता से बिल्कुल आदर्श एक बालक की भांति ही व्यवहार करें, आप भी युवावस्था में हैं, आपका अपना जीवन है, अपनी व्यक्तिगत आपके जीवन के कुछ लम्हे हैं, उनका आनंद जरूर लीजिए, लेकिन आपको एक अपनी सीमा रेखा खुद को बनानी होगी। क्योंकि बहुत सारी बार ये होता है आस्था कि जब कोई व्यक्ति 35 या 40 की उम्र में पहुंचता है ना, तब सामान्यतः उसके मन में यही अवसाद होता है, काश मैं युवावस्था में अपना व्यक्तित्व रख पाता, अपने दोस्तों के सामने खुद किसी चीज को मना कर पाता, तो आज मैं एक बेहतर इंसान होता।
1: बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जड़ों में हमारे युवा साथियों को बताना चाहेंगे सिर्फ नियंत्रण है
0: जी,
1: कि आपका खुद पर कितना नियंत्रण है, किसी भी मामले में हो, चाहे विशेषकर आज हम रफ्तार की बात कर रहे हैं उन मामलों में।
0: बिल्कुल, तो साथियों रफ्तार आपके जीवन की, आपकी प्रगति की रफ्तार जरूर तेज होनी चाहिए, आपके मार्कशीट में अंकों के आगे बढ़ने की रफ्तार जरूर तेज होनी चाहिए, आपके जितने दोस्त हैं उनकी संख्या की रफ्तार बहुत तेज बढ़नी चाहिए, और आपके रिश्तों में जो गर्माहट है आपके माता पिता के साथ, अपने संबंधियों के साथ, और आप जो दोस्ती निभाने का आपका जज्बा है उसकी रफ्तार में बहुत ज्यादा इजाफा आपके होना ही चाहिए।
1: बिल्कुल, कुल मिलाकर सकारात्मक रफ्तार आपके जीवन में
0: होनी चाहिए। और साथियों जैसे कि हम यदि बात करें, हमारे साथी ये भी कह सकते हैं कि हमारी यातायात व्यवस्था ही इस प्रकार की है कि यदि हम रफ्तार से नहीं चलेंगे तो हम मंजिल बिल्कुल पा नहीं सकेंगे, हम मंजिल से दूर रह जाएंगे। तो साथियों यातायात को लेकर के यदि हम बात करें तो ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, इस व्यवस्था में भी थोड़े से सुधार की गुंजाइश है।
1: गुंजाइश है अंतरा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आज का युवा जो है वो जाकर शक्ति रखता है कि सत्ता पलटने की शक्ति रखता है वैसे तो, लेकिन वास्तव में इम्पोर्टेंट वो होगा कि जब हमारे युवा साथी खुद को बदलने से शुरुआत करें।
0: बिल्कुल,
1: अगर ट्रैफिक सिग्नल खराब है, लाइट्स नहीं है, कई बार हम देखते हैं कि किसी सिग्नल पर लाइट नहीं है, चाहे जो अपनी मर्जी से किसी भी साइड का वाहन आगे बढ़ा लेता है, तो ये सही नहीं है। आप एक स्वविवेक से किसी भी कार्य को करें, आपको लगता है कि हाँ अब एक तरफ की साइड रुक गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह के बहुत ही छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी तरफ से इस व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं।
0: बिल्कुल ला सकते हैं। और मुझे एक चीज और भी लगती है आस्था, वो ये है कि जब किसी भी मतलब जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तब बड़े आदर्श तरीके से बड़ा होता है, है ना, करीब 8, 9, 10 साल, 12 साल तक मान लीजिए सत्य के प्रति उसका विश्वास होता है, वो अपने माता पिता की सारी बातें मानता है, धीरे धीरे वो साइड ट्रैक होना शुरू होता है,
1: वो एज होती है हम जिक्र करेंगे 13 से 19 स्पेशल, यानी टीन एज।
0: और मुझे ये लगता है आस्था कि यदि कोई बच्चा अपने आदर्शों पर से हटता है या व्यवस्था पर से उसका विश्वास हट जाता है तो उसके लिए हम सभी जिम्मेदार नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: क्योंकि आप ये बताएं, हम अब उदाहरण यदि हम यातायात का ही लें, आप किसी बड़े के साथ में जा रहे हैं, आप 13-14 वर्ष के हैं और आपके पिताजी ने या फिर आपके अंकल ने सिग्नल तोड़ दिया और उनका चालान बनाने की बजाय वो भी पुलिसमैन को कुछ रुपए देते हैं, वो भी हंसते हुए खीसे निपोरते हुए वो ले लेता है, मामला रफा दफा हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आपने क्या संस्कार दिए अपने युवा होते हुए बच्चे?
1: बिल्कुल
0: को?
1: ये बात बिल्कुल सही कही है आपने, विशेषकर जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले कि कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से ही उस चीज को छूट मिल जाती है जिस वजह से हमारे युवा विशेषकर इस यातायात जैसे गंभीर मुद्दे को इतने हल्के ढंग में ले लेते हैं।
0: और ऐसा करके अगर आगे चल के वो युवा बहुत ज्यादा स्पीडिंग करता है या वो बाइक की मांग करता है या फिर बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चलाता है और आप उसे टोकते हैं कि ये करना सही नहीं है, तो वो कहता कुछ नहीं है लेकिन उसके मन में ये बात जरूर होती है कि मैंने देखा है कि सच क्या है, मुझे मालूम है कि आधार क्या है। ऐसे में आप मुझे सिर्फ ऊपर, मतलब होता ये है कि जब किसी भी परिवार में जब माता पिता हैं और उनके बच्चे करीब 14 से लेकर 18 के बीच में हैं, ऐसे में उस परिवार में आदर्श कभी होता ही नहीं।
1: अंतरा जी, हो सकता है कई युवा साथी जो इस वक्त हमें सुन रहे हो वो ये बात जानते हैं कि वो खुद ऐसे नहीं है, लेकिन वो अपने साथियों को इस तरह से देख रहे होते हैं, तो उन्हें जरूरी है कि वो अपने युवा साथियों को इस बारे में समझाएं, बजाय उन्हें उकसाने के किसी गलत चीज के लिए, उन्हें समझाएं कि उनके लिए सही क्या हो सकता है।
0: बिल्कुल, तो हम यहीं पर संपन्न करते हैं आज के युवा और विकास कार्यक्रम के इस अंक को। अंतरा करवड़े
1: और आस्था उपमन्यु का नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था युवा और तेज यातायात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे अंतरा करवड़े और आस्था उपमन्यु। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता।

आगे बढ़ रही है। सब आश्चर्यचकित हैं, वो भी इसलिए कि ये प्रगति कुछ वर्षों के ही बीच हुई है। ये भी कि विज्ञान के किसी क्षेत्र में इस गति से प्रगति नहीं हुई जितनी कि संचार क्षेत्र में हुई। यही नहीं, इस क्षेत्र में प्रतिदिन एक न एक आश्चर्य, एक न एक चमत्कार प्रकट हो ही जाता है। उनकी झलक चकाचौंध पैदा कर देती है और हम सोचने लगते हैं कि ये प्रगति किस बिंदु पर जाकर थमेगी, नहीं मालूम। और मन करता है जो इस संचार व्यवस्था को विस्तार दे रहे हैं उन्हें किस तरह बधाई या धन्यवाद दिया जाए। साथियों, क्या कभी इस बात को भूला जा सकता है कि इसके पीछे भी अपना एक समय विशेष, अपना एक विशेष इतिहास, अपनी एक विशेष भूमिका रही है जो इसके विकास में एक तरह से महत्वपूर्ण शक्ति का काम करती रही है। अगर ये कहा जाए कि भारत ने भी विश्व के साथ संचार क्रांति में अपनी एक विशेष भागीदारी भी निभाई है, महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, तो भी गलत नहीं है। वैसे संचार क्रांति के कोई एक दो स्रोत नहीं, कई कई स्रोत हैं जिनके माध्यम से इसे एक समग्र रूप मिला है और उन्हीं के जरिए उन्होंने विस्तार पाया है। इस संदर्भ में स्मरण आता है कि भारत ने संचार क्रांति के विकास में जो योगदान दिया, अपनी भूमिका निभाई, इस रूप में कई नाम हमारे सामने आते हैं और इनमें एक महत्वपूर्ण नाम है श्री उषानाथ सेन का। हम गर्व कर सकते हैं कि आज भारत संचार क्रांति में एक विशेष भूमिका में खड़ा नजर आता है। इस क्षेत्र में वो भी अब अग्रणी देशों की गिनती में गिना जाने लगा है। लेकिन क्या उस इतिहास को भुलाया जा सकता है कि श्री सेन ने इस क्षेत्र को एक मजबूत नींव दी, उसे अपने मजबूत कांधों पर उठाया और एक विशेष ऊंचाई दी। हाँ, ये ऐतिहासिक सत्य है कि श्री उषानाथ सेन ने भारत में संचार क्षेत्र को एक विस्तृत आधार दिया। लेकिन ये सब कुछ सहज नहीं हो गया, इसके लिए उन्हें जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा। उसका भी अपना इतिहास है। इसके लिए उन्होंने जो अथक श्रम किया वो सब कुछ असामान्य ही था। हाँ, सर उषानाथ सेन ने, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत को एक देशी समाचार संस्था का महत्वपूर्ण उपहार दिया। जब ये सब कुछ हुआ तब देश परतंत्र था, तब भारत अपनी स्वाधीनता पाने की कोशिश कर रहा था। उस समय ये काम किसी भी रूप में आसान नहीं था, लेकिन श्री सेन ने उस समय इस कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी आस्था के साथ अपने हाथों में लिया था। यही नहीं, उन्होंने उस समय पत्रकारिता को एक आदर्श की तरह स्वीकारा। इस विषय में उन्होंने यही कहा था कि मैं अनजाने अनचाहे इस क्षेत्र में आ गया था, लेकिन जब मैंने उसमें प्रवेश कर ही लिया तो पूरी शक्ति और क्षमता से मैंने इस पेशे को अपनाया और उसके उद्देश्य को सार्थक बनाने की कोशिश की। साथियों, जब हम श्री सेन की जीवन यात्रा पर दृष्टि केंद्रित करते हैं तो लगता है कि तपस्या और उत्तरदायित्व के प्रति अनन्य निष्ठा मनुष्य को किस ऊंचाई तक ले जाती है। श्री उषानाथ सेन उसी के ज्वलंत उदाहरण थे। श्री सेन का जन्म सन 1880 के करीब पश्चिमी बंगाल के 24 परगना के एक गांव जरीफा में हुआ था। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था वो अपने में एक सामान्य सा परिवार ही था। यूं तो वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन जब उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई तब गणित और संस्कृत जैसे विषय उन्हें हिमालय लगने लगे थे। इसीलिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वे अपने भाई के पास शिमला चले गए। एक समय जब उषानाथ सेन ने पत्रकारिता के विषय में विचार पूछे तब उनका उत्तर था कि प्रारंभ में मुझे लगता था कि पत्रकारिता बड़े लोगों का काम है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस योग्य बन पाऊंगा, पर वे आगे चलकर इस क्षेत्र में योग्यतम व्यक्ति सिद्ध हुए। सर उषानाथ सेन के विषय में यही कहा गया था कि उनकी जीवन कहानी भारत में प्रथम देशी समाचार संस्था के प्रणेता की कहानी है, जिस समाचार संस्था को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई कहा गया, उसके जन्मदाता श्री उषानाथ सेन ही थे। इस संस्था के जन्म के समय इस समाचार संस्था को एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाता था। श्री सेन ने भारत की इस प्रथम समाचार

0: संस्था के लिए जितना श्रम किया उसे विकसित करने के लिए जो संघर्ष किया तथा उसके लिए जिन संचार साधनों को विस्तार दिया वो भी अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। श्री उषानाथ सेन द्वारा स्थापित वो समाचार संस्था में अपने बदले रूप में कितना विस्तार पाया इसे सभी लोग जानते हैं। उसमें कई कई तरह के संचार साधन प्रयुक्त किए गए, उसका विवरण तक देना आसान नहीं है। यूं भी इस विषय में सब परिचित हैं। सर्वप्रथम श्री उषानाथ सेन मात्र एक कॉपिस्ट ही बने थे, फिर वे उस युग के प्रसिद्ध समाचार पत्र संवाददाता श्री केशव चंद्र रॉय के संपर्क में आए, जो उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र हिंदू, इंडिया डेली न्यूज और अमृत बाजार पत्रिका तथा कई अन्य समाचार पत्रों के सुयोग्य संवाददाता की श्रेणी में गिने जाते रहे थे। श्री सेन की पत्रकारिता यात्रा एक कहानी की ही तरह से है। वे प्रारंभ में प्रतिदिन एक कप चाय पर इंडियन डेली में प्रूफ रीडर रहे, फिर द टेलीग्राफ के उप संपादक रहे। इस तरह वे आगे बढ़ते गए और जब उन्हें श्री केशव चंद्र राय का ठीक ठीक संरक्षण मिला तब वे सन 1920-21 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के अवसर पर श्री राय के सहायक संवाददाता के रूप में काम करने लगे, जिसे श्री सेन ने बड़ी सफलता के साथ संपन्न किया और उसके बाद वे हिंदू और ट्रिब्यून पत्र के संवाददाता बने। एक दिन श्री केशव चंद्र राय ने उनके सामने अपनी एक संवाद एजेंसी के प्रारंभ का संकल्प व्यक्त किया। उस समाचार संस्था ने जब अपना काम करना शुरू किया तो उसके बाद तो वो लगातार विस्तार पाती गई। एक समय श्री उषानाथ विश्व प्रसिद्ध संचार एजेंसी रॉयटर के संवाददाता भी बन गए। उन्होंने इस क्षेत्र में जो काम किया उसकी वजह से बाद में वे एपीआई के चेयरमैन नियुक्त हुए। उनके काम से न केवल भारतीय राजनीतिज्ञ ही प्रसन्न थे बल्कि तत्कालिक गवर्नर जनरल ने भी उनका सम्मान किया था। उन्हें तब सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। सर उषानाथ ने जिस प्रथम संचार सेवा की नींव रखी उसे विस्तार दिया, उसे विश्व में स्थान दिलाया और उसकी विश्वसनीयता बढ़ाई, भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। साथियों, आज तो कई कई संचार सेवाएं, समाचार एजेंसियां काम कर रही हैं। उन सबका अपना विशाल संचार तंत्र है, लेकिन जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम उसकी नींव रखी उन्हें याद न करना किसी भी तरह उचित नहीं होगा। कहते भी तो हैं कि अच्छे मन वाले इंसान जिस भी काम को अपने हाथों में उठाते हैं वे निश्चित ही उसमें सफलता पाते हैं, उसे पूरी ऊंचाई देते हैं। श्री उषानाथ सेन ने इस बात को अपने कामों से पूरी तरह चरितार्थ किया था। श्री उषानाथ के विषय में ये भी कहा गया था कि वे दृढ़ सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, निस्वार्थ सेवा ही उनका अपना स्वभाव था। उन्होंने भारतीय संचार व्यवस्था के विकास के लिए जो अथक श्रम किया वो अपने आप में अद्भुत था। यही नहीं, उन्होंने कई मानव सेवी संस्थाओं की भी सहायता की थी। किसी ने ये भी कहा था कि श्री उषानाथ सेन का जन्म ही भारत की संचार व्यवस्था के विकास के लिए हुआ था। इस तरह उन्होंने देश और समाज को विकास देने में अपना सहयोग दिया, इसलिए वे अपने युग के महान व्यक्तियों में गिने गए और वही आदर भी पाया। अगर ये कहा जाए कि भारत में संचार क्रांति ने जो विकास पाया, जो ऊंचाइयां पाई हैं, श्री सेन उस भवन की नींव के पत्थर ही तो थे। अप्रैल सन 1960 श्री उषानाथ सेन के अवसान की तिथि, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपने परिश्रम से भारत में जिस संचार क्रांति की नींव रखी उसे हमेशा याद किया जाएगा। साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था वे थे भारत में संचार क्रांति के एक प्रणेता, और इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी आस्था उपमन्यु। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन www.hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सोनाली जंगरा। दोस्तों, अभी की सभा 9 से 10 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण, पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हरमन बंडोड SVD और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है क्रिसमस और धर्म निरपेक्षता। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। देश भर में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मेरी क्रिसमस कहकर एक दूसरे को ईसा मसीह के जन्मदिन की बधाई दी। मुंबई में बॉलीवुड सितारे जहां त्योहार की उमंग में डूबे रहे, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी गिरजाघरों में प्रार्थनाएं सभाई हुई और पश्चिमी तथा स्थानीय केरल की गूंज सुनाई दी। राष्ट्रीय राजधानी में प्रभु ईसा के भक्तों के अलावा अन्य धर्म के लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। दिल्ली के सभी गिरजाघरों में सोमवार की रात से ही चहल पहल रही। यहां के स्कूलों में कई दिनों पहले से ही छात्र सांता क्लाउस और छात्राएं परियों की वेशभूषा में दिखाई देने लगी थी। यहां के कई फार्म हाउसों और होटलों में इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं व्यावसायिक राजधानी मुंबई में बॉलीवुड कलाकारों ने अपने परिवार व दोस्तों के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई और देश में शांति व समृद्धि की कामना की। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने ट्विटर के जरिए क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। लता ने कहा कि क्रिसमस यह सोचने का अवसर है कि हमने दूसरों को कितना प्यार दिया। अभिनेता शाहरुख खान ने सभी बच्चों व किशोरों के अच्छे जीवन की कामना की। प्रभु देवा ने प्रशंसकों से अपने प्रियजनों के साथ यह पर्व मनाने के लिए कहा। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने कहा कि क्रिसमस पर उनके बचपन की यादें ताजा हो गई है। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी शुभकामनाएं दी। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप खुद अपने सांता होंगे और अपनी व अपने प्रियजनों की सभी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। इसके अलावा रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल ने भी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए सभी के लिए खुशहाली शांति और समृद्धि की कामना की। श्रेयस तलपड़े कुणाल कपूर व रवीना टंडन ने भी अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं दी। फिल्मकार अनुराग बसु और अभिनेता रणबीर कपूर और वरुण धवन ने मुंबई के एक अस्पताल में कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ अलहदा अंदाज में क्रिसमस मनाया। रणबीर ने कहा कि उन्हें टाटा मेमोरियल अस्पताल में बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने में खूब मजा आया। अस्पताल के बाहर आकर रणबीर ने कहा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, यह एक अच्छी पहल है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने से बेहतर कुछ नहीं होता, मुस्कान सबसे जरूरी चीज है। अस्पताल में कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए होप 2012 के नाम से एक क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बसु की फिल्म बर्फी में मूक बधिर बच्चों का किरदार निभाने वाले रणबीर ने कहा, मैं इन बच्चों को यही संदेश देता हूँ कि हर हाल में खुश रहो। इस मौके पर रणबीर और वरुण ने बच्चों के साथ नाच भी किया। पड़ोसी राज्य गोवा, केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव तथा तटीय राज्य केरल के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं के साथ कैरोल गीत गूंजते रहे। कई लोग सांता क्लाउस बनकर उपहार बांटते नजर आ रहे थे। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर सहित अन्य स्थानों पर सोमवार रात 12 बजते ही कैरोल गीत गूंज उठे और प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशियां छा गई। भोपाल में प्रभु ईसा के जन्मदिन समारोह में जहांगीरबाद स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च में बिशप लियो कार्नेलियो ने पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ प्रभु ईसा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। प्रभु ईसा के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ लोगों ने एक दूसरे को केक भी खिलाया। उधर समूचे पूर्वोत्तर राज्य में क्रिसमस की धूम रही। समारोह का सिलसिला सोमवार रात से ही शुरू हो गया। गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। प्रभु ईसा के जन्म की खुशी में पश्चिमी और स्थानीय क्रिसमस कैरल गाए गए। गौरतलब है कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में 50 लाख से अधिक ईसाई रहते हैं। आर्च बिशप डोमिनिक जलाला ने सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की मध्यरात्रि पर विशेष प्रार्थना करवाई। उन्होंने लोगों से लौकिक प्रेम व भाईचारा बनाए रखने की अपील की।
गौरतलब है कि मिजोरम, नागालैंड और मेघालय के गिरजाघर पूर्वोत्तर राज्यों के जीवन और संस्कृति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्रिसमस मनाए जाने के पीछे एक पुरानी कहानी है। इसके मुताबिक एक बार ईश्वर ने गैब्रियल नामक अपना एक दूत मरियम नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत गैब्रियल ने मरियम को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात सुनकर मरियम चौंक गई, क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। सो उसने गैब्रियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो गैब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। समय बीता और मरियम की शादी योसेफ नामक युवक के साथ हो गई। ईश्वर के दूत गैब्रियल जोसेफ के सपने में आए और उसने कहा कि जल्द ही मरियम गर्भवती होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसके होने वाली संतान कोई और नहीं स्वयं प्रभु ईसा है। उस समय योसेफ और मरियम, जो कि वर्तमान में इसराइल का एक भाग है, में रहा करते थे। उस समय नाजरेत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार जनगणना के लिए योसेफ और मरियम को बेथलेम, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है, जाना पड़ा। उन दिनों वहां बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे योसेफ और मरियम को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफी थक हारने के बाद उन दोनों को एक अस्तबल में जगह मिली और उसी जगह पर आधी रात के बाद प्रभु ईसा का जन्म हुआ। अस्तबल के निकट कुछ गड़ेरिये रात में अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहे थे। वहां ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उन गड़ेरियों को प्रभु ईसा के जन्म देने की जानकारी दी। गड़ेरिये उस नवजात शिशु के पास गए और उसे नमन किया। प्रभु ईसा जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरे गलीलिया में घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलता को दूर करने के प्रयास किए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। प्रभु ईसा के सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्होंने अंत में प्रभु ईसा को काफी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला। लेकिन प्रभु ईसा जीवन पर्यंत मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था तभी उन्होंने यही कहा कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कीजिए क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर यानी प्रभु ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस को आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाजारवाद ने भी इस पर्व के प्रचार में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि भी बन गया है। मित्रों, क्रिसमस उम्मीदों और खुशियों का त्योहार है। ईसा मसीह का जीवन और उनके उपदेश आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज भी अमीरी गरीबी, जातिवाद और सामाजिक विसंगतियां समाज में मौजूद है। जब हम अपने आसपास नजर डालेंगे और गरीब व लाचार लोगों के दुख दर्द को समझेंगे और प्रभु ईसा की तरह अपनी कोशिशों से उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाएंगे, तभी हमें क्रिसमस की वास्तविक खुशियां मिलेगी। नमस्कार।

दोस्तों, अभी हमने सुना कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हरमन बंडोड SVD और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज़।

दोस्तों अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आज प्रस्तुत है वार्ता निर्णय क्षमता और महिलाएं। बहनों, आज के नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में हम उस बात को लेकर चर्चा करेंगे जिसको लेकर कई बार आपके काम की गति धीमी पड़ जाती है, चाहे घर में रहकर खाना बनाना हो या बाजार जाकर शॉपिंग करना, अपने जीवन के सपनों को यथार्थ के धरातल पर उतारना हो या फिर करना हो अपने बच्चों के भविष्य का फैसला। इन सभी में अहम भूमिका निभाती है आपकी निर्णय क्षमता। आप अपने आप को परख कर देखिए, क्या आप जल्दी से सोचकर कुछ भी निर्णय ले लेने वालों में से हैं, या फिर आप किसी न किसी बहाने से काम को टालती रहती हैं, जिससे या तो समय के हिसाब से निर्णय हो जाए या फिर कोई और ही आपके स्थान पर निर्णय लेने का एक काम कर ले। हम में से अधिकांश महिलाएं छोटे छोटे निर्णय लेने में भी घबराती हैं या फिर किसी की मदद चाहती हैं। बहनों, कई बार ये आदत विचित्र परेशानियों को जन्म देती है। अब मिसेस अहलूवालिया को अपने घर में बिजली की फिटिंग करवानी थी। जिस समय इलेक्ट्रीशियन सारा सामान लेकर आया, श्रीमान अहलूवालिया गए हुए थे 15 दिन के दौरे पर। अब श्रीमती जी को इन सब कामों से आज तक कोई वास्ता नहीं पड़ा था। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन को कहलवा दिया कि 15 दिन बाद आइए, तभी काम हो सकता है। अब इतने दिनों तक तो कोई ऐसे कामों के लिए रुकने से रहा। नतीजा ये हुआ कि श्रीमान जी ने आने के बाद उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और बिजली का काम किसी दूसरे आदमी को बुलाकर ज्यादा दाम चुकाकर करवाना पड़ा। इसी तरीके के हालात हम सभी के सामने आ खड़े होते हैं जब कभी कोई चीज खरीदनी हो। आभा और शोभा दो बहनें हैं, एक ही घर में ब्याही गई हैं। स्वाभाविक है कि कोई भी तीज त्योहार या शादी ब्याह हो तब लेन देन की जिम्मेदारी इन दोनों पर हुआ करती थी। अब आभा हमेशा ही इस बात को लेकर पति से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। चाहे अपनी मौसी को साड़ी देनी हो, बच्चों के लिए कपड़े लेने हो या दीपावली पर घर की सजावट का सामान। वहीं शोभा अपने पति को हफ्ते भर पहले ही बता देती थी कि उसे कितने रुपए चाहिए, फिर नियत समय पर अपनी ओर से खरीदे गए उपहार करीने से पैक कर आयोजन में चल देती। एक ओर जहां अंतिम समय तक आभा अपनी खरीदारी और पैकिंग में ही उलझी रहती, उसी प्रकार शोभा के उपहार, उनकी पैकिंग और उसकी खुद की सजावट भी सबकी तारीफें पाती। बहनों, बात तो सही है, हम जब चाहे और जितनी चाहे उतनी परिपक्वता ला सकते हैं। अब आभा का मत ये था कि वो पति से पूछे बिना कुछ भी इसलिए नहीं करती क्योंकि कोई भी गलत चीज आ जाए तो उसे कुछ सुनना ना पड़े। लेकिन बहनों, गलतियां तो सभी से होती हैं। आखिर आप अपने निर्णय लेकर भी तो पति की मदद ही करेंगी। अक्सर हम देखते हैं महिलाएं किसी पारिवारिक निर्णय की बात हो, संपत्ति की खरीद बिक्री का काम हो या फिर किसी आयोजन के लिए व्यवस्था करने की बात हो, अपने हथियार सबसे पहले डाल देती हैं। उनका सबसे पहला वाक्य होता है, हमें तो इन सब में कुछ समझता ही नहीं। लेकिन जब आपसे कुछ पूछे बिना घर के निर्णय हो जाते हैं, खरीदारी और लेन देन भी निपटा दिया जाता है, तब वे मुंह फुलाकर बैठ जाने में भी पीछे नहीं रहती कि हमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अब जब आपने पहले ही ये कह दिया कि आपको कुछ भी पता नहीं, तब ये शिकायत क्यों? अब विनीता ने काफी सोच समझकर अपनी छोटी बेटी का दाखिला एक स्कूल में करवाया। उसने इससे पहले काफी स्कूलों में जाकर पूछताछ की और ये पाया कि विज्ञान विषय की पढ़ाई इस स्कूल में सबसे अच्छी होती है। वो अपनी बेटी को वैज्ञानिक बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसने पाया कि उसकी बेटी की रुचि विज्ञान के स्थान पर गणित में ज्यादा है और स्कूल में गणित की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब विनीता ने अपना निर्णय बदलकर बेटी का स्कूल बदलने में भी देर नहीं लगाई। हम में से यही बात बहनों कई महिलाओं पर लागू होती है। आपकी पीढ़ी की बहुओं पर ये नियम लागू था कि आप ससुराल में साड़ी पहने, लेकिन नए जमाने की कामकाजी बहुओं को यदि पंजाबी सूट पहनकर काम करने में ज्यादा आसानी है
तब आप ही को उनके हित में निर्णय लेकर उन्हें ये छूट देनी चाहिए। यदि आप अपने पुरखों के निर्णयों की दुहाई देंगी तो आने वाले समय में विद्रोह भी आप ही को झेलना होगा। आजकल जब नौकरी पेशा महिलाओं का प्रतिशत तेजी से बढ़ता जा रहा है, समय की मांग है कि महिलाएं अपने निर्णय क्षमता को लेकर सजग हों। कहा भी जाता है कि त्वरित निर्णय लेकर उस पर अमल कर लेने वाला व्यक्ति सोच विचार कर समय निकल जाने के बाद निर्णय लेने वाले व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान है। आज की महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अपने परिवार के वरन अपने जीवन के निर्णय भी स्वयं ले। आपकी नौकरी से आपको बहुत अच्छा वेतन मिल रहा है, लेकिन इस बीच आपका बेटा पढ़ाई में पिछड़ रहा है क्योंकि आपके पास उसे पढ़ाने का समय नहीं है। अब इस समस्या को सिर्फ पतिदेव के साथ बांटना ठीक है, लेकिन किसी कम समय की नौकरी के लिए आवेदन करना, साक्षात्कार देना या अन्य समझौते करना, ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं। एक दिन विशाखा ने घर आकर अपने पति से सीधे कहा, मैंने आज अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। चौंक कर उसके पति ने न सिर्फ उसे डांटा वरन घर के खर्चों का हवाला भी दिया। विशाखा ने सीधे सीधे बताया कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है वहां पर बेईमानी से पैसा दबाया जाता है, रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनाई जाती है और गैर कानूनी काम भी होते हैं। ऐसे माहौल में वो काम करने में सहज नहीं है। विशाखा चूंकि एक अच्छी कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, उसने अपने घर में ही प्रोग्रामिंग की सेवाएं देने का व्यवसाय प्रारंभ किया और दो ही वर्षों के बाद आज विशाखा अपनी पहली नौकरी और अपने पति के वेतन से भी ज्यादा धन कमाती है। घर पर रहकर अपने बच्चे और सास ससुर का ध्यान रखती है, वो अलग। इस प्रकार के निर्णय तो बहनों आपको स्वयं ही लेने चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी क्षमताओं के विषय में तो आप स्वयं ही जानती हैं। अब शालिनी का ही किस्सा लीजिए। उसने घर पर ही बैठकर कुछ करने की गरज से अपने पति के समक्ष दो विकल्प रखे, एक तो झूला घर चलाने का या फिर योग की कक्षाएं चलाने का। पतिदेव को लगा कि शालिनी का मन बहल जाएगा, इसलिए उन्होंने निर्णय सुना दिया कि तुम झूला घर चलाओ। अब शालिनी ने कभी नन्हे मुन्नों को संभाला हो तब न, आए दिन वो बच्चों पर खींचती, उनके रोने की आवाज से उसे सिर दर्द होता और बार बार के सवालों से वो हैरान हो जाती। अब पति से पूछा था इसलिए वो खुलकर कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो पहले ही अपने पति से कहती थी कि नन्हे बच्चों को संभालने का उसे कोई अनुभव नहीं है और वो तो योग की कक्षाओं में ही ज्यादा सहज महसूस करेगी, तो ये स्थिति नहीं बनती। तो तैयार हो जाइए, अपने बच्चों की पढ़ाई हो या

दोस्तों, अभी हमने सुना कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा WhatsApp नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आरवीए ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड नंबर है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहे और सुनते रहे सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, मन दर्पण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता कहता है मन दर्पण। इसके लेखक है श्री कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुत करता है आस्था उपमन्यु। जी हाँ, ये मन दर्पण है जिसमें आप अपने को आसानी से देख और पहचान सकते हैं। ये भी सही है कि इसमें आप अपना चाहें तो सही मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें आप दूसरों की परछाइयां भी देख सकते हैं। लेकिन याद रखें, उसमें उनका मूल्यांकन आप शायद ही सही कर पाए। अपने मन दर्पण में आप अपने को कहीं अधिक तथा सही पहचान पाएंगे। साथियों, एक समय की बात, मैं स्वयं अपने मन दर्पण में देख रहा था, तब मुझे कुछ विशेष ध्वनियां सुनाई दी। याद है उन ध्वनियों में मुझे जो कुछ भी कहा जा रहा था, उसे कभी अपने युग के एक महान चिंतक ने कहा था, और वो केवल एक वाक्य की ही बात थी, जिसमें कि उनका कहना था, जहां भी लोग अपने कर्तव्य को अंजाम देने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे करते हैं, वहां स्वयं साहस उपस्थित होता है। और मित्रों, उनके इस कथन को आप किसी भी रूप में तौल लीजिए। ये एक ऐसा कथन है जिसमें आप 100% सत्यता पाएंगे। सभी जानते हैं साहस एक गुण है, और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि वो किसी आपातकाल के समय ही प्रकट हो, बल्कि वो व्यक्ति के दैनंदिन जीवन कार्यों के बीच भी प्रकट हो सकता है। वो व्यक्ति जीवन का एक अनिवार्य अंग भी बन सकता है। सामान्य रूप से ये भी देखने में आता है कि करीब करीब हर व्यक्ति में साहस होता ही है, पर ये भी सही है कि कुछ में वो अपने सही समय ही प्रकट होता है और कुछ में शायद नहीं भी। लेकिन इसे भी न भूला जाए कि वो किसी विशेष यानी समाज या राष्ट्रीय संकट के समय या फिर किसी विशेष नाटकीय परिस्थितियों में ही प्रकट हो, ये भी जरूरी नहीं है। साथियों, इसी संदर्भ में एक अन्य विद्वान का अभिमत है, साहस मन के उद्वेलन की स्थिति कतई नहीं है, उसका रूप शांत भी होता है। हाँ, ये सही भी है, शांत साहस भले ही लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित न भी करे, पर वो अपने में निश्चित ही महत्वपूर्ण है, इसे स्वीकारा जाना चाहिए। मित्रों, साहस की ये एक किस्म ऐसी है जिसे कुछ साहसी व्यक्तित्व अपने अंतर में लिए चुपचाप रहा करते हैं, पर हाँ, जिस समय उन्हें इसे प्रकट करना होता है, प्रकट करते ही हैं। क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते कि कोई विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की तरह मौज मजे से दूर रहकर अपने मूल लक्ष्य अध्ययन की दिशा में पूरी तरह संलग्न रहकर जहां यश प्राप्त करता है, वहीं वो समय आने पर अन्य क्षेत्रों में भी अपना कर्तव्य दिखाने में नहीं चूकता? क्या आप इसे उसका संयमित साहस नहीं कहेंगे? आप उन पालकों के साहस को किस श्रेणी में रखेंगे जो हर स्थिति में अपने बालकों को अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें शैक्षणिक सुविधाएं देने का साहस जुटाते हैं, उसके लिए स्वयं कष्ट भले ही भोग लें, पर बच्चे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देते? वर्तमान के इस तनाव भरे भौतिकवादी युग में भी वे सरल शांत जीवन गुजारने का निरंतर प्रयास करते हैं। क्या आप उस आस्थावादी इंसान के साहस की प्रशंसा नहीं करेंगे जो अनास्था भरे इस युग में भी, जबकि हर कहीं मानवीय मूल्यों का निरंतर ह्रास होता जा रहा है, तब प्रभु में सतत आस्था रखकर मानवीय मूल्यों और नैतिकता की स्थापना का लगातार तथा बिना अपना धैर्य खोए पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसमें लगे रहते हैं, साथ ही उसमें पूरे मनोयोग के साथ अपना योगदान भी करते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्तियों के साहस की प्रशंसा नहीं करेंगे जो शारीरिक श्रम के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर मानव समाज की सेवा करते हैं? क्या आप उन कृषक भाइयों के श्रम के साहस की प्रशंसा नहीं करेंगे जो हर ऋतु में खेतों में पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए वे सारी वस्तुएं अपने खेतों में पैदा करते हैं, जो मात्र मनुष्य समाज की 60% से अधिक की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं करते, बल्कि पशु पक्षी जगत के पोषण की आवश्यकता की भी पूर्ति करते हैं? उसे अपने काम से कभी विश्राम नहीं मिलता और वो धैर्यपूर्वक निरंतर अपने कार्य का पालन करता रहता है।
क्या ये उसका अपने में पवित्र साहस नहीं है? लेकिन साथियों, आश्चर्य तब होता है जब देश समाज के इस अन्नदाता की ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं। क्यों उसे भुला दिया जाता है? प्रशंसा उनके कार्य और साहस की होती है, जो कृषक के श्रम से भारी मुनाफा कमाकर बड़े बड़े महल खड़े करते हैं। क्यों इस बात को लोग अपने मंदर्पण में नहीं देख पाते? पूछिए अपने मंदर्पण से, आप उन व्यक्तियों की कभी सही रूप से प्रशंसा करते हैं जो शारीरिक श्रम के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हुए भी अपने में बौद्धिकता का विकास कर पूरी तरह न्यायपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करते हैं? क्या यह उनका साहसपूर्वक संकल्प नहीं है? इसे भी मान्यता दी जानी चाहिए। साथियों, क्या आप उन सैनिकों के साहस का सम्मान नहीं करेंगे जो देश की रक्षा के साथ ही समाज पर आई प्राकृतिक आपदाओं और लोगों पर आई विपदाओं में बिना हिचक सहायता करने का कार्य करते हैं? कई लोग उनके इस महत्वपूर्ण अवदान को भुला देते हैं। क्या आप उन लोगों के साहस को भुला देंगे जो आतंकवादी घटनाओं के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखने में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं, दुर्घटना में फंसे लोगों की सहायता करने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं? क्या इसे भूल जाना चाहिए कि ये उनकी आंतरिक साहस का ही तो काम है? ऐसे लोगों के प्रति भी प्रणम्य होने की इच्छा होती है। मैं उन माताओं के साहस की प्रशंसा करूंगा जो भयावह विपरीत स्थितियों के बीच भी अपनी संतानों का समुचित पालन पोषण कर उन्हें जीवन की उज्जवल राह बताती है। सचमुच उनका साहस प्रशंसनीय है। मैं उन संतानों के साहस की प्रशंसा करूंगा जो अपने नियमित कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए भी अपने माता पिता की सेवा में अपने को समर्पित करते हैं। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि चाहे जितने ही संकट आए, विपरीत स्थितियां हों, अपने आंतरिक साहस को हमेशा बनाए रखना चाहिए? वही साहस विपरीत स्थितियों के बीच व्यक्ति को स्थिर बनाए रखता है, विचलित नहीं होने देता। यही भाव व्यक्ति को विजयी बनाता है। याद रखें, साहस किसी धरोहर की तरह प्राप्त नहीं होता, उसे हर व्यक्ति को स्वयं ही प्राप्त करना होता है। और साथ ही ये भी याद रखें कि वे व्यक्ति भी प्रशंसा के योग्य है जो झोपड़ी में रहते हुए भी साहस के साथ सुख और शांति की खोज कर लेते हैं। साथ ही वे भी जो अपनी अंतरात्मा के सही आदेशों पर चलते हुए जीवन जीते हैं, भले ही उनके जीवन मार्ग में कठिनाइयां आए। इसे हम उनकी अंतरात्मा का साहस ही कहेंगे, जिसे बिरले लोग ही अपने में प्रकट कर पाते हैं। जब मेरे एक मित्र के एक बेटे ने अपने पिता से ये कहा कि पापा, अब मैं वयस्क हो गया हूं, मुझे अपने हर काम पूरी जिम्मेदारी से करना है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने कार्य भी करूं और समाज की सेवा भी करूं, आप मुझे आशीष दें कि अगर मैं किसी की आंखों में आंसू देखूं तो उन्हें सांत्वना दे सकूं, जिसे सेवा की आवश्यकता है मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। जब उस युवक ने ये कहा तो मैं उसके साहस पर चकित था। आपाधापी के इस वर्तमान युग में कोई ऐसे व्रतपालन का साहस करे तो क्या आप उसके इस साहस की प्रशंसा नहीं करना चाहेंगे? साथियों, याद रखें, जो वास्तव में साहसी होते हैं वे मानवता की सुरक्षा और सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आप उन्हें ढूंढिए, वे आपको कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन याद रखें, वे दुस्साहसी नहीं होंगे। साथियों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

दोस्तों अभी हमने सुना कार्यक्रम मन दर्पण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

तो अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता, औद्योगिक अवशिष्टों का पर्यावरण पर बढ़ता प्रभाव, भाग दो। लेखक और प्रस्तुतकर्ता है माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, पर्यावरण के अंतर्गत पिछली बार वार्ता का पहला भाग सुना था। आज प्रस्तुत है उसी शीर्षक वार्ता का समापन भाग दो। तो आइए हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। अस्पतालों के कचरे में इसी क्रम में प्लास्टिक बीनकर अपनी रोजी रोटी बीनने वाले भी अवशिष्ट के ढेर में अपने काम की वस्तु बीनते हुए देखे जा सकते हैं। यही नहीं, वे संक्रमित बोतलों, नलियों और सिरिंजों की सुइयों को भी बीनते हुए देखे जा सकते हैं। इनको बीनने के बाद धो पोंछ कर अप्रत्यक्ष रूप से छोटी मोटी फैक्ट्रियों को बेच देते हैं। बाद में इन फैक्ट्रियों द्वारा उन्हें नई पैकिंग में एक बार फिर से बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इन संक्रमित सुइयों के पुनः उपयोग से इनका उपयोग करने वाला भी संक्रमित हो जाता है। इन्हीं संक्रमित सुइयों के पुनः उपयोग से संक्रमण और बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा इन संक्रमित कचरों से कचरा बीनने वाले स्वयं भी संक्रमण का शिकार हो जाते हैं तथा नई नई बीमारियां फैलाकर समाज के अन्य स्वस्थ लोगों को भी संक्रमण का शिकार बनाते हैं। हालांकि ऐसा वे जानबूझकर नहीं करते हैं, अपनी अज्ञानता के कारण ही सही वे स्वयं रोगी होकर समाज के अन्य स्वस्थ लोगों के बीच व्यर्थ ही मुफ्त में रोग बांटते फिरते हैं। इस तरह से कचरों के, विशेषकर अस्पतालों के कचरों में से अपने काम की चीजें ढूंढता ये वर्ग अपनी रोजी रोटी के माध्यम द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य निरंतर करते रहता है। इसी प्रकार पर्यावरण को दूषित करने में औद्योगिक इकाइयां भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती दिखाई पड़ती हैं। फिर चाहे वो औद्योगिक इकाइयां नगर में हो या नगर के कोने में हो या फिर नगर से दूर ही क्यों न हो, इनके द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से वायुमंडल और रहवासी अछूते नहीं रहते हैं। चूंकि मानव को अपनी सुख सुविधा और जीवन विकास के लिए कई भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण किसी कल कारखाने में ही किया जा सकता है, इसलिए मानव को विकास की दौड़ में आगे ले जाने के लिए आज औद्योगिक कल कारखानों की श्रृंखला धरती पर उगाई है। समाज में मनुष्य की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग वस्तुओं के निर्माण हेतु विभिन्न विभिन्न औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और कुछ स्थापित हो रही हैं, तो कुछ भविष्य में स्थापित होना प्रस्तावित हैं। स्थापित उद्योगों में चमड़ा, शराब, पेंट, दवाइयां, लोहा, सीमेंट, रसायन, गैस आदि ऐसे उद्योग हैं जो अपने उत्पादन के दौरान और बाद में भी धुएं, गैस और अपने अवशिष्ट के कारण प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन इससे भी कहीं अधिक इनके द्वारा छोड़ा गया कचरा, जो प्रदूषित और बदबूदार जल के द्वारा प्रदूषण फैलाता रहता है, धरती के वातावरण में प्रदूषण फैलाने में इसकी

महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस अवशिष्ट द्वारा प्रदूषण का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस प्रकार की फैक्ट्रियों के 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेतों की उत्पादन क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्री के बिल्कुल नजदीक की वह भूमि जिस पर फैक्ट्री द्वारा छोड़ा गया प्रदूषित जल बहता है, वह भूमि अपनी उर्वरक क्षमता को खो बैठती है, क्योंकि प्रदूषित जल भूमि के उर्वरक कणों को नष्ट कर देता है। फैक्ट्री द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट रसायनों के कारण फिर उस भूमि पर कुछ भी नहीं उग पाता है, क्योंकि भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती है। यहां तक कि फिर उस पर किसी भी प्रकार की घास भी नहीं उग पाती है। यही नहीं श्रोता साथियों, फैक्ट्री के आसपास बसी श्रमिकों की बस्ती हो या फिर अन्य कोई रहवासी कॉलोनी हो, उनमें वायुमंडल और वातावरण के प्रदूषण के कारण ही विभिन्न प्रकार के रोगों का जन्म होता है और रहवासी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जिससे शारीरिक रोग के साथ साथ मस्तिष्क पर भी विषैला और हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो कुल मिलाकर संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित कर, अस्वस्थ कर, व्यक्ति विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इससे एक अतिरिक्त हानि यह होती है कि फिर व्यक्ति अपने विकास और अन्य कार्यों को छोड़कर केवल रोग से लड़ने और स्वस्थ होने में ही अपना सारा समय, धन और शक्ति लगा देता है। इससे व्यक्ति को कई हानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अपना जो समय वह अपने विकास में, अपने कार्यों में लगा सकता था, वह समय उसे डॉक्टरों के चक्कर लगाने में बिताना पड़ता है। जो धन और जो शक्ति वह अपने अन्य जरूरी कामों में खर्च कर सकता था, वह धन और शक्ति उसे अपनी बीमारी से पीछा छुड़ाने में लगाना पड़ता है। यानी कि प्रदूषण से हुई बीमारी उस पर समय, धन और शक्ति के अपव्यय का भार डालती है। श्रोता साथियों, इस प्रकार औद्योगिक अवशिष्टों का पर्यावरण पर बढ़ता प्रभाव विषय पर सरसरी तौर पर नजर डालने से ही इन विषय की गंभीरता का एहसास हो जाता है, जिसमें मुख्य भूमिका उद्योगों और अस्पतालों आदि से निकले अवशिष्ट यानी कि कचरे की नजर आती है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि जब उद्योगों और अस्पतालों के कचरे से पर्यावरण दूषित होता है तो फिर इनकी स्थापना का क्या अर्थ है। पहली बात तो यह है कि उद्योग, कल कारखाने, अस्पताल आदि आज व्यक्ति की बहुत बड़ी जरूरत बन चुके हैं। दूसरी बात, इनके सहारे जीवन का विकास करना और इन पर निर्भर रहना ही आज के व्यक्ति की नियति और व्यवस्था बन चुकी है। इसलिए चाहकर भी आज और भविष्य में इन उद्योगों और अस्पतालों से मानव को अलग नहीं किया जा सकता है। श्रोता साथियों, इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति और समाज अपने सुख सुविधाओं और स्वास्थ्य के इन साधनों और माध्यमों को अपने जीवन के नाश की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन प्राण की दृष्टि से स्थापित करें और इनका उचित ढंग से संचालन करें। श्रोता साथियों, इसके लिए यह आवश्यक है कि मानव अपने विकास और उन्नति के साथ साथ उन स्थितियों और परिस्थितियों पर भी नजर रखे जो उसके आने वाले कल में कहीं उसकी सभ्यता और विकास के विनाश का कारण न बन जाए। इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण की दिशा में पूरी ईमानदारी से एक ठोस कदम बढ़ाया जाए। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन तमाम आवश्यक सुरक्षाओं की व्यवस्थाओं को पूरा करना चाहिए जिन्हें न करने पर कानून रूप से अवैध या दंडात्मक ठहराया गया है और दोषी व्यक्ति के लिए उचित सजा का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के प्रदूषण के लिए उद्योग और अस्पताल के मालिक तथा प्रबंध संचालकों के साथ साथ साधारण नागरिक भी समान रूप से जिम्मेदार हैं,
जो प्रदूषित वातावरण के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं। इनके साथ साथ कतिपय स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं और समाज सेवकों को भी इस संदर्भित विषयों से ग्रस्त समस्याओं के प्रति हल निकालने की पहल करना चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषण से रोकने के उपाय करना और सुझाना चाहिए।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, अब मैं आगे की सभा का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक पीटर रॉबर्ट को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं मनलिंग जेकब और उनकी कहानी का शीर्षक है गिद्ध नजर।

कहानी। एक बार एक गिद्ध और एक चील में बहस छिड़ गई। गिद्ध का कहना था कि सभी पक्षियों में मेरी नजर सबसे तेज है, मेरी नजर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चील को गिद्ध की बातों में घमंड का अनुभव हुआ। वह बोली, ये बढ़ चढ़कर बातें मत करो, घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। अरे, इसमें घमंड वाली कौन सी बात है, मेरी नजर सबसे तेज है, यह बात तो दुनिया जानती और मानती है। तुम्हें पता है, इंसानों में तो गिद्ध जैसी तेज नजर का मुहावरा ही प्रचलित हो गया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो तो चलो अभी परीक्षा करके देख लो, गिद्ध एट कर बोली। फिर दोनों में इस बात पर सहमति बनी कि वे आसमान में बहुत ऊंचे चले और फिर वहां से नीचे देखें कि कैसा दिखता है और कौन छोटी से छोटी चीज को अधिक ऊंचाई से देखकर ठीक ठीक बता सकता है। अगले दिन दोनों ने नियत समय पर उड़ान भरी। वे उड़े तो उड़ते ही चले गए, ऊंचे, खूब ऊंचे। जब वे काफी ऊंचाई पर पहुंच गए तो गिद्ध ने चील से कहा, तुम्हारी क्या राय है, अभी और ऊंची उड़ान भरना है या फिर रुक जाए? चील ने बेफिक्री से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिद्ध बोला, सांझ होने वाली है, थोड़ी ही देर में सूरज छिप जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए हमें यही से परीक्षा कर लेनी चाहिए, यही उचित रहेगा। ठीक है, मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है, चील ने अपनी सहमति दी। तब दोनों ने जमीन पर गौर से नजर डाली। चील बोली, गिद्ध जी, क्या आपको जमीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? गिद्ध ने ध्यान से देखते हुए कहा, जरा देखने तो दो, तब बताता हूँ। उसे चिढ़ाते हुए चील बोली, जरा गौर से देखना, कहीं ऐसा न हो कि आपकी आंखें आपको धोखा दे दें। गिद्ध को चील की बात बुरी लगी, पर उसने ईट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो तुम्हें नीचे से भी नहीं दिखेगा। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि आपको क्या दिख रहा है, चील ने पूछा। मुझे जमीन पर जंगल दिखाई दे रहा है और उस जंगल में एक गेहूं का दाना पड़ा हुआ है, मुझे वह दाना भली भांति दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है? अच्छा, चलो नीचे चलकर देखते हैं, गिद्ध बोला। चील को गिद्ध की पैनी नजर पर भारी हैरानी हुई। वह झेपते हुए बोली, चलो चलकर देख लेते हैं। वे दोनों तेजी से नीचे जमीन की ओर उतरने लगे। गिद्ध आगे था और चील पीछे थी। चूंकि गिद्ध ने ही गेहूं का दाना देखा था, इसीलिए वह आगे आगे तेजी से उड़ रहा था। गिद्ध जमीन पर पहुंचकर सीधे दाने पर लपका और पल भर में ही जाल में फंस गया। वह जाल से छूटने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगा। चील पीछे थी, इसीलिए वह संभल गई और जाल में फंसने से बच गई। उसने राहत की सांस ली। फिर वह व्यंग कसते हुए गिद्ध से बोली, आपकी नजर की दाद देती हूँ, आपने इतनी दूर से एक छोटा सा दाना तो देख लिया, पर आपको इतना बड़ा जाल नहीं दिखाई दिया। अब मैं आपको क्या कहूँ, अति विश्वासी या अति मूर्ख? ऐसी दूरदृष्टि भला किस काम की जो आपको जाल में फंसा दे और आपकी जान पर बन आए। यह सुनकर गिद्ध का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे अब अपनी मौत आसपास ही मंडराती नजर आ रही थी और वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता था।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था गिद्ध नजर। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए सुनते हैं बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार राज कुशवाहा, और उनकी कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान मालू।

प्यारे बाल दोस्तों, आपके भाई राज कुशवाहा का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष आया हूँ एक कहानी प्रस्तुत करने, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान मालू। मालू एक गरीब लड़का था। वह पढ़ने में अच्छा था। उसके लिए स्कूल बहुत खास था, क्योंकि वहाँ पर उसके पिता चपरासी का काम करते थे। मालू के पिता रामू की इच्छा थी कि उनका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, इसलिए उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से अपने बेटे का दाखिला करने की विनती की थी। प्रिंसिपल एक दयालु महिला थी। उन्होंने मालू की परीक्षा ली। मालू एक बुद्धिमान लड़का था। उसने परीक्षा पूरे नंबरों से पास कर ली। जब मालू अपनी नई क्लास में गया, तो उसने देखा कि उसके सहपाठियों ने महंगे कपड़े व जूते पहने हुए हैं। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके कपड़े व जूते बहुत साधारण थे। उसके क्लास में एक शरारती बच्चा भी था। उसका नाम ऋषभ था। वह एक धनी परिवार से संबंध रखता था, इस कारण उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसे पता चला कि मालू एक गरीब लड़का है, तो वह उसके ऊपर हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगा। इस प्रकार मालू को रोज अपने सहपाठियों से ताने व छींटाकशी का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह किसी से कुछ न कहता। जल्दी ही वार्षिक परीक्षाएं होने वाली थीं, इसलिए सब पढ़ाई में व्यस्त थे। रिजल्ट वाले दिन क्लास टीचर के पास एक सरप्राइज था। सब उत्सुकता से उन्हीं की ओर देख रहे थे। अचानक उन्होंने घोषणा की कि मालू पूरी क्लास में प्रथम आया है। ऋषभ, जो कि हमेशा क्लास में प्रथम आता था, इस बार द्वितीय आया था। रिजल्ट आने पर पूरी क्लास हैरान थी। मालू ने 98% अंक प्राप्त किए थे। अब सभी लोग उसे प्यार व सम्मान से देख रहे थे। मालू बहुत खुश था और सबसे बधाई स्वीकार कर रहा था। ऋषभ मालू से बोला, मालू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, क्या मेरे दोस्त बनोगे? मालू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ आज से हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें किसी भी इंसान की काबिलियत देखनी चाहिए, न कि उसकी दौलत। ऋषभ झेप गया। उसने वादा किया कि वह अब कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा और न ही अपने ऊपर घमंड करेगा। उसने सदा दूसरों की इज्जत करने का वादा किया।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे बाल कलाकार राज कुशवाहा, और उनकी कहानी का शीर्षक था बुद्धिमान मालू। साथियों, आप रेडियो वेरिता सेशा का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवर कुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: सुख सुविधा के तमाम साधन, पर्याप्त धन धान्य से हीन ये निर्धन दंपत्ति एक दूसरे के सुख व सुविधा के लिए कितने चिंतित, कितने परेशान। मगर पैसा, सुविधाएं और सांसारिक खुशियां ही तो सब कुछ नहीं है। यूसुफ चिंतित था कि वो अपनी निर्धनता के कारण अपनी पत्नी मरियम की रक्षा शायद नहीं कर सकेगा, पर वहीं वो मरियम को अकेला छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई न था। ईश्वर की योजना तो ऐसी ही थी कि मरियम यूसुफ के साथ बेतलहम जाए। यूसुफ ईश्वर की योजना समझकर मरियम को साथ ले बेतलहम की ओर चल पड़ा। उन्हें पूरा यकीन था कि समय आने पर ईश्वर उनकी मदद अवश्य करेंगे। मुक्तिदाता प्रभु को गर्भ में धारण किए मरियम और उनके पुत्र ईसा के संरक्षक पिता जोसेफ कपकपाती ठंड में निकल पड़े बेतलहम की ओर। मरियम गधे पर सवार थी, यूसुफ गधे के एक ओर रास्ता बताते चल रहे थे। गधे पर कुछ भोजन और कपड़े भी एक कटरी में रखे हुए थे। कपकपा देने वाली सर्द हवा और भोर के उस सुनसान समय में वे अकेले नहीं थे, मगर हजारों दूत और स्वयं ईश्वर का आत्मा उनके साथ था। रास्ते उबड़ खाबड़ ही नहीं थे, थका देने वाले थे। यूसुफ मरियम के प्रति बहुत विनम्र थे। वे मरियम को दर्द में देख खुद भी दुखी हो जाते थे। चलते चलते गधा भी थक चुका था। उन्होंने न सिर्फ विश्राम किया मगर आगे का कुछ रास्ता मरियम स्वयं चलकर पार करने लगी। ज्यादा दूर तक जा पाना मरियम के लिए संभव नहीं था। अंततः जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा,
1: यूसुफ।
2: हाँ।
1: बहुत दर्द है, बहुत दर्द है
2: मरियम।
1: अब सहा नहीं जा रहा, क्या ही अच्छा हो अगर हमें ठहरने को थोड़ी सी जगह मिल जाए।
2: हाँ मरियम, मैं वही सोच रहा हूँ। हौसला रखो, हौसला रखो, देखते हैं कहीं ठहरने की जगह मिल जाए। मरियम, मरियम तुम ठहरो, मैं वो सामने वाले घर से शरण स्थल तलाश कर आता हूँ। कौन है? भाई साहब, भाई साहब राहगीर हूँ, कहीं आसपास कुछ दिन ठहरने का प्रबंध हो सकता है? मेरी पत्नी बो,
3: बो, ये घर है सराय नहीं, जाओ कहीं और तलाश करो।
0: अवसर, दर्प, ईर्ष्या, असत्य और हिंसा का प्रभाव इतना अधिक होता है कि सत्य, अहिंसा और प्रेम से आंखें फेर ली जाती हैं, दिल के द्वार बंद कर लिए जाते हैं कि नम्रता, दया, प्रेम, शांति, सत्य और अहिंसा के रूप में ईश्वर प्रवेश न करने पाए। यूसुफ को जब अपनी पत्नी के साथ रहने का स्थल न मिला तो वे राह के किनारे ही विश्राम कर बेतलहम चल निकले, जहां पहुंचकर हजारों की भीड़ में यूसुफ ने अपना नाम लिखवाया और फिर वे सूरज डूबने के पहले पुनः शरण स्थल की खोज में निकल पड़े।
2: भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, हम परदेसी हैं, नाम लिखाने आए थे। मेरी पत्नी गर्भवती है, बहुत तकलीफ है उसे, मेहरबानी करके रहने का कुछ बंदोबस्त कर दीजिए।
4: माफ कीजिए, सारी जगह भरी हुई है।
2: क्या सारी जगह भरी हुई है? क्या करूं, क्या करूं मैं? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मेरी पत्नी गर्भवती है,
5: क्या आपके यहाँ ठहरने का बंदोबस्त हो सकता है?
4: माफी चाहता हूँ भाई, परदेसे से सारे कमरे भरे हैं, कहीं और तलाश करो, हो सकता है कहीं जगह मिल जाए।
5: कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं?
6: पता नहीं मरियम, ईश्वर की क्या मर्जी है, कहीं भी जगह खाली नहीं है, सबको जगह मिल चुकी है, एक हम ही है जो भटक रहे हैं।
1: दुखी न हो यूसुफ, ईश्वर ने हमारे लिए कहीं न कहीं जगह नियत कर रखी होगी। प्रभु अपने बेटे को यूं ही तो नहीं छोड़ देंगे ना, ईश्वर पर ही हमें भरोसा रखना है।
6: वो तो है मरियम, मगर तुम्हारी हालत भी तो देखी नहीं जाती ना।
1: मेरी चिंता न करो यूसुफ, आज की रात हम यहीं किसी पेड़ के नीचे काट लेंगे।

0: यूसुफ, यूसुफ।
1: क्या हुआ मरियम, क्या हुआ?
0: यूसुफ लगता है, हाँ? लगता है बच्चे के जन्म लेने का समय आ गया है।
1: मरियम, मरियम धीरे रखो मरियम, मैं जाकर देखता हूँ, शायद शायद किसी को हम पर दया आ जाए।
2: कौन है, क्या बात है?
1: नमस्कार बहन। बहन, मेरी पत्नी गर्भवती है और लगता है वो बहुत कष्ट में है। आपके यहाँ दो एक दिन के लिए आश्रय मिल जाता तो।
2: मगर मेरे यहाँ तो सिर्फ एक गौशाला ही बाकी रह गई है।
1: गौशाला? हाँ, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, अगर आप आज्ञा दें तो हम वहीं शरण ले लें।
2: ठीक है, आप अपनी पत्नी को लेकर आइए, तब तक मैं गौशाला साफ कर देती हूँ।
3: कड़ाके की ठंड में प्रभु ने मरियम और यूसुफ को और भटकने नहीं दिया, बल्कि उन्हें वे वहां ले गए जहां उस मुक्तिदाता के लिए उन्होंने जगह चुन रखी थी। यूसुफ मरियम को लिए उस गौशाला में आ गए।

में भाग लेने वाले कलाकार थे संतोष कुमार, इंदु संतोष, स्वाति बूटे, जोस सूल, दिलीप बोस और जॉर्ज माइकल।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम स्वास्थ्य का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक है कार्यालय में सही खान पान, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है कार्यालय में सही खान पान। साथियों, कार्यालय को लेकर हमारे मन में हमेशा एक यही कल्पना रहती है कि अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मनपसंद काम को करना, अपने बॉस को लेकर ढेर सारी बातें करना और अपने सहकर्मियों पर छींटाकशी करना। लेकिन साथियों, कार्यालय को लेकर हम एक और मनोरंजक चीज हमेशा सामने रखते हैं और वो है कार्यालय में या फिर आपके ऑफिस में आने वाले स्नैक्स। जी हाँ, खासकर यदि आज के आईटी सेक्टर की बात करें या फिर ऐसे ऑफिसेज की बात करें जहां पर आपको बहुत ज्यादा समय तक रहना पड़ता है, तब दिन भर में भोजन करने के लिए तो समय नहीं होता। आप दिन में दो या तीन बार स्नैक्स लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। यदि इस बीच में हमारे युवाओं से ये भी बात की जाए कि यदि इस प्रकार स्नैक्स लेकर आप दिन गुजारेंगे तो आपके पोषण का क्या, आपकी सेहत का क्या, तब उनका जवाब होता है ये उम्र नहीं है पोषण और स्वास्थ्य के विषय में बात करने की, और जहां तक काम का सवाल है तो शो मस्ट गो ऑन। जी हाँ, काम तो हमेशा आगे और सर्वोपरि रहता ही है, लेकिन वो सर्वोपरि तब रह सकता है जब आप अपने स्वास्थ्य को भी उतना ही ध्यान देंगे। साथियों, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके करियर की वृद्धि को प्रभावित करती हैं। आपके काम करने की क्षमता से लेकर आपकी उत्पादकता, बॉस को प्रसन्न करने की आपकी योग्यता भी। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आप जिस प्रकार का आहार लेते हैं उसका भी प्रभाव आपके करियर की वृद्धि में हो सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो चलिए आज के कार्यक्रम में हम इसी बारे में जानकारी एकत्र करते हैं कि एक सही भोजन और एक सही करियर किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथियों, काम के स्थान पर आपकी सही खान पान की आदतें सही मायने में आपके शिष्टाचार को भी दर्शाती हैं। ऐसे बहुत सारे आहार हो सकते हैं जो आपके स्वाद से लेकर आपका ज्ञान और आपके पोषण संबंधी लाभ और उसके संबंधित आपकी जागरूकता, इन सभी को दर्शाते हैं। कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सही खाने का सही प्रभाव हमारे काम पर पड़ता है। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहता, आपके मेहनती होने और सूक्ष्म कार्यकर्ता होने का पता भी चलता है। साथियों, क्या खाना चाहिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कब खाना चाहिए। जी हाँ, खाना चाहिए उचित समय पर। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ आहार होता है सही मात्रा में, लेकिन खाने के बारे में बहुत सा सूक्ष्म अध्ययन आपको उत्तेजित भी कर सकता है। साथियों, जब आपको मीटिंग में जाना होता है या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जब आप खाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, तब आपको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये सही संकेत है। आपको एक ऐसे समय में जब लंबे समय से आपका पेट खाली है, आपको भूख लगना स्वाभाविक है, लेकिन अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग आ जाती है और आपको भूख लगना बंद हो जाता है। साथियों, यह है काम का दबाव। इस चीज को नजरअंदाज नहीं करें। भूख लगना एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है और वो ये भी दर्शाती है कि आपका स्वास्थ्य सही है, आपके शरीर को पोषण की आवश्यकता है और शरीर द्वारा आपको ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अब उसे पोषण दिया जाए। लेकिन किसी इमरजेंसी मीटिंग का बुलावा, किसी इंटरनेशनल कॉल का आना या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन से उपजा हुआ तनाव, यदि इन सारी चीजों के कारण आपकी स्वाभाविक भूख प्रभावित हो रही है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। साथियों, ध्यान रखें कि आपके ऑफिस में आपकी प्राथमिकता तो ऑफिस का काम है, आहार नहीं है, लेकिन आपको ऑफिस में कुछ ऐसा आहार जरूर साथ में ले जाना चाहिए जो कि ताकत देने वाला हो। जी हाँ, आहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत भारी हो और जिससे आपको नींद आ जाए। साथियों, हमारे जितने भी आईटी सेक्टर के श्रोतागण हैं वो ये जानते होंगे इन दिनों कि ऑफिस में टिफिन ले जाना इन दिनों एक पुराना कल्चर हो चुका है। अब हमारे सारे ऑफिसेज भी इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वहां पर पैंट्री होती है, वहां पर कैंटीन होता है और सभी कंपनियां बहुत आकर्षक पैकेजेस देने के साथ साथ बहुत आकर्षक लंच और डिनर भी अपने कर्मचारियों को देती हैं। लेकिन साथियों, ऑफिस में यदि आप खाना खा रहे हैं तो अपनी प्लेट को पूरी तरीके से नहीं भरें। सही मात्रा में और संपूर्ण आहार लेने का ही प्रयास करें। अपने आहार के बीच में आपको कुछ स्नैक्स भी लेने चाहिए, चाहे बिस्किट खाएं या फिर सूखे स्नैक्स खाएं। साथियों,
हम अधिकांश रूप से ये देखते हैं कि हमारे जितने भी आईटी सेक्टर के या फिर बड़ी कंपनियों के ऐसे साथी हैं जो लंबे समय से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी कंपनी में भोजन की सुविधा भी है। लंबे समय तक एक ही प्रकार का खाना खाने से उनमें कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। इस बारे में जब बहुत तरीके से अध्ययन किया गया साथियों, तब एक चीज सामने आती है कि घर के खाने और ऑफिस में बनने वाले खाने में फर्क क्या है। जी हाँ, ये चीज मान ली कि ऑफिस में जो खाना मिलता है वो कोई शादी विवाह या रिसेप्शन जैसा भारी खाना तो होता नहीं है, वो भी सादा ही खाना होता है, लेकिन इस खाने से समस्या क्यों होती है? दरअसल साथियों, जब खाना बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है तब उसके बनाने में प्रयोग में किए जाने वाले तेल और मसाले का प्रभाव एक सामान्य व्यक्ति के आहार पर पड़ता है। साथियों, यदि हम देखें कि कोई भी महिला जब घर में भोजन बनाती है तब साफ सफाई का और वसा पौष्टिकता कितनी ज्यादा खाने में होनी चाहिए उसके संतुलन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। यदि घर में बुजुर्ग हैं या फिर घर में बच्चे हैं, उन सभी के हिसाब से एक आहार पर्याप्त हो, इसका सबसे ज्यादा ख्याल घर में रखा जाता है। लेकिन आप ही सोचिए, यदि आपका काम दिन भर में 250 से 300 व्यक्तियों के लिए दो समय का खाना बनाना ही हो, ऐसे में आप क्या पौष्टिकता को, साफ सफाई को, इन सारी चीजों के प्रबंधन को इतने अच्छे से ध्यान दे पाएंगे जितना अच्छा ध्यान एक गृहिणी देती है या फिर घर में बनने वाले भोजन को पकाने के दौरान दिया जाता है? नतीजा यही होता है कि पोषण के मामले में एक साथ बना हुआ भोजन जो कि बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है वो वसा के मामले में सामान्य घर के भोजन से ज्यादा होता है। उसमें तेल और

थूकने या फिर एक साथ बैठे हुए कर्मचारियों के बीच कहीं बाहर से खाना मंगवाने की बात चले, ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा संयम रखने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि आप उस ग्रुप का भाग है जिसके लिए खाना मंगाया गया है। आपको वही खाना है जो आसानी से मिल सके। खाने को लेकर अपने मिजाज दिखाना सही नहीं है, जब तक कि आपको किसी खास आहार से एलर्जी ना हो। साथियों, यदि आप बहुत ऊंचे पद पर हैं तो ये बिल्कुल सही है कि आपके कलीग्स को ये मालूम हो कि आपको क्या खाना चाहिए और किस प्रकार का आहार नहीं लेना चाहिए। यदि हमारे साथी जो इसे सुन रहे हैं और उनकी उम्र 45 से 50 के बीच है, तब उन्हें अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि साथियों यही वो समय होता है जब रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए राह देखती हैं। ऐसे में यदि आप अपने भोजन को लेकर जागरूक नहीं रहेंगे तब आपको पछताना पड़ सकता है। साथियों, बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें ऑफिस में बार बार स्नैक्स की आदत होगी। पूरा दिन बिना स्नैक्स के ऑफिस में समय काटना वैसे वाकई मुश्किल होता है। हम सभी जानते हैं कि स्नैक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन ऑफिस में यदि आप इस तरह का आहार नहीं लेना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बहुत भारी मात्रा में ब्रेकफास्ट करें। लेकिन फिर भी कई बार आप यदि स्नैक्स लेना ही चाहते हैं तो आपको ध्यान स्नैक्स से हटाना चाहिए। इसके साथ ही आपको थोड़ा टहलना चाहिए जिससे व्यायाम करने का मौका मिल सके। साथियों, कई बार हमारा शरीर भूख और प्यास की आवश्यकता को गलत तरीके से पढ़ लेता है। जी हाँ, कई बार ये होता है ना कि जब आपका कोई साथी टिफिन लाना भूल जाता है तब बाहर से कोई नाश्ता मंगवाया जाता है और उसे देखकर आप स्वयं भी अपने आप को रोक नहीं पाते। भले ही आपने बहुत अच्छा लंच ले लिया हो, लेकिन वो स्नैक खाने की इच्छा आपको होती है। साथियों, ये बात याद रखें कि क्रेविंग यानी कुछ भी खाने की इच्छा आपके मन में सिर्फ 10 या 15 मिनट तक रहती है। तो आप यदि खाने की इच्छा को लेकर 10 या 15 मिनट का संयम बरत ले, उस दौरान किसी को फोन कर ले, उस दौरान कोई जरूरी काम कर ले या किसी को पत्र भेज दे या फिर अपने सहकर्मी से किसी विषय को लेकर कोई बात कर ले। जी हाँ, ऐसा करने से आप अपनी क्रेविंग को टाल सकते हैं। आप बिना आवश्यकता के कुछ भी खाने से इस प्रकार से बच सकते हैं। इसलिए साथियों, जब भी स्नैक्स खाने की इच्छा प्रबल होती नजर आए, टहलना शुरू करें या फिर कोई भी ऐसा काम करना शुरू कर दें जिसके चलते आप क्रेविंग की इच्छा, खाने की इच्छा से स्वयं को दूर कर सके। जी हाँ, सिर्फ 10-15 मिनट। ऐसा शुरुआत में करने के बाद आगे चलकर आप स्वयं पर संयम रख पाएंगे। साथियों, कार्यालय में यदि आप सही खान पान रखते हैं तो इसका असर न केवल आपके काम पर पड़ता है, आगे आने वाले समय में भी आपका प्रदर्शन सुधरता है और आप एक अच्छा प्रमोशन भी पा सकते हैं। साथियों, यहीं पर समाप्त करते हैं हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के इस अंक को, और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। जी हाँ, आज का स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम का प्रश्न है, क्रेविंग यानी कुछ भी खाने की इच्छा कितने समय तक मन में रहती है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, क्रेविंग यानी कुछ भी खाने की इच्छा मन में कितने समय तक रहती है।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था कार्यालय में सही खानपान। दोस्तों, अब आप सभी को हमारे स्वास्थ्य के बारे में तो समझ आ ही गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं

तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवीएम मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सोनाली जंगरा। दोस्तों, अभी की सभा 7 से 8 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: पिछले कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे थे कि सिंचाई करते समय किसान भाइयों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खास करके कृषि लागत को कम करने में। इसी के क्रम में आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि पंप को किस तरह लगाना अधिक बेहतर होता है।
1: देखिए, पंप सबसे अच्छी तरह तभी काम करता है जब पानी की सतह से अधिक 10 फुट ऊपर लगाया जाए।
0: अच्छा,
1: अगर कुआं गहरा हो तो पंप को सही ऊंचाई का चबूतरा बनाकर लगाना चाहिए।
0: एक बात ये बताइए कि किस लंबाई के निकासी पाइप से डीजल की बचत होती है।
1: हाँ, देखिए, हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कम लंबाई वाले पाइप से डीजल की बचत होती है। अगर पाइप अनावश्यक रूप से ऊंचा है तो इसके द्वारा पानी फेंकने में ज्यादा ईंधन लगेगा। अध्ययन से पता चला है कि पाइप की ऊंचाई 2 मीटर कम करके किसान हर महीने 15 लीटर डीजल बचा सकते हैं।
0: और कौन सा संचारण ट्रांसमिशन बेहतर होता है मुखिया जी?
1: कारगर ट्रांसमिशन के लिए इन बातों का ध्यान रखना एकदम जरूरी है। 1, बेल्ट में जोड़ कम से कम रखें। 2, बेल्ट का तनाव बराबर जांच कर ठीक करते रहें। और 3, पंप और इंजन को एक सीध में रखें।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात जो हम किसानों के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि ये सही पंप सेट का चुनाव कैसे करें, क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, बाजार में कई तरह के पंप सेट मौजूद हैं, तो किस तरह का ध्यान रखना होगा किसान भाइयों?
1: देखिए, बाजार में उपलब्ध तरह तरह के पंप सेटों में कुएं से पानी खींचने के लिए डीजल की खपत की मात्रा अलग अलग होती है।
0: जी जी,
1: इसलिए ISI मार्क वाला पंप ही लेना चाहिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, आप जो पंप चुने वो आपके कुएं और आपकी पानी की जरूरतों के उपयुक्त होना चाहिए।
0: जी,
1: जरूरी नहीं है कि जो पंप आपके पड़ोसी के खेत के लिए अच्छा है वही आपके लिए भी उपयोगी हो। अगर आप विशेषज्ञ के अपने कुएं की गहराई और खेत का क्षेत्रफल को रखते हुए बात करेंगे उनसे, तो वो आपको अच्छा सुझाव देंगे।
0: जी जी,
1: आप इंजन भी ऐसा चुनें जो पंप को सही रफ्तार पर चलाए, इसके लिए विशेषज्ञ से सलाह लें। पंप चलाने के लिए पर्याप्त हॉर्स पावर का इंजन चुनें, विशेषज्ञ आपके इंजन के लिए जरूरी शक्ति का हिसाब लगा सकते हैं।
0: जी जी, आपने बिल्कुल सही काम किया जी, कि बहुत सारे किसान भाई परंपरागत कृषि के विकल्प के रूप में कुछ नए पौधों की तलाश कर रहे हैं और नए पौधों की खेती करना चाहते हैं। उनका ये भी मानना है कि ये तभी शायद उनकी हालात सुधर सकती है, अगर विकल्प के रूप में अगर दूसरे तरह के पौधों का चुनाव नहीं कर पाएंगे तो कृषि से आमदनी कम होगी।
1: देखिए वीरेंद्र भाई, हम लोगों की यहाँ तो परंपरा रही है कि जो परंपरागत खेती है और अनाज वाली खेती है,
0: जी जी,
1: उसके अलावा हम लोग तरह तरह की और व्यावसायिक खेती करते रहे हैं, खासकर के फल फूल यानी कि बागवानी, है ना?
0: जी जी,
1: तो फल फूल बागवानी के अलावा जो औषधीय पौधे होते हैं,
0: जी जी,
1: जो औषधों में काम आते हैं, वो भी एक प्रकार की बागवानी ही है, लेकिन इसमें जो है उसमें भरपूर कमाई की संभावना है।
0: अच्छा अच्छा,
1: अगर किसानों का रुझान इस ओर हो तो उनकी हालत में बहुत सुधार हो सकता है।
0: दरअसल ऐसा है मुखिया जी कि किसानों को औषधीय पौधों की खेती के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है।
1: हाँ,
0: कि कौन से औषधीय पौधों की खेती की जाए और उसकी खेती के क्रम में कौन कौन सी सावधानी अपनाने की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार से उसकी खेती करनी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप चर्चा करते तो अच्छा होता।
1: हाँ, क्यों नहीं वीरेंद्र भाई, किसानों को परंपरागत कृषि के विकल्प के रूप में सर्पगंधा की खेती करनी चाहिए, इससे अच्छी उपज प्राप्त होती है।
0: जी,
1: आयुर्वेदिक औषधि विनिर्माण में सर्पगंधा का विशेष महत्व है, इसकी खेती से बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है।
0: इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए कि सर्पगंधा आखिर है क्या, यह किस प्रकार का वनस्पतिक है और इसको किन किन नामों से जाना जाता है?
1: सर्पगंधा को झाड़मानिक, पाताल गरुड़, चादर धवल वरुआ, धनमरवा, चंदमरवा, इस सुरगज, इडकई आदि कई नामों से जाना जाता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसका वनस्पतिक नाम रोवोल्फिया सर्पेंटीना है।
0: जी,
1: भारतीय उपमहाद्वीप में प्राकृतिक रंग रूप से जंगलों में सर्पगंधा उगे हुए पाए जाते हैं।
0: इसका बाजार में किस तरह का मांग है मुखिया जी, और आज के दौर में इसका उत्पादन जो है वो किन किन राज्यों में होता है, किन किन क्षेत्रों में हो रहा है?
1: पेड़ पौधों से संबंध रखने वालों को इसकी बहुत दिनों से जानकारी रही है
0: जी।
1: सर्पगंधा के औषधीय गुणों के कारण इसकी मांग देशी और विदेशी बाजारों में काफी बढ़ गई है। अतएव अब इसकी आपूर्ति सिर्फ जंगलों से संभव नहीं है। इन्हीं कारणों से 70 के दशक से इसकी खेती भारत के कई इलाकों में होने लगी है, जिसका फलाफल संतोषप्रद रहा है।
0: वर्तमान समय में अगर भारत की बात की जाए तो किन किन राज्यों में सर्पगंधा की खेती हो रही है और किस तरह से इसका विस्तार हो रहा है?
1: इसके महत्व को देखते हुए असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय आदि क्षेत्रों में इसकी खेती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
0: सर्पगंधा किस तरह का औषधीय पौधा है मुखिया जी, और इसमें कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं?
1: सर्पगंधा का आयुर्वेद में एक विशिष्ट स्थान है।
0: अच्छा अच्छा।
1: साथ ही इसके कई अन्य उपयोग भी हैं। इसकी जड़ों में कम से कम 8% क्षारोद यानी कि अल्कोलाइट,
0: अच्छा अच्छा,
1: यथा अजमलीन, अजमलिन, अजमिलसीन, सर्पेंटाइन, सर्पेंटिनिन और राउल्फीन आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं
0: जी जी।
1: इसके अलावा इसमें रेजिन, स्टार्च, गोंद और लवण आदि भी पाए जाते हैं।
0: अगर बाजार भाव की बात की जाए तो सर्पगंधा का बाजार भाव क्या है, प्रति किलो किस दर से ये बिकती है?
1: सर्पगंधा की जड़ी बाजार में 70 रूपये से 90 रूपये किलो की दर से बिकती है
0: जी जी।
1: किसानों को परंपरागत कृषि के विकल्प के रूप में सर्पगंधा की अच्छी फसल प्राप्त हुई है। आयुर्वेदिक औषधीय विनिर्माण में सर्पगंधा का विशेष महत्व है, अतः इसकी खेती करके काफी मुनाफा हम कमा सकते हैं।
0: ये बात तो सही है मुखिया जी, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए किस तरह की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, खेत कैसा होना चाहिए और उसके लिए उचित तापमान जो है, तापक्रम जो है वो क्या होना चाहिए?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, बलुई दोमट मिट्टी से लेकर काली मिट्टी तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। एक सिंचित फसल के रूप में इसे कर सकते हैं
0: जी।
1: इसके खेतों में जल निकास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए जहां तक तापक्रम की बात है तो वो 45 से 100 डिग्री फारेनहाइट उचित माना जाता है।
0: सर्पगंधा लगाने के लिए प्रति एकड़ कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है मुखिया जी?
1: इसकी फसल लगाने के लिए प्रति एकड़ 2.5 से 3.5 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है
0: जी।
1: इसके बीजों को बीजोपचार के बाद लगाने से फसल अच्छे तैयार होते हैं। इसे 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियों में लगाना चाहिए।
0: इसके लिए नर्सरी की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए और रोपाई का समय कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं।
1: मार्च अप्रैल में इसकी नर्सरी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके खेतों को तैयार करते समय BHC 10% करीब 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए एवं खरपतवार को अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए।
0: सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई के क्रम में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए?
1: रोपनी के पूर्व खेतों की सिंचाई आवश्यक है। क्यारियों के बीच में 3 से 4 फीट का अंतर रखना आवश्यक है। इसके बीजों को लगाने के बाद 7 से 8 सप्ताह में पूर्ण अंकुरण हो जाता है। अतएव
0: अच्छा।
1: 2 से 3 माह के बाद इसके खेतों में एक बार फिर निकाई गुड़ाई की जरूरत होती है, तत्पश्चात पुनः सिंचाई करना चाहिए।
0: अगर उर्वरक का प्रयोग करना है तो किस तरह के उर्वरक का इस्तेमाल करना ज्यादा हितकर होगा और जिससे कि ये पेड़ मजबूत हो सके?
1: प्रारंभ में ही इसके खेतों में हरी खाद, गोबर एवं कंपोस्ट खाद देने से सर्पगंधा के पेड़ मजबूत होते हैं एवं फसल भी अच्छी तैयार होती है। वर्षा ऋतु आते ही इसके खेतों में नाइट्रोजन संबंधी फर्टिलाइजर को लिंडन नाम के
0: केमिकल मिलाकर के देना,
1: हाँ, लिंडन नामक केमिकल मिलाकर के उसके साथ छिड़काव करना चाहिए।
0: इस जानकारी के लिए मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे तो खेती किसानी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अभी हमने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कानूनी ज्ञान का। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: श्रोताओं का भी स्वागत है।
1: हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि भूमिहीन किसानों के लिए कानून के बारे में खास करके, और उसी से संबंधित जो नया बिल पास हुआ है, भूमि अधिग्रहण बिल, उसके बारे में भी हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं। ये बताइए कपूर साहब कि भूमिहीन किसानों के लिए इस अधिनियम में या इस विधेयक में क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
2: देखिए, भूमिहीन आरक्षित श्रेणियों के किसानों के लिए अलग अलग पुनर्वास पैकेज बनाने होंगे, लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मानना है ये भूमि अधिग्रहण राहत और पुनर्वास विधेयक 2011 न तो किसानों के हित में है और न ही कृषि के हित में। ये नासमझी भरा गैर जिम्मेदाराना और जन विरोधी कानून है जिसमें आदिवासी क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे आदिवासियों का विनाश शुरू हो जाएगा।
1: तो किस तरह का प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों में या आदिवासियों पर पड़ने की संभावना है? श्याम जी,
3: देखिए, सच पूछिए तो ये एक ऐसा विधेयक है जो अब तक के किए कराए पर पानी फेर देगा। पुराने कानून में जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक हित के लिए किए जाने का प्रावधान था
1: जी,
3: और इसके लिए मुख्य तीन वजहें थी, आधारभूत विकास, औद्योगिक विकास और शहरीकरण। नए कानून में इसे सिलेक्टिव कर दिया गया है। इसमें यह कहा ही नहीं गया है कि भूमि अधिग्रहण किन परिस्थितियों में किया जाएगा।
1: मैं ये जानना चाह रहा हूं कपूर साहब कि ये आदिवासियों पर इसका किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा और किस तरह के परिणाम होंगे।
2: आज स्थिति यह है कि यदि उत्तर पूर्व को छोड़ दें तो शेष भारत में औद्योगिकीकरण और शहरी विकास के नाम पर आदिवासियों को इस तरह से उजाड़ा गया है कि वे अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं। रायगढ़, रांची इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: जहां आदिवासी आज नाम मात्र के ही रह गए हैं। इस तरह अगर आप बस्तर इलाके में जाएं तो सड़क के किनारे एक भी आदिवासी का गांव नहीं मिलेगा।
1: आखिर ऐसा क्यों हो रहा है श्याम जी, इसकी खास वजह क्या है?
3: दरअसल होता यह है कि जहां से सड़कें निकलती हैं, कुछ समय बाद व्यापारी आदि पैसे वाले लोग वहां आकर 5-10 एकड़ जमीन खरीद ले लेते हैं
1: जी,
3: और जो धीरे धीरे 100-200 एकड़ तक पहुंच जाती है। आदिवासी वहां से उजड़कर दूर जंगल में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। आदिवासी इलाकों में जिस रफ्तार से शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उनकी संख्या इसी रफ्तार में घट रही है।
1: समस्या तो गंभीर है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पर आखिर ब्रेक कैसे लगाया जाए। आप जो आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीर रख रहे हैं वह सचमुच बहुत भयावह है कपूर साहब।
2: देखिए, काफी लोग वर्षों के संघर्ष के बाद आदिवासी इलाकों में पेशा कानून लागू करवाया था। इसे सभी अधिसूचित क्षेत्र में लागू होना चाहिए और सख्ती से पालन होना चाहिए। नए कानून में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। मैं इसे संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध मानता हूं। उदाहरण के लिए, कहीं एक जगह 100 एकड़ जमीन ली गई, इसके बाद जब वहां शहरी और औद्योगिक विकास शुरू होता है तो पैसे वाले और उसके लठैत घूमने लगते हैं। वे आम आदमी के लिए कुछ नहीं सोचते। इससे स्थानीय लोगों में रोष पैदा होता है जिसकी परिणति भयावह होती है।
1: यह जो व्यवस्था है श्याम भाई, इस पर कैसे अंकुश पाया जा सकता है, कैसे हल निकाला जाए ताकि ऐसी जो स्थिति है, जिस स्थिति का जिक्र कपूर साहब कर रहे हैं, वैसी स्थिति उत्पन्न ही न हो पाए?
3: हाँ, मेरा मानना है कि जहां की जमीन ली जाए वहां के रहने वालों को बराबरी का हक मिले, उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था हो, किसान की गरिमा बनी रहे, अपने ही पुरखों की जमीन बेचकर वे मजदूर बनने पर विवश न हो। लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है। आदिवासी इलाकों में चप्पे चप्पे पर खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। इसे जब आप कंपनियों को दे देंगे और कंपनियां जब वहां से खनिज पदार्थ निकालने के लिए मशीनें लाएंगी, 50 या 100 साल बाद स्थानीय आदिवासियों को खड़े रहने की जमीन वहां कहां होगी
1: जी?
3: इस मामले में भूरिया समिति की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि पानी, भूमि, हवा आदि आदिवासियों की है, इसलिए वहां जो कोई परियोजना लगती है उसमें 50% हिस्सा आदिवासियों का हो ताकि वे मूल मालिक रहें, उसके बाद 26% हिस्सा कंपनी का हो और शेष 24% उन विस्थापितों का जो परियोजना से विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन नए कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें आदिवासियों के समक्ष कुछ टुकड़े फेंकने की बात है जिससे वे और उजड़े।
1: कपूर साहब, अब हम लोग थोड़ा सा विदेश विनियमन अधिनियम पर बात कर रहे तो अच्छा रहेगा कि ये विदेश विनियमन अधिनियम दरअसल किस प्रकार का अधिनियम है।
2: गरीबों और पद दलितों के बीच सामाजिक कार्यों की प्रगति के लिए बहुत से संघ संगठन राजनीतिक दल और व्यक्ति विदेशों से आर्थिक सहायता लेते आ रहे हैं। इससे बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाओं को मदद मिलती है। तो भी इस दिशा में शिकायत थी कि कुछ राजनीतिक दलों ने संस्थाओं ने और व्यक्तियों ने विदेशों से ली गई सहायता का दुरुपयोग किया है। इसलिए भारत सरकार ने महसूस किया कि विदेशी विनियमन को ग्रहण करने और उपयोग करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता है।
1: यह अधिनियम जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं श्याम भाई, इसको कब पारित किया गया था?
3: इस अधिनियम का नाम ही है विदेशी विनियमन अधिनियम 1976।
1: अच्छा,
3: तो जाहिर है कि 1976 में ही पारित हुआ है। तिथि थी 5 अगस्त। ये 5 अगस्त 1976 से प्रभाव में आया जब केंद्रीय सरकार ने आवश्यक नियम और विनियमन इस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रकाशित किया। बाद में इस अधिनियम में 1984 और 85 में संशोधन किया गया।
1: इस अधिनियम को पारित करने के पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था कपूर साहब?
2: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त पैसा, छात्रवृत्ति और आतिथ्य सत्कार के लिए धन को ग्रहण करने और उपयोग करने के लिए इस कानून को नियमित किया गया है।
1: बात यह है श्याम जी कि यह कानून किस पर लागू होता है?
2: ये अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। साथ ही साथ ये लागू होता है भारत में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों पर भी, व्यक्तियों के संगठन पर, पंजीकृत या अपंजीकृत सोसाइटी पर, कंपनियों और चुनाव के उम्मीदवारों पर।
1: इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी अभिदाय शब्द का इस्तेमाल किया गया है समझे? तो विदेशी अभिदाय का क्या अर्थ है समझे?
3: इसका अर्थ है किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार की वस्तु, मुद्रा या विदेशी ऋण पत्र का वितरण या स्थानांतरण जो कि किसी भी व्यक्ति ने विदेशी स्रोत से प्रत्यक्ष या एक से एक या अधिक व्यक्तियों से लिया है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या चीजें विदेशी अभिदाय समझी जाएंगी?
2: कोई भी वस्तु जिसकी कीमत 1,000 रूपये से कम है, जो किसी व्यक्ति के उपहार स्वरूप दी गई, उसके निजी प्रयोग के लिए, उसे विदेशी अभिदाय माना जाएगा।
1: विदेशी ऋण पत्रों का भी जिक्र इस अधिनियम में है श्याम जी, तो उसका क्या अर्थ है?
3: देखिए, इसका अर्थ है प्रत्येक विदेशी डिवेंचर, बंध पत्र, शेयर, संचित जिसे स्टॉक कहते हैं, और दूसरे ऐसे लिखित उधार पत्र।
1: अच्छा अच्छा, और विदेशी आतिथ्य सत्कार का क्या अर्थ होगा इस अधिनियम के तहत?
2: किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा जैसे विदेश यात्रा, मुफ्त भोजन और अस्थायी निवास, परिवहन या चिकित्सा जो विदेशी स्रोत से ली गई विदेशी आतिथ्य सत्कार में आती है।
1: एक बात यहाँ पर साफ करना जरूरी होगा श्याम जी कि विदेशी स्रोत का इस अधिनियम में क्या अर्थ है?
3: इसके अंतर्गत विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्था या अभिकरण, राष्ट्र संघ का बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धन संबंधी फंड और केंद्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित एजेंसी को छोड़कर विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम, न्यास, सामाजिक संघ या व्यक्तियों का संगठन जो विदेश में पंजीकृत हो, विदेशी नागरिक, विदेश की कोई व्यावसायिक संघ, विदेशी स्रोत के अंतर्गत इन सबको शामिल किया गया है।
1: कपूर साहब, एक बात ये बताइए कि विदेशी सहयोग या सहायता लेने से कौन कौन लोग वंचित हो सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, जिनको यह जो लाभ है, यह जो सहायता है, नहीं मिल सकता है?
2: इसके अंतर्गत जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, पत्रकार, कोलमनिस्ट, व्यंग्यचित्रकार, संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक, जो कि पंजीकृत समाचार पत्र के हों, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी निगम के कर्मचारी या निजी कंपनी जो सरकार के नियंत्रण और काबू में हो, किसी भी विधानसभा के सदस्य और राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी, भारत में या भारत के बाहर कोई भारतीय विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं कर सकता जो किसी राजनीतिक दल का हो।
1: विदेशी अभिदाय देने के लिए किसको केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है?
3: राजनीतिक प्रकृति के संगठन या संस्था।
1: अच्छा,
3: कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है और भारत का कोई नागरिक जो भारत से बाहर रह रहा हो, जो कि विदेशी अभिदाय या धन राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन के तौर पर ग्रहण करे या देने के इच्छुक हो, या भेजे हुए धन को किसी व्यक्ति को देना चाहे जो भारतीय हो और किसी भी राजनीतिक संगठन को धन दे सके, तो पहले उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ये विदेशी अभिदाय या आतिथ्य सत्कार की जो फंड मिलता है, तो आतिथ्य सत्कार के लिए पूर्व में अनुमति देने के लिए किसी भी संस्था को या संगठन को क्या करना चाहिए?
2: प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या संगठन जो कि विदेशी अभिदाय या आतिथ्य सत्कार लेना चाहता है
1: जी,
2: उसको पहले अनुमति लेने के लिए केंद्रीय सरकार को एक प्रार्थना पत्र देना होगा। राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन को विदेशी अभिदाय लेने के लिए फॉर्म FC1 दाखिल करना होगा और आतिथ्य सत्कार के लिए धारा 9 और धारा 10 व के तहत प्रार्थना पत्र फॉर्म नंबर FC2 पर देना होगा।
1: प्रार्थना पत्र देने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये अनुमति प्रदान कर दी गई है या नहीं की गई है?
3: लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद उस पर 60 दिनों के भीतर निपटारा नहीं किया गया तो मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।
1: इस जानकारी के लिए कपूर साहब और श्याम जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
2: जी। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद।
3: नमस्कार।

दोस्तों, अभी हमने सुना कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा WhatsApp नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आरवीए ऑफिस, सत्प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, MP। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहे और सुनते रहे सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कल्पना चावला की। जी हाँ, कल्पना चावला एक ऐसा नाम है साथियों जिसने भारत की प्रत्येक महिला का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज हर पिता चाहता है कि उनकी बेटी बहादुर इतनी हो जैसे कल्पना चावला थी। साथियों, भारत की कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में। एक पंजाबी हिंदू भारतीय परिवार में पैदा हुई कल्पना, संस्कृत में जिसके नाम का मतलब है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, ऐसे में उसका नाम और उसका व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं, तो उसमें आश्चर्य किया। साथियों, उड़ान में उसकी रुचि हुई थी जेआरडी टाटा, जो एक अग्रणी भारतीय पायलट और उद्योगपति थे, उनसे प्रेरित होकर। कल्पना चावला ने टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से स्कूली शिक्षा ली थी और वो 1982 में चंडीगढ़ भारत में पंजाब इंजीनियरिंग से आगे की पढ़ाई करने गई और सन 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। साथियों, सन 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया था और सन 1994 में कल्पना चावला का नासा के द्वारा चयन किया गया। इसके चलते मार्च 1995 में अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें ग्रुप में कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन हुआ था। जॉनसन स्पेस सेंटर में एक साल के प्रशिक्षण के बाद कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्री के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी क्षेत्रों में नियुक्ति की गई थी। यहां पर उनके दो प्रमुख काम थे, रोबोटिक उपकरणों का विकास करना और स्पेस शटल को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर की शटल एवियोनिक्स प्रयोगशाला में टेस्टिंग करना। साथियों, कल्पना चावला की प्रथम उड़ान एसटीएस 87 कोलंबिया शटल से संपन्न हुई। इसकी अवधि 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 थी। दरअसल इस उड़ान में उन परीक्षणों पर जोर दिया गया कि अंतरिक्ष में भारहीनता किस तरह से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। ये मिशन अंतरिक्ष में 376 घंटे और 34 मिनट रहा और इस दौरान स्पेस शटल ने धरती की 252 परिक्रमाएं की थी। साथियों, कल्पना चावला की दूसरी और दुर्भाग्य से आखिरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई थी। ये उड़ान 16 दिन का एक अंतरिक्ष मिशन था जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। साथियों, इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने 2 दिन तक 24-24 घंटे काम किया था और 80 परीक्षण और प्रयोग संपन्न किए थे। लेकिन 1 फरवरी सन 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल लैंडिंग से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना के साथ बाकी सभी 6 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। साथियों, उसकी दूसरी उड़ान को देखने के लिए कल्पना के माता पिता और उसकी दोनों बहनें भी भारत से अमेरिका गए थे और वहां पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था, कल्पना वापस नहीं आई, वो कल्पनाओं में ही खो गई। साथियों, कल्पना जब भारत के हाईस्कूल में पढ़ रही थी तब वे सोचा करती थी कि वाकई वे बहुत भाग्यशाली हैं जो करनाल जैसे शहर में जन्मी। दरअसल करनाल में उस समय भी फ्लाइंग क्लब्स थे। उन्होंने बचपन से ही छोटे छोटे पुष्पक विमान उड़ते हुए देखे थे। वे और उनका भाई कभी कभी साइकिल चलाते हुए इन उड़ते हुए विमानों को देखा करते, साथ साथ में अपने पिताजी से भी पूछते कि क्या मैं इन वायुयानों में बैठकर उड़ सकती हूँ। पिताजी उन्हें फ्लाइंग क्लब ले जाया करते थे और पुष्पक विमानों में बैठा कर सैर कराया करते थे। साथियों, शायद यही वो समय था जब उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रति रुचि हुई थी। इसके साथ ही
छोटी सी उम्र में उन्होंने भारत के जेआरडी टाटा का भी नाम सुना था, जिन्होंने भारत में मेल भेजने के लिए वायुयानों का प्रयोग किया था। वे बचपन से इन बातों को पढ़ रही थी और जब भी उन्हें कोई पूछता था कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तब उनका जवाब होता था एरोस्पेस इंजीनियर। साथियों, कल्पना को जीवन में अनेक लोगों से प्रेरणा मिली, सबसे ज्यादा प्रेरणा अपने अध्यापकों से और किताबों से। तो साथियों, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रही कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष उड़ान। इस उड़ान में न केवल बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और जिस मिशन के लिए उन्हें वहां भेजा गया था उस मिशन को पूरा किया। तो चलिए एक छोटी सी कल्पना चावला की द्वितीय अंतरिक्ष यात्रा को हम बिंदुओं के क्रम में देखें। सबसे पहले प्रथम भारतीय अमरीकी अंतरिक्ष यात्री, जन्म भारत में और फिर अमरीकी नागरिक। कल्पना चावला का सन 1994 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन हुआ। इसके बाद अमरीकी डॉक्टरेट और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्हें एमएस मिला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय नागरिक और सबसे पहली भारतीय महिला, पहले यात्री हम सभी जानते हैं राकेश शर्मा थे। आपने फ्रांसीसी जॉन पियर से शादी की जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। स्पेस शटल की ये उड़ान जिसमें कल्पना चावला ने यात्रा की, ये उसकी 13वीं उड़ान थी। सन 2003 में संपन्न स्पेस शटल की 5वीं उड़ान थी। 1986 में चैलेंजर दुर्घटना के बाद 88वीं शटल उड़ान में भी कल्पना ने भाग लिया। दरअसल ये मिशन अल्फा स्टेशन की असेंबली के लिए नहीं था। कोलंबिया स्पेस शटल की 28वीं विन उड़ान में भी आपने भाग लिया। साथियों, कैनेडी स्पेस सेंटर की 62वीं पूर्व निर्धारित लैंडिंग और उसके साथ ही 93 दिन की लैंडिंग, इसके आगे कैनेडी स्पेस सेंटर में 48 दिनों की लैंडिंग, उसके बाद कल्पना ने देखा कोलंबिया का अंतरिक्ष यान और उसमें सवार होकर ढेर सारे भारतीयों की आशा बनकर कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंची। कोलंबिया के साथ उन्होंने आगे चलकर बहुत सारे असंभव मिशन्स को कामयाब कर दिखाया। साथियों, अंतरिक्ष यात्रा करना हम सभी के मन का एक सपना होता है, साथ ही मन में एक डर भी होता है कि यदि हमारा यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तब क्या होगा। लेकिन कहा जाता है एक बहुत बड़े विचारक द्वारा भी कि अनुसंधान के लिए जान देना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जान देना दोनों एक समान है। तो आज कल्पना चावला की याद यदि हम करते हैं तो वे एक सम्माननीय महिला या फिर एक बहादुर अंतरिक्ष यात्री सिर्फ इतनी नहीं थी, वे वाकई करनाल की बेटी थी। वे भारत के प्रत्येक माता पिता के मन में पलने वाली एक बेटी की आकांक्षा थी। साथियों, कल्पना चावला एक भारतीय नागरिक थी जिन्होंने इतना साहसी काम कर दिखाया। आज हमें गर्व है उन पर और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे भारत में बेटियों को प्रत्येक घर में इतनी सुविधाएं मिले कि प्रत्येक घर से इस प्रकार की एक बहादुर बेटी निकल सके जिसके ऊपर हम सभी चर्चा कर सके और वही बेटी आने वाले समय में हमारी जितनी भी बेटियां हों उनके लिए एक आदर्श का काम कर सके, एक बहादुरी की विरासत उन्हें दे सके और सारी दुनिया को ये जवाब मिल जाए कि भारत में कन्या को देवी या दासी नहीं माना जाता

दोस्तों, अभी हमने सुना कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाटक और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: प्रस्तुत है नाटक हम किसी से कम नहीं। लेखक निर्देशक हैं माइकल हॉजेस। आपको पता है कि शशांक हमारा बेटा बड़ा हो गया है।
1: अच्छा, शशांक बड़ा हो गया? अच्छा हुआ तुमने बता दिया नीता, वरना मुझे तो पता ही नहीं था।
0: क्या बात करते हैं आप भी।
1: और तुम शशांक की क्या बात कर रही हो? क्या वही बड़ा हो गया? हमारी बेटी रिया, क्या वो बड़ी नहीं हुई?
0: ओफो, मैं अगर सिर्फ शशांक की बात कर रही हूँ तो किसी कारण से।
1: कारण से?
0: कौन
1: से कारण से?
0: देखो, अब तो उसकी नौकरी लगे भी 1.5 साल हो गया है।
1: तो ये तो उसके बड़े हो जाने का कोई कारण नहीं हुआ। कई लोग बड़े होकर ही अच्छी नौकरी करते हैं, क्योंकि बड़े हो जाने तक वे खूब पढ़ाई करते हैं, और क्या। तो अगर शशांक भी बड़ा हो गया है और नौकरी कर रहा है, तो इसमें कौन सी एकदम नई बात हो गई और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत आ पड़ी है?
0: आप भी ना, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। यानी आप जाग रहे हैं लेकिन सोने की एक्टिंग कर रहे हैं।
1: चलो तो फिर ऐसा करो कि कहावत और मुहावरे में बात करना छोड़कर तुम साफ साफ कहो कि तुम शशांक के बारे में क्या कहना चाहती हो।
0: मैं ये कहना चाहती हूँ कि शशांक शादी के लायक हो गया है। उसकी शादी की कोई फिक्र है भी आपको?
1: लो, अभी तो तुम खुद ही कह रही थी कि शशांक बड़ा हो गया है, तो अब उसके बड़े होने के बाद भी उसकी क्या फिक्र करूँ मैं?
0: आप भी है ना, बस एक ही है।
1: वो तो है।
0: अरे मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ, शादी की।
1: लो, शादी की बात तो अभी की तुमने, वरना तो तुम उसके बड़े हो जाने की बात कर रही थी।
0: क्यों, क्या वो आपका बेटा नहीं है? उसकी शादी की फिक्र मैं ही करूं? आपको उसकी शादी की कोई फिक्र नहीं है?
1: और नीता, अगर मैं ये कहूँ कि जब तुम्हें उसकी शादी की फिक्र है ही, तो फिर मैं उसकी शादी की जबरदस्ती फिक्र कर मैं अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊँ? तो
0: वाह, क्या कहने आपके भी ना। अगर सभी बाप आपकी तरह ही सोचने लगे ना, तो फिर तो कोई अपने बेटे की शादी की फिक्र ही नहीं करेगा।
1: तुम गलत कह रही हो नीता। फिक्र उसी की जाती है जो असमर्थ हो। जो खुद समर्थ होता है उसकी फिक्र की जाती है क्या?
0: आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको?
1: मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ नीता जो तुम सुन रही हो।
0: मैं जो सुन रही हूँ उससे तो मुझे यही लगता है कि आपको शशांक की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और ये कि आप उसे अपना नहीं समझते हैं।
1: तुम बिल्कुल ठीक सुन रही हो। और हाँ, ये तुम गलत समझ रही हो कि मैं उसे अपना नहीं समझता। अपनों को अपना समझने की जरूरत नहीं होती नीता। अपने तो हर हाल में अपने ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब कुछ और ही था।
0: तो आप अपना मतलब समझाएंगे भी मुझे?
1: मेरे कहने का मतलब है कि शशांक अपनी शादी करने में समर्थ है, तो फिर उसकी चिंता मैं क्यों करूं?
0: आप फिर वही बात कर रहे हैं। अरे क्या सिर्फ नौकरी कर लेने भर से लड़का अपनी शादी करने के लिए समर्थ हो जाता है? अरे क्या माँ बाप को उसके लिए लड़की की तलाश नहीं करनी पड़ती है?
1: वही तो मेरे कहने का मतलब है कि जब उसने अपने लिए खुद ही लड़की तलाश कर ली है, तो शादी भी कर ले।
0: ये आप क्या कह रहे हैं, शशांक ने लड़की तलाश कर ली है?
1: मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हाँ, शशांक ने अपने लिए लड़की तलाश कर लिया है।
0: ये आप कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हैं मुझसे?
1: मैं पहेलियाँ नहीं बुझा रहा हूँ, तुम्हें असलियत बता रहा हूँ। असलियत तुम्हारे बेटे की। तुम किस जमाने में जी रही हो नीता? क्या तुम्हें पता नहीं कि आजकल के लड़के लड़कियाँ अपना जीवन साथी खुद चुन लेते हैं?
0: चुन लेते होंगे, लेकिन मेरा शशांक ऐसा नहीं है। वो अगर ऐसा करता तो आपको नहीं तो कम से कम मुझे तो बता ही देता।
1: लगता है तुम किसी गलत फहमी में जी रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि उसने तुमसे भी ये बात छिपाया है? वह वाकई में एक लड़की को लेकर घूमता है।
0: आपसे ये सब किसने कहा मगर?
1: अब किसी न किसी ने तो कहा ही होगा, ऐसी बातें भला कब तक छिपती हैं?
0: जरूर किसी ने आपसे झूठ कहा होगा, मैं नहीं मान सकती। किसी झूठे ने आपसे चुगली कर दी होगी बस।
1: तुम मुझे क्या कहोगी? मुझे भी झूठा कहोगी?
0: नहीं,
1: मुझे जब किसी ने कहा था कि शशांक आजकल बड़ा हो गया है क्योंकि वो अक्सर एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा जाता है, तो मैंने भी तुम्हारी तरह से उसकी बात को हल्के रूप में ही लिया था। लेकिन जब एक बार मैंने उसे खुद एक लड़की के साथ देखा, तो मुझे भी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा था।
0: कमाल है शशांक ने तो मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, वरना वो तो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता था। फिर
1: अभी अभी तुम ही तो कह रही थी कि शशांक बड़ा हो गया है, और अब तुम ही उसके बात छुपाने पर अफसोस कर रही है।
0: वो इतना बड़ा भी नहीं हो गया है कि अपनी माँ से ही बात छिपाता फिरे।
1: वाह नीता वाह, शशांक मुझसे यानी अपने बाप से बात छिपाए तो चलता है, लेकिन तुमसे कोई बात छिपाए तो तुम्हें अफसोस होता है।
0: आपने तो खुद शुरू से ही उससे एक दूरी सी बना रखी है।
1: मैंने वही किया है जो उसके लिए जरूरी समझा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वह कभी मुझे अपनी कोई बात बता ही नहीं। और फिर मेरी तो छोड़ो, तुम अपनी कहो। तुमने तो उसे खूब सिर चढ़ा रखा था, तो फिर उसने तुमसे क्यों अपनी बात छिपाया? बोलो, अब चुप क्यों हो?
0: हो सकता है उसका उस लड़की से शादी करने का कोई इरादा ही ना हो, वरना वो तो मुझे जरूर ही बताता।
1: बताता ही नहीं, उस लड़की से तुम्हें मिलवा भी देता। क्यों?
0: बिल्कुल मिलवा देता।
1: बिल्कुल मिलवा देता। और तुम मुझे जरा ये बताओ कि जब उसे उस लड़की से शादी ही नहीं करना है तो वो उस लड़की को लेकर घूमता ही क्यों है? क्या वो उस लड़की से सिर्फ दिल बहला रहा है? क्या दूसरे की लड़की फालतू है?
0: ये बात वो लड़की भी तो जानती होगी कि शशांक उससे शादी करेगा, तो फिर क्यों वो उसके साथ घूमती फिरती है? आप क्या समझते हैं, आजकल की लड़कियां भी कम नहीं है?
1: कितनी अच्छी बात कही है तुमने आजकल की लड़कियों के बारे में। आजकल की सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती। मुझे एक बात बताओ नीता, हमारी बेटी रिया भी तो आजकल की ही लड़की है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
0: क्या बात कर रहे हैं आप भी, हमारी रिया ऐसी नहीं है।
1: हो सकता है रिया भी ऐसी ही हो। तो
0: मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है।
1: इतना जान लो तुम कि अपनों पर सभी भरोसा करते हैं और उन्हीं अपनों से ही धोखा भी खाते हैं। लेकिन हाँ, मैं शशांक से ज्यादा रिया को जानता हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रिया ऐसी नहीं है। लेकिन अगर शशांक उस लड़की से शादी नहीं करेगा तो उसे लेकर यूं घूमने और बदनाम करने के पीछे उसका क्या मतलब है? अगर हमारी रिया के साथ भी कोई ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा?
0: देखो जी, ये कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि किस इज्जतदार माँ को ये सब अच्छा लगेगा।
1: मगर तुम्हारा लाडला यही सब कर रहा है। अगर उसे उससे शादी करना ही है तो तुमसे, मुझसे, हमसे कहता क्यों नहीं?
0: उसे आने दो, मैं बात करती हूँ उससे अभी।
1: तुम तो खैर बात करोगी तो उसे सब कुछ बताना ही पड़ेगा, लेकिन बात तो तब होती जब वो खुद आगे रहकर तुम्हें सब कुछ बताता और शादी की बात छेड़ता।
0: हाँ पर।
1: मगर क्या करें, तुमने तो उसे खूब सर चढ़ाकर अपने लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है, वरना क्या मैं उसका दुश्मन हूँ?
0: अब माँ अपने ही बच्चे को लाड़ नहीं करेगी तो किसे करेगी फिर?
1: माना माना, तुम्हारी बात माना नीता, कि माँ अपने बच्चे को लाड़ नहीं करेगी तो किसे करेगी? लेकिन क्या तुम्हारा सिर्फ एक ही बच्चा है शशांक? क्या रिया तुम्हारी बच्ची नहीं है? और अगर है तो तुम उसे भी शशांक जितना लाड़ प्यार क्यों नहीं करती? क्यों सिर्फ शशांक को ही लाड़ प्यार करती हो और उसके सामने रिया को कुछ नहीं समझती?
0: मैं तो रिया को भी लाड़ प्यार करती हूँ।
1: मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम रिया को बिल्कुल प्यार नहीं करती हो। करती हो, तुम रिया को भी प्यार करती हो
0: फिर?
1: मगर शशांक के बराबर नहीं, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता वही पुरानापन लिए हुए है जो लड़की से ज्यादा लड़के को महत्व देती रही है।
0: आपकी ये सोच गलत है मेरे लिए।
1: अगर मेरी सोच गलत है नीता, तो फिर तुम दोनों को लाड़ प्यार करने में भेदभाव क्यों करती हो? क्यों शशांक की फरमाइश पर हम सब घर भर को उसकी पसंद का खाना खाना पड़ता है? क्यों रिया की फरमाइश पर तुम ऐसा नहीं करती हो?
0: रिया अपनी पसंद का खाना खुद

0: लड़के से ही करना चाहिए, बेटी से नहीं। क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि बेटियां पराई होती हैं? आज मायके में नजर आती हैं तो कल ससुराल में।
1: अभी तो अपने घर में है।
0: तभी तो कहता हूं, उसे जितना लाड़ कर सकती हो उतना कर लो, उसे जितना प्यार कर सकती हो उतना प्यार कर लो। और फिर आजकल वैसे भी बेटा कौन सा अपने माँ बाप को पूछता है, इधर शादी किया उधर वो अलग हुआ।
1: मगर हमारा शशांक ऐसा नहीं है, आप देख लेना।
0: तुम ही देखना ही है, आजकल बेटा अपने माँ बाप को नहीं पूछता, बल्कि बेटी ही अपने माँ बाप को पूछती है, ये तुम देखना।
1: मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है।
0: और मुझे नहीं है, इसीलिए उसके लिए मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने अपने आप को बेटे के भरोसे नहीं छोड़ा है, और न ही बेटी से भी इसी कोई आशा करता हूँ, क्योंकि वो बेचारी तो खुद अपने पति के कहने में रहेगी।
2: हाँ ठीक है यार, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ वैसे तो मैं ठीक टाइम पर ही पहुंच जाऊंगा। नहीं यार, तुझे वेट नहीं कराऊंगा। और हाँ, तू आएगी तो जाने की जल्दी मत करना, वरना तुझे जाने की बहुत जल्दी रहती है। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय।
1: शशांक बेटा, खाना लगाऊं?
2: नहीं मम्मी, मेरा खाना आज एक दोस्त के साथ कहीं बाहर है।
1: दोस्त के साथ है?
2: हाँ मम्मी, एक दोस्त के साथ। हमारा बहुत दिनों से प्लान था, आज वो पूरा होगा।
1: तू सच कह रहा है ना बेटा?
2: तो इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है मम्मी?
1: तू अभी फोन पर उसी दोस्त से बात कर रहा था।
2: हाँ मम्मी, क्यों?
1: फिर तो तू सचमुच मुझे झूठ बोल रहा है।
2: मगर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा मम्मी?
1: क्योंकि अभी अभी तू फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था। कर रहा था ना? या तू अब भी मुझसे झूठ बोलेगा?
2: हाँ मम्मी, मैं फोन पर शिखा से बात कर रहा था।
1: ये शिखा कौन है बेटा?
2: मेरे साथ ही काम करती है मम्मी।
1: तुम दोनों के बीच दोस्ती भी है ना?
2: हाँ मम्मी।
1: और दोस्ती भी ऐसी वैसी नहीं। क्या मैं गलत कह रही हूँ तुझसे?
2: नहीं मम्मी।
1: क्या तू उससे शादी करना चाहता है बेटा, या फिर यूं ही टाइम पास कर रहा है?
2: आप भी क्या बात करती है मम्मी, मैंने शिखा से टाइम पास करने के लिए प्यार थोड़ी किया है।
1: मतलब तू उससे शादी करना चाहता है?
2: हाँ मम्मी।
1: तो बेटा फिर तूने मुझसे अपनी और शिखा की बात छिपाई क्यों?
2: सीधी सी बात है मम्मी, मैं आपको बताता और आप सीधे पापा को ही बताती।
1: क्यों, आज नहीं कल तो उन्हें बताना ही था, उनसे छिपाने का कोई मतलब है क्या? देख बेटा, तुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कड़क हैं तेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त और भीतर से एकदम नरम।
2: लेकिन फिर भी मम्मी, वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे।
1: मगर क्यों? क्यों तैयार नहीं होंगे बेटा, आखिर ऐसी क्या बात है?
2: क्योंकि शिखा हमारी जात की नहीं है, इसलिए।
1: उससे क्या होता है बेटा, वो कुछ नहीं कहेंगे। आजकल के जमाने में भला जात पात को कौन मानता है? ये तो अब सब गई गुजरी बातें हो चुकी हैं, मैं सब संभाल लूंगी।
2: आप सच कह रही ना?
1: हाँ हाँ बेटा, तू इतना क्यों परेशान होता है?
2: इसलिए मम्मी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी करके यहाँ आने के बाद शिखा को यह दुख मिले और वो दुखी रहे, ये सोच करके उसने मुझसे शादी क्यों की।
1: तू ऐसा क्यों सोचता है रे बेटा, रहेगी तो वो मेरे ही साथ ना।
2: आप ये बोल रही है मम्मी कि रिया और पापा भी इसी घर में रहते हैं,
1: तो
2: उन दोनों की ओर से कुछ बात हो सकती है, या शिखा की ओर से भी कोई बात हो सकती है।
1: इन दोनों को तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन शिखा, क्या शिखा तेज लड़की है?
2: तेज तो नहीं मम्मी, लेकिन उसे गलत बात पसंद नहीं।
1: तो तू क्यों चिंता करता है, यहाँ इस घर में उसके साथ कौन गलत बात करेगा बेटा? मैं तेरे पापा से बात करूंगी।
2: नहीं मम्मी नहीं, अभी उनसे बात मत करना, मैं कहूँ तब उनसे बात करना, उनको अभी कुछ मत बताना।
1: उनको क्या कुछ मत बताना, उनको सब कुछ पता है।
2: क्या सब कुछ पता है मम्मी?
1: यही कि तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती है, उन्होंने ही तो मुझे ये बात बताई थी।
2: क्या बताया था?
1: यही कि तुम किसी लड़की के साथ घूमते फिरते हो और तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी है।
2: और क्या बताया था उन्होंने?
1: बस और क्या, दरअसल पहले उन्हें किसी ने बताया था कि तुम किसी लड़की को लेकर घूमते फिरते हो, फिर एक बार उन्होंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ कहीं घूमते फिरते भी देख लिया था।
2: मतलब पापा को सब कुछ पता है, क्या उनको ये भी पता है कि शिखा हमारी जात की नहीं है?
1: इस बारे में तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की।
2: हो सकता है वह इस बात के इंतजार में हो, जब मैं शिखा को लेकर उनसे बात करूं तो वो सीधे ना कर दें।
1: तू गलत सोच रहा है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही बात कर रहे थे कि तू अब अपनी शादी करने के लिए समर्थ हो गया है। अब रहने भी दो, जब आप काम ले ही आए हैं तो कर डालो, बाजार कल चल सकते हैं।
0: ये तुमने समझदार पत्नियों की तरह समझदारी दिखाई ना, वैसे तुम्हें बाजार में काम क्या था?
1: दो तीन काम थे, एक तो मेरे मोबाइल में वैल्यू वाउचर डलवाना था और रिचार्ज भी करवाना था उसको, फिर घर के लिए कुछ सामान वगैरह भी खरीदने थे।

0: अब मोबाइल में तो मैं रिया को ही दे देती हूँ, वही करवा लाएगी।
1: रिया रिया,
2: कभी बेटी भी कह लिया करो उसे।
1: क्या है मम्मी, आपने बुलाया क्या?
0: हाँ रिया, तू अगले चौराहे पर जरा जाकर जरा मेरा मोबाइल उठा वहाँ से, रिचार्ज तो करवा ला और 6 महीने का वैल्यू वाउचर भी करवा लेना। वो टेबल पर रुपए और मोबाइल रखे, उठा ले वहाँ से।
1: क्या मम्मी, अगर सुबह दे देती तो ऑफिस से लौटते समय मैं ये सब काम करवा ले आती, अब फिर अगले चौराहे तक जाना पड़ेगा। आप एक काम करो, थोड़ी देर में शशांक भी आ जाएगा तो उससे भेजकर करवा लेना, वो मोटरसाइकिल से यूं जाएगा और यूं आ जाएगा।
2: बेटी तू भी किस लापरवाह का नाम ले रही है, हा? उसे तो अपने ही काम से फुर्सत नहीं रहती, इस उम्र में भी घर का राशन आज भी मुझे ही लाना पड़ता है।
1: मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है पापा कि आपकी मोपेड से जाकर मैं ले आती हूँ, मगर आप सुनते ही नहीं। शशांक भैया को भी आप कहते नहीं, इसलिए वो भी कुछ करता नहीं।
2: अब ये भी कोई कहने की बात है बेटा, क्या उसे कुछ दिखाई नहीं देता? अब जैसे तू बेटी, तू मुझसे राशन लाने का खुद कहती है, तो क्या वो खुद मुझसे नहीं कह सकता?
1: मगर पापा शशांक भैया को और।
0: अरे तेरे पापा को तो बस मौका मिलना चाहिए और क्या।
2: सही बात कहने के लिए ही तो हमेशा मौके की तलाश होनी चाहिए। क्यों इस तरह से उदास बैठी हो नीता? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि शशांक पर इतना भरोसा और विश्वास मत करो, मगर तुम नहीं मानी। आखिर अपनी लव मैरिज करते ही बहू को वहीं से ले जाकर वो घर से अलग हो गया ना।
0: मगर मेरा बेटा होते भी है, मैं कैसे मान लूं कि मेरा कोई बेटा नहीं है?
2: बेटा होने का अर्थ तभी होता है नीता जब बेटा अपने होने को सार्थक करे, वरना उसके होने का अर्थ ही क्या है?
1: मम्मी पापा, मैंने आप दोनों की बातें सुनी है, और मम्मी आपका दर्द और आपका अफसोस भी मैंने देखा है। आप लोगों को निराश, उदास और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। शशांक भैया इस घर से चले गए तो क्या हुआ, आपकी बेटी रिया तो है, मैं संभालूंगी आप दोनों को जिंदगी भर।
2: नहीं बेटी, तुझे आज नहीं कल शादी करके अपने घर जाना है।
0: हाँ बेटी, तू हमारे पीछे क्यों अपना जीवन अंधकारमय बनाती है?
1: ये जीवन भी तो आपका दिया हुआ है, और अगर यही आप लोगों के काम ना आए तो फिर ये जीवन किस काम का? और आप लोगों के जीवन में अंधेरा करके मैं अपना जीवन रोशन कैसे कर सकूंगी?
2: बेटी तूने हमारे लिए इतना कह दिया, हमारे लिए यही काफी है। देखा नहीं था, देखा, आज तुमने देख लिया कि बेटी बेटे से किसी भी तरह से कम नहीं होती।

दोस्तों, अभी हमने सुना कार्यक्रम नाटक, जिसके लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस, और इनके नाटक का शीर्षक था जिंदगी का सच, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब मैं आगे की सभा का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक पीटर रॉबर्ट को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा और उनके साथ हैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर श्री एसवी वित्वेकर साहब। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात स्वतंत्र कुमार ओझा के साथ।

0: रेडियो वेरिटास के हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। आज के हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में आमंत्रित हैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर श्री एस वी विटवेकर। नमस्कार विटवेकर साहब।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इंदौर में कब से हैं?
1: इंदौर में मैं हूँ 1958 से।
0: आपका शिक्षण सारा इंदौर में ही हुआ?
1: मैं हायर सेकेंडरी मैंने इंदौर से किया है महाराजा शिवाजीराव में, और मैं अपने सिस्टर के यहाँ आके रुका था यहाँ।
0: और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ हुई आपकी?
1: कॉलेज की प्रथम वर्ष मैंने धार डिग्री कॉलेज से किया, और सेकंड और थर्ड ईयर सेंधवा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से किया।
0: और उसके बाद आप बीए तक ही आपने अपनी शिक्षा की?
1: उसके बाद में शिक्षा मैंने पोस्ट ग्रेजुएट का फर्स्ट ईयर किया था बड़वा कॉलेज से।
0: अच्छा, तो फिर आप अपने नौकरी के सिलसिले में करियर बनाने में तो कैसे शुरुआत हुई, क्या बने आप सबसे पहले?
1: सबसे पहले 1962 में एज ए केशियर खजांची के रूप में मैंने बैंक में प्रवेश किया।
0: खजांची के रूप में? कहाँ पर?
1: सेंधवा में।
0: सेंधवा में, यानी शुरुआत आपकी बैंक के खजांची से हुई?
1: खजांची से।
0: तो खजांची की तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं।
1: हाँ, रहती तो है, रहने उसमें क्या रहता है कि थोड़ा अपना जो है पूर्ण विश्वास लोगों का निर्माण करना, और कोई भी उनको ऐसा नहीं लगे कि अपन ने कुछ किया, करते तो थे ही नहीं वैसे, तो ज्यादा ज्यादा जितना करेक्ट वर्किंग हो उसी से सही कामकाज करके उनको संतुष्ट रखना, और बैंक का जो केस नकदी रहता था उसको व्यवस्थित जमा के और रखना, ये खजांची का काम रहता था।
0: पहले के जमाने में, आप तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं 1962 के बाद की, तो उस जमाने में बैंकों का कामकाज कैसे चलता था, लिखत पढ़त कैसे होती थी?
1: उस समय जैसे कस्टमर बैंक में आता था तो सबसे पहले उसका वाउचर, अब वाउचर के लिए हिंदी शब्द अभी तक कोई अपन ने,
0: हाँ, एक तरह की रसीद
1: रसीद रहती है, तो वो कस्टमर ही भर के देता था। जैसे ड्राफ्ट वगैरह का जो है वो अपने को बनाना पड़ता था, बाकी स्लिपे सब कस्टमर भर के देते थे। तो जैसे करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, मियादी जमा, लोन अकाउंट, ऐसे हेड्स रहते थे, वो भर के पहले क्लासीफाइड हो जाते थे।
0: अच्छा।
1: तो उसके आधार पे लेन देन चला करता था, तो 2:30 बजे तक ट्रांजेक्शन जैसे सब पूरा लेन देन होता था,
0: उसके बाद सारी जमा पूंजी वगैरह
1: सब निकाल के उसको मिलाया जाता था हिसाब।
0: हाँ, को। और व्यापारिक तौर पर किस तरह का कामकाज होता था बैंक में?
1: यानी व्यापार के हिसाब से ही बैंक फाइनेंस करना पसंद करती थी,
0: यानी
1: कर्ज देना पसंद करती थी। और ये जो सेंधवा ब्रांच थी, यानी ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में जैसे था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो था वो ज्यादातर कपास के क्षेत्र में कार्य करता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: और कपास के लिए ही फाइनेंस करता था।
0: अच्छा।
1: और कपास के लिए जो पार्टियां थी उनके कारखाने जैसे उनका जीनिंग और प्रेसिंग, दो मेन बिजनेस अपने इंदौर क्षेत्र में थे।
0: हाँ, इन्हें कपास से जो कपड़ा बनाने की जो मिलें होती थी
1: उनके लिए रॉ मटेरियल तैयार करना,
0: उनके लिए
1: कच्चा माल तैयार करना,
0: जी, जी, जी।
1: ये अपने एरिया की विशेषता थी।
0: तो शुरुआत में यही होता था कि
1: शुरुआत में जो है सिर्फ ये कपास के लिए ही फाइनेंस किया जाता,
0: फिर धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंची बैंक से।
1: हाँ, फिर बाद में जब राष्ट्रीयकृत हुआ तो उसके बाद में जो पैसा उधार देने का जो प्रथा थी उसमें काफी बदलाव आते गए। तो सबसे पहले जो है काश्तकारों को लोन देना चालू किया, यानी नया क्षेत्र।
0: अच्छा अच्छा।
1: उसके बाद में फिर उपभोग ऋण, उसके बाद में जितनी जितनी सुविधाएं आती जाती थी, एजुकेशन, ये ऐसा धीरे धीरे धीरे धीरे, यानी राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार जो पॉलिसी, जो ये नीति सरकार निर्धारित करती थी उसके हिसाब से बैंक का जो है लोन देने का कार्यक्रम बनाया जाता था और लोन बांटा जाता था।
0: और ये लोन किस तरह के होते थे, जैसे नौकरी पेशा लोग हैं इनके लिए किस क्या क्या लोन देते थे?
1: नौकरी पेशा एक तो मांग ऋण रहता था, तो मांग ऋण में क्या रहता है कि जैसे लमसम अमाउंट एक साथ जितना भी रकम देना है वो दे दी उनको, और उसके बाद में वो उसको वापस देते, साल भर की लिमिट चलती थी, साल भर में वो खाता पूरा करके फिर से उसको रिन्यूअल कर देते। एक तो ये इसको मांग ऋण की जब मांगा तब दिया, और जब उनकी आवश्यकता को उन्होंने पूरा कर दिया तो इस हिसाब से उनका कार्यक्रम हो जाता था। और दूसरा जो था कि किश्तों में ऋण दिया जाता था, तो किश्तों में जो ऋण देते थे उसका जैसे साल भर, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल ऐसा फिक्स करके उनकी किस्तें बनाते थे, और उसकी आय के हिसाब से वो किस्त उससे वसूल करके जमा करवा के पूरा ऋण उनसे वसूल कर ले।
0: और ये जो औद्योगिकरण हुआ उसके बाद घरेलू कई चीजें उत्पाद घरेलू जैसे ट्रांजिस्टर है,
1: लघु उद्योगों में, तो उसमें दो ये बात है, एक तो सेवा क्षेत्र में जैसे उसको कहते हैं छोटे जो व्यापार है, जैसे किराना है, टेलर है, ये इसको तो टेलर को भी लघु उद्योग में लेते थे, और व्यापार में जैसे किराना कपड़े की दुकान करने वाला कपड़ा बेचता था, तो ऐसे दो सिस्टम, दो तरीके निर्माण के, तो उद्योगों के लिए भी देते थे और व्यापार करने के लिए भी देते छोटे लोगों को। पहले तो बड़े लोगों को लेते थे, तो वो लाखों में करोड़ों में लिमिट जैसे बनती थी, इन लोगों को हजारों में देते,
0: आम आदमी भी उसमें शामिल,
1: आम आदमी भी उसमें सम्मिलित हो गया।
0: अच्छा, जैसे किसी को कार खरीदनी हो, किसी को वॉशिंग मशीन खरीदनी हो, ऐसे भी कुछ लोन?
1: भाई शुरू में जैसे क्या पीरियड था कि उस समय ये जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, यानी रेडियो भी बहुत देर से आया अपने यहाँ, तो उस समय ये चीजों की कोई डिमांड ही नहीं थी।
0: बाद में तो हुई,
1: ज्यादातर सिलाई मशीन उसके लिए अपन देते थे। बाद में जब ये रेडियो, टीवी और आपका वाशिंग कपड़े धुलाई की मशीन, ये जो अन्य अन्य वस्तुएं मार्केट में आई, बाजार में आई, तो उसके लिए भी एज ए उपभोक्ता ऋण के नाम से एक योजना बनाई गई, उसमें ये सारी चीजें जो है, जो ज्यादातर कर्मचारियों लोगों को देना
0: जो
1: पसंद कर,
0: वेतन भोगी
1: लोगों,
0: तो उनको ऋण वापस अदायगी के लिए क्या नियम होते हैं बैंक में? आज भी वही नियम है?
1: वही नियम है।
0: क्या है वो?
1: वो ये है कि जैसे उसका जो तनख्वाह रहती थी, तनख्वाह का एक रेशो फिक्स कर देते थे कि भैया जैसे आपको 10,000 तनख्वाह मिलती, तो सारे खर्चे काटने के बाद आप जैसे 1,000 रूपये बचत कर पाते हैं ऐसा मान के चलो, तो उसकी जो पेइंग कैपेसिटी 1,000 रूपये है, तो उस हिसाब से साल भर या दो साल का जो ऋण है, दो साल के लिए ऋण दिया जैसे मान लो, तो 500 रूपये महीने के हिसाब से किस्त उसकी फिक्स कर देते थे, तो उसमें ब्याज और मुद्दल ऐसे दो साल में वो पे कर देगा, इतना ऋण उसको हम देते थे।
0: अच्छा, ये मकान बनाना और किसानों को भी सुविधाएं देना, तो गृह निर्माण की भी बहुत सारी लोन्स दिए जाते हैं बैंकों द्वारा, तो उनकी अदायगी के लिए क्या नियम है?
1: उनका भी यही कि उनका जो है आय क्या है, यानी बेस जो है किसी को भी ऋण देना है, तो वो उसकी माली हालत क्या है, उसकी वापस करने की क्षमता क्या है।
0: हाँ, जैसे किसी को मकान बनाने के लिए लोन
1: देना, जैसे मकान बनाने के लिए लोन देना है, तो उसका जो किस्त आएगा वो किस्त वो पे कर सकता है कि नहीं, ये एसेस कर लेते हैं। इसकी जो ऋण की किस्त निर्धारित होती थी, उसकी आय क्या है ये देखने के बाद में उसकी पेइंग कैपेसिटी जैसे निकाली, तो बाजार का जो कास्ट जो कीमत आती है, जमीन का ये लगा, मकान बनाने को ये लगा, प्रोजेक्ट लेते मैं उनसे एक योजना बना के लेते हैं, उसमें कितना खर्चा होगा ये निकाल लिया अपन ने, अब उसमें जो सेविंग कैपेसिटी है वो पे कर सकता है, जो उसके पास बचत है
0: कितना बचा सकता,
1: हाँ दे सकता है किस्त, तो वो निकाल लेते हैं उसकी आय के हिसाब से, और जो ऋण देते हैं अपन, ऋण प्लस ब्याज, ये इनका एडवांस में यानी पहले से ही इसके कैलकुलेशन रहते थे, जैसे 8%, 9%, 10%, ये तो परिवर्तनशील रहता है। अभी तो 8% चल रहा है।
0: तो मान लीजिए जैसे किसी ने 20,000 रुपए का लोन लिया,
1: हाँ,
0: तो उस पर 8% का ब्याज लगाया।
1: जैसे अपन ने दिया ऋण उसको 20 साल के लिए, तो 20 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते,
0: 20 साल का ब्याज जोड़ लेते
1: कटमिति से,
0: हाँ,
1: कि जैसे किस्त जमा होंगी तो इतना बचा, इस पे कितना इंटरेस्ट, इतना बचा, इतना कितना,
0: हाँ, वो तो कटता जाता है
1: कटमिति के आधार पर, जो टोटल ब्याज होता है प्लस प्रिंसिपल, ये दोनों मिला के 20 साल का जो 240 इंस्टॉलमेंट बनेगी उससे डिवाइड करके जो उसकी किस्त आती है उस हिसाब से उससे पेमेंट वो कर सकता है क्या पेमेंट, ये देख लेते हैं। यानी 20 साल के लिए दिया ना,
0: हाँ,
1: तो एक साल में 12 महीने हुए,
0: हाँ,
1: तो 240 इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी उस,
0: हाँ,
1: तो 240 इंस्टॉलमेंट में 1 लाख या 2 लाख जो भी दिए,
0: हाँ,
1: या 3 लाख,
0: हाँ,
1: तो वो पूरा चुकता होगा
0: 20 साल में,
1: हाँ, 20 साल में,
0: हाँ,
1: तो उतना स्पान कर लेते हैं।
0: तो आज चूंकि आप तो 2002 में सेवानिवृत्त हुए, तो आज की प्रणाली क्या है? वो लिखत पढ़ा तो वो तो सब खत्म हो गया, अब तो कंप्यूटराइज, तो आप आज
1: नहीं,
0: कैसे होता?
1: ये तो है सर,
0: हाँ,
1: कि पुरानी प्रणाली पूरी खत्म नहीं है।
0: अच्छा,
1: बट डॉक्यूमेंटेशन,
0: हाँ,
1: यानी उसकी जो कागजात है,
0: हाँ,
1: वो सिस्टम तो पूरा मैन्युअली करते हैं।
0: अच्छा,
1: उसके रिकॉर्ड रखते हैं।
0: अच्छा,
1: उस आधार पे वाउचर बनते हैं,
0: हाँ,
1: तो वाउचर बनने के बाद भी फिर वो कंप्यूटर में जाता है और फिर उसका रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में मेंटेन होता है पूरा,
0: हाँ,
1: कि इनसे क्या कागज लिए।
0: पर ये एक लिंक में जुड़े रहते हैं ना सब कंप्यूटर के कारण, कि कहीं भी आपका खाता हो कंप्यूटर से वो मालूम पड़ जाता है।
1: किसी भी ब्रांच में जाके आप आपके खाते की पोजीशन देख सकते हो और वहां से आप निकाल भी सकते हो और दे भी सकते हो।
0: चलिए, ये तो बैंकों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी। अब थोड़ा सा हमें ये बताइए कि रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद आपका जीवन क्या चल रहा है, किस रूप में चल रहा है, कैसे आप अपना जीवन बिताते हैं? आपको कुछ अजीब सा तो लगता होगा, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई सुबह से शाम तक एक बंधा हुआ काम रहा बरसों तक।
1: तो वैसे मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कोई खाली पीरियड मेरे को नहीं लगा, यानी मैं सतत बिजी रहा, क्योंकि जो लाइबिलिटीज मेरी बची हुई थी,
0: जवाबदारियां आपकी,
1: हाँ, जवाबदारियां जो थी वो मैं पूरी कर रहा था।
0: कौन कौन है आपके परिवार में?
1: अब मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और 4 बच्चे हैं।
0: आप सब लोग आपस में मिलके अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं हम एक हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हैं?
1: क्या है, हमारे यहाँ एक ऐसा फंक्शन होता है जैसे महालक्ष्मी अभी गई, महालक्ष्मी का फंक्शन ऐसा रहता है कि हमारे जितने परिवार के लोग, यानी इवन बड़े भाई साहब, उनसे बड़े भाई साहब, बहने, ये सब इकट्ठे होते हैं और साथ में रह के वो श्री महालक्ष्मी जी का उत्सव मनाते हैं।
0: अच्छा, और इसके अलावा किन किन गतिविधियों में आप आजकल बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं?
1: उसके साथ में मैंने अभी चिन्मयानंद आश्रम में मैं नियमित रूप से जाता हूँ और वहाँ के कार्य में भी थोड़ा सहयोग करता हूँ और वहाँ पे उपनिषद और गीता के जो अध्याय हैं उसका वो बिल्कुल एक नियत तरीके से उसको समझाते, जैसे अपन क्लास में पढ़ते हैं, कक्षाओं में पढ़ते हैं, वहाँ के जो स्वामी हैं
0: वो
1: पढ़ाते हैं।
0: अच्छा,
1: पूरा,
0: अच्छा,
1: एक एक शब्द का अर्थ बता के।
0: अच्छा,
1: और इसका अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या उपयोग है?
0: हाँ, आपने इस पर कोई पुस्तक भी लिखी है ऐसा?
1: इसमें मैंने प्रयास ये किया कि जैसे अभी तक जैसे ऐत्रेय उपनिषद और 2 उपनिषद और किए हैं, तो उसमें मंत्र वाइज उसमें मंत्र आते हैं,
0: हाँ,
1: तो मंत्र का हिंदी में अर्थ बना के एक पूरी डायरी तैयार की है।
0: अच्छा, संगीत में भी कुछ रुचि है आपकी?
1: भजन किया है एक तैयार मैंने,
0: तो जरा सुनाइए हमारे सुनने वालों को।
1: भज मन राम नाम गुणकारी,

0: वाह वाह, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए और एक अच्छे पद से आप सेवानिवृत्त हुए और आज भी आप किसी न किसी रूप में समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ये एक प्रेरणादायक बात है हमारे सभी सुनने वालों के लिए। और जो जो भी अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं उन्हें कुछ इसी तरह के समाज सेवा के कार्य करना चाहिए। आज इसी बात के साथ हम हमारी एक मुलाकात कार्यक्रम को यहाँ विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विचलकर साहब। नमस्कार।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा और उनके साथ थे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर श्री एसवी वित्वेकर साहब। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं अंतरा करवड़े एवं अपर्णा सिंह, और वार्ता का शीर्षक है युवा ऊर्जा का सकारात्मक रूप।

0: साथियों नमस्कार, युवा और विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंतरा करवड़े
1: और मैं अपर्णा सिंह।
0: साथियों, आज का कार्यक्रम युवा और विकास कार्यक्रम बिल्कुल सिर्फ हमारे युवा साथियों पर ही निर्भर है, उन्हीं पर आधारित है। आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग। अंतरा, हमारा देश इन दिनों सर्वाधिक युवा देश है और यही वह समय है जब हम युवाओं का सशक्त मार्गदर्शन कर उन्हें युग निर्माण की सेना में भर्ती कर उनका सुनियोजन कर सकते हैं। आजादी के दिनों में जो तूफानी चक्रवात जन्मे थे, युवाओं ने अपने कैरियर को ताक पर रखकर देश के लिए अपने आप को बलि वेदी पर चढ़ा दिया था। ठीक उसी तरह इन दिनों उससे 50 गुना अधिक तीव्र प्रवाह पैदा होना चाहिए। इन दिनों इस देश में लगभग 54 करोड़ युवा हैं अंतरा, जिनमें 10%, जिसे हम कह सकते हैं कि 5.5 करोड़ युवा यदि विचार क्रांति के प्रवाह से जुड़ने की स्थिति में आ सकते हैं तो उन्हें हम दिशा देकर राष्ट्र निर्माण हेतु प्रवृत्त करें, क्योंकि इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सशक्त सृजन की नींव बन सकेंगे।
1: सही कहा अपर्णा आपने, और हमारे जो युवा साथी इस समय हमें सुन रहे हैं उनको मैं कह दूं कि जैसा कि अपर्णा ने कहा, उतनी क्लिष्ट बात नहीं है साथियों। बात सिर्फ इतनी है कि आप यदि विचारों को सही दिशा में रखें तो अच्छे विचारों को लेकर के युवा यदि आगे बढ़ेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी वाकई बड़ी खुशहाल होगी। बिल्कुल सीधी सी इतनी बात है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हम आपको कहीं से कहीं तक कोई उपदेश नहीं देना चाहते। साथियों, हम सभी एक दूसरे के साथ चलकर ही तो कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसे में यदि आपका कोई दुख है तो वो हमारा है और हमारा कोई सुख है तो वो भी आपका है। इस प्रकार के विचार आप सभी में यदि रहे तो वाकई आने वाला समय हम सभी के लिए खुशहाली लेकर क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल छोटी सी बात है जिसे आज हम आपके साथ बांटना चाह रहे हैं, और वो ये है कि आप में जो ऊर्जा है, आप में जो शक्ति है, आप में जो सपने देखने की प्रवृत्ति है साथियों, उसे यदि हम सकारात्मक तरीके से सकारात्मक पथ पर लेकर जाएं तो ये न केवल आपका जीवन संवारेगी बल्कि आपको लेकर आपके माता पिता जो सुनहरे सपने संजो रहे हैं उनका बुढ़ापा कितना अच्छा रहेगा, उनके जीवन की जो सांध्य बेला है उसमें उन्हें कितने अच्छे से सूर्यास्त का आनंद लेते आएगा।
0: और अंतरा, जैसा कि आपने कहा कि युवाओं में असीम शक्ति का प्रवाह होता है, प्रतिभा पराकाष्ठा पर होती है युवाओं में, और आत्मा में परमात्म शक्ति का तेज होता है और बलिदानी साहस होता है युवाओं में, हम ये कह सकते हैं। पर आज के जो युवा वर्ग हैं वे अपनी राह से भटक रहे हैं, राजनीति की मोहर बन रहे हैं और व्यसनों की गिरफ्त में आ रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अपर्णा आपने कि इन दिनों युवाओं का यह स्वरूप देखने में जरूर आ रहा है, लेकिन साथियों मैं अभी एक बात कहूं कि नकारात्मकता यदि हमें दिखाई जाती है तो सारा ही समाज नकारात्मक है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। कई बार ये होता है कि खबर बनती है तो वो नकारात्मकता की ही बनती है, क्योंकि नकारात्मकता देखने में प्रत्येक व्यक्ति की बहुत ज्यादा रुचि होती है। तो यदि मैं संक्षेप में ये कहूं अपर्णा और मेरे सभी साथियों को कि इन दिनों यदि मीडिया या फिर जो प्रतियोगिता का जो बाजार है वो सारा नकारात्मकता का बाजार है या फिर निराशावाद का बाजार है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुझे सिर्फ इतना कहना है साथियों कि आप सभी अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर ले जाएं, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि अपने चारों ओर हिंसा हो रही है, आपके चारों ओर इस प्रकार की बातें फैल रही है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तो इन सारी बातों में ही समाज इन दिनों लिप्त है, ये बात आपको नहीं सोचनी चाहिए। आपको हमेशा ये देखना है कि यदि आपके आसपास नकारात्मकता फैल रही है तो क्या ये जरूरी है कि आप भी उसी के प्रभाव में आ जाए। कई बार अपर्णा जब हम देखते हैं कि बहुत सारी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, इसमें बहुत सारे युवा ऐसी निराशाजनक बातें करते हैं जिन्हें सुनकर बड़ी निराशा होती है। कई बार ये होता है कि युवाओं द्वारा ये कहा जाता है कि हम प्रत्येक स्थान पर जाकर देखें, किसी सरकारी कार्यालय में जाकर देखें, कहीं भी जाकर देखें तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो ऐसे में यदि हम भी भ्रष्ट न बन जाए तो हमारा काम कैसे होगा। तो बेहतर है कि चलिए अब हम भी भ्रष्ट बन जाए, सारी व्यवस्था पहले से भ्रष्ट है, तो इस प्रकार से जब सारा समाज ही भ्रष्ट हो जाएगा तो एक अकेला ईमानदार व्यक्ति कहां जाएगा। लेकिन साथियों, सकारात्मक बने रहने में आप यदि भीड़ से अलग भी हो रहे हैं, आपको यदि अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करके अपने आप को आगे बढ़ाना है तो आज या कल कभी न कभी आपको यदि अपने मन को गवाही देनी पड़ी तो उस मन की अदालत में सबसे बड़े विजेता आप ही होंगे।
0: और अंतरा, जैसे आपने कहा कि ये जो पूरा समय चल रहा है इसमें हर चीज नकारात्मक ही होती जा रही है, मेरे ख्याल से जब एक युवा अपने घर से निकलता है कॉलेज जाने के लिए या किसी और काम से, तो वो ये सोचकर निकलता है कि हाँ
2: मेरे साथ अब ये चीजें गलत होने वाली है, या अगर इस ऑफिस में मेरे साथ में ये चीज गलत होगी तो मैं उसका जवाब इस तरीके से दूंगा। मतलब घर से निकलने के पहले ही वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करता है, ये सोच अपने दिमाग में अपने मन में लाता है कि अगर उसे ये चीजें गलत सामने उसके आई तो वो कैसे जवाब देगा। मतलब सोच में ही उसके इतनी नकारात्मकता भर दी गई है या उसने भर ली है समाज की सारी परिस्थितियों के कारण कि वो हर चीज सिर्फ नेगेटिव या जैसे हम कहते हैं कि नकारात्मकता से ही सोचता है।
1: बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये एक बात कहूं कि हमारे युवा साथियों में अपर्णा इतनी शक्ति है कि वो इस नकारात्मकता का मुकाबला कर सके।
2: जी
1: हम ये देखते हैं कि घर में टेलीविजन के जरिए, घर में किसी भी अखबार के जरिए, मैगजीन के जरिए, या फिर आपके घर में आने वाले आगंतुकों की बातों के जरिए घर में अगर आ रहा है तो निराशावाद आ रहा है, घर में आ रही है तो नकारात्मकता आ रही है। लेकिन साथियों, क्या जरूरत है आपको इन चीजों से प्रभावित होने की? यदि आपके मन में एक विचार है कि यदि किसी भी चीज को मुझे लेना है तो सकारात्मक तरीके से ही लेना है, तो देखिए ना दुनिया की ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको आपकी सकारात्मकता से डिगा सके।
2: और
1: अपना एक बहुत, मैं बीच में रोकूंगी आपको, एक बहुत ही छोटी सी घटना बहुत समय पहले भारतीय संस्कृति में घटित हुई थी और वो सकारात्मकता का बहुत बड़ा उदाहरण मुझे हमेशा लगती है। और ये उदाहरण मैं मुझसे मिलने जुलने वाले मेरे जो युवा साथी हैं उन सभी को मैं दिया करती हूँ। साथियों, जब आदि शंकराचार्य बहुत छोटे थे, बचपन में बिल्कुल बालक थे, खेला करते थे अपने संगी साथियों के साथ में, तब उनकी माता ने देखा कि बालक शंकर जो था उसकी मित्रता कुछ ऐसे मित्रों के साथ में हो गई थी जिनका चाल चलन ठीक नहीं था, उनका आचरण ठीक नहीं था, उस समय के हिसाब से उनकी भाषा ठीक नहीं थी, या फिर उनमें कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिससे कि हम सामान्यतः अपने बच्चों को बचा लेना चाहते हैं और माता सामान्यतः चाहती है कि ऐसे बुरे आचरण वाले या बुरे प्रभाव वाले बच्चों के बीच उनके बच्चे ना जाए। तो जब शंकर की मां ने देखा कि मेरा बच्चा ऐसे बुरी संगत में फंस रहा है, तब उसने उन्हें बुला करके बताया, समझाया कि शंकर बेटे, मुझे लगता है कि ऐसे दोस्तों के साथ रहने से तुम बिगड़ जाओगे।
2: जी
1: तुम जिस तरीके के हो, जो तुम्हारा एक स्तर है, वो स्तर नहीं रह पाएगा और तुम उनके साथ रहकर बिगड़ जाओगे। तब शंकर ने अपनी माता से एक प्रश्न किया था अपर्णा, वो ये प्रश्न ये था कि माँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास है? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं अच्छा हूं तो मैं उन चार खराब लोगों को भी अच्छा बना दूं?
2: बहुत सही बात है।
1: तो ये चीज एक बालक में यदि हो सकती है साथियों, वो भी बहुत साल पहले और वो भी भारतीय संस्कृति में ही, तो आज के जो आपकी संगति है, भले ही आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जिन चीजों के साथ रह रहे हैं वो भी तो आपकी साथी हैं। यदि मीडिया का कोई प्रकार, रेडियो आपके साथ है, वो नकारात्मकता फैला रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भी आपका साथी हुआ। तो ऐसे में यदि वो नकारात्मकता फैला रहा है तो आपको अपनी सकारात्मकता का बचाव तो करना है।
2: जी अंतरा, जो बात आपने कही यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि अगर हम रिश्तेदारी की बात करें, मतलब छोटी छोटी चीजों से लेकर अगर हम बड़ी चीजों तक जाते हैं, घर में हम रहते हैं, हमारे वहां पर रिलेशंस होते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, आस पड़ोस में हमारे जो व्यवहार होते हैं, या फिर रेडियो की बात करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन या ऑफिस में या घर में, स्कूल में, कहीं भी बात हम करते हैं, तो अगर हम इनका काउंट लेते हैं या अगर हम ये कहें कि हम इनको गिनते हैं कि कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक व्यवहार हमें देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, तो उसमें ज्यादा नकारात्मकता का जो पक्ष है या नकारात्मक पक्ष जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो मैं यही पूछना चाहती थी आपसे कि हम अपने आप को कैसे संभालें, एक युवा वर्ग जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे बचा कर रखे ऐसी निगेटिव थॉट्स या फिर जिसे कहते हैं हम बात कर रहे हैं जो कि नकारात्मक व्यवहार या सोच जो अपने आप उसने अंदर अपने डाल ली है, उससे वो कैसे बचे?
1: देखिए अपर्णा, इसमें तो बहुत छोटी सी बात ये हुई कि या तो आप दुश्मन के साथ मिल जाएं या फिर दूसरे पक्ष में रहकर कड़ाई से उसका मुकाबला करें। तो सबसे पहले तो हमारे युवा साथी ये समझे कि जो नकारात्मकता उन्हें परोसी जा रही है वो उनके दुश्मन है, वो उनके दोस्त नहीं है। वो बहुत लुभावनी लगती है देखने में, कोई भी हेडलाइन या फिर जो कोई भी स्क्रोलिंग होती है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती की घटना होती है या फिर उसके साथ कोई भी नकारात्मकता हुई है, इस प्रकार की घटना होती है, आप उसे क्यों पढ़ते हैं? आपको उसमें क्या मजा आता है? आप में इस तरीके की क्या संतुष्टि की भावना आती है उसको पढ़ने के बाद?
2: क्योंकि ये भी देखा गया, अंतरा मैं बीच में रुकूंगी आपको, कि हम खुद ही हमारी सोच जो है वो नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि पेपर में हम वही चीजें ध्यान से पढ़ते हैं जो जिसमें चोरी या खून खराबी या ऐसी डकैती के बारे में, और अगर परिवार का एक सदस्य उसको पढ़ता रहता है तो चार और आकर बैठते हैं और उसको सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं कि कहां पर हुआ, कैसे हुआ, इन चीजों के ऐसे उदाहरणों में हमें ज्यादा मजा आता है। और यही चीज रेडियो हुआ, उसमें भी यही होता है कि अगर कोई गलत खबर हमें सुनाई दे रही है तो हम ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या वो चीजें सुनने में हमें ज्यादा मजा आता है। तो हम सोचे ही ना वैसे, हम अपने आप को वैसे बनाएं कि नहीं अच्छी चीजें ही हम करें, अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें देखें। जैसे कि गांधी जी ने भी कहा है कि बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, तो ये शायद एक सोच की तरफ ले जाता है कि जितना ज्यादा हम अच्छा सोचते हैं अच्छा देखते हैं या सकारात्मक आप जैसा कह रही हैं वो अगर हम सोचेंगे देखेंगे सुनेंगे तो हमारी सोच भी अपने आप में सकारात्मक होती जाएगी। और इसका मेरे ख्याल से हमारी हर चीज पर प्रभाव पड़ता है, हमारे काम पर, हमारी सोच के साथ साथ। अगर हमारी सोच अच्छी है सकारात्मक है तो हमारे काम भी उतने ही अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अपर्णा आपने। और यदि हम उदाहरण देखें तो असफलता में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नकारात्मकता से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथियों थॉमस अल्फा एडिसन थे, उन्होंने जब बिजली के बल्ब का आविष्कार करना चाहा था, हम में से बहुतों को मालूम होगा ये उदाहरण कि 1000 बार उन्होंने अपना प्रयोग किया था, जिसमें वो 1000 बार प्रयोग करने के बाद भी वो बिजली का बल्ब नहीं बना पाए। जब 1001 प्रयास उन्होंने किया तब उनका बिजली का बल्ब बना, वे बड़े खुश हुए, सारी दुनिया खुश हुई, उनके ऊपर उपहारों की और पुरस्कारों की वर्षा हुई। तब एक व्यक्ति ने उन्हें पूछा था कि आप तो 1000 बार असफल हुए, ऐसे में क्या बीच में कभी भी आपको अवसाद ने नहीं घेरा? क्या आपको आज ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर आपके ऊपर बड़ा कृपण रहा कि उसने आपको 1000 बार भी सफलता नहीं दी, लेकिन आपने भी अपना धैर्य नहीं खोया और आपने 1001 बार प्रयास किया? तब थॉमस अल्फा एडिसन ने यह कहा कि दोस्त तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैं 1000 बार असफल हुआ, तुम ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैंने सफलता को खोजने के 1000 प्रयास किए?
2: बहुत अच्छी बात
1: तो
2: है।
1: आपका नजरिया जो है, आप खुद ही लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका देंगे और फिर लोगों के ऊपर सवाल उठाएंगे कि लोग तो मुझ पर हंसते हैं, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? साथियों आप खुद नकारात्मकता में रुचि लेंगे, आप नकारात्मक चीजों की ओर जाएंगे, जिंदगी में मजा क्या होता है? तो आप यदि शराब का पक्ष लेंगे, जिंदगी में मजा क्या होता है, तो आप डांस बार और पब्स में जाएंगे, आप खाने पीने की उलझुल चीजें खाने में ही मजा ढूंढेंगे, तो इन चीजों का अंत क्या होगा?
2: जी हाँ,
1: आप खुद नकारात्मकता के गर्त में जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जिंदगी ने मेरे लिए भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। तो जिंदगी तो आपको सिर्फ कोरा कागज और अपनी जिंदगी की मेहनत की कलम देती है। साथियों आपको उसमें अगर लिखना है तो सकारात्मक शब्द लिखिए, फिर देखिए किस्मत कैसे आप पर मेहरबान नहीं होती।
2: जी, और अंतरा जैसे आपने उदाहरण दिए ये दो, तो उसमें आपके कहने का मतलब यही था कि हम नकारात्मक चीजों की तरफ जाएं ही ना, हमारी सोच ही वैसी, क्योंकि बात तो सिर्फ सोच की होती है। अगर हम सोचेंगे अच्छा सोचेंगे सही तो शायद लोग भी या हमारे आसपास का जो समाज है जो लोग हैं जो उनका जो व्यवहार है वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, यानी कि सकारात्मक रहेगा।
1: बिल्कुल। और अपर्णा मुझे तो ये लगता है कि हम समाज को सुधारने की बजाय पहले हम सुधरें।
2: जी हाँ।
1: आपको एक बहुत छोटी सी बात यदि मैं बताऊं, किसी भी कार्यालय में जहां पर आप 4-5 साल से काम कर रहे हैं वहां के साथियों के साथ में आपका एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट लेवल हो जाता है ना, तालमेल जिसे हम कहते हैं। होता यह है कि सुबह सुबह आप कोई खबर लेकर आ गए कि फला फला सहकारी जो है आपका वो किसी व्यक्ति के साथ में या तो भाग गया है या फिर किसी कानूनी पचड़े में फंस गया है या फिर उसके घर में चोरी हो गई है। इस तरीके की यदि आप नकारात्मक खबर लेकर जाएंगे ना तो आपके आसपास आपके सहकर्मियों का हुजूम उमड़ पड़ेगा।
2: जी हाँ।
1: वो सब बोलेंगे अरे क्या हुआ कैसे हुआ, जैसे आपने बताया सारी की सारी जानकारी लेने की उनको इच्छा होगी। लेकिन यदि आप अचानक जाएंगे ऑफिस में और कहेंगे कि अरे आज सुबह सुबह मैंने इतना अच्छा विचार पढ़ा है, इतना सकारात्मक विचार पढ़ा है कि मैं उसे सबके साथ में बांटना चाहूंगा, तब आप देखिए कि उनमें से कोई भी उठकर जिज्ञासा से आपके पास आता है क्या? कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि नकारात्मकता हमें कुछ ऐसा स्वाद देती है, पता नहीं
2: लुभाती
1: क्यों
2: है,
1: लुभाती है, और फिर हम बड़े मजे ले लेकर। और आप ये देखिए कि इस प्रकार की बातचीत का अंत में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता, जबकि आप सकारात्मक बातचीत करेंगे हमेशा आप तनाव रहित होकर अपने काम पर वापस जाएंगे। तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि हम यदि खुद से ही शुरुआत करें तो नकारात्मकता अपने आप ही आपसे पल्ला झाड़ लेगी। यदि नकारात्मक लोगों ने, नकारात्मक स्रोतों ने आपसे पल्ला झाड़ लिया, तो जाहिर है कि नकारात्मकता ने आपसे पल्ला झाड़ लिया।
2: जी हाँ। और मेरे ख्याल से अगर 10 में से 3 लोग भी ऐसा करते हैं कि सकारात्मक चीजें सोचते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं, तो जिसे हम और अगर हम ज्यादा ऊंचे लेवल पर जाकर कहते हैं सुनते हैं तो शायद एक जिसे कहते हैं हम कि ऑरा आपके आगे पीछे बनता है।
1: जी।
2: अगर आप अच्छा सोचेंगे तो शायद अच्छी बातें आपके आसपास होंगी जो आपकी सोच को अच्छा करेगी, और सामने वाला भी जो है वो तभी आपसे अट्रैक्ट होगा या आपसे बात करने की कोशिश करेगा जब वो अच्छी बातें या अच्छी सोच उसको आपने नजर आएगी। बिल्कुल अपर्णा, जैसे आपने ऑरा की बात की तो मैं इसी बात को और इसी बिंदु को लेकर हमारा आज का जो युवा और विकास कार्यक्रम है उसे संपन्न करना चाहूंगी कि साथियों, यदि आपके बीच में या फिर आपके साथ में आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता की बात जब आ जाती है, जब सबको ये चीज मालूम हो जाती है कि इस व्यक्ति को कितनी भी नकारात्मक बात बताई जाए वो उसमें से अच्छी चीज तो ढूंढ ही लेता है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे में उसे नकारात्मकता परोसी ही क्यों जाए। साथियों, मैं आशा करती हूं हमारी ये बातचीत आपको आज के युवा और विकास कार्यक्रम में पसंद आई होगी। नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था युवा ऊर्जा का सकारात्मक रूप। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे अंतरा करवड़े एवं अपर्णा सिंह। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है विज्ञान पर आधारित हथियार, जिसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजस।
1: युग संचार के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता विज्ञान पर आधारित हथियार, लेखक और प्रस्तुतकर्ता है माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों के साथ साथ अवगुण भी दिए हैं, जिनमें से एक है क्रोध। मनुष्य अपना क्रोध कई एक तरह से प्रकट करता है, लेकिन उसका क्रोध जब चरम पर पहुंचता है तो वह मरने मारने पर उतारू हो जाता है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया आदिम काल से लेकर अब तक चली आ रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आदिम काल में लड़ाई झगड़े के समय अस्त्र के रूप में पत्थर काम में लिए जाते थे और शस्त्र का काम लिया जाता था शाखाओं से। आदि मानव वृक्ष से शाखा तोड़कर उसे हथियार के रूप में उपयोग करते थे। फिर जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे ही मानव अपने हथियारों को भी उत्कृष्टता प्रदान करता गया। अब उसके अस्त्र के रूप में गोफन ने अपना स्थान बना लिया था, और फिर कुछ और विकास करने के बाद और लोहे से परिचित होने के बाद तो जैसे उसके हथियार निर्माण में एक क्रांति सी आ गई थी। अब अस्त्र के रूप में उसके पास था तीर कमान और शस्त्र के रूप में थी तलवार। मानव सभ्यता के पूरी तरह से विकसित होने तक मनुष्य द्वारा बंदूक का आविष्कार कर लिया गया था, और फिर इसके बाद तो एटम बम और परमाणु बम तक बना लिए गए, लेकिन ये अधिक रूप से विनाशकारी होने के कारण अधिक प्रचलन में नहीं लाए गए। इनके स्थान पर तोप, ग्रेनेड और बंदूकों पर ही अन्वेषण जारी रहे और आज भी जारी है। श्रोता साथियों, टेलीविजन के आने से मानव जीवन में एक क्रांति सी आ गई है।

किया और किस तरह से इराक पर विजय प्राप्त की। यदि अमेरिका चाहता तो इराक में अपना एक भी सैनिक उतारे बिना समस्त इराक को बमों से तहस नहस कर देता, लेकिन उसे वहां के लोगों को सुरक्षित रखकर केवल वहां के तानाशाह सद्दाम हुसैन को अपदस्थ कर गिरफ्तार कर सजा देना था, और उसने ऐसा किया भी। इस युद्ध में आधुनिक संचार की विकसित तकनीक देखने को भी मिली। इसके साथ ही श्रोताओं, पिछले दिनों मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की भी सीधी पूरी की पूरी घटना का जो कवरेज आपने देखा, वो भी आधुनिक तकनीक का एक सशक्त पहलू ही था। वैसे तो वैज्ञानिक पूरे समय कुछ न कुछ नए की खोज में लगातार लगे ही रहते हैं, जैसे आम जीवन को सुलभ और सरल बनाने के लिए वे निरंतर प्रयोगों में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों का एक वर्ग ऐसा भी होता है जो नए नए हथियारों की खोज में निरंतर लगा रहता है। जिस प्रकार से आम वैज्ञानिक आम लोगों के जीवन को आरंभ से जीने में मदद करने के लिए नई नई खोजों में लगे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हथियारों के निर्माता वैज्ञानिक भी सैनिकों को बिना किसी परेशानी के युद्ध लड़ने के लिए या फिर कम से कम परेशानी उठाकर अपनी जान जोखिम में न डालकर युद्ध करने के लिए नए नए आधुनिक हथियारों की खोज में और उनके परीक्षण में लगे रहते हैं। साथियों, एक समय था कि टैंक चलाने वालों को और टैंक से बंदूक से फायर करने वालों को अपना जरा सा ही सही मगर सिर बाहर निकालना ही पड़ता था। इससे उन्हें अपनी जान का खतरा निरंतर बना रहता था। लेकिन वर्तमान संचार तकनीक ने बहुत हद तक अब इस खतरे को कम कर दिया है, क्योंकि अब टैंक के भीतर स्क्रीन और बाहर कैमरे लगाए जाने के कारण ही बाहर के चारों ओर का दृश्य टैंक के भीतर बैठे बैठे ही देखा जा सकता है, और भीतर बैठे बैठे ही टैंक को भी, उस पर लगी तोप और अन्य गनों को भी चलाया जा सकता है। वास्तव में इस तकनीक से टैंक के भीतर बैठे कार्रवाई करने वाले सैनिकों की जान का खतरा 50% कम माना जा सकता है, क्योंकि 50% खतरा टैंक को बम या तोप से उड़ाने का तो शेष है ही। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि युद्ध में सुरक्षित होने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हैं। इसी प्रकार से पहले युद्ध में ऐसा होता था कि एक सैनिक अपने बगल की दीवार के पीछे या अपनी बगल की किसी आड़ में छिपे सैनिक पर उनके सामने आए बिना या फिर छिपकर उसकी सीध में आए बिना एक भी फायर नहीं कर सकता था। लेकिन आज वर्तमान तकनीक ने इस मुश्किल को बहुत आसान बना दिया है। इस मुश्किल को आसान बनाया है बंदूक के एमर के पास लगे एक छोटे से कैमरे और एक छोटी सी स्क्रीन ने। कैमरे बगल की दीवार या आड़ के पीछे की पूरी तस्वीर स्क्रीन पर डाल देता है, जिसे सैनिक एक बटन की सहायता से बड़ी भी करके देख सकता है और उसी पर अपना लक्ष्य साध कर फायर भी कर सकता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि फायर करने वाले सैनिक को अपने लक्ष्य के सामने आने या अपने आप को उसके सामने प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी आड़ में से ही उस पर निशाना साध भी सकता है और फायर भी कर सकता है। तो श्रोता साथियों, संचार माध्यम के द्वारा जहां आज युद्ध के समय सैनिकों के प्राण का खतरा 50% कम होने की बात यदि हम मान भी लें, तो भी युद्ध जैसे स्थल पर पूर्ण सुरक्षा और सुविधा के बावजूद भी किसी सैनिक के सुरक्षित बचे रहने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती या उसके पूर्ण रूप से सुरक्षित होने का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। सैनिक जीवन की पूर्ण रूप से सुरक्षा का दावा तभी किया जा सकता है जब किसी भी सैनिक को युद्ध स्थल पर न भेजा जाए। क्या सैनिकों के बिना भी कोई युद्ध लड़ा जा

0: सकता है? इसका जवाब यदि कुछ वर्षों पूर्व पूछा जाता तो वो नहीं में होता, लेकिन आज इस सवाल का जवाब हाँ में है कि हाँ, बिना सैनिकों के भी युद्ध लड़ा जा सकता है और इसे संभव बनाने की आशा की किरण दिखाई है आधुनिक उच्च तकनीक और संचार माध्यम ने। जी हाँ साथियों, अब सैनिकों को युद्ध स्थल पर जाकर युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि सैनिकों की जगह लेने वाली हैं चार पहियों पर चलने वाली और खिलौनों की तरह लगने और नजर आने वाली इस चार पहिया फायरिंग मशीन गाड़ी में एक कैमरा और एक फायर करने वाली नली लगी रहती है। ये दोनों चारों ओर किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, यानी कि कैमरे और फायर नली को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है और चलाया जा सकता है एक रिमोट कंट्रोल के सहारे। दरअसल इस फायर गाड़ी को 1 किलोमीटर की रेंज में रहकर ऑपरेट किया जा सकता है। ऑपरेटर एक जगह पर गाड़ी को नियंत्रित करने वाले डैशबोर्ड और एक स्क्रीन के साथ बैठा रहता है। छोटी सी 1.5-2 फुट ऊंची और इतनी ही चौड़ी गाड़ी में लगा कैमरा दूर बैठे ऑपरेटर को अपने आसपास के चारों ओर की तस्वीर उसके पास लगे स्क्रीन पर भेजता रहता है और ऑपरेटर उन तस्वीरों को अपनी स्क्रीन पर देखकर वहीं से उस मशीन से निशाना लेकर उस लक्ष्य पर फायर करता है। इसके अलावा भविष्य में युद्ध करने के लिए रोबोटों का निर्माण भी किया जा रहा है और इन्हें भी कहीं दूर बैठकर ही संचालित किया जा सकता है। बस कुछ ही वर्षों में ये मानव सैनिकों का स्थान ले लेंगे और वो दिन दूर नहीं जब मानव सैनिकों की जगह ये यंत्र सैनिक युद्ध करते नजर आएंगे।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था विज्ञान पर आधारित हथियार, जिसके लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरिता शीर्षा का हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्यस्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सोनाली जंगरा। दोस्तों, अभी की सभा 9 से 10 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण, पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं फादर हरमन बंडोड SVD और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बंडोर एसपीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है अमरनाथ की आग। मित्रों, आतंकी हमले की धमकियों के बीच इस वर्ष पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में 3,157 श्रद्धालु शामिल थे। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था 96 छोटी तथा बड़ी गाड़ियों में सवार होकर बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए निकला। पर्यटन मंत्री जीए मीर ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को पारंपरिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मित्रों, उत्तराखंड की मची तबाही और आतंकियों की धमकी के बाद लग रहा था कि अमरनाथ यात्रा प्रभावित होगी, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश को देखते हुए लग रहा है कि इन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। अमरनाथ पर आतंकवाद का साया मंडराता रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले कश्मीर में हुए आतंकी हमले से यात्रा पर भी आतंक के बादल मंडरा रहे थे। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं। 1,00,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी करीब 55 दिनों तक लखनपुर से लेकर गुफा तक भक्तों की सेवा में लगे रहेंगे। कड़ी सुरक्षा के बावजूद रामबन जिले में गोलीबारी की घटना के बाद कश्मीर घाटी और राज्य के कुछ अन्य इलाकों में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। गुली इलाके में गोलीबारी की घटना के बाद कश्मीर घाटी के अधिकतर भागों में कर्फ्यू लगाया गया। अमरनाथ यात्रा 2 दिनों तक रुकी रहने के बाद फिर जम्मू से शुरू हो गई। मित्रों, रामपुनियानी जी कहते हैं, अमरनाथ यात्रा कश्मीर घाटी की प्रमुख धार्मिक पर्यटक गतिविधियों में से एक है। इस यात्रा का संचालन स्थानीय नागरिकों जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे द्वारा किया जाता था। सन 2001 में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया गया और ठीक ठाक चल रही व्यवस्थाओं को बोर्ड के हवाले कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल थे व राज्यपाल के प्रमुख सचिव इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। धीरे धीरे बोर्ड अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने लगा और वे काम भी करने लगा जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल होने से उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बोर्ड ने पहलगाम गोल्फ कोर्स पर निर्माण कर डाला। सन 2005 में नियमों के विपरीत बोर्ड को यात्रियों के उपयोग के लिए वन भूमि के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। मजे की बात तो यह है कि बोर्ड की इस गैरकानूनी मांग को मंजूरी देने वाली वन अधिकारी बोर्ड के CIO की पत्नी थी। इस इजाजत से ही उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसके गंभीर नतीजे आज हमारे सामने हैं। राज्य सरकार ने शुरू में वन विभाग के इस निर्णय को गलत ठहराया, परंतु हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। इसके बाद राज्य सरकार दबाव में आ गई और उसने उक्त भूमि बोर्ड को अंतरित कर दी। बाद में यह अंतरण रद्द कर दिया गया। मित्रों, बिना सोच विचार कर लिए गए निर्णयों की श्रृंखला का नतीजा यह है कि कई दशकों की मेहनत से स्थापित की गई शांति के हिंसा और अव्यवस्था में बदल जाने का खतरा पैदा हो गया है। यह जानना दिलचस्प होगा कि अमरनाथ यात्रा हमारे देश के कई अन्य धार्मिक आयोजनों की तरह भारत की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे मालिक ने सन 1850 के दशक में की थी। इसी के बाद से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। मालिक परिवार के सदस्य सन 2001 तक यात्रा के इंतजाम देखते थे। यात्रा का प्रबंध श्राइन बोर्ड के हाथों में आते ही बोर्ड ने पूरी यात्रा और उसके प्रबंधन को भगवे रंग में रंगना शुरू कर दिया। यात्रा का पूरे देश में जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया और नतीजे में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी उछाल आया। जहां सन 1989 में अमरनाथ यात्रियों की संख्या 12,000 थी, वहीं सन 2007 में 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लिया। जहां पहले यात्रा साल में केवल 2 सप्ताह में सम्पन्न की जाती थी, उसकी अवधि बढ़ाकर 10 सप्ताह कर दी गई। इस सबका विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव साफ दिखलाई पड़ रहा है। सैकड़ों टन मानव विष्ठा, प्लास्टिक और पॉलीथीन के कचरे ने निकट के अद्वितीय रूप से सुंदर लिथर नदी को एक गंदे नाले में बदल दिया है। कुछ वर्ष पूर्व पर्यावरण प्रदूषण ही शिवलिंग के पिघलने का कारण भी बना था और उस पर सूखी बर्फ डालकर उसके अस्तित्व को तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए बचाए रखा गया था।
जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित रखने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर यात्रा का आक्रामक ढंग से प्रचार कर यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान दे रही है। इस क्षेत्र के पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होगी। इन सब मुद्दों से बेखबर अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रियों की संख्या बढ़ाने और अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में जुटा हुआ है। राज्यपाल के अध्यक्ष होने का लाभ उठाकर बोर्ड ने पहलगाम विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी खुद ही करना शुरू कर दिया है। श्राइन बोर्ड को जमीन अंतरित करने के सरकार के आदेश से पहले से ही तनाव और आतंकग्रस्त घाटी के मुसलमानों में भय की एक नई लहर फैल गई। उन्हें यह डर था कि इस भूमि पर हिंदुओं को बसाकर घाटी के मुस्लिम बहुल चरित्र को बदलने का प्रयास किया जाएगा। इस भय का एक कारण यह भी था कि कुछ वर्ष पहले तत्कालीन इसराइली विदेश मंत्री शिमोन पेरेस ने भारतीय जनता पार्टी नेता एलके आडवाणी को सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की सलाह दी थी। उन दिनों आडवाणी देश के गृहमंत्री थे। घाटी के स्वस्फूर्त विरोध प्रदर्शनों का लाभ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरवादी धड़े के नेताओं ने उठाया। सईद अली शाह गिलानी ने विरोध को अलगाववादी प्रदर्शनों में बदल दिया। मित्रों, यह सचमुच बहुत विडम्बनापूर्ण है कि कश्मीर, जो भारतीय संस्कृति की विविध धाराओं का शानदार संगम है, आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। कश्मीरियत में वेदांत के मूल्य, सूफी संतों की शिक्षाएं और गौतम बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत शामिल हैं। कश्मीर 60 वर्ष पहले भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी हुआ था। इन 60 वर्षों में विलय की संधि की सभी शर्तों का जमकर उल्लंघन हुआ है। हर समस्या का समाधान सेना के जरिए ढूंढने की कोशिश की गई। यह कितना दुखद है कि सेना, जिसका काम हमें बाहरी शत्रुओं से बचाना है, कश्मीर में भारत सरकार की नीतियों को लागू करने का एकमात्र प्रभावी तंत्र है। हमें इस विषय पर गंभीरता से आत्मचिंतन करना होगा। मित्रों, जम्मू के लोगों की समस्याओं को भी बरसों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि जम्मू के लोग यह मानने लगे हैं कि केंद्र सरकार केवल घाटी की भलाई के बारे में चिंतित रहती है। जम्मू क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयत्न किए जाने चाहिए। अलगाववादी तत्वों की भड़काऊ हरकतें और सांप्रदायिक तत्वों की राजनीति से मुकाबला करने का एकमात्र तरीका यह है कि बंदूक की नहीं, मेल मिलाप की भाषा में बात की जाए। समाज के असंतुष्ट हिस्से के साथ रचनात्मक बातचीत के रास्ते निर्मित किए जाए और शांति वापस लाई जाए। अतीत में हुई गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें स्वीकार किया जाए। देश में कभी भी किसी धार्मिक स्थल को वन भूमि नहीं दी गई और न ही कहीं मंदिरों के ट्रस्टों या दरगाहों के प्रबंधन बोर्डों का राजमंदिर या दरगाहों की सीमाओं के बाहर चलने दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड तो मानो अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग को अपनी जागीर समझने लगा है। मित्रों, कश्मीरियत यदि वापिस आएगी तो अपने साथ शांति, सौहार्द और सामाजिक आर्थिक उन्नति भी लाएगी। कश्मीरियत को वापिस लाने के लिए जो भी जरूरी हो किया जाना चाहिए। नमस्कार।

दोस्तों, अभी हमने सुना कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे फादर हरमन बंडोड SVD और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वाज मुंबई की। दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता पति धर्म निभाएं। लेखक हैं माइकल होजेस, प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। श्रोता साथियों, आपने यदि क्रिश्चियन समुदाय के, विशेषकर रोमन कैथोलिकों के विवाह समारोह में किसी चर्च में भाग लिया हो तो आपने देखा होगा कि विवाह रस्म की विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के अंतर्गत एक क्रिया में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित वर वधु को जीवन भर साथ रहने, एक दूसरे को धोखा न देने और प्रत्येक सुख दुख में एक दूसरे के काम आने की शपथ दिलाते हैं। जो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ थामे ग्रहण करते हैं और एक और क्रिया के अंतर्गत जब एक दूसरे को अंगूठियां पहनाकर और अन्य रस्म पूर्ण कर जब उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है, तब पुरोहित फिर एक प्रार्थना के अंतर्गत कहते हैं कि जिन्हें ईश्वर ने जोड़ दिया है उन्हें मनुष्य अलग न करे। एक अंग्रेजी कहावत में कहा भी जाता है कि विवाह स्वर्ग में तय होते हैं। इसलिए ईसाई समुदाय के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए पुरोहित यही आशीर्वचन कहते हैं कि जिन्हें ईश्वर ने जोड़ दिया है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। श्रोता साथियों, लेकिन आज लगता है कि विवाह बंधन में बंधे किसी पत्नी और पति को कोई शैतान नहीं बल्कि मनुष्य ही अलग कर रहा है। किसी पति पत्नी को आज मनुष्य ही मनुष्य होकर कैसे अलग कर रहा है, आइए इसे शिल्पा के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। शिल्पा एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करती है। उसका पति भी एक प्राइवेट दुकान पर काम करता है। उन दोनों के यहाँ 5 बच्चे हैं। पति पत्नी निम्न मध्यम परिवार से हैं और दिखने दिखाने में दोनों ही साधारण हैं। इसके बावजूद पत्नी पति से कई कदम फैशनेबल और सामाजिक व्यवहार में आगे है। शिल्पा अपने नियायत ही सीधे साधे पति और 5 बच्चों की माँ होते हुए भी एक विजातीय अधेड़ की रखेल बनी हुई है। शिल्पा जहाँ पंजाबी है वहीं उसके साथ नियमित घूमने और उसके यहाँ आने वाला अधेड़ समाज के सबसे निष्कृष्ट वर्ग से है। यहाँ जात और वर्ग की बात इसलिए की गई है क्योंकि दोनों के समाज वाले ही जाति और वर्ग के कारण भी उनकी आलोचना किया करते हैं। यहाँ पर जाति और वर्ग की बात इसलिए भी की गई है क्योंकि वैसे तो जाति और वर्ग भेद के नाम पर आज भी हमारे समाज में बहुत छुआछूत मानी और दर्शाई जाती है, लेकिन अवैध संबंध कायम करते हुए इस ओर से आंखें मूंद ली जाती हैं, जो शिल्पा और उसके प्रेमी ने भी किया। शिल्पा का पति तो सुबह 6:30 बजे ही अपनी नौकरी के सिलसिले में घर से निकल जाता है क्योंकि वो काम के लिए दूसरे शहर में जाता है। शिल्पा भी उसी शहर में नौकरी के लिए जाती है और उसका प्रेमी भी। शिल्पा का पति अपनी नौकरी से 10:00 बजे आता है जबकि शिल्पा और उसका प्रेमी अपने काम से जल्दी छूट जाते हैं। शिल्पा का प्रेमी बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जाहिर है वो पैसे वाला है। साथ ही वो नाना और दादा भी है क्योंकि उसकी बेटी और बेटों की शादियां हो चुकी हैं। लेकिन यकीनन उसकी भी अक्कल पर पत्थर पड़ गए हैं, तभी तो वो अपने से बहुत छोटी शिल्पा का प्रेमी बनकर उसके घर का राशन भी डलवा रहा है। उसकी पत्नी और उसके बेटे कितनी ही बार शिल्पा के घर आकर उससे झगड़ा करके चले गए, मगर न तो शिल्पा पर ही कोई असर पड़ा और न ही उसके प्रेमी पर। विडंबना तो यही है कि शिल्पा के पति को अपनी पत्नी की सारी करतूत पता है, लेकिन शिल्पा द्वारा आत्महत्या की धमकी और कुछ कर लेने की धमकी ने उसे जिंदा लाश में बदल दिया है। इसलिए वो केवल अपने काम से काम रखता है और मोहल्ले में भी किसी से बात नहीं करता है। एक बार कॉलोनी के ही एक शख्स ने उसे शिल्पा की करतूत बताई तो वो उसी से ही झगड़ पड़ा। शायद पत्नी की शिकायत पर शिकायतकर्ता से ही उलझना उसकी नियति बन गई है। इसलिए अब शिल्पा को लेकर पूरी कॉलोनी वाले आपस में चर्चा या आलोचना या मजाक भले ही कर लें, लेकिन उन लोगों से सीधा कोई कुछ नहीं कहता। इसलिए भी शिल्पा का प्रेमी दिन हो या रात खुलेआम अपने पावन चरणों से शिल्पा के घर को पवित्र करता रहता है। शिल्पा भी उसके आने के समय पर अपनी गाड़ी लेकर उसको लेने जाती है। मजे की बात तो ये है कि शिल्पा अपने पति को न तो कभी लेने स्टेशन जाती है और न कभी छोड़ने, लेकिन अपने प्रेमी के लिए वो ये काम लगातार और नियमित रूप से करती है। शिल्पा के प्रेमी के आते ही उसकी तीनों बड़ी लड़कियां या तो घर के बाहर या फिर ऊपर गच्ची पर चली जाती हैं। अपनी सबसे छोटी बेटी को उसने उसकी नानी के घर पर छोड़ रखा है। शिल्पा का उदाहरण देने का अर्थ ये है
कि अपने युवा होते बच्चों के सामने वो ये कैसा उदाहरण रख रही है। उसका सबसे बड़ा बेटा एक कॉल सेंटर में नौकरी करता है और बेटी भी वही नौकरी की तैयारी कर रही है। दो छोटी स्कूल जाती हैं। छोटी से बड़ी बेटी को अक्सर कॉलोनी वाली अपनी आस पड़ोस की सहेलियों के उपहास का पात्र बनाया करती हैं। अक्सर बच्चों को अन्यों के सामने नीचा भी दिखना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिल्पा को क्या इस बात का भान बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी युवा होती बेटियों पर उसकी इस समाज विरोधी क्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ता होगा। इसी तरह का एक और उदाहरण देखते हैं। पुष्पा का पति एक सरकारी नौकरी में है। वो अपने स्थानांतरण के कारण सदा ही अपने घर से दूर ही रहता है। चूंकि ये लोग आदिवासी परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए अभाव भरे जीवन से ये लोग भली भांति परिचित हैं। इनके अपने प्रदेश में आज भी इनके वर्ग और समुदाय के लोग पिछड़ेपन और अभावों में जीते हैं। इसलिए पिता तो दूसरे शहर में अकेले रहकर तन मन से सरकारी नौकरी करते रहे और इधर इनकी पत्नी ने एक नहीं अनेकों से अपने संबंध बना लिए और खूब कमाई की। पति धर्म पर आंच आए तो आए उसकी बला से। अब हालात ये है कि माँ ने अपनी इकलौती बेटी को भी अपनी ही लाइन पर डाल दिया है। इसलिए अब बेटी जवान हो या बाप की उम्र का कोई पुरुष सबके साथ बिंदास घूमती है और रातों को उनके पास रुक जाती है। उनके साथ घूमने शहर के बाहर भी चली जाती है। माँ भी बेटी को भरपूर शय देती है। चूंकि अब पिता का ट्रांसफर उनके ही शहर में हो गया है, इसलिए अब माँ बेटी आए दिन अपने पति और पिता से झगड़ा करती है, क्योंकि पिता उनकी गलत हरकतों का विरोध करते हैं। श्रोता साथियों, इस तरह से इन दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि मात्र अपने शारीरिक सुख और चंद रुपयों के लिए किस तरह से कुछ आधुनिक नारियां, और केवल आधुनिक नारियां ही नहीं, कतिपय पिछड़ी नारियां भी अपने पति को पति नहीं समझने की भूल कर रही हैं। इनसे बेहतर और स्पष्ट जीवन जीने वाली तो वेश्याएं होती हैं, जो किसी मजबूरी के तहत इस तरह के पेशे को अपनाने के लिए मजबूर होती हैं। लेकिन इन जैसी चरित्रहीन महिलाओं को क्या कहा जाए जिनके सामने कोई और किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं है। इन्हें तो चिंता है सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने, आनंद उठाने और रुपए कमाने की, ताकि ये दो पहिया या चार पहिया वाहनों में घूम सके, खरीदारी कर सके, एंजॉय कर सके, ऐश कर सके। श्रोता साथियों, प्रत्येक घर में पति पत्नी को सुख दुख अथवा संकट आदि कैसी भी परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देने, पति और पत्नी का धर्म निभाने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन इस तरह के चरित्रहीन पतन वाली महिलाएं अपने आप से पूछें, क्या वाकई में वो ऐसा कर रही हैं?

दोस्तों, अभी हमने सुना कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RVI मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा WhatsApp नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड नंबर है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहे और सुनते रहे सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वाज मुंबई की।